0: विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: राज्यसभा में भी हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। सवाल अब यह कि गृह मंत्री को संसद में घेरने में जुटा रहा विपक्ष क्या अब रणनीति बदल देगा? क्या अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि E20 और चढ़ावा चोरी पर चर्चा हो जाए ताकि फायदा उत्तर प्रदेश में उठाया जा सके? और क्या गृह मंत्री को लेकर राहुल गांधी के सवाल के जवाब में बीजेपी ने जो कहा है उससे अखिलेश यादव को भी ढाल मिल गई है?
2: वंदे मातरम बिल राज्यसभा के बाद लोकसभा से भी पास हो गया, हंगामा जरूर हुआ।
3: जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहे। मेरे विचार में
2: लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पेपर लीक रोकने वाला बिल पास हो रहा है।
4: सर, देयर इज अ नेशनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू रेज ऑन
2: लाइव। तो यानी बिल पास हो रहे हैं, सदन चल रहा है। सवाल सीधा सा है, क्या राहुल गांधी की रणनीति सरकार ने फेल कर दी या फिर विपक्ष के बीच मुद्दों पर अब आगे बढ़ने की राजनीति हो रही है? सीधी सी बात पहली यही कि जो राहुल गांधी बुधवार तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के बताते रहे कि गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग पर कोई कंफ्यूजन नहीं है।
5: कुछ दिन पहले हम यहाँ मिले थे, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है।
6: हाँ।
5: क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल जाएगा? हुआ है,
6: अमित शाह मस्ट गो। देयर इज नो एम्बिग्युइटी हियर, देयर इज नो कंफ्यूजन।
2: लेकिन संसद में अमित शाह को लेकर जो रणनीति राहुल गांधी चाहते हैं उससे अलग स्टैंड लिया जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस सदन ठप नहीं करती, पेपर लीक बिल पर बहस में हिस्सा लेती है। अमित शाह का इस्तीफा खड़गे मानते हैं और तभी ऐसा बयान देते हैं जिस पर हंगामा होता है।
7: बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे के सामने हम दिखाएंगे इनके बारे में क्या है।
2: लेकिन इन सब के बीच अखिलेश की रणनीति क्या है? सवाल की वजह ये पोस्ट है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर डाला कि साइकिल की रफ्तार जोरदार है क्योंकि साइकिल E20 से आजाद है। ये पोस्ट क्या इस बात की तरफ इशारा करती है कि अखिलेश संसद में अब E20 के मुद्दे पर बढ़ना चाहते हैं। E20 के अलावा समाजवादी पार्टी संसद में अब और सत्ता और विपक्ष के बीच बहुत खींचतान की जगह उन मुद्दों पर चर्चा चाहती दिखती है जिसका वो फायदा यूपी की राजनीति में उठा सके, जैसे E20 के अलावा वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विषय पर चर्चा चाहते हैं।
8: राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा आज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जोर पकड़ता हुआ संसद के अंदर नजर आ रहा है। इस वक्त जो है मकर द्वार के सामने एक दान पात्र रख दिया गया है और इस दान पात्र के अंदर विपक्ष के सभी सांसद दान डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप देखिए कैसे जो सांसद है उनके हाथ में जो दान पात्र है उसमें कुछ अलग अलग सांसद, ये दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद है जिन्होंने हाथ में दान पात्र लिया हुआ है और स्वागत हो रहा है। जो TMC के सांसद है वो उसमें दान डालते हुए नजर आ और जैसे ही ये दान डाला जाता है वैसे ही संसद जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो इस दान पात्र को छीनने लगते हैं, यानी कि एक प्रतीकात्मक विरोध है जिसमें जैसे ही दान डलेगा वैसे ही उस डब्बे को लेकर जो है जो वो लोग यहां से चले जाएंगे और ये आरोप BJP पर लगाया जा रहा है कि आप दान लेते हैं और उसी चंदे को जो है लेकर भाग जाते हैं।
1: ये लोग चंदा चोरी की भी नहीं बात करना चाहते, हम तो चाहते हैं कि बहस हो क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों ने जो चंदा दिया है चाहे वो हमारे देश के हो चाहे NRIs हो, कितना चंदा आया, हजारों करोड़ों का चंदा आया है। आज ये लोग चंदा चोरी पे बात नहीं करना चाहते हैं, ये केवल ध्यान भटकाने वाली राजनीति पे बात करना चाहते हैं।
9: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विषय के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करने का प्रयास कर रही है वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। बहुत स्पष्ट रूप से सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ उस विषय पे कार्य कर रही है, विषय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में चल रहा है। इसके उपरांत भी राजनीति करने वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये वो लोग थे जो ये कहते थे कि अयोध्या तो यहां थी ही नहीं, ये वो लोग थे जो कहते थे भगवान श्री राम तो हुए ही नहीं, ये वो लोग थे जो मजाक उड़ाते थे कि राजा दशरथ के इतने महल थे और यहां पर हुए थे कि वहां पर हुए थे, और ये वो लोग थे जिन्होंने राम भक्त कारसेवकों के खून से सरयू लाल कर दी।
1: दिलचस्प E20 पेट्रोल को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, सोशल मीडिया पर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ी के इंजन में बदलाव से इनकार कर दिया है। हालांकि सरकार ने माना है कि E20 का असर BS3 गाड़ियों पर हो सकता है, उसके रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं।
10: आज जो जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, कोई कह रहा है उसका रबर का इस्तेमाल जहां होता है वो गल जाता है, क्या ये सही है? गाड़ियां खराब हो रही हैं।
2: इथेनॉल पर जनता के जुड़े सवाल से आज तक ने कुछ दिन पहले सरकार को खबरदार करके पूछा था कि क्या इथेनॉल वाला पेट्रोल गाड़ियों के लिए सुरक्षित है,
10: आपको लग रहा है सेफ है इथेनॉल?
2: इस पर सरकार ने दावा किया कि उसने पूरी तैयारी के साथ ये काम किया।
11: कोई भी गाड़ी आज मेरे मन में आया मैंने डाल दिया इथेनॉल, ऐसा नहीं होता।
2: सरकार ने एक बार फिर E20 यानी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का बचाव किया।
11: मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है और मैं तो आह्वान करता हूँ, मैंने कल ही कहा कि जिसमें की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने नियम तैयार की है इसके बारे में, हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे।
2: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया है कि BS3 मानक वाली गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से कुछ रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं जिन्हें सर्विसिंग के दौरान बदला जा सकता है। इनसे किसी बड़ी मैकेनिकल समस्या का संकेत नहीं मिलता, मतलब इसके इस्तेमाल से इंजन में बदलाव की जरूरत नहीं होगी। इंडियन ऑयल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दो पहिया चार पहिया गाड़ियों पर E20 ईंधन की स्टडी की थी। जून 2021 की स्टडी में पाया गया कि पुरानी गाड़ियों की परफॉर्मेंस में कोई खास अंतर नहीं दिखा है और न ही E20 पेट्रोल के चलने पर उसमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई।
10: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
11: पहली बात मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ,
10: हाँ।
11: क्या आपके नजरों में आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है? अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है, आपको कोई तकलीफ हुई?
10: अभी तक तो नहीं।
11: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है ऐसे दो लोगों के नाम बता सकती है आप मुझे?
2: साल 2005 से 2016 के बीच बनी गाड़ियां BS3 मानक वाली गाड़ियां हैं। माइलेज को लेकर मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसकी वजह सिर्फ ईंधन नहीं है बल्कि ये ड्राइविंग स्टाइल, सड़क की स्थिति और गाड़ी के रखरखाव पर निर्भर करता है। सरकार ने बताया कि E20 का इस्तेमाल दुनिया में एक सदी से ज्यादा समय से हो रहा है जिसमें सभी बड़े देश शामिल हैं।
11: अमेरिका में इथेनॉल है, ये थाईलैंड में है, ये जापान में है, ये जर्मनी में है, ये ब्राजील में है, ये हिंदुस्तान में है, स्वीडन में है, ये 11 देशों में इथेनॉल यूज होता है।
2: सरकार की दलील है कि E20 को लागू करने की तैयारी बारीकी से की गई है। पेट्रोल पंप तक पहुंचने से पहले कई राउंड की टेस्टिंग में इंजन कैलिब्रेशन, फ्यूल सिस्टम, रबर के पार्ट्स, एमिशन और फ्यूल एफिशिएंसी जैसी सभी चीजों की जांच की गई। अगर निर्माताओं को E20 की सुरक्षा पर भरोसा नहीं होता तो वो इसकी वारंटी नहीं देते।
11: ये पेट्रोल की गाड़ियां, इसमें जो गाड़ियां जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का है। उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, अभी कोई टाटा महिंद्रा किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं आया।
2: BS3 मानक की गाड़ियां 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं जिनके माइलेज और इंजन की हालत रखरखाव पर निर्भर करता है। सरकार का कहना है कि अगर ऐसी गाड़ियों के रबर पार्ट्स खराब भी होते हैं तो उन्हें आसानी से रूटीन सर्विसिंग में बदला जा सकता है।
1: 20 तारीख को संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने ही बताया कि 2800 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी भीड़ में शामिल थे। दिल्ली पुलिस का यह दावा अब और उसी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि आज तक को 20 तारीख की जो 5 CCTV फुटेज मिले हैं उसमें प्रदर्शनकारी संसद के दरवाजे तक जा पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से वहां से उन्हें हटाया जा सका। हर CCTV में दिल्ली पुलिस की लापरवाही साफ नजर आई।
12: ये पार्लियामेंट का गेट, अंदर संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है, प्रोटेस्टर यहां खड़े हैं पुलिस के बीच।
2: बीस जुलाई को क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारी संसद में कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे? अगर प्रदर्शनकारी संसद के अंदर आ जाते तो क्या होता? संसद तक कुछ प्रदर्शनकारी आखिर कैसे पहुंचे? दिल्ली पुलिस के सुरक्षा चक्र में प्रदर्शनकारी सेंध लगाने में कैसे कामयाब हुए? आज तक के पास आई इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों ने दिल्ली पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि जब प्रदर्शनकारियों के इरादों का पता था, जब दिल्ली पुलिस अच्छे से जानती थी कि प्रदर्शनकारी संसद पहुंचने की कोशिश करेंगे, तब भी वो खबरदार क्यों नहीं हुई? आखिर प्रदर्शनकारी संसद के गेट के करीब तक कैसे पहुंच गए? 20 तारीख को दोपहर 2 बजे तक प्रदर्शनकारी संसद के गेट तक करीब करीब पहुंच ही गए थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं संसद के अंदर गाड़ियां चलती दिख रही हैं, लोगों की आवाजाही साफ नजर आ रही है। संसद भवन की दीवार के पास भीड़ खड़ी हुई देखी जा सकती है, पुलिस भी वहां मौजूद है जिससे भीड़ की झड़प होती है। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया, अगर वो ऐसा नहीं करती या फिर इससे 2-3 गुनी भीड़ अगर यहां होती तो फिर पुलिस को इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो सकता था।
12: पार्लियामेंट के गेट से बेहद करीब तक जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, जो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है कि ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे ये पार्लियामेंट का गेट है, प्रोटेस्टर है, अंदर की तरफ गाड़ी आपको पार्लियामेंट के अंदर जाती हुई दिखाई देगी, बाहर प्रोटेस्टर है, ये पूरा रेल भवन और पार्लियामेंट के आसपास का इलाका है, यानी तकरीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रोटेस्टर पहुंचने में कामयाब रहे थे, जो पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता है क्योंकि पुलिस को पहले से पता था कि संसद मार्च का ऐलान होने वाला है, प्रॉपर तैयारी क्यों नहीं की गई, मजबूत बैरिकेड्स वो क्यों नहीं लगाए गए, और साथ ही साथ जब इलाके में BNS की धारा 163 लगी थी तो इतने बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो नई दिल्ली और आसपास में कैसे इकट्ठा हो गई?
2: दिल्ली पुलिस आखिरकार क्या कर रही थी? प्रदर्शनकारियों को संसद भवन से 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रदर्शन करने कैसे दिया गया? अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? अब ये CCTV वीडियो देखिए, संसद के पास लाल रंग की दिख रही इमारत सेल्फी पॉइंट है जिसकी तरफ अचानक प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते दिखे थे।
13: यहाँ खड़े पुलिस वाले जैसे ही भीड़ को देखते हैं वो बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को बंद करते नजर आते हैं। रेल भवन के पास प्रदर्शनकारियों का पहुंचना चिंताजनक है क्योंकि यहां से संसद बहुत नजदीक है। रोजमर्रा की तरह 20 जुलाई को तब यहां ट्रैफिक चलता दिखता है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ देखकर आम लोग भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने वाला यहां कोई नहीं था। अगर भीड़ शांतिपूर्ण की जगह उग्र होती तो बड़े आराम से आम लोगों की गाड़ियों को निशाना बना सकती थी, क्योंकि यहां पर पुलिस का कोई नामो निशान नहीं था। जो थे वो एक कोने में खड़े थे। रेल भवन के बाहर की एक और सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जिसमें पुलिस और आरएएफ के जवान देखे जा सकते हैं जो प्रदर्शनकारियों की भीड़ को रेल भवन से दूर करने के लिए धक्के मारते हैं। अगर भीड़ यहां भड़क जाती तो हालात बेकाबू हो सकते थे। हालांकि पुलिस ने यहां तैयारी कर रखी थी। अब सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जो संसद भवन के बेहद नजदीक बने मेट्रो स्टेशन में से एक है। यहां भी 20 तारीख को दोपहर 12:34 पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अचानक इस मेट्रो स्टेशन की तरफ भीड़ भागती हुई आई। पुलिस को हंगामे की आशंका थी, इसलिए यहां पहले से बैरिकेडिंग की गई थी। पीसीआर वैन भी खड़ी देखी जा सकती है।
12: 5 सीसीटीवी संसद भवन के आसपास हमने हमारे पास आया है, जिससे ये पता चलता है कि संसद भवन की दीवार के बेहद करीब जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, और इसीलिए दिल्ली पुलिस पर इन तस्वीर इन 5 तस्वीरों को लेकर सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इतनी मजबूत तैयारी क्यों नहीं की थी। भीड़ संसद भवन के आसपास पहुंचने तक कैसे कामयाब हो गई थी, और 20 जुलाई को ऐसी भी तस्वीरें आई थी जब संसद भवन के अंदर सुरक्षा जो कर्मी थे वो अलर्ट मोड में आ गए थे। तो वो अलर्ट मोड में क्यों आए थे 20 जुलाई को जब वो तस्वीर आई थी? वो इसलिए आए थे क्योंकि ये सीसीटीवी जिसमें अगर आप देखें संसद भवन की दीवार, प्रोटेस्टर झड़प होते हुए आपको दिखाई दे रहा, संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है।
13: 20 तारीख को प्रदर्शन की ये 5 सीसीटीवी तस्वीरें साफ तौर पर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाती हैं, बताती हैं कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ संसद के दरवाजे तक पहुंच गई। अगर ज्यादा लोग होते तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने में काफी दिक्कत आती, लेकिन किसी तरह प्रदर्शनकारी पीछे धकेल दिए गए और संसद में घुसने से बच गए। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
1: दिल्ली पुलिस का दावा है कि जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान आपराधिक बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। इन अपराधियों की पहचान फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और तकनीकी तरीकों से की गई है। अब चर्चाएं इस बात की हो रही है कि जंतर मंतर की ही तरह लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि संसद में भी बाहर यही फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा होता तो क्या पता चलता।
13: दिल्ली पुलिस दावा करती है जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। हत्या के आरोप से जुड़े 101 आरोपी जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान देखे गए, ये दावा दिल्ली पुलिस का है। हत्या के प्रयास के आरोप वाले 62 लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी भीड़ में दिल्ली पुलिस को दिखे। 284 डकैती और लूट के आरोपी, रेप केस के 61, पॉक्सो के 6 आरोपी दिल्ली पुलिस कहती है कि जंतर मंतर पर दिख रहे थे जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते प्रदर्शनकारी मौजूद थे। आर्म्स एक्ट के 229 आरोपी, स्नैचिंग के 135, किडनैपिंग के 19 आरोपी, ऐसे अलग अलग कुल 2873 चेहरों को फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से दिल्ली पुलिस ने पहचानने का दावा किया, जिनका बैकग्राउंड आपराधिक रिकॉर्ड वाला है और वो जंतर मंतर पर पुलिस कहती है प्रदर्शन के दौरान दिखे भी। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बात का सीधा दावा नहीं करती कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले ये 2873 लोग 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच जंतर मंतर पर किसी तरह की हिंसा या उपद्रव में शामिल थे। पुलिस कहती है कि वो इसकी जांच कर रही है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वो तकनीक है जिसमें पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड वालों के डेटाबेस से मिलान करके अपराध के आरोपियों को भीड़ में देखती है, पहचानती है। लेकिन सवाल है कि जंतर मंतर पर क्या इस तकनीक का इस्तेमाल करके मिले डेटा से ये नैरेटिव देने की कोशिश है कि जंतर मंतर पर पहुंचने वालों या फिर 20 जुलाई के प्रदर्शन में अपराध के आरोपी भी बहुत थे। और तब एक सवाल आता है, सवाल देश की संसद से जुड़ा है।
2: जहां संसद में लोग पूछते हैं कि अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बाहर लगा होता तो फिर सांसद कैसे दिखते। एडीआर का डेटा कहता है कि लोकसभा के 251 यानी करीब 46% सांसद पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर के डेटा के आधार पर कहा जा सकता है कि संसद के बाहर अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा दिया जाए तो 170 सांसद यानी करीब 31% ऐसे मिलेंगे जिन पर हत्या और हत्या के प्रयास समेत दूसरे गंभीर आपराधिक केस हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अगर संसद में होने लगे तो एडीआर के डेटा के मुताबिक पता चलेगा कि 16 सांसदों पर तो महिलाओं के खिलाफ अपराध का केस चल रहा है, जिनमें से 2 सांसद के खिलाफ रेप तक के मामले दर्ज हैं, 4 सांसद के खिलाफ किडनैपिंग का मामला है, तो लोकसभा के 43 सांसद के खिलाफ हेट स्पीच का केस है। राज्यसभा के 73 सांसदों पर क्रिमिनल केस चल रहा है। राज्यसभा के 73 में से 36 यानी 16% पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। 1 सांसद पर मर्डर का केस है, 4 सांसद पर हत्या की कोशिश और 3 पर महिलाओं से जुड़े अपराध के केस हैं। ये तस्वीर तब दिख सकती है जब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम देश की संसद के बाहर भी लग जाए।
1: सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस पवित्र महीने के साथ ही शुरू हो गई है कांवड़ यात्रा। भोलेनाथ के भक्त कांवड़ लेकर निकल रहे हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ओवैसी की पार्टी ने कुछ कांवड़ियों पर सवाल उठाए हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से जबरदस्त पलटवार किया गया है।
14: भोले के भक्त कांवड़ लेकर निकल चुके हैं, तन पर भगवा, कांधे पर कांवड़ और महादेव का उद्घोष। लेकिन इस यात्रा के साथ ही शुरू हो गई है सियासत और इस सियासत की शुरुआत की है ओवैसी के दल ने। AIMIM के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांवड़ ले जा रहे भोले के भुत्तों में कुछ नशेड़ी होते हैं, उनसे सरकार कैसे निपटेगी।
15: क्या आप जो गाने बजाए जाते हैं, जो पूरा नशे का कारोबार इस यात्रा के दौरान कुछ लोग करते हैं, उनको रोकने के लिए, जो अच्छे हमारे भाई हैं जो यात्रा पर जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? क्या उन नशेड़ियों को पकड़ना या उन उपद्रवियों को पकड़ना, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए क्या इंतजाम आपने किए हैं?
14: आरोप सिर्फ इतने नहीं, यूपी सरकार ने तय किया है कि जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा निकलेगी उन रास्तों पर मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी और शराब की दुकानें ढकी जाएंगी। जैसे यहाँ हापुड़ में शराब की दुकान पर पर्दा डाल दिया गया है। AIMIM यहाँ भी आरोप लगा रही है कि गुंडागर्दी करके दुकानें बंद कराई जा रही हैं।
15: कुछ गुंडे आइडेंटिफिकेशन के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकान पर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं उनको किसने अधिकार दिया, वो कौन होते हैं। दूसरा कहा कि श्रावण मास में इस अवसर पर मांस की बिक्री नहीं होगी। अरे भाई, आपकी आस्था है, क्या शराब पर भी आप पाबंदी रमजान के महीने में लगाएंगे? नहीं लगाते हैं।
14: AIMIM ने कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाए तो कांग्रेस AIMIM पर टूट पड़ी।
16: अरे बेवकूफी की बातें ना करें फालतू की, AIMIM जब बीजेपी की दलाली कर रहे हो क्या? वही जबान बोल रहे हो जो दूसरे लोग बोलते हैं।
14: बीजेपी भी अब हमलावर है और बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाने वालों का इलाज किया जाएगा।
17: लोग पगला गए हैं और ऐसा करके अपनी कब्र खोदने का प्रयास कर रहे
18: हैं। इस तरह की बातें पहले भी कांवड़ यात्रियों पर जो है हमने देखा, टीका टिप्पणी असदुल ओवैसी की तरफ से, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से होती रही है।
17: ऐसे राष्ट्र विरोधी, भारतीय संस्कृति विरोधी लोग
18: जी
17: पहले से सक्रिय है, इलाज किया जाएगा।
14: यूपी और उत्तराखंड की सरकार ने तय किया है कि कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही कांवड़ यात्रा पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
1: और अब बात पंजाब सरकार की करेंगे जो चुनाव से पहले कई मुद्दों पर घिरती हुई नजर आ रही है। पेपर लीक और लाठीचार्ज पर केंद्र सरकार को घेरने वाली आम आदमी पार्टी अब खुद सवालों के घेरे में है, जहां लड़ाई अब मान के आवाज से लेकर सड़क तक देखने को मिल रही है।
19: दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं की एक ही मांग है, पेपर लीक मामले में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस इस्तीफा दें।
20: आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार एकदम चुप्पी साधे हुई है, टेक्निकलिटीज के पीछे छिप रही है, और इसीलिए मैं उनसे पूछना चाहती हूँ अभी तक उन्होंने पंजाब के अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया।
19: उधर हरसिमरत कौर बादल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लेकर पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर जांच की मांग की है।
21: मैं डिमांड करती हूँ कि भगवंत मान को ही हटाया जाए,
0: केजरीवाल हटाए, मनीष सिसोदिया जो इधर बोल के गया है कि धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाए, हम हटा देते, तो हरजोत बैंस को हटाए ना। आज तक अपने एजुकेशन मिनिस्टर को आपने नहीं हटाया,
21: नहीं
0: हेल्थ मिनिस्टर को नहीं हटाया, तो आप खुद हटिए, क्योंकि आपकी सरकार को उधर बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है।
19: फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में फार्मेसी की परीक्षा को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन पंजाब सरकार इसे पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का मामला बता रही है।
22: ये चीटिंग का मामला था जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में हुआ, और इमीडिएटली पंजाब सरकार ने उस पर एक्शन लिया और जो दोषी लोग थे उनके खिलाफ एक्शन लिया।
19: इतना ही नहीं, दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर आप बीजेपी को घेर रही थी, तो वहीं अब बरनाला में पंजाब पुलिस के लाठीचार्ज पर विपक्ष मान सरकार को घेर रहा है। अलग अलग शहरों में बंद का ऐलान किया जा रहा है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। इस बीच बेअदबी के मामले में भी मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अकाल तख्त ने सभी सिख विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों से मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी दूरी बनाए रखने की बात कही है।
23: गुरु दुखी ते पंथ दुखी दे किसे सवाल दा जवाब ना देन, ओदे वल मुंह ना करन, ओदा मुंह ना वेखन और ओदे तो किनारा करन। वो विधानसभा करके जा रहे, ओदे करके थोड़ा जा रहे, कला मुख्यमंत्री थोड़ा सब क्वेश्चन दा।
19: पंजाब में चुनाव से पहले भगवंत मान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
24: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
25: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
26: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
24: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल, विपक्ष के वॉकआउट के बाद ध्वनिमत से पारित, राष्ट्रपति की मुहर के बाद बन जाएगा कानून। संसद से बिल पास होने के बाद पीएम मोदी का नया वीडियो संदेश, कहा पेपर लीक गैंग को बख्शा नहीं जाएगा, हर राज्य पेपर लीक से परेशान, शिक्षा को लेकर लगातार उठ रहे हैं कदम। राहुल के बयान पर बीजेपी की घेराबंदी, अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस, गृहमंत्री अमित शाह पर असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। प्रदर्शनकारी छात्रों को दिल्ली सरकार ने दी बड़ी राहत, नहीं होगी पुलिस कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर होगा एक्शन।

0: आपके साथ पूजा पराशर। सुबह के 6 बज चुके हैं और 6 ताजा खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी एंटी पेपर लीक बिल को हरी झंडी मिल गई है। अब बस राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना बाकी है इस पर। वही दूसरी खबर होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने उसमें वो आपको विस्तार से बताएंगे। तीसरी खबर राहुल गांधी को लेकर, जिनके बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। वही बात होगी जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर बड़े खुलासे की भी। पांचवी खबर होगी नेपाल की, जहां एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है, जिसके बाद कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। और आखिर में बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की, जहां पर भारतीय एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन अभी भी जारी है। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के भिवंडी से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। दरअसल भिवंडी में कोहिनूर नाम की 4 मंजिला इमारत गिरी। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। स्थानीय लोगों की माने तो इमारत के मलबे में 8 से 10 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस हादसे के बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ भिवंडी पुलिस के जवान और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से इमारत की मरम्मत का काम चल रहा था और ठेकेदार और कामगारों ने इमारत में पिलर को तोड़ दिया था। इमारत के कई पिलर तोड़े गए, जिससे इमारत अपनी मजबूती खो बैठी और आखिरकार भर भरा कर गिर गई। इजाज खान जुड़ गए हमारे साथ, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है, सीधे वहीं से। इजाज, अभी वहां पर कैसे हालात बने हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है?
1: देखिए पूजा, आपको बताना चाहेंगे कि घटना लगभग रात 11:10 पे हुई थी, जिसके तुरंत बाद से ही जो एनडीआरएफ की टीम है और जो लोकल फायर ब्रिगेड की टीम है, स्थानीय जो पुलिस है, इन सभी के जवान यहां पर पहुंचे और लगातार जो है मलबा जो है 4 मंजिला इमारत का वो पूरा का पूरा गिर गया था। तो उन सभी को जो पोकलिंग मशीन के थ्रू हटाया जा रहा है। अभी जो जो जो जानकारी मिल पा रही है, अंदर किसी शख्स किसी को दिखाई दिया गया है, इसी वजह कर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन रोक कर उनको निकालने का जो काम किया जा रहा है। तस्वीर में देख सकते हैं और सामने जो है एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, जो अंदर में क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई दिया है और उनको जो है निकालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बारिश भी हो रही है, जिसके वजह कर जो इन लोगों को थोड़ी सी परेशानी भी हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम, इसके अलावा जो है जो फायर ब्रिगेड की टीम है, यहाँ के लोकल जो जो यहाँ पर नगर पालिका की टीम है, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद है और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मलबे के अंदर अगर जो भी लोग होगा जो दबे हुए होगा उन सभी को निकाला जाए। हालांकि अधिकारी
0: मलबे को हटाने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एजाज, आप नजर बनाए रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी। दरअसल नए वीडियो संदेश उन्होंने जारी किया है। संसद के दोनों सदनों में एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया। पीएम ने कहा है कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रही है। बच्चों के भविष्य पर भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। तो पेपर लीक गैंग को बख्शा नहीं जाएगा, वीडियो संदेश जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है। शिक्षा को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, उनका ये मानना है। और पेपर लीक में जो जो उस वक्त मौजूद था, जिस जिसने पेपर लीक करवाया है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, वीडियो संदेश जारी कर ये कहा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया है। एंटी पेपर लीक बिल पास होने पर पीएम ने संदेश दिया है।

0: पीएम मोदी ने कहा है कि पेपर लीक गैंग जो है उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा कई बड़ी बातें भी उन्होंने कही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनिए।
1: साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोगी आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो वहीं जहां पेपर लीक से जुड़ा संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया है, अब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनकी सहमति मिलते ही यह कानून बन जाएगा। दरअसल विपक्ष के वॉकआउट के बाद ध्वनिमत से बिल को पारित कर दिया गया और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया भी बताया। इस नए बिल के प्रावधान के तहत 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की रोजाना सुनवाई होगी। ध्वनिमत से पास हुआ है यह बिल। दोनों सदन से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पास हो चुका है। मानसून सत्र चल रहा है और जो कि काफी हंगामेदार भी रहा, ऐसे में राज्यसभा से विपक्ष ने वॉकआउट भी किया।

0: तो पेपर लीक संशोधन बिल अब पास हो चुका है और जानकारी आपको दे देते हैं, 5 से 10 साल की जेल हो सकती है ये माना जा रहा है इस बिल में। ये प्रावधान है, क्या क्या प्रावधान है वो आप समझिए। 5 से 10 साल तक की सजा उस व्यक्ति को हो सकती है। पेपर लीक बिल अब पास हो चुका है और कल काफी हंगामा भी इसको लेकर हुआ संसद में। भाई 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया भी जा सकेगा, जो भी व्यक्ति होगा उस पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, ये बात सामने आई है। तो वही फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, जल्द से जल्द उस मामले की सुनवाई होगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी और 3 महीने के अंदर केस का ट्रायल पूरा करना ही होगा, ये इसमें कहा जा रहा है। साथ ही जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स भी गठित हो सकती है और जो 10 करोड़ की भी बात सामने आई है इस बिल में और जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित होने की भी बात कही गई है। तो ये बिल अब पास हो गया है और अब राहुल गांधी के गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए बयान की बात कर लेते हैं, जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने अब राहुल गांधी के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी है। ऐसे में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का एक नोटिस भी सौंपा है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष ने गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, साथ ही उनके खिलाफ गंभीर और बेबुनियाद आरोप लगाए गए। और अब 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुए बवाल की बात कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने ही बताया है कि 2800 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी भीड़ में शामिल थे। दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि अब उसी पर गंभीर सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आज तक को 20 तारीख के जो 5 सीसीटीवी मिले हैं उसमें प्रदर्शनकारी संसद के दरवाजे तक जा पहुंचे, बड़ी मुश्किल से उन्हें वहां से हटाया गया और हर सीसीटीवी में दिल्ली पुलिस की लापरवाही भी दिखी है।
1: ये पार्लियामेंट का गेट, अंदर संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है, प्रोटेस्टर यहां खड़े हैं पुलिस के बीच।
2: बीस जुलाई को क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारी संसद में कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे? अगर प्रदर्शनकारी संसद के अंदर आ जाते तो क्या होता? संसद तक कुछ प्रदर्शनकारी आखिर कैसे पहुंचे? दिल्ली पुलिस के सुरक्षा चक्र में प्रदर्शनकारी सेंध लगाने में कैसे कामयाब हुए?

0: आज तक के पास आई इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों ने दिल्ली पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि जब प्रदर्शनकारियों के इरादों का पता था, जब दिल्ली पुलिस अच्छे से जानती थी कि प्रदर्शनकारी संसद पहुंचने की कोशिश करेंगे, तब भी वो खबरदार क्यों नहीं हुई? आखिर प्रदर्शनकारी संसद के गेट के करीब तक कैसे पहुंच गए? 20 तारीख को दोपहर 2 बजे तक प्रदर्शनकारी संसद के गेट तक करीब करीब पहुंच ही गए थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, संसद के अंदर गाड़ियां चलती दिख रही हैं, लोगों की आवाजाही साफ नजर आ रही है। संसद भवन की दीवार के पास भीड़ खड़ी हुई देखी जा सकती है। पुलिस भी वहां मौजूद है, जिससे भीड़ की झड़प होती है। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया। अगर वो ऐसा नहीं करती या फिर इससे 2 गुनी 3 गुनी भीड़ अगर यहाँ होती तो फिर पुलिस को इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो सकता था।
1: पार्लियामेंट के गेट से बेहद करीब तक जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, जो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है कि ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे ये पार्लियामेंट का गेट है, प्रोटेस्टर है, अंदर की तरफ गाड़ी आपको पार्लियामेंट के अंदर जाती हुई दिखाई देगी, बाहर प्रोटेस्टर है, ये पूरा रेल भवन और पार्लियामेंट के आसपास का इलाका है, यानी तकरीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रोटेस्टर पहुंचने में कामयाब रहे थे, जो पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि पुलिस को पहले से पता था कि संसद मार्च का ऐलान होने वाला है, प्रॉपर तैयारी क्यों नहीं की गई, मजबूत बैरिकेड्स वो क्यों नहीं लगाए गए, और साथ ही साथ जब इलाके में बीएनएस की धारा 163 लगी थी तो इतने बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो नई दिल्ली और आसपास में कैसे इकट्ठा हो गई।
0: दिल्ली पुलिस आखिरकार क्या कर रही थी? प्रदर्शनकारियों को संसद भवन से 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रदर्शन करने कैसे दिया गया? अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? अब ये सीसीटीवी वीडियो देखिए। संसद के पास लाल रंग की दिख रही इमारत सेल्फी पॉइंट है, जिसकी तरफ अचानक प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते दिखे थे। यहाँ खड़े पुलिस वाले जैसे ही भीड़ को देखते हैं, वो बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को बंद करते नजर आते हैं। रेल भवन के पास प्रदर्शनकारियों का पहुंचना चिंताजनक है, क्योंकि यहां से संसद बहुत नजदीक है। रोजमर्रा की तरह 20 जुलाई को तब यहां ट्रैफिक चलता दिखता है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ देखकर आम लोग भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने वाला यहां कोई नहीं था। अगर भीड़ शांतिपूर्ण की जगह उग्र होती तो बड़े आराम से आम लोगों की गाड़ियों को निशाना बना सकती थी, क्योंकि यहां पर पुलिस का कोई नामो निशान नहीं था, जो थे वो एक कोने में खड़े थे। रेल भवन के बाहर की एक और सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जिसमें पुलिस और आरएएफ के जवान देखे जा सकते हैं, जो प्रदर्शनकारियों की भीड़ को रेल भवन से दूर करने के लिए धक्के मारते हैं। अगर भीड़ यहां भड़क जाती तो हालात बेकाबू हो सकते थे। हालांकि पुलिस ने यहां तैयारी कर रखी थी। अब सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जो संसद भवन के बेहद नजदीक बने मेट्रो स्टेशन में से एक है। यहां भी 20 तारीख को दोपहर 12:34 पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अचानक इस मेट्रो स्टेशन की तरफ भीड़ भागती हुई आई। पुलिस को हंगामे की आशंका थी, इसलिए यहां पहले से बैरिकेडिंग की गई थी। पीसीआर वैन भी खड़ी देखी जा सकती है।
1: 5 सीसीटीवी संसद भवन के आसपास हमने हमारे पास आया है, जिससे ये पता चलता है कि संसद भवन की दीवार के बेहद करीब जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, और इसीलिए दिल्ली पुलिस पर इन 5 तस्वीरों को लेकर सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इतनी मजबूत तैयारी क्यों नहीं की थी, भीड़ संसद भवन के आसपास पहुंचने तक कैसे कामयाब हो गई थी, और 20 जुलाई को ऐसी भी तस्वीरें आई थी जब संसद भवन के अंदर सुरक्षा जो कर्मी थे वो अलर्ट मोड में आ गए थे। तो वो अलर्ट मोड में क्यों आए थे 20 जुलाई को जब वो तस्वीर आई थी? वो इसलिए आए थे क्योंकि ये सीसीटीवी, जिसमें अगर आप देखें संसद भवन की दीवार, प्रोटेस्टर झड़प होते हुए आपको दिखाई दे रहा, संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है।
0: 20 तारीख को प्रदर्शन की ये 5 सीसीटीवी तस्वीरें साफ तौर पर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाती हैं, बताती हैं कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ संसद के दरवाजे तक पहुंच गई। अगर ज्यादा लोग होते तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने में काफी दिक्कत आती, लेकिन किसी तरह प्रदर्शनकारी पीछे धकेल दिए गए और संसद में घुसने से बच गए। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: तो वही दिल्ली पुलिस का दावा है कि जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान आपराधिक बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे, और इन अपराधियों की पहचान फेशियल रिकॉग्निशन

0: सिस्टम और तकनीकी तरीकों से भी की गई है। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर जंतर मंतर की तरह ही लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद में भी बाहर यही फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा होता तो क्या पता चलता।
1: दिल्ली पुलिस दावा करती है जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। हत्या के आरोप से जुड़े 101 आरोपी जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान देखे गए, ये दावा दिल्ली पुलिस का है। हत्या के प्रयास के आरोप वाले 62 लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी भीड़ में दिल्ली पुलिस को दिखे। 284 डकैती और लूट के आरोपी, रेप केस के 61, पॉक्सो के 6 आरोपी दिल्ली पुलिस कहती है कि जंतर मंतर पर दिख रहे थे जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते प्रदर्शनकारी मौजूद थे। आर्म्स एक्ट के 229 आरोपी, स्नैचिंग के 135, किडनैपिंग के 19 आरोपी, ऐसे अलग अलग कुल 2873 चेहरों को फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से दिल्ली पुलिस ने पहचानने का दावा किया जिनका बैकग्राउंड आपराधिक रिकॉर्ड वाला है और वो जंतर मंतर पर पुलिस कहती है प्रदर्शन के दौरान दिखे भी। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बात का सीधा दावा नहीं करती कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले ये 2873 लोग 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच जंतर मंतर पर किसी तरह की हिंसा या उपद्रव में शामिल थे। पुलिस कहती है कि वो इसकी जांच कर रही है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वो तकनीक है जिसमें पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड वालों के डेटाबेस से मिलान करके अपराध के आरोपियों को भीड़ में देखती है, पहचानती है। लेकिन सवाल है कि जंतर मंतर पर क्या इस तकनीक का इस्तेमाल करके मिले डेटा से ये नैरेटिव देने की कोशिश है कि जंतर मंतर पर पहुंचने वालों या फिर 20 जुलाई के प्रदर्शन में अपराध के आरोपी भी बहुत थे। और तब एक सवाल आता है, सवाल देश की संसद से जुड़ा है जहां संसद में लोग पूछते हैं कि अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बाहर लगा होता तो फिर सांसद कैसे दिखते। एडीआर का डेटा कहता है कि लोकसभा के 251 यानी करीब 46% सांसद पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर के डेटा के आधार पर कहा जा सकता है कि संसद के बाहर अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा दिया जाए तो 170 सांसद यानी करीब 31% ऐसे मिलेंगे जिन पर हत्या और हत्या के प्रयास समेत दूसरे गंभीर आपराधिक केस हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अगर संसद में होने लगे तो एडीआर के डेटा के मुताबिक पता चलेगा कि 16 सांसदों पर तो महिलाओं के खिलाफ अपराध का केस चल रहा है जिनमें से 2 सांसद के खिलाफ रेप तक के मामले दर्ज हैं, 4 सांसद के खिलाफ किडनैपिंग का मामला है तो लोकसभा के 43 सांसद के खिलाफ हेट स्पीच का केस है। राज्यसभा के 73 सांसदों पर क्रिमिनल केस चल रहा है। राज्यसभा के 73 में से 36 यानी 16% पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। 1 सांसद पर मर्डर का केस है, 4 सांसद पर हत्या की कोशिश और 3 पर महिलाओं से जुड़े अपराध के केस हैं। ये तस्वीर तब दिख सकती है जब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम देश की संसद के बाहर भी लग जाए।
0: तो वही संसद के दोनों सदनों से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है और सवाल यही है कि गृह मंत्री को संसद में घेरने में जुटा रहा विपक्ष क्या अब रणनीति बदल रहा है? क्या अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि E20 और चढ़ावा चोरी पर चर्चा हो ताकि फायदा उत्तर प्रदेश में उठाया जा सके? और क्या गृह मंत्री को लेकर राहुल के सवाल के जवाब में बीजेपी ने जो कहा उससे अखिलेश यादव को भी ढाल मिल गई है? देखिए,
2: 2 दिन फेवरेबल से 8, 2 अगेंस्ट यूपी से 9।
1: वंदे मातरम बिल राज्यसभा के बाद लोकसभा से भी पास हो गया, हंगामा जरूर हुआ।
3: जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहे, मेरे विचार में
1: लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पेपर लीक रोकने वाला बिल पास हो रहा है।
4: सर, देयर इज अ नेशनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू रेज ऑन
1: लाइव। तो यानी बिल पास हो रहे हैं, सदन चल रहा है। सवाल सीधा सा है, क्या राहुल गांधी की रणनीति सरकार ने फेल कर दी या फिर विपक्ष के बीच मुद्दों पर अब आगे बढ़ने की राजनीति हो रही है? सीधी सी बात पहली यही कि जो राहुल गांधी बुधवार तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के बताते रहे कि गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग पर कोई कंफ्यूजन नहीं है।
5: कुछ दिन पहले हम यहाँ मिले थे, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है।
6: हाँ।
5: क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल जाए?
6: अमित शाह मस्ट गो, There's no ambiguity here. There's no confusion.
1: लेकिन संसद में अमित शाह को लेकर जो रणनीति राहुल गांधी चाहते हैं उससे अलग स्टैंड लिया जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस सदन ठप नहीं करती, पेपर लीक बिल पर बहस में हिस्सा लेती है, अमित शाह का इस्तीफा खड़गे मानते हैं और तभी ऐसा बयान देते हैं जिस पर हंगामा होता है।
7: बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके बारे में क्या है।
1: लेकिन इन सब के बीच अखिलेश की रणनीति क्या है, सवाल की वजह ये पोस्ट है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर डाला कि साइकिल की रफ्तार जोरदार है क्योंकि साइकिल E20 से आजाद है। ये पोस्ट क्या इस बात की तरफ इशारा करती है कि अखिलेश संसद में अब E20 के मुद्दे पर बढ़ना चाहते हैं। E20 के अलावा समाजवादी पार्टी संसद में अब और सत्ता और विपक्ष के बीच बहुत खींचतान की जगह उन मुद्दों पर चर्चा चाहती दिखती है जिसका वो फायदा यूपी की राजनीति में उठा सके। जैसे E20 के अलावा वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विषय पर चर्चा चाहते हैं।
8: राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा आज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जोर पकड़ता हुआ संसद के अंदर नजर आ रहा है। इस वक्त जो है मकर द्वार के सामने एक दान पात्र रख दिया गया है और इस दान पात्र के अंदर विपक्ष के सभी सांसद दान डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप देखिए कैसे जो सांसद है उनके हाथ में जो दान पात्र है उसमें कुछ अलग अलग सांसद, ये दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद है जिन्होंने हाथ में दान पात्र लिया हुआ है और स्वागत हो रहा है। जो TMC के सांसद है वो उसमें दान डालते हुए नजर आ रहे हैं और जैसे ही ये दान डाला जाता है वैसे ही संसद जो समाजवादी पार्टी के सांसद है वो इस दान पात्र को छीनने लगते हैं, यानी कि एक प्रतीकात्मक विरोध है जिसमें जैसे ही दान डलेगा वैसे ही उस डब्बे को लेकर जो है जो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे और ये आरोप BJP पर लगाया जा रहा है कि आप दान लेते हैं और उसी चंदे को जो है लेकर भाग जाते हैं।
9: ये लोग चंदा चोरी की भी नहीं बात करना चाहते, हम तो चाहते हैं कि बहस हो क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों ने जो चंदा दिया है चाहे वो हमारे देश के हो चाहे NRIs हो, कितना चंदा आया, हजारों करोड़ों का चंदा आया है। आज ये लोग चंदा चोरी पे बात नहीं करना चाहते हैं, ये केवल ध्यान भटकाने वाली राजनीति पे बात करना चाहते हैं।
10: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विषय के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करने का प्रयास कर रही है वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। बहुत स्पष्ट रूप से सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ उस विषय पे कार्य कर रही है, विषय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में चल रहा है। इसके उपरांत भी राजनीति करने वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूं ये वो लोग थे जो ये कहते थे कि अयोध्या तो यहां थी ही नहीं, ये वो लोग थे जो कहते थे भगवान श्री राम तो हुए ही नहीं, ये वो लोग थे जो मजाक उड़ाते थे कि राजा दशरथ के इतने महल थे और यहां पर हुए थे कि वहां पर हुए थे, और ये वो लोग थे जिन्होंने राम भक्त कारसेवकों के खून से सरयू लाल कर दी।
1: दिलचस्प राजनीति है कि जब सदन में गृहमंत्री पर सवाल प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से फायरिंग को लेकर विपक्ष उठाता है तो सत्ता पक्ष इस पर बचाव में कहता है कि आदेश मंत्री नहीं मजिस्ट्रेट या अधिकारी देते हैं।
11: वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, SDM देता है, DM देता है, हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है।
1: इसी बयान को आधार बनाकर अब अखिलेश यादव अयोध्या में चली गोलियों के कटघरे में BJP की तरफ से समाजवादी पार्टी को खड़ा किए जाते रहने का बचाव करते हैं। सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि जब अपने पर आरोप की उंगली उठी तब ये बात समझ में आई।
0: अब बात नेपाल की कर लेते हैं। दरअसल यहां पर सांप्रदायिक हिंसा ने एक विकराल रूप ले लिया है। नेपाल के सुनसरी से शुरू हुई हिंसा के कई शहरों तक वो फैल चुकी है। अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है जबकि दर्जनों लोग घायल हैं। आधे दर्जन से ज्यादा शहरों में कर्फ्यू लग गया है। जनकपुर, सिरहा, गोल बाजार और लहान में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हिंसा, आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पुलिस के साथ सशस्त्र पुलिस बल और नेपाली सेना तैनात कर दी गई है। वहीं संवेदनशील इलाकों में सेना का फ्लैग मार्च, हेलीकॉप्टर से निगरानी हो रही है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने देश के नाम संबोधन करते हुए सभी से शांति, सद्भाव, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता कायम रखने की अपील भी की।
12: एक बार फिर जल उठा नेपाल, सांप्रदायिक हिंसा से भारी उबार, कई इलाकों में तोड़फोड़, आगजनी और पथराव। नेपाल के सुनसरी में भड़की हिंसा अब नेपाल के कई शहरों तक फैल गई है। अलग अलग हिस्सों में आगजनी, तोड़फोड़, पथराव और पुलिस से झड़प हुई। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि सेना ने सड़कों से लेकर संवेदनशील इलाकों में मोर्चा संभाला है। भारत की सीमा से सटे कोशी और मधेश में हुई हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। नेपाल में बढ़ते हिंसा को देखते हुए पीएम बालेंद्र शाह ने देश के नाम संबोधन जारी कर शांति बनाए रखने की अपील की।
13: सबके धैर्यता और संयमता अपना के शांति, सद्भाव, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता कायम राख के लिए सरकार के तरफ से हार्दिक अपील कर रहा छी।
12: नेपाल में हिंसा की शुरुआत सुनसरी इलाके से हुई थी, जहां 2 समुदायों के बीच कार्यक्रम को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद दोनों समुदायों में झड़प, आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी, जिसके बाद नेपाल के बाकी जिलों में भी हिंसक घटनाएं सामने आई। वहीं अब सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स ही कर लेते हैं, जहां पर भारतीय एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। ये खबर आगे आपको बताएंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आपका हिम्मत जाएगा, देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से।
15: When your cat is acting weirder, or your dog is being louder, your turtle moves slower.
16: Hello, Ted.
15: Your cat seems thirstier.
17: Whoa, slow down, buddy.
15: Or your puppy is acting clumsier. Day or night, if you don't know what's wrong, know where to go.
16: Veg ER for pets. This is Kate.
15: Veg, the better, kinder ER for pets.
14: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
18: सावन में कौन कौन से पौधे आपको लगाने चाहिए, तुलसी के पौधे का महत्व क्या है, क्या इसको सावन में लगा सकते हैं, केले का पौधा लगाने के लाभ क्या हैं? और सावन में इसको किस तरह लगाना चाहिए, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
19: This is the sound of Claire cooking dinner at home, and that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
20: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
14: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो।

लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल, विपक्ष के वॉकआउट के बाद ध्वनिमत से पारित, राष्ट्रपति की मुहर के बाद बन जाएगा कानून। संसद से बिल पास होने के बाद पीएम मोदी का नया वीडियो संदेश, कहा पेपर लीक गैंग को बख्शा नहीं जाएगा, हर राज्य पेपर लीक से परेशान, शिक्षा को लेकर लगातार उठ रहे हैं कदम। राहुल के बयान पर बीजेपी की घेराबंदी, अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस, गृहमंत्री अमित शाह पर असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। प्रदर्शनकारी छात्रों को दिल्ली सरकार ने दी बड़ी राहत, नहीं होगी पुलिस कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर होगा एक्शन।

0: जनो घायल बालेन्द्र शाह ने की शांति की अपील। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी लोक परीक्षा संशोधन बिल हुआ पास। लगातार 9वें दिन संसद में पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान हंगामा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। बोले, माहौल ठंडा करने के लिए लाए गए बिल, लेकिन ये अभी भी अधूरा। खड़गे ने छात्रों पर लाठीचार्ज पर सुनाई कविता। कहा, पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पिटते रहे। ये कैसा न्याय है, ये कैसी रीति। गुनहगार हंसते रहे, मासूम सिसकते रहे। खड़गे ने अमित शाह पर साधा निशाना। कहा, बहुत दिनों तक छिप नहीं सकते हैं, हम आपको खींच कर लाएंगे बाहर। भाषण के दौरान खड़गे के मनुस्मृति का हवाला देने पर भड़की बीजेपी ने की माफी की मांग। जेपी नड्डा ने कहा, ऐसे बयान से फैलेगी अशांति। खड़गे बोले, देश में फिक्स्ड एग्जाम कैलेंडर होना चाहिए। परीक्षा गड़बड़ियों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हाई पावर कमेटी से जांच की मांग की। लोकसभा में ध्वनिमत से पास हुआ वंदे मातरम बिल, राज्यसभा में पहले ही मंजूर हो चुका है विधेयक। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र पर बड़ा आरोप। बोले, सरकार देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कर रही है कोशिश, संविधान में किसी को मजबूर करने की अनुमति नहीं। वंदे मातरम बिल के विरोध में डीएमके सांसद कनिमोजी बोली, राष्ट्रवाद का दिखावा, हिंदुत्व का एजेंडा। संसद के मॉनसून सत्र में पेश नहीं होगा एक देश एक चुनाव बिल। बढ़ाया गया जेपीसी का कार्यकाल, शीतकालीन सत्र के अंतिम हफ्ते के पहले दिन तक जेपीसी को सौंपनी होगी रिपोर्ट। बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने नीट पेपर लीक मामले पर अपनी चुप्पी का कारण बताया। बोले, उनका काम सवाल पूछना नहीं, समाधान देना। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, दिखावटी सुधारों से काम नहीं चलेगा, बीमारी की जड़ को ही खत्म करना होगा और एनटीए को बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। तो वही कर्नाटक कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर बैठक, सीएमडी के शिव कुमार भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में कुल 71.44% मतदान हुआ, 2 लाख से भी ज्यादा मतदाताओं ने डाले वोट। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कुल 34.30% मतदान दर्ज, 3 अगस्त को आएंगे नतीजे। ऐतिहासिक भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद भोजशाला विवाद में मुस्लिम पक्ष को भोजशाला से सटी हुई जमीन नमाज के लिए दी गई, 1 से 3 बजे तक नमाज अदा कर सकेंगे। एमपी के धार भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फिर से होगी सुनवाई। कोर्ट ने कहा, शुक्रवार की नमाज के लिए विवादित परिसर से सटी जमीन पर व्यवस्था करे एमपी सरकार। सफाई कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में पंजाब बंद का भारी असर देखने को मिला, शहर के मुख्य बाजारों सहित अधिकांश दुकान रही बंद। गया में सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं का बुनियादी सुविधाओं की कम को लेकर अनुमंडल कार्यालय पर प्रदर्शन हुआ और खराब चापाकल, टूटे पंखे जैसी समस्याओं पर मांगा है जवाब। एफबीआई ने ऑपरेशन हार्डबॉल में जग्गू के नेटवर्क पर अमेरिका, यूरोप को और साथ ही कनाडा पर कसा शिकंजा। एक और भारतीय नागरिक को एफबीआई ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाला। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून के बादलों का डेरा। मौसम विभाग के मुताबिक आज हल्की से भारी बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी। शिमला, ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। गुजरात के 13 जिलों में आज से 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अहमदाबाद में आज स्कूल कॉलेज में छुट्टी के आदेश। गुजरात में भारी बारिश के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट, प्रभावित जिलों में सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश। महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब बात कर लेते हैं पीएम मोदी के नए वीडियो संदेश की। दरअसल संसद के दोनों सदनों में एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया। पीएम ने कहा है कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार के पेपर लीक की परेशानी भी झेल रही है। ऐसे में बच्चों के भविष्य पर भी इसका कारण पैदा हो रहा है और इन सबको ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। तो एंटी पेपर लीक बिल पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा संदेश जारी किया है। वीडियो संदेश जारी कर कई बड़ी बातें उन्होंने कही है कि परीक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण काम पूरा हो चुका है। तो वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने क्या कहा है देखिए आप। परीक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण काम पूरा हुआ, ये पीएम ने कहा। उन्होंने कहा कि दोनों सदन में बिल को पास कर दिया गया है। फिलहाल पेपर लीक गैंग को बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा पेपर लीक गैंग को। और हर राज्य और केंद्र सरकार पेपर लीक से पहले से ही काफी ज्यादा परेशान है। तो कई बड़ी बातें इस वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है, जो कि किया भी जाएगा। तो इसी के साथ प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में ये भी कहा है कि शिक्षा को लेकर लगातार कदम भी उठाए जा रहे हैं और पेपर लीक बिल को लेकर भी कई बड़ी बातें उन्होंने कही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है इसके अलावा वो आप सुनिए।
1: साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा, बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोगी आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो जहां पेपर लीक से जुड़ा संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया, अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनकी सहमति मिलते ही एक कानून बन जाएगा। विपक्ष के वॉकआउट के बाद ध्वनिमत से बिल को पारित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया बताया और इस नए बिल के प्रावधान के तहत 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की रोजाना सुनवाई भी होगी। राज्यसभा से भी पेपर लीक संशोधन बिल पास हो गया है। ध्वनिमत से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पास किया गया। और अब राहुल गांधी के गृहमंत्री अमित शाह पर दिए गए बयान की बात कर लेते हैं, जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने अब राहुल गांधी के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस सौंपा। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया तथा उनके खिलाफ गंभीर और बेबुनियाद आरोप लगाए। तो वही 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुए बवाल की बात करें, दरअसल दिल्ली पुलिस ने ही बताया है कि 2800 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी भीड़ में शामिल थे और दिल्ली पुलिस का यह भी दावा है कि अब उसी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आज तक को 20 तारीख के जो 5 सीसीटीवी मिले हैं उसमें प्रदर्शनकारी संसद के दरवाजे तक जा पहुंचे, बड़ी मुश्किल से उन्हें वहां से हटाया गया है और हर सीसीटीवी में दिल्ली पुलिस की लापरवाही भी दिख रही है।
2: ये पार्लियामेंट का गेट, अंदर संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है, प्रोटेस्टर यहाँ खड़े हैं पुलिस के बीच।
3: बीस जुलाई को क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारी संसद में कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे? अगर प्रदर्शनकारी संसद के अंदर आ जाते तो क्या होता? संसद तक कुछ प्रदर्शनकारी आखिर कैसे पहुंचे? दिल्ली पुलिस के सुरक्षा चक्र में प्रदर्शनकारी सेंध लगाने में कैसे कामयाब हुए? आज तक के पास आई इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों ने दिल्ली पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि जब प्रदर्शनकारियों के इरादों का पता था, जब दिल्ली पुलिस अच्छे से जानती थी कि प्रदर्शनकारी संसद पहुंचने की कोशिश करेंगे, तब भी वो खबरदार क्यों नहीं हुई? आखिर प्रदर्शनकारी संसद के गेट के करीब तक कैसे पहुंच गए? 20 तारीख को दोपहर 2 बजे तक प्रदर्शनकारी संसद के गेट तक करीब करीब पहुंच ही गए थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं संसद के अंदर गाड़ियां चलती दिख रही हैं, लोगों की आवाजाही साफ नजर आ रही है, संसद भवन की दीवार के पास भीड़ खड़ी हुई देखी जा सकती है, पुलिस भी वहां मौजूद है जिससे भीड़ की झड़प होती है। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया, अगर वो ऐसा नहीं करती या फिर इससे 2-3 गुनी भीड़ अगर यहां होती तो फिर पुलिस को इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो सकता था।
2: पार्लियामेंट के गेट से बेहद करीब तक जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, जो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है कि ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे ये पार्लियामेंट का गेट है, प्रोटेस्टर है, अंदर की तरफ गाड़ी आपको पार्लियामेंट के अंदर जाती हुई दिखाई देगी, बाहर प्रोटेस्टर है, ये पूरा रेल भवन और पार्लियामेंट के आसपास का इलाका है, यानी तकरीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रोटेस्टर पहुंचने में कामयाब रहते, जो पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि पुलिस को पहले से पता था कि संसद मार्च का ऐलान होने वाला है, प्रॉपर तैयारी क्यों नहीं की गई, मजबूत बैरिकेड्स वो क्यों नहीं लगाए गए, और साथ ही साथ जब इलाके में बीएनएस की धारा 163 लगी थी तो इतने बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो नई दिल्ली और आसपास में कैसे इकट्ठा हो गई।
3: दिल्ली पुलिस आखिरकार क्या कर रही थी? प्रदर्शनकारियों को संसद भवन से 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रदर्शन करने कैसे दिया गया? अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? अब ये सीसीटीवी वीडियो देखिए, संसद के पास लाल रंग की दिख रही इमारत सेल्फी पॉइंट है जिसकी तरफ अचानक प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते दिखे थे। यहाँ खड़े पुलिस वाले जैसे ही भीड़ को देखते हैं वो बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को बंद करते नजर आते हैं। रेल भवन के पास प्रदर्शनकारियों का पहुंचना चिंताजनक है क्योंकि यहां से संसद बहुत नजदीक है, रोजमर्रा की तरह 20 जुलाई को तब यहां ट्रैफिक चलता दिखता है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ देखकर आम लोग भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने वाला यहां कोई नहीं था। अगर भीड़ शांतिपूर्ण की जगह उग्र होती तो बड़े आराम से आम लोगों की गाड़ियों को निशाना बना सकती थी, क्योंकि यहां पर पुलिस का कोई नामो निशान नहीं था, जो थे वो एक कोने में खड़े थे। रेल भवन के बाहर की एक और सीसीटीवी तस्वीर देखिए जिसमें पुलिस और आरएएफ के जवान देखे जा सकते हैं, जो प्रदर्शनकारियों की भीड़ को रेल भवन से दूर करने के लिए धक्के मारते हैं। अगर भीड़ यहां भड़क जाती तो हालात बेकाबू हो सकते थे, हालांकि पुलिस ने यहां तैयारी कर रखी थी। अब सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी तस्वीर देखिए जो संसद भवन के बेहद नजदीक बने मेट्रो स्टेशन में से एक है। यहां भी 20 तारीख को दोपहर 12:34 पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अचानक इस मेट्रो स्टेशन की तरफ भीड़ भागती हुई आई, पुलिस को हंगामे की आशंका थी, इसलिए यहां पहले से बैरिकेडिंग की गई थी। पीसीआर वैन भी खड़ी देखी जा सकती है।
2: 5 सीसीटीवी संसद भवन के आसपास हमने हमारे पास आया है, जिससे ये पता चलता है कि संसद भवन की दीवार के बेहद करीब जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, और इसीलिए दिल्ली पुलिस पर इन 5 तस्वीरों को लेकर सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इतनी मजबूत तैयारी क्यों नहीं की थी, भीड़ संसद भवन के आसपास पहुंचने तक कैसे कामयाब हो गई थी। और 20 जुलाई को ऐसी भी तस्वीरें आई थी जब संसद भवन के अंदर सुरक्षा जो कर्मी थे वो अलर्ट मोड में आ गए थे। तो वो अलर्ट मोड में क्यों आए थे 20 जुलाई को जब वो तस्वीर आई थी? वो इसलिए आए थे क्योंकि ये सीसीटीवी जिसमें अगर आप देखें संसद भवन की दीवार, प्रोटेस्टर झड़प होते हुए आपको दिखाई दे रहा, संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है।
3: 20 तारीख को प्रदर्शन की ये 5 सीसीटीवी तस्वीरें साफ तौर पर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाती हैं, बताती हैं कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ संसद के दरवाजे तक पहुंच गई। अगर ज्यादा लोग होते तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने में काफी दिक्कत आती, लेकिन किसी तरह प्रदर्शनकारी पीछे धकेल दिए गए और संसद में घुसने से बच गए। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली पुलिस का दावा है कि जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान आपराधिक बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे और इन अपराधियों की पहचान फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और तकनीकी तरीकों से की गई। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि जंतर मंतर की तरह ही लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद में भी उसके बाहर यही फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा होता तो क्या पता चलता।
3: दिल्ली पुलिस दावा करती है जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। हत्या के आरोप से जुड़े 101 आरोपी जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान देखे गए, ये दावा दिल्ली पुलिस का है। हत्या के प्रयास के आरोप वाले 62 लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी भीड़ में दिल्ली पुलिस को दिखे। 284 डकैती और लूट के आरोपी, रेप केस के 61, पॉक्सो के 6 आरोपी दिल्ली पुलिस कहती है कि जंतर मंतर पर दिख रहे थे जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते प्रदर्शनकारी मौजूद थे। आर्म्स एक्ट के 229 आरोपी, स्नैचिंग के 135, किडनैपिंग के 19 आरोपी, ऐसे अलग अलग कुल 2873 चेहरों को फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से दिल्ली पुलिस ने पहचानने का दावा किया जिनका बैकग्राउंड आपराधिक रिकॉर्ड वाला है और वो जंतर मंतर पर पुलिस कहती है प्रदर्शन के दौरान दिखे भी। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बात का सीधा दावा नहीं करती कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले ये 2873 लोग 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच जंतर मंतर पर किसी तरह की हिंसा या उपद्रव में शामिल थे। पुलिस कहती है कि वो इसकी जांच कर रही है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वो तकनीक है जिसमें पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड वालों के डेटाबेस से मिलान करके अपराध के आरोपियों को भीड़ में देखती है, पहचानती है। लेकिन सवाल है कि जंतर मंतर पर क्या इस तकनीक का इस्तेमाल करके मिले डेटा से ये नैरेटिव देने की कोशिश है कि जंतर मंतर पर पहुंचने वालों या फिर 20 जुलाई के प्रदर्शन में अपराध के आरोपी भी बहुत थे। और तब एक सवाल आता है, सवाल देश की संसद से जुड़ा है जहां संसद में लोग पूछते हैं कि अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बाहर लगा होता तो फिर सांसद कैसे दिखते। एडीआर का डेटा कहता है कि लोकसभा के 251 यानी करीब 46% सांसद पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर के डेटा के आधार पर कहा जा सकता है कि संसद के बाहर अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा दिया जाए तो 170 सांसद यानी करीब 31% ऐसे मिलेंगे जिन पर हत्या और हत्या के प्रयास समेत दूसरे गंभीर आपराधिक केस हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अगर संसद में होने लगे तो एडीआर के डेटा के मुताबिक पता चलेगा कि 16 सांसदों पर तो महिलाओं के खिलाफ अपराध का केस चल रहा है जिनमें से 2 सांसद के खिलाफ रेप तक के मामले दर्ज हैं, 4 सांसद के खिलाफ किडनैपिंग का मामला है तो लोकसभा के 43 सांसद के खिलाफ हेट स्पीच का केस है, राज्यसभा के 73 सांसदों पर क्रिमिनल केस चल रहा है, राज्यसभा के 73 में से 36 यानी 16% पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, 1 सांसद पर मर्डर का केस है, 4 सांसद पर हत्या की कोशिश और 3 पर महिलाओं से जुड़े अपराध के केस हैं। ये तस्वीर तब दिख सकती है जब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम देश की संसद के बाहर भी लग जाए।
0: और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सावन में कौन कौन से पौधे आपको लगाने चाहिए, तुलसी के पौधे का महत्व क्या है, क्या इसको सावन में लगा सकते हैं, केले का पौधा लगाने के लाभ क्या हैं और सावन में इसको किस तरह लगाना चाहिए, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
6: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
7: How they looked after game one.
8: I mean, they were frustrated.
6: The Daily.
9: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
6: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल। विपक्ष के वॉकआउट के बाद ध्वनिमत से पारित। राष्ट्रपति की मुहर के बाद बन जाएगा कानून। संसद से बिल पास होने के बाद पीएम मोदी का नया वीडियो संदेश। कहा, पेपर लीक गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। हर राज्य पेपर लीक से परेशान। शिक्षा को लेकर लगातार उठ रहे हैं कदम। राहुल के बयान पर बीजेपी की घेराबंदी। अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस। गृहमंत्री अमित शाह पर असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। प्रदर्शनकारी छात्रों को दिल्ली सरकार ने दी बड़ी राहत। नहीं होगी पुलिस कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर होगा एक्शन।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के महीने में प्रकृति में हरियाली छा जाती है, बारिश की बूंदें पड़ने लगती हैं और बहुत सही समय होता है पौधे लगाने का। तो इस बार सावन में आप कौन से पौधे लगाएं जिससे आपके जीवन में समृद्धि आए, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, रात के 10:31 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, शाम के 7:26 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 6:28 तक। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि सावन में कौन कौन से पौधे आपको लगाने चाहिए और इसको लगाने से आपको किस तरह का लाभ जीवन में प्राप्त होगा। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी के पौधे के बारे में। तुलसी के पौधे का महत्व क्या है, क्या इसको सावन में लगा सकते हैं? देखिए, तुलसी के पौधे को सावन के महीने में या कार्तिक के महीने में लगाना सर्वोत्तम होता है। तुलसी का पौधा घर के बीचों बीच में लगाना चाहिए, या अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो अपने बेडरूम के पास वाली बालकनी में गमले में लगाना चाहिए। वैवाहिक जीवन की बेहतरी के लिए, सुख समृद्धि के लिए और बेहतर स्वास्थ्य के लिए रोज इसके नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए। रोज सवेरे खाली पेट तुलसी के पत्ते और बीज खाने से संतान उत्पत्ति की समस्याएं समाप्त होती हैं, और रोज सुबह अगर आप खाली पेट तुलसी के पत्ते ग्रहण करते हैं तो इससे आपकी वाणी और बुद्धि प्रखर होती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा में, हनुमान जी की पूजा में, राम जी की पूजा में, श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी दल को अर्पित करना जरूरी है। आप उनको मिठाई चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, भोजन अर्पित करें, उसमें तुलसी दल डाल कर ही उनको भोग लगाया जाता है। और ऐसा मानते हैं कि तुलसी दल डालकर भगवान को भोग लगाने से वो भोग स्वीकार करते हैं। अन्य पौधों की भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, करियर में लाभ होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।
वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा पर जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, करियर में लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। दूसरा पौधा जो सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है वो है केले का पौधा। केले का पौधा लगाने के लाभ क्या हैं और सावन में इसको किस तरह लगाना चाहिए? देखिए, सावन की एकादशी को या सावन के किसी भी बृहस्पतिवार को आप केले का पौधा लगा सकते हैं। केले का पौधा घर में पीछे की तरफ लगाना चाहिए, सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप अपने घर के पीछे की तरफ केले का पौधा लगाएं और उसमें नियमित रूप से जल डालें तो वैवाहिक जीवन की सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं। केले के पौधे की जड़ को पीले धागे में बांधकर धारण करने से शीघ्र विवाह होता है और बृहस्पति मजबूत होता है। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति खराब है वो केले का पौधा अपने घर में पीछे की तरफ लगाएं और बृहस्पतिवार को उसके निकट बैठ करके बृहस्पति मंत्र का अगर जप करें तो उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। अन्य पौधों पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, ऑफिस में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।
कन्या राशि धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होता जाएगा, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न साक्षी ने हमें लिखा है और साक्षी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 अक्टूबर 1992। जन्म का समय सुबह के 9 बजे। जन्म स्थान है लखनऊ। साक्षी कह रही हैं

भेजी है अपने साथ, उसके हिसाब से ये विवाह चल पाना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपसी सुलह समझौते से आने वाले समय में सेपरेशन होगा और आपकी दूसरी शादी होगी साल 2027 में। चूंकि तालमेल बिल्कुल नहीं है, तालमेल खराब है, बात हिंसा तक पहुंच सकती है, इसलिए आपसी सुलह समझौते से अलग हो जाना ही बेहतर रहेगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज सुबह और शाम एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एक और पौधा घर में लगाने से बड़ा लाभ होता है, वो है अनार का पौधा। अनार का पौधा लगाने के लाभ क्या हैं और सावन में इसको लगाने का तरीका क्या है? देखिए, आप अनार का पौधा कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर सावन में सूर्यास्त के बाद रात के समय में अनार का पौधा लगाएं तो ज्यादा उत्तम होगा। घर के मेन डोर पर या घर के सामने अनार का पौधा लगाएं तो सर्वोत्तम होगा। घर के बीचों बीच में अनार का पौधा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप अनार का पौधा अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, घर का वातावरण उत्तम होता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। अगर घर के मेन डोर पर, मुख्य द्वार पर आपने अनार का पौधा लगाया है तो आपके घर पर तंत्र मंत्र की क्रियाएं असर नहीं करेंगी। अगर जीवन में बड़ी बाधा आ गई है, बड़ी रुकावट आ गई है, तो अनार के फूल को शहद में डुबाकर जल प्रवाहित किया जाए तो भारी से भारी कष्ट मिट जाता है और व्यक्ति तमाम समस्याओं से मुक्त हो जाता है। जब आप यंत्र लिखते हैं तो उसमें अनार की लकड़ी की कलम से यंत्र लिखने की परंपरा है, क्योंकि अनार के पौधे में तांत्रिक शक्ति पाई जाती है। अगर आप तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं तो किसी शुभ मुहूर्त में अनार की लकड़ी को, छोटी सी लकड़ी को पीले धागे में बांधकर अपने गले में धारण करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से तंत्र मंत्र की बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना सकते।

चाहते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, काम का दबाव बढ़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे, करियर में लाभ के योग हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब बात करते हैं शमी के पौधे की। शमी के पौधे को लगाने के लाभ क्या हैं और सावन में इसको किस प्रकार लगाना चाहिए? देखिए, सावन के किसी भी शनिवार को शाम के समय में शनि का पौधा लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर निकलते समय लेफ्ट साइड में गमले में या जमीन में शमी का पौधा लगाना शुभ होगा। शनिवार की शाम को नियमित रूप से शमी के पौधे के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ऐसा करने से शनि की पीड़ा कम होगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। विजयादशमी यानी दशहरे के दिन शमी की विशेष पूजा उपासना करने से व्यक्ति को कभी भी धन का धान्य का अभाव नहीं होता, उसके घर में संपन्नता और समृद्धि बनी रहती है। अब जान लेते हैं पीपल के पौधे के बारे में। पीपल के पौधे का क्या महत्व है और सावन में इसको कब लगाना चाहिए? देखिए, आप किसी भी दिन पीपल का पौधा लगा सकते हैं। सावन के बृहस्पतिवार को अगर लगाएं तो ज्यादा उत्तम होगा। घर में गमले में या जमीन में पीपल का पौधा नहीं लगाना चाहिए। पार्क में, सड़क के किनारे या सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पौधा लगाना उत्तम होगा। अगर आप सावन में या वैसे भी शुभ मौकों पर पीपल का पौधा लगाते हैं तो संतान की प्राप्ति आसान हो जाती है। पीपल के वृक्ष की जड़ में अगर आप जल दें और उसकी परिक्रमा करें तो संतान दोष नष्ट होता है और घर में बीमारियां नहीं रहती। अगर शनि संबंधी कोई पीड़ा है, दरिद्रता है, रोजगार में करियर में समस्या है तो शनिवार की शाम के समय में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए।
करियर का मामला, धन का मामला बेहतर होगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी और शनि संबंधी बाधाएं जीवन से समाप्त हो जाएंगी। अगर आपके घर में पुराना मकान है, दीवार में, जमीन में, टंकी के नीचे अगर पीपल का पौधा निकल आया है तो उसे काट कर या उखाड़ कर मत फेंकें, सावधानी से उसको निकाल कर पार्क में ले जा कर के लगा दें तो आपके लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। मकर, कुंभ और मीन राशि का अब जान लेते हैं दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, धन के खर्चों पर ध्यान दें, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, करियर में लापरवाही ना करें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है, इससे शाप लगता है। क्या ऐसा है? देखिए, हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के महत्व को समझते हुए प्रकृति को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया। पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है, प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है। इसीलिए ऐसा कहा गया कि पीपल में देवी देवताओं का वास है, अगर आप उसे काटेंगे तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो पीपल के पेड़ काटे जाएंगे और प्रकृति में असंतुलन पैदा होगा। तो वास्तव में बाकी आपकी मान्यताएं हैं, आप जैसा भी मानिए, लेकिन ये जान लीजिए कि पीपल का वृक्ष प्रकृति में संतुलन पैदा करता है, ढेर सारा ऑक्सीजन प्राणियों को देता है, इसीलिए पीपल का पेड़ काटना मना है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी,
नंबर दो, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर तीन, परिवार में विवादों से बचें। नंबर चार, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर पांच, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर छह, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर सात, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर आठ, करियर में नया अवसर मिल सकता है। नंबर नौ, चोट चपेट से सावधान रहें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करिएगा, इससे आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपको किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो मिश्री खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, अपने साथ एक गुलाब का फूल रख लीजिएगा, लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मेष राशि वालों के लिए, रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताएं समाप्त तो होंगी। और आज सावधान रहना होगा कर्क राशि के लोगों को, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज द्वितीया तिथि है, आज भगवान शिव को गुलाब का फूल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी लोक परीक्षा संशोधन बिल हुआ पास। लगातार 9वें दिन संसद में पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान हंगामा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। बोले, माहौल ठंडा करने के लिए लाया गया बिल, लेकिन यह अभी भी अधूरा। खड़गे ने छात्रों पर लाठीचार्ज पर सुनाई कविता। कहा, पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पिटते रहे। ये कैसा न्याय है, ये कैसी रीति। गुनहगार हंसते रहे, मासूम सुसकते रहे। खड़गे ने अमित शाह पर साधा निशाना। कहा, बहुत दिनों तक छिप नहीं सकते हैं, खींच कर लाएंगे बाहर। भाषण के दौरान खड़गे ने मनुस्मृति का हवाला देने पर भड़की। बीजेपी ने की माफी की मांग। जेपी नड्डा ने कहा, ऐसे बयान से फैलेगी अशांति। खड़गे बोले, देश में फिक्स एग्जाम कैलेंडर होना चाहिए। परीक्षा गड़बड़ियों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हाई पावर कमेटी से जांच की मांग। लोकसभा में ध्वनि मत से पास हुआ वंदे मातरम बिल। राज्यसभा में पहले ही मंजूर हो चुका है विधेयक। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र पर बड़ा आरोप। बोले, सरकार देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कर रही है कोशिश, संविधान में किसी को मजबूर करने की अनुमति नहीं। वंदे मातरम बिल के विरोध में डीएमके सांसद कनिमोझी बोली, राष्ट्रवाद का दिखावा, हिंदुत्व का एजेंडा। संसद के मानसून सत्र में पेश नहीं होगा एक देश एक चुनाव बिल। बढ़ाया गया जेपीसी का कार्यकाल। शीतकालीन सत्र के अंतिम हफ्ते के पहले दिन तक जेपीसी को सौंपनी होगी रिपोर्ट। हंगामेदार मानसून सत्र में राहुल की टिप्पणी पर भड़के अनुराग ठाकुर। विदेश अधिकार हनन का दिया गया नोटिस। असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर पैलेट गन के कथित इस्तेमाल के विरोध में भारतीय युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। सीजेपी प्रदर्शन में शामिल लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। दिल्ली सरकार इनके खिलाफ नहीं करेगी कोई कानूनी कार्रवाई। आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों पर लोग लागू नहीं। आईआईटी मद्रास डायरेक्टर पर प्रियंका गांधी के गौमूत्र वाले बयान का विरोध। कई कुलपतियों और शिक्षाविदों समेत 215 लोगों ने लिखा है खुला पत्र। कहा, विचारों पर गंभीरता से हो बहस। बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने नीट पेपर लीक मामले पर अपनी चुप्पी का कारण बताया। बोले कि उनका काम सवाल पूछना नहीं, समाधान देना है। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, दिखावटी सुधारों से काम नहीं चलेगा, बीमारी की जड़ को ही खत्म करना होगा और एनटीए को बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर बैठक। सीएम डीके शिव कुमार भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में कुल 71.44% मतदान, 2 लाख से भी ज्यादा मतदाताओं ने डाले वोट। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट उपचुनाव में कुल 34.30% मतदान दर्ज। 3 अगस्त को आएंगे नतीजे। गाजीपुर दौरे पर सीएम योगी, 268 विकास परियोजना का किया उद्घाटन और शिलान्यास। लाभार्थियों को बांटे गए मंजूरी पत्र और प्रमाण पत्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की मुंबई को नशा मुक्त बनाने की मुहिम शुरू। सीएम फडणवीस ने छात्रों से ड्रग्स को ना कहने की अपील की। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा अहम फैसला। अगले हफ्ते इस मामले पर विस्तार से होगी सुनवाई। शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को होगी सुनवाई। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर शिंदे और ठाकरे गुट में है मतभेद। रीनीट परिणाम को चुनौती देने वाली 4 याचिकाएं खारिज कर दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर लगाया ₹5,000 का जुर्माना। महाराष्ट्र में स्कूल कैंटीन के लिए एफडीए लाइसेंस अनिवार्य। 50 मीटर दायरे में जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक मामले में सभी 14 आरोपियों की भिवंडी कोर्ट में पेशी। 3 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए। नागपुर में आरक्षण हटाओ आंदोलन के तहत छात्रों का प्रदर्शन। सोशल मीडिया के माध्यम से जुटे प्रदर्शनकारी 0 माइल चौक से संविधान चौक तक पहुंचे और जोरदार नारेबाजी की। बुलढाणा में अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण में विरोध में विशाल मोर्चा। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। गुजरात के मांजलपुर उपचुनाव में मतदान केंद्र पर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। कांग्रेस समर्थक से मारपीट का भी आरोप। ऐतिहासिक भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष को भोजशाला से सटी हुई जमीन नमाज के लिए अदा की गई और 1 से 3 बजे तक नमाज अदा की जाएगी। एमपी के धार भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फिर से सुनवाई। कोर्ट ने कहा, शुक्रवार की नमाज के लिए विवादित परिसर से सटी जमीन पर व्यवस्था करे एमपी सरकार। सफाई कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में पंजाब बंद का भारी असर देखने को मिला। शहर के मुख्य बाजारों सहित अधिकांश दुकान रही बंद। गया में सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं की बुनियादी सुविधाओं की काम को लेकर अनुमंडल कार्यालय पर प्रदर्शन और खराब चापकल टूटे पंखे जैसी समस्याओं पर मांगा जवाब। एफबीआई ने ऑपरेशन हार्डबॉल में जग्गू के नेटवर्क पर अमेरिका यूरोप और कनाडा में कसा था शिकंजा। एक और भारतीय नागरिक को एफबीआई ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाला।
दिल्ली एनसीआर में मानसून के बादलों का डेरा। मौसम विभाग के मुताबिक आज हल्की से भारी बारिश होने की संभावना। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी। शिमला, ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। गुजरात के 13 जिलों में आज से 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। अहमदाबाद में आज स्कूल कॉलेज में छुट्टी के आदेश। गुजरात में भारी बारिश के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट। प्रभावित जिलों में सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश। महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में भारी बारिश से नदियां उफान पर। एक शख्स बाढ़ के पानी में बहा, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला शव। आईएमडी ने उत्तर तेलंगाना के 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर किया रेड अलर्ट जारी। हैदराबाद समेत कई इलाकों में बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा शहर में ताजा बारिश को लेकर मौसम सुहावना हुआ। बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट। बारिश के दौरान दिल्ली में बढ़ने लगा है यमुना का जलस्तर। कालिंदी कुंज घाट पर 2 दिनों में 20 फीट तक बढ़ा पानी। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में यमुना के बहाव में तेजी आई। अगले 2 से 3 दिनों में यमुना में और पानी भरने का अनुमान। ओडिशा के टिटलागढ़ में बाढ़ का कहर देखने को मिला। कई इलाकों में हालात बिगड़े, रेस्क्यू ऑपरेशन ओडिशा में जारी। पवित्र गुफा के पास बारिश के कारण पानी का स्तर अचानक से बढ़ा। इलाके में हालात खराब हुए। अमरनाथ गुफा के आसपास बारिश जारी। पिछले 2 दिनों से हो रही है भारी बारिश के कारण तेलंगाना के कुमुरम, भीम, आसिफाबाद में जनजीवन प्रभावित। नदी नालों में उफान से निचले इलाके जलमग्न। राजस्थान के कई जिलों में आफत की बारिश। अलवर में पानी में फंसी यात्रियों से भरी बस, जेसीबी से किया गया रेस्क्यू। हरिद्वार में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से सूखी नदी उफान पर, कई वाहन बहे। क्रेन की मदद से गाड़ियों को निकाला गया बाहर। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला। वही अब तक कुल 17 मेडल जीते। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल, सबसे ज्यादा मेडल वेटलिफ्टिंग मुकाबले में मिले। लवप्रीत सिंह ने वेटलिफ्टिंग में भारत को दिखाया 10वां सिल्वर मेडल। पुरुष के 110 किलो कैटेगरी में 388 किलोग्राम वजन उठाया। डिस्कस थ्रो में सीमा ने भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल, 58.465 मीटर किया थ्रो। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो मुकाबले में नीरज चोपड़ा समेत भारत के 3 खिलाड़ियों ने किया कमाल, क्वालिफाई किया। फाइनल आज देर रात 12:45 से खेला जाएगा। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम को पछाड़ा। नीरज ने 79.61 मीटर का बेस्ट थ्रो किया, वहीं अरशद ने 78.63 मीटर थ्रो किया। जेवलिन थ्रो में भारत के रोहिता यादव और साथी यशवीर सिंह भी फाइनल में पहुंचे। क्वालिफिकेशन राउंड में रोहित ने 78.37 मीटर और यशवीर ने 78.36 मीटर भाला फेंका। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के बॉक्सर्स ने किया कमाल, 10 मेडल मिलना तय। भारत बनेगा ऐतिहासिक फुटबॉल मैच का गवाह। 3 अक्टूबर को कोलकाता में भारत के खिलाफ एक फीफा मेंस इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेलेगी 5 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन ब्राजील। अब रेड बॉल क्रिकेट में दिखेगा वैभव सूर्यवंशी का जलवा। 23 अगस्त से दिलीप ट्रॉफी में दिखाएंगे अपना जलवा बनाए गए ईस्ट जोन के उपकप्तान। आस्था और भक्ति के महीने सावन का आज दूसरा दिन। मंदिरों में दर्शन और जलाभिषेक के लिए सुबह से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। 12 अगस्त तक राजधानी के कई मार्गों पर रूट डायवर्ट, भारी ट्रांसपोर्ट वाहनों की आवाजाही पर रोक। 9 अगस्त की सुबह 7 बजे से 12 अगस्त की रात 8 बजे तक आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी दिल्ली का GT रोड। वहीं इस दौरान कांवड़ियों की सबसे ज्यादा आवाजाही को देखते हुए लिया गया है फैसला। उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। AI कैमरों की मदद से की जा रही है सर्विलांस। पवित्र सावन महीने में कांवड़ यात्रा में शिव भक्त ने दिखाई सेवा और श्रद्धा की एक अनूठी तस्वीर। बुजुर्ग दादी को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से दिल्ली ले जा रहा है पोता। भिवंडी में बड़ा हादसा, 4 मंजिला इमारत ढही। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। गुजरात के पंचमहल में हाईवे पर स्थित एक होटल में नशे में धुत जमकर तांडव मचाया। वहीं 5 युवकों ने होटल में जमकर तोड़फोड़ की। मुजफ्फरनगर में 2 बदमाशों ने मंदिर से घर लौट रही एक महिला के कान के झुमके छीने। स्नैचिंग की घटना CCTV में कैद। अलवर में युवकों ने एक स्टूडेंट को दौड़ा दौड़ाकर पीटा, लाठी डंडों से किया वार। घटना का वीडियो आया सामने। जयपुर में तेज बारिश के बीच तेज रफ्तार SUV ने स्कूटी सवार युवक को मारी जोरदार टक्कर। गाड़ी सहित कई फीट दूर जाकर गिराई युवक, मौके पर गई जान। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क का किया भंडाफोड़। 4 तस्कर गिरफ्तार, 15 लाख रुपए के विदेशी मादक पदार्थ बरामद। गुजरात के बनासकांठा में कार बाइक की भीषण टक्कर,
मंदिर से लौट रहे युवक युवती की मौत हुई। गुजरात के आणंद में एक घर के बाथरूम में घुसा मगरमच्छ, वन विभाग और दया फाउंडेशन ने सुरक्षित रेस्क्यू कर तालाब में छोड़ा। राजकोट में तेज रफ्तार रिक्शा ने सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर, घटना कैमरे में कैद। अरावली में अधूरी सड़क के विरोध में ग्रामीणों ने किया रोड जाम, हादसे में ड्राइवर की मौत के बाद फूटा गुस्सा। मिर्जापुर में हाईवे पर घर के बाहर सो रहे पिता पुत्र को रौंदते हुए अनियंत्रित कंटेनर घर में घुसा, भीषण हादसे में दोनों की मौत। जयपुर से इंसानियत को झकझोर कर देने वाली वारदात आई सामने, बेटे की चाहत में पिता ने अस्पताल में 13 घंटे की नवजात बेटी का गला दबाकर की हत्या। झांसी में नामी सुपारी का हाफ एनकाउंटर रेस्टोरेंट में घुसकर ग्राम प्रधान के बेटे की हत्या की थी, गोली लगने से हुआ घायल। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक ही घर में 31 सांप मिलने से हड़कंप मचा, घटना के बाद भय के माहौल में परिवार। कर्नाटक के यादगीर में बस सेवा न मिलने और बसों द्वारा स्टॉप पर न रुकने से नाराज छात्रों ने स्टेट हाईवे किया जाम, यातायात प्रभावित। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्कूल टीचर ने 4 साल की बच्ची के हाथ बांधकर डंडे से उसकी पिटाई की, क्लास में भूख लगने की बात कहने पर हुई गुस्सा, आरोपी टीचर पर केस दर्ज। एमपी के बैतूल में सोफे के अंदर छिपा मिला 5 फीट लंबा कोबरा, समय रहते रेस्क्यू से टला हादसा। गोरखपुर जिला अस्पताल में आरोपी को मेडिकल जांच के दौरान भीड़ ने जमकर पीटा, बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप। मुंबई हाईकोर्ट के पास टो की जा रही कार में बैठ रहे वकील, पुलिस कार्रवाई का वीडियो वायरल। राजकोट में एक ऑफिस में बंदूक की नोक पर 18 लाख की लूट, घटना सीसीटीवी में हुई कैद।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: सबसे बड़े हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, जो दिख रहे ही नहीं हूं मैं, देख रहा हूं मैं तो। बाकी के छोटे छोटे इश्यू में आके बार बार अपनी बात रखते हैं, हर तरफ घूमते हैं, तो किस तरफ क्यों नहीं घूम रहे मुझे मालूम नहीं।
5: डरे हुए हैं, डरे हुए हैं।
4: तो ये प्रधानमंत्री भी मुंह नहीं खोल रहे और हमारे होम मिनिस्टर भी नहीं हो रहे, क्योंकि यहां पर दिल्ली में ही इतनी गड़बड़ हो रही है और आप होम मिनिस्टर हो, लॉ एंड ऑर्डर देखते हो, इतना होने के बावजूद भी, गड़बड़ी होने के बाद आपका मुंह भी नहीं खुल रहा। क्या कोई स्टिच कर दिया क्या मुंह को, बंद कर दिया? बोलना चाहिए था खुलकर, देश का नुकसान होने के बजाय देश के भलाई के लिए आपको बोलना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है, कभी इंसल्ट भी सहन करना पड़ता है, आप करना पड़ता। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो जो सबक स्टूडेंट्स ने तुमको सिखाया है उससे डबल सारे विद्यार्थी और युवक मिलके एक दिन फिर आपको वो सबक सिखाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूं, लाठी चार्ज कराने के लिए, आंसू गैस करने के लिए, छोड़ने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? कौन लाठी चार्ज का आदेश दिया, आंसू गैस का दिया और पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए आदेश कौन दिया? नहीं, आप स्टेटमेंट दे सकते थे लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप होम मिनिस्टर को हिफाजत करना चाहते हैं लेकिन बहुत दिन हिफाजत नहीं कर सकते। नहीं होता ऐसा, अगर आदमी झूठ बोलता है तो एक बार उसका बाहर निकलना पड़ेगा बंटवार। तो इसीलिए आपके लोग आए, सादे कपड़ों में छात्रों को पीटने वाले लोग कौन थे? दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? CRPF एंड रैपिड फोर्स किसके आदेश पर काम करता है? इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन थे? कौन थे? अच्छा अच्छा, मुझे मालूम। देश इन सवालों का जवाब चाहता है। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पेलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है।
1: जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं।
0: हम लोगों को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे।
1: ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं।
2: ये मानसून सत्र में राजनीति का दूसरा पार्ट है। पेपर लीक पर छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है, जंतर मंतर पर खामोशी है, धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी सीज फायर करने पर राजी नहीं है। राहुल गांधी का इरादा साफ दिख रहा है, पेपर लीक की लड़ाई को पायलट गन पर शिफ्ट करने की, धर्मेंद्र प्रधान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट पर लाने की। कल राहुल गांधी संसद में हुए हंगामे के केंद्र में रहे, उनके हमले पर दिन भर बवाल रहा। राहुल गांधी के भाषणों के कुछ शब्दों को असंसदीय बताकर रिकॉर्ड से बाहर भी किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने संसद से निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और हमलों का सिलसिला जारी रखा। बीजेपी राहुल गांधी की मंशा को समझ रही है कि राहुल गांधी ने अमित शाह को ही हमले के लिए क्यों चुना, क्योंकि अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं। सत्र के 10 दिन हुए हैं, 15 दिन और बाकी हैं, और राहुल गांधी अमित शाह को चर्चा के केंद्र में रखने की कोशिश में दिख रहे हैं।
3: कि हो क्या रहा है यहां, दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है, राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा ये सीजेपी के लोग आए, ये जनजीव के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो, चलो उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त तो हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया, हमारा क्या होगा, हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे, तो चलो कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं।
2: बीजेपी बनाम राहुल गांधी की ये लड़ाई असल में युवाओं के बीच पैठ बनाने की जंग भी है। पेपर लीक पर छात्रों के प्रदर्शन की कामयाबी से लगता है कि विपक्ष के हाथों में भविष्य के लिए नई कुंजी आ गई है, जिसका इस्तेमाल संसद में होता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल, विपक्ष के वॉकआउट के बाद ध्वनिमत से पारित, राष्ट्रपति की मुहर के बाद बन जाएगा कानून। संसद से बिल पास होने के बाद पीएम मोदी का नया वीडियो संदेश, कहा पेपर लीक गैंग को बख्शा नहीं जाएगा, हर राज्य इससे परेशान, शिक्षा को लेकर लगातार उठ रहे हैं कदम। गृहमंत्री पर राहुल गांधी के असंसदीय शब्दों के आरोपों के बाद बीजेपी की घेराबंदी, अनुराग ठाकुर ने विशेष अधिकार हनन का दिया नोटिस। प्रदर्शनकारी छात्रों को दिल्ली सरकार ने दी बड़ी राहत, नहीं होगी पुलिस कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर होगा एक्शन। मुंबई के पास भिवंडी में गिरी 4 मंजिला इमारत, मलबे में 8 से 10 लोगों के दबे होने की जताई जा रही आशंका, एक की मौत, रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ और पुलिस की टीम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। सुबह के 8 बजे हैं और अब वक्त हो गया है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में अहम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं संसद से एंटी पेपर लीक बिल, क्योंकि पास हो गया है लेकिन सियासी घमासान अभी भी जारी है, उस खबर को पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। वहीं आपको ये भी दिखाएंगे कि बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने देश के नाम आखिर क्या संदेश दिया। इसके अलावा बताएंगे कि अमित शाह पर टिप्पणी के बाद राहुल गांधी की कैसे मुश्किलें बढ़ी हैं। वहीं बात करेंगे प्रियंका गांधी को किसने नसीहत दी, और खबर महाराष्ट्र की भी होगी जहां इमारत गिरने के बाद ऑपरेशन जिंदगी जारी है। साथ ही आपको ये बताएंगे कि आखिर फिर से क्यों नेपाल में हिंसा भड़की है, खबर पाकिस्तान की भी होगी जहां पर खदान में बड़ा धमाका हुआ जिससे कि हड़कंप मच गया है। और आखिर में ये बताएंगे कि ग्लासगो में भारतीय एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ, महाराष्ट्र की भिवंडी से आ रही एक बड़ी खबर। दरअसल भिवंडी में कोहिनूर नाम की 4 मंजिला इमारत गिर गई, मलबे में दबने के कारण एक शख्स की मौत हो गई है, अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। स्थानीय लोगों की माने तो इमारत के मलबे में 8 से 10 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस हादसे के बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ भिवंडी पुलिस के जवान और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। वहीं स्थानीय लोगों का यह कहना है कि पिछले कई दिनों से इमारत की मरम्मत का काम चल रहा था और ठेकेदार और कामगारों ने इमारत के मेन पिलर को ही तोड़ दिया, जिससे कि इमारत अपनी मजबूती खो बैठी और आखिरकार भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत भी हो चुकी है।
2: बिल्डिंग कुछ 11 बजे के आसपास गिरी, 9:30 बजे ही बिल्डिंग के तीनों पिलर की वजह से बिल्डिंग दबना चालू हो गई। तब 9 बजे ही सारे हम लोग लगभग तक पूरी बिल्डिंग वाले को खाली करा चुके थे। 11 बजे जब ये बिल्डिंग गिरी तब बिल्डिंग में फंसे 20-25 लोग को हम लोग पीछे की सीढ़ी से लगा के निकाला, और इस बिल्डिंग के भी कम से कम 40-50 लोगों को हमने दोनों तरफ की सीढ़ी बजा के निकाला।
3: बहुत बड़ी लापरवाही है, यहाँ पे जनता की भी लापरवाही है और प्लस जो कॉन्ट्रेक्टर है उनकी भी लापरवाही है। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्टर ने इसको बिल्डिंग बनाने के लिए लिया था, वो कॉन्ट्रेक्टर कोई नक्शा नहीं था, मतलब कि कोई अपना इंजीनियर से पास किया होता, मतलब लोकल के मिस्त्री से इसका काम कराया जा रहा था। ये 16 साल पुरानी बिल्डिंग है।
0: तो विद्या हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के लिए। विद्या, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, कितने लोग अभी भी दबे हैं जिनको वहां से निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, और तस्वीरें भी दिखाइएगा विद्या।
4: जी देखिए, हम अभी इस वक्त थोड़ी देर पहले ही हमने भिवंडी निजामुद्दीन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं जिनका एरिया है ये, उनसे बात की थी। उनका यही कहना था कि तकरीबन 10:30 बजे के आसपास उन्हें खबर आई मिली थी तो वो यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने देखा कि ये बिल्डिंग क्रैक कर रही है तो लोगों को ऊपर से नीचे लेके आए थे, लेकिन और जैसे ही आए थे तब तक क्रैश हो गया था। लेकिन कुछ लोग, क्योंकि खासतौर से क्योंकि इलीगल रिपेयर वर्क चल रहा था इस तकरीबन 10 साल पुरानी 12 साल पुरानी बिल्डिंग का, तो उस दौरान काफ़ी सारे वर्कर्स थे अंदर और ज्यादातर वर्कर्स तो निकल गए, लेकिन कुछ 5-6 वर्कर्स जो हैं वो अंदर ही थे, ऐसा उनका कहना है। और यही एस्टीमेट के अनुसार फिलहाल यहाँ पे एनडीआरएफ के लोग काम कर रहे हैं। अब देख लीजिए, अभी भी काफी बड़ा पोर्शन जो है बिल्डिंग का वो अभी भी क्लियर करना, रूबल क्लियर करना बाकी है। लोग वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम अभी भी वहाँ पर कर रही है कोशिश। दो जो लोग हैं उन लोगों को निकाला गया था, जिसमें से एक की मौत तो हो गई, लेकिन अभी इस वक्त एक और लोग इस शख्स को निकाला गया, उसको एम्बुलेंस में ले जाया गया है तुरंत। अभी उसका क्या किस तरह की हालत है उसकी, उसके बाद कन्फर्म होगा कि वो मतलब उनकी तबीयत कैसी है सब चेक करने के बाद।
0: चलिए विद्या, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा। वहीं अब बात नेपाल की कर लेते हैं, जहां पर सांप्रदायिक हिंसा ने विकराल रूप ले लिया है। जी हां, नेपाल के सुनसरी से शुरू हुई यह हिंसा कई शहरों तक फैल चुकी है। अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि दर्जन लोग घायल है। आधे दर्जन से ज्यादा शहरों में कर्फ्यू लगा है। इंद्रवा, जनकपुर, सिरहा, गोल बाजार और लहार में हालात तनावपूर्ण है। वहीं हिंसा, आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ की कई घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस के साथ सशस्त्र पुलिस बल और नेपाली सेना तैनात है। संवेदनशील इलाकों में सेना का फ्लैग मार्च, हेलीकॉप्टर से निगरानी हो रही है। वहीं प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने देश के नाम संबोधन में सभी से शांति, सद्भाव, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता कायम रखने की अपील की है।
5: एक बार फिर जल उठा नेपाल। सांप्रदायिक हिंसा से भारी उबाल। कई इलाकों में तोड़फोड़, आगजनी और पथराव। नेपाल के सुनसरी में भड़की हिंसा अब नेपाल के कई शहरों तक फैल गई है। अलग अलग हिस्सों में आगजनी, तोड़फोड़, पथराव और पुलिस से झड़प हुई। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि सेना ने सड़कों से लेकर संवेदनशील इलाकों में मोर्चा संभाला है। भारत की सीमा से सटे कोशी और मधेश में हुई हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। नेपाल में बढ़ते हिंसा को देखते हुए पीएम बालेंद्र शाह ने देश के नाम संबोधन जारी कर शांति बनाए रखने की अपील की।
6: सबकी धैर्यता, संयमता अपना के शांति, सद्भाव, भाईचारा आ राष्ट्रीय एकता कायम राख के लिए सरकार के तरफ से हार्दिक अपील कर रहल छी।
5: नेपाल में हिंसा की शुरुआत सुनसरी इलाके से हुई थी, जहां 2 समुदायों के बीच कार्यक्रम को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद दोनों समुदायों में झड़प, आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी, जिसके बाद नेपाल के बाकी जिलों में भी हिंसक घटनाएं सामने आई। वही अब सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, दरअसल खराब मौसम की वजह से अमरनाथ की यात्रा स्थगित कर दी गई है। यात्रा मार्ग पर कई जगहों पर तेज बारिश की वजह से फ्लैश फ्लड जैसे हालात देखे गए। पानी स्तर कम हुआ है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है और कल रात भी अचानक गुफा के पास पानी की तेज धारा आ गई, जिसकी वजह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और अब खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। बारिश के बाद गुफा के पास फ्लैश फ्लड जैसी तस्वीरें भी सामने आई।
7: पानी आ गया भैया ऊपर से। अरे पानी आ गया, भागो, अरे भागो भागो भागो सब भागो, पानी आ गया। अरे लंगर छोड़ दो, लंगर छोड़ दो, भागो सब। अरे लंगर छोड़ दो, भाग जाओ भैया, पानी आ गया, लंगर छोड़ के भागो।
8: चला चला
7: चला, लंगर छोड़ के भागो सारे, वो पानी तेज हो गया, लंगर छोड़ के भाग जाओ। लंगर छोड़ के भागो सब।
0: तो ये मानसूनी आफत उत्तराखंड पर इस वक्त कुदरत का कहर बरसा रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते बार बार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। पहाड़ों से मलबा सड़क तक आ गया है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
5: पहाड़ों पर कुदरत का कहर जारी। उत्तराखंड में दरक रहे हैं पहाड़। सड़कों पर मलबा ही मलबा। देवभूमि उत्तराखंड में मानसूनी आफत का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये तस्वीर चमोली के किमाना गांव की है, जहां पहाड़ों से भारी मात्रा में मलबा नीचे आ रहा है, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। मलबे से रास्ते बंद हो गए हैं, पहाड़ी से आ रहे मलबे से खेतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। चमोली ही नहीं, उत्तराखंड के बाकी इलाकों में भी हालात ठीक नहीं हैं। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के चलते केदारनाथ हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई। पहाड़ों से भारी मात्रा पर मलबा सड़क पर आ गया, जिसको हटाने का काम जारी है। हरिद्वार की ये तस्वीर देखें, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद सूखी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसके चपेट में पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां आ गईं। पानी के बहाव में गाड़ियां काफी दूर तक बहती चली गईं, जिसके बाद क्रेन की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। चमोली से प्रवीण सेमवाल के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब बात कर लेते हैं पीएम मोदी के नए वीडियो जारी जो उन्होंने किया है उसकी। दरअसल संसद के दोनों सदनों में एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने नया वीडियो संदेश जारी किया और पीएम ने कहा है कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रही है। बच्चों के भविष्य पर भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है और इन सबको ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। तो देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, उसमें तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही है शिक्षा प्रणाली को लेकर। उन्होंने कहा कि परीक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम अब फिलहाल पूरा हुआ है, साथ ही दोनों सदन में बिल को पास कर दिया गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि पेपर लीक गैंग जो है उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। हर राज्य और केंद्र सरकार पेपर लीक से काफी ज्यादा परेशान है, ऐसे में शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। वही शिक्षा को लेकर लगातार कदम भी उठाए जा रहे हैं, ये भी पीएम मोदी ने कहा। तो ये नया वीडियो संदेश जारी कर कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं।
8: साथियों, फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए
9: फ्रेंड्स
8: फ्रेंड्स
5: पीएम मोदी का नया वीडियो संदेश
8: के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग।
5: एंटी पेपर बिल पास होने के बाद जारी वीडियो।
8: कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में
5: पेपर लीक गैंग को सीधी चेतावनी,
8: और जैसा मैंने आपको वादा किया गत दो दिन।
5: पीएम मोदी ने एक बार फिर छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी किया। पीएम का ये मैसेज उस वक्त आया है जब लोकसभा और राज्यसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया। पीएम मोदी ने मैसेज जारी कर सीधे पेपर माफिया को चेतावनी दी।
8: कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।

0: अब राहुल गांधी के गृहमंत्री अमित शाह पर दिए गए बयान पर मचे घमासान की बात कर लेते हैं। दरअसल बीजेपी ने अब राहुल गांधी के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का एक नोटिस सौंपा। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष ने गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया तथा उनके खिलाफ गंभीर और बेबुनियाद आरोप लगाए।
1: He does not have the courage.
2: तो उन्हें वो किया जो किसी नेता प्रतिपक्ष को नहीं करना चाहिए।
3: राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा।
4: Home Minister of this country.
3: गृहमंत्री पर टिप्पणी पर भड़के बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर। राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। संसद से एंटी पेपर लीक बिल तो पास हो गया है, लेकिन उस पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी ने घेराबंदी शुरू कर दी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस सौंप दिया है।
5: इससे बड़ा झूठा आरोप, बड़ा आरोप बगैर तथ्यों के लगाना कि राहुल गांधी जी की आदत बन गई सुर्खियां बटोरने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए सदन का दुरुपयोग किया गया। राहुल गांधी जी को गृहमंत्री ने देश से भी माफी मांगनी चाहिए।
3: जहां एक तरफ राहुल के बयान को लेकर बीजेपी आक्रामक दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने गृहमंत्री अमित शाह के संसद में न मौजूद होने पर भी सवाल खड़े कर रहा है।
6: I demand that the Home Minister come to this house, make a statement, answer the students, apologize to the students. If he cannot do so, the Home Minister must resign, sir.
7: प्रधानमंत्री डर गए, गृहमंत्री डर गए, लापता है, हम ढूंढ रहे हैं। मैं तो एक फिल्म बनाने वाला हूँ, लापता गृहमंत्री।
3: बहरहाल पेपर लीक से शुरू हुई सियासत अब प्रदर्शनकारियों के एक्शन पर शिफ्ट हो गई है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात दिल्ली की रेखा सरकार के उस फैसले की जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिली है। जी हां, दिल्ली सरकार ने कहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और जिन लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने यह कहा है कि जिन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। बात पाकिस्तान से आ रही बड़ी खबर की कर लेते हैं। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक कोयला खदान में जोरदार ब्लास्ट हुआ है जिसमें कम से कम 32 मजदूरों की मौत हो गई। क्वेटा के पास सुरांग इलाके में स्थित इस खदान में हुए धमाके के मलबे में अभी तक कई मजदूर फंस चुके हैं। जमीन के काफी अंदर होने और जहरीली गैसों के खतरे की वजह से राहत कार्य में रेस्क्यू टीमों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लापता खनिजों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कोशिशें लगातार की जा रही हैं। वहीं बलूचिस्तान के खान और खनिज विकास मंत्री शोएब ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि जिस समय खदान में धमाका हुआ उस समय ढहे हुए हिस्से में कई मजदूर काम कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की, जिन्होंने गाजा जंग को लेकर बड़ा दावा किया। ट्रंप ने दावा करते हुए कहा है कि बोर्ड ऑफ पीस की मध्यस्थता में हमास और अन्य हथियारबंद संगठनों के पूरी तरह हथियार रखने पर ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसके बाद इजराइल की सेना चरणबद्ध तरीके से गाजा से हटेगी और नई फिलिस्तीनी सरकार का गठन होगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेबिलाइजेशन फोर्स और नई फिलिस्तीनी पुलिस मिलकर गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनका कहना है कि इससे इसराइल की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और गाजा का इस्तेमाल भविष्य में किसी आतंकी हमले के अड्डे के रूप में नहीं हो सकेगा। बात कर लेते हैं ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की। दरअसल भारतीय एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन अभी भी जारी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में लवप्रीत सिंह ने भारत को सिल्वर मेडल दिला दिया है। लवप्रीत ने पुरुष वेटलिफ्टिंग की 110 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 388 किलोग्राम वजन उठाकर मेडल अपने नाम किया। वहीं महिलाओं के डिस्कस थ्रो इवेंट में सीमा ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। सीमा ने अपने तीसरे प्रयास में 58.65 मीटर थ्रो कर ये मुकाम हासिल किया। इस ब्रॉन्ज के बाद भारत के 17 मेडल हो गए हैं, इनमें 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। भारत 10वें स्थान पर पहुंच चुका है। तो वहीं भारत के नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स के जैवलिन थ्रो फाइनल में पहुंच चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सुपर 8 में। अब वक्त हो गया है फटाफट खबरों का।

0: गुजरात के पंचमहल में हाईवे पर स्थित एक होटल में नशे में धुत लोग ने जमकर मचाया तांडव। पांच युवकों ने होटल में जमकर तोड़फोड़ की, कैश और लैपटॉप लूटकर फरार। मुजफ्फरनगर में दो बदमाशों ने मंदिर से घर लौट रही एक महिला के कान के झुमके छीने, स्नैचिंग की घटना सीसीटीवी में कैद। हरिद्वार में अचानक धसी सड़क में महिला समाई, घटना सीसीटीवी में हुआ कैद। अलवर में युवकों ने एक स्टूडेंट को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, लाठी डंडों से किया वार, घटना का वीडियो हुआ वायरल। जयपुर में तेज रफ्तार एसयूवी ने स्कूटी सवार युवक को उड़ाया, दर्दनाक मौत, खौफनाक मंजर सीसीटीवी में कैद। फतेहपुर में 16 साल की छात्रा लापता, प्रोटेस्ट वाले दिन घर से स्कूल के लिए निकली थी छात्रा, जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में जमीनी विवाद में एक ही समुदाय के दो गुट आपस में भिड़े, लाठी डंडों से जमकर हुई मारपीट, वीडियो वायरल। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोयला खदान में हुए धमाके में कम से कम 11 मजदूरों की मौत, जबकि 25 से अधिक मजदूर लापता, राहत और बचाव अभियान जारी। सुपर 8 में आप वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
2: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
3: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
4: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
5: देख, इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
6: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
5: अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह,
7: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
8: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
9: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
10: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
11: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर की
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: इन एसोसिएशन विद
5: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sarah Sanitary Wear, it's your moment of Sarah.
6: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
7: कि विपक्ष की भूमिका नकारात्मक है, जब से सत्र शुरू हुआ है तब से, यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। और इसके साथ साथ मैंने यह भी देखा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इसकी इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और यह इसी सत्र की बात नहीं है, जितने भी पीछे सत्र हुए हैं सभी में सरकार ने हमेशा हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार रही है। और जब जब जिस विषय पर चर्चा हुई है उस पर विपक्ष ने मुंह की खाई है, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है। दे आर इशूलेस,

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल। विपक्ष के वॉकआउट के बाद ध्वनिमत से पारित। राष्ट्रपति की मुहर के बाद बन जाएगा कानून। संसद से बिल पास होने के बाद पीएम मोदी का नया वीडियो संदेश। कहा पेपर लीक गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। हर राज्य इससे परेशान। शिक्षा को लेकर लगातार उठ रहे हैं कदम। मंत्री पर असंसदीय शब्द के इस्तेमाल में राहुल पर हो सकता है एक्शन। अनुराग ठाकुर ने विशेष अधिकार हनन का दिया नोटिस। प्रियंका के गौमूत्र वाले बयान के खिलाफ 215 वाइस चांसलर्स की चिट्ठी। प्रदर्शनकारी छात्रों को दिल्ली सरकार ने दी बड़ी राहत। नहीं होगी पुलिस कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड वाले मामलों का होगा एक्शन। मुंबई के पास भिवंडी में गिरी 4 मंजिला इमारत। मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। कई की मौत हुई। रेस्क्यू की वजह से जुटी एनडीआरएफ और पुलिस की टीम। नॉनस्टॉप 100 से पहले वक्त हो गया है इस वक्त की एक बड़ी खबर का। दरअसल हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने पीएम मोदी के एआई मॉफ वीडियो मामले में मेटा इंडिया के हेड के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके साथ ही कई सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पीएम मोदी के एआई और मॉक वीडियो को लेकर केस दर्ज हुआ हैदराबाद में। कई सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ भी केस दर्ज किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्त हो गया है नॉनस्टॉप 100 का।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: महाराष्ट्र के भिवंडी में ढही 4 मंजिला इमारत। मलबे में करीब 5 मजदूरों के फंसे होने की आशंका। 3 की मौत। एनडीआरएफ पुलिस और फायर ब्रिगेड का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। देर रात से मलबा हटाने का काम जारी। स्थानीय लोगों ने मरम्मत कार्य पर उठाए सवाल। जेल स्थानीय लोगों का दावा है कि मरम्मत के दौरान तोड़े गए थे 3 मुख्य पिलर। नेपाल के सुनसुरी से शुरू हुई हिंसा कई शहरों तक फैली। अब तक 3 लोगों की मौत जबकि कई लोग घायल। 6 से ज्यादा शहरों में कर्फ्यू। इंद्रवा, जनकपुर, सिरहा, गोलबाजार और साथ ही लहान में हालात तनावपूर्ण। पीएम ने की शांति बनाए रखने की अपील। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी लोक परीक्षा संशोधन बिल हुआ पास। लगातार 9वें दिन संसद में पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान हंगामा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। बोले माहौल ठंडा करने के लिए लाए गए बिल लेकिन ये अभी भी अधूरा। खड़गे ने छात्रों पर लाठीचार्ज पर सुनाई कविता। कहा पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पिटते रहे। ये कैसा न्याय है, ये कैसी रीति। गुनहगार हंसते रहे, मासूम सिसकते रहे। खड़गे ने अमित शाह पर साधा निशाना। कहा बहुत दिनों तक छिप नहीं सकते हैं, खींच कर लाएंगे बाहर। भाषण के दौरान खड़गे के मनुस्मृति को लेकर दिए गए बयान पर भड़की बीजेपी ने माफी की मांग की। जेपी नड्डा ने कहा ऐसे बयान से पहले ही अशांति। खड़गे बोले देश में फिक्स एग्जाम कैलेंडर होना चाहिए। परीक्षा गड़बड़ियों की सुप्रीम कोर्ट में निगरानी में हाई पावर कमेटी से जांच की मांग। लोकसभा में ध्वनिमत से पास हुआ वंदे मातरम बिल। राज्यसभा में पहले ही मंजूर हो चुका है विधेयक। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र पर बड़ा आरोप। बोले सरकार देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कर रही है कोशिश। संविधान में किसी को मजबूर करने की अनुमति नहीं। वंदे मातरम बिल के विरोध में डीएमके सांसद कनिमोजी बोली राष्ट्रवाद का दिखावा, हिंदुत्व का एजेंडा। संसद के मानसून सत्र में पेश नहीं होगा एक देश एक चुनाव बिल। बढ़ाया गया जेपीसी का कार्यकाल। शीतकालीन सत्र के अंतिम हफ्ते के पहले दिन तक जेपीसी को सौंपनी होगी रिपोर्ट। हंगामेदार मानसून सत्र में राहुल की टिप्पणी पर भड़के अनुराग ठाकुर। विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस। असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का लगाया गया आरोप। जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर पैलेट गन के कथित इस्तेमाल के विरोध में भारतीय युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। सीजेपी प्रदर्शन में शामिल लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। दिल्ली सरकार इनके खिलाफ नहीं करेगी कानूनी कार्रवाई। आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों पर लागू। आईआईटी मद्रास डायरेक्टर पर प्रियंका गांधी के गोमूत्र वाले बयान का विरोध। कई कुलपतियों और शिक्षाविदों समेत 215 लोगों ने लिखा है खुला पत्र। कहा विचारों पर गंभीरता से हो बहस। बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने नीट पेपर लीक मामले पर अपनी चुप्पी का कारण बताया। बोले उनका काम सवाल पूछना नहीं है, समाधान देना है। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले दिखावटी सुधारों से काम नहीं चलेगा। बीमारी की जड़ को ही खत्म करना होगा और एनटीए को बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर बैठक। सीएमडी के शिव कुमार भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में कुल 71.44% मतदान, 2.20 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने डाले वोट। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट उपचुनाव में कुल 34.30% मतदान दर्ज और 3 अगस्त को आएंगे इसके नतीजे। गाजीपुर दौरे पर सीएम योगी 268 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास, लाभार्थियों को बांटे मंजूरी पत्र और प्रमाण पत्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की मुंबई को नशा मुक्त बनाने की मुहिम शुरू, सीएम फडणवीस ने छात्रों से ड्रग्स को ना कहने की अपील की। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा अहम फैसला, अगले हफ्ते इस मामले पर विस्तार से होगी सुनवाई। शिवसेना यूबीटी सांसदों के वेले विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को सुनवाई। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर शिंदे और ठाकरे गुट में है मतभेद। रीनीट परिणाम को चुनौती देने वाली चारों याचिकाएं खारिज, बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर लगाया ₹5,000 का जुर्माना। महाराष्ट्र में स्कूल कैंटीन के लिए एफडीए लाइसेंस अनिवार्य, 50 मीटर दायरे में जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक, एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक मामले में सभी 14 आरोपियों की भिवंडी कोर्ट में पेशी, 3 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए। नागपुर में आरक्षण हटाओ आंदोलन के तहत छात्रों का प्रदर्शन, सोशल मीडिया के माध्यम से जुटे प्रदर्शनकारी 0 माइल चौक से संविधान चौक तक पहुंचे और जोरदार नारेबाजी की। बुलढाणा में अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण के विरोध में विशाल मोर्चा, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। वही गुजरात के मांजलपुर उपचुनाव में मतदान केंद्र पर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, कांग्रेस समर्थक से मारपीट का भी आरोप। ऐतिहासिक भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष को भोजशाला से सटी हुई जमीन नमाज के लिए अदा की गई, 1 से 3 बजे तक नमाज अदा की जाएगी। एमपी के धार भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फिर से सुनवाई, कोर्ट ने कहा शुक्रवार की नमाज के लिए विवादित परिसर से सटी जमीन पर व्यवस्था करे एमपी सरकार। सफाई कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में पंजाब बंद का भारी असर देखने को मिला, शहर के मुख्य बाजारों सहित अधिकांश दुकान रही बंद। गया में सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं का बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर अनुमंडल कार्यालय पर प्रदर्शन और खराब चापाकल, टूटे पंखे जैसी समस्याओं पर मांगा जवाब। एफबीआई ने ऑपरेशन हार्डबॉल में जग्गू के नेटवर्क पर अमेरिका, यूरोप और कनाडा में कसा था शिकंजा, एक और भारतीय नागरिक को एफबीआई ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाला। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून के बादलों में डेरा, दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक आज हल्की से भारी बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी, शिमला, ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। गुजरात के 13 जिलों में आज से 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, अहमदाबाद में आज स्कूल कॉलेज में छुट्टी के आदेश। गुजरात में भारी बारिश के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट, प्रभावित जिलों में सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश। महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में भारी बारिश से नदियां उफान पर, एक शख्स बाढ़ के पानी में बहा, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला शव। आईएमडी ने उत्तर तेलंगाना के 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया, हैदराबाद समेत कई इलाके बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा शहर में ताजा बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना, बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट। बारिश के दौरान दिल्ली में बढ़ने लगा है यमुना का जलस्तर, कालिंदी कुंज घाट पर 2 दिनों में 20 फीट तक बढ़ा पानी। हथनी कुंड बैराज में पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में यमुना के बहाव में हुई तेजी, अगले 2 से 3 दिनों में यमुना में और पानी बढ़ने का अनुमान। ओडिशा के टिटलागढ़ में बाढ़ का कहर, कई इलाकों में हालात बिगड़े, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। पवित्र गुफा के पास बारिश के कारण पानी का स्तर अचानक से बढ़ा, इलाके में बाढ़ जैसे हालात, अमरनाथ गुफा के आसपास बारिश जारी। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण तेलंगाना के कुमरुम भीम आसिफाबाद में जनजीवन प्रभावित हुआ, नदी नालों में उफान से निचले इलाके जलमग्न। राजस्थान के कई जिलों में आफत की बारिश, अलवर में पानी में फंसी हुई यात्रियों से भरी बस, जेसीबी से किया गया रेस्क्यू। हरिद्वार में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से सूखी नदी उफान पर, कई वाहन बहे, क्रेन की मदद से गाड़ियों को निकाला जा रहा है बाहर। आस्था और भक्ति के महीने सावन का आज दूसरा दिन, मंदिरों में दर्शन और जलाभिषेक के लिए सुबह से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की, 12 अगस्त तक राजधानी के कई मार्ग पर रूट डायवर्ट, भारी ट्रांसपोर्ट वाहनों की आवाजाही पर रोक। 9 अगस्त की सुबह 7 बजे से 12 अगस्त की रात 8 बजे तक आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी दिल्ली का जीटी रोड। उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, एआई कैमरों की मदद से किया जा रहा है सर्विलांस। पवित्र सावन महीने में कांवड़ यात्रा में शिव भक्त ने दिखाई सेवा और श्रद्धा की अनूठी तस्वीर, बुजुर्ग दादी को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से दिल्ली जा रहा है पोता। महाराष्ट्र के बुलढाणा में किसान संगठन के जिला अध्यक्ष ने बैंक मैनेजर को मारा थप्पड़, घटना की तस्वीरें आई सामने। बैंक मैनेजर के बचाव में आए कर्मचारियों को भी थप्पड़ मारने का आरोप, बैंक स्टाफ ने धरना देकर की कार्रवाई की मांग। जालना में बारिश के बीच बिजली के खंभे पर चढ़ा लाइनमैन, जान जोखिम में डालकर बहाल की बिजली सप्लाई। कुशीनगर में शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप, नाराज छात्रा ने शिक्षक को चप्पलों से पीटा। पुलिस ने शिक्षक पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की, शिक्षक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गुजरात के पंचमहल में हाईवे पर स्थित एक होटल में नशे में धुत लोग ने जमकर मचाया तांडव, पांच युवकों ने होटल में जमकर तोड़फोड़ की। मुजफ्फरनगर में दो बदमाशों ने मंदिर से घर लौट रही एक महिला के कान के झुमके छीने, स्नैचिंग की घटना सीसीटीवी में कैद। अलवर में युवकों ने एक स्टूडेंट को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, लाठी डंडों से किया वार, घटना का वीडियो सामने आया। जयपुर में तेज बारिश के बीच तेज रफ्तार एसयूवी ने स्कूटी सवार युवक को मारी जोरदार टक्कर, गाड़ी सहित कई फीट दूर जा गिरा युवक, मौके पर गई जान। गुजरात के बनासकांठा में कार बाइक की भीषण टक्कर, मंदिर से लौट रहे युवक युवती की मौत। गुजरात के आणंद में एक घर के बाथरूम में घुसा मगरमच्छ, वन विभाग और दया फाउंडेशन ने सुरक्षित रेस्क्यू कर तालाब में छोड़ा। राजकोट में तेज रफ्तार रिक्शा ने सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर, घटना कैमरे में कैद। अरावली में अधूरी सड़क के विरोध में ग्रामीणों ने किया रोड जाम, हादसे में ड्राइवर की मौत के बाद फूटा गुस्सा। मिर्जापुर में हाईवे पर घर के बाहर सो रहे पिता पुत्र को रौंदते हुए अनियंत्रित कंटेनर घर में घुसा, भीषण हादसे में दोनों की मौत। जयपुर से इंसानियत को झकझोर कर देने वाली वारदात आई सामने, बेटे की चाहत में पिता ने अस्पताल में 13 घंटे की नवजात बेटी का गला दबाकर की हत्या। झांसी में इनामी सुपारी का हाफ एनकाउंटर रेस्टोरेंट में घुसकर ग्राम प्रधान के बेटे की हत्या की थी, गोली लगने से हुआ था घायल। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक ही घर में 31 सांप निकलने की वजह से हड़कंप मचा, घटना के बाद भय के माहौल में परिवार। कर्नाटक के यादगीर में बस सेवा न मिलने और बसों द्वारा स्टॉप पर न रुकने से नाराज छात्रों ने स्टेट हाईवे किया जाम, यातायात प्रभावित। धोई ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज मेडल मिला, अब तक कुल 17 मेडल भारत के नाम। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल, सबसे ज्यादा मेडल वेटलिफ्टिंग मुकाबले में मिले। लवप्रीत सिंह ने वेटलिफ्टिंग में भारत को दिलाया 10वां सिल्वर मेडल, पुरुष के 110 किलो कैटेगरी में 388 किलोग्राम वजन उठाया। डिस्कस थ्रो में सीमा ने भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल, 58.65 मीटर किया थ्रो। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में जैवलिन थ्रो मुकाबले में नीरज चोपड़ा समेत भारत के 3 खिलाड़ियों ने किया क्वालिफाई, फाइनल आज देर रात 12:45 पर खेला जाएगा। तो वहीं क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम को पछाड़ा, नीरज ने 79.61 मीटर का बेस्ट थ्रो किया। वहीं जैवलिन थ्रो में भारत के रोहित यादव और यशवीर सिंह भी फाइनल में पहुंचे। क्वालिफिकेशन राउंड में रोहित ने 78.37 मीटर और यशवीर ने 78.36 मीटर भाला फेंका। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के बॉक्सर्स ने किया कमाल का प्रदर्शन, 10 मेडल मिलना तय। भारत बनेगा ऐतिहासिक फुटबॉल मैच का गवाह, 3 अक्टूबर को कोलकाता में भारत के खिलाफ एक फीफा मेंस इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेलेगी 5 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन ब्राजील। अब रेड बॉल क्रिकेट में दिखेगा वैभव सूर्यवंशी का जलवा, 23 अगस्त से दिलीप ट्रॉफी में दिखाएंगे अपना जलवा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 31 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, रात के 10:31 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, शाम के 7:26 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 6:28 तक। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, करियर में लाभ होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा पर जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, करियर में लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, ऑफिस में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, किसी अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होता जाएगा, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तुला राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, काम का दबाव बढ़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे, करियर में लाभ के योग हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, धन के खर्चों पर ध्यान दें, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

लोग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, करियर में लापरवाही ना करें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे।
2: लोकसभा में राहुल गांधी के बाद राज्यसभा में अमित शाह के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे के तेवर ये थे।
1: ये जनशक्ति आपको खींच के लाएगी।
2: खड़गे के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने लिखा है कि कांग्रेस ने हदें लांघ दी है, ये अर्बन नक्सल की भाषा है। लेकिन आज संसद में विपक्ष का सवाल यही था, ऑर्डर किसने दिया? यानी सीजेपी प्रोटेस्ट के पुलिस एक्शन पर अमित शाह को जिम्मेदार ठहराए जाने की राहुल गांधी की रणनीति को विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाने का नया जरिया बना लिया है। पेपर लीक बिल पर खड़गे ने भी राज्यसभा में अमित शाह का इस्तीफा मांगा।
1: अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो सफाई नहीं दे सकते यहाँ कर, वो सदन में आके ही देना, मैं बाहर पूछूं थोड़ी, तो आना और वो देना चाहिए। और खासकर इस कारणों के लिए, इस वजह से वो जिम्मेदार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री उनको पूछना चाहिए।
2: राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो डालकर लिखा, छात्र न्याय के हकदार हैं। छात्रों के साथ हुई बर्बरता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। एक दूसरी पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, अमित शाह संसद में आकर छात्रों के खिलाफ हुई बर्बर हिंसा पर जवाब देने से इतना क्यों बच रहे हैं, यह अपराध बोध की ओर इशारा करती है। पेपर लीक बिल पर लोकसभा में अपने भाषण और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी अमित शाह को हटाए जाने की मांग कर चुके हैं।
3: शाह मस्ट गो, देयर इज नो एम्बिग्युइटी हियर, देयर इज नो कंफ्यूजन।
4: ये लड़ाई कितनी दूर तक ले जाएंगे फिर आप?
3: जब तक जानी पड़ेगी, बट द पर्सन हु हैज डन दिस, ही हैज शॉट आवर स्टूडेंट्स, ही इज गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल टुडे और टुमारो।
2: धर्मेंद्र प्रधान के बाद अमित शाह पर हमला सरकार को चारों ओर से घेरने की रणनीति है, जबकि सरकार के मुताबिक विपक्ष मुद्दा विहीन है।
5: जब से सत्र शुरू हुआ है तब से यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। और इसके साथ साथ मैंने यह भी देखा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इसकी इनकी आदत है।
2: इस बीच पैलेट गन पर आरएएफ के एक्शन पर घिरी सीआरपीएफ के डीजी ने जवानों को एक बड़ा संदेश दिया है।
6: मैं बल के महानिदेशक, बल के प्रमुख के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बल हित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है।
2: पेपर लीक के मुद्दे से शुरू हुई लड़ाई के बीच सीजेपी प्रोटेस्ट की 20 जुलाई की कुछ नई सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि संसद भवन से 100 मीटर की दूरी पर हजारों प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। रेल भवन के पास सेल्फी पॉइंट्स तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। संसद भवन के आसपास के 5 सीसीटीवी फुटेज से यह खुलासा हुआ है। इस बीच एफआरएस यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वैन से सामने आए आंकड़ों के मुताबिक 20 जुलाई को सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान 2873 आपराधिक मामलों वाले लोग मौजूद थे। इनमें हत्या के 101 आरोपी, डकैती के 284 आरोपी, रेप के 61 आरोपी और किडनैपिंग के 19 आरोपी शामिल हैं। आज तक ब्यूरो।
7: उनको सदन में गृह मंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए और देश की जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास किया उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन में कोई गोली नहीं चली और किसी भी इस तरह की कार्रवाई का अधिकार वहां के लोकल डीएम के पास होता है तो आज बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन कांग्रेस का भी बच्चा नहीं जानता।
8: एक पुरानी कहानी है कि एक समूह बच्चों का चिल्ला रहा था, मेरे देश का राजा चोर है, देश का राजा चोर है, मेरे भी नहीं, देश का राजा चोर है। तो पुलिस ने पकड़ लिया, बोला सर हम तो फलाना देश की बात कर रहे थे। बोले बेवकूफ समझ रखा क्या, हमको नहीं पता था। तो एक संदर्भ से अलग उन्होंने बात रखी, आपने वो उड़ता तीर ले लिया, तो आप तो उनकी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल, विपक्ष के वॉकआउट के बाद ध्वनि मति से पारित, राष्ट्रपति के मुहर के बाद बन जाएगा कानून। संसद से बिल पास होने के बाद पीएम मोदी का नया वीडियो संदेश, कहा पेपर लीक गैंग को बख्शा नहीं जाएगा, हर राज्य इससे परेशान, शिक्षा को लेकर लगातार उठ रहे हैं कदम। गृहमंत्री पर असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल में राहुल पर हो सकता है एक्शन, अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस, प्रियंका के गौमूत्र वाले बयान के खिलाफ 215 वाइस चांसलर्स की चिट्ठी। प्रदर्शनकारी छात्रों को दिल्ली सरकार ने दी बड़ी राहत, नहीं होगा पुलिस एक्शन, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर होगा एक्शन। मुंबई के पास भिवंडी में गिरी चार मंजिले इमारत, मलबे से छह लोग निकाले गए, तीन की मौत, बिल्डिंग में चल रहा था मरम्मत का काम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद भारत।
0: नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम टाइम के सुपर हिट शो 9 बज गए में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मानशु दीक्षित, बिना ब्रेक के आपकी पसंदीदा ब्रेकफास्ट न्यूज शो में देश और दुनिया की बड़ी और जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। खबरें रफ्तार से होंगी, विस्तार से भी होंगी, लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की झलकियों पर एक नजर डालते हैं। कांग्रेस के दो अहम चेहरों की घेराबंदी, राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस, प्रियंका के खिलाफ 215 शिक्षाविदों की चिट्ठी, डिटेल में हम आपको आगे बताएंगे। मुंबई में मौत की इमारत, भिवंडी में हादसा, दिखाएंगे रेस्क्यू ऑपरेशन की ताजा रिपोर्ट, साथ ही राजस्थान के झुंझुनू में लोगों ने क्यों दी एक कार को फांसी, ये खबर भी हम आपको दिखाएंगे। और ठीक आधे घंटे बाद यानी सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर आपके लिए, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत मुंबई से सटे भिवंडी से आ रही एक बड़ी खबर से करते हैं। भिवंडी में एक बड़ा हादसा हुआ, कोहिनूर नाम की चार मंजिला इमारत गिर गई, हादसे में मृतकों की संख्या 3 पहुंच चुकी है, मलबे में और भी लोगों के दबे होने की अभी आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो इमारत के मलबे में 8 से 10 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर जारी है, एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है, भिवंडी पुलिस एनडीआरएफ की टीम का साथ दे रही है, फायर ब्रिगेड की टीम भी उनकी मदद कर रही है, और स्थानीय लोगों का यह कहना है कि पिछले कई दिनों से इमारत की मरम्मत का काम चल रहा था और ठेकेदार जो कामगार जो मिस्त्री हैं उन्होंने इमारत के मेन पिलर को तोड़ दिया था, जिससे इमारत अपनी मजबूती खो बैठी और आखिरकार वही हुआ जो होना था, भरभरा कर गिर गई, कई लोगों की जान चली गई। और अभी भी स्थानीय लोग बता रहे, क्योंकि वो रोज रहते हैं, उनको पता है, तो उनका यह कहना है कि और भी कई लोग इसमें दबे हुए हो सकते हैं। जहां रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, जहां हादसा हुआ, वहां से हमारी सहयोगी विद्या हमारे साथ मौके पर मौजूद है। विद्या, भी मौके पर क्या हालात हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? विद्या, सुन पा रही हैं आप? दोबारा जोड़ने की कोशिश करें, लेकिन मौके से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
2: थाने के भिवंडी इलाके में है, यहाँ पर गुरुवार शाम अचानक से एक बिल्डिंग के जर्जर होने की खबर आई थी, और जिसके बाद जो असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर हैं इलाके के भिवंडी निजामुद्दीन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, वो यहाँ तुरंत पहुंचे मौके पर, और उन्होंने देखा कि इमारत, ये जो इमारत है चार मंजिला इमारत है, जो दरअसल कुछ क्रैक कर रही थी, गिर रही थी, तो उन्होंने तुरंत घुस के अपने लोगों के साथ, जो पूरे चार फ्लोर पे लोग रहते हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए उनको निकाला, कुछ लोग नहीं निकले, ऐसा बताया यही जा रहा है कि इनके निकलने के दौर के जैसे ही वो अधिकारी लोग यहाँ से निकले, वैसे ही यहाँ इमारत अचानक से भरभरा के गिर गई, और इसकी वजह से जो कुछ वर्कर्स जो उस समय नहीं निकले थे यहाँ से, उन वो अंदर दबे हुए थे। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो लोग हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस इमारत में दरअसल इलीगल रिपेयर वर्क चल रहा था, जो कि एक बहुत बड़ा इश्यू था, क्योंकि ये एक तरीका होता है, साइंटिफिक तरीका होता है, जिसके जरिए पूरा रिपेयर वर्क किया जाता है। कोई
0: तो विद्या की रिपोर्ट आप देख रहे थे, विद्या हमारे साथ जिस जगह यह हादसा हुआ वहां से जुड़ चुकी हैं। विद्या, अभी अभी हालात क्या हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है?
2: जी बिल्कुल, देखिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 6 लोगों को यहाँ से निकाला गया है और इनका यही कहना है कि जो एनडीआरएफ की टीम है, आप देख लीजिए अभी भी एनडीआरएफ टीडीआरएफ से लेकर सभी अधिकारी फिलहाल ऑपरेशन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन उसमें लगे हुए हैं। कोशिश इनकी यही है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए ताकि जितना समय गुजरेगा उसमें लोगों की परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी और यही वजह है कि उनका यही कहना है कि कोशिश पूरी यही है कि जल्द से जल्द, जैसे ही आप देख लीजिए बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया जा रहा है, जैसे ही वहां पे किसी का की बॉडी का कोई पार्ट दिखता है वैसे ही तुरंत सारा जो ऑपरेशन है उसके तहत वो जो एम्बुलेंस है उसको लाया जाता है, तुरंत एम्बुलेंस में जो पर्सन है उसको रख के तुरंत जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है यहाँ पे पास में वहां ले जाया जाता है। ज्यादातर जो बॉडीज यहाँ पे अभी निकली है वो लोग यही कह रहे हैं कि उसकी अवस्था इतनी ये नहीं है और यही वजह है कि तकरीबन 3 लोगों को अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि डिक्लेयर कर दिया गया है
0: लेकिन
2: कि
0: अभी भी कई लोग उसमें दबे हुए हैं जिनको बचाने के लिए जद्दोजहद चल रही हो, जैसा कि विद्या की रिपोर्ट में हम देख भी रहे थे। शुक्रिया विद्या आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से, जहां दक्षिणेश्वरी रेलवे स्टेशन पर ओवरहेड वायर टूटने से अफरा तफरी मच गई। रात 10:30 के आसपास अचानक दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन के डाउन लाइन पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर तेज धमाके के साथ टूट गया। ये देखिए, अब वायर टूटते ही तेज चिंगारियां धुआं उठने लगा, स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। घबराए यात्री जान बचाने के लिए भागते दिखे। सियालदह डांगपुरी रेल रूट के ये रेल रूट है और समय रहते बिजली सप्लाई काट दी गई जिससे बड़ा हादसा टल गया, लेकिन जब हुआ यह हादसा उस वक्त देखिए कैसे अफरा तफरी मची। और सुनिए भी, इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, कैसे हुआ यह हादसा और अब क्या कहा जा रहा है रेलवे की तरफ से?
3: देखिए, जिस तरह से ये विजुअल जो है अभी सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है और जो यात्री थे उन्होंने मोबाइल फोन से इस विजुअल को कैप्चर किया था। हादसा जब हुआ था उस वक्त की तस्वीर ये है दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन का, जहां पे ये लोकल ट्रेन खड़ी हुई थी प्लेटफॉर्म में और ओवरहेड जो इलेक्ट्रिक वायर है वो गिर गई तब, और उसके बाद किस तरह से वहां पे स्पार्क देखने को मिला था जिसमें अफरा तफरी का माहौल फैल गया, लोगों में काफी दहशत था। हालांकि लकीली कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ और जिस लाइन में ये हुआ था वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है इलेक्ट्रिक सप्लाई वो बंद कर दिया गया और फिर रेलवे अथॉरिटीज के जो टेक्निकल टीम है वहां पे वो जाके इस पूरे रिस्टोरेशन सर्विस को उन्होंने अंजाम दिया। कुछ देर के लिए जो सियालदह डांगपुरी के बीच में जो लोकल ट्रेन सर्विस है वो बंद कर दिया गया था और उसके बाद जब इलेक्ट्रिक सप्लाई रिस्टोर हुआ और इस लाइन को सही मरामत कर दिया गया उसके बाद जो नॉर्मल सर्विस है वहां पे शुरू हो गई। ये घटना बुधवार को 8:30 से 9 के बीच में हुआ था जिसके वजह से करीबन 10:30 तक जो लोकल ट्रेन की आवाजाही है डांगपुनिया सियालदह के बीच में उस पर रोक लगाई दी गई।
0: अब बहुत अच्छी बात तो ये रही कि कहीं कोई घायल नहीं हुआ, किसी को कोई समस्या नहीं हुई। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात अब कर लेते हैं पीएम मोदी के संबोधन की। पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो जारी किया है। संसद के दोनों सदनों में एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने नया वीडियो संदेश जारी किया। पीएम ने कहा पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कई दशकों से हर राज्य केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रही है। बच्चों के भविष्य पर भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है, एक वीडियो जारी करते हुए पीएम मोदी ने कहा। और आजकल पीएम मोदी इंटरेक्शन भी कर रहे हैं छात्रों से, युवाओं से।
4: साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम मान्य सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और आइए बात कर लेते हैं संसद में जारी संग्राम की। सरकार पर हमलावर कांग्रेस के दो चेहरों की घेराबंदी हो रही है, राहुल और प्रियंका। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया, जबकि प्रियंका गांधी को देश भर के 215 शिक्षाविदों ने खुली चिट्ठी लिख दी है, जिसमें कई मौजूदा और पूर्व कुलपति शामिल हैं। दोनों खबरों पर हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस से करते हैं।
5: आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है।
6: यू वॉन्ट सीटेड विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है।
7: दूसरे कौन के कोई लड़के नहीं है।
8: जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य
9: पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए पेपर लीक माफिया को सख्त सजा दिलाने वाला बिल संसद के दोनों सदनों में पास तो हो गया, लेकिन बवाल थमा नहीं है। बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान अभी भी पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग का केंद्र बना हुआ है। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर दिल्ली में 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोली चलाने का आदेश देने का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की थी।
10: मैंने तो सिर्फ ये पूछा है

0: पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है।
1: ये कांग्रेस की क्षुद्र मानसिकता, कांग्रेस की पराजित मानसिकता और फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद जिस प्रकार से वो कुंठाग्रस्त हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से, यह उसका परिचायक है। और हम ये कहना चाहेंगे उनसे कि चुनावी मैदान में होने वाली अपनी शिकस्त का इंतकाम गृह मंत्री जी के विरुद्ध इस ढंग के निंदनीय शब्दों से लेने की कोशिश सफल नहीं होने वाली।
2: संसद में शोर शराबे के बीच सरकार के लिए राहत की बात यह है कि संसद के दोनों सदनों से एंटी पेपर लीक बिल और वंदे मातरम से जुड़ा बिल पास हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या संसद में पक्ष विपक्ष में चल रहा संग्राम आज रुक पाएगा? आज तक ब्यूरो।
3: जितेंद्र माद्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, राहुल गांधी के खिलाफ अब अनुराग ठाकुर विशेषाधिकार हनन नोटिस ला रहे हैं, क्या तैयारी चल रही है सत्ता पक्ष की?
4: देखिए, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी पैलेट गन का उपयोग या फिर लाठी चार्ज को लेकर के विरोध उनके द्वारा किया जा रहा है, माना जा रहा है कि 10:30 बजे के आसपास संसद परिसर में विपक्षी पार्टियों के द्वारा आज फिर इसी मुद्दे को लेकर के वो लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और सदन के अंदर भी उनके द्वारा इस पूरे मामले को लेकर के मुद्दा उठाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया है बिना तथ्यों के आधार पर, इस तरीके से बीजेपी का कहना है कि उनके पास कोई भी तथ्य नहीं है और कोई भी सबूत नहीं है, वो सीधे सीधे किसी भी व्यक्ति का नाम जो है सदन के अंदर नहीं ले सकते हैं, ऐसे में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया गया है। यही नहीं, उन्होंने कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जब वो स्पीच दे रहे थे लोकसभा के अंदर, तो उन शब्दों को लेकर के भी अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उनके द्वारा संसदीय परंपरा के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है। इसी बात को लेकर के उन्होंने विशेषाधिकार हनन का जो है नोटिस वो लोकसभा स्पीकर को दिया है और उन्होंने मांग किया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना यह है कि इस पर किस तरीके से आगे कदम बढ़ता है, लेकिन अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं और स्थिति यहां पर यही दिखाई पड़ रही है कि आज भी जैसे हमने देखा कल राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ, इसके साथ साथ लोकसभा में भी लगातार हंगामा हो रहा था और सत्ता पक्ष की तरफ से हर एक तरीके की दलील दी जा रही थी, लेकिन विपक्ष उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा था।
3: यही आज अच्छी एक सार्थक चर्चा होती है कि नहीं होती है, इस पर सबकी नजर होगी। जितेंद्र, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी की बात हो गई, अब बात प्रियंका गांधी के उस बयान की जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर कामाकोटी को गौमूत्र विशेषज्ञ बताने वाले बयान से नाराज देश के 215 कुलपतियों और पूर्व कुलपतियों और शिक्षाविदों ने प्रियंका गांधी को एक खुला पत्र लिखा। शिक्षाविदों ने प्रियंका के बयान पर गहरी निराशा व्यक्त की और सार्वजनिक बहस के गिरते स्तर पर चिंता जताई। पत्र में कहा गया है कि किसी शिक्षाविद पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते वक्त तथ्य और उस व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रियंका को नसीहत दी गई है कि असहमतियों गरिमा के साथ रखी जाती हैं।
5: गोमूत्र विशेषज्ञ, मुझे लगता है ये हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम का पार्ट है और हमको तो इस पे प्राइड होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि हमारे इंडियन विजडम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समहाउ बीते बहुत समय तक हम लोग उसको वो सम्मान स्वयं से ना दे सके, और जब बहुत बार एडवांस मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्चेस बाहर से जब आने लगे तो हमने उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया।
6: मांग यही की गई है कि ये जो है टिप्पणी की है उसके बारे में वो माफी मांगे और दोबारा ऐसे कोई भी शब्द कोई भी ना बोले, इसी के बारे में सबने ये लिखा है।
7: प्रोफेसर कामाकोटी के विषय में पार्लियामेंट में कुछ बातचीत हुई और इस तरह से भी कुछ उनको एड्रेस किया गया जो काफी डेरोगेटरी है अपने टर्म्स में। ऐसा एक लेटर साइन हुआ है और देश के जो बड़े शिक्षाविद हैं, वाइस चांसलर, डायरेक्टर्स,

0: जैसे पदों पर हैं या रहे हैं, उन लोगों ने, उनके मन में इसको लेकर के एक वेदना है, एक पीड़ा है, और उन लोगों ने वो लेटर जो है निश्चित रूप से साइन करके भेजा है।
1: और अब बात वंदे मातरम पर संग्राम की करते हैं। क्या लोकसभा ने भी वंदे मातरम बिल पास हो गया वहां? अब लोकसभा ने ध्वनि मत से यह बिल पारित हो गया, लेकिन विपक्ष इससे खुश नहीं है। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। लोकसभा में डीएमके की कड़ीमोई ने इस पर तीखी आपत्ति जताई।
2: मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद में बहुत बड़ी गलती की, बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको तो। और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है, तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, तो गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है।
3: वंदे मातरम बिल पर विरोध किसी को करना, विरोध करने का अधिकार है, जो विरोध करे उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन वो भारत के अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है, भारत के राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है, भारत के आजादी से जुड़ा हुआ है, भारत के चिन्ह से, प्रतीकात्मक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। इसलिए वंदे मातरम का विरोध करना उचित नहीं होगा।
1: देखिए, हम लोगों ने सुना होगा कि किसी अपराधी को फांसी हो गई, आपने भी सुना होगा, लेकिन क्या सड़क हादसे में किसी की मौत पर कार को फांसी की बात आपने सुनी? नहीं सुनी होगी, पक्का नहीं सुनी होगी। राजस्थान के झुंझुनू में लोगों ने कार को फांसी पर लटका दिया।
4: कभी किसी कार को फांसी देने के बारे में आपने सुना है? बिल्कुल नहीं सुना होगा। अब देख लीजिए राजस्थान के झुंझुनू की ये तस्वीर। क्रेन से 20 फीट की ऊंचाई पर लटकी कार, पहली नजर में लग सकता है कि हादसे के बाद कार को टो करके ले जाया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कार की सांकेतिक फांसी की तस्वीर है। हादसे में एक युवक की मौत से नाराज परिवार ने गुस्सा जताने के लिए ऐसा किया है। गाड़ी पर लाल रंग से मौत का सामान, 20 लाख का डिब्बा और खतरा लिखकर कार कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। खबर के मुताबिक 20 जुलाई को स्कॉर्पियो से एक भीषण हादसा हुआ था। ढूंढलोद बाईपास पर ये स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई और पलट गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार 21 साल के तरुण नायक की जान चली गई थी। तरुण के परिजनों का दावा है कि जब उसकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई, गाड़ी का एयरबैग नहीं खुला, जिससे तरुण की मौत हो गई।
5: आते टाइम रस्तम गेल दो टायर पार्ट को, जो गाड़ी अनियंत्रित होके और पोल के बिटकी और पलटा खाए 7-8 और फिर 150 मीटर तक रसड़ती गई है। इतो कदम होने के बाद में भी अरे गाड़ी का एयर बैग कौन खुल गया, तो अगर ये गाड़ी का एयर बैग खुल जाता तो मारो भाई बच जाता। तो ये मांगने लेके मैं उरा पूछा कि अगर तारी गलती के कारण अगर मारो भाई नहीं बचे, तो भी भाई के परिवार में भी का पिताजी भी को नहीं, वो आपके घर को खर्चो चलाना और वो खुद हो तो भी का परिवार ने मुआवजो मिलना चाहिए। आरिया जो गाड़ी है वो तारो डब्बो ले लो और डब्बो मान चाहे को नहीं।
4: परिवार कह रहा है कि उसे ना तो मुआवजा चाहिए और ना ही नई गाड़ी चाहिए, बल्कि इस हादसे के लिए जवाब और न्याय चाहिए। वहीं कार के शोरूम मैनेजर का कहना है कि कार की जांच के बाद ही पता चलेगा कि एयरबैग क्यों नहीं खुला, क्योंकि ये कार पहले भी हादसे का शिकार हो चुकी है और तब एयरबैग खुला था।
6: पार्टी का आक्षेप है कि इसके एयरबैग ओपन नहीं हुए। अब एयरबैग ओपन नहीं हुए उसका कारण जानने के लिए या उसका इम्पैक्ट इस तरह से था कि नहीं था, उसके लिए हमने पूरी रिपोर्ट बना के हमारे जो महिंद्रा के इंजीनियर्स हैं उनको भेजी है, वो उसका पूरा एनालिसिस करेंगे।
4: बेशक कार कंपनियों की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन ये भी जरूरी है कि सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त सावधान रहें। सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरों की जिंदगी का भी सवाल है। हिमांशु शर्मा, झुंझुनू, आज तक।
1: तो सिर्फ राजस्थान के झुंझुनू में कार पर घमासान नहीं है, बीएमसी में भी कार पर घमासान हो रहा है। विपक्ष का आरोप है कि नेता सदन 6 नई कार की मांग कर रहे हैं, जिससे बीएमसी के खजाने में 1.5 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जबकि बीजेपी यह कह रही है कि नेता विपक्ष ने ही लग्जरी कार की डिमांड रखी थी।
7: बीएमसी में नया विवाद, 1.5 करोड़ के कार अपग्रेड प्लान पर हो रहा है। नई कारों की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। सदन के नेता और बीजेपी पार्षद गणेश खनकर कह रहे हैं कि स्कॉर्पियो एन की जगह इनोवा क्रिस्टा कार की मांग उन्होंने नहीं बीएमसी में नेता प्रतिपक्ष किशोरी पेडनेकर ने की थी।
8: हमने कभी भी कि हमें स्पेसिफिकली यही गाड़ी चाहिए, हमने कोई मांग नहीं की थी। कुछ सदस्यों ने, विशेषतः हमारी विरोधी पक्ष नेता ने कहा था कि महिला होने के नाते मुझे वहां दिक्कत होती है, तो मेरे लिए कोई व्यवस्था करो।
7: हालांकि गणेश खनकर ने 28 जुलाई को बयान दिया था, जिसमें वो इनोवा क्रिस्टा कार की मांग की पुष्टि कर रहे हैं।
9: जे वैधानिक समितीचे अध्यक्ष आहेत, उपमहापौर आहेत, यांनी सर्वांनी मिळून आम्ही मागणी केली होती की आताच्या जी वाहनं आम्हाला दिलेली आहेत या गाड्या बदलण्यात याव्या, याविषयी तक्रार होती आणि त्या पद्धतीने प्रशासनाकडे आम्ही गटनेत्यांच्या बैठकीतही आम्ही मागणी केली होती। त्यानुसार आताच्या ज्या गाड्या आहेत या बदलून नवीन क्रिस्टा गाड्या घ्याव्यात असा माझ्या माहितीप्रमाणे प्रस्ताव येतोय।
7: ये 6 नई कार की मांग बीएमसी में नेता सदन, डिप्टी मेयर, नेता विपक्ष के साथ समितियों के अध्यक्षों के लिए हो रही थी। इन्हें जनवरी 2026 में स्कॉर्पियो एन कार दी गई थी, जिसे कथित तौर पर कम आरामदायक बताया गया था और सफर के दौरान पीठ दर्द का हवाला दिया था। अपग्रेडेड इनोवा क्रिस्टा कारों के लिए 1.5 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया था।
10: बीएमसी ने नेताओं के लिए 6 नई गाड़ियों का 1.5 करोड़ का प्रपोजल तो बना दिया है, लेकिन कोई भी नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि वो गाड़ियां उसको चाहिए। हालांकि ये स्कॉर्पियो गाड़ियां जो खड़ी हैं, ये 6 महीने पहले ही आई है, ये हाइब्रिड मॉडल की है, लेटेस्ट है और आप कह सकते हैं कि अच्छी कंडीशन में है, लेकिन फिर भी ये बात कही गई कुछ नेताओं की तरफ से कुछ मीटिंग में कि उन्हें पीठ दर्द होता है लंबे सफर की वजह से, इसलिए इनोवा कार चाहिए। लेकिन अब जब मामला तूल पकड़ चुका है तो कोई नेता ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ये डिमांड उन्होंने की थी। अब लीडर ऑफ द हाउस गणेश खनकर कह रहे थे, लीडर ऑफ अपोजिशन किशोरी पेडनेकर ने मांग की थी, जो कि किशोरी पेडनेकर डिनाई कर रही है। तो अब बीएमसी ये गाड़ी, नई गाड़ियां क्यों, किसके लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्चा कर मंगा रही है, एक बड़ा सवाल है।
1: बात पड़ोसी देश नेपाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा की करते हैं, जिसकी चपेट में अब नेपाल के कई जिले आ गए हैं। हिंसा की शुरुआत हुई सुनसरी जिले से, जिसने अब कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है और इसका दायरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। नेपाल में भड़की हिंसा में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है।
7: उग्र भीड़, सड़कों पर भारी बवाल, हिंसा, आगजनी और सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच जबरदस्त तनाव। ये तस्वीरें पड़ोसी देश नेपाल की हैं, जो साफ बता रही हैं कि सांप्रदायिक हिंसा के बाद बिहार से सटे नेपाल के तराई इलाके में कैसी स्थिति बनी हुई है। कहीं आगजनी हो रही है, कहीं तोड़फोड़, तो कहीं सड़कों पर उबाल नजर आ रहा है। रविवार को नेपाल में भड़की हिंसा का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार और प्रशासन लगातार हिंसा को काबू करने की कोशिश में लगा है। प्रभावित जिलों में सेना की तैनाती की गई है, लेकिन अब तक स्थिति काबू में नहीं आई है। भारत की सीमा से सटे कोशी और मधेश प्रांतों में हुई हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कई जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सभी संवेदनशील इलाकों की हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। लेकिन ना तो नेपाल में भड़का बवाल थम रहा है, न उपद्रव शांत हो रहा है। इस बीच खुद प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने वीडियो जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और साथ कहा कि लोग अफवाहों से बचें।
11: यस्तो संवेदनशील घड़ी में सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट असत्य अपुष्ट सूचना अफवाह घृणा फैलाउने सामग्री वा समुदाय बीच वैमनस्य बढाउने अभिव्यक्ति प्रचार प्रसार नगर्न नगराउन अनुरोध गर्दछु। साथै सरकारी निकायहरूबाट जारी भएका आधिकारिक तथ्य र सूचना मात्र विश्वास गर्न विशेष आग्रह गर्दछु।
7: दरअसल नेपालमा भड्की हिंसा की शुरुआत बीते रविवार को तब हुई जब कोशी प्रांत के सुनसरी जिले में दो धार्मिक समुदाय आमने सामने आ गए और हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत हो गई और देखते ही देखते इसकी आग नेपाल के कई जिलों तक फैल गई।
11: घटना भए लगत्तै सबै सुरक्षा निकायहरूले तत्काल घटनास्थलमा पुगेर परिस्थितिलाई सामान्य बनाउने, थप अप्रिय घटना हुन नदिने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रयास निरन्तर गरिरहेका छन्। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कानुनी कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ। म सबैमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो छानबिन पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र पारदर्शी हुनेछ। घटनामा संलग्न दोषी जो कोही भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ।
7: परिस्थितियोंको सामान्य बनाने की कोशिश जारी है। हिंसा फैलने के बाद नेपाल प्रशासन ने सिराहा, धनुषा और पर्सा समेत कई जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। हालात को सामान्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिर भी उपद्रव थम नहीं रहा। आज तक ब्यूरो।
1: तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, आगे बढ़ो उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।

संसद के दोनों सदनों से पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल, राष्ट्रपति की मोहर के बाद बनेगा कानून। पीएम मोदी का वीडियो संदेश, कहा लीक माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। गृहमंत्री पर असंसदीय शब्दों के आरोप में राहुल गांधी पर एक्शन संभव, अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस। प्रियंका के गौमूत्र वाले बयान के खिलाफ 215 वाइस चांसलर्स की चिट्ठी। प्रदर्शनकारी छात्रों को दिल्ली सरकार ने दी बड़ी राहत, नहीं होगी पुलिस कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर होगा एक्शन। मुंबई के पास भिवंडी में गिरी 4 मंजिला इमारत, एनडीआरएफ ने मलबे से 7 लोगों को बाहर निकाला, 6 की मौत, बिल्डिंग में चल रहा था मरम्मत का काम। कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने से उठे विवाद के बाद नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा, कई शहरों में बवाल और हंगामा, अब तक 3 की मौत, दर्जनों घायल।

संसद के दोनों सदनों से लोक परीक्षा संशोधन बिल पास होने के बाद पीएम मोदी का वीडियो संदेश, कहा बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, शिक्षा माफिया पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का केंद्र सरकार पर निशाना, बोले माहौल ठंडा करने के लिए लाए बिल लेकिन ये अभी भी अधूरा। खड़गे ने छात्रों पर लाठीचार्ज पर सुनाई कविता, कहा पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पिटते रहे, ये कैसा न्याय है, ये कैसी रीति, गुनहगार हंसते रहे, मासूम सिसकते रहे। खड़गे ने अमित शाह पर निशाना साधा, कहा बहुत दिनों तक छुपे नहीं रह सकते, खींच कर लाएंगे बाहर। भाषण के दौरान खड़गे के मनुस्मृति का हवाला देने पर भड़की बीजेपी ने की माफी की मांग, जेपी नड्डा ने कहा ऐसे बयान से फैलेगी अशांति। खड़गे बोले देश में फिक्स्ड एग्जाम कैलेंडर होना चाहिए, परीक्षा गड़बड़ियों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हाई पावर कमेटी से जांच की मांग की। लोकसभा में ध्वनि मत से पास हुआ वंदे मातरम बिल, राज्यसभा में पहले ही मंजूर हो चुका है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का केंद्र पर बड़ा आरोप, बोले सरकार देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कर रही है कोशिश, संविधान में किसी को मजबूर करने की अनुमति नहीं। वंदे मातरम बिल के विरोध में डीएमके सांसद कनिमोझी बोली, राष्ट्रवाद का दिखावा, हिंदुत्व का एजेंडा। संसद के मानसून सत्र में पेश नहीं होगा एक देश एक चुनाव बिल, बढ़ाया गया जेपीसी का कार्यकाल, शीतकालीन सत्र के अंतिम हफ्ते के पहले दिन तक जेपीसी को सौंपनी होगी रिपोर्ट। बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने नीट पेपर लीक मामले पर अपनी चुप्पी का कारण बताया, बोले उनका काम सवाल पूछना नहीं समाधान देना है। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले दिखावटी सुधारों से काम नहीं चलेगा, बीमारी की जड़ को ही खत्म करना होगा और एनटीए को बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की आवास पर बैठक, सीएम डीके शिवकुमार भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में स्कूल कैंटीन के लिए एफडीए लाइसेंस अनिवार्य, 50 मीटर दायरे में जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक, एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। यूपी विधानसभा सत्र से पहले 2 अगस्त को सर्वदलीय बैठक, स्पीकर सतीश महाना ने बुलाई बैठक, 3 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र, 4 अगस्त को पेश हो सकता है बजट। अयोध्या में चढ़ावे की चोरी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने बढ़ाई निगरानी, अब दान पात्र खोलने से लेकर रकम की गिनती तक पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले जनता से धोखे का नतीजा है खाली महफिल, चला चली की बेला समय से पहले आ गई। अखिलेश यादव का भदोही नाम बदलने पर तंज, बोले सिर्फ नाम बदलने से नहीं महापुरुषों के सिद्धांतों पर चलने से बदलाव आएगा। मेरठ में पहचान छुपाकर होटल चलाने का आरोप, हिंदू संगठन ने शुरू किया अभियान, कई होटलों में हंगामा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। कानपुर के मर्चेंट नेवी अधिकारी की मौत के बाद सांसद ने विदेश मंत्रालय से लगाई मदद की गुहार, पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए जयशंकर को पत्र लिखा। लखनऊ में नकली दवा सिंडिकेट का बंडाफोड़, फर्जी बिलिंग और ट्रांजेक्शन से चल रहा था कारोबार, एफएसटीए की कार्रवाई में 6 एफआईआर दर्ज, संदिग्ध दवा फर्मों पर रोक और जांच तेज। जंतर मंतर प्रदर्शन में पीएम के खिलाफ कथित आपत्तिजनक नारेबाजी का मामला, महिला पर 0 एफआईआर दर्ज, नोएडा में दर्ज एफआईआर, अब जांच के लिए संसद मार्ग थाने भेजी गई। बरेली में मौलाना ने पत्नी से विवाद के बाद खुद को लगाई आग, अस्पताल में मौत, सीसीटीवी फुटेज और आखिरी बयान के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। ऐतिहासिक भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष को भोजशाला से सटी हुई जमीन नमाज के लिए दी गई, 1 से 3 बजे तक नमाज अदा की जाएगी। मध्य प्रदेश की धार भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फिर सुनवाई, कोर्ट ने कहा शुक्रवार की नमाज के लिए विवादित परिसर से सटी जमीन पर व्यवस्था करे सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। सफाई कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में पंजाब बंद का भारी असर देखने को मिला, शहर के मुख्य बाजारों सहित अधिकांश दुकान बंद। गया में सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं का बुनियादी सुविधाओं की कर्म को लेकर अनुमंडल कार्यालय पर प्रदर्शन और खराब चापाकाल, टूटे पंखे जैसी समस्याओं पर जवाब मांगा। एफबीआई ने ऑपरेशन हार्ड बॉल में जग्गू भगवानपुरिया के नेटवर्क पर अमेरिका, यूरोप और कनाडा में कसा तशकंजा, एक और भारतीय नागरिक को एफबीआई ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाला। स्पेन के सेउटा में मानवीय आपातकाल घोषित, एक हफ्ते में पहुंचा 1500 प्रवासी, रिसेप्शन सेंटर फुल, सैकड़ों प्रवासी खुले में रहने को मजबूर, प्रशासन ने मांगी तत्काल मदद। नेपाल में फिर भड़की हिंसा, कई शहरों में बवाल और हंगामा, अब तक 3 लोगों की मौत, दर्जनों घायल, सांप्रदायिक हिंसा के बाद करीब 6 शहरों में कर्फ्यू। अमेरिका में अटॉर्नी जनरल पद के नामांकन को लेकर खींचतान जारी, राष्ट्रपति ट्रंप ने टॉड ब्लैंच की तारीफ करते हुए उन्हें स्टार बताया और कहा कि वो इतिहास के सबसे महान अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं। यूरोप में जंगल की आग से बड़ी तबाही, फ्रांस स्पेन में बड़े पैमाने पर रिहायशी इलाके जलकर खाक, तेज हवाओं और हीट वेव की वजह से आग पर काबू पाने में दिक्कत। जर्मनी में भीषण गर्मी का कहर, 2016 के बाद गर्मी में मौत का रिकॉर्ड टूटा, गर्मी से करीब 10,000 लोगों की मौत, 40 डिग्री पर टेम्परेचर। दिल्ली एनसीआर में मानसून के बादलों का डेरा, मौसम विभाग के मुताबिक आज हल्की से भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी, शिमला, ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट। गुजरात के 13 जिलों में आज से 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, अहमदाबाद में आज स्कूल कॉलेजों में छुट्टी के आदेश। गुजरात में भारी बारिश के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट पर, प्रभावित जिलों में अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश। महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया।
नांदेड़ जिले में भारी बारिश से नदियां उफान पर, एक शख्स ने बाढ़ के पानी में वो बह गया, 24 घंटे बाद भी शव नहीं मिला। आईएमडी ने उत्तर तेलंगाना में 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया, हैदराबाद समेत कई इलाकों में बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा शहर में ताजा बारिश के बाद मौसम सुहाना, बारिश से तापमान में गिरावट। बारिश के दौर के बीच दिल्ली में बढ़ने लगा है यमुना का जलस्तर। कालिंदी कुंज घाट पर 2 दिनों में 20 फीट तक पानी बढ़ गया। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में यमुना के बहाव में हुई तेजी, अगले 2-3 दिनों में यमुना और में और पानी बढ़ने का अनुमान है। ओडिशा के टिटलागढ़ के बाढ़ का कहर, कई इलाकों में हालात बिगड़े, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पवित्र गुफा के पास बारिश के कारण पानी का स्तर अचानक बढ़ा, इलाके में बाढ़ जैसे हालात। अमरनाथ गुफा के आसपास बारिश, पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण तेलंगाना में कुमरुम भीम आसिफाबाद में जनजीवन प्रभावित, नदी नालों में उफान। राजस्थान के कई जिलों में आफत की बारिश, अलवर में पानी में फंसी यात्रियों से भरी बस, जेसीबी से रेस्क्यू। हरिद्वार में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से सूखी नदी उफान पर, कई वाहन बहे, क्रेन की मदद से गाड़ियों को निकाला गया बाहर। उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, एआई कैमरों की मदद से किया जा रहा है सर्विलांस, हर जगह कंट्रोल रूम स्थापित। प्रयागराज में कांवड़ियों के लिए हेल्प डेस्क की शुरुआत, 24 घंटे मदद के लिए तैनात रहेंगे कर्मचारी। दशाश्वमेध घाट पर रास्ते, मंदिरों की जानकारी के साथ प्लास्टिक के बदले दिए जा रहे कपड़े के झोले। प्रयागराज में सावन की शुरुआत के साथ गंगा घाटों पर उमड़ी कांवड़ियों की भीड़, श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान और पूजा के बाद जल भरा, बोल बम के जय घोष। प्रयागराज में अनोखी कांवड़ यात्रा, परिवार की एकता के लिए 10 साल से संकल्प निभा रहा परिवार, 11वें साल भी परिवार के 10 सदस्यों ने एक साथ उठाई कांवड़। अयोध्या में सावन के दूसरे दिन शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, क्षीरेश्वरनाथ महादेव मंदिर में भक्तों ने किया जलाभिषेक, हर हर महादेव की गूंज। महाराष्ट्र की भिवंडी में ढही 4 मंजिले इमारत, 6 की मौत, 6 से 7 मजदूरों के दबे होने की आशंका। एनडीआरएफ पुलिस और फायर ब्रिगेड का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मलबा हटाने का काम जारी है। स्थानीय लोगों ने मरम्मत कार्य पर सवाल उठाए, स्थानीय लोगों का दावा, मरम्मत के दौरान तोड़े गए थे 3 मुख्य पिलर। कानपुर लखनऊ एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर फिर उखड़ी सड़क, गिट्टी से भरा डंपर पलटा, 17 दिन में दूसरी बार सड़क खराब होने से निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठे। सहारनपुर में पुलिस और गोकुश के बीच मुठभेड़, पैर में लगी गोली लगने से आरोपी घायल हुआ। सहारनपुर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, 4 तस्कर गिरफ्तार, 15 लाख रुपए की कीमती विदेशी मादक पदार्थ जब्त। कोडीन कप सिरप केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, जज तक पहुंचाने वाले के प्रयास कर नाराजगी। कोलकाता के दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन पर ओवर हेड वायर टूटने से हड़कंप मच गया। गुजरात के पंचमहल में हाईवे पर स्थित एक होटल में नशे में धुत लोगों ने जमकर मचाया तांडव। मुजफ्फरनगर में 2 बदमाशों ने मंदिर में घर लौट रही एक महिला के कान से झुमके छीन लिए। अलवर में युवकों ने एक स्टूडेंट को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, मामला दर्ज हुआ। जयपुर में तेज बारिश के बीच तेज रफ्तार एसयूवी ने स्कूटी सवार युवक को जोरदार टक्कर मारी, मौके पर मौत। महाराष्ट्र के बुलडाड़ा में किसान संगठन के जिलाध्यक्ष ने बैंक मैनेजर को थप्पड़ मारा। जालना में बारिश के बीच बिजली के खंभे पर चढ़ा लाइनमैन, जान जोखिम में डालकर बिजली सप्लाई बहाल की। कुशीनगर में शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप, नाराज छात्रा ने शिक्षक को चप्पल से पीटा। कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। तेलंगाना के मंचेरियल में 12 फीट लंबे अजगर से हड़कंप मच गया। गुजरात के बनासकांठा में कार बाइक की भीषण टक्कर, युवक युवती की मौत। गुजरात के आणंद में एक घर में बाथरूम में घुसा मगरमच्छ, वन विभाग और दया फाउंडेशन ने रेस्क्यू किया। राजकोट में तेज रफ्तार रिक्शा ने सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी। अरावली में अधूरी सड़क के विरोध में ग्रामीणों ने किया रोड जाम, हादसे में ड्राइवर की मौत। मिर्जापुर में हाईवे पर घर के बाहर सो रहे पिता पुत्र को रौंदते हुए अनियंत्रित कंटेनर घर में घुस गया, 2 की मौत। जयपुर से इंसानियत को झकझोर देने वाली वारदात आई सामने, बेटे की चाहत में पिता ने अस्पताल में 13 घंटे की नवजात बेटी का गला घोट दिया। झांसी में नामी सुपाड़ी का हाफ एनकाउंटर, रेस्टोरेंट में घुसकर ग्राम प्रधान के बेटे की हत्या की। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक ही घर से 31 सांप निकलने से हड़कंप मच गया। कर्नाटक के यादगीर में बस सेवा न मिलने पर बसों द्वारा स्टॉप पर न रुकने से नाराज छात्रों ने स्टेट हाईवे जाम किया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल, अब तक कुल 17 मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 3 गोल्ड, 10 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले। लवप्रीत सिंह ने वेटलिफ्टिंग में भारत को दिलाया 10वां सिल्वर मेडल। पुरुष के 110 किलो कैटेगरी में 388 किलोग्राम वजन उठाया। वहीं डिस्कस थ्रो में सीमा ने भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में जैवलिन थ्रो के मुकाबले में नीरज चोपड़ा समेत भारत के 3 खिलाड़ियों ने किया क्वालिफाई।

0: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ये देखो एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
2: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
3: वाह वाह वाह वाह।
2: सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरिफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
4: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
5: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
6: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
9: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
2: सबसे बड़े हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, जो दिख रहे ही नहीं हूं मैं, देख रहा हूं मैं तो। बाकी के छोटे छोटे इश्यू में आके बार बार अपनी बात रखते हैं, हर तरफ घूमते हैं, तो किस तरफ क्यों नहीं घूम रहे मुझे मालूम नहीं।
3: डरे हुए हैं, डरे हुए हैं।
2: तो ये प्रधानमंत्री भी मुंह नहीं खोल रहे और हमारे होम मिनिस्टर भी नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में ही इतनी गड़बड़ हो रही है और आप होम मिनिस्टर हो, लॉ एंड ऑर्डर देखते हो, इतना होने के बावजूद भी, गड़बड़ी होने के बाद आपका मुंह भी नहीं खुल रहा। क्या कोई स्टिच कर दिया क्या मुंह को, बंद कर दिया? बोलना चाहिए था खुलकर, देश का नुकसान होने के बजाय देश के भलाई के लिए आपको बोलना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है, कभी इंसल्ट भी सहन करना पड़ता है, आप करना पड़ता। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो जो सबक स्टूडेंट्स ने तुमको सिखाया है उससे डबल सारे विद्यार्थी और युवक मिलके एक दिन फिर आपको वो सबक सिखाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूं, लाठी चार्ज कराने के लिए, आंसू गैस करने के लिए, छोड़ने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? कौन लाठी चार्ज का आदेश दिया, आंसू गैस का दिया और पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए आदेश कौन दिया? ना आप स्टेटमेंट दे सकते थे, लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप होम मिनिस्टर को हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत दिन हिफाजत नहीं कर सकते। नहीं होता साहब, अगर आदमी झूठ बोलता है तो एक बार उसका बाहर निकलना पड़ेगा बंटवाल। तो इसीलिए आपके लोग आए, सादे कपड़ों में छात्रों को पीटने वाले लोग कौन थे? दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? CRPF एंड रैपिड फोर्स किसके आदेश पर काम करता है? इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन थे? कौन थे? अच्छा अच्छा, मुझे मालूम है। देश इन सवालों का जवाब चाहता है। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: पेलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है।
1: जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं।
0: हम लोगों को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पहले टन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे।
1: ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं।
2: ये मॉनसून सत्र में राजनीति का दूसरा पार्ट है। पेपर लीक पर छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है, जंतर मंतर पर खामोशी है, धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी सीज फायर करने पर राजी नहीं है। राहुल गांधी का इरादा साफ दिख रहा है, पेपर लीक की लड़ाई को पैलेट गन पर शिफ्ट करने की, धर्मेंद्र प्रधान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट पर लाने की।
3: She says the student.
2: कल राहुल गांधी संसद में हुए हंगामे के केंद्र में रहे, उनके हमले पर दिन भर बवाल रहा। राहुल गांधी के भाषणों के कुछ शब्दों को असंसदीय बताकर रिकॉर्ड से बाहर भी किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने संसद से निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और हमलों का सिलसिला जारी रखा। बीजेपी राहुल गांधी की मंशा को समझ रही है कि राहुल गांधी ने अमित शाह को ही हमले के लिए क्यों चुना, क्योंकि अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं। सत्र के 10 दिन हुए हैं, 15 दिन और बाकी हैं, और राहुल गांधी अमित शाह को चर्चा के केंद्र में रखने की कोशिश में दिख रहे हैं।
4: कि हो क्या रहा है यहां, दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है, राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा ये सीजेपी के लोग आए, ये जनजीव के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो, चलो उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया, हमारा क्या होगा, हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे, तो चलो कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं।
2: बीजेपी बनाम राहुल गांधी की ये लड़ाई असल में युवाओं के बीच पैठ बनाने की जंग भी है। पेपर लीक पर छात्रों के प्रदर्शन की कामयाबी से लगता है कि विपक्ष के हाथों में भविष्य के लिए नई कुंजी आ गई है, जिसका इस्तेमाल संसद में होता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: In association with
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: संसद के दोनों सदनों से पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल, राष्ट्रपति की मुहर के बाद बनेगा कानून। पीएम मोदी का वीडियो संदेश, कहा लीक माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री पर असंसदीय शब्दों के आरोप में राहुल गांधी पर एक्शन संभव, अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस। प्रियंका के गोमूत्र वाले बयान के खिलाफ 215 वाइस चांसलर्स की चिट्ठी। प्रदर्शनकारी छात्रों को दिल्ली सरकार ने दी बड़ी राहत, नहीं होगी पुलिस कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर होगा एक्शन। मुंबई के पास भिवंडी में गिरी 4 मंजिला इमारत, एनडीआरएफ ने मलबे से 7 लोगों को बाहर निकाला, 6 की मौत, बिल्डिंग में चल रहा था मरम्मत का काम। कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने से उठे विवाद के बाद सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आया नेपाल, कई शहरों में हंगामा और बवाल के बाद कर्फ्यू, अब तक 3 की मौत, कई घायल।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। संसद के दोनों सदनों से पेपर लीक बिल पास हो गया, लेकिन हंगामा अभी बाकी है। राहुल गांधी के बयान पर आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। सुबह सुबह राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया, तो बीजेपी ने विशेषाधिकार हनन नोटिस से पलटवार किया है। प्रियंका गांधी के बयान पर घमासान है, संसद से बयान हट गया लेकिन बाहर शिक्षाविदों ने खुली चिट्ठी से घेराबंदी की है। और बात होगी पैलेट गन पर, जिसे लेकर कोहराम खत्म ही नहीं हो रहा है। तो पहले बता देते हैं आपको मोर्चाबंदी के बारे में। लोकसभा में दिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बयानों पर घेराबंदी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी में राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन के नोटिस की बात कही है। तो प्रियंका गांधी के शिक्षा पर बने टास्क फोर्स के मेंबर प्रोफेसर कामकोटी को लेकर बयान पर शिक्षाविदों ने खुला पत्र जारी कर अब हमला बोल दिया है। तो छात्रों के प्रदर्शन को लेकर आक्रामक राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन पर घेरने की तैयारी है। बीजेपी सांसद ने स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है और मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि इस चिट्ठी में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर असंसदीय भाषा से संसद का अपमान करने का आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर ने उन शब्दों पर घेरा है जिसे संसद की कार्यवाही से बाद में हटा दिया गया था। राहुल गांधी ने छात्रा से बातचीत का हवाला देते हुए स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त कहा था। और अनुराग ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी, जो राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी पैलेट गन को लेकर, उसका भी नोटिस दिया है।

0: पहली बात मैं कहूंगा, राहुल गांधी जी ने अगर इडियट शब्द का इस्तेमाल स्टूडेंट्स के लिए किया है तो हमें घोर आपत्ति है। अगर उन्होंने अपने आप के लिए इडियट शब्द का इस्तेमाल किया है तो स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया वो क्या है, देर से ही सही, माना तो सही क्या है। राहुल गांधी जी ने एक संदेश कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं को दिया है कि इडियट को गुरु माना है। और जहां तक गृह मंत्री जी की बात है, इससे बड़ा झूठा आरोप, बड़ा आरोप बगैर तथ्यों के लगाना कि राहुल गांधी जी की आदत बन गई सुर्खियां बटोरने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए सदन का दुरुपयोग किया गया। राहुल गांधी जी को गृह मंत्री नहीं देश से भी माफी मांगनी चाहिए।
1: उधर कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने कहा है कि बीजेपी नेता विपक्ष को डरा नहीं सकते।
2: देखिए, राहुल गांधी जी कौन सा अनपार्लियामेंट्री वर्ड इस्तेमाल किए वो थोड़ा स्पेल आउट करें। इडियट अनपार्लियामेंट्री है क्या, स्टूडेंट अनपार्लियामेंट्री है क्या, अंधभक्त अनपार्लियामेंट्री है क्या? उन्होंने हमारे लार्जर इशू, हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो है, किस तरह के स्टूडेंट हम तैयार कर रहे हैं, किस तरीके का उनको एनालिटिकल और क्रिटिकल एनालिसिस करने की उनमें ताकत है या नहीं है, या रट्टा मार के पास होके आ जा रहे हैं, या एक हिसाब से जो है गूगल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ जा रहे हैं, या नहीं तो अनभक्ति से किसी को फॉलो कर रहे हैं, उसमें वो जिस तरीके का उसको डिफाइन करने की वो कोशिश कर रहे थे। अब पता नहीं कि इनको क्यों उससे परेशानी हो रही है, कहीं ये लोग तो कहीं अपने पे तो नहीं ले रहे हैं बात को।
1: तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोल दिया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जेन जी को धमका कर चुप नहीं कराया जा सकता है। उन्होंने आज एक ट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह, आप जेन जी को डरा धमका कर चुप नहीं करा सकते हैं। उन्होंने लिखा कि पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी और अब आप FIR दर्ज कर रहे हैं और उनको और उनके अकाउंट्स तक बंद करवा रहे हैं। तो ये आरोप लगा रहे हैं वो एक्स के जरिए। उन्होंने कहा कि आप भारत का अतीत है, पास्ट है, भारत के भविष्य के साथ बर्ताव करते वक्त सावधान रहें। तो हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से लामबंदी हो रही है, राहुल वार कर रहे हैं सरकार की तरफ से, सांसदों की तरफ से पलटवार हो रहा है, लगता है कि बिल तो पास हो गया लेकिन उसके बाद जो बयानबाजी हुई है, उस वक्त जो शब्द इस्तेमाल हुए, उस पर झगड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
3: बिल्कुल अंजलि, दोनों सदनों से बिल तो जरूर पास हो गया है लेकिन अब झगड़ा जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी जिस तरीके से उन्होंने सदन के अंदर बयान दिया, लोकसभा के अंदर, उसके साथ साथ जो सदन के बाहर भी उन्होंने बयान दिया, इन तमाम चीजों को लेकर के जो बीजेपी के सांसद हैं अनुराग ठाकुर ने, उन्होंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस जो है, तीन पन्नों का एक पत्र उन्होंने स्पीकर, लोकसभा स्पीकर को लिखा है और ये कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना यह है कि स्पीकर इस पर किस तरीके का कदम बढ़ाते हैं, लेकिन जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने इसमें विस्तृत जानकारी देते हुए यह कहा है कि राहुल गांधी ने अनपार्लियामेंट्री शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिनको कि इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, हालांकि लोकसभा की कार्रवाई से इन तमाम शब्दों को एक्सपंज कर दिया गया है, उसके बावजूद भी अनुराग ठाकुर ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह, जिनके बारे में उन्होंने तमाम चीजें सदन के अंदर से कहा है, उनके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाया है पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर के, ऐसे में उन्होंने किसी भी तरीके को या फिर कोई भी दस्तावेज उन्होंने ऑथेंटिकेट नहीं किया है और इस तरीके के आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, तो इसी वजह से
1: जी बिल्कुल। और इस विशेषाधिकार हनन नोटिस पर रहेगी हमारी नजर। उधर संसद की कार्यवाही थोड़ी देर में शुरू होगी। एंटी पेपर लीक बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है जैसे हमने आपको बताया, लेकिन बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पैलेट गन पर विपक्ष ने मोर्चाबंदी अब तेज कर दी है। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफे की मांग की है, तो बीजेपी ने गैर जिम्मेदार बताते हुए राहुल गांधी से माफी की मांग कर दी है।
4: सर, 20 जुलाई 2026 को हजारों छात्र शांतिपूर्वक संसद की ओर मार्च कर रहे थे, वे संवाद चाहते थे, लेकिन उन्हें मिला लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनॉन्स, पैलेट गन, करंट वाले बैरिकेड, मेट्रो लाठी में किले रखकर और रेलवे स्टेशन भी बंद करे। कई बच्चों को आंखों में प्लेट के छर्रे लगे, आंग पे लगे, पीछे लगे, आप सब देखे हैं, सब टीवी में आप बहुत देखते रहते हैं, आप देखे हैं। लेकिन ये देखकर हमको तो शर्म आई, उनको शर्म आया कि नहीं मुझे मालूम।
1: तो राहुल गांधी ने लगातार एक ही सवाल किया था कि आदेश कहां से आया। सरकार का जवाब है कि पैलेट गन तो चली ही नहीं, एक्शन का आदेश मंत्री नहीं देता।
5: प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस अट्रॉसिटी हुई, उन पर पैलेट गन चलाया गया। ये आप फोटो देख रहे हैं, एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पैलेट से एक आंख में पैलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे।
6: नेता प्रतिपक्ष कोई सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु है उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं।
1: तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हम रुक करेंगे हमारी सहयोगी मौसमी सिंह का, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि पेपर लीक का मामला कैसे पैलेट पर गर्मा गया। देखिए पूरी रिपोर्ट।
7: एंटी पेपर लीक कानून पर संसद की मुहर लग गई, लेकिन संसद के भीतर सबसे ज्यादा गूंजा एक मुद्दा, पैलेट गन। विपक्ष ने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार किया गया। सरकार ने जवाब दिया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो जरूरी था वही किया गया। सड़क पर शुरू हुआ विवाद अब संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों के दरवाजे तक पहुंच चुका है।
4: लाठी चार्ज कराने के लिए, आंसू गैस करने के लिए, छोड़ने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? कौन लाठी चार्ज का आदेश दिया, आंसू गैस का दिया और पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए आदेश कौन दिया?
7: विपक्ष ने सरकार से सीधा सवाल पूछा, अगर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके खिलाफ पैलेट गन चलाने की नौबत क्यों आई?
8: He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot.
9: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे?
10: किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है?
11: हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, वो आदेश कहां से आया?
12: इंडिया लाइन से ये पैलेट गन तो आपने ही कश्मीर में शुरू किया।
7: लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, गौरव गोगोई और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा, तो सरकार ने भी विपक्ष के आरोपों को राजनीति करार दिया।
6: लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
13: झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से?
14: आंदोलन में कोई गोली नहीं चली।
7: 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आरोप लगा। पहले दिल्ली पुलिस ने ऐसी खबरों को फेक न्यूज बताया, लेकिन बाद में संसद मार्ग थाने की डायरी एंट्री सामने आई जिसमें वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने का जिक्र मिला। इसी खुलासे के बाद सियासत और तेज हो गई। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पैलेट गन चलने के आरोप लगे। 22 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने दावों को बताया फेक न्यूज। 23 जुलाई को MLC में पैलेट इंजरी का जिक्र। 24 जुलाई को राहुल गांधी ने घायल छात्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 24 जुलाई को RAF ने आंतरिक जांच शुरू की। 26 जुलाई को राहुल गांधी ने अमित शाह को पत्र लिखा। 28 जुलाई को पुलिस रिकॉर्ड में पैलेट गन इस्तेमाल की पुष्टि। CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का बयान भी चर्चा में आया। स्थापना दिवस पर जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश हित में बिना डरे अपना कर्तव्य निभाइए, बाकी मैं देख लूंगा।
15: चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हो, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हो, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बल हित में जो भी निर्णय लेते हैं

0: कारी यशोवर्धन आजाद, प्रशांत कुमार सिंह और घायल इरशाद मंसूरी समेत याचिकाकर्ताओं ने पायलट गन पर रोक लगाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि पायलट गन के इस्तेमाल की मानक प्रक्रिया यानी SOP क्या है। हिमांशु मिश्रा, पीयूष मिश्रा के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
1: और चलिए अब रुक करते हैं हमारी सहयोगी मौसमी सिंह का। मौसमी, सरकार और NDA के सांसदों की क्या रणनीति है? विशेषाधिकार हनन नोटिस से ये साफ हो रहा है, लेकिन विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी? वो किस तरीके से काउंटर करने वाले हैं इस पूरे नैरेटिव को? और इससे पहले दिल्ली पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पहले वहां चल लेते हैं।
2: मेरा नाम उपनीत कौर है और मेरे पति दिल्ली पुलिस में ACP के पद पे सेवाएं निभा रहे हैं। 20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी, 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। मेरे साथ अभी दिल्ली पुलिस के परिवार के मेंबर्स हैं, दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार के मेंबर्स, और हम अपनी आप बीती आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले एक वीडियो के जरिए हम उस दिन और उसके आगे चलते हुए कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस कर्मियों के साथ क्या कुछ हुआ वो आपके साथ शेयर करेंगे। और वो वीडियो जो हमने बनाई है वो सोशल मीडिया की कुछ वीडियोस से, और जिन लोगों को घायल जो पुलिस कर्मी हैं उन लोगों से बातचीत करने के बाद वो वीडियो हमने बनाई है। प्लीज एक आपके समक्ष मैं वो वीडियो रखना चाहती हूँ।
3: आह्वान को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शनकारियों से कई बार बातचीत की कोशिश की गई थी तथा उन्हें अवगत कराया गया था कि नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 प्रभाव में, जिसमें 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। ये सूचना मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित की गई थी। इसके बावजूद ऑर्गेनाइजर्स द्वारा लोगों को जंतर मंतर पहुंचने तथा संसद मार्च के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेरित किया है। इसको ध्यान में रखते हुए तारीख 20 जुलाई 2026 को दिल्ली पुलिस द्वारा पुलिस स्टाफ की ब्रीफिंग करके जगह जगह पर भारी संख्या में तैनाती और अलग अलग रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। इसमें विभिन्न सीनियर रैंक के ऑफिसर्स एवं महिला स्टाफ की भी तैनाती की गई है। 20 तारीख की सुबह होते ही संसद मार्च के लिए भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। हालांकि प्रदर्शनकारियों के पास संसद मार्च की कोई अनुमति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही थी। शुरुआत में प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में नारेबाजी के साथ अपना प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे यही भीड़ संसद की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में हर जंक्शन और हर सड़क पर पुलिस बल पहले से ही तैनात था, जो लगातार प्रदर्शनकारियों से अपील कर रहा था कि वे अपनी जगह पर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन लेकिन भीड़ पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। भीड़ बैरिकेड तोड़कर पटेल चौक की तरफ बढ़ने लगी, जहां रास्ते में पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे, लेकिन भीड़ ने इन बैरिकेड्स को तोड़ना शुरू कर दिया। कई बार पुलिस ने बैरिकेड्स को दोबारा लगाया, लेकिन उग्र भीड़ ने उन्हें फिर से तोड़ दिया और हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे भीड़ का स्वरूप उपद्रवी होना शुरू हो गया और भीड़ जोरदार नारेबाजी के साथ साथ पुलिस पर बोतलें, जूते और पत्थर भी फेंके जाने लगे। पुलिस की कोशिश थी कि हालातों को काबू में रखा जाए और बार बार प्रदर्शनकारियों से अपील की गई कि वे अपनी जगह पर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर भारी पथराव शुरू कर दिया।

0: और पटेल चौक पर लगे बैरिकेड को तोड़ते हुए संसद भवन की तरफ।
1: पुलिस ने बैरिकेड को फिर से खींचकर भीड़ से अपील की कि वो अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करें, लेकिन भीड़ भारी पथराव के साथ बैरिकेड को तोड़ती हुई हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंच गई और उनकी दूरी संसद से महज 50 मीटर की रह गई। ये देखकर पुलिस अधिकारियों ने बार बार उग्र भीड़ को चेतावनी दी कि सभी बैरिकेड के पीछे रहे। और अगर बैरिकेड को पार करने की कोशिश की गई तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन भीड़ पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुकी थी। ऐसे में पुलिस द्वारा अत्यंत संयम बरतने के बावजूद अनियंत्रित भीड़ को काबू करने के लिए और उन्हें संसद की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए नॉन लीथल टीयर गैस का इस्तेमाल करने पर बात हुई और भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी बल का प्रयोग करना। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई और भीड़ की तरफ से लगातार पथराव हुआ। इसके बाद जब भीड़ का एक हिस्सा कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में पहुंचा तो वहां भी प्रदर्शनकारियों ने सरकारी एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और भारी पथराव किया। इससे इलाके में जान माल के खतरे की स्थिति बन गई। ऐसी विषम परिस्थिति में वहां भी भीड़ को काबू करने के लिए टीयर गैस और लाठीचार्ज का प्रयोग करना। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उग्र भीड़ के द्वारा पथराव एवं घेर कर मारपीट के कारण 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें सिपाही से लेकर अत्यंत वरिष्ठ रैंक तक के अधिकारी शामिल थे। चोटिल होने के बावजूद भी पुलिस कर्मियों ने भीड़ पर काबू करने का प्रयास जारी रखा तथा स्थिति को नियंत्रण में किया।

0: पीछे सिर्फ एक पुलिस कर्मी नहीं होता, उसके पीछे होती है उसकी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार, जो देर रात तक वेट करता है कि वो सुकुशल घर लौट आए। अब मैं आपके सामने कुंजल जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें।
1: हेलो, माय नेम इज कुंजल, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डीयू। माय फादर इज एस आई इन दिल्ली पुलिस। मेरे बाबा पुलिस में आने से पहले मेरे फादर इंडियन नेवी में मैरिन कमांडो थे। उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। माय फादर वाज एट मेन प्रोटेस्ट साइट, ही वाज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिगेट्स, जहां पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड इट वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th एंड अराउंड 2 PM। He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वर्कशॉप करने और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर के जस्टिस के लिए। और मुझे बाकी पुलिस फैमिलीज का भी साथ मिला। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करी और एडवोकेट ने हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और हमें भरोसा दिलाया गया कि हम भी हमारे भी इक्वल राइट्स हैं एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और हमें भी जस्टिस मिलेगा।
0: सीमा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सीमा है। मेरे पति दिल्ली पुलिस पे ASI हैं। वो 33 साल की जो मेरे पति दिल्ली पुलिस में एज ए कॉन्स्टेबल उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की और उसके बाद वो अब तक 33 साल की जॉब करते हुए ASI के पद पर हैं। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटी दी गई थी। प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था, वो अपनी ड्यूटीज पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे। 20 जुलाई को वो जल्दी ही अपने घर से रोज की तरह अपना टिफिन लेकर जैसे जाते हैं उसी तरह से 20 जुलाई को भी वो जल्दी ही निकल गए। और उन्होंने जब 11 बजे के आसपास मेरी उनसे बातें हुई तो उन्होंने फोन पर बताया कि आज जंतर मंतर पर भीड़ कुछ ज्यादा है और प्रोटेस्टर जो हैं वो संसद मार्च के लिए जा रहे हैं, जो कि वीडियो क्लिप में भी दिखाया गया है। और उसके बाद मैंने पुलिसकर्मी की पत्नी होने के नाते सिर्फ ये ही कहा कि आप अपना ख्याल रखें। फिर उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई और शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था, जो कि एक वीडियो क्लिप में भी दिखाया जा रहा है। और उसके बाद उनकी फोन की बैटरी डेड होने की वजह से मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। शाम को, रात को जब वो 11:30 ये सब सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। जब तक भी घर नहीं आए तो मेरी प्रतिक्रिया बहुत ही ज्यादा मेरे लिए बहुत पेनफुल थी। उसके बाद जब वो 11 बजे घर आए तो उन्होंने बताया कि छात्रों की प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ कुछ शरारती तत्व और असामाजिक तत्व भी थे। उन्होंने पुलिस फोर्स पर बैरिकेड, जो पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों, जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया। और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। मैं अपनी संसद में बैठे हुए जो मेरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे जो पुलिस कर्मी है और उनके जो परिवार हैं उनके बारे में भी संसद में कुछ मतलब उनके राइट के बारे में या उनकी ड्यूटी पे जो उन पर हमले होते हैं उनके बारे में संज्ञान लिया जाए। मेरे प्रतिनिधि इस चीज के लिए जो संसद में चुने हुए हैं वो संज्ञान लें और उनके मुद्दे भी उठाए जाएं, क्योंकि 20 तारीख के बाद से आज तक यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो छात्र थे, जो छात्रों का प्रोटेस्ट था उसको कि पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्रों को पीटा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अलग एक प्रोटेस्ट का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है जबकि प्रोटेस्ट का दूसरा हिस्सा कुछ और ही है। और मैं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अपने जो संसद की सुरक्षा में पुलिसकर्मी लगे रहते हैं और उस संसद की जो एक हमारे देश का सम्मान है, मेरे देश का सम्मान है, उसकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय और देश की आंतरिक सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय लगे रहते हैं उनके बारे में भी संसद में कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे। थैंक यू सो मच। हाँ लक्ष्य आप बताएंगे कुछ।
2: हेलो, मेरा नाम लक्ष्य सिंह बिष्ट है। मेरे पापा ACP है जिन्होंने अपने पूरे करियर में 4 गारंटी हासिल करे हैं। मेरे ग्रैंडफादर BSF में थे, उन्होंने 1971 की जंग में लड़ाई करी थी। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25 मई @2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है उसमें स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें डाउडीज, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज करें जस्ट टू क्रिएट केओस. एंड ऑन 25th में अनप्रवोक्ड उन्होंने मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी. उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे. एंड व्हेन द पेल्टिंग स्टार्टेड मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को लाइक एक सेफ प्लेस में सेक्लूड करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई.
3: कुंजल, आप कुछ और शेयर करना चाहेंगे?
1: मुझे ये बोला था कि पुलिस वाले भी समाज का हिस्सा है. जिस पार्लियामेंट में लोग पॉलिटिशियंस और जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतने सारी सीरियस इंजरीज ली हैं. और मुझे यही बोलना था कि आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है. उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के बारे में स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है. उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है. थैंक यू.
3: लक्ष्य, आप कंटिन्यू करना चाहेंगे?
2: मैं जब भी ऑनलाइन जाता हूँ एंड जब भी मेरे फ्रेंड्स मुझे रील्स भेजते हैं एंड ट्विटर पे लिंक्स भेजते हैं कि उसमें पुलिस के खिलाफ बहुत ज्यादा लाइक डेरोगेटरी टर्म से बात करी जाती है, लाइक उनके एकदम खिलाफ होते हैं. हमारी साइड की कोई बात भी नहीं करता. मेरे पापा बोलते हैं कि इस पर मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए बिकॉज ये बस दोनों साइड को ट्रिगर करने के लिए, ये वन साइड मीडिया है एंड ये बस केओस क्रिएट करने के लिए. पर जब मेरे फादर के साथ ये हुआ आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड. और एंड पार्लियामेंट में भी इसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही, लाइक पुलिस वालों का क्या, जिनको जो इंजर उनका क्या. एंड फिर मुझे पता चला कि जो एग्रेसिव थे उन्होंने पुलिस के खिलाफ ही एप्लीकेशन डाल दी कि उनके साथ अनजस्ट हुआ है. मैंने और बहुत सारी फैमिलीज ने पुलिस की, उन्होंने भी मिलकर प्ली डाली कि हमारे भी राइट्स हैं. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड एवरीवन हैज राइट टू लाइफ. मेरे फादर यहाँ पे नहीं है बिकॉज ड्यू टू हिज रूल्स ऑफ ड्यूटी और बट हम यहाँ पे टू रिप्रेजेंट द फैमिलीज जिनके स्पाउस या जिनके फादर इंजर हुए. जंतर मंतर एक में जो प्रोटेस्ट था वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, पर उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं थे, उसमें राउडीज थे, उसमें गुंडे थे जो इस अपॉर्चुनिटी का यूज करे थे टू क्रिएट केओस और पुलिस वालों को इंजर करने के लिए, उन्हें हर्ट करने के लिए. मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि मेरे पापा जो एक पुलिस ऑफिसर है वो किसी ऐसे स्टूडेंट को हर्ट नहीं करेंगे, वो एक स्टूडेंट की केयर करेंगे. एंड माई फादर डिडंट डिजर्व दिस. थैंक यू.
4: तो अभी अपने आप जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, दरअसल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली पुलिस के उन पुलिस वालों के परिवार वालों की जिन्हें चोटें आई. इसमें एक बेटी थी, एक बेटा था, एक पत्नी थी और वो सब यही कह रहे थे कि हमारे परिजन जो है वो अपनी ड्यूटी करते हुए, काम करते हुए घायल हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बात को भी पार्लियामेंट में, संसद में उठाया जाए जैसे कि छात्रों की बात को उठाया जा रहा है. उनका मानना है कि उनके परिजनों के साथ जो हुआ वो कोई नहीं उठा रहा है पार्लियामेंट में और यही मुद्दा उन्होंने सामने रखा. उन्होंने कहा कि वो महज अपनी ड्यूटी कर रहे थे लेकिन उस छात्र प्रदर्शन के दौरान कुछ वहां गुंडा एलिमेंट्स आ गए थे, उनका कहना है, जिन्होंने घेर करके उनके परिजनों को मारा और उन्हें चोटें पहुंचाई हैं. तो सवाल जो परिवार वाले पूछ रहे थे, दिल्ली पुलिस के ये जो लोग हैं जो जिन्हें चोटें आई हैं उनका सवाल यही था कि आखिर उनकी बात को पार्लियामेंट में संसद के अंदर कौन उठाएगा।
5: कोशिश की है और उसको जो बदनाम करने की कोशिश की है और संसद की जो गरिमा को तार तार करने की कोशिश की है उनको जो शरारती तत्वों को मतलब उन्हें उनके किए की सजा दी जाए और उन्हें बख्शा ना जाए और जो छात्र हैं उन्हें उनके रिकॉर्ड देकर छोड़ दिया जाए।
6: मैं आप क्या डिमांड कर रहे हैं जी तेरे एफआईआर में वापस होने के बारे में क्या कहेंगे
7: संसद में आप एक साइड की स्टोरी दिखाई जा रही है नैरेटिव बनाया जा रहा है
8: के बारे में कोई बात नहीं उठाई जा रही है।
4: तो आप सुन रही थी परिवार जन जो है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसके बाद आखिर में एक बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि जिन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केस हैं जो गुंडा हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये कहा कि छात्रों को छोड़ दिया जाए और यही स्टैंड कहीं ना कहीं हमने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी देखा था। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, सवाल जो परिवार वाले पूछ रहे हैं वो ये कि उनकी बात को संसद में कौन उठाएगा, और सवाल लाजमी भी है क्योंकि छात्रों की बात को तो विपक्ष उठा रहा है लेकिन इनकी बात करने के लिए सरकार की तरफ से तो अब तक कोई बोलने तक नहीं आया।
9: बिल्कुल, देखिए यही तकलीफ है। और जब हमने पर्सनली उन फैमिलीज से बात की, क्योंकि जो घायल पुलिस वाले थे चाहे वो नंदकिशोर हो चाहे एसीपी रोहित हो एसीपी भगत हो, हम उनके जब घर पहुंचे उनके फैमिलीज से जब हमने बात की तो उनका एक ही तकलीफ थी कि सबकी बात हो रही है लेकिन 130 से ज्यादा पुलिसकर्मी उस दिन पार्लियामेंट को बचाते हुए घायल हुए थे। भीड़ अचानक से पहुंची थी, भीड़ ने जब पत्थरबाजी शुरू की उस पत्थरबाजी में घायल हुए, वो 20 जुलाई की है। लेकिन 20 जुलाई के बाद जब 22 जुलाई को जो घटना होती है जिसमें दो एसीपी इंस्पेक्टर के ऊपर अटैक किया जाता है, उनका बिल्कुल भी वो प्रोवोक नहीं था। वो लोग चुपचाप जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि भीड़ में कुछ लोग हैं जिन्होंने टारगेट किया, तो इसलिए उनका कहना है कि ये लोग सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। घर से निकलते हैं तैयार होके कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, फैमिली का कहना है, लेकिन जब चोट लगती है और लोग पीटते हैं
4: वो बात सही है, पर हिमांशु अगर इनकी बात कहनी है वो कहने के लिए सरकार को संसद में बोलना पड़ेगा ना। अब तक तो सवाल यही है कि कोई बोलने को तैयार नहीं है। आज जो विशेषाधिकार हनन नोटिस जारी हो रहा है वो विपक्षी नेता के क्या शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उस मुद्दे पर हो रहा है। हम जो सवाल ये उठा रहे हैं वो ये है कि संसद में इनकी आवाज कौन उठाएगा। अब विपक्ष तो उठाएगा नहीं तो फिर कौन उठाएगा।
9: जाहिर तौर पे सरकार की जिम्मेदारी है और तमाम जो पुलिस की फैमिलीज हैं जो पुलिस वाले हैं वो लगातार नजर बना के रखे हुए। आप देखिए जैसे लक्ष्य जो कि सीधे कह रहा है कि जिस पार्लियामेंट को बचाने में उनके पिता को चोट लगी है वहां से उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, तो ये सवाल ये तमाम जो पुलिस के परिवार के लोग हैं ये उठा रहे हैं और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार ये बात तो कर रहे थे लेकिन एकजुट होते हुए अब यहाँ पर पुलिस नजर आ रही है, पुलिस की फैमिली के लोग नजर आ रहे हैं कि हमने जो कुछ भी किया वो लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी के लिए किया, पार्लियामेंट को बचाने के लिए किया। क्योंकि देखिए आज तक ने कल क्लियर अंजलि चलाया था जिसमें 5 सीसीटीवी कैमरों की मदद से हमने दिखाया था कि जो भीड़ थी वो 20 जुलाई को पार्लियामेंट के कितने करीब पहुंच गई थी, तकरीबन 100 मीटर के दायरे में पूरी भीड़ वहां पर मौजूद थी यानी पार्लियामेंट के बेहद करीब, और ऐसे में वहां जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये कि भीड़ को अंदर जाने से रोकना, तो जो कुछ हुआ वो पार्लियामेंट को बचाने के लिए हुआ ऐसा पुलिस अफसर और उनकी फैमिली को कहना है। तो ऐसे में अब उनका कहना है कि उनके दर्द उनके ऊपर जो अटैक हुआ उनकी बात भी होनी चाहिए।
4: बिल्कुल, और पुलिस के परिवार वालों को अगर आकर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है तो सवाल ये भी उठता है कि उनकी आवाज क्यों नहीं आगे तक आ रही है, तो ये जिम्मेदारी आखिर किसकी। आइए सुनिए कि दिल्ली पुलिस के ऐसे ही कर्मचारी जिसको चोट लगी उसकी बेटी क्या सवाल उठा रही है।
1: माय नेम इज कुंजल, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डीओ, माय फादर इज असाइन दिल्ली पुलिस। मेरे बाबा पुलिस में आने से पहले मेरे फादर इंडियन नेवी में मैरिन कमांडो थे, उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। माय फादर वाज एट मेन प्रोटेस्ट साइट, ही वाज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिगेट्स जहां पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड इट वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर. दिस हैपेंड ऑन 25th एंड अराउंड 2 PM. He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी. उन्हें ऐसे देख के हमें हमारे लिए बहुत पेनफुल था. हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी. वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी. और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे. और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वर्कशॉप करने और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, मुझे बहुत बुरा लगा. और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए. और मुझे बाकी पुलिस फैमिलीज का भी साथ मिला. हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करी और एडवोकेट ने हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और हमें भरोसा दिलाया गया कि हम भी हमारे भी इक्वल राइट्स हैं एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और हमें भी जस्टिस मिलेगा.
2: हेलो, मेरा नाम लक्ष्य सिंह बिष्ट है. मेरे पापा ACP है जिन्होंने अपने पूरे करियर में 4 गारंटी हासिल करे हैं. मेरे ग्रैंडफादर BSF में थे, उन्होंने 1971 की जंग में लड़ाई करी थी. मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में. एंड ऑन 25th May at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू. जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4. उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था. जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है, मतलब स्टूडेंट्स नहीं है उसमें, राउडीज उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस. एंड ऑन 25th May अनप्रवोक्ड उन्होंने मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी. उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे. एंड व्हेन द पेल्टिंग स्टार्टेड मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को लाइक एक सेफ प्लेस में सेक्लूड करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई.
4: और आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अंशुल सिंह का जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था. अंशुल, सवाल ये उठता है कि आखिर परिवारजनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ गई? उनको क्या सपोर्ट समर्थन नहीं मिल पा रहा है जो वो चाहते हैं पुलिस और सरकार की तरफ से, और क्या एक्शन वो चाहते हैं? क्या उन्होंने सिर्फ अपनी व्यथा सुनानी थी या कोई बात आगे वो चाहते कि एक्शन के तौर पर हो?
10: जी बिल्कुल, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक्शन हो और उन्हें भी इंसाफ मिले. उनका ये कहना है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ये बस दिल्ली पुलिस के जो इंजर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी फैमिली की तरफ से नहीं बल्कि भारत के सिटीजन्स की तरफ से हुई थी. जो भारत के सिटीजन्स जो पुलिस की वर्दी में थे उस दिन पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और उनको इतनी भारी चोटें आई तो उनके इंसाफ का क्या? जैसा हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से भी ये टिप्पणी आई, उसके बाद दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस ने भी ये माना कि वो किसी भी तरह का जो लीगल एक्शन है वो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ नहीं लेंगे. तो कहीं ना कहीं परिवारों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाएगा जो वो डिजर्व करते हैं और इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की. पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव पुश किया जा रहा है, कई सारी ऐसी वीडियोस दिखाई जा रही हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी जो है वो लाठीचार्ज कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स पे, प्रोटेस्टर्स को वहां से तितर बितर करने की कोशिश कर रहे हैं और एक पूरा नैरेटिव सेट किया गया. हालांकि जो दूसरी तरफ है कहानी की, जो पुलिस की तरफ की कहानी है वो कोई नहीं बता रहा और इसी इसीलिए आज जो ये परिवार वाले थे जो पिछले कई दिनों से परेशान है, जिन्होंने अपने घर वालों को देखा है इंजर्ड कंडीशन में, जिन्होंने अपने घर वालों को करीब करीब मौत के मुंह से वापस आते हुए देखा है, उनकी व्यथा दर्शाने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। और ये बताने की कोशिश की गई कि जो पुलिस ऑफिसर एक वर्दी में होता है वो बस पुलिस का ही नहीं बल्कि इस भारत देश का भी एक सिटीजन है। और एक बड़ी बात जो यहां पर बोली गई जो उनकी व्यथा दर्शाती है कि उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन लोगों को चोट लगी, जो लोग मौत के इतने करीब भी पहुंच गए, उसी पार्लियामेंट से आज उन्हीं पुलिस ऑफिसर्स को क्रिमिनल बोला जा रहा है। तो इससे जो है ये सारे परिवार वाले बहुत आहत हैं और उन्होंने अपील की है कि देश के पार्लियामेंट से भी एक सुर में ये आवाज आनी चाहिए कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर अटैक किया गया, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स को पर हमला किया गया, ये भी गलत है और जो लोग इसमें संलिप्त है उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए।
4: जी, आप हमारे साथ बने रहे, संसदीय कार्य मंत्री इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सीधा वहीं चलते हैं।
11: लेकिन बिल पास करने में और क्वेश्चन आवर इम्पोर्टेंट बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करने से ये उनके लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है।
4: थैंक यू। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
14: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
15: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV, with TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
16: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
4: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
5: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
6: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
5: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
6: अर्ज किया है
5: पहले, गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
7: वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ।
5: सेबी और NSE का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
8: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
9: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
10: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: आगे आगे
13: उधर
5: उधर करेक्ट करेक्ट
14: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
3: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
4: Where's the truth? It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege.
5: सदन में राहुल के बयान पर मचा घमासान, पैलेट गन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बीजेपी ने राहुल के बयान को बताया तथ्यहीन,
6: और वह माफी मांगो राहुल।
5: लोकसभा ने एंटी पेपर लीक बिल पर मुहर लगा दी है, लेकिन बिल पास होने से पहले लड़ाई राहुल गांधी बनाम अमित शाह की हो गई है। चर्चा के दौरान राहुल ने गृह मंत्री के सदन में न होने का सवाल उठाया, जिस पर काफी देर तक हंगामा हुआ।
4: I'm very happy today to see that the so-called home minister of this country does not have the courage to come and sit here.
5: गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए राहुल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मैंने गृह मंत्री को कांपते देखा।
4: Sir, I saw the car gate, 30 cars, with the Home Minister sitting inside the car, like that, looking.
5: राहुल के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा, अमित शाह वो शख्स हैं जिनको देखने के बाद नक्सली भी थर्रथराते हैं।
7: इस प्रकार से एक्शन किया कि मैंने देखा गाड़ी के अंदर इस प्रकार अमित शाह जी थरथरा रहे थे, कांप रहे थे। राहुल जी, अमित शाह जी वह शख्स है जिनको देखने के बाद नक्सली थरथराते हैं।
5: तो अब साफ है कि एंटी पेपर लीक बिल पर शुरू हुई लड़ाई लोकसभा में राहुल गांधी बनाम अमित शाह की हो गई है। आज तक ब्यूरो।
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: इन एसोसिएशन विद E3HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
1: केजरीवाल से लगातार यही मांग कर रहे हैं कि पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए।
2: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है तो फिर इन मंत्रियों का इस्तीफा क्यों नहीं? ये धर्मेंद्र प्रधान से तो बड़े नहीं है।
3: पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ, 4.5 साल हो गए गवर्नमेंट को, पंजाब में एक ही पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब में नो कैश नो फरमाइश, सिर्फ ओनली ऑन मेरिट पे काम होता है। पंजाब में पेपर लीक नहीं, देयर वाज नो चीट, नो पेपर लीक, ओनली चीटिंग चल रही थी जो कि रोक दी गई।
4: ये हंगामा बरपा है पंजाब के पेपर लीक पर। दिल्ली के जंतर बंतर चौकी पेपर लीक आंदोलन की चिंगारी अब सियासी हो गई। वहाँ छात्र आंदोलन कर रहे थे, यहाँ राजनीतिक कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर बीजेपी ने धावा बोल दिया। मांग एक ही है कि पेपर लीक पर पंजाब के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल का आरोप है कि पंजाब में एक नहीं 6 से 11 बार पेपर लीक हुए हैं। छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया। जो सबसे लेटेस्ट पेपर लीक है वो फार्मेसी की परीक्षा का है। दिल्ली में जब धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ CJP का धरना चल रहा था तो केजरीवाल खुद जंतर मंतर गए थे। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आंदोलन के समर्थन में इनकलाब कर रहे थे, लेकिन अब बारी पंजाब के पेपर लीक पर बोलने की आई तो सुविधाजनक सन्नाटा छा गया। पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक साथ खड़े दिखते हैं। कांग्रेस की मांग है कि पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाओ, फिर पंजाब से माफी मांगो, फिर विधानसभा में चर्चा करो।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste.
1: सीजेपी प्रदर्शन में घायल दिल्ली पुलिसकर्मियों के परिजनों ने बताई आप बीती। बच्चों ने कहा उपद्रवियों ने किया पापा पर हमला, हमारे परिवार के अधिकारों की बात क्यों नहीं होती।
2: संसद के दोनों सदनों के पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल, राष्ट्रपति की मुहर के बाद बनेगा कानून। पीएम मोदी का वीडियो संदेश, कहा लीक माफिया को बख्शा नहीं जाएगा।
1: गृह मंत्री पर असंसदीय शब्दों के आरोप में राहुल गांधी पर एक्शन संभव, अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस। प्रियंका के गौमूत्र वाले बयान के खिलाफ 215 वाइस चांसलर्स की चिट्ठी।
2: मुंबई के पास भिवंडी में गिरी 4 मंजिला इमारत, एनडीआरएफ ने मलबे से 7 लोगों को बाहर निकाला, 8 की मौत, 5 लोग फंसे, बिल्डिंग में चल रहा था मरम्मत का काम।
1: और कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने से उठे विवाद के बाद सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आया नेपाल, कई शहरों में हंगामा और बवाल के बाद कर्फ्यू, अब तक 3 की मौत, कई घायल।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक एक और 11 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। सीधा रुख करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई।
2: प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का है और आज शेष पटेल आपके कांग्रेस के माननीय सदस्य का है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए, आप सदन को चलने दें। प्रश्नकाल प्रियंका जी का भी आज प्रश्नकाल में क्वेश्चन है और वह खड़ी है प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन आप सदन बाधित कर रहे हैं। और मेरा आग्रह, मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ माने सदस्य तो वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहन कर आते हैं, मेरी उन माने सदस्यों को चेतावनी है, संसद या संसद के परिसर में मुझे कई माने सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
3: इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स
0: 12 बजे तक स्थगित कर दी जाती है। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है क्योंकि विपक्षी तरफ से हंगामा हो रहा था। स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि आज प्रश्नकाल में प्रियंका गांधी का भी सवाल है, वो खड़ी भी हुई हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही हंगामा करते रहेंगे तो फिर कार्रवाई आगे नहीं चल पाएगी। और उसके बाद हुआ वही हंगामा और कार्रवाई स्थगित।
1: तो ऐसा नहीं कि आज पहला दिन हो जो प्रश्नकाल के दौरान कार्रवाई खत्म कर दी हो। दरअसल लगातार प्रश्नकाल की शुरुआत होती है, स्पीकर साहब बोलना शुरू करते हैं और उसके बाद जो शोर शराबा होता है उसकी वजह से लगातार कार्रवाई को स्थगित किया जा रहा है। और आज भी बस ऐसा ही देखने को मिला, प्रश्नकाल का कोई काम नहीं हो पाया और कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा।
4: डॉक्टर एल मुरुगन जी,
5: रेस्पेक्टेड सरमन सर, विथ योर काइंड परमिशन आई राइज टू मेक ए स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस कंटेन्ड इन द 22nd रिपोर्ट 18 लोकसभा ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन रिव्यू ऑफ मैकेनिज्म टू कर्व फेक न्यूज पर्टेनिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। थैंक्स।
4: स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट बिजनेस, डॉक्टर एल मुरुगन जी।
5: Respected Chairman Sir, with your kind permission, I rise to announce that the government business during the week commencing from Monday, the 3rd August 2026, will consist of, number one, consideration of any items of government business carried over from today's order paper. It contains consideration and passing of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026. Number two, consideration and return of the Supreme Court number of judges Amendment Bill 2026 after it is considered and passed by Lok Sabha. Number 3, consideration and passing of the registration of births and deaths Amendment Bill 2026 after it is considered and passed by.
0: और आइए अब आपको दिखाते हैं शतक आज तक।

0: जंतर मंतर पर घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीजेपी प्रदर्शन में घायल पुलिसकर्मियों के परिवार ने रखी अपनी बात। मीडिया से बात करते हुए घायल एक पुलिसकर्मी की बेटी ने कहा, मेरे पिता घर आए तो उनकी यूनिफॉर्म में खून लगा हुआ था। जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल एएसआई की पत्नी ने रखी अपनी बात, कहा पुलिस वालों को पत्थर से मारा गया। जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल एसीपी के बेटे का बयान, बोले पापा के सिर पर लगा था पत्थर, प्रदर्शन में असामाजिक तत्वों के होने की बात। पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा आप जेन जी को डरा धमकाकर चुप नहीं करा सकते। राहुल गांधी ने अमित शाह और पीएम मोदी दोनों पर निशाना साधते हुए कहा आप अतीत हो चुके हैं, भविष्य के साथ कैसा बर्ताव करते हैं इसे लेकर सावधान रहें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर निशाना, बोले माहौल ठंडा करने के लिए लाए बिल लेकिन ये अभी भी अधूरा। खड़गे ने छात्रों पर लाठीचार्ज पर सुनाई एक कविता, कहा पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पिटते रहे, ये कैसा न्याय है, ये कैसी रीति, गुनहगार हंसते रहे, मासूम से सकते रहे। भाषण के दौरान खड़गे के मनुस्मृति का हवाला देने पर भड़की बीजेपी ने की माफी की मांग। जेपी नड्डा ने कहा ऐसे बयान से फैलेगी अशांति।
1: पेपर लीक पर कांग्रेस का सरकार पर हमला, प्रमोद तिवारी बोले 12 साल में 152 पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की। वंदे मातरम पर रामगोपाल यादव का बयान, बोले नारे से कोई विवाद नहीं लेकिन इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए था। बागीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम होने को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा वोटरों में सरकार को लेकर देखी उदासीनता। बागीपुर उपचुनाव पर बीजेपी का दावा, जनता ने फिर दिया समर्थन, मृत्युंजय तिवारी बोले विरोधियों की होगी जमानत जब्त। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार की तैयारी तेज, सोमवार को नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण। बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने नीट पेपर लीक मामले पर अपनी चुप्पी का कारण बताया, बोले उनका काम सवाल पूछना नहीं समाधान देना। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले दिखावटी सुधारों से काम नहीं चलेगा, बीमारी की जड़ को ही खत्म करना होगा और एनटीए को बंगाल में खाड़ी में फेंक देना चाहिए। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की आवास पर बैठक, सीएम डी के शिव कुमार मौजूद रहे। महाराष्ट्र में स्कूल कैंटीन के लिए एफडीए लाइसेंस अनिवार्य, 50 मीटर दायरे में जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक, एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता जताई, सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए भारत सरकार से नजर रखने की अपील।
0: यूपी विधानसभा सत्र से पहले 2 अगस्त को सर्वदलीय बैठक, स्पीकर सतीश महाना ने बुलाई बैठक। 3 अगस्त से शुरू होगा मॉनसून सत्र, 4 अगस्त को पेश हो सकता है बजट। अयोध्या में चढ़ावे की चोरी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने बढ़ाई निगरानी, अब दान पात्र खोलने से लेकर रकम की गिनती तक पूरी का प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले जनता से धोखे का नतीजा है खाली महफिल, चला चली की बेला समय से पहले आ गई। अखिलेश यादव का भदोही नाम बदलने पर तंज, बोले सिर्फ नाम बदलने से नहीं महापुरुषों के सिद्धांतों पर चलने से बदलाव आएगा। मेरठ में पहचान छुपाकर होटल चलाने का आरोप, हिंदू संगठन ने शुरू किया अभियान, कई होटलों में हंगामा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच और कार्रवाई का दिया आश्वासन। कानपुर के मर्चेंट नेवी अधिकारी की मौत के बाद सांसद ने विदेश मंत्रालय से लगाई मदद की गुहार, पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए जयशंकर को पत्र लिखा। लखनऊ में नकली दवा सिंडिकेट का भंडाफोड़, फर्जी बिलिंग और ट्रांजैक्शन से चल रहा था कारोबार, एफएसडीए की कार्रवाई में 6 एफआईआर दर्ज और संदिग्ध दवा फर्मों पर रोक और जांच तेज। अलीगढ़ में स्पोर्ट्स टीचर पर छात्र पिटाई का आरोप, सीसीटीवी वीडियो वायरल, स्कूल प्रबंधन ने आरोपी शिक्षक को किया बर्खास्त। बरेली में मौलाना की पत्नी से विवाद के बाद खुद को लगाई आग, अस्पताल में मौत, सीसीटीवी फुटेज और आखिरी बयान के आधार पर पुलिस जांच में जुटी।
1: दिल्ली एनसीआर में मानसून के बादलों का डेरा, मौसम विभाग के मुताबिक आज हल्की से भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी, शिमला, ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। गुजरात के 13 जिलों में आज से 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, अहमदाबाद में आज स्कूल कॉलेजों में छुट्टी के आदेश। गुजरात में भारी बारिश के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट पर, प्रभावित जिलों में सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश। महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में भारी बारिश से नदियां उफान पर, एक शख्स बाढ़ के पानी में बहा, 24 घंटे बाद भी पता नहीं चला। आईएमडी ने उत्तर तेलंगाना में 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया, हैदराबाद समेत कई इलाकों में बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा शहर में ताजा बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, बारिश से तापमान में गिरावट। बारिश के दौर के बीच दिल्ली में बढ़ने लगा यमुना का जलस्तर, कालिंदी कुंज घाट पर 2 दिनों में 20 फीट पानी बढ़ गया। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में यमुना के बहाव में आई तेजी, अगले 2-3 दिनों में यमुना में और पानी बढ़ने का अनुमान। ओडिशा के टिटलागढ़ में बाढ़ का कहर, कई इलाकों में हालात बिगड़े, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पवित्र गुफा के पास बारिश के कारण पानी का स्तर अचानक बढ़ा, इलाके में बाढ़ जैसे हालात, अमरनाथ गुफा के आसपास बारिश जारी। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण तेलंगाना में कुमरुम, भीम, आसिफाबाद में जनजीवन प्रभावित, नदी नालों में उफान। राजस्थान के कई जिलों में आफत की बारिश, अलवर में पानी में फंसी यात्रियों से भरी बस, जेसीबी से रेस्क्यू। हरिद्वार में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से सूखी नदी उफान पर है, कई वाहन बहे, क्रेन की मदद से गाड़ियों को निकाला गया बाहर।
0: उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, एआई कैमरों की मदद से किया जा रहा है सर्विलेंस, हर जिले के लिए कंट्रोल रूम किया गया स्थापित। प्रयागराज में कांवड़ियों के लिए हेल्प डेस्क की शुरुआत, 24 घंटे मदद के लिए तैनात रहेंगे कर्मचारी। दशाश्वमेध घाट पर रास्ते, मंदिरों की जानकारी के साथ प्लास्टिक से बदले जा रहे हैं कपड़े के झोले। और प्रयागराज में सावन की शुरुआत के साथ गंगा घाटों पर उमड़ी कांवड़ियों की भीड़, श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान और पूजा के बाद जल भरा, बोलबम के जय घोष के साथ रवाना हुए। प्रयागराज में अनोखी कांवड़ यात्रा, परिवार की एकता के लिए 10 साल से संकल्प निभा रहा परिवार 11वें साल

0: ಮಾಡಿ. ಈವನ್ ಅವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಈವನ್ ಮಹಿಳಾ ಇನ್ ವುಮೆನ್ ಬಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಬಟ್ ಬಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಡಿನೈಡ್ ದಿ ಡ್ಯೂ ಶೇರ್ ಇನ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ.
1: राज्यसभा में हंगामा अभी भी जारी है और शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि विपक्ष मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा है. आगे बढ़ते हैं. राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है. पप्पू यादव सहित कुछ सांसद आज भेष बदलकर संसद पहुंचे और संसद परिसर में चढ़ावा चोरी को लेकर फुल ड्रामा देखने को मिला. आपके सामने वो तस्वीरें देखिए. पप्पू यादव आज एक अलग ही भेष में नजर आ रहे हैं.
2: तो लगातार विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा है और चढ़ावा चोरी का मुद्दा लगातार समाजवादी पार्टी खास तौर पर दान पात्र के साथ अपना जो विरोध प्रदर्शन कर रही है उसके साथ उठाती रही है. और आज भी तस्वीरों में आप देखिए कि विपक्षी एकता सामने आ रही है. जब अलग अलग पार्टियों के सांसद एक साथ आ गए हैं तो आज पप्पू यादव भी आ गए और जुड़ गए इसके साथ, इस विरोध प्रदर्शन के साथ, और दान पात्र के पास पहुंच गए. वो भेष बदलकर वहां जाकर बैठ चुके हैं.
1: और कल भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखी थी जहां पर दान पेटी में पैसे डाले जा रहे थे, चंदा चोरी का आरोप लगाया जा रहा था और तंज कसा जा रहा था. और आज भी एक अलग तरह से प्रदर्शन करता हुआ विपक्ष.
3: तो विपक्ष के लोग हैं जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते. अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए.
4: लेकिन समाजवादी पार्टी की इस लड़ाई की लकीर इतनी लंबी हो गई कि आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को.
3: देखिए, सवाल केवल समाजवादी पार्टी का नहीं है और अच्छी बात है कि सारे विपक्ष के लोग इस मुद्दे पर एक हैं. मैं सारे विपक्ष के लोगों को धन्यवाद देता हूं अपनी पार्टी की ओर से. जिस बात को आदरणीय अखिलेश जी ने उठाया था उस बात पर आज पूरा का पूरा विपक्ष एक मत है. और एक मत इसलिए भी है, 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों की भावनाओं को न केवल कुठाराघात किया है बल्कि भाजपा ने कुचलने का काम किया है. और जिन्होंने हिंदुओं की, सनातनियों की भावनाओं को कुचला है, जनता आने वाले चुनाव में वोट के माध्यम से उन्हें कुचलने का काम कर.
4: मजबूर किया आप लोगों ने, ये क्यों
3: नहीं? सवाल मजबूर का नहीं है. हम लोग आपस में दोस्त हैं, हम लोग एक अलायंस में हैं, कोई मजबूरी की बात नहीं है. सभी लोग जागरूक हैं, सभी लोग विश्वास रखते हैं सनातन में, इसलिए उन्होंने साथ दिया. मैं उनका धन्यवाद देता हूं. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस आवाज को शुरुआत की थी. आज पूरा विपक्ष और विपक्ष ही नहीं, 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवाज में आवाज मिला रहे हैं.
4: आज देख रहे थे कुछ गैर हिंदू सांसद भी उसमें चंदा डाल रहे थे.
3: आप बिल्कुल डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते? ये सनातन तो इतना बृहद है.
1: तो ये प्रदर्शन की तस्वीरें आपने देखी और यहां पर पप्पू यादव आपको साधु के वेश में दिखाई दे रहे हैं. हाथ में रामलला की तस्वीर है और वो प्रतीकात्मक तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चंदा चोरी हुआ. ऐश्वर्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है. ऐश्वर्या, आज कुछ अलग तस्वीर, एक रिपोर्ट उनकी दिखाते हैं आपको.
5: सारी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, इस समय यहां पर आपको धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं और पप्पू यादव जो है वो यहां पे बैठे हुए आपको नजर आ रही हैं. देखिए, समाजवादी पार्टी की एमपी जो है वो यहां पर पहुंची है, उनके पास बैठकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है. धर्मेंद्र यादव आपको पीछे नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आपको पीछे नजर आ रही है. यहां पर जबरदस्त शोर इस समय हो रहा है. जो आपको यहां देखने को मिल रहा है ये है मकर द्वार संसद का, वो है कि विपक्षी पार्टियां अपनी एकजुटता दिखा रही है और एकजुटता के साथ साथ ये भी दिखा रही है कि किस तरीके से वो एकजुट है. और इस समय अमित शाह से सवाल जवाब किए जा रहे हैं. सारी विपक्षी पार्टियां यहां पर पीछे मकर द्वार पर नजर आ रही हैं. चंदा चोरी एक बड़ा मुद्दा यहां पर बन चुका है और बड़े बड़े नेता, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, यहां पर आपको पीछे नजर आ रही है. संसद से ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक दिल्ली.
2: तो वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है. आप देखते रहिए आज तक.
6: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी.
8: Tune in how to a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.

0: జెట్ సవారి సోకుడు.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर क्या
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
5: राहुल गांधी ने प्रस्तुत किया एम्स की रिपोर्ट के साथ कि पिलेट छर्रे लगे हैं पूरे शरीर में, आंख की रोशनी जा रही है। यही नहीं, AK-47 से फायर किया गया पटना में, और यही नहीं, महिलाओं के साथ जितना अशोभनीय और अश्लील व्यवहार किया गया वो सारी दुनिया ने देखा है। गृहमंत्री जी क्यों भाग रहे हैं सदन से? भारत का संविधान कहता है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है संसद के प्रति।
6: राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, मंत्री से क्या मतलब है? वहाँ मजिस्ट्रेट जो होता है वो जिलाधिकारी दे सकता है, SDM दे सकता है, जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन होता है वो आदेश देता है, मंत्री थोड़ा आदेश देता है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसी रॉयटर्स की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के खिलाफ युद्ध में बुरी तरह टूट चुके ईरान को फिर से खड़ा करने के लिए चीन और पाकिस्तान ने गुपचुप साजिश रची है। दावा है कि चीन की कंपनी के जरिए ईरान को कंधों पर रखकर दागी जाने वाली 400 आधुनिक एयर डिफेंस मिसाइलें दी जा रही हैं, और इस जहरीली खेप का रूट क्या है। चीन के उरुमकी से मिसाइलें विमान के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगी, फिर या तो विमान से या फिर सीपैक के तहत बनाए गए रास्ते से बलूचिस्तान से होकर ईरान पहुंचेंगी। यानी पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए कॉरिडोर बन गया है। हालांकि रॉयटर्स की इस खबर पर घिरे चीन और पाकिस्तानी सेना ने इन खबरों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें झूठा करार दिया है, लेकिन खुफिया गलियारों में इनकी गद्दारी का सच पहले ही बेनकाब हो चुका है। चीन और पाकिस्तान के इस नापाक गठजोड़ की खबर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंची तो वो भी हैरान रह गए। ट्रंप का ये बयान तब आया है जब वो मई 2026 में बीजिंग का दौरा कर चुके हैं और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 24 सितंबर 2026 को अमेरिका के राजकीय दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन कूटनीति के पर्दे के पीछे चीन और पाकिस्तान मिलकर अमेरिका की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। पाकिस्तान का इतिहास अमेरिका से डॉलर खाकर उसी को धोखा देने का रहा है। जब जब अमेरिका ईरान का संघर्ष चरम पर पहुंचा, पाकिस्तान ने खुलकर और गुपचुप तरीके से ईरान की सैन्य मदद की। अमेरिकी मीडिया, सीबीएस न्यूज और सैटेलाइट तस्वीरों के सबसे बड़े खुलासे ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी थी। संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने रावलपिंडी स्थित अपने नूर खान एयरबेस पर ईरानी वायुसेना के टोही विमानों यानी RC-130 और परिवहन विमानों C-130 को छिपने की जगह दी थी। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के विनाशकारी हवाई हमलों से अपने सबसे कीमती सैन्य विमानों को बचाने के लिए पाकिस्तान को अपना सेफ हाउस बनाया। यानी अमेरिका का सहयोगी बनने का नाटक करने वाले पाकिस्तान ने अपनी धरती का इस्तेमाल अमेरिकी दुश्मनों को पनाह देने के लिए किया, और इस बार पाकिस्तान के साथ उसका मालिक चीन भी आ गया है। चीन की मिसाइलें और पाकिस्तान की सरजमीन, ये जोड़ी अब दुनिया की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम छोटे छोटे दस्तों को दिए जा सकते हैं, जिन्हें कहीं भी छिपाकर अमेरिकी विमानों पर हमला किया जा सकता है। चीन और पाकिस्तान का मकसद साफ है, ईरान के जरिए अमेरिका को उलझाए रखना। पाकिस्तान अमेरिका के पैसे और इमदाद पर पलता है, लेकिन जब वफादारी की बात आती है तो वो चीन की गोद में जाकर बैठ जाता है और अमेरिकी ताकतों के खिलाफ हथियार सप्लाई का जरिया बनता है। नूर खान एयरबेस पर ईरानी जहाजों को छुपाने के लिए चीनी मिसाइलों का रास्ता बनने तक पाकिस्तान की गद्दारी के सबूत अब पूरी दुनिया के सामने हैं। सवाल ये है कि क्या अमेरिका अब भी पाकिस्तान की इस दोहरी चाल को नजरअंदाज करेगा, या फिर चीन और पाकिस्तान के इस नापाक गठजोड़ पर कोई सख्त और बड़ा एक्शन लेगा। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: विपक्ष के नॉनस्टॉप हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित। संसद परिसर में चढ़ावा चोरी पर अजीबोगरीब प्रदर्शन। पुजारी के बीच में पप्पू यादव ने फिल्माया चंदा चोरी का दृश्य।
1: संसद के दोनों सदनों से पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल। राष्ट्रपति की मुहर के बाद बनेगा कानून। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो संदेश, कहा लीक माफिया को बख्शा नहीं जाएगा।
0: गृहमंत्री पर असंसदीय शब्दों के आरोप में राहुल गांधी पर एक्शन संभव। अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस। प्रियंका के गौमूत्र वाले बयान के खिलाफ 215 वाइस चांसलर्स की चिट्ठी।
1: सीजेपी प्रदर्शन में घायल दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवारजनों ने बताई अपनी आपबीती। बच्चों ने कहा उपद्रवियों ने किया पापा पर हमला। हमारे परिवार के अधिकारों की बात संसद में क्यों नहीं होती।
0: मुंबई के पास भिवंडी में गिरी 4 मंजिला इमारत। एनडीआरएफ ने मलबे से 7 लोगों को बाहर निकाला, 8 की मौत, 5 लोग अब भी फंसे। बिल्डिंग में चल रहा था मरम्मत का काम।
2: हम छत्रपति संभाजी नगर में, और छत्रपति संभाजी नगर का नाम आज पूरे देश में इस वजह से भी जाना जाता है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भी यहीं से हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अभिजीत दिपके के घर पे हम इस वक्त मौजूद हैं, और उस वक्त हम अभिजीत दिपके से बातचीत कर रहे हैं जब सदन के दोनों सदनों में पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पारित हो चुका है, लोकसभा के भीतर भी और कल राज्यसभा के भीतर भी। और कल इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी जारी किया और कहा है कि कैसे सरकार के तरफ से जो विद्यार्थियों की मांग थी उसे तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया गया और एक कड़ा कानून इस पूरे मामले में लाया गया। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होगी। कौन अभिजीत दिपके से लेकर अभिजीत दिपके तक का यह सफर किस तरीके से रहा, और सबसे बड़ी बात अब आगे ये स्टूडेंट एजिटेशन क्या करेगा, कहां ये एजिटेशन जाएगा, सरकार का जो बिल है उस पर उनकी क्या भूमिका रहेगी, ये तमाम मुद्दे हैं, राजनीति भी है, सब पर बात करेंगे। अभिजीत दिपके, बहुत बहुत शुक्रिया आप आज तक से बात कर रहे हैं।
3: सर,
2: पहला सवाल तो यही रहेगा क्योंकि मैंने जैसे कहा लोकसभा और राज्यसभा में पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पारित हो चुका है, ये बिल को लेकर आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि इस बिल की जरूरत थी, या आपको जो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कड़ा कानून बनाया हुआ है, प्रावधान कड़े किए हुए हैं, 2024 के प्रावधान थे वो और भी कड़े किए हुए हैं, और ऐसे में पेपर लीक को रोकने में वो कामयाब हो पाएंगे, आपको लगता है कि ये बिल काफी है?
3: सर, मैंने जितना समझा इस बिल को उससे मुझे ये समझ में आया ये बिल पेपर लीक रोकने के लिए नहीं है, पेपर लीक होने के बाद क्या क्या कर सकते उसके लिए, क्योंकि सारी बातें वही चल रही है, जेल को 4 साल से बढ़ाकर 10 साल का कर दिया, पेनल्टी बढ़ा दी है, तो कहीं ना कहीं सरकार अज्यूम करके चल रही है पेपर लीक तो होने वाला है, उसके बाद हम क्या करेंगे। हमारी जो डिमांड थी, जो आंदोलन था, वो इसलिए था कि पेपर लीक ना हो, और ये सारा बिल का फोकस जो है वो इस पर है कि पेपर लीक होने के बाद सरकार क्या क्या कदम उठाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे बस बिल को लेकर नहीं, जो लोग सरकार में बैठे उनके इंटेंशन को लेकर भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि जैसे कल प्रधानमंत्री ने बोला वैसे उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में भी बोला था, और कई सारे लोग उस पर भी खुश हो गए थे कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी, अब क्यों आप लोग प्रोटेस्ट करो,
2: 3 महीने के भीतर चार्जशीट फाइल होकर उस पर कार्रवाई होगी,
3: और लोग हमें तब भी बोल रहे थे आप क्यों प्रोटेस्ट करो, आप तो कॉल ऑफ कर दो। लेकिन हमने देखा पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ, पहली हियरिंग पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का जो काउंसिल था वो प्रेजेंट नहीं था। तो आप लॉज कितने भी बना लो, कुछ भी कर लो, जब आपका इंटेंशन ही उतना डिटरमाइंड नहीं हो आप इंटेंशनली, सो आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन बी कॉन्क्रीट हियर। तो सरकार को जो है फोकस करना चाहिए कि पेपर लीक ना हो, वो फोकस सरकार का अभी नहीं है। पेपर लीक हो जाएगा तो फिर वही चीजें होगी, फिर से स्टूडेंट्स का फ्यूचर अफेक्ट होगा, फिर से जो है आपको री एग्जामिनेशन करवानी पड़ेगी, और उस बीच में फिर से और कितनी जाने जाएगी किसी को पता नहीं है।
2: प्रधानमंत्री ने और एक वीडियो जारी किया था, ये कल का वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले जो वीडियो था उसमें उन्होंने कहा था कि कई निर्णयों की श्रृंखला है, उस श्रृंखला में पहला निर्णय फास्ट ट्रैक कोर्ट का और उसके बाद ये बिल लाया जा रहा है, इसका मतलब ये कि और भी निर्णय उसमें हो सकते हैं। जो 5 मांगे सीजेपी की तरफ से मंत्रियों के सामने रखी गई थी उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की भी मांग थी, और उसके साथ कुछ
3: व्हाइट पेपर आना चाहिए
2: आपने कहा था, उसके साथ साथ आपने ये भी रखा था उसमें कि एनटीए के भीतर सिस्टमैटिक बदलाव किस तरीके से होने चाहिए, उस पर चर्चा कब शुरू होगी आपको लगता है, क्योंकि आपको आपके बोलने से तो लग रहा है कि आप इस बिल से कुछ ज्यादा खुश नहीं।
3: तो वही हम सरकार से बात ही कर रहे हैं अभी भी, हम मतलब वी आर ट्राइंग टू आस्क देम कि एक तो कंपनसेशन पर भी अभी तक उन लोगों ने कुछ बोला नहीं है। 1 करोड़ का कंपनसेशन हमने विक्टिम्स की फैमिली को देने बोला था, सरकार ने अश्योर तो किया है कि दे देंगे, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना डिले क्यों किया जा रहा है। जब रातों रात सरकार बदलनी होती है, रातों रात एमपी एमएलए खरीदने होते हैं, तब आपके सूटकेसेस पहुंच जाते हैं 50-50 करोड़ के। लेकिन जहां पर विक्टिम्स की फैमिली को 1 करोड़ का कंपनसेशन देना है, तो सरकार ने अभी तक अनाउंस कुछ नहीं किया।
2: उसके तो कुछ नॉर्म्स होते हैं, सरकार ने उस दिन भी कहा था कि वो नॉर्म्स के तहत हम उनको कंपनसेशन।
3: सारे नॉर्म्स सर जनता के लिए है, सरकार रातों रात बदलनी है तो कोई कौन से नॉर्म्स होते हैं? फिर रातों रात सरकार बदलनी है, गिरानी है, एमपीज खरीदने, एमएलए खरीदने हैं, तो तब नॉर्म्स नहीं देखे जाते। तब जो 10th schedule है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो देखा नहीं जाता है। सारे नॉर्म्स, सारे रूल्स, सारे जो गाइडलाइंस, सारे रूल बुक सिर्फ लोगों के लिए, जनता के लिए, इन लोगों के लिए सारी खुली छूट है।
2: लेकिन आपकी एक मांग उसमें ये थी कि जिस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती, नॉन निगोशिएबल, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और वो तो हो चुका है। ठीक है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरीके से बदल ही दिया एक तरीके से, क्योंकि सेक्रेटरी वहां के बदल दिए, दो नए सेक्रेटरी ला दिए गए हैं। एनटीए के भीतर जो अधिकारी थे, सरकार का आंकड़ा 37 का है, हालांकि विपक्ष कहता है कि कुछ 24 ही उसमें ये थी, जो भी है उसमें, लेकिन वो भी पूरी तरीके से बदल दिया, उनको भी हटा दिया वहां पर। तो इसका मतलब ये कि आपको लगता है कि सरकार आपके दबाव में कदम तो रखने की कोशिश करिए, आप सरकार को वो भी उम्मीद नहीं रखते आप सरकार?
3: नहीं, कदम रखा है, आई एम वेरी ग्लैड। और जो प्रधानमंत्री पिछले 10-12 साल से बस हिंदू मुसलमान का डायलॉग कर रहे थे, हिंदू मुसलमान के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे थे, आप देख रहे हो पिछले 4-5 दिनों में वो इंस्टाग्राम पर एजुकेशन के ऊपर रील्स डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस देश के स्टूडेंट्स जो है, यूथ जो है, जेंजी जो है, उन्होंने फोर्स किया है प्राइम मिनिस्टर को, जो प्राइम मिनिस्टर इतनी ज्यादा हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स से प्यार करते थे, उनको फोर्स किया है कि शिक्षा पर बात करो, एग्जामिनेशन पर बात करो। सो दिस इज अ वेरी बिग एंड मेजर विक्ट्री फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने स्टेप्स क्या लिए, जो नया एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, ही वॉज सीन सपोर्टिंग द रेपिस्ट ऑफ बिल्किस बानो, उनका स्वागत करने में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है वेर ही वॉज वेलकमिंग द रेपिस्ट ऑफ बिल्किस बानो।
2: ये मुद्दा जब प्रियंका गांधी ने उठाया था तो बड़ा शोर हुआ,
3: होना भी चाहिए
2: लोकसभा के भीतर शोर हुआ, उन्होंने कहा कि ये गलत बयान है, वो बयान हटा।
3: मतलब आप सोचिए ना, जो बच्चे स्कूल में है, कॉलेजेस में, उनके क्या मैसेज जा रहा है? एक रेपिस्ट के सपोर्टर को आप एजुकेशन मिनिस्टर बना रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर यू सेंडिंग टू द कंट्री? शर्म आ रही है, मतलब ये तो धर्मेंद्र प्रधान से
2: उनका ये कहना था कि हम तो, वो कह रहे थे कि ये कानूनन पॉसिबल है, यानी उनको जो छोड़ना है वो कानूनन पॉसिबल है।
3: कानूनन पॉसिबल है तो आप वेलकम करोगे उनका हारमाला डालकर, बलात्कारियों का आप हारमाला डालकर स्वागत करोगे, फिर कानूनन पॉसिबल है
2: तो जो नया मंत्री है उनसे भी आप संतुष्ट?
3: नॉट एट ऑल सर, मतलब कोई रेपिस्ट का वेलकम करता है, हाउ कैन आई बी हैप्पी विद दैट? ये तो मतलब बहुत ही शेमफुल बात है, ना सिर्फ हमारे लिए, इस कंट्री के लिए। सोचिए इंडिया की इमेज क्या आ जाएगी वर्ल्ड में जब उनको पता चलेगा इंडिया का जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो एक रेपिस्ट का वेलकम कर रहा है हारमाला डालकर। दिस इज वेरी शेमफुल। और जो सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, नया सेक्रेटरी जो बना है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो खुद करप्शन में इन्वॉल्व रह चुके पहले। एनिमल वेलफेयर उनका कुछ था, उसमें कितने सैकड़ों हजारों करोड़ का उन्होंने स्कैम करा है। तो ये तो एक तरीके से एक खराब इंसान को हटाकर दूसरे खराब इंसानों को ये रिवॉर्ड कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे।
2: जो पुल उनके पास है उसमें से
3: एग्जैक्टली, मैं कल वही बोल रहा
2: हूं, उनके पास है जो चुने हुए लोग हैं उनमें से,
3: मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी में और भी अच्छे लोग होंगे।
2: कौन आपकी चॉइस कौन थी मंत्री बनाने के लिए?
3: मंत्री बना हम कैसे कोई चॉइस देते, हमारी सरकार?
2: आपके दिमाग में कोई?
3: नहीं, मेरे दिमाग में तो कोई नहीं था, मेरे दिमाग में तो बस यही था कि धर्मेंद्र प्रधान डजंट डिजर्व टू बी द एजुकेशन मिनिस्टर। बट मुझे ये नहीं पता था कहीं से भी आइडिया कि एक ये लोग एक रेपिस्ट के सपोर्टर को एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे। और भी लोग थे यार, दूसरों को बना देते, बट सही बात है, इनके पास जो पूल है वो सारा गुंडों का ही पूल है, वो सारा ऐसे रेपिस्ट लोगों का वेलकम करने वाला ही पूल है। तो लोग ही जब इनके पास ऐसे, तो ये भी क्या ही करेंगे।
2: ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, जो भी बीजेपी करेगी आपको पसंद नहीं आएगा, जो भी ये सरकार करेगी पसंद नहीं आएगा, और सरकार भी इसी बात को।
3: आप मुझे बताइए, एज अ जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, अगर आपसे कोई इंटरनेशनली, आप इंटरनेशनली जाओगे, आपसे कोई पूछेगा इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर ने रेपिस्ट का वेलकम किया है, आपको पसंद आएगा वो? इजंट इट शेमफुल सर? मतलब कोई ऐसा तो ढूंढते ना जिसने ये हरकत तो नहीं करी होगी, इससे कैसे कोई खुश हो सकता है सर? मतलब हम देखते हैं हर एग्जाम्स में, नीट का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें हमेशा जो फोरफ्रंट पर रहती है, सबसे ज्यादा लीड करती है या रैंकिंग रहती है, वो लड़कियों की रहती है। व्हाट दोज गर्ल्स विल बी फीलिंग, एक एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो रेपिस्ट का सपोर्टर है, हाउ कैन आई बी हैप्पी विद दिस? इट्स नॉट अबाउट बीजेपी या सरकार, अच्छे कदम लेंगे तो सपोर्ट कर देंगे, लेकिन आप एक रेपिस्ट को, रेपिस्ट के सपोर्टर को एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे, सो मैं तो खुश नहीं हूं सर। मेरी बहन है, सो आई कैन सपोर्ट दिस सर।
2: एक दूसरा मुद्दा इसमें पार्लियामेंट के भीतर बहुत चर्चा में आ रहा है, वो पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर, और राहुल गांधी की मांग को आप सपोर्ट कर रहे हैं कि अमित शाह गृहमंत्री की इस्तीफे को लेकर जो कांग्रेस पार्टी की मांग है उसको आपकी तरफ से सपोर्ट किया गया है, क्या इस पर एक बार दोबारा आंदोलन होगा? क्योंकि अभी वन ऑफ द थ्री डिमांड्स जो आपकी तरफ से रखी गई थी उसमें यह था कि जो मामले दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाए, बिहार में लिए गए, महाराष्ट्र में घोषणा कर दी गई और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, दिल्ली में यह कहा गया है कि हम जो प्रोटेस्टर्स थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये उन्होंने कहा, लेकिन क्या आपकी मांग पूरी हुई है इस पूरे मामले को लेकर, और जो गृहमंत्री के इस्तीफे को लेकर राहुल गांधी जो कह रहे हैं?
3: मुझे लगता है कि ये सरकार को इस मिसअंडरस्टैंडिंग या डिल्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि एक मंत्री के इस्तीफे के बाद गुस्सा ठंडा हो चुका है। इस डिल्यूजन में ना रहे सरकार, लोगों में अभी भी बहुत गुस्सा है, और वो गुस्सा सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ नहीं था, पूरी सरकार के खिलाफ था। तो अगर ये लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे या नहीं अभी भी नहीं स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे या हैरेस करते रहेंगे और जो ब्रुटैलिटी करी उसके बाद ये गुस्सा और बढ़ा, तो ये गुस्सा शांत नहीं हुआ। तो अगर ये लोग जो स्टूडेंट्स है, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, उनके खिलाफ केसेस वापस नहीं लेते, तो यस वी विल हिट द स्ट्रीट्स अगेन। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बनेगा।
2: कोई टाइमलाइन है आपके पास?
3: हम बता देंगे उस पर। अभी हम उम्मीद करते ये लोग मान ले बातें, नहीं मानते तो
2: उम्मीद क्या है? सरकार की तरफ से कोई बयान आना चाहिए इस पर?
3: ऑफकोर्स रिटर्न में आना चाहिए कि जितने भी पीसफुल प्रोटेस्टर्स है, जितने भी स्टूडेंट्स है, उनके सभी के ऊपर के जो भी केसेस लगेंगे वो हम वापस लेंगे, एंड दे शुड इंश्योर कि इसके बाद किसी भी स्टूडेंट को हैरेस नहीं किया जाएगा पुलिस के द्वारा। पुलिस ने ऑलरेडी बहुत खून बहा दिया है 20 जुलाई को, शायद से उससे उनका मन नहीं भरा है। और अमित शाह का तो मुझे समझ नहीं आता, लाइक व्हाट इज ही आफ्टर? डज ही वांट टू किल द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया? मतलब बिहार में AK-47 फायर कर दी गई, दिल्ली में पैलेट गन्स यूज कर लिए गए, क्या चल रहा है इस देश में?
2: सरकार की तरफ से ये कहा गया है, दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ 2638 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है सीसीटीवी में, जो हिस्ट्री शीटर्स हैं जिनके खिलाफ।
3: तो ये बाहर क्यों थे
2: हिस्ट्री शीटर्स? जो बेल पर बाहर होंगे,
3: तो किसकी गलती है?
2: केसेस चल रहे होंगे,
3: किसकी गलती है? हिस्ट्री शीटर्स अगर क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे थे, इसमें गलती किसकी है? पुलिस की है। पुलिस किसके अंडर काम करती है? अमित शाह के अंडर।
2: उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीजेपी की नहीं है, प्रोटेस्टर्स की नहीं है।
3: जो स्टूडेंट्स
2: आपके प्रोटेस्ट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा आपको
3: लगता? मुझे लगता है ये डेलिबरेटली प्लान किए गए हुए लोग थे, जो मैं पहले से कह रहा था, ये मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ, मैं इस प्रोटेस्ट की स्टार्टिंग से कह रहा था, ये डेलिबरेटली प्लान किए गए हुए लोग हैं। और मैं बार बार बोल रहा था कि बीजेपी वाले कुछ गुंडे भेजेंगे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए, और वही हुआ। 19 जुलाई की रात को पत्थरों से भरे ट्रक रखे जाते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर मंतर के आसपास। अब जंतर मंतर इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया, सेंट्रल दिल्ली में आता है जहां पर पत्थर दिखाई भी नहीं देते, वैसे जंतर मंतर के पास पत्थरों से भरे ट्रक कैसे आ जाते रातों रात? और उस पत्थरों से भरे ट्रक के पीछे एक टूटी हुई वैन खड़ी रहती है जो कम्प्लीटली डैमेज है, पुलिस ने खड़ी रखी। जब मैंने ट्वीट डाला उस पत्थरों से भरे ट्रक और उस वैन का, तो जो वहां पर डीसीपी थे उन्होंने हमारी टीम को बुलाया और कह रहा, अभिजीत ऐसे ट्वीट क्यों डाल रहा है यार, ये तो एनडीएमसी का ट्रक है, एनडीएमसी का ट्रक है जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वो उसका डेब्रिस है सारा। और जो कल रिपोर्ट आई है उसमें ये पता चला है कि वो ट्रक हरियाणा का था, वो एक रोड एक्सीडेंट में पकड़ा गया था, रोड एक्सीडेंट में पकड़ा गया था, और फिर पुलिस ने कहा था कि इसको खाली करवा दिया गया था। तो खाली करवा दिया था तो फिर पत्थरों से भरकर फिर से जंतर मंतर के पास कैसे आया?
2: फिर जो विजुअल्स दिखाए गए और जिसपे दिखाया गया कि पुलिस को मारा गया, क्योंकि एक पिटीशन आपके तरफ से हुई सुप्रीम कोर्ट के, एक पिटीशन उन पुलिस वालों के घर वालों की तरफ से एक पिटीशन की गई सुप्रीम कोर्ट पर, कहा गया कि हमें भी ब्रुटैलिटी से मारा गया प्रोटेस्ट के वक्त पे, उनके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उस बात को लेकर
3: मैं कह रहा हूँ ये ऑर्केस्ट्रेटेड था बीजेपी द्वारा, और मैं पुलिस वालों को भी ये कह रहा था कि मुझे आपके लिए बुरा लगता है, आप पत्थरों से भरे ट्रक वहां लगा देते हो, उन्हीं पत्थरों से आकर बीजेपी के गुंडे।
2: जो पुलिस वालों को पीटा गया उसमें सीजेपी या उनके समर्थकों का कोई लेना देना?
3: कोई लेना देना नहीं सर।
2: Somebody planted it,
3: not somebody, the BJP planted it, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, the BJP planted it। हम एक महीने से सर प्रोटेस्ट करते, एक महीने में तो कुछ नहीं हुआ। अगर हमारे प्रोटेस्टर वायलेंट होते या हमारे प्रोटेस्टर को ऐसा कुछ करना होता, एक महीने में क्यों नहीं हुआ? उसी दिन क्यों हुआ? और हमने देखा है सर, लाठिया जो लोग गुंडे थे, जो पुलिस वाले भी नहीं थे, उनके हाथ में बैटन्स दी गई थी, लाठिया दी गई थी, उसकी वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो इन लोगों के पास लाठिया किसने दी? पुलिस की लाठिया थी वो, जो ट्रांसपेरेंट लाठिया होती है ना उनकी, वो गुंडों के हाथ में थी और वो स्टूडेंट्स को पीट रहे थे, पुलिस के साथ मिलकर पीट रहे थे। तो उनके पास लाठियां कैसे चली गई? हु गिव देम द अथॉरिटी टू बीट स्टूडेंट्स?
2: क्या 20 तारीख को इतनी भीड़ होगी ऐसा आपको लगा था? क्योंकि इतने दिन से आप प्रोटेस्ट पर बैठे थे, इतनी भीड़ तो कभी देखी नहीं थी।
3: इतनी भीड़ कभी नहीं थी, बट ये भी है कि लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा था। और उसमें ये भी चीज हुई कि 20 दिन से सोनम सर भी अनशन पर थे, उसके बाद भी सरकार डायलॉग करने को तैयार नहीं थी, सुनने को तैयार नहीं थी। तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा था लोगों का जो कंसोलिडेट होकर दिखा। और सरकार को मैं वही कह रहा हूँ, सरकार को अगर लग रहा है कि ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा या ठंडा हो चुका है, दे आर डूइंग अ बिग मिस्टेक।
2: सरकार की तरफ से आपको पहला कॉन्टेक्ट कब किया गया बातचीत के लिए?
3: सरकार को जो पहला कॉन्टेक्ट था वो 20 के पहले ही था। हाँ। जब मुझे लगता है शायद उनको अंदेशा आया होगा, उनको रिपोर्ट मिली होगी कि बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है,
2: सपोर्ट हो रहा है।
3: सो दैट इज वेन दे इन्वाइटेड अस फॉर अ
2: डायरेक्टली आपको था या सोनम मांगचुक के लिए था?
3: नहीं नहीं, डायरेक्टली सौरभ फुकरा, वो भी पुलिस के थ्रू ही आया था। पुलिस वाले थे कि आप आइए, बात करना चाहते हैं कुछ लोग। तो पहले उन्होंने बोला कि डीएम से बात कर लीजिए। हमने बोला डीएम से क्या बात करें, डीएम थोड़ी ना रेजिग्नेशन लेगा एजुकेशन मिनिस्टर का। तो हमने बोला बात करनी तो टॉप लीडरशिप से करेंगे, वरना नहीं करेंगे।
2: लेकिन सोनम वांगचुक, क्योंकि ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ देते हैं जिस मांग को लेकर वो दरअसल अनशन के लिए बैठे थे, और उसके बाद अगले दिन खबर आती है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे।
3: yes.
2: और आप कहते हैं कि हम तो हमारा आंदोलन तो शुरू रहेगा। शायद सरकार को ऐसा लगा होगा सोनम वांगचुक अनशन तोड़ रहे हैं। क्या आपसे बात हुई थी सोनम वांगचुक की कि हम अनशन तोड़ रहे हैं? आपको
3: मुझे
2: बता
3: कॉल आया था उनकी वाइफ का कि ऐसा ऐसा हुआ है उसके बाद जब अनशन तोड़ा गया,
2: क्योंकि उनकी अलग बातचीत चल रही थी ऐसा लग रहा है सरकार।
3: उनको एक तरीके से किडनैप कर दिया था, उनको पूरी तरह आइसोलेट कर दिया गया था। मैं उनसे रीच आउट करने को ट्राई कर रहा था, मैं मिलने को भी ट्राई करना था कर रहा था, बट दे डिडंट अलाउ अस टू मीट। एंड हाउ वियर्ड इज दिस, जेपी नड्डा मिल सकते हैं, अपोजिशन के एमपी जाते हैं उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। मैं मिलने को ट्राई करता हूँ, मुझे मिलने नहीं दिया जाता है। तो एक तरीके से किडनैप कर रखा था, जहां पर बस किडनैपर ही मिल सकता है।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.

0: पेलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता।
1: जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं।
0: हम लोगों को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पेलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे।
1: ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं।
2: ये मानसून सत्र में राजनीति का दूसरा पार्ट है। पेपर लीक पर छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है, जंतर मंतर पर खामोशी है, धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी सीज फायर करने पर राजी नहीं है। राहुल गांधी का इरादा साफ दिख रहा है, पेपर लीक की लड़ाई को पायलट गन पर शिफ्ट करने की, धर्मेंद्र प्रधान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट पर लाने की।
3: She says the student.
2: कल राहुल गांधी संसद में हुए हंगामे के केंद्र में रहे, उनके हमले पर दिन भर बवाल रहा। राहुल गांधी के भाषणों के कुछ शब्दों को असंसदीय बताकर रिकॉर्ड से बाहर भी किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने संसद से निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और हमलों का सिलसिला जारी रखा। बीजेपी राहुल गांधी की मंशा को समझ रही है कि राहुल गांधी ने अमित शाह को ही हमले के लिए क्यों चुना, क्योंकि अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं। सत्र के 10 दिन हुए हैं, 15 दिन और बाकी हैं, और राहुल गांधी अमित शाह को चर्चा के केंद्र में रखने की कोशिश में दिख रहे हैं।
4: कि हो क्या रहा है यहां, दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है, राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा ये सीजेपी के लोग आए, ये जेनजी के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो, चलो उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया, हमारा क्या होगा, हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे, तो चलो कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं।
2: बीजेपी बनाम राहुल गांधी की यह लड़ाई असल में युवाओं के बीच पैठ बनाने की जंग भी है। पेपर लीक पर छात्रों के प्रदर्शन की कामयाबी से लगता है कि विपक्ष के हाथों में भविष्य के लिए नई कुंजी आ गई है, जिसका इस्तेमाल संसद में होता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जब अपना वो जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे तो उनको इस्तीफा देना जरूरी है।
1: पूरे तरीके से सीट बेचने का काम करती है और पूरे तरीके से ये धांधली में संलिप्त हो चुकी है।
2: सीबीआई से जांच करवाई, निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो।
3: परीक्षा में जो निमित्ता हुई है इसकी सीबीआई जांच हो और उन चोरों को जो कांग्रेस और झारखंड के चोरों के समर्थन से सहयोग से जो सरकार चल रही है वैसे चोरों को जेल के अंदर भेजने का काम किया जाए।
4: शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, हम ये कह रहे हैं कि कंपनसेशन देंगे। आप में यदि हैसियत हिम्मत है तो चलिए, नहीं तो आप लीपापोती कर रहे हैं।
5: पेपर लीक शिक्षा व्यवस्था पर जब बात हो रही है तो झारखंड लोक सेवा आयोग की बात हो जाए। यहाँ कांग्रेस गठबंधन के साथ जीएमएम की सरकार है और यहाँ भी पेपर लीक और धांधली के गंभीर आरोप हैं। रांची में छात्रों का ये महाजुटान झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की 14वीं परीक्षा के खिलाफ है। जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा अब विवादों में है। राज्य भर में विरोध शुरू हो गया है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। पेपर लीक, उत्तर कुंजी में बार बार बदलाव और चयन प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोपों ने विवाद को और गहरा कर दिया। छात्रों का आरोप है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा के परिणाम में धांधली हुई। प्रीलिम्स परीक्षा के रिजल्ट में ऐसे उम्मीदवार भी पास हो गए जिन्होंने बहुत कम सवालों के जवाब दिए थे। परीक्षा का डेटा संभालने का काम टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। इस कंपनी को यूपी सरकार ने ब्लैक लिस्ट कर रखा है। विवाद बढ़ने पर सरकार ने मामले की जांच सीआईडी को सौंपी, जिसके बाद जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यांगते ने पद से इस्तीफा दे दिया और कई गिरफ्तारियां हुई। विपक्षी दल इस मामले में सीबीआई जांच और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है कि राहुल गांधी झारखंड कब जाएंगे, कब हेमंत सोरेन से कहकर वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे, कब वहां के छात्रों को मुआवजा दिलवाएंगे। लेकिन सवाल तो बीजेपी से भी है कि महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक पर चुप्पी क्यों? पेपर लीक झारखंड में होता है तो कांग्रेस चुप्पी साध लेती है, यूपी में होता है तो बीजेपी सन्नाटे में चली जाती है, पंजाब में हुआ तो आम आदमी पार्टी पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है। फिलहाल झारखंड में पेपर लीक की सीआईडी जांच चल रही है। आगामी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और शुरुआती जांच गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा कर रही है। लेकिन सवाल सियासतदानों से है कि पेपर लीक पर निरपेक्ष व्यवहार कब करेंगे। आज तक ब्यूरो।

0: मिडिल ईस्ट लग रहा है और इसकी तपन में दुनिया भर के बाजारों में बेचैनी बढ़ गई है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता तनाव फिर से आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ाने की आशंका पैदा कर रहा है। दरअसल जब भी किसी बड़े तेल उत्पादक क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, सबसे पहले कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ जाती है। इस बार भी अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने ऊर्जा बाजारों की धड़कनें तेज कर दी हैं। गोल्डमैन सैक्स ने चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज में सप्लाई संकट लंबा खिंचता है तो कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और चौथी तिमाही तक ब्रेंट क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। तनाव लंबे समय तक जारी रहने पर कुछ विश्लेषकों ने $150 से $200 प्रति बैरल तक जाने की आशंका जताई है। फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड करीब $91 और WTI क्रूड लगभग $83 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। तेल बाजार में बढ़ती इस बेचैनी का असर भारत पर भी पड़ सकता है। इसकी वजह है कि देश अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है और पश्चिम एशिया ग्लोबल क्रूड सप्लाई का खास हिस्सा है। आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। वहीं पश्चिम एशिया में दुनिया के करीब 20% तेल व्यापार की आवाजाही होर्मुज के रास्ते होती है और होर्मुज में बाधा आने पर भारत का आयात बिल बढ़ सकता है। यही वजह है कि होर्मुज में किसी भी तरह की रुकावट भारत जैसे बड़े आयातक देशों की चिंता बढ़ा देती है। तेल महंगा होने से ऊर्जा लागत बढ़ सकती है और महंगाई पर भी दबाव बन सकता है। इसी खतरे को देखते हुए भारतीय रिफाइनरियां अपनी खरीद रणनीति में बदलाव करती नजर आ रही हैं, जिसके चलते जून तिमाही में रूस और लैटिन अमेरिकी देशों से तेल खरीद बढ़ाई गई, क्योंकि रिफाइनरियां वैकल्पिक स्रोतों पर फोकस बढ़ा रही हैं और उनका मकसद किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम करना है। फिलहाल बाजार की नजर अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक कोशिशों पर है। अगर तनाव कम होता है तो कच्चे तेल की कीमतों में राहत मिल सकती है, लेकिन अगर संकट लंबा खिंचता है तो इसका असर पेट्रोल डीजल महंगाई और शेयर बाजार तक महसूस किया जा सकता है। यानी पश्चिम एशिया का ये तनाव हजारों किलोमीटर दूर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के बजट पर भी असर डाल सकता है। आदित्य राणा, आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आज तक पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके, पेपर लीक रोकने में बिल नाकाफी, प्रदर्शन छात्रों पर हुई ज्यादती, उपद्रव फैलाने के लिए बीजेपी पर लगाया आरोप। विपक्ष के नॉनस्टॉप हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही स्थगित, संसद परिसर में चढ़ावा चोरी पर अजीबोगरीब प्रदर्शन, पुजारी के वेश में पप्पू यादव ने फिल्माया चंदा चोरी का दृश्य। संसद के दोनों सदनों से पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल, राष्ट्रपति की मोहर के बाद बनेगा कानून, पीएम मोदी का वीडियो संदेश, कहा लीक माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। सीजेपी प्रदर्शन में घायल दिल्ली पुलिसकर्मियों के परिजनों ने बताई आप बीती, बच्चों ने कहा उपद्रवियों ने किया पापा पर हमला, हमारे परिवार के अधिकार की बात क्यों नहीं होती। मुंबई के पास भिवंडी में गिरी 4 मंजिला इमारत, एनडीआरएफ ने मलबे से 7 लोगों को बाहर निकाला, 8 की मौत, 5 लोग अभी फंसे हैं, बिल्डिंग में चल रहा था मरम्मत का काम।

0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं संसद की कार्रवाई की ओर। लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। पहले हंगामे के चलते इसको स्थगित कर दिया गया था, 12 बजे शुरू।
1: की अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्य सूची धर्म संख्या 4 पे मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखती हूं।
2: आइटम नंबर 6, श्री पवित्र मार्गरिता जी।
3: Sir, will you find permission? I rise to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 6 for Minister of External Affairs in today's revised list of business.
2: Item number 7, Sri Saptagiri Olakaji. Sri.
4: Sir, I rise to present the 33rd and 34th reports. Hindi and English version of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj are listed against my name in today's list of business.
2: Item number 8, Sri Arjun Ram Meghwalji.
5: Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to announce the government business during the week commencing from Monday, the 3rd of August 2026, will consist of consideration of any item of government business carried over from today's order paper. It contains consideration and passing of the registration of births and deaths and discussion on security resolution seeking the approval of the Supreme Court number of judges. Amendment Ordinance 2026 number 1 of 2026 and consideration and passing of the Supreme Court number of judges. Amendment Bill 2026. Consideration and passing of the micro, small and medium enterprises development. Amendment Bill 2026, after it is considered and passed by Rajya Sabha. Consideration and passing of the following bills after their introduction. Number 1, the Indian Statistical Institute Bill 2026. Number 2, the Bankers Books Evidence Bill 2026. Discussion on demand for excess grant for the year 2022 and 2023. After presentation and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill. Thank you.
2: Item number 9, Srimati Aparajita Sarangi ji.
6: Honorable Chairman, sir, I wish to move that this House do extend time for presentation of the report of
0: the. Himanshu Mishra, hamare sahyogi, hamare saath jude hue hain. Abhi hangama chal raha hai vipaksh ka. Himanshu, lagatar पहले एक घंटा कार्रवाई ठप हो चुकी है, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से चर्चा हो, लेकिन विपक्ष का हंगामा रुक नहीं रहा है।
7: देखिए हिमांशु, बिल्कुल विपक्ष का हंगामा जो है वो रुक नहीं रहा है। लोकसभा में भी लगातार हंगामा जो है वो चल रहा है और विपक्ष की ये मांग है कि गृह मंत्री जो है वो आकर जवाब दें। और दूसरी तरफ विपक्ष की ये भी मांग है कि जो चंदा चोरी का मामला है इस पर चर्चा हो जाए। और इसी मामले को लेकर राज्यसभा जो है वो सोमवार तक के लिए जो है स्थगित कर दी गई है, लेकिन अभी भी लोकसभा के अंदर जो है वो कार्यवाही चल रही है। उसका बड़ा कारण ये भी है क्योंकि 12 बजे जो है पेपर ले होता है लोकसभा के अंदर, और पेपर ले के बाद अगर इसी तरीके से हंगामा चलता रहा तो ये मान के चला जा सकता है कि सदन की कार्यवाही जो है वो सोमवार 11 बजे तक के लिए जो है वो स्थगित की जा सकती है, क्योंकि विपक्ष इस चीज को लेकर पूरी तरीके से हमलावर है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो या संसद के बाहर जो है वो इस तरीके से रोज सुबह प्रोटेस्ट करना हो। विपक्ष लगातार मकर द्वार पर भी जो है प्रदर्शन कर रहा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह जो है वो अपनी मांगों को दोहरा रहा है कि गृह मंत्री आके जवाब दे और चंदा चोरी पे जो है वो डिस्कशन हो जाए।
0: और हिमांशु, अभी हम सुन रहे थे जो विपक्ष के नेता उनकी तरफ से ये नारे लगाए जा रहे थे कि होम मिनिस्टर सदन में आओ। शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संसद भवन के बाहर आज फिर से विपक्ष ने प्रदर्शन किया, तरीका थोड़ा अलग था। अमित शाह संसद से गायब क्यों का एक विशाल पोस्टर, ये देखिए अमित शाह सदन से गायब क्यों है, ये एक विशाल एक बड़ा सा बैनर पोस्टर लेकर आए थे और मकर द्वार पर यह प्रदर्शन किया। लेकिन इस प्रदर्शन के साथ एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर निशाना साधते हुए बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में दान पात्र लेकर जमीन पर बैठ गए। वो देखिए सामने पप्पू यादव को, विपक्ष के दूसरे सांसदों ने दान पात्र में दान देते वो देखे गए। विपक्ष लगातार प्रदर्शनकारी छात्रों पर, दिल्ली पुलिस की सख्ती और चढ़ावा चोरी पर संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहा है।
8: सारी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, इस समय यहां पर आपको धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। और पप्पू यादव जो है वो यहां पे बैठे हुए आपको नजर आ रही है। देखिए समाजवादी पार्टी की एमपी जो है वो यहां पर पहुंची है, उनके पास बैठकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धर्मेंद्र यादव आपको पीछे नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आपको पीछे नजर आ रही है। यहां पर जबरदस्त शोर इस समय हो रहा है। जो आपको यहां देखने को मिल रहा है ये है मकर द्वार संसद का, वो है कि विपक्षी पार्टियां अपनी एकजुटता दिखा रही है और एकजुटता के साथ साथ ये भी दिखा रही है कि किस तरीके से वो एकजुट है। और इस समय अमित शाह से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सारी विपक्षी पार्टियां यहां पर पीछे मकर द्वार पर नजर आ रही है। चंदा चोरी एक बड़ा मुद्दा यहां पर बन चुका है और बड़े बड़े नेता चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, यहां पर आपको पीछे नजर आ रही है। संसद से ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक दिल्ली।
0: साधु विवेश में आपने पप्पू यादव को देख लिया, लेकिन आज अनूठे प्रदर्शन पर पप्पू यादव ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं।
9: पप्पू यादव जी हैं समाजवादी, पकड़े हुए हैं, देखिए लोग पकड़े हुए हैं, समाजवादी पकड़े हुए हैं,
10: क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं?
11: राम राम जपियो रे, सब माल हटियो रे, ये पूरा भगवान के साथ गद्दारी। राम अयोध्या मंदिर, ये हमारे राम, ये हमारे राम
9: जी,
11: मेरे जीवन में, हम सबके मन में।
0: तो साधु वेश में पप्पू यादव के प्रदर्शन पर बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने भगवा के अपमान का आरोप लगाया। कह रहे हैं कि किसी को भगवा के अपमान का अधिकार नहीं है। पप्पू यादव प्रदर्शन कर रहे थे, अब उसी पर साक्षी महाराज भड़क गए और भगवा के अपमान का आरोप लगा दिया। यह अजीबोगरीब प्रदर्शन जब विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था मकर द्वार पर, उस पर साक्षी महाराज का पलटवार।
12: सर पप्पू यादव जिस तरीके से चढ़ावा चोरी को लेकर के यहाँ प्रदर्शन
13: कर, भगवा का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने सख्त निर्देश दिए हैं, अगर नहीं सुधरेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। छोड़ो
12: बिल्कुल। तो यहाँ पर साक्षी महाराज के द्वारा ये कहा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर ने इस पूरे मामले को लेकर के ये कहा है कि राम का और भगवा का अगर कोई अपमान करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
0: अब 12:12 रिपोर्टर में बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा कि पीएम मोदी और अमित शाह, आप जेनजी को धमकाकर शांत नहीं कर सकते हैं। पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी, अब उन पर FIR दर्ज करने के साथ उनके अकाउंट बंद करा रहे हैं। इस बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर संसद के अपमान का आरोप लगाया है।
14: छात्र आंदोलन के मुद्दे पर लगातार फ्रंट फुट पर खेल रहे राहुल गांधी ने अब सरकार को चेतावनी दी है कि आप जेंजी को डराना बंद करिए। दरअसल राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि सरकार उन छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज करा रही है जिन छात्रों ने इन आंदोलनों में हिस्सा लिया, और साथ ही साथ उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया जा रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को भारत का बीता हुआ कल भी बताया और साफ तौर पर चेतावनी दी कि आपको भारत के भविष्य के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। कुल मिलाकर राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि सरकार इस पूरे मामले पर बैकफुट पर है और ऐसे में उनको एस्केप रूट नहीं दिया जाना चाहिए, इसीलिए वो लगातार दबाव की राजनीति कर रहे हैं और इस पूरे मामले को खुद ही लीड कर रहे हैं।
0: और अब आप बात प्रियंका गांधी के उस बयान की करते हैं जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर कामाकोटि को गौमूत्र विशेषज्ञ बताने वाले बयान से नाराज देश के 215 कुलपतियों, पूर्व कुलपतियों और शिक्षाविदों ने प्रियंका गांधी को एक खुला पत्र लिखा। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा।
15: किरेन रिजिजू ने बार बार आप सभी को अनुरोध किया है, आह्वान किया है, सदन चलने में सहयोग कीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण विधायक पास करना था, पास कर भी लिया, और आप BSC मीटिंग में भी ये विषय को आप समर्थन भी दिया था, लेकिन आपका सहयोग के बिना ही बिल पास करना पड़ा। ये परंपरा ठीक नहीं है सदन का, आप सब लोग इसमें सहयोग कीजिएगा। आप अगर बैठ जाएंगे तो हम सदन चलाने के लिए कोशिश करेंगे, अपना सीट में आप बैठिए। अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 3 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: तो देखिए, सोमवार तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है क्योंकि जमकर हंगामा हुआ। दिलीप सैकिया लगातार कह रहे थे कि आप लोग शांत रहिए, सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा और सोमवार तक के लिए अब लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। आगे बढ़ते हैं। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों पर दिल्ली पुलिस की सख्ती के आरोपों के बीच आज दिल्ली पुलिस के जख्मी जवानों के परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जख्मी पुलिस वालों के परिजनों ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई की घटना को लेकर एक तरफा और गलत नैरेटिव पेश किया जा रहा है। परिजनों ने विस्तार से बताया कि 20 जुलाई को किस तरह प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस के जवानों को निशाना बनाया था।

0: चलिए संकेश मिश्रा आज तक।
1: और 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट हैदराबाद से। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने पीएम मोदी के एआई मॉफ्ट वीडियो मामले में मेटा इंडिया के हेड के खिलाफ केस दर्ज किया है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एआई मॉफ्ट वीडियो फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के हेड और कई सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये मामला जो है वो मेटा के प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम पर छेड़छाड़ किए गए वीडियो के फैलाने से जुड़ा है। जांचकर्ताओं का यह मानना है कि ये वीडियो जनता को गुमराह कर सकते हैं और भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम यानी आईटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।
2: वीडियोस के मामले में मेटा एआई के भारतीय प्रमुख के साथ साथ कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस यह कार्रवाई कर रही है कि इस वीडियो को बनाया किसने, इसको सोशल मीडिया पर किस तरीके से फैलाया गया और साथ ही साथ क्या प्लेटफॉर्म की कंटेंट मॉडरेशन व्यवस्था पर्याप्त थी। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया मेंबर के इस कंप्लेन के बाद आईटी और बीएनएस की कई सारी धाराओं के तहत एक एफआईआर रजिस्टर किया गया और डिजिटल एविडेंस के आधार पर आगे की कार्रवाई अभी जारी है।
1: अब 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट। बिहार से बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में लकब मतदान को लेकर सियासी दलों में खलबली है। बांकीपुर में सिर्फ 34.16% वोटिंग ने राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें बढ़ा दी। आज तक संवाददाता शशि भूषण बता रहे हैं कम मतदान के मायने।
3: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर मतदान का काम पूरा हो चुका है। 3 अगस्त को उपचुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन जिस तरह से बांकीपुर विधानसभा की वोटिंग के दौरान मतदाता कम वोट डालने के लिए निकले, उसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ गई हैं। जी हां, बांकीपुर विधानसभा चुनाव के दौरान महज 34.30% ही मतदान हुआ। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी नवंबर 2025 में जो वोटिंग हुई थी उस दौरान तकरीबन 1,57,000 वोट पड़े थे, जबकि इस बार यह आंकड़ा 1,30,000 के आसपास है। यानी पिछले चुनाव से 26,000 कम वोटर्स ने मतदान किया। एक तरफ इस कम मतदान को लेकर के विपक्ष एनडीए सरकार के खिलाफ इसे उदासीनता बता रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष यानी एनडीए दावा कर रहा है कि चुनाव में जीत उसी के उम्मीदवार की होगी।
1: कानपुर लखनऊ एलिवेटेड एक्सप्रेसवे एक बार फिर से सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवालों के घेरे में है। उद्घाटन के महज 17 दिन के भीतर दूसरी बार सड़क का हिस्सा उखड़ने के बाद एनएचएआई और निर्माण कंपनी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। कानपुर और लखनऊ को जोड़ने वाला करीब 4,200 करोड़ रुपए की लागत से बना एलिवेटेड एक्सप्रेसवे दूसरी बार क्षतिग्रस्त हो गया।
4: कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसकी शुरुआत बेहतर कनेक्टिविटी और तेज रफ्तार सफर के लिए की गई थी, उसमें महज 17 दिन के अंदर दूसरी बार मरम्मत कराने की नौबत आ गई। ताजा मामला कानपुर से जाने वाली लेन का है, जहां लखनऊ से 30 किलोमीटर पहले खराब हुए हिस्से को काट कर हटाया गया और नई रोड सरफेस तैयार की गई। उद्घाटन के बाद से ही सड़क की गुणवत्ता पर कई सवाल उठते आए हैं। कई जगह सड़क की सतह खिसकने की शिकायत सामने आई तो कई जगह रोड सरफेस उखड़ने की तस्वीरें देखने को मिली, जिसके बाद पूरा ये मरम्मत का काम कराया गया। एनएचएआई का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर इस तरीके के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क आम बात है और 15 साल के डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंतर्गत सड़क की मेंटेनेंस और रखरखाव का काम कंस्ट्रक्शन कंपनी का है। फिलहाल खराब हुए हिस्से की मरम्मत करा दी गई है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि 4,200 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद भी आखिरकार बार बार मरम्मत कराने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है।
1: 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के भिवंडी में बिल्डिंग हादसे में मरने वालों की संख्या अब और बढ़ गई है, 6 हो गई है। 4 मंजिला इमारत गिरी है, उसका नाम कोहिनूर है। अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ भिवंडी पुलिस के जवान, फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और यह आशंका जताई जा रही है मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है।
5: गुरुवार देर शाम कोहिनूर नाम की एक बिल्डिंग जो भिवंडी में है, उसके अचानक से चरमराने की खबर आई थी, जिसके बाद जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो तुरंत हरकत में आया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस 14 मंजिले की इमारत से ज़्यादातर लोगों को निकाल लिया गया था, जब अचानक से ही ये तकरीबन 11 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि ये इमारत का जो काफ़ी बड़ा

0: पोर्शन है वो भरभरा के नीचे गिर गया और इसी दौरान कुछ लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका जताई गई थी और काफी सारे जो वर्कर्स जो दरअसल इस पूरी इमारत में रिपेयर का काम भी चल रहा था और जो वर्कर्स थे वो अंदर ही थे ऐसा बताया गया और इस दौरान एनडीआरएफ जो थाने रेस्क्यू टीम है डिजास्टर रेस्क्यू टीम है उनको भी बुलाया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग भी मौजूद हैं और पुलिस के लोग और सब एम्बुलेंसेज के साथ सब तैयार हैं और धीरे धीरे करके हमने देखा तकरीबन 6 बजे से एक एक करके लोगों की बॉडीज तकरीबन 9 बॉडीज निकाली गई हैं लेकिन अभी भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल कोशिश यही है कि ऐसा अंदेशा बताया जाए कि 2-3 लोग और हो सकते हैं अंदर दबे हुए उन्हें निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है।
1: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
5: Sokudo.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: देख, इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
2: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
1: अर्ज किया है, दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह,
3: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
4: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
5: In association with
6: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sarah Sanitaryware, it's your moment of Sarah।
7: पत्रकारिता के गुर यहां नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
8: सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। यू सी, इवन दो शी इज बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जींस, शी नोज दैट इट फिट्स विद इन हर मंथली बजट। Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
5: एक बार फिर जल उठा नेपाल। सांप्रदायिक हिंसा से भारी उबार। कई इलाकों में तोड़फोड़, आगजनी और पथराव। नेपाल के सुनसरी में भड़की हिंसा अब नेपाल के कई शहरों तक फैल गई है। अलग अलग हिस्सों में आगजनी, तोड़फोड़, पथराव और पुलिस से झड़प हुई। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि सेना ने सड़कों से लेकर संवेदनशील इलाकों में मोर्चा संभाला है। भारत की सीमा से सटे कोशी और मधेश में हुई हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। नेपाल में बढ़ते हिंसा को देखते हुए पीएम बालेंद्र शाह ने देश के नाम संबोधन जारी कर शांति बनाए रखने की अपील की।
6: सबके धैर्यता और संयमता अपना के शांति, सद्भाव, भाईचारा आ राष्ट्रीय एकता कायम राख के लिए सरकार के तरफ से हार्दिक अपील कर रहल छी।
5: नेपाल में हिंसा की शुरुआत सुनसरी इलाके से हुई थी, जहां 2 समुदायों के बीच कार्यक्रम को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद दोनों समुदायों में झड़प, आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी, जिसके बाद नेपाल के बाकी जिलों में भी हिंसक घटनाएं सामने आई। वहीं अब सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर कुदरत का कहर जारी। उत्तराखंड में दरक रहे हैं पहाड़। सड़कों पर मलबा ही मलबा। देवभूमि उत्तराखंड में मानसूनी आफत का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये तस्वीर चमोली के किमाना गांव की है, जहां पहाड़ों से भारी मात्रा में मलबा नीचे आ रहा है, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। मलबे से रास्ते बंद हो गए हैं। पहाड़ी से आ रहे मलबे से खेतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। चमोली ही नहीं, उत्तराखंड के बाकी इलाकों में भी हालात ठीक नहीं हैं। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के चलते केदारनाथ हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई। पहाड़ों से भारी मात्रा पर मलबा सड़क पर आ गया, जिसको हटाने का काम जारी है। हरिद्वार की ये तस्वीर देखें, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद सूखी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसके चपेट में पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां आ गईं। पानी के बहाव में गाड़ियां काफी दूर तक बहती चली गईं, जिसके बाद क्रेन की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। चमोली से प्रवीण सेमवाल के साथ आज तक ब्यूरो।

2027 विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी की बड़ी सक्रियता, 100 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों का दौरा, प्रदेश में विपक्षी दलों की बड़ी रैलियां भी सीमित। यूपी विधानसभा सत्र से पहले 2 अगस्त को सर्वदलीय बैठक, स्पीकर सतीश महाना ने बुलाई बैठक, 3 अगस्त से शुरू होगा मॉनसून सत्र। अयोध्या में चढ़ावे की चोरी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने बढ़ाई निगरानी, अब दान पात्र खोलने से लेकर रकम की गिनती तक पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले जनता से धोखे का नतीजा है खाली महफिल, चला चली की बेला समय से पहले आ गई। अखिलेश यादव का भदोही नाम बदलने पर तंज, बोले सिर्फ नाम बदलने से नहीं महापुरुषों के सिद्धांतों पर चलने से बदलाव आएगा। लखनऊ में सीएम योगी करेंगे विभागों की समीक्षा बैठक, शिक्षा राहत विभाग के कामकाज के साथ कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए डिजिटल परीक्षा, यूपी के कार्यकर्ताओं का दबदबा, देश में मिला पहला स्थान। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी की डिजिटल रणनीति तेज, एआई के जरिए युवाओं तक पहुंचेगी पार्टी, आकाश आनंद सोशल मीडिया टीम के साथ करेंगे मंथन। एसपी की चुनावी रणनीति पर उठे सवाल, मुस्लिम वोट बैंक साधने का आरोप, एआईएमआईएम नेताओं के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी से बचने का आरोप। मिशन 2027 के लिए ईएसपी की तैयारी तेज, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए, प्रभारियों को चुनावी जिम्मेदारी सौंपी गई। मेरठ में पहचान छुपाकर होटल चलाने का आरोप, हिंदू संगठन ने शुरू किया अभियान, कई होटलों में हंगामा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। कानपुर के बच्चन नेवी अधिकारी की मौत के बाद सांसद ने विदेश मंत्रालय से लगाई मदद की गुहार, पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए जयशंकर को पत्र लिखा। लखनऊ में नकली दवा सिंडिकेट का भंडाफोड़, फर्जी बिलिंग और ट्रांजैक्शन से चल रहा था कारोबार, एफएसडीए की कार्रवाई में 6 एफआईआर दर्ज। अलीगढ़ में स्पोर्ट्स टीचर पर छात्र की पिटाई का आरोप, सीसीटीवी वीडियो वायरल, स्कूल प्रबंधक ने आरोपित शिक्षक को बर्खास्त किया। बरेली में मौलाना ने पत्नी से विवाद के बाद खुद को लगाई आग, अस्पताल में मौत, सीसीटीवी फुटेज और आखिरी बयान के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, एआई कैमरों की मदद से किया जा रहा सर्विलांस, हर जिले के लिए कंट्रोल रूम लिया गया स्थापित। प्रयागराज में कांवड़ियों के लिए हेल्प डेस्क की शुरुआत, 24 घंटे मदद के लिए तैनात रहेंगे कर्मचारी, दशाश्वमेध घाट पर रास्ते, बंदरों की जानकारी के साथ प्लास्टिक के बदले दिए जा रहे कपड़ों के झोले। प्रयागराज में सावन की शुरुआत के साथ गंगा घाटों पर उमड़ी कांवड़ियों की भीड़, श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान और पूजा के साथ जल भरा, बोलबम की जय घोष। प्रयागराज में अनोखी कांवड़ यात्रा, परिवार की एकता के लिए 10 साल से संकल्प निभा रहा परिवार, 11वें साल भी परिवार के 10 सदस्यों ने एक साथ कांवड़ उठाई। अयोध्या में सावन के दूसरे दिन शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, श्रीरेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भक्तों ने किया जलाभिषेक, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा परिसर। कानपुर लखनऊ एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर फिर उखड़ी सड़क, गिट्टी से भरा डंपर पलटा, 17 दिन में दूसरी बार सड़क खराब होने से निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठे। सहारनपुर में पुलिस और गौकश के बीच मुठभेड़, पैर में लगी गोली से आरोपित घायल, गन्ने के खेत में हुई फायरिंग के बाद पुलिस ने दबोचा, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। सहारनपुर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, आरोपित गिरफ्तार, शादी से इनकार करने और धमकी देने के मामले में पुलिस ने जेल भेजा। ग्रेटर नोएडा में ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ, 4 तस्कर गिरफ्तार हुए, पुलिस ने 15 लाख रुपए कीमत के विदेशी मादक पदार्थ बरामद किए, जांच जारी है। कोडीन कफ सिरप केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, जज तक पहुंच बनाने के प्रयास पर नाराजगी, न्यायमूर्ति ने सुनवाई से खुद को अलग किया, घटना को बताया न्यायपालिका के लिए काला दिन।

0: और यूपी के चुनावी यज्ञ में आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद अब ट्रस्ट ने चढ़ावा गिनती और जमा करने की नई व्यवस्था लागू कर दी है। इसी हफ्ते से जारी व्यवस्था में दान पात्र से लेकर गणना कक्ष तक पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी, वीडियो बनाया जाएगा। पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए 8 सदस्यीय टीम तैनात की गई है। निगरानी टीम में 2 बैंककर्मी, 2 ट्रस्ट प्रतिनिधि और 2 SIS सुरक्षाकर्मी शामिल हैं और पूरी प्रक्रिया को 360 डिग्री कैमरों और वीडियो कैमरों में रिकॉर्ड किया जा रहा है और इसके लिए 2 पेशेवर वीडियोग्राफरों की तैनाती भी की गई है। मंदिर परिसर में जो करीब 40 दान पात्र लगे हैं अब एक साथ खाली करने के बजाय अलग अलग दिनों में खाली किए जा रहे हैं। दान से भरे बक्से को गणना कक्ष पहुंचने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी विधिवत सील बंद करते हैं। ट्रस्ट का यह कहना है कि इन नए इंतजामों का मकसद दान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना है। तो राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मुद्दा संसद में कुछ ऐसा चढ़ा हुआ कि अब उसमें ड्रामा भी है, नुक्कड़ नाटक है या स्किट जैसे प्रदर्शन भी शामिल हो गए हैं। ऐसी तस्वीर आज संसद भवन में नजर आई जहां विपक्षी दलों के सांसदों ने मिलकर एक स्किट का प्रदर्शन किया जो आप देख रहे हैं, जिसमें टिन के डब्बों को दान पात्र बताकर उसमें सांसद दान के पैसे डालते नजर आए, फिर नारंगी वेशभूषा में चढ़ावा चोरी के मुद्दे से जुड़े स्लोगन लिखे हुए कपड़ों के साथ सांसद पप्पू यादव संत बनकर दान पात्रों के पास बैठे। अब इन दान पात्रों में राहुल गांधी ने भी चंदे के रूप में पैसे डाले और फिर विपक्षी दलों के सांसदों ने साधु के भेष में बैठे पप्पू यादव को सांकेतिक तौर पर विरोध करते हुए थपकियां मारी और घेरकर प्रदर्शन भी किया। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को प्रदर्शित करते हुए पप्पू यादव ने चढ़ावे का बक्सा लेकर भागने का उपक्रम भी यहां पर दर्शाया।
1: सारी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, इस समय यहाँ पर आपको धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं और पप्पू यादव जो है वो यहाँ पे बैठे हुए आपको नजर आ रही है। देखिए समाजवादी पार्टी की एमपी जो है वो यहाँ पर पहुंची है, उनके पास बैठकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धर्मेंद्र यादव आपको पीछे नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आपको पीछे नजर आ रही है। यहाँ पर जबरदस्त शोर इस समय हो रहा है। जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ये है मकर द्वार संसद का, वो है कि विपक्षी पार्टियां अपनी एकजुटता दिखा रही है और एकजुटता के साथ साथ ये भी दिखा रही है कि किस तरीके से वो एकजुट है। और इस समय अमित शाह से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सारी विपक्षी पार्टियां यहाँ पर पीछे मकर द्वार पर नजर आ रही है। चंदा चोरी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बन चुका है और बड़े बड़े नेता चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, यहाँ पर आपको पीछे नजर आ रही है। संसद से ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक दिल्ली।
2: हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि कैसे अयोध्या में डकैती पड़ रही है 2020 से, जब से प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बना है तब से डकैती पड़ रही है, और तभी से नहीं पड़ रही है। जो 90 के आंदोलन के समय भी लगभग 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था उसका भी हिसाब किताब पता नहीं है, और ये 100% बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों की जेबों में और खातों में जाने लगा है। और इस बात को लेकर हम विपक्ष के लोग लगातार मांग कर रहे हैं स्पीकर साहब से भी कि हमको चर्चा का मौका दीजिए, और जब तक चर्चा का मौका नहीं देंगे सदन को हम लोग व्यवस्थित नहीं चलने देंगे।
3: वही
2: आपके माध्यम से देश का आम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते। अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए।
0: तो विपक्षी दलों ने जिस तरह स्किट के जरिए चंदा चोरी के मसले को दिखाने की कोशिश की उसमें भगवा कपड़े और संत की वेशभूषा में चोर लुटेरे की तरह बर्ताव करने और उन्हें पीटने के उपक्रम को लेकर अब आपत्ति दर्ज कराई गई है। मामला स्पीकर तक पहुंच गया है।
4: पप्पू यादव जिस तरीके से चढ़ावा चोरी को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे
5: हैं, भगवान का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने सख्त निर्देश दिए हैं, अगर नहीं सुधरेंगे तो कार्रवाई की जाएगी।
0: तो पप्पू यादव के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर पप्पू यादव का क्या कहना है उनकी बात भी सुनना चाहिए।
4: पप्पू यादव जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आप जो भगवा कपड़े पहन करके आए हैं, यहाँ सत्ता पक्ष के सांसदों के द्वारा ये कहा गया कि भगवा का मजाक एक तरीके से उनके द्वारा उड़ाया जा रहा है।
3: अच्छा, भगवा के आस्था के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? हम किसी का नाम तो ले नहीं रहे। ये जो दुराचारी व्यभिचारी बलात्कारी बाबा है, पर्ची निकालने वाले जिन पर आरोप है, वो सारे गेरुआ के आस्था को खतरे में डाला है, सारे रियल संत जो है उसको खतरे में डाला है, रियल बाबा को खतरे में डाला है। तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हम लाए, राम राम जपियो रे सब माल हरपियो रे।
4: स्पीकर साहब ने भी टिप्पणी किया है आपकी।
3: निश्चित रूप से विरोध का क्या तरीका होगा? लाठी गोली तो हम इन लोगों की तरह नहीं चला सकते। तो जो और राम के आस्था के साथ ठेस पहुंचाया, सनातन पर हमला बोला, तो क्या अन्य लोग जितने लोग हैं वो लोग गेरुआ पहन के नहीं आते हैं? हमने गेरुआ पहन करके आस्था की बात की, भगवान को राजनीति में बेचते हैं।
4: लेकिन आप सर जो दान पत्र लेकर के इधर तो भाग रहे थे पूरा, तो वो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है इस चोरी करने का, भगवान राम की आस्था को लेकर के।
3: भगवान राम की आस्था की ही ना चोरी हुई है, देख नहीं रहे? सब चोरी कर लिए, देख नहीं रहे? तो भागेगा, जो भाग रहा है ले करके, तो उसको तो लेके भागना पड़ेगा ना।
4: बिल्कुल। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।
0: संसद में क्या हुआ ये देखा। बात यूपी की चुनावी तैयारियों की करते हैं। यूपी में इन दिनों बीजेपी के एक गोपनीय सर्वे की बहुत चर्चा है। तीन स्तर पर चल रहे इस सर्वे में बीजेपी क्या पता लगा रही है और कैसे 61 सीटों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
6: एक तरफ विपक्षी दल दिल्ली में यूपी के चुनावी मुद्दों का रंगमंच सजा रहे हैं, दूसरी तरफ सीएम योगी प्रदेश में मैराथन कार्यक्रमों में जुटे हैं और इनके बीच भारतीय जनता पार्टी सीट दर सीट चुनावी जीत बुनने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदेश संगठन बन चुका है। नई ऊर्जा और नए लक्ष्य के साथ बीजेपी का यह संगठन अब चुनावी तैयारी में दिन रात जुटा हुआ है। इसी कड़ी में यूपी की 403 सीटों पर गोपनीय सर्वे की भी शुरुआत हो गई है।
7: भारतीय जनता पार्टी 2027 का चुनाव जीतने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी के नतीजे पे पार्टी कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लग रही है, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से संपर्क हो रहा है, उसी के अनुरूप सर्वे भी कराए जाते हैं और सर्वे के निर्णय के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। उसी के नाते हम 403 विधानसभा सीटों पर लगातार अपने कार्यक्रमों को जारी किए हुए हैं, साथ ही साथ समय समय पर पार्टी जनता से फीडबैक लेती रहती है।
6: बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इस सर्वे में मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन, जनाधार और जीत की संभावना के तीन स्तरों पर आकलन किया जा रहा है। खासकर लगातार हार वाली 61 सीटों पर बीजेपी विशेष फोकस कर रही है। खबर है कि यूपी में संघ बीजेपी के कार्यकर्ताओं और जनता के फीडबैक के बाद ही पार्टी अगली चुनावी रणनीति और टिकट के मुद्दे पर विचार शुरू करेगी।
8: आज की तारीख में जिस तरीके से हर वर्ग में नाराजगी व्याप्त है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अभी आने वाले 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है।
6: विपक्ष भले बीजेपी की तैयारियों को नजरअंदाज करे, लेकिन इस सर्वे में बीजेपी ने न सिर्फ अपनी बल्कि निषाद पार्टी से लेकर अपना दल, लोकदल और SBSP जैसे संगठन में शामिल दलों की सीटों पर भी आकलन कर रही है। दरअसल पूर्वी यूपी के आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर की 22 सीटें हैं जहां बीजेपी तीन चुनावों से हार रही है। इसी तरह पश्चिमी यूपी में सहारनपुर, मुरादाबाद और बिजनौर जिलों की मुस्लिम बहुल 13 सीटें हैं जहां नहीं जीत सकी है। फिर अवध और मध्य यूपी के रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, फतेहपुर और अम्बेडकर नगर जैसे जिलों की 26 सीटें हैं जिन पर हारती रही है। इन 61 में 27 सीटों पर बीजेपी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है जहां वो जीतती रही है।
9: खास बात इस सर्वे की ये भी होगी कि इसमें जो अलायंस पार्टनर है, फिर चाहे अपना दल हो या लोक दल हो या इसके अलावा स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी हो, सात पार्टी हो, इनकी जीती हुई सीटों पर भी कहीं ना कहीं सर्वे हो रहा है। जब दोबारा सीटें अलॉट की जाएंगी एक तरीके से, जब टिकट दिया जाएगा तब क्या जीत की संभावनाएं हैं, इन सभी को लेकर एक बड़ा सर्वे है और ये सीक्रेट सर्वे है जो बीजेपी 403 विधानसभाओं पे कर रही है, जिसके नतीजे आने पर ही टिकट की आगे दावेदारी तय की जाएगी। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में जो तैयारी है वो भी कहीं ना कहीं सर्वे के जरिए पता लग जाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव।
0: उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी तैयारी का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि बीजेपी बकायदा देश भर में अपने कार्यकर्ताओं की दक्षता मापने के लिए परीक्षाएं तक ले रही है। पिछले दिनों यूपी ने करीब 22 दिनों तक बीजेपी संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की तैयारी के लिए ऑनलाइन परीक्षा तक का आयोजन किया था। इसमें पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों से पार्टी के इतिहास और कार्य संस्कृति और ऑनलाइन परीक्षा कराई थी। अब इसमें पूरे देश के बीजेपी कार्यकर्ताओं से परीक्षा ली गई, लेकिन अव्वल स्थान यूपी के कार्यकर्ताओं ने हासिल किया। खबर है कि इसी महीने 6 से 28 जुलाई के बीच ये परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें सरल ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन परीक्षा ली गई। इसमें पार्टी के सभी 6 मोर्चों के पदाधिकारियों ने भी परीक्षा में हिस्सा लिया। परीक्षा में संघ और बीजेपी के इतिहास से लेकर संगठन की उपलब्धियां, गठबंधन और चुनावी प्रदर्शन से जुड़े सवाल पूछे गए। यूपी से शामिल 5,34,000 कार्यकर्ताओं ने परीक्षा दी, जिनमें 4,82,000 कार्यकर्ता सफल हुए। यूपी के 90% से अधिक कार्यकर्ताओं ने सफलता हासिल करते हुए देश में अव्वल स्थान हासिल किया।
10: ऐप के माध्यम से डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है। और यह ऐप डिजिटल लर्निंग ऐप और के डिजिटल लर्निंग के माध्यम से सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के संविधान और स्थापना कब हुआ और उसके रीति नीति के बारे में जानकारी मिलती है, और इसके साथ एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम को पास करना होता है। ये ही बहुत अच्छा माध्यम है कार्यकर्ताओं को सीखने के लिए।
0: दरअसल ये प्लानिंग बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की थी। लखनऊ दौरे के दौरान उन्हीं के निर्देश पर परीक्षा की अवधि भी बढ़ाई गई थी, ताकि अधिक से अधिक कार्यकर्ता इसमें शामिल हो सकें। बीजेपी से चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं की वैचारिक और संगठनात्मक तैयारी मजबूत करने की कवायद के तौर पर देख रही है। वहीं यूपी में बीजेपी कैसे कॉरपोरेट स्टाइल में पार्टी की चुनावी तैयारी कर रही है, जब ये परीक्षाएं चल रही थी तब हमारे संवाददाता ने इसकी रिपोर्ट की थी। आपको दिखाते हैं बीजेपी कैसे पूरे कॉरपोरेट स्टाइल में पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है।
11: भारतीय जनता पार्टी को अक्सर चुनावी मशीन भी कहा जाता है। इसके पीछे की बड़ी वजह है पार्टी का चुनावी मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर संगठन एक कॉरपोरेट हाउस की तरीके काम करने की कोशिश करता है। सभी कार्यकर्ताओं की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जाती है और रोज टेक्नोलॉजी के जरिए, एक ऐप के जरिए उनके कामों की समीक्षा होती है। ये सरल ऐप है जो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी के फोन में होना अनिवार्य है। उसे डाउनलोड कराया गया है, जहां पे उनकी रेगुलर अटेंडेंस लगती है और जो उनके द्वारा काम किए गए हैं उसकी प्रॉपर डिटेल्स यहां पर डाली जाती है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो संगठन बैठक रिपोर्टिंग है। यहां पे क्लिक करेंगे तो पूरा ये डैशबोर्ड क्रिएट होगा। साइड में देखेंगे तो शक्ति केंद्र मीटिंग है, जिसके तहत कार्यकर्ताओं को और उनके पदाधिकारियों को जो मीटिंग लेनी चाहिए उसकी ये डिटेल्स यहां पर डालते हैं, जो ऊपर बैठा जो पदाधिकारी उसे रिव्यू कर सकता है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो तमाम मीटिंग्स ली गई उसकी डिटेल्स है कि कहां फ्लोरस इंटर कॉलेज में मीटिंग हुई, वेन्यू क्या है सेंट्रल पार्क, कब ये मीटिंग हुई, 19 तारीख को ये मीटिंग हुई, कितने लोग प्रेजेंट थे मीटिंग में, 18। इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो ये फोटोज भी जो मीटिंग की इनको अपलोड करनी पड़ती है। नीचे अगर आप देखेंगे तो GPS लोकेशन तक आपको यहां पर देनी पड़ेगी, तो किस तरीके से कार्यकर्ता क्या क्या काम कर रहा है, कौन सी मीटिंग ले रहा है, उसकी एक एक डिटेल्स उसे रोज इस डैशबोर्ड में अपने यहां पर देनी पड़ती है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए शिवांग मिश्रा है, जो कानपुर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष है।
12: नितिन नवीन जी ने हम लोग को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आदेश दिया, हम लोग की प्रतिमा 4 बैठकें करनी है, एक जिला स्तर पर बैठक करनी है, एक मंडल स्तर पर बैठक करनी है, उसका एक शक्ति केंद्र बैठक करनी है, एक बूथ पर बैठक करनी है। तो चारों बैठकों की अटेंडेंस हम लोग करनी है, और जो भी हम लोग को सीट्स नेता द्वारा जो भी निर्देश दिया जाए बैठक करने का, प्रोग्राम करने का, कि हम लोग वहां गए, कितनी संख्या रही, किस तरीके से बैठक की, उसका अटेंडेंस यहां पर हम लोग को लगानी पड़ती
11: है। जो लर्निंग प्रोग्राम है यहां पर उसको आपको देखने को मिलेगा, ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से यहां पर है। अगर हम उसको क्लिक करते हैं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है, किस तरीके से पार्टी जनसंघ से लेकर उस मूवमेंट से लेकर बाहर निकली, क्या क्या पार्टी जो है उन्होंने देखा है, इसकी पूरी आपको लर्निंग यहां पर देखने को मिलेगी। यहां पर अगर हिंदी इसमें हम जाएंगे तो वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, जब आप ये डिटेल्स देख लेते हैं तो इसको आपको एक क्विज होता है, एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, जहां पर आपसे ये सवाल पूछे जाते हैं जिसको आपको भरना पड़ता है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो भाजपा का इतिहास एवं विकास प्रश्नोत्तरी है। एक बार क्वेश्चन दिखाने पाएंगे कि क्या क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किस तिथि को हुई थी। यहां पर इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिटेल्स एक बार डालने पाए, कोई भी डिटेल डाल दीजिए, जिसमें बी अगर हमने ऑप्शन चूज किया कि 1951 में, तो यहां पर जो नीचे है अब देखना है ये सही उत्तर है। तमाम तरीके की जो डिटेल्स एक एक कार्यकर्ता की,
13: इस पूरे डैशबोर्ड पे है जहां पर इनको अपने काम की समीक्षा जो है वो देनी पड़ती है, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय होती है। अब इसके बाद भी ऐसे लोग जो सवाल पूछते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन मशीन है, तो शायद उसका जवाब उनको उनकी इस वर्किंग पे यहां मिलने पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।
0: वक्त तो चला, एक बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
16: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
17: Tune in has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
18: Sokudo.

0: करना चाहिए।
1: राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा।
2: होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री।
1: गृह मंत्री पर टिप्पणी पर भड़के बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर। राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। संसद से एंटी पेपर लीक बिल तपास हो गया है, लेकिन उस पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी ने घेराबंदी शुरू कर दी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस सौंप दिया है।
3: इससे बड़ा झूठा आरोप, बड़ा आरोप बगैर तथ्यों के लगाना कि राहुल गांधी जी की आदत बन गई सुर्खियां बटोरने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए सदन का दुरुपयोग किया गया। राहुल गांधी जी को गृह मंत्री ने देश से भी माफी मांगनी चाहिए।
1: जहां एक तरफ राहुल के बयान को लेकर बीजेपी आक्रामक दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने गृहमंत्री अमित शाह के संसद में न मौजूद होने पर भी सवाल खड़े कर रहा है।
4: आई डिमांड दैट द होम मिनिस्टर कम टू दिस हाउस, मेक अ स्टेटमेंट, आंसर द स्टूडेंट्स, अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। इफ वी कैन नॉट डू सो, द होम मिनिस्टर मस्ट रिजाइन सर।
5: प्रधानमंत्री डर गए, गृह मंत्री डर गए, लापता है, हम ढूंढ रहे हैं। मैं तो एक फिल्म बनाने वाला हूँ, लापता गृह मंत्री।
1: बहरहाल पेपर लीक से शुरू हुई सियासत अब प्रदर्शनकारियों के एक्शन पर शिफ्ट हो गई है। आज तक ब्यूरो।
6: उनको सदन में गृह मंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए और देश की जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास किया उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन में कोई गोली नहीं चली और किसी भी इस तरह की कार्रवाई का अधिकार वहां के लोकल डीएम के पास होता है तो आज बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन कांग्रेस का भी बच्चा नहीं जानता।
7: एक पुरानी कहानी है कि एक समूह बच्चों का चिल्ला रहा था, मेरे देश का राजा चोर है, देश का राजा चोर है, मेरे भी नहीं, देश का राजा चोर है। तो पुलिस ने पकड़ लिया, बोला सर हम तो फलाना देश की बात कर रहे थे। बोले बेवकूफ समझ रखा क्या, हमको नहीं पता था। तो एक संदर्भ से अलग उन्होंने बात रखी, आपने वो उड़ता तीर ले लिया, तो आप तो उनकी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं।

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
2: Where's the truth? It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege.
3: सदन में राहुल के बयान पर मचा घमासान, पैलेट गन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बीजेपी ने राहुल के बयान को बताया तथ्यहीन,
4: और वह माफी मांगो राहुल।
3: लोकसभा ने एंटी पेपर लीक बिल पर मुहर लगा दी है, लेकिन बिल पास होने से पहले लड़ाई राहुल गांधी बनाम अमित शाह की हो गई है। चर्चा के दौरान राहुल ने गृह मंत्री के सदन में न होने का सवाल उठाया, जिस पर काफी देर तक हंगामा हुआ।
2: I'm very happy today to see that the so-called home minister of this country does not have the courage to come and sit here.
3: गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए राहुल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मैंने गृह मंत्री को कांपते देखा।
2: Sir, I saw the carcade, 30 cars, with the Home Minister sitting inside the car, like that, looking.
3: राहुल के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा, अमित शाह वो शख्स हैं जिनको देखने के बाद नक्सली भी थर्रथराते हैं।
5: इस प्रकार से एक्शन किया कि मैंने देखा गाड़ी के अंदर इस प्रकार अमित शाह जी थरथरा रहे थे, कांप रहे थे। राहुल जी, अमित शाह जी वह शख्स है जिनको देखने के बाद नक्सली थरथराते हैं।
3: तो अब साफ है कि एंटी पेपर लीक बिल पर शुरू हुई लड़ाई लोकसभा में राहुल गांधी बनाम अमित शाह की हो गई है। आज तक ब्यूरो,

आज तक पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके। पेपर लीक रोकने के बिल को बताया नाकाफी, प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई ज्यादती, उपद्रव फैलाने के लिए बीजेपी पर लगाए आरोप। विपक्ष के नॉनस्टॉप हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही स्थगित। संसद परिसर में चढ़ावा चोरी पर अजीबोगरीब प्रदर्शन। पुजारी के भेष में पप्पू यादव ने फिल्माया चंदा चोरी का दृश्य। संसद के दोनों सदनों से पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल, राष्ट्रपति की मुहर के बाद बनेगा कानून। पीएम मोदी का वीडियो संदेश, कहा लीक माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। सीजेपी प्रदर्शन में घायल दिल्ली पुलिसकर्मियों के परिजनों ने बताई आप बीती। बच्चों ने कहा उपद्रवियों ने किया पापा पर हमला, हमारे परिवार के अधिकारों की बात क्यों नहीं होती। मुंबई के पास भिवंडी में गिरी 4 मंजिला इमारत, एनडीआरएफ ने मलबे से 7 लोगों को बाहर निकाला, 8 की मौत, 5 लोग फंसे, बिल्डिंग में चल रहा था मरम्मत का काम।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आज तक में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप 100 के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

लगातार 10वें दिन संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा. विपक्षी सांसदों ने चंदा चोरी पर प्रतीकात्मक नाटक कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. इस दौरान पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर पुजारी बने, जबकि राहुल गांधी ने चंदा देने का नाटक किया. इसके बाद पप्पू यादव चंदा लेकर भागने लगे, जिन्हें अन्य सांसदों ने रोका. साधु के भेष में संसद पहुंचे पप्पू यादव का बड़ा बयान, कहा हमारे खून में चोरी है. विपक्षी सांसदों ने अमित शाह की गैर मौजूदगी को लेकर उठाए सवाल. अमित शाह संसद से गायब क्यों, लिखा हुआ पोस्टर लेकर जमकर की नारेबाजी. विपक्ष के भारी हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर अमित शाह पर निशाना साधते हुए इस्तीफे की मांग की, कहा जवाबदेही के डर से संसद में नहीं रखा कदम. राम मंदिर चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मुद्दे पर बोले सांसद अवधेश प्रसाद, कहा एक महीने से ज्यादा समय बीत गया, सरकार कुछ नहीं कर रही. बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का राहुल गांधी पर छात्रों को भड़काने का आरोप, कहा छात्रों की सभी मांगे मान ली गई हैं. विदेशी फंड पाने वाले एनजीओस पर सख्त निगरानी की तैयारी, एफसीआरए संशोधन बिल सोमवार को लोकसभा में हो सकता है पेश. भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर में बड़ी कार्रवाई, पहली गोली चलाने वाला एसटीएफ जवान गिरफ्तार. जंतर मंतर पर घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीजेपी प्रदर्शन में घायल पुलिसकर्मियों के परिवार ने रखी अपनी बात. मीडिया से बात करते हुए घायल एक पुलिसकर्मी की बेटी ने कहा मेरे पिता घर आए तो उनकी यूनिफॉर्म में खून लगा हुआ था. जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल एएसआई की पत्नी ने रखी अपनी बात, कहा पुलिस वालों को पत्थर से मारा गया. सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने आज तक से की खास बातचीत, कहा हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए उपद्रवियों को भेजा गया था. प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज मुकदमों को लेकर अभिजीत दिपके का आज तक पर बड़ा बयान, केस वापस न लेने पर दोबारा आंदोलन की दी चेतावनी. पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा आप जेन जी को डरा धमकाकर चुप नहीं करा सकते. राहुल गांधी ने अमित शाह और पीएम मोदी दोनों पर निशाना साधते हुए कहा आप अतीत हो चुके, भविष्य के साथ कैसा बर्ताव करते हैं इसे लेकर सावधान रहे. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर निशाना, बोले माहौल ठंडा करने के लिए लाए बिल लेकिन ये अभी भी अधूरा. खड़गे ने छात्रों पर लाठी चार्ज पर सुनाई कविता, कहा पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पिटते रहे, ये कैसा न्याय है, ये कैसी रीति, गुनाहगार हंसते रहे, मासूम से सकते रहे. भाषण के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनुस्मृति का हवाला देने दिया, जिस पर बीजेपी भड़की और माफी की मांग की. जेपी नड्डा ने कहा ऐसे बयान से फैलेगी अशांति. उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, 27 अगस्त को सुनवाई. मुसलमानों में एक से ज्यादा शादी पर रोक की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस. पॉलीगैमी पर बैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मुस्लिम महिलाओं की परेशानियों को लेकर केंद्र से मांगा जवाब. विदेश मामलों की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता जताई, सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए भारत सरकार से नजर रखने की अपील की. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आजाद समाज पार्टी सक्रिय, विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए गए. पेपर लीक पर कांग्रेस का सरकार पर हमला, प्रमोद तिवारी बोले 12 साल में 152 पेपर लीक की, नैतिक जिम्मेदारी सरकार की. वंदे मातरम पर रामगोपाल यादव का बयान, बोले नारे से कोई विवाद नहीं लेकिन इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए था. बाकीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम होने को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा वोटरों में सरकार को लेकर दिखी उदासीनता. बाकीपुर उपचुनाव पर बीजेपी का दावा, जनता ने फिर दिया समर्थन, मृत्युंजय तिवारी बोले विरोधियों की होगी जमानत जब्त.
कैबिनेट विस्तार की तैयारी तेज, सोमवार को नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे विभागों की समीक्षा बैठक, शिक्षा राहत विभाग के कामकाज के साथ कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का भी लेंगे जायजा। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए डिजिटल परीक्षा, यूपी के कार्यकर्ताओं का दबदबा, देश में मिला पहला स्थान। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी की डिजिटल रणनीति तेज, एआई के जरिए युवाओं तक पहुंचेगी पार्टी, आकाश आनंद सोशल मीडिया टीम के साथ करेंगे मंथन। एसपी की चुनावी रणनीति पर उठे सवाल, मुस्लिम वोट बैंक साधने का आरोप, एआईएमआईएम नेताओं के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी से बचने का आरोप। राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज 20 अगस्त से, सरकार पेश कर सकती है कई अहम विधेयक। यूपी विधानसभा सत्र से पहले 2 अगस्त को सर्वदलीय बैठक, स्पीकर सतीश महाना ने बुलाई बैठक, 3 अगस्त से शुरू होगा मॉनसून सत्र, 4 अगस्त को पेश हो सकता है बजट। अयोध्या में चढ़ावे की चोरी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने बढ़ाई निगरानी, अब दान पात्र खोलने से लेकर रकम की गिनती तक पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले जनता से धोखे का नतीजा है खाली महफिल, चला चली की बेला समय से पहले आ गई। अखिलेश यादव का भदोही नाम बदलने पर तंज, बोले सिर्फ नाम बदलने से नहीं महापुरुषों के सिद्धांतों पर चलने से बदलाव आएगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारी बारिश का कहर, फ्लैश फ्लड से रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, पहाड़ों से आया तेज बहाव बना मुसीबत, देखते ही दरिया बनी सड़कें, बहती नजर आई कार। मांदीपुरा में कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात, कई घरों में घुसा पानी, बाढ़ से आम जनजीवन प्रभावित, कहनुसा सदरकूट और आलूसा गांव प्रभावित। बारिश के दौर के बीच दिल्ली में बढ़ने लगा यमुना का जलस्तर, कालिंदी कुंज घाट पर 2 दिन में 20 फीट तक पानी बढ़ा। हाथीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से दिल्ली में यमुना के बहाव में आई तेजी, अगले 2-3 दिन में यमुना में और पानी बढ़ने का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून के बादलों का डेरा, मौसम विभाग के मुताबिक आज हल्की से भारी बारिश की है संभावना। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी, शिमला ऊना बिलासपुर चंबा कांगड़ा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। गुजरात के 13 जिलों में आज से 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, अहमदाबाद में आज स्कूल कॉलेजों में छुट्टी के आदेश। गुजरात में भारी बारिश के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट पर, प्रभावित जिलों में सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश। महाराष्ट्र कोंकण और गोवा में आज भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ओडिशा के टिटलागढ़ में बाढ़ का कहर, कई इलाकों में हालात बिगड़े, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पवित्र गुफा के पास बारिश की वजह से पानी का स्तर अचानक बढ़ा, इलाके में बाढ़ जैसे हालात, अमरनाथ गुफा के आसपास बारिश जारी। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से तेलंगाना के कुमरम भीम आसिफाबाद में जनजीवन प्रभावित, नदी नालों में उफान से निचले इलाकों में पानी। राजस्थान के कई जिलों में आफत की बारिश, अलवर में पानी में फंसी यात्रियों से भरी बस, जेसीबी से किया गया रेस्क्यू। हरिद्वार में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से सूखी नदी उफान पर, कई वाहन बहे, क्रेन की मदद से गाड़ियों को बाहर निकाला गया। मेरठ में पहचान छुपाकर होटल चलाने का आरोप, हिंदू संगठन ने शुरू किया अभियान, कई होटलों में हंगामा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच और कार्रवाई का दावा किया। कानपुर के मर्चेंट नेवी अधिकारी की मौत के बाद सांसद ने विदेश मंत्रालय से लगाई मदद की गुहार, पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए एस जयशंकर को लिखा पत्र। लखनऊ में नकली दवा सिंडिकेट का भांडाफोड़, फर्जी बिलिंग और ट्रांजैक्शन से चल रहा था कारोबार, कार्रवाई की गई और 6 एफआईआर दर्ज, संदिग्ध दवा फर्मों पर रोक और जांच तेज।
अलीगढ़ में स्पोर्ट्स टीचर पर छात्र की पिटाई का आरोप, सीसीटीवी वीडियो वायरल, स्कूल प्रबंधन ने आरोपी शिक्षक को किया बर्खास्त। बरेली में मौलाना ने पत्नी से विवाद के बाद खुद को लगाई आग, अस्पताल में मौत, सीसीटीवी फुटेज और आखिरी बयान के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, एआई कैमरों की मदद से किया जा रहा है सर्वेलेंस, हर जिले के लिए कंट्रोल रूम किया गया स्थापित। प्रयागराज में कांवड़ियों के लिए हेल्प डेस्क की शुरुआत, 24 घंटे मदद के लिए तैनात रहेंगे कर्मचारी। दशाश्वमेध घाट पर रास्ते मंदिरों की जानकारी के साथ साथ प्लास्टिक के बदले दिए जा रहे हैं कपड़े के छोले। प्रयागराज में सावन की शुरुआत के साथ गंगा घाटों पर उमड़ी कांवड़ियों की भीड़, श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान और पूजा के बाद जल भरा, बोलबम के जय घोष के साथ रवाना हुए। प्रयागराज में अनोखी कांवड़ यात्रा, परिवार की एकता के लिए 10 साल से संकल्प निभा रहा परिवार, 11वें साल भी परिवार के 10 सदस्यों ने एक साथ उठाई कांवड़। अयोध्या में सावन के दूसरे दिन शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, क्षीरेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भक्तों ने किया जलाभिषेक, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा परिसर। कानपुर लखनऊ एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर फिर उखड़ी सड़क, गिट्टी से भरा डंपर पलटा, 17 दिन में दूसरी बार सड़क खराब होने से निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल, मरम्मत का काम शुरू। सहारनपुर में पुलिस और गोकश के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से आरोपी घायल, गन्ने के खेत में हुई फायरिंग के बाद पुलिस ने दबोचा, तमंचा और कारतूस बरामद। सहारनपुर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, आरोपी गिरफ्तार, शादी से इनकार करने और धमकी देने के मामले में पुलिस ने भेजा जेल। ग्रेटर नोएडा में ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, 4 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने 15 लाख रूपए कीमत के विदेशी मादक पदार्थ बरामद किए। कोडीन कफ सिरप केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, जज तक पहुंच बनाने के प्रयास पर नाराजगी, न्यायमूर्ति ने सुनवाई से खुद को अलग किया, घटना को बताया न्यायपालिका के लिए काला दिन। कोलकाता के दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन पर ओवरहेड वायर टूटने से मचा हड़कंप, तेज धमाके और चिंगारी के बाद बिजली सप्लाई बंद, कुछ समय के लिए ट्रेन सेवाएं प्रभावित। गुजरात के पंचमहल में हाईवे पर स्थित एक होटल में नशे से धुत लोगों ने जमकर मचाया तांडव, 5 युवकों ने होटल में जमकर तोड़फोड़ की। मुजफ्फरनगर में 2 बदमाशों ने मंदिर से घर लौट रही एक महिला के कान के झुमके छीने, स्नैचिंग की घटना सीसीटीवी में कैद। अलवर में युवकों ने एक स्टूडेंट को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, लाठी डंडों से किए वार, घटना का वीडियो वायरल। जयपुर में तेज बारिश के बीच तेज रफ्तार एसयूवी ने स्कूटी सवार युवक को मारी जोरदार टक्कर, गाड़ी सहित कई फीट दूर जाकर गिरा युवक, मौके पर गई जान। महाराष्ट्र के बुलढाणा में किसान संगठन के जिला अध्यक्ष ने बैंक मैनेजर को मारा थप्पड़, घटना की तस्वीरें आई सामने। जालना में बारिश के बीच बिजली के खंभे पर चढ़ा लाइन मैन, जान जोखिम में डालकर बहाल की बिजली सप्लाई। कुशीनगर में शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप, नाराज छात्रा ने शिक्षक को चप्पलों से पीटा, पुलिस ने शिक्षक पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की। कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप, डॉक्टरों ने मारपीट और तोड़फोड़ का दावा किया। तेलंगाना के मेंट्रियल में 12 फीट लंबे अजगर से मचा हड़कंप, घर के आंगन में मिला विशालकाय सांप, स्थानीय लोग दहशत में। महाराष्ट्र के भिवंडी में ढही 4 मंजिला इमारत, 8 की मौत, करीब 5 मजदूरों के मलबे में फंसे होने की है आशंका। एनडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, देर रात से मलबा हटाने का काम जारी। स्थानीय लोगों ने मरम्मत कार्य पर सवाल उठाए, स्थानीय लोगों का दावा मरम्मत के

0: फिल्म दायरा का फर्स्ट लुक आउट पोस्टर में करीना के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन आ रहे हैं नजर। 18 सितंबर को फिल्म सिनेमाघरों में होगी रिलीज। विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित आध्यात्मिक फिल्म हनुमान अंश आज से बड़े पर्दे पर। नीम त्रिवली बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है ये फिल्म। रामानंद सागर के पोतों का बड़ा ऐलान, 7 पाठ में बनेगी श्रीमद् भागवतम, बड़े पर्दे पर दिखेगी ये पौराणिक गाथा। और साई बाबा के रोल में नजर आएंगे संजय मिश्रा। 13 साई का पहला पोस्टर जारी। 2027 में हिंदी समेत मराठी, तमिल और तेलुगु में भाषाओं में रिलीज होगी ये फिल्म। हिमांशु कोहली, सोनाली सहगल और रवि किशन की फिल्म आर्यभट्ट का जीरो का ट्रेलर रिलीज हुआ, 7 अगस्त को रिलीज, सिनेमाघरों पर देगी दस्तक। स्पेन के साउटा में मानवीय आपातकाल घोषित, एक हफ्ते में पहुंचे 1500 प्रवासी, रिसेप्शन सेंटर फुल, सैकड़ों प्रवासी खुले में रहने को मजबूर, प्रशासन ने मांगी तत्काल मदद। नेपाल में फिर भड़की हिंसा, कई शहरों में बवाल और हंगामा, अब तक 3 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। सांप्रदायिक हिंसा के बाद करीब 6 शहरों में लगाया गया कर्फ्यू। अमेरिका में अटॉर्नी जनरल पद के नामांकन को लेकर खींचतान जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टॉड ब्लैंच की तारीफ करते हुए उन्हें स्टार बताया और कहा कि वे इतिहास के सबसे महान अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं। यूरोप में जंगल की आग में बड़ी तबाही, फ्रांस और स्पेन में बड़े पैमाने पर रिहायशी इलाके जलकर खाक, तेज हवाओं और हीट वेव की वजह से आग पर काबू पाने में दिक्कतें। जर्मनी में भीषण गर्मी का कहर, 2016 के बाद गर्मी से मौतों का रिकॉर्ड टूटा, गर्मी से करीब 10,000 लोगों की मौत, कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।
0: और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर, सीधा उसी का रुख करते हैं। कांग्रेस ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश कर दिया है। केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस का आरोप है कि जितेंद्र सिंह ने संसद के अंदर झूठ बोला और दावा किया कि छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के जवाब में कोई गोलीबारी नहीं हुई है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने मीडिया के सामने पेलेट गन से घायल एक छात्र की बात रखी थी, ऐसी गोलीबारी के पीड़ितों के बारे में मीडिया रिपोर्ट मौजूद है, अस्पताल के रिकॉर्ड से भी ऐसी गोलीबारी में घायल हुए लोगों की जानकारी सामने आई है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। और हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये जो प्रस्ताव पेश किया गया है कांग्रेस की तरफ से, इसमें दावा क्या किया जा रहा है?
3: देखिए, कांग्रेस की तरफ से विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव इनके द्वारा पेश किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो सदन के अंदर बोला है उसको लेकर के इन्होंने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव इनके द्वारा लाया गया। दरअसल लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पैलेट गन और इसके साथ साथ जो प्रदर्शन हुआ है उसको लेकर के सवाल खड़ा किया जाता रहा है। राहुल गांधी ने खुद इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि जो विक्टिम है जिसको पैलेट गन लगा हुआ है उसको लेकर के वो मीडिया के सामने पहुंचे थे और उन्होंने वो तमाम तस्वीरें लोगों को दिखाई थी, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये कहा साफ तरीके से कि गोली एक भी नहीं चली थी, सदन के अंदर उन्होंने ये बात रखी थी। अब सरकार इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार अपनी बातें रख रही है, लेकिन राहुल गांधी जो है वो इस बात को लेकर के मानने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव जो लेकर के लाया गया है, केशु वेणुगोपाल ने ट्वीट किया है और उन्होंने ये जानकारी विस्तृत तरीके से दिया है।
0: जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car,

0: on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
1: Sokudu.
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर किधर
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह। फिट तक सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।
8: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
9: राहुल गांधी ने प्रस्तुत किया एम्स की रिपोर्ट के साथ कि पिलेट छर्रे लगे हैं पूरे शरीर में, आंख की रोशनी जा रही है। यही नहीं, AK-47 से फायर किया गया पटना में। और यही नहीं, महिलाओं के साथ जितना अशोभनीय और अश्लील व्यवहार किया गया वो सारी दुनिया ने देखा है। गृहमंत्री जी क्यों भाग रहे हैं सदन से? भारत का संविधान कहता है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है संसद के प्रति।
10: राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, मंत्री से क्या मतलब है? वहाँ मजिस्ट्रेट जो होता है वो जिलाधिकारी दे सकता है, SDM दे सकता है, जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन होता है वो आदेश देता है, मंत्री थोड़ा आदेश देता है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या मई के मुकाबले जून में कम हो गई है। पश्चिम एशिया संकट के चलते बढ़ी ईंधन लागत और एयरलाइंस नेटवर्क में हुई अस्थायी कटौती का असर भी आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। डीजीसीए के आंकड़ों के मुताबिक जून में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में करीब 12% की गिरावट आई और मई में 1.53 करोड़ यात्रियों के मुकाबले जून में ये संख्या घटकर 1.35 करोड़ रह गई। यात्रियों की संख्या में आई इस गिरावट के बीच एयरलाइंस कंपनियों के बीच बाजार हिस्सेदारी की तस्वीर भी बदली है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने अपनी पकड़ मजबूत की है, जबकि अकासा एयर ने भी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। वहीं एयर इंडिया ग्रुप और स्पाइस जेट का हिस्सा कम हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक इंडिगो का मार्केट शेयर मई के 64.9% से बढ़कर जून में 66.3%, जबकि अकासा एयर का 5.8% से बढ़कर 6.4%, वहीं एयर इंडिया ग्रुप का 25.6% से घटकर 23.9% और स्पाइस जेट का बाजार हिस्सा 2.5% से घटकर 1.9% पर आ गया। यात्रियों की संख्या और बाजार हिस्सेदारी के अलावा उड़ानों के समय पर चलने को लेकर भी दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। जून के दौरान देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर ऑन टाइम परफॉर्मेंस के मामले में इंडिगो सबसे आगे रही, जबकि स्पाइस जेट सबसे पीछे रही। वहीं उड़ान रद्द होने और देरी की वजह से प्रभावित यात्रियों पर एयरलाइंस कंपनियों को लाखों रुपए खर्च करने पड़े। देश के 10 प्रमुख हवाई अड्डों पर 89.4% ऑन टाइम परफॉर्मेंस के साथ इंडिगो टॉप पर रही, जबकि स्पाइस जेट की ऑन टाइम परफॉर्मेंस महज 33.5% दर्ज की गई। वहीं जून में उड़ान रद्द होने से प्रभावित 43,968 यात्रियों को 61.98 लाख रुपए का मुआवजा और सुविधाएं दी गयी, लेकिन उड़ान में देरी से प्रभावित 1.10 लाख से ज्यादा यात्रियों की सुविधाओं पर 2.85 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कुल मिलाकर जून का महीना विमानन कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। यात्रियों की संख्या में आई गिरावट और बदली बाजार हिस्सेदारी ने एयरलाइंस कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। आदित्य केराणा, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। चढ़ावा चोरी पर पुजारी के भेष में पप्पू यादव का अजीब गरीब प्रदर्शन, स्पीकर ने जताई नाराजगी। सीजेपी प्रदर्शन में घायल दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिजनों ने बताई आप बीती। बच्चों ने कहा उपद्रवियों ने किया पापा पर हमला, हमारे परिवार के अधिकारों की बात क्यों नहीं होती। आज तक पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके, पेपर लीक रोकने में बिल नाकाफी, प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई ज्यादती, उपद्रव फैलाने के लिए बीजेपी पर लगाए आरोप,

मुंबई के पास भिवंडी में गिरी चार मंजिला इमारत, एनडीआरएफ ने मलबे से सात लोगों को बाहर निकाला, नौ की मौत, पांच लोग फंसे, बिल्डिंग में चल रहा था मरम्मत का काम।

0: को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वर्कशॉप करने।
1: प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ कुछ शरारती तत्व और असामाजिक तत्व भी थे। जो पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ दिया। पुलिस फोर्स पर चप्पलों जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया। क्योंकि 20 तारीख के बाद से आज तक यही नैरेटिव चलाया जा रहा है।
2: जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4।

0: बुलेटिन के हिस्से में बात करेंगे 20 जुलाई के संसद मार्च में घायल हुए पुलिसकर्मियों की। जो पुलिस वाले उस दिन ड्यूटी पर थे, आज उनके परिजन सामने आए हैं। जो पुलिस वाले उस दिन ड्यूटी के दौरान भीड़ के आक्रोश का शिकार हुए हैं, उनके परिजनों ने अपना पक्ष रखा है। अब पुलिसकर्मी सीधे बात नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनके परिजन सामने आए हैं। उन्होंने उस 20 जुलाई की वो कहानी बताई जो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अभी तक किसी ने नहीं सुनी और किसी ने देखी नहीं है। पुलिस वाले जख्मी हुए, ये सबको पता है, लेकिन ये जख्म कितने गहरे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं।
1: जुलाई को जब छात्रों ने संसद मार्च किया, तब दिल्ली में हंगामा मच गया। एक तरफ आक्रोशी छात्रों की भीड़ थी, सामने दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान थे। छात्रों का लक्ष्य संसद तक पहुंचना था। पुलिस की ड्यूटी छात्रों को संसद से पहले रोक देना था। बस इसी जद्दोजहद में दिल्ली में वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। तक मीडिया और सोशल मीडिया में एक पक्ष की बात दिखी जिसमें घायल छात्र थे। पैलेट गन से जख्मी दिखे, छात्राओं के कपड़े फाड़ती वर्दी दिखी, कहीं लड़कियों से असभ्यता दिखी। लेकिन अब वो भी देखिए जो एक पुलिस वाला देखता है, जो पुलिस वालों के परिजनों ने देखा, जो उन पुलिस वालों के परिवार ने 20 जुलाई को महसूस किया।
2: रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी।
3: प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ कुछ शरारती तत्व और असामाजिक तत्व भी थे।
4: जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4।
1: 20 जुलाई को दिल्ली में सिर्फ छात्र नहीं घायल हुए, किसी का पिता, किसी का पति, किसी का दोस्त घायल हुआ। जब छात्रों की आक्रोशित भीड़ जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स की जंजीरों को तोड़ती हुई आगे बढ़ी तो रास्ते में जो मिला उसे रौंदती निकल गई। पुलिस डाल डाल तो छात्र पात पात, पुलिस दौड़ती तो छात्र दौड़ते, पुलिस भिड़ती तो छात्र भिड़ते, और इस भिड़ंत में हजारों छात्रों को लाठियां पड़ी, सैकड़ों पुलिसकर्मी भी घायल हुए।
2: रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वर्कशॉप करने।
1: इस आंदोलन में जो पुलिस वाले घायल हुए उनके परिजनों ने अब खुलकर अपनी बात रखी है। घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने अपना पक्ष रखा, क्योंकि उनका मानना है कि अभी तक जो कुछ दिखाया गया, जो कुछ भी सुनाया गया, वो सिर्फ छात्रों का पक्ष था। लेकिन अब दूसरा पक्ष भी देश को जानना चाहिए।
3: 20 तारीख के बाद से आज तक यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो छात्र थे, जो छात्रों का प्रोटेस्ट था, उसको कि पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्रों को पीटा गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अलग एक प्रोटेस्ट का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है।
1: दिल्ली पुलिस के घायल जवानों के परिजनों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कुछ डेटा भी शेयर किया, जिसके मुताबिक 250 से अधिक पुलिसकर्मी इस प्रदर्शन में घायल हुए। किसी को हेड इंजरी हुई तो किसी की हड्डियां चटक गई, किसी का हेलमेट टूटा, किसी की तो जान जाते जाते बची।
3: जब वो 11 बजे घर आए तो उन्होंने बताया कि छात्रों की प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ कुछ शरारती तत्व और असामाजिक तत्व भी थे। उन्होंने पुलिस फोर्स पर जो पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों, जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया। और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था। और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते।
1: प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस के परिजनों ने दावा किया कि इस आंदोलन में सिर्फ छात्र नहीं थे, अराजक तत्व भी थे जिन्होंने पुलिस के साथ बर्बरता की। पुलिस के परिवार वालों की एक शिकायत देश के सियासतदानों से भी है, जो जवान संसद की सुरक्षा में घायल हुए, जो जवान नेताओं की सुरक्षा में रहते हैं, जब उन्हीं पर हमला होता है तो फिर संसद में आवाज क्यों नहीं उठती? आंदोलन में घायल छात्रों पर तो हर कोई बोलता है, लेकिन घायल पुलिस वालों पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: तो वर्दी में सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं होता, सामने जो सिपाही खड़ा दिखता है उसके भी परिजन हैं, उसका भी परिवार है, लेकिन वो अपना पक्ष किससे कहे? आखिर वो भी नागरिक है, किससे कहे अपनी बात? सिपाही ने तो आदेश का सिर्फ अनुपालन किया, अब पुलिस कर्मियों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
1: जुलाई को जंतर मंतर से जब संसद मार्च की तैयारी हो रही थी, तब वर्दीधारी जवान भी तैयार थे। उस आंदोलन को शांतिपूर्ण समाप्त कराने के लिए, भीड़ को संभालने के लिए, स्थिति पर काबू पाने के लिए, लेकिन ये सब सिर्फ तैयारी बनकर रह गई। छात्रों का संसद मार्च कब हिंसक हो गया पता ही नहीं चला। पथराव हुआ, लाठियां चली, आंसू गैस चले, सबसे बढ़कर पैलेट गन चल गई। 20 जुलाई को हुए उस बवाल में पुलिस कर्मियों पर भी हमले हुए, जिसमें पुलिस वाले जख्मी हुए। एएसपी, एएसआई, सिपाही, हर स्तर के जवान इस विरोध मार्च में भीड़ का शिकार बने।
4: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में, एंड ऑन 25 मई at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फिन के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है, मतलब स्टूडेंट्स नहीं है उसमें, डाउडीज है उसमें, एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
1: दिल्ली पुलिस के परिजनों की माने तो उस दिन शुरू में सब ठीक था, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ हालात बिगड़ते गए। एसीपी के बेटे लकी बिस्ट ने बताया कि उनके एसीपी पिता पर उस वक्त हमला हुआ जब वो अपने सीनियर अफसरों को घटना की ब्रीफिंग दे रहे थे। वो हमले के लिए तैयार नहीं थे।
4: उन्होंने मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे। एंड वेन द पेल्टिंग स्टार्टेड, मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को लाइक एक सेफ प्लेस में सेक्लूड करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई।
1: दिल्ली पुलिस के जवानों ने ही अपने परिजनों को बताया कि उस आंदोलन में सिर्फ छात्र नहीं थे, अराजक तत्व भी थे जिन्होंने हिंसा को उकसाया, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया।
2: जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतने सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। और मुझे यही बोलना था कि आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है। उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है। उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है।
1: आंदोलन छात्रों का था, विरोध छात्रों का था, लेकिन उसमें अराजक तत्व भी घुसे। दिल्ली पुलिस ने इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि 2000 से अधिक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग डिटेक्ट हुए, लेकिन सवाल यह है कि ये लोग आंदोलन में पहुंचे कैसे, अपराधी खुलेआम सड़कों पर कैसे घूम रहे।
3: एक यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ एक पुलिस कर्मी नहीं होता, उसके पीछे होती है उसकी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार, जो देर रात तक वेट करता है कि वो सुकुशल घर लौट आए।
1: पुलिस कर्मियों के परिजनों का कहना है कि इस आंदोलन का विलन दिल्ली पुलिस को बनाया गया, एक तरफा नैरेटिव फैलाया गया। पुलिस वाले सीधे तौर पर अपनी बात नहीं रख सकते, इसलिए परिजनों को सामने आना पड़ा। पुलिस वालों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई है और मांग की है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को भी आम नागरिकों की तरह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समान अधिकार मिलना चाहिए। पुलिस पर हमला करने और हिंसा भड़काने वालों की सख्त जवाबदेही तय होनी चाहिए। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात पड़ोसी देश नेपाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा की, जिसकी चपेट में अब नेपाल के कई जिले आ गए हैं। हिंसा की शुरुआत हुई सुनसरी जिले से, जिसने अब कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है और इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। नेपाल में भड़की हिंसा में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। स्थिति को काबू में करने के लिए सेना की भी तैनाती की गई है, हालांकि हालात काबू में आ नहीं रहे हैं। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भी लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है।
1: उग्र भीड़, सड़कों पर भारी बवाल, हिंसा, आगजनी और सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच जबरदस्त तनाव। ये तस्वीरें पड़ोसी देश नेपाल की हैं, जो साफ बता रही हैं कि सांप्रदायिक हिंसा के बाद बिहार से सटे नेपाल के तराई इलाके में कैसी स्थिति बनी हुई है। कहीं आगजनी हो रही है, कहीं तोड़फोड़, तो कहीं सड़कों पर उबाल नजर आ रहा है। रविवार को नेपाल में भड़की हिंसा का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार और प्रशासन लगातार हिंसा को काबू करने की कोशिश में लगा है। प्रभावित जिलों में सेना की तैनाती की गई है, लेकिन अब तक स्थिति काबू में नहीं आई है। भारत की सीमा से सटे कोशी और मधेश प्रांतों में हुई हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कई जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सभी संवेदनशील इलाकों की हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है, लेकिन ना तो नेपाल में भड़का बवाल थम रहा है, न उपद्रव शांत हो रहा है। इस बीच खुद प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने वीडियो जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और साथ कहा कि लोग अफवाहों से बचें।
5: यस्तो संवेदनशील घड़ी में सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट असत्य, अपुष्ट सूचना, अफवाह, घृणा फैलाउने सामग्री वा समुदाय बीच वैमनस्य बढाउने अभिव्यक्ति प्रचार प्रसार नगराउन अनुरोध गर्दछु। साथै सरकारी निकायहरूबाट जारी भएका आधिकारिक तथ्य र सूचना मात्र विश्वास गर्न विशेष आग्रह गर्दछु।
1: दरअसल नेपाल में भड़की हिंसा की शुरुआत बीते रविवार को तब हुई जब कोशी प्रांत के सुनसरी जिले में 2 धार्मिक समुदाय आमने सामने आ गए और हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत हो गई और देखते ही देखते इसकी आग नेपाल के कई जिलों तक फैल गई।
5: घटना भए लगत्तै सबै सुरक्षा निकायहरूले तत्काल घटनास्थलमा पुगेर परिस्थितिलाई सामान्य बनाउने, थप अप्रिय घटना हुन नदिने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रयास निरन्तर गरिरहेका छन्। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कानुनी कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ। म सबैमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो छानबिन पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र पारदर्शी हुनेछ। घटनामा संलग्न दोषी जो कोही भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ।
1: परिस्थितिको सामान्य बनाने की कोशिश जारी है। हिंसा फैलने के बाद नेपाल प्रशासन ने सिराहा, धनुषा और पर्सा समेत कई जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। हालात को सामान्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिर भी उपद्रव थम नहीं रहा। आज तक ब्यूरो।
0: और बात यूरोप की, जहां मुस्लिम देश मोरक्को से आ रहे शरणार्थियों ने स्पेन में संकट बढ़ा दिया है। हजारों लोग जान की बाजी लगाकर बॉर्डर पार कर रहे हैं। यहां लगातार हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि स्पेन में लगातार लोगों के सरहद पार करके आने का सिलसिला जारी है। कई नावों के सहारे देश के बॉर्डर पर लोगों के घुसने की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग तैरते हुए आ रहे हैं और हजारों की तादाद में मोरक्को में घुसे हैं। खासतौर पर स्पेन के स्यूटा इलाके में ये ज्यादा दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हजारों की संख्या में प्रवासी अंदर आ रहे हैं। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
6: आज तक प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
8: व्हाटएवर यू आर इन द मूड फॉर देयर्स ऑलवेज समथिंग टू लिसन टू ऑन ट्यून इन म्यूजिक न्यूज स्पोर्ट्स पॉडकास्ट्स एंड लाइव रेडियो फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ऑल इन वन प्लेस। Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more, right here on TuneIn.
9: Savari, Sokudo.

0: मिडिल ईस्ट सुलग रहा है और उसकी तपन में दुनिया भर के बाजारों में बेचैनी बढ़ गई है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता तनाव फिर से आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ाने की आशंका पैदा कर रहा है। दरअसल जब भी किसी बड़े तेल उत्पादक क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, सबसे पहले कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ जाती है। इस बार भी अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने ऊर्जा बाजारों की धड़कनें तेज कर दी हैं। गोल्डमैन सैक्स ने चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज में सप्लाई संकट लंबा खिंचता है तो कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और चौथी तिमाही तक ब्रेंट क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। तनाव लंबे समय तक जारी रहने पर कुछ विश्लेषकों ने $150 से $200 प्रति बैरल तक जाने की आशंका जताई है। फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड करीब $91 और WTI क्रूड लगभग $83 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। तेल बाजार में बढ़ती इस बेचैनी का असर भारत पर भी पड़ सकता है। इसकी वजह है कि देश अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है और पश्चिम एशिया ग्लोबल क्रूड सप्लाई का खास हिस्सा है। आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। वहीं पश्चिम एशिया में दुनिया के करीब 20% तेल व्यापार की आवाजाही होर्मुज के रास्ते होती है और होर्मुज में बाधा आने पर भारत का आयात बिल बढ़ सकता है। यही वजह है कि होर्मुज में किसी भी तरह की रुकावट भारत जैसे बड़े आयातक देशों की चिंता बढ़ा देती है। तेल महंगा होने से ऊर्जा लागत बढ़ सकती है और महंगाई पर भी दबाव बन सकता है। इसी खतरे को देखते हुए भारतीय रिफाइनरियां अपनी खरीद रणनीति में बदलाव करती नजर आ रही हैं, जिसके चलते जून तिमाही में रूस और लैटिन अमेरिकी देशों से तेल खरीद बढ़ाई गई, क्योंकि रिफाइनरियां वैकल्पिक स्रोतों पर फोकस बढ़ा रही हैं और उनका मकसद किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम करना है। फिलहाल बाजार की नजर अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक कोशिशों पर है। अगर तनाव कम होता है तो कच्चे तेल की कीमतों में राहत मिल सकती है, लेकिन अगर संकट लंबा खिंचता है तो इसका असर पेट्रोल डीजल महंगाई और शेयर बाजार तक महसूस किया जा सकता है। यानी पश्चिम एशिया का ये तनाव हजारों किलोमीटर दूर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के बजट पर भी असर डाल सकता है। आदित्य राणा, आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.

0: पेलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन दिए नहीं किया जा सकता।
1: जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं।
0: हम लोगों को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पेलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे।
1: ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं।
2: ये मानसून सत्र में राजनीति का दूसरा पार्ट है। पेपर लीक पर छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है, जंतर मंतर पर खामोशी है, धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी सीज फायर करने पर राजी नहीं है। राहुल गांधी का इरादा साफ दिख रहा है, पेपर लीक की लड़ाई को पैलेट गन पर शिफ्ट करने की, धर्मेंद्र प्रधान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट पर लाने की।
3: She says the student.
2: कल राहुल गांधी संसद में हुए हंगामे के केंद्र में रहे, उनके हमले पर दिन भर बवाल रहा। राहुल गांधी के भाषणों के कुछ शब्दों को असंसदीय बताकर रिकॉर्ड से बाहर भी किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने संसद से निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और हमलों का सिलसिला जारी रखा। बीजेपी राहुल गांधी की मंशा को समझ रही है कि राहुल गांधी ने अमित शाह को ही हमले के लिए क्यों चुना, क्योंकि अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं। सत्र के 10 दिन हुए हैं, 15 दिन और बाकी हैं, और राहुल गांधी अमित शाह को चर्चा के केंद्र में रखने की कोशिश में दिख रहे हैं।
4: कि हो क्या रहा है यहां, दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है, राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा ये सीजेपी के लोग आए, ये जेनजी के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो, चलो उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त तो हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया, हमारा क्या होगा, हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे, तो चलो कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं।
2: बीजेपी बनाम राहुल गांधी की ये लड़ाई असल में युवाओं के बीच पैठ बनाने की जंग भी है। पेपर लीक पर छात्रों के प्रदर्शन की कामयाबी से लगता है कि विपक्ष के हाथों में भविष्य के लिए नई कुंजी आ गई है, जिसका इस्तेमाल संसद में होता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।

विपक्ष के बीच संसद में विशेषाधिकार हनन का जवाबी एक्शन। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने दिया नोटिस, तो कांग्रेस का जितेंद्र सिंह के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का प्रस्ताव। विपक्ष के नॉनस्टॉप हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। चढ़ावा चोरी पर पुजारी के भेष में पप्पू यादव का अजीबोगरीब प्रदर्शन, स्पीकर ने जताई नाराजगी। बीजेपी प्रदर्शन में घायल दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिजनों ने बताई आप बीती। बच्चों ने कहा उपद्रवियों ने किया पापा पर हमला, हमारे परिवार के अधिकारों की बात क्यों नहीं होती। आज तक पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके, पेपर लीक रोकने में बिल नाकाफी, प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई ज्यादती, उपद्रव फैलाने के लिए बीजेपी पर लगाया आरोप। और स्पेन की सीमा पर बने इमरजेंसी के हालात।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बज गए हैं और न्यूज रूम लाइव का वक्त हो गया है। न्यूज रूम से हम वो सारी खबरें आपको बताएंगे जो आज पूरे दिन चर्चा का विषय बनी। सबसे पहले जैसे हम बताते हैं, आपको बता देते हैं कि कौन सी खबरें हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आज संसद के बाहर क्या हुआ, मकर द्वार पर कैसे एक नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला और पप्पू यादव ने क्या किया, वो भी डिटेल में हम आपको बताएंगे। राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद थे। दूसरी जो खबर होगी वो भी हम आपको बता दें। दूसरी जो आज बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं, पैलेट गन पर फायर गदर ये बरकरार है। एक तरफ प्रदर्शनकारी छात्रों की बात हो रही है तो दूसरी तरफ बात हो रही है पुलिस वालों की, इस पर भी बात होगी। राहुल बनाम विशेषाधिकार और दोनों तरफ से किस तरह से, कांग्रेस की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से एक दूसरे पर कैसे प्रिविलेज मोशन लाया गया, ये भी हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर वो भी हम आपको बता दें। तीसरी बड़ी खबर पर आज हम बात करेंगे मुंबई के पास मौत की इमारत की। 8 लोगों की मौत हो चुकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा है ये भी हम आपको बताएंगे। और ठीक आधे घंटे बाद हम आपको बताएंगे कि सीजेपी के अभिजीत दीपके अब जो सरकार कानून बना रही है उस पर क्या मत रखते हैं, ये सारी खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम आपको बताएं कि संसद के बाहर आज क्या नाटक देखने को मिला। साधु संतों की वेश में आज पप्पू यादव वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद प्रदर्शन करते हैं, राहुल गांधी दान देते हैं वहां पर और पूरा नाटकीय घटनाक्रम होता है। समाजवादी पार्टी के और भी सांसद आते हैं, पप्पू यादव जो वहां साधु संत की वेशभूषा में आते हैं, साथ में एक टिन का डिब्बा जिसको दान पात्र कहा जाता है उसमें दान डलवाते हैं और उसके बाद वो लेकर भागते हैं। राहुल गांधी भी उसमें दान डालते हैं, हालांकि इस पर अब स्पीकर नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन जमकर सियासत हुई। अब आपको वो पूरा नाटकीय घटनाक्रम दिखाते हैं कि कैसे मकर द्वार के बाहर चंदा चोरी को लेकर प्रदर्शन किया गया। कायदा डब्बा जो दान पात्र है वो लेकर भागते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे दर्जन प्रदर्शन यहां पर किया गया। राहुल गांधी भी इसका हिस्सा थे। राहुल गांधी आते हैं, वो जो टीन का डब्बा जब बनाया जाता है दान पात्र उसमें वो दान डालते हैं। अब पप्पू यादव वहां पर मौजूद थे तो वो हम आपको दिखाते हैं कि वो कैसा घटनाक्रम रहा। अलग अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि आम जनता जो राम मंदिर में, श्री राम मंदिर में दान देती है उसको कैसे चोरी किया गया। लेकिन जब ये सब नाटक चल रहा था तो उस वक्त हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल वहां पर मौजूद थी, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: सारी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, इस समय यहां पर आपको धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और पप्पू यादव जो है वो यहां पे बैठे हुए आपको नजर आ रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी की एमपी जो है वो यहां पर पहुंची है, उनके पास बैठकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धर्मेंद्र यादव आपको पीछे नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आपको पीछे नजर आ रही है। यहां पर जबरदस्त शोर इस समय हो रहा है। जो आपको यहां देखने को मिल रहा है ये है मकर द्वार संसद का, वो है कि विपक्षी पार्टियां अपनी एकजुटता दिखा रही और एकजुटता के साथ साथ ये भी दिखा रही है कि किस तरीके से वो एकजुट है। और इस समय अमित शाह से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सारी विपक्षी पार्टियां यहां पर पीछे मकर द्वार पर नजर आ रही है। चंदा चोरी एक बड़ा मुद्दा यहां पर बन चुका है और बड़े बड़े नेता, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, यहां पर आपको पीछे नजर आ रही है। संसद से ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक, दिल्ली।
0: तो देखिए, जो आज जो भी कुछ हुआ ना, इसकी मुख्य भूमिका में थे पप्पू यादव। और पप्पू यादव से बात की हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह ने, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं।
2: पप्पू यादव जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आप जो भगवा कपड़े पहन करके आए हैं, यहाँ सत्ता पक्ष के सांसदों के द्वारा ये कहा गया कि भगवा का मजाक एक तरीके से उनके द्वारा उड़ाया जा रहा है।
3: अच्छा, भगवा के आस्था के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? हम किसी का नाम तो ले नहीं रहे। ये जो दुराचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी बाबा है, पर्ची निकालने वाले जिन पर आरोप है, वो सारे गेरुआ के आस्था को खतरे में डाला है। सारे रियल संत जो है उसको खतरे में डाला है, रियल बाबा को खतरे में डाला है। तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हम लाए, राम राम जपियो रे सब माल हड़पियो रे। आप भगवान के आस्था के साथ ही नहीं 154 करोड़ भारत के उस आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं जो राम के, जो राम को अपने जीवन में, कर्म में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं, जो शिव को अपना आराध्य समझते हैं, शिव जीवन में है, शिव विचारों में है।
0: लेकिन स्पीकर ने, स्पीकर साहब ने भी टिप्पणी किया है आपकी,
3: निश्चित रूप से विरोध का क्या तरीका होगा, लाठी गोली तो हम इन लोगों की तरह नहीं चला सकते। तो जो और राम के आस्था के साथ ठेस पहुंचाया, सनातन पर हमला बोला, तो क्या अन्य लोग जितने लोग हैं वो लोग गेरुआ पहन के नहीं आते हैं? हमने गेरुआ पहन करके आस्था की बात की, और जो लोग गेरुआ पहन के आते हैं नाटक करते हैं और भारत में उन्माद पैदा करते हैं और भगवान को राजनीति में बेचते हैं।
0: लेकिन आप सर जो दान पत्र लेकर के इधर तो भाग रहे थे पूरा, तो वो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है चोरी करने का, भगवान राम की आस्था को लेकर के,
3: भगवान राम की आस्था की ही ना चोरी हुई है, देखने रहे सब चोरी कर लिए, देखने रहे। तो भागे, जो भाग रहा है लेकर के, तो उसको तो लेके भागना पड़ेगा ना।
0: तो पप्पू यादव के एक्ट के बाद वाली बात तो आपने सुन ली, उनका बयान सुन लिया, लेकिन जब वो एक्ट कर रहे थे उस दौरान वो क्या कह रहे थे जब ये सब चल रहा था, वो भी हम आपको सुनाते हैं।
4: समाजवादी पकड़े हुए हैं, देखिए लोग भाग रहे हैं, समाजवादी पकड़े हुए हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं,
3: राम राम जपियो रे सब माल हड़पियो रे। ये पूरा भगवान के साथ गद्दारी जी, राम अयोध्या मंदिर, ये हमारे राम, ये हमारे राम
5: जी,
3: मेरे जीवन में, हम सबके मन में,
6: देंगे चंदा चोरों को,
7: हमारे साथ है पप्पू यादव, पकड़ा गया।
0: तो ये तो आपने देख लिया, लेकिन बीजेपी के सांसद है साक्षी महाराज, अब वो ये कह रहे हैं कि ये तो साधु संतों का अपमान और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
8: पप्पू यादव जिस तरीके से चढ़ावा चोरी को लेकर के यहाँ प्रदर्शन कर रहे
9: हैं, भगवान भगवान का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने सख्त निर्देश दिए हैं, अगर नहीं सुधरेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। छोड़ दिया, छोड़ो ना
8: बिल्कुल। तो यहाँ पर साक्षी महाराज के द्वारा ये कहा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर ने इस पूरे मामले को लेकर के ये कहा है कि राम का और भगवा का अगर कोई अपमान करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
0: हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम बात करते हैं। हिमांशु, ये कहा जा रहा है कि स्पीकर तक ये मामला पहुंच चुका है और इस मामले को लेकर नाराजगी जताई गई है, क्या खबर आ रही है?
10: देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से पप्पू यादव ने एक भगवा रंग के कपड़े पहन के संसद भवन पहुंचे और बिल्कुल एक साधु के भेष में पहुंचे और उसके बाद जो है वो लगातार जो है प्रोटेस्ट करते रहे और एक तरीके से ये कहें कि उन्होंने एक ड्रामेटिक स्टाइल में जो है चंदा चोरी के मामले को जो है वो रिपीट किया क्या, उसके बाद जो है लोकसभा स्पीकर की उस पर ये शिकायत पहुंची है और लोकसभा स्पीकर के हवाले से जो है वो ये कहा जा सकता है कि अब जो है मकर द्वार पे इस तरीके के प्रोटेस्ट के लिए जो है वो कोई जगह नहीं होगी और उसके लिए किसी भी तरीके की इजाजत जो है मकर द्वार पर इस तरीके के प्रदर्शन की नहीं मिलने वाली है। जिस तरीके से पिछले दो दिन से जो है विपक्ष चंदा चोरी के मामले को लेकर जो है लगातार जो है दान पात्र रखकर और आज पप्पू यादव जिस तरीके से साधु के बेस में आए उसके बाद ये कहा गया कि इस तरीके के प्रोटेस्ट जो है संसद भवन के मकर द्वार गेट पर उसकी इजाजत जो है वो नहीं मिल पाएगी और अब देखना ये है कि भविष्य में किस तरीके से जो है यानी सोमवार से जो है कहां जो है विपक्ष के सांसद जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे।
0: शुक्रिया मानशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए संसद में ये मामला हुआ लेकिन ये मामला कहां तक पहुंचा, मध्य प्रदेश तक पहुंच गया और मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक काफी आग बबूला नजर आए। हमारे सहयोगी रवीश पाल ने बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा से बात की
11: जो अयोध्या में

0: हुआ उसके खिलाफ एक प्रदर्शन था, उसका गुस्सा था जो आज विपक्ष ने दिखाया है लोकसभा में।
1: देखिए हिंदू धर्म के हत्यारे ये क्या बताएंगे कि हिंदू धर्म के प्रति इनकी क्या आस्था है। ये तो बाबर अकबर हुमायूं और औरंगजेब के बाप निकल रहे हैं। बाबर अकबर औरंगजेब ने तो हमारे मंदिर तोड़ के संस्कृति का विनाश करके हिंदुओं को मुसलमान बनाने का कोशिश की थी, लेकिन आज उसके हजारों साल बाद भी ये सापा भासापा वाले ये पप्पू अखिलेश और पप्पू यादव और राहुल गांधी इन दोनों ने मिलाकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप मंदिर में हिंदू जा रहे हैं मंदिर में मत जाओ। ये तो हिंदू धर्म का को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं और ये तरह के भगवा का अपमान कर रहे हैं। ये राम जी का चित्र जांग पर रख रहे हैं, जमीन पर लिटा रहे हैं और पैर पड़ के नाटक नौटंकी कर रहे हैं। कान खोल कर सुन लेना चाहिए, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे पप्पू हो, कान खोल कर सुन लो। सनातन का अपमान मत करो, जिनने मंदिर में लूट की है और चोरों को जेल में डाला गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी सजा देगी, राम भी सजा देंगे। लेकिन
2: देखिए राम मंदिर चोरी का मुद्दा समाजवादी पार्टी की तरफ से पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा था। पप्पू यादव ने जब इसको आगे बढ़ाया तो समाजवादी पार्टी के जो सांसद धर्मेंद्र यादव वो गदगद दिखाई दिए। उनका बयान सुनवाते हैं आपको।
3: हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि कैसे अयोध्या में डकैती पड़ रही है 2020 से, जब से प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बना है तब से डकैती पड़ रही है, और तभी से नहीं पड़ रही है। जो 90 के आंदोलन के समय भी लगभग 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था उसका भी हिसाब किताब पता नहीं है, और ये 100% बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोगों की जेबों में और खातों में जाने लगा है। और इस बात को लेकर हम विपक्ष के लोग लगातार मांग कर रहे हैं स्पीकर साहब से भी कि हमको चर्चा का मौका दीजिए, और जब तक चर्चा का मौका नहीं देंगे सदन को हम लोग व्यवस्थित नहीं चलने देंगे।
4: वही
3: आपके माध्यम से देश का आम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते। अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए।
2: और इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है, पूरी वर्धमान से एक संदिग्ध आतंकी को पकड़ा गया है, पूछताछ की जा रही है, अभी बहुत से खुलासे यहां पर हो सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान से एक संदिग्ध आतंकी को पकड़ा गया है जिसका नाम हमीम मंडल बताया जा रहा है। पिछले 4-5 दिन से पुलिस के रडार पर था हमीम मंडल। अब पुलिस के मुताबिक जांच में यह भी पता चला कि संदिग्ध आतंकी पाकिस्तान में कुछ लोगों के साथ लगातार संपर्क में था। अब क्या जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई गई, किस फिराक में था, क्या करने का इसका मंसूबा था, कितने लोग इसके साथ शामिल थे, अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कितने लोगों के संपर्क में था और क्या करने की फिराक में था। इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, हमीम मंडल से जुड़ी और क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है?
5: देखिए, हमीम मंडल हावड़ा के पीलखाना में रहते थे, हावड़ा जिले में वो रहते हैं, ये एक सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बर्धमान जिले में है, पूर्वी बर्धमान के एक टाउनशिप में वो वहां पे रह रहे थे, और पुलिस को जब टिप ऑफ मिला, बंगाल पुलिस के एसटीएफ ने आज सुबह उनको वहां से गिरफ्तार किया है। उनका जो मोबाइल डिवाइस है उसको सीज कर लिया गया है, और उससे काफी इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिला है। सूत्रों के हवाले से ये पता चल रही है कि पश्चिम बंगाल के जो टॉप पॉलिटिकल लीडर्स है, राजनीतिक नेता है, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री खुद, चीफ मिनिस्टर, उनकी आवाजाही, उनकी मूवमेंट्स वो ट्रैक कर रहे थे, ये पुलिस सस्पेक्ट कर रही है। ये कहा जा रहा है कि वो पाक बेस्ड जो टेरर आउटफिट्स है, मॉड्यूल्स है, उनके साथ उनका बातचीत होती थी, कम्युनिकेशन होता था, और यही कारण है कि उनको आज हिरासत में ले लिया गया है। कुछ देर में बर्धमान में एक लोकल कोर्ट में उनकी पेशकश की जाएगी, उसके बाद उनको कोलकाता लाया जाएगा जहां पर फर्दर पूछताछ उनसे हो सकती है। ये सुनने में आ रहा है कि वो हावड़ा जिले के पीलखाना इलाके में रहते थे, लेकिन वहां पे जब वो एक टेलर, एक दर्जी का काम करते थे, लेकिन उनका दुकान जब वहां से हटाया गया तब वो बर्धमान चले गए। पिछले कुछ दिनों से वो पुलिस के रेडार में थे, और फाइनली
2: पूछताछ की जाएगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। अब बात करते हैं पक्ष की, विपक्ष की, दोनों में ठनी हुई है। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव एक तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ लाया गया, तो राहुल गांधी की तरफ से लाया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ। प्रिविलेज मोशन की बात यहां पर की जा रही है। पैलेट गन पर सरकार और विपक्ष में ठन गई है। पहले नेता विपक्ष के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए बयान पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया अनुराग ठाकुर की तरफ से, तो जवाब में कांग्रेस ने भी मोर्चा खोला और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के फायरिंग नहीं हुई ये वाले बयान पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। यानी प्रिविलेज मोशन दोनों तरफ से खेला जा रहा है।

0: मोशन, प्रिविलेज मोशन दोनों तरफ से खेला जा रहा है। तो देखिए, आपको याद होगा कि जब गृहमंत्री अमित शाह को लेकर बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया जाता है तो उसके बाद राहुल गांधी माफी मांगे, इस तरह के नारे लगाए जाते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, और उसके बाद विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाता है राहुल गांधी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गृहमंत्री के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस जारी किया जाता है, और ये राहुल गांधी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जितेंद्र, दोनों तरफ से विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया एक दूसरे को, अब इस मामले में आगे क्या चल रहा है? जितेंद्र
1: बिल्कुल हिमांशु, अभी जो है इसको लेकर के विशेषाधिकार हनन वर्सेस विशेषाधिकार दोनों पार्टियों के द्वारा अलग अलग तरीके से लाया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता जो केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करके ये बताया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो सदन के अंदर जानकारी दी है वो सही तरीके की जानकारी उन्होंने नहीं दी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर के आई है, और वो स्पीकर के पास उन्होंने इसको लेकर के एक पत्र भी लिखा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से भी राहुल गांधी ने जिस तरीके के बयान दिए हैं, खासतौर पर गृहमंत्री अमित शाह को लेकर के, जिनको कि उसमें किसी भी तरीके का तथ्य नहीं है, उन तमाम चीजों को लेकर के जो उन्होंने बयान दिए हैं उस पर बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को पत्र लिखकर के कहा कि इनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाना चाहिए। तो अब दोनों पार्टियों की तरफ से इस तरीके के विशेषाधिकार प्रस्ताव लाए गए हैं, और जिस तरीके से
0: प्रस्ताव लाया जाता है जब किसी सदस्य के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि गलत जानकारी दी गई हो। अब हालांकि इसमें आगे क्या होता है देखने वाली बात है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
4: ट्यून इन रेडियो ब्रिंग्स द वर्ल्ड ऑफ रेडियो स्ट्रेट टू यू। म्यूजिक, न्यूज, स्पोर्ट्स, पॉडकास्ट्स एंड लाइव रेडियो फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ऑल इन वन प्लेस। From what's happening now to what you want to hear next, enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: ये देखो एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
3: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
4: वाह वाह वाह वाह।
3: सेबी और NSE का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
5: समझ कर, इन्वेस्ट कर।
6: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा. Sarah Sanitaryware, it's your moment of Sarah.
2: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर. ज्वाइन कीजिए.

0: जुए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
1: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
2: जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
3: कि विपक्ष की भूमिका नकारात्मक है, जब से सत्र शुरू हुआ है तब से, यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। और इसके साथ साथ मैंने यह भी देखा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इसकी इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और यह इसी सत्र की बात नहीं है, जितने भी पीछे सत्र हुए हैं सभी में सरकार ने हमेशा हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार रही है। और जब जब जिस विषय पर चर्चा हुई है उस पर विपक्ष ने मुंह की खाई है, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है। दे आर इशूलेस,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: In association with
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
3: साथियों, फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए
4: फ्रेंड्स।
5: पीएम मोदी का नया वीडियो संदेश
3: के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग।
5: एंटी पेपर बिल पास होने के बाद जारी वीडियो।
3: कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में
5: पेपर लीक गैंग को सीधी चेतावनी।
3: और जैसा मैंने आपको वादा किया गत दो दिन,
5: पीएम मोदी ने एक बार फिर छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी किया। पीएम का ये मैसेज उस वक्त आया है जब लोकसभा और राज्यसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया। पीएम मोदी ने मैसेज जारी कर सीधे पेपर माफिया को चेतावनी दी।
3: कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
5: पेपर लीक गैंग के खात्मे के साथ साथ पीएम मोदी ने शिक्षा पद्धति में सुधार की भी बात कही।
3: और आज पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है।
5: संसद में एंटी पेपर लीक बिल पास होने को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाता है।
3: हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम मान्य सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा।
5: पेपर लीक को लेकर मचे घमासान पर पीएम मोदी पिछले 8 दिनों में सोशल मीडिया पर 4 वीडियो पोस्ट कर चुके हैं जिसमें पेपर लीक संशोधन बिल और हाई पावर टास्क फोर्स के गठन की जानकारी दी थी। आज तक ब्यूरो।

0: हम छत्रपति संभाजी नगर में हैं और छत्रपति संभाजी नगर का नाम आज पूरे देश में इस वजह से भी जाना जाता है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भी यहीं से हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अभिजीत दिपके के घर पे हम इस वक्त मौजूद हैं और उस वक्त हम अभिजीत दिपके से बातचीत कर रहे हैं जब सदन के दोनों सदनों में पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पारित हो चुका है, लोकसभा के भीतर भी और कल राज्यसभा के भीतर भी। और कल इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी जारी किया और कहा है कि कैसे सरकार के तरफ से जो विद्यार्थियों की मांग थी उसे तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया गया और एक कड़ा कानून इस पूरे मामले में लाया गया। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होगी, कौन अभिजीत दिपके से लेकर अभिजीत दिपके तक का यह सफर किस तरीके से रहा और सबसे बड़ी बात अब आगे ये स्टूडेंट एजिटेशन क्या करेगा, कहां यह एजिटेशन जाएगा, सरकार का जो बिल है उस पर उनकी क्या भूमिका रहेगी, ये तमाम मुद्दे हैं, राजनीति भी है, सब पर बात करेंगे। अभिजीत दिपके बहुत बहुत शुक्रिया आप आज तक से बात कर रहे हैं सर। पहला सवाल तो यही रहेगा क्योंकि मैंने जैसे कहा लोकसभा और राज्यसभा में पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पारित हो चुका है, ये बिल को लेकर आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि इस बिल की जरूरत थी या आपको जो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कड़ा कानून बनाया हुआ है, प्रावधान कड़े किए हुए हैं, 2024 के प्रावधान थे वो और भी कड़े किए हुए हैं और ऐसे में पेपर लीक को रोकने में वो कामयाब हो पाएंगे, आपको लगता है कि ये बिल काफी है?
1: सर मैंने जितना समझा इस बिल को उससे मुझे ये समझ में आया ये बिल पेपर लीक रोकने के लिए नहीं है, पेपर लीक होने के बाद क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि सारी बातें वही चल रही है, जेल को 4 साल से बढ़ाकर 10 साल का कर दिया, पेनाल्टी बढ़ा दी है, तो कहीं ना कहीं सरकार अज्यूम करके चल रही है पेपर लीक तो होने वाला है, उसके बाद हम क्या करेंगे। हमारी जो डिमांड थी, जो आंदोलन था, वो इसलिए था कि पेपर लीक ना हो और ये सारा बिल का फोकस जो है वो इस पर है कि पेपर लीक होने के बाद सरकार क्या क्या कदम उठाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे बस बिल को लेकर नहीं, जो लोग सरकार में बैठे उनके इंटेंशन को लेकर भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि जैसे कल प्रधानमंत्री ने बोला वैसे उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में भी बोला था और कई सारे लोग उस पर भी खुश हो गए थे कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी, आप क्यों आप लोग प्रोटेस्ट,
0: 3 महीने के भीतर चार्जशीट फाइल होकर उस पर कार्रवाई होगी
1: और लोग हमें तब भी बोल रहे थे आप क्यों प्रोटेस्ट करो, आप तो कॉल ऑफ कर दो। लेकिन हमने देखा पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ, पहली हियरिंग पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का जो काउंसिल था वो प्रेजेंट नहीं था। तो आप लॉज कितने भी बना लो, कुछ भी कर लो, जब आपका इंटेंशन ही उतना डिटरमाइंड नहीं हो आप इंटेंशनली, सो आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन बी कॉन्क्रीट हियर। तो सरकार को जो है फोकस करना चाहिए कि पेपर लीक ना हो, वो फोकस सरकार का अभी नहीं है। पेपर लीक हो जाएगा तो फिर वही चीजें होगी, फिर से स्टूडेंट्स का फ्यूचर अफेक्ट होगा, फिर से जो है आपको री एग्जामिनेशन करवानी पड़ेगी और उस बीच में फिर से और कितनी जाने जाएगी किसी को पता नहीं है।
0: प्रधानमंत्री ने और एक वीडियो जारी किया था, ये कल का वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले जो वीडियो था उसमें उन्होंने कहा था कि कई निर्णयों की श्रृंखला है, उस श्रृंखला में पहला निर्णय फास्ट ट्रैक कोर्ट का और उसके बाद ये बिल लाया जा रहा है, इसका मतलब ये कि और भी निर्णय उसमें हो सकते हैं। जो 5 मांगे सीजेपी की तरफ से मंत्रियों के सामने रखी गई थी उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की भी मांग थी और उसके साथ कुछ
1: रिफॉर्म्स, व्हाइट पेपर आना चाहिए,
0: व्हाइट पेपर आना चाहिए आपने कहा था, उसके साथ साथ आपने ये भी रखा था उसमें कि एनटीए के भीतर सिस्टमैटिक बदलाव किस तरीके से होने चाहिए, उस पर चर्चा कब शुरू होगी आपको लगता है, क्योंकि आपको आपके बोलने से तो लग रहा है कि आप इस बिल से कुछ ज्यादा खुश नहीं
1: है। तो वही हम सरकार से बात ही कर रहे हैं अभी भी, हम मतलब वी आर ट्राइंग टू आस्क देम कि एक तो कंपनसेशन पर भी अभी तक उन लोगों ने कुछ बोला नहीं है, 1 करोड़ का कंपनसेशन हमने विक्टिम्स की फैमिली को देने बोला था, सरकार ने अश्योर तो किया है कि दे देंगे लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना डिले क्यों किया जा रहा है, जब रातों रात सरकार बदलनी होती है, रातों रात एमपी एमएलए खरीदने होते हैं, तब आपके सूटकेसेस पहुंच जाते 50-50 करोड़ के, लेकिन जहां पर विक्टिम्स की फैमिली को 1 करोड़ का कंपनसेशन देना है तो सरकार ने अभी तक अनाउंस कुछ नहीं किया।
0: उसके तो कुछ नॉर्म्स होते हैं, सरकार ने उस दिन भी कहा था कि उस नॉर्म्स के तहत हम उनको कंपनसेशन,
1: सारे नॉर्म सर जनता के लिए है, सरकार रातों रात बदलनी है तो कौन से नॉर्म्स होते हैं, फिर रातों रात सरकार बदलनी है, गिरानी है, एमपीज खरीदने, एमएलएस खरीदने, तो तब नॉर्म्स नहीं देखे जाते, तब जो 10th schedule है कॉन्स्टिट्यूशन का वो देखा नहीं जाता है, सारे नॉर्म्स, सारे रूल्स, सारे जो गाइडलाइंस, सारी रूल बुक सिर्फ लोगों के लिए, जनता के लिए, इन लोगों के लिए सारी खुली छूट है।
0: लेकिन आपकी एक मांग उसमें ये थी कि जिस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती, नॉन निगोशिएबल, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और वो तो हो चुका है, ठीक है। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरीके से बदल ही दिया है एक तरीके से, क्योंकि सेक्रेटरी वहां के बदल दिए, 2 नए सेक्रेटरी ला दिए गए हैं, एनटीए के भीतर जो अधिकारी थे, सरकार का आंकड़ा 37 का है, हालांकि विपक्ष कहता है कि कुछ 24 ही उसमें ये थी, जो भी है उसमें, लेकिन वो भी पूरी तरीके से बदल दिया, उनको भी हटा दिया वहां पर। तो इसका मतलब ये कि आपको लगता है कि सरकार आपके दबाव में कदम तो रखने की कोशिश कर रही है, आप सरकार को वो भी उम्मीद नहीं रखते आप सरकार?
1: नहीं, कदम रखा है, आई एम वेरी ग्लैड। और जो प्रधानमंत्री पिछले 10-12 साल से बस हिंदू मुसलमान का डायलॉग कर रहे थे, हिंदू मुसलमान के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे थे, आप देख रहे हो पिछले 4-5 दिनों में वो इंस्टाग्राम पर एजुकेशन के ऊपर रील्स डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस देश के स्टूडेंट्स जो है, यूथ जो है, जेंजी जो है, उन्होंने फोर्स किया है प्राइम मिनिस्टर को, जो प्राइम मिनिस्टर इतनी ज्यादा हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स से प्यार करते थे, उनको फोर्स किया है कि शिक्षा पर बात करो, एग्जामिनेशन पर बात करो। सो दिस इज अ वेरी बिग एंड मेजर विक्ट्री फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने स्टेप्स क्या लिए, जो नया एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, ही वॉज सीन सपोर्टिंग द रेपिस्ट ऑफ बिल्किस बानो, उनका स्वागत करने में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वेर ही वॉज वेलकमिंग द रेपिस्ट ऑफ बिल्किस बानो।
0: ये मुद्दा जब प्रियंका गांधी ने उठाया था तो बड़ा शोर हुआ,
1: होना भी चाहिए
0: लोकसभा के भीतर शोर हुआ, उन्होंने कहा कि ये गलत बयान है, वो बयान हटा।
1: मतलब आप सोचिए ना, जो बच्चे स्कूल में है, कॉलेजेस में, उनके क्या मैसेज जा रहा है? एक रेपिस्ट के सपोर्टर को आप एजुकेशन मिनिस्टर बना रहे हो, वॉट काइंड ऑफ मैसेज आर यू सेंडिंग टू द कंट्री? शर्म आ रही है, मतलब ये तो धर्मेंद्र प्रधान से
0: उनका ये कहना था कि हम तो वो कह रहे थे कि ये कानूनन पॉसिबल है, यानी उनको जो छोड़ना वो कानूनन पॉसिबल है।
1: कानूनन पॉसिबल है तो आप वेलकम करोगे उनका हारमाला डालकर, बलात्कारियों का हारमाला डालकर स्वागत करोगे, फिर कानूनन पॉसिबल है।
0: तो जो नया मंत्री है उनसे भी आप संतुष्ट?
1: नॉट एट ऑल सर, मतलब कोई रेपिस्ट का वेलकम करता है, हाउ कैन आई बी हैप्पी विद दैट? ये तो मतलब बहुत ही शेमफुल बात है, ना सिर्फ हमारे लिए, इस कंट्री के लिए। सोचिए इंडिया की इमेज क्या आ जाएगी वर्ल्ड में, जब उनको पता चलेगा इंडिया का जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो एक रेपिस्ट का वेलकम कर रहा है हारमाला डालकर। दिस इज वेरी शेमफुल। और जो सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, नया सेक्रेटरी जो बना है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो खुद करप्शन में इन्वॉल्व रह चुके पहले। एनिमल वेलफेयर उनका कुछ था, उसमें कितने सैकड़ों हजारों करोड़ का उन्होंने स्कैम करा है। तो ये तो एक तरीके से एक खराब इंसान को हटाकर दूसरे खराब इंसानों को ये रिवॉर्ड कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे।
0: जो पुल उनके पास है उसमें से ही
1: एग्जैक्टली, मैं कल
0: जो ब्यूरोक्रेसी उनके पास है, जो चुने हुए लोग हैं उनमें से ही,
1: मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी में और भी अच्छे लोग होंगे।
0: कौन आपके चॉइस कौन थी मंत्री बनाने के लिए?
1: मंत्री बना हम कैसे कोई चॉइस देते, हमारी सरकार?
0: आपके दिमाग में कोई?
1: नहीं, मेरे दिमाग में तो कोई नहीं था। मेरे दिमाग में तो बस यही था कि धर्मेंद्र प्रधान डजंट डिजर्व टू बी द एजुकेशन मिनिस्टर। बट मुझे ये नहीं पता था कहीं से भी आइडिया कि एक ये लोग एक रेपिस्ट के सपोर्टर को एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे। और भी लोग थे यार दूसरों को बना देते, बट सही बात है, इनके पास जो पूल है वो सारा गुंडों का ही पूल है, वो सारा ऐसे रेपिस्ट लोगों का वेलकम करने वाला ही पूल है। तो लोग ही जब इनके पास ऐसे, तो ये भी क्या ही करेंगे।
0: ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, जो भी बीजेपी करेगी आपको पसंद नहीं आएगा, जो भी ये सरकार करेगी पसंद नहीं आएगा, और सरकार भी इसी बात को आगे।
1: आप मुझे बताइए, एज अ जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, अगर आपसे कोई इंटरनेशनली, आप इंटरनेशनली जाओगे, आपसे कोई पूछेगा इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर ने रेपिस्ट का वेलकम किया है, आपको पसंद आएगा वो? इजंट इट शेमफुल सर? मतलब कोई ऐसा तो ढूंढते ना जिसने ये हरकत तो नहीं करी होगी, इससे कैसे कोई खुश हो सकता है सर? मतलब हम देखते हर एग्जाम्स में, नीट का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें हमेशा जो फोरफ्रंट पर रहती है, सबसे ज्यादा लीड करती या रैंकिंग रहती है, वो लड़कियों की रहती है। व्हाट दोज गर्ल्स विल बी फीलिंग, एक एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो रेपिस्ट का सपोर्टर है, हाउ कैन आई बी हैप्पी विद दिस? इट्स नॉट अबाउट बीजेपी या सरकार, अच्छे कदम लेंगे तो सपोर्ट कर देंगे, लेकिन आप एक रेपिस्ट को, रेपिस्ट के सपोर्टर को एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे, सो मैं तो खुश नहीं हूं सर। मेरी बहन है, सो आई कैन सपोर्ट दिस सर।
0: क्या आपकी मांग पूरी हुई है इस पूरे मामले को लेकर, और जो गृहमंत्री के इस्तीफे को लेकर राहुल गांधी जो कह रहे हैं?
1: मुझे लगता है कि ये सरकार को इस मिसअंडरस्टैंडिंग या डिल्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि एक मंत्री के इस्तीफे के बाद गुस्सा ठंडा हो चुका है। इस डिल्यूजन में ना रहे सरकार, लोगों में अभी भी बहुत गुस्सा है, और वो गुस्सा सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ नहीं था, पूरी सरकार के खिलाफ था। तो अगर ये लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे या अभी भी नहीं स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे या हैरेस करते रहेंगे, और जो ब्रुटैलिटी करी उसके बाद ये गुस्सा और बढ़ा है, तो ये गुस्सा शांत नहीं हुआ। तो अगर ये लोग जो स्टूडेंट्स है, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, उनके खिलाफ केसेस वापस नहीं लेते, तो यस वी विल हिट द स्ट्रीट्स अगेन। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा सर।
0: कोई टाइमलाइन है आपके पास?
1: हम बता देंगे उस पर, अभी हम उम्मीद करते हैं ये लोग मान ले बातें, नहीं मानते तो
0: नहीं, उम्मीद क्या है? सरकार की तरफ से कोई बयान आना चाहिए इस पर?
1: ऑफकोर्स रिटर्न में आना चाहिए कि जितने भी पीसफुल प्रोटेस्टर्स है, जितने भी स्टूडेंट्स है, उनके सभी के ऊपर के जो भी केसेस लगेंगे वो हम वापस लेंगे, एंड दे शुड एंश्योर कि इसके बाद किसी भी स्टूडेंट को हैरेस नहीं किया जाएगा पुलिस के द्वारा। पुलिस ने ऑलरेडी बहुत खून बहा दिया है 20 जुलाई को, शायद से उससे उनका मन नहीं भरा है। और अमित शाह का तो मुझे समझ नहीं आता, लाइक व्हाट इज ही आफ्टर, डज ही वांट टू किल द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। मतलब बिहार में AK-47 फायर कर दी गई है, दिल्ली में पेलेट गन्स यूज कर लिए गए, क्या चल रहा है इस देश में?
0: सरकार की तरफ से ये कहा गया है, दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ 2638 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है सीसीटीवी में, जो हिस्ट्री शीटर्स हैं जिनके खिलाफ।
1: तो ये बाहर क्यों थे
0: हिस्ट्री शीटर्स? जो बेल पर बाहर होंगे
1: या किसकी गलती
0: है? केसेस चल रहे होंगे,
1: किसकी गलती है? हिस्ट्री शीटर्स अगर क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे थे, इसमें गलती किसकी है? पुलिस की है। पुलिस किसके अंडर काम करती है? अमित शाह के अंडर।
0: उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीजेपी की नहीं है, प्रोटेस्टर्स की नहीं है।
1: जो स्टूडेंट्स
0: आपके प्रोटेस्ट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा आपको लगा?
1: मुझे लगता है ये डेलिबरेटली प्लान किए गए हुए लोग थे, जो मैं पहले से कह रहा था, ये मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं इस प्रोटेस्ट की स्टार्टिंग से कह रहा था, ये डेलिबरेटली प्लान किए गए हुए लोग हैं। और मैं बार बार बोल रहा था कि बीजेपी वाले कुछ गुंडे भेजेंगे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए, और वही हुआ। 19 जुलाई की रात को पत्थरों से भरे ट्रक रखे जाते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर मंतर के आसपास। अब जंतर मंतर इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया, सेंट्रल दिल्ली में आता है जहां पर पत्थर दिखाई भी नहीं देते, वैसे जंतर मंतर के पास पत्थरों से भरे ट्रक कैसे आ जाते रातों रात? और उस पत्थरों से भरे ट्रक के पीछे एक टूटी हुई वैन खड़ी रहती है जो कम्प्लीटली डैमेज है, पुलिस ने खड़ी रखी। जब मैंने ट्वीट डाला उस पत्थरों से भरे ट्रक और उस वैन का, तो जो वहां पर डीसीपी थे उन्होंने हमारी टीम को बुलाया और कह रहा अभिजीत ऐसे ट्वीट क्यों डाल रहा है यार, ये तो एनडीएमसी का ट्रक है, एनडीएमसी का ट्रक है जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वो उसका डेब्रिस है सारा। और जो कल रिपोर्ट आई है उसमें ये पता चला है कि वो ट्रक हरियाणा का था, वो एक रोड एक्सीडेंट में पकड़ा गया था, रोड एक्सीडेंट में पकड़ा गया था, और फिर पुलिस ने कहा था कि इसको खाली करवा दिया गया था। तो खाली करवा दिया था तो फिर पत्थरों से भरकर फिर से जंतर मंतर के पास कैसे?
0: फिर जो विजुअल्स दिखाए गए और जिसपे दिखाया गया कि पुलिस को मारा गया, क्योंकि एक पिटीशन आपके तरफ से हुई सुप्रीम कोर्ट के भीतर, एक पिटीशन उन पुलिस वालों के घर वालों की तरफ से एक पिटीशन की गई सुप्रीम कोर्ट पर, कहा गया कि हमें भी ब्रुटैलिटी से मारा गया प्रोटेस्ट के वक्त पे, उनके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उस बात को लेकर
1: मैं कह रहा हूँ ये ऑर्केस्ट्रेटेड था बीजेपी द्वारा, और मैं पुलिस वालों को भी ये कह रहा था कि मुझे आपके लिए बुरा लगता है, आप पत्थरों से भरे ट्रक वहां लगा देते हो, उन्हीं पत्थरों से आकर बीजेपी के गुंडे।
0: तो जो पुलिस वालों को पीटा गया उसमें सीजेपी या उनके समर्थकों का कोई लेना देना?
1: कोई लेना देना नहीं सर।
0: Somebody planted it,
1: planted it, not somebody, the BJP planted it। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, the BJP planted it। हम एक महीने से सर प्रोटेस्ट करते, एक महीने में तो कुछ नहीं हुआ। अगर हमारे प्रोटेस्टर वायलेंट होते या हमारे प्रोटेस्टर को ऐसा कुछ करना होता, एक महीने में क्यों नहीं हुआ, उसी दिन क्यों हुआ? और हमने देखा है सर, लाठिया जो लोग गुंडे थे जो पुलिस वाले भी नहीं थे उनके हाथ में बैटन्स दी गई थी, लाठिया दी गई थी, उसकी वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो इन लोगों के पास लाठिया किसने दी? पुलिस की लाठिया थी वो, जो ट्रांसपेरेंट लाठिया होती है ना उनकी, वो गुंडों के हाथ में थी और वो स्टूडेंट्स को पीट रहे थे, पुलिस के साथ मिलकर पीट रहे थे, तो उनके पास लाठिया कैसे चली गई? हु गिव देम द अथॉरिटी टू बीट स्टूडेंट्स?
0: क्या 20 तारीख को इतनी भीड़ होगी ऐसा आपको लगा था? क्योंकि इतने दिन से आप प्रोटेस्ट पर बैठे थे, इतनी भीड़ तो कभी देखी नहीं थी।
1: इतनी भीड़ कभी नहीं थी, बट ये भी है कि लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा था। और उसमें ये भी चीज हुई कि 20 दिन से सोनम सर भी अनशन पर थे, उसके बाद भी सरकार डायलॉग करने को तैयार नहीं थी, सुनने को तैयार नहीं थी, तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा था लोगों का जो कंसोलिडेट होकर दिखा। और सरकार को मैं वही कह रहा हूँ, सरकार को अगर लग रहा है कि ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा या ठंडा हो चुका है,
0: सरकार की तरफ से आपको पहला कांटेक्ट कब किया गया बातचीत के लिए?
1: सरकार को जो पहला कांटेक्ट था वो 20 के पहले ही था। हाँ। जब मुझे लगता है शायद उनको अंदेशा आया होगा, उनको रिपोर्ट्स मिली होगी कि बहुत ज्यादा भीड़ आ रही
0: है, सपोर्ट हो रहा है।
1: सो दैट इज व्हेन दे इनवाइटेड अस फॉर
0: डायरेक्टली आपको था या सोनम वांगचुक के लिए था?
1: नहीं डायरेक्टली सौरभ फुकरा, वो भी पुलिस के थ्रू ही आया था, पुलिस वाले थे कि आप आइए बात करना चाहते हैं कुछ लोग, तो पहले उन्होंने बोला कि डीएम से बात कर लीजिए। हमने बोला डीएम से क्या बात करें, डीएम थोड़ी ना रेजिग्नेशन लेगा एजुकेशन मिनिस्टर का। तो हमने बोला बात करनी तो टॉप लीडरशिप से करेंगे वरना नहीं करेंगे।
0: लेकिन सोनम वांगचुक, क्योंकि ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ देते हैं जिस मांग को लेकर वो दरअसल अनशन के लिए बैठे थे, और उसके बाद अगले दिन खबर आती है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे।
1: yes.
0: और आप कहते हैं कि हम तो हमारा आंदोलन तो शुरू रहेगा, शायद सरकार को ऐसा लगा होगा सोनम वांगचुक अनशन तोड़ रहे हैं। क्या आपसे बात हुई थी सोनम वांगचुक की कि हम अनशन तोड़ रहे हैं? आपको बता
1: के उनकी वाइफ का कि ऐसा ऐसा हुआ है उसके बाद जब अनशन तोड़ा गया,
0: क्योंकि उनकी अलग बातचीत चल रही थी ऐसा लग रहा है सरकार
1: उनको एक तरीके से किडनैप कर दिया था, उनको पूरी तरह आइसोलेट कर दिया गया था। मैं उनसे रीच आउट करने को ट्राई कर रहा था, मैं मिलने को भी ट्राई करना था कर रहा था, बट दे डिडंट अलाउ अस टू मीट। And how weird is this? JP Nadda मिल सकते हैं, अपोजिशन के एमपी जाते हैं उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है, मैं मिलने को ट्राई करता हूँ मुझे मिलने नहीं दिया जाता है, तो एक तरीके से किडनैप कर रखा था जहां पर बस किडनैपर ही मिल सकता है।
0: बट उनका खत देख के मुझे भी आश्चर्य लगा क्योंकि उसमें तो वो लिख रहे थे कि मैं तो अनशन तोड़ रहा हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, और उसके बाद वो लिखते हैं कि अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो सरकार के लिए, मतलब उन्होंने अपनी मांग छोड़ दी एक तरीके से जो लग रहा था।
1: इट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड, मतलब मैं सर से खुद रिक्वेस्ट कर रहा था जब उनके अनशन को, मुझे लगता है 10-12 दिन हुए थे एंड आई वॉज रियली कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ। मैंने सर को तभी बोला था सर आप अनशन तोड़ दीजिए, प्रोटेस्ट हम आगे जारी रखेंगे इस्तीफे तक, ये हमारी जिम्मेदारी है।
0: But he seems to be out of the moment now completely. वो बिल्कुल आपके
1: वो भी रेस्ट कर रहे सर, he is also resting, मैं भी बीमार,
0: but he's still part of
1: yeah, yeah. और मैं भी बीमार था तो मैं भी रेस्ट कर रहा था, वो भी रेस्ट कर रहे
0: बीमार है, लेकिन फिर भी आप तो बात कर रहे हैं yes. आप वही मुद्दे उठा रहे, लेकिन सोनम पाक चुप तो नहीं दिख रहे।
1: वो अभी लद्दाख चले गए ना, एंड सोनम सर का एक है, वेरी यू नो ही इज अ ट्रू गांधीयन,
0: ओके
1: ही इज अ ट्रू गांधीयन, तो उनका वो है कि आई विल कम फॉर द कॉज, उसके बाद में मेरे लद्दाख में चला जाऊंगा, आई विल रेस्ट, आई विल रिकवर, मतलब ही इज टू मच इन टू मेडिटेशन पीस एंड ऑल दैट, एंड मैं सीख रहा हूँ उनसे वो चीजें, क्योंकि वो मुझे बोलते हैं अभिजीत तुम ना थोड़ा शांत रहो, करो सर मैं ट्राई तो करता हूँ बट अभी आपके जैसा बनने में टाइम लगेगा मुझे।
0: पॉलिटिक्स पे बात करना जरूरी है क्योंकि आंदोलन होता है तो पॉलिटिक्स होती है, और बिकॉज आपका भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आशुतोष रांका जो आपके
1: जुड़ा हुआ था
0: बेसिकली, तो चर्चा इस बात को लेकर भी थी कि कहीं हर प्रोटेस्ट में ये देखा गया, जैसे अन्ना आंदोलन था तब भी ये कहा जा रहा था कि आरएसएस कोई उनको मदद करने की कोशिश कर, आरएसएस से जुड़े हुए लोग उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप ये लगता था। आपके आंदोलन के समय भी, मतलब आप जो सीजेपी का जो आंदोलन चल रहा था उसमें आम आदमी पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, इस तरीके से बातें हो रही थी, तो क्या सपोर्ट था उनका, नहीं था, वो भीड़ में आम आदमी पार्टी के भी लोग थे, उन्होंने भी आपका एक आंदोलन खड़ा करने में मदद की, नहीं की?
1: सर मुझे लगता है इसका आंसर आपको सबसे बेस्ट अनुजा देगी, जो आपकी खुद की रिपोर्टर है, वो वहां पर एक हफ्ता थी।
0: बट वो कैसे पहचाने कि आम आदमी पार्टी का है कि नहीं?
1: उन्होंने क्राउड देखी है ना, उन्होंने क्राउड देखी है, उन्होंने सवाल पूछे होंगे कहां से आए कहां से नहीं, इतना तो रिपोर्टर्स करते ही है। तो उस आंदोलन में मैं हर रोज एक चीज पूछता था, कितने लोग पहली बार प्रोटेस्ट में आए,
0: ओके
1: 70-80% लोग हाथ उठाते थे, इसका मतलब 70-80% जो क्राउड है वो कम्प्लीटली अपॉलिटिकल थी, जिसका दे वर नॉट इवन इन्वॉल्व, पॉलिटिकल पार्टी तो छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी वो इन्वॉल्व नहीं होते थे। सो क्राउड जो था वो कम्प्लीटली अपॉलिटिकल था, एंड दोज वर स्टूडेंट्स जो बिहार झारखंड मध्य प्रदेश तमिलनाडु केरला यहां से आ रहे थे। और मुझे लगता है अगर आम आदमी पार्टी जितना मोबिलाइजेशन 20 जुलाई को हो चुका था उतना कर पाती सर, तो पूरे देश में सरकार नहीं होती। तो ये जो एलिगेशन से
0: आप तो सरकार बनाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे थे, किसी बात को लेकर गुस्सा था, उस बात को लेकर
1: नॉर्मल पब्लिक जुड़ी हुई थी। और रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की, तो मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए जिसने हमें सपोर्ट नहीं किया बीजेपी को छोड़कर, एक पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए।
0: बीजेपी तो सरकार में है ना, वो तो आपके मांगों पर काम कर रही है। एकनाथ
1: शिंदे के जो एमएलए थे वो भी हमसे मिलने आए थे,
0: वो तो आंदोलन के बाद मिलने
1: पर आए थे, इसका मतलब सपोर्ट करते हैं मुद्दों का, मुद्दों के ऊपर सपोर्ट है।
0: आपने एकनाथ शिंदे के इंटरव्यूज देखे?
1: मैंने नहीं देखे, क्योंकि वहां जंतर मंतर पर तो जैमर्स लगे हुए थे, तो मैं कहां से देखूंगा। बैक टू द क्वेश्चन,
0: मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा। इस बीच एक घटना ऐसी हुई कि राहुल गांधी ने अचानक आंदोलन शुरू किया प्रधानमंत्री आवास के सामने, कांग्रेस पार्टी के सारे सांसद वहां पर जाकर पहुंच गए और वहां पर एक आंदोलन शुरू हुआ। पहली प्रतिक्रिया उस बात को लेकर बीजेपी से भी पहले प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी से कि ये आंदोलन में फूट डालने की कोशिश है, ठीक है, राजनीति वहां से शुरू हो जाती है। सवाल इसीलिए उठता है कि ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी ने पूरा उसका जो आंदोलन का जिम्मा है वो उनके पास है और राहुल गांधी उस पर फूट डालने की, यह आरोप उनके तरफ से लगा।
1: देखो ये पॉलिटिकल पार्टीज का अपना पॉलिटिक्स चलता रहेगा, उसमें मैं पढ़ूंगा नहीं, आम आदमी पार्टी हो कांग्रेस हो, जिसका जो पॉलिटिक्स करना है वो करिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आंदोलन की जहां तक बात है, ये आंदोलन पूरा इंडिपेंडेंट रहा, इट वॉज टोटली रन बाय द पीपल। वहां पर जो खाना बट रहा था, जो मैनेजमेंट थी, उसके लिए भी कई सारे लोगों ने डोनेट किया है। मतलब पहले तो लोग आकर, कुछ प्रोफेसर आकर कहते थे कि 4 दिनों का खाना हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स आते थे, मैं नाम नहीं लूंगा वरना उनके यहाँ पर भी पुलिस पहुंच जाएगी। उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने आकर कहा कि रोज रात का डिनर हमारी डॉक्टर्स की टीम की तरफ से रहेगा। सो ये इट वॉज कम्प्लीटली रन बाय द पीपल। और मैं आंदोलन के ऊपर एक चीज कहना चाहता हूँ सर, हमारे देश में जब आंदोलन होता है ना, अन्ना आंदोलन के वक्त में स्कूल में था तो आई डोंट नो मच अबाउट इट, थोड़ा बहुत टीवी पर देखा क्योंकि टीवी पर 24/7 दिखाया जाता था। जब जब इस देश में आंदोलन होता है उसको बदनाम किया जाता है। इट वॉज नॉट जस्ट अन्ना आंदोलन, किसान आंदोलन जब हुआ तब उसे क्या पेंट किया गया, ये तो खालिस्तानी लोग है, ये एंटी इंडिया लोग है। उसके बाद डॉक्टर्स का एक कुछ हुआ था, डॉक्टर्स को भी पाकिस्तान से जोड़ा गया, सीएनआरसी को भी आप लोगों ने क्या बोल दिया, बांग्लादेशी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बाद में अभी जो रिसेंटली नोएडा का जो हुआ था वर्कर्स का प्रोटेस्ट, उसको भी पाकिस्तान से जोड़ दिया। तो इस देश में जब जब आंदोलन होते हैं हमेशा किसी ना किसी से जोड़कर उसको बदनाम किया जाता है। हम लोग ये भूल जाते हैं हमारा जो देश बना है, जो देश खड़ा हुआ है वो आंदोलन से खड़ा हुआ है। जब इस देश में इमरजेंसी लगाई थी तब वो डेमोक्रेसी वापस रिस्टोर हुई वो आंदोलन से हुई है। तो देश में जब भी आंदोलन होगा ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, तभी तो इट बिकम्स अ पब्लिक मूवमेंट।
0: वो ठीक है, लेकिन आरोप ये भी लगता है कि आपके कंधे पर बंदूक रखकर अब वो सरकार पर निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं कर पाए विपक्ष के लोग, क्योंकि पेपर लीक तो आज नहीं हो रहा, पेपर लीक तो सालों से हो रहा है, 2024 पे भी हुआ, 25 पे भी हुआ, 26 पे भी पेपर लीक हुआ, उसके बाद आप वहां पर आंदोलन के लिए उतर आए, लेकिन विपक्षी पार्टियां सड़क पर नहीं उतरी। अभिजीत दिपके और उनके सहयोगी सड़क पर उतरे, उनको जो सपोर्ट मिल रहा है वो देखते हुए विपक्षी पार्टियों को लगा भीड़ है हमको जाना चाहिए, और वो आपके कंधे पर बंदूक रख के अब सरकार,
1: मुझे लगता है इंडिया का
0: आपका कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष।
1: बिल्कुल सर, मतलब
0: पॉलिटिक्स के लिए
1: हम बच्चे सर, इतने भी बच्चे नहीं कि हमें कोई एक्सप्लोइट कर ले। मतलब पढ़ लिख कर आया, मैं यूएसए पढ़कर आया हूँ, आशुतोष लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर आया, सौरभ बहुत ही बड़ा लीगल जर्नलिस्ट रह चुका है, वैष्णवी जो है वो सरकार के साथ काम कर चुकी है, मिनिस्टर्स के साथ काम कर चुकी है वो बड़े बड़े, तो रत्ना जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस
0: कर,
1: तो बच्चे नहीं है सर हम, हाँ उम्र में बच्चे हैं बट दुनियादारी
0: तो आपको समझ में आता है कोई अगर आपका पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहा
1: है? आपको समझ में आता है सर हमें,
0: आपको लगा ऐसा कि पॉलिटिकली इस्तेमाल?
1: नहीं नहीं, हमने तो मतलब इसलिए हमने पहले से बोल दिया था कि अगर कोई भी आना चाहता है हमें सपोर्ट, दे आर फ्री एंड दे विल बी वेलकम हियर, बट एक कंडीशन है हमारी, आप अपने पार्टी का फ्लैग नहीं लेकर आएंगे, आप अपनी पार्टी की बात नहीं करेंगे, आपको यहाँ बात करनी है तो स्टूडेंट्स
0: मुद्दे
1: पर बात करनी है, एंड दे रिस्पेक्टेड इट, एंड दैट्स व्हाई वी वर वेलकमिंग देम।
0: व्हाई नाउ, व्हाई एजिटेशन नाउ? पेपर लीक इस देश की पुरानी समस्या है, राजस्थान के मतलब अगर आप आंकड़े निकाले तो समझ में आता है उत्तर प्रदेश और राजस्थान ये टॉप पर है दोनों राज्य। दूसरा एक आरोप यह लग रहा है कि व्हाई ओनली एनटीए, व्हाई उसी नीट पेपर लीक को लेकर क्यों? आज झारखंड के भीतर पेपर लीक हुआ है जेपीएससी का, पंजाब के भीतर पेपर लीक है, महाराष्ट्र में पेपर लीक है, कर्नाटक में पेपर लीक है, हर जगह जाके आप वही मांग रखेंगे कि हमारे मंत्रियों का इस्तीफा, वहां के मंत्रियों का इस्तीफा।
1: सर मैं वाई नाउ पर बोल देता हूँ सर। हाँ। तो पहली चीज, मैं तो यूएस में था,
0: ठीक,
1: मेरी अपनी पढ़ाई चल रही थी, ठीक है, लेकिन जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैंने किया ना, ऐसा तो नहीं चाहता तो मैं यूएस में रहता था, रह सकता था, 22 मिलियन की फॉलोइंग मिल चुकी थी मुझे, 22 मिलियन की फॉलोइंग में मैं इन्फ्लुएंसर बन जाता, मैं पैसे कमा लेता इंस्टाग्राम से, आई हैड दैट ऑप्शन बट आई चूज टू कम बैक एंड टू फाइट इट आउट ऑन द स्ट्रीट्स, तो मैंने वो करा। और दूसरा चीज मैं आशुतोष का बोल देता हूँ, आशुतोष पिछले 1.5 साल से राजस्थान में पेपर लीक पर ही काम कर रहा है, वो अलग बात है, आप लोग अभी फुटेज दे रहे हो,
0: वो तो ठीक है, कई बार कई चीजें सतह पर नहीं आती, वो तो ठीक है, और हर जगह।
1: रही बात महाराष्ट्र की, जब मैं पुणे में था एमपीएससी के मुद्दे पर जब भी आंदोलन होता था, आई यूज टू गो देयर एज अ स्टूडेंट, कल जो मुझे एमपीएससी के स्टूडेंट्स मिलने आए थे पुणे से, जो मेरे से उम्र में काफी बड़े, उनका नाम एक महेश है, तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे तुझे याद है तू एमपीएससी के प्रोटेस्ट में आया था, तो मैंने बोला हाँ दादा मैं आया था मुझे याद है। तो एज एन इंडिविजुअल जब जब होता था हम पार्टिसिपेट करते थे जहां जहां जरूरी है सर, बट बिकॉज सीजीपी इतना बड़ा बन गया तो हमें एक प्लेटफॉर्म मिला एंड वी डिड समथिंग विद इट। मतलब 12 साल में जो सरकार कहती थी सरकार में इस्तीफे नहीं होते और बहुत ही एरोगेंटली कहती थी, उनसे इस्तीफा दिलवा दिया सर, तो व्हाई नाउ की जगह इट्स गुड दैट हैपेंड।
0: झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। मुझे अभी भी याद है आपका वो स्टेज पर होके जो आप खुश हो रहे थे या खुशी जता रहे थे,
1: एड्रेनलिन रश आ गया था टाइफाइड में भी, मतलब थोड़ा आई फेल्ट वेरी एनर्जेटिक क्योंकि इट वाज रिमार्केबल सर। मतलब मैं क्या बोलूं, हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैं फोन पर बोल रहा था यार कंफर्म कर लो एक बार सच्ची न्यूज है या नहीं है, क्योंकि हमें तो कहीं से भी एक्सपेक्टेड नहीं था, हम तो सोच रहा था लंबा खेल।
0: इसीलिए तो सवाल उठता है ना फिर बाकी लोगों, क्या झारखंड में जाके इस्तीफा मांगा जाएगा, क्या पंजाब में इस्तीफा?
1: जहां जहां एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की जरूरत होगी, जहां जहां कहीं पर भी एग्जामिनेशन में कुछ गलत होता है, एजुकेशन सिस्टम में गलत होता है, वी विल गो देयर सर, बिकॉज द पीपल हैव होप्स फ्रॉम अस नाउ, क्योंकि पहला ही प्रोटेस्ट में हमने डिलीवर कर दिया तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई है, सो इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी विल ट्राई टू फुलफिल इट एज मच एज पॉसिबल, बट हम लोग भी नए सर, मतलब ये पहला प्रोटेस्ट था जो हमने ऑर्गेनाइज
0: किया। सीख मिली इस प्रोटेस्ट से, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में ऐसे भी लोग दिखाई दिए जो अपना व्यक्तिगत गुस्सा निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं, गाली गलौज की गई, उस बात को लेकर भी काफी चर्चा है कि उसको लेकर अभी जीरो एफआईआर भी किया गया, रुचिका सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, जीरो एफआईआर जो हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री को अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, पोस्टर्स वहां पर लगे हुए थे उस बात को लेकर भी, तो क्या आपको ये सीख मिली कि ये सारी चीजें अगर दूर रखेंगे तो बेटर रहेगा, या आपको लगता है इट्स पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट और ये होता रहेगा इसी
1: तरह? सर, गाली गलौज का तो
0: दिस इज हाउ द न्यू जनरेशन एक्सप्रेसेस देमसेल्फ।
1: गाली गलौज का तो मैं कम्प्लीटली समर्थन नहीं करता हूँ, लाइक गाली गलौज तो नहीं होनी चाहिए, बट सटायर तो अलाउड है सर। ये लोग क्या कर रहे हैं ना, जो फनी पोस्टर्स बन रहे थे पीएम के ऊपर, वो सब उसके ऊपर भी हैरेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। क्यों हैरेस करना चाहिए? पुलिस आकर सर फोड़ रही है, पुलिस आकर लाठियां चला रही है, और बदले में बच्चे क्या कर रहे हैं? वो मीम्स बना रहे हैं। आई डोंट थिंक देर कुड बी एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल देन दिस। दिस इज द वे फॉरवर्ड फॉर दिस कंट्री, जहां पर ब्रूटैलिटी का जवाब मीम से दिया जाएगा, जहां पर ब्रूटैलिटी का जवाब ह्यूमर और सटायर से दिया जाएगा।
0: इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आपने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है और रातों रात 22 मिलियन फॉलोअर हुए हैं, उसके बाद चर्चा ये हो रही थी कि ये लाइक करना है इसके लिए बड़े आसान है, लोग यहां पर उतर रहे हैं, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि सड़क पर भी वही लोग उतर सकते हैं। बिल्कुल यकीन नहीं था। प्रोटेस्ट आपने कूल बना दिया, आपको लगता है आज की भाषा में अगर बात करें तो टू गो टू द प्रोटेस्ट इज बीइंग कूल?
1: इट्स अ गुड थिंग फॉर अ प्रोटेस्ट टू बी कूल, इट्स अ गुड थिंग फॉर द डेमोक्रेसी। हमारे देश में एक टैबू बना दिया था प्रोटेस्ट को, आंदोलनजीवी नाम का वर्ड यूज किया गया था बाय द ऑनरेबल पीएम और जो सीएनआरसी के वक्त कहा गया था, लाइक इट वॉज वेरी शेमफुल कि जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं आप उनको उनके कपड़ों से पहचान सकते हो। क्यों आप क्या कर रहे हो कपड़ों से पहचान कर? क्या मतलब, क्या कहा लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो लोग एक सर्टन तरीके के कपड़े पहनते हैं वही प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जो लोग सर्टन कपड़े पहनते हैं वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो सभी को इक्वल राइट्स दिए, सो हु इज द प्राइम मिनिस्टर टू डिसाइड?
0: बड़ी दिलचस्प बात है, अभी आपने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लिया है इसके लिए। जब घोषणा हुई आपके हाथ में डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर थी, एक तस्वीर लेकर आपको कंधे पर उठाया था लोगों ने, और आपके हाथ में डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर थी। अन्ना आंदोलन के समय पे पीछे महात्मा गांधी की तस्वीर हमेशा लगी रहती थी, लेकिन आपके हाथ में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर, ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन?
1: इसके ऊपर तो मतलब एक चीज ये, आई कम फ्रॉम अ दलित फैमिली, सो मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल रहा है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का। माय डैड गॉट एजुकेटेड बिकॉज ही रिसीव्ड द फैसिलिटीज दैट वर प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। वो अगर पढ़ाई नहीं करते तो मैं एक अच्छी स्कूलिंग नहीं कर पाता, और फिर मैं कहां से यूएसए जाता? मैं गांव में होता, खेती करता, मेरे पापा खेती करते, और मेरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो, क्योंकि मेरे जितने भी फैमिली वाले, इमीडिएट फैमिली वाले, मेरे चाचा हो, मेरी बुआ हो, कोई लोग ये मिसकंसेप्शन ला रखे कि मैं यूएसए में जाकर आया हूं तो मैं बहुत ही बड़े खानदान से आता हूं, ये वो सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे चाचा अभी भी छोटे से गांव में, छोटे से घर में रहते हैं, मेरी बुआ अभी भी खेतों में काम करती है, तो उन लोगों को तो एजुकेशन का वो पढ़ नहीं पाए, बिकॉज माय डैड उनका था एक एजुकेशन का जिद, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है उनको प्रिविलेजेस, उसकी वजह से वो पढ़ पाए। बट मेरी सारी फैमिली आज भी गांव में ही रहती है, खेती करती है, डेली वेज लेबरर्स। मेरे बहुत सारे इमीडिएट कजन्स, मेरे फर्स्ट कजन्स अभी भी सर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ अवर कम्युनिटी। लेकिन उस कम्युनिटी से हम बाहर क्यों आ पा रहे? बिकॉज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, वो एक। और दूसरा चीज, हमारे देश में ना क्या हुआ है सर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को एक कम्युनिटी के स्पेसिफिक रखा गया है,
0: उनका नेता बनाकर
1: रख दिया है। वी डोंट रियलाइज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो सबसे ज्यादा अपलिफ्टमेंट किसी का करा है वो वुमेन का करा है। अगर वुमेन नहीं होती तो क्या उनको जॉब के राइट्स होते? वुमेन नहीं होती तो क्या उनको राइट टू इक्वालिटी होता? प्रॉपर्टी के राइट्स किसको दिए वुमेन ने? अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते थे, इस देश की औरतों को उनके अपने घर वाले प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं देते। इट वॉज डॉक्टर बाबा साहेब हु एंश्योर्ड दिस कि औरतों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए, चाइल्ड मैरिज बंद होना चाहिए, लड़कियों को राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते ना, तो आज भी हमारी देश की औरतें बेसिक राइट्स के लिए लड़ रही होती। और बस वुमेन नहीं सर,
0: और उसी अधिकार के तहत प्रोटेस्ट का भी अधिकार उन्होंने दिया है,
1: प्रोटेस्ट का भी अधिकार दिया है। और वही नहीं, डेली वेज लेबरर्स जो वर्किंग आवर्स है, मिनिमम वेज है, वर्कर के राइट्स किसने दिए आपको? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिए। सो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड जे भीम इज नॉट अ स्लोगन फॉर दलित और बैकवर्ड कम्युनिटीज, इट इज अ स्लोगन फॉर एवरी पर्सन हु इज ऑप्रेस्ड इन दिस कंट्री। तो ये मिसकंसेप्शन हमें हटा देना चाहिए। एंड मेरे लिए तो बहुत ही मतलब एक प्राइड की बात थी कि जहां पर सारे लोग बिना किसी हेजिटेशन के जे भीम का नारा लगा रहे, एंड आई थिंक दिस इज वेरी ब्यूटीफुल फॉर दिस कंट्री।
0: ये नारा कितनी बार देखने मिलेगा हमें इस तरीके से प्रोटेस्ट में?
1: जब जब मैं ग्राउंड पर जाऊंगा।
0: कितनी बार जाएंगे, किस बात मुद्दे पर?
1: हर बार,
0: यही मेरा सवाल।
1: हर बार जाऊंगा, और
0: क्या रोड मैप है क्या आपके पास?
1: अभी बना रहे सर, बना रहे, जैसे कि मैंने कहा 2 महीने हुए हैं और 2 महीने से 1 महीना तो जंतर मंतर पर ही चला गया है। तो अभी वही टीम के साथ हमारे डिस्कशन चल रही है, मीटिंग चल रही है। पहली जो हमें चीज करनी है वो ये करनी है कि जितना मैंने इन लोगों से बातचीत करी, जितने भी हमारे सपोर्टर्स है, जितने भी लोग प्रोटेस्ट में आए थे, आई वाज ट्राइंग टू एंगेज विद देम ऑन अ डेली बेसिस, उससे जो मुझे समझ में आया वो ये है कि कोई भी पॉलिटिशियन ना इन लोगों की सुनता नहीं है, इन लोगों से डायलॉग नहीं करता
0: किसी भी पार्टी का,
1: किसी भी पार्टी का हाँ। नहीं, ये सारे लोगों की
0: नेता बनने के बाद कोई सुनता नहीं,
1: कोई सुनता नहीं, बिकॉज इट बहुत डिफिकल्ट हो गया है कि इन लोगों का सबसे बड़ा ग्रज जो है वो ये है कि हमारी सुनी नहीं जाती है, या इन लोगों को पता ही नहीं है हम चाहते क्या है। ये अपने आप से एजेंडा डिसाइड कर लेते, अपने आप से इशू उठा लेते और अपने आप से सारी चीजें कर लेते, नोबडी आस्क अस। इनको ऐसा लगता है ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो में। सो जो हमें पहले चीज करनी है वो ये करनी है, वी हैव टू रीच आउट टू ऑल दिस पीपल। हमें इन लोगों से समझना है व्हाट डू दे एक्चुअली नीड, व्हाट आर देयर होप्स, व्हाट आर देयर कंसर्न्स, व्हाट आर देयर नीड्स।
0: नहीं बट कोई तो 3 पॉइंट आपने बनाए होंगे कि इन मुद्दों पर अब मैं आगे बढ़ूं।
1: अभी जो है एजुकेशन का ये पैन इंडिया है, सबसे ज्यादा बिहार झारखंड,
0: किसी की भी सरकार हो,
1: कहीं भी, किसी की भी,
0: किसी भी पार्टी की सरकार,
1: किसी की भी सर, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, समाजवादी पार्टी हो, किसी की भी हो, ये जो बीजेपी वाले ना जानबूझकर ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे या इनके खिलाफ मुद्दा उठाएंगे क्या? एजुकेशन इज वन इशू दैट अफेक्ट्स एवरी सिटीजन।
0: तो एक हो गया एजुकेशन,
1: यस,
0: ठीक है। दूसरा
1: अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी बिग कंसर्न। मतलब जंतर मंतर पर जो भीड़ थी आपने देखी होगी कि बस स्टूडेंट्स नहीं थे, बहुत सारे लोग थे जो 26-27 साल के ऊपर के थे, 35 के ब्रैकेट तक बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो वो अनएम्प्लॉयड लोग थे सर। और कहीं ना मतलब अनएम्प्लॉयमेंट तो हो ही गया, लेकिन एक चीज है और एक मैंने नोटिस करी है थ्रू आउट दिस प्रोटेस्ट, लोगों का इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम से भरोसा उठ चुका है, फिर वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, जुडिशरी हो, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो, या फिर इलेक्शन कमीशन हो, लोगों को ऐसा लग रहा है हम वोट किसी को भी दे दे, क्या फर्क है, क्या पॉइंट है उसका, जब वोट किसी को भी दे रहे वो जाकर कल बीजेपी ज्वाइन कर ले रहा है, तो वो ट्रस्ट फैक्टर रहा ही नहीं है। लोगों का ये बहुत बड़ा ग्रज है।
0: अभिजीत दीप के नेता बन गए अभी?
1: नहीं सर, मैं यही ठीक हूँ अभी, लेकिन अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी
0: आपको कंधे पर, जिसको कंधे पर उठाया जाता है वो नेता
1: हूँ सर, मैं इसके खिलाफ हूँ। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट और नॉट, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ और कल मैं इंस्टाग्राम,
0: नेता बनने में बुराई क्या है?
1: बुराई कोई नहीं है, बात यह है कि लोग जो नेता मानते हैं हीरो बना देते हैं, बुराई उसमें, हमारे देश में ना एक फेटिश है, इमीडिएटली किसी को रातों रात हीरो बना दो, इमीडिएटली रातों रात किसी को लीडर बना दो और बोल दो कि यार यही है जो इस देश को सुधारेगा, यही है जो सब कुछ ठीक कर देगा। हम क्रिकेटर्स के साथ भी यही गलती करते हैं, हम बॉलीवुड वालों के साथ भी यही गलती करते हैं, हम पॉलिटिक्स के साथ भी यही गलती करते हैं। वो अलग बात है कि इसके सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस पॉलिटिक्स में ज्यादा होते हैं।
0: नहीं बट मेरा सवाल पूछने का मतलब यह है कि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चला था तब वो तो कहते थे कि हम तो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं, अब पॉलिटिकल है हम तो नॉन पॉलिटिकल रहेंगे, हमको पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं। आप पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं ऐसा नहीं,
1: नहीं मैं तो सारे यूथ को कहता हूँ बी पॉलिटिकल।
0: करेक्ट, तो आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे?
1: सर अभी कहा मतलब
0: क्या बुरा है अगर
1: बुरा कुछ नहीं। हाँ, एक दूसरी बात मैं क्लियर कर देता हूँ।
0: आर यू अवर्स ऑफ मेकिंग अ पॉलिटिकल पार्टी और जॉइनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी?
1: जॉइनिंग आई वोंट जॉइन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी,
0: नो पॉलिटिकल पार्टी,
1: नो पॉलिटिकल पार्टी, आई वोंट बी।
0: आर यू श्योर?
1: या आई एम श्योर।
0: अरविंद केजरीवाल भी एक जमाने में यही कहते थे कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा,
1: ज्वाइन तो नहीं,
0: खुद ही बना लिया।
1: हाँ, तो ज्वाइन तो नहीं करूंगा सर मैं, बिकॉज ये लोग जो है अगर इन लोगों को बाकी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद होती या कुछ होता तो ये लोग वहीं पर नहीं चले जाते। ये लोगों ने क्यों अपनी मूवमेंट बना ली? सो पॉलिटिकल पार्टी दूसरी कोई तो ज्वाइन नहीं करूंगा। बाकी हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है एंड थैंक्स टू द यूथ ऑफ दिस कंट्री जो कंसोलिडेट हो चुके हैं।
0: तो अभी क्या होगा, ये एक प्रेशर ग्रुप बना रहेगा,
1: प्रेशर ग्रुप रहेगा
0: और ये अगले चुनाव तक काम करेगा, अलग अलग मुद्दे पर, अलग अलग चीजों पर, किसी का प्रचार आप करेंगे?
1: बस चुनाव तक लिमिटेड नहीं रहेगा।
0: नहीं, आप किसी का प्रचार करेंगे नहीं करेंगे?
1: नहीं, उसमें
0: किसी का प्रचार
1: नहीं,
0: आप मुद्दे उठाएंगे,
1: मुद्दे उठाएंगे। वी आर हियर टू रेज द इशू एंड टू स्पीक फॉर द जेन ज़ी एंड फॉर द यूथ ऑफ इंडिया।
0: लेकिन आपके घर में तो अभी पॉलिटिकल नेताओं की भीड़ आना शुरू हो गया है, शिवसेना के नेता आ रहे हैं, आपने कल आरोप लगाया कि बीजेपी के किसी ने आपको वीडियो कॉल पे धमकी दी कि बीजेपी ज्वाइन करी, ये सब क्या है? क्या कांग्रेस ने आपको कहा कि हमारे साथ आइए क्योंकि आपकी एक सहयोगी?
1: मुझे ऐसा किसी ने,
0: ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा।
1: नोबडी एनी पार्टी हैज आस्क्ड मी टू जॉइन देम। जो भी मेरे घर पर आ रहे हैं दे आर जस्ट कमिंग मी टू कांग्रेचुलेट, कह रहे कि आपने काफी अच्छा काम करा है, आपने जो मुद्दा उठाया था काफी अच्छा था एंड वी आर वेरी ग्लैड कि जो स्टूडेंट्स है उनको फाइनली जस्टिस मिला है और ये काफी जरूरी था इंडिया के लिए। सो वो कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आ रहे, सर मैं उसमें मना कैसे कर सकता हूँ?
0: ठीक है, आखिर में मुझे एक पूछना है, क्योंकि उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि अब आपसे बातचीत होगी, एक ड्राफ्ट उनको बनाना है कि एनटीए में क्या सुधार किया जाए, क्या वो बातचीत शुरू हो चुकी है कि अभी भी आपको इंतजार है सरकार की तरफ से?
1: वो बातचीत मतलब थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही है, बट हम ट्राई कर रहे हैं उनको पुश करने के लिए। वो
0: बट यू विल एंगेज विद द गवर्नमेंट?
1: वी विल एंगेज विद द गवर्नमेंट।
0: आप गवर्नमेंट से संपर्क बनाए रखेंगे, बातचीत करेंगे?
1: बिकॉज़ वी हैव टू पुश फॉर द थिंग्स दैट वी डिमांडेड। अगर हम एंगेज नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे वो, और अगर नहीं मानेंगे तो रस्ते पर भी उतरेंगे।
0: बट डेमोक्रेसी में एंगेज करना जरूरी है, और आपको लगता है कि सरकार इसके आगे भी आपके साथ में बातचीत जारी रखेगी? आपको लगता है?
1: मैं आई एम अ बिग बिलीवर इन डेमोक्रेसी एंड इन नॉन वायलेंस। I have a big influence of Ambedkar, Mahatma Gandhi on me, पढ़ा है मैंने, और इसलिए whatever the way forward will be, it will be always through a democratic mean and through a peaceful mean।
0: क्या यह एंटी बीजेपी फ्रंट बनेगा आपकी पार्टी, या ये
1: सरकार किसी की है? सरकार किसी
0: मुद्दों का?
1: आज बीजेपी की सरकार है, इसलिए हम बीजेपी को टारगेट करेंगे, सरकार उनके जो लोग सरकार में बैठेंगे हम उनको टारगेट करेंगे।
0: चलिए, उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके के आंदोलन में एक बार फिर मुलाकात आपसे होगी।
1: ऑफ कोर्स,
0: कौन सा आंदोलन करेंगे उस पर हम भी नजर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत, आपने हमसे बात की इसके लिए, और ये बातचीत इसी तरीके से चलती रहे इसी उम्मीद के साथ।
1: ऑफ कोर्स,
0: फिलहाल तो हम विदा लेंगे आपसे।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू।

पहाड़ों से आया तेज बहाव, मुसीबत देखते ही देखते दरिया बनी सड़कें, बहती नजर आई कारें। बांदीपुरा के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात, कई घरों में घुसा है बारिश का पानी। बाढ़ से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, खासतौर पर सदरकोट और अलूसा गांव में प्रभावित हुए हैं। बारिश के दौर के बीच दिल्ली में भी बढ़ने लगा है यमुना का जलस्तर। कालिंदी कुंज घाट पर दो दिनों में 20 फीट तक पानी बढ़ा है। बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का बहाव तेज हो गया। अगले दो से तीन दिनों में यमुना में और पानी बढ़ने की संभावना है। गुजरात में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। नर्मदा छोटा उदयपुर में नदियां उफान पर है। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर युवक की एक जगह जान भी बचाई। गुजरात के पाटन में बारिश बनी किसानों के लिए मुसीबत। भाटसर गांव में 80% कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। महाराष्ट्र के अकोला अमरावती में बारिश का कहर, नदियां उफान पर है। 7 लोगों को रेस्क्यू कराया गया। गुजरात के गिर सोमनाथ में भी खौफनाक नजर आया। महिला की चारपाई के नीचे रात भर छिपा रहा मगरमच्छ। महाराष्ट्र के नदूर बाग में बड़ा हादसा टल गया। 3500 फीट गहरी घाटी के ऊपर जीप लाइन में फंसी टूरिस्ट। लगातार दूसरे दिन भी संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा। विपक्षी सांसदों ने चंदा चोरी पर प्रकटात्मक नाटक कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर पुजारी बने, जबकि राहुल गांधी ने चंदा देने का नाटक किया। इसके बाद पप्पू यादव चंदा लेकर भागने लगे, जिन्हें अन्य सांसदों ने रोका। विपक्षी सांसद ने अमित शाह की गैर मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाया। अमित शाह संसद से गायब क्यों है, लिखा हुआ पोस्टर लेकर जमकर किनारेबाजी। विपक्ष के भारी हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। संसद में विशेष अधिकार हनन पर बीजेपी विपक्ष आमने सामने। राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस। कांग्रेस ने जितेंद्र सिंह पर भी प्रिविलेज मोशन का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों के मुताबिक पप्पू यादव के प्रदर्शन पर लोकसभा सचिवालय सख्त हो गया। मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर जताई है आपत्ति। राम मंदिर चंदा विपक्ष पर विवाद पर विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का हमला। गिरिराज सिंह बोले, सनातन और संतों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। संसद में विपक्ष के विरोध पर बीजेपी का पलटवार। शहनवाज बोले हैं कि जनता ने ड्रामा और एक्टिंग के लिए चुना नहीं है सांसदों को। संसद परिसर में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का हमला। राहुल, अखिलेश और पप्पू यादव पर मुंह काला करने की दी है चेतावनी। जंतर मंतर हिंसा पर रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर हमला। बोले हैं, छात्रों का सम्मान है लेकिन आंदोलन के पीछे अपराधी हो तो यह गंभीर मामला है। जंतर मंतर पर घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। सीजीपी प्रदर्शन में घायल पुलिसकर्मियों के परिवार ने रखी अपनी बात। मीडिया से बात करते हुए घायल एक पुलिसकर्मी के बेटी ने कहा कि मेरे पिता घर आए तो उनके यूनिफॉर्म पर खून लगा हुआ था। मंत्र प्रदर्शन में घायल एएसआई की पत्नी ने रखी अपनी बात। पुलिस वालों को पत्थर से मारा गया है। सीजीपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत किया। कहा कि हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए उपद्रवियों को भेजा गया था। प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज मुकदमों को लेकर अभिजीत दिपके ने आज तक पर बड़ा बयान दिया है। केस वापस न लेने पर दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से अमित शाह को निशाना साधते हुए इस्तीफे की मांग की है। जवाबदेही के डर से संसद में नहीं रख रहे हैं कदम। राम मंदिर चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मुद्दे पर बोले हैं सांसद अवधेश प्रसाद। कहा कि एक महीने से ज्यादा समय बीत गया, सरकार कुछ नहीं कर रही। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया। कहा कि छात्रों को की सभी मांगे मान ली गई है। विदेशी फंड पाने वाले एनजीओ पर सख्त निगरानी की तैयारी है। एफसीआरए संशोधन बिल सोमवार को लोकसभा में हो सकता है पेश। भोजपुर में भारत तिवारी एनकाउंटर में बड़ी कार्रवाई की गई है। पहली गोली चलाने वाले एसटीएफ के जवान को गिरफ्तार किया गया है। उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस। 27 अगस्त को सुनवाई होगी। मुस्लिमों में एक से ज्यादा शादी पर रोक की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया है नोटिस। पॉलीगैमी पर बैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। मुस्लिम महिलाओं की परेशानियों को लेकर केंद्र से मांगा है जवाब।
विदेश मामलों की स्थायी समिति में अपनी रिपोर्ट में बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई है। सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए भारत सरकार से नजर रखने की अपील की गई है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आजाद समाज पार्टी सक्रिय हो गए, विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए गए। पेपर लीक पर कांग्रेस का सरकार पर हमला, प्रमोद तिवारी बोले कि 12 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं, नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है। वंदे मातरम पर रामगोपाल यादव का बयान, बोले कि नारे से कोई विवाद नहीं है लेकिन इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए था। बांकीपुर विधानसभा उपचुनावों में वोटिंग प्रतिशत कम होने को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा कि वोटरों में सरकार को लेकर दिखी उदासीनता। बांकीपुर उपचुनावों में बीजेपी का दावा, जनता ने फिर से दिया है समर्थन, मृत्युंजय तिवारी बोले हैं कि विरोधियों की होगी जबान जब्त। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार की तैयारी में तेज कर दी गई, सोमवार को नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। लखनऊ में आज सीएम योगी करेंगे विभागों की समीक्षा बैठक, शिक्षा राहत विज्ञान के विभाग के कामकाज के साथ कावड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे। यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारी के बीच बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए डिजिटल परीक्षा यूपी के कार्यकर्ताओं को दबदबा है, देश में मिला पहला स्थान। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी ने डिजिटल रणनीति तेज कर दिया, एआई के जरिए युवाओं तक पहुंचेगी पार्टी, आकाश आनंद सोशल मीडिया टीम के साथ करेंगे समर्थन। समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति पर उठे सवाल, मुस्लिम वोट बैंक साधने का आरोप, एआईएम नेताओं ने खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी से बचने का आरोप लगाया गया। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज 20 अगस्त से होगा, सरकार पेश कर सकती है कई अहम विधेयक। यूपी विधानसभा सत्र से पहले 2 अगस्त को सर्वदलीय बैठक, स्पीकर सतीश महाना ने बुलाई है बैठक, 3 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र, 4 अगस्त को पेश हो सकता है बजट। अयोध्या में चढ़ावे की चोरी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने बढ़ाई है निगरानी, अब दान पात्र खोलने से लेकर रकम की गिनती तक पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला, बोला है कि जनता से धोखे का नतीजा है कि खाली महफिल, चला चली की बेला समय से पहले आ रही है। अखिलेश यादव का भदोही नाम बदलने पर तंज, बोले सिर्फ नाम बदलने से नहीं महापुरुषों के सिद्धांतों पर चलने से बदलाव आएगा। ओडिशा में मेडिकल पीजी पेपर लीक मामले की जांच के लिए जांच 5 सदस्य जांच कमेटी गठित की है, 72 घंटे में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। 19 साल बाद कोलकाता लौटी बांग्लादेश की विवादास्पद लेखिका तस्लीमा नसरीन, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। तस्लीमा कल एक सार्वजनिक कार्यक्रम में होंगी शामिल, इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और मशहूर लेखक शिशुपेंदु मुखोपाध्याय भी शामिल होंगे। बंगाल एसटीएफ ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से संदिग्ध संबंध होने के आरोप में पूर्वी बर्दवान में जिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, पिछले 4 से 5 दिनों से रखी जा रही थी नजर। शुरुआती जांच में सामने आया है कि वह राज्य के मुख्यमंत्री से जुड़ी गुप्त जानकारियां जुटा रहा था, जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या वह किसी हमले की योजना भी बना रहा था। केरल में बड़ा फैसला, जंतर मंतर प्रोटेस्ट के समर्थन में उतरे लोगों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। मेरठ में पहचान छुपाकर होटल चलाने का आरोप, हिंदू संगठन ने शुरू किया है अभियान, कई होटलों में हंगामा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच और कार्रवाई का दिया आश्वासन। कानपुर में मर्चेंट नेवी अधिकारी की मौत के बाद सांसद ने विदेश मंत्रालय को लगाई मदद की मुहार, पार्थिव शरीर को भारत लाने की जयशंकर को लिखा है पत्र। लखनऊ में लखनी दवा सिंडिकेट का भांडाफोड़, फर्जी बलिंग और ट्रांजैक्शंस के चल रहा था कारोबार, एफएसटीए ने कार्रवाई में 6 एफआईआर दर्ज किए, संदिग्ध दवा फर्मों पर रोक और जांच तेज कर दी गई है। अलीगढ़ में स्पोर्ट्स टीचर पर छात्र की पिटाई का आरोप है, सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है, स्कूल प्रबंधन ने आरोपी शिक्षक को किया बर्खास्त। बरेली में मौलाना ने पत्नी से विवाद के बाद शुरू किया, खुद को लगाई है आग, अस्पताल में मौत, सीसीटीवी का फुटेज और आखिरी बयान के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। स्पेन के सियाटा में मानवीय आपातकाल की घोषणा की गई है, एक हफ्ते में पहुंचे 1500 प्रवासी, रिसेप्शन सेंटर फुल हो गया, सैकड़ों प्रवासी खुले में रहने को मजबूर है, प्रशासन ने मांगी है तत्काल मदद। नेपाल में फिर भड़की हिंसा, कई शहरों में बवाल और हंगामा, अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसा के बाद करीब 6 शहरों में लगाया गया कर्फ्यू।
अमेरिका में अटॉर्नी जनरल पद के नामांकन को लेकर खींचतान जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने डॉड ब्लैच को की तारीफ करते हुए उन्हें स्टार बताया, कहीं कहा है कि वो इतिहास में सबसे महान अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं। यूरोप में जंगल की आग से बड़ी तबाही हुई है। फ्रांस और स्पेन में बड़े पैमाने पर रिहायशी इलाकों में जलकर खाक हो गए। तेज हवाओं और हीट वेव की वजह से आग पर काबू पाने में दिक्कतें आ रही हैं। जर्मनी में भीषण गर्मी का कहर, 2016 के बाद गर्मी के से मौत का रिकॉर्ड टूटा है। गर्मी से करीब 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में भी कावड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एआई कैमरों की मदद से किया जा रहा है सर्विलेंस। हर जिले में के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। प्रयागराज में कावड़ियों के लिए हेल्प डेस्क शुरुआत की गई है। 24 घंटे मदद के लिए तैनात रहेंगे हेल्प डेस्क कर्मचारी और खाटों पर के रास्ते मंदिरों की जानकारी के साथ प्लास्टिक के बदले दिए जा रहे कपड़े झोले। प्रयागराज में सावन की शुरुआत के साथ ही गंगा घाटों पर उमड़ी है कांवड़ियों की भीड़। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान और पूजा के बाद जल भरा है, बोल बम के जयघोष के साथ रवाना हुए। प्रयागराज में अनोखी कांवड़ यात्रा, परिवार की एकता के लिए 10 साल से संपर्क निभा रहा परिवार। 11वें साल भी परिवार के 10 सदस्यों ने एक साथ उठाई है कांवड़। अयोध्या में सावन के दूसरे दिन शिवालयों में उमड़ी है श्रद्धालुओं की भीड़। धीरेश्वर

0: सहारनपुर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया। आरोपी गिरफ्तार किया गया। शादी से इंकार करने और धमकी देने के मामले में पुलिस ने भेजा है जेल। ग्रेटर नोएडा में ड्रग्स की तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 15 लाख रुपए कीमत के विदेशी मादक पदार्थ बरामद भी किए। उड़न कफ सिर्फ केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त हो गया। जज तक पहुंच बनाने के लिए प्रयास पर नाराजगी जताई गई है। न्यायमूर्ति ने सुनवाई से खुद को अलग कर दिया। घटना को बताया न्यायपालिका के लिए काला दिन। कोलकाता के दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन के ओवरहेड वायर टूटने से मचा हड़कंप। तेज धमाके और चिंगारी के बाद बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। कुछ समय के लिए ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई। गुजरात के पंचमहल में हाईवे पर स्थित एक होटल के नशे में धुत शख्स ने मचाया तांडव। 5 युवकों को होटल में जमकर तोड़फोड़ भी की। मुजफ्फरनगर में 2 बदमाशों ने मंदिर में घर लौट रही एक महिला के कान में झुमके छीने। स्नैचिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। अलवर में युवक ने एक स्टूडेंट को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लाठी डंडों से किया है वार। घटना का वीडियो हुआ वायरल। जयपुर में तेज बारिश के बीच तेज रफ्तार एसयूवी ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी है। गाड़ी सहित कई फीट तक दूर जा गिरा युवक। मौके पर गई है जान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: College should open doors, not bury you in debt. At WGU, we keep tuition low, 1 flat rate per term. Earn a job-ready degree and spend less. This is education made affordable. Learn more at wgu.edu.
4: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड.
4: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक.
5: Those in favor will please say aye. जी अमित शाह जी आएंगे. पर ये
6: राज्यसभा से भी पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल. करीब सात घंटे तक चली बिल पर चर्चा. अब कानून बनने से बस एक कदम दो. पेपर माफियाओं पर शिकंजा कसने और परीक्षा को लीक प्रूफ बनाने वाले बिल को लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी हरी झंडी मिल गई है. विपक्षी सांसदों के वॉकआउट के बाद बिल को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया.

0: चर्चा के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए उन्हें यूपीए सरकार में हुए पेपर लीक गिना दिए।
1: और वो सम ऑफ द इनफेमस पेपर लीक्स एक्सटेंसिवली रिपोर्टेड इन द मीडिया एंड टॉक्ड अबाउट इंक्लूड द 2009 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2012 एम्स दिल्ली एंट्रेंस लीक, 2013 महाराष्ट्र हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट लीक, 2010 बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन।
0: बिल पास होने से पहले राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीधे सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए।
2: भाव समझिए, भाव नहीं समझेंगे तो अगले आंदोलन के लिए तैयार। इस बार मंत्री गया है, अगली बार सरकार।
3: थैंक यू प्रोफेसर झा।
0: वहीं अब दोनों सदनों से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है और अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, जिस पर उनकी सहमति मिलते ही यह कानून बन जाएगा। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
1: You're listening to CNBC.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
3: Keep it on smooth jazz.
4: This is Roots Reggae.
5: Exclusively on TuneIn.
6: This is classic hip-hop.
7: Exclusively on TuneIn.
0: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
8: साथियों फ्रेंड्स विद्यार्थियों के भविष्य के लिए
9: फ्रेंड्स
10: पीएम मोदी का नया वीडियो संदेश
11: के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग
10: एंटी पेपर बिल पास होने के बाद जारी वीडियो
11: कठोर कानूनों की भी जरूरत है हम संसद में
10: पेपर लीक गैंग को सीधी चेतावनी
11: और जैसा मैंने आपको वादा किया गत दो दिन
10: पीएम मोदी ने एक बार फिर छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी किया पीएम का यह मैसेज उस वक्त आया है जब लोकसभा और राज्यसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया पीएम मोदी ने मैसेज जारी कर सीधे पेपर माफिया को चेतावनी दी
11: कोई पेपर माफिया पेपर लीक करने वाली गैंग देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग उनको बख्शा नहीं जाएगा
10: पेपर लीक गैंग के खात्मे के साथ साथ पीएम मोदी ने शिक्षा पद्धति में सुधार की भी बात कही
11: और आज पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है
10: संसद में एंटी पेपर लीक बिल पास होने को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाता है
11: हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने अधिकतम मान्य सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है काम आगे भी चलता रहेगा
10: पेपर लीक को लेकर मचे घमासान पर पीएम मोदी पिछले 8 दिनों में सोशल मीडिया पर 4 वीडियो पोस्ट कर चुके हैं जिसमें पेपर लीक संशोधन बिल और हाई पावर टास्क फोर्स के गठन की जानकारी दी थी आज तक ब्यूरो
12: राहुल गांधी ने प्रस्तुत किया एम्स की रिपोर्ट के साथ कि पिलेट छर्रे लगे हैं पूरे शरीर में आंख की रोशनी जा रही है यही नहीं AK-47 से फायर किया गया पटना में और यही नहीं महिलाओं के साथ जितना अशोभनीय और अश्लील व्यवहार किया गया वो सारी दुनिया ने देखा है गृहमंत्री जी क्यों भाग रहे हैं सदन से भारत का संविधान कहता है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है संसद के प्रति
13: राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं मंत्री से क्या मतलब है वहाँ मजिस्ट्रेट जो होता है वो जिलाधिकारी दे सकता है SDM दे सकता है जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन होता है वो आदेश देता है मंत्री थोड़ा आदेश देता है

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बीजेपी और विपक्ष के बीच संसद में विशेषाधिकार हनन का जवाबी एक्शन, राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने दिया नोटिस तो कांग्रेस का भी जितेंद्र सिंह के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का प्रस्ताव। विपक्ष के नॉनस्टॉप हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित, चढ़ावा मामले पर पुजारी के भेष में पप्पू यादव का अजीबोगरीब प्रदर्शन, स्पीकर ने जताई नाराजगी। ओडिशा में मेडिकल पीजी परीक्षा के दौरान व्हाट्सएप पर पेपर लीक के आरोपों से हड़कंप, जांच के लिए बनी 5 लोगों की टीम, 72 घंटे में रिपोर्ट तलब, साइबर पुलिस कर रही है जांच। सीजेपी प्रदर्शन में घायल दिल्ली पुलिसकर्मियों के परिजनों ने बताई आप बीती, बच्चों ने कहा उपद्रवियों ने किया पापा पर हमला, हमारे परिवार के अधिकारों की बात क्यों नहीं होती। आज तक से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके, पेपर लीक रोकने में बिल नाकाफी, प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई ज्यादती, उपद्रव के लिए बीजेपी पर आरोप लगाया।
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार, इन एसोसिएशन विद भारत।

0: और 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वर्कशॉप करने।
1: प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ कुछ शरारती तत्व और असामाजिक तत्व भी थे। जो पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ दिया। पुलिस फोर्स पर चप्पलों जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया। क्योंकि 20 तारीख के बाद से आज तक यही नैरेटिव चलाया जा रहा है।
2: जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4।
3: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 20 जुलाई को पेपर लीक के खिलाफ भारी प्रदर्शन की चपेट में दिल्ली आई। दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस की टक्कर हुई। नौबत जब संसद में उनके दाखिल हो जाने तक आई तो प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों का एक्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन चले, यहां तक कि पैलेट गन भी चलाए जाने के आरोप लगे। 20 जुलाई के उस एक्शन पर सड़क से संसद तक सवाल उठे। दिल्ली पुलिस के एक्शन की जमकर आलोचना हुई, लेकिन इस सब में एक पक्ष सामने आने से रह गया। वो पक्ष था दिल्ली पुलिस का, सुरक्षा बलों का, उनके परिजनों का। तो दिल्ली पुलिस के परिजनों ने आज अपनी बात देश के सामने रखी, वो पहलू बताया जो उनके इंसाफ से जुड़ा है।
4: बीस जुलाई का वो वाकया जब दिल्ली की सड़कों पर तूफान मचा था, देश की संसद के सामने प्रदर्शनकारियों की भीड़ खड़ी थी। खतरा था संसद की सुरक्षा पर, आशंका थी हजारों प्रदर्शनकारियों के संसद में घुस जाने की। संसदीय इतिहास में पहली बार संसद पर ऐसा खतरा मंडराया था। जोखिम की उस घड़ी में दिल्ली पुलिस का प्रदर्शनकारियों से आमना सामना होता है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के क्रम में प्रदर्शनकारियों पर एक्शन होता है तो जवाब दूसरी तरफ से भी होता है। छात्र घायल होते हैं तो खून पुलिस कर्मियों का भी बहता है, लेकिन कहानी सबके जहन में दर्ज होती है और दूसरी कहानी अनकही रह जाती है। अनकहा रह जाता है एक पत्नी का दर्द।
1: जब तक वे घर नहीं आए तो मैं मेरी प्रतिक्रिया बहुत ही ज्यादा, मेरे लिए बहुत पेनफुल थी।
4: अनदेखा रह जाता है एक बेटे का जख्म।
2: उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था।
4: और अनजानी रह जाती है एक बिटिया की पीड़ा।
0: और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमें, हमारे लिए बहुत पेनफुल था।
4: इनमें से किसी के पति दिल्ली पुलिस में ACP है तो किसी के पिता, कोई ASI की बिटिया है तो कोई ASI की पत्नी। पद बेशक अलग हो, जिम्मेदारी बेशक भिन्न हो, लेकिन दर्द और पीड़ा एक जैसी है। और वो ये कि पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज निभाया तो पुलिस पर सवालों की इतनी बौछार क्यों?
1: जब वो 11 बजे घर आए तो उन्होंने बताया कि प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ कुछ शरारती तत्व और असामाजिक तत्व भी थे। उन्होंने पुलिस फोर्स पर जो पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया। और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते।
4: दिल्ली पुलिस के ये परिजन सवाल पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को विलेन क्यों बनाया जा रहा है, संसद में दिल्ली पुलिस पर शब्द बाण क्यों चल रहे हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखना क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं। इन परिजनों ने जो कहानियां सुनाई वो भी कम दिल दहलाने वाली नहीं है। सुनिए एक बेटे से अपने एसीपी पिता पर हुए हमले की कहानी।
2: उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट, मतलब स्टूडेंट्स नहीं है उसमें डाउडीज, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25th में अनप्रवोक्ड उन्होंने मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर फेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे।
4: एसीपी के बेटे लक्ष्य कह रहे हैं कि वो भी एक स्टूडेंट हैं और उनके पिता कभी छात्रों के खिलाफ नहीं रहे, लेकिन उंगलियां उठी तो सिर्फ दिल्ली पुलिस की तरफ, आखिर क्यों। और दिल्ली पुलिस में एएसआई की बेटियां गुंजन पूछ रही हैं कि संसद में पुलिस वालों को क्रिमिनल क्यों कहा जा रहा है।
0: रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमें, हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वर्कशॉप करने।
4: और फिर सीमा का ये सवाल भी सुना जाना चाहिए।
1: 20 तारीख के बाद से आज तक यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो छात्र थे, जो छात्रों का प्रोटेस्ट था उसको कि पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्रों को पीटा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अलग एक प्रोटेस्ट का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है।
4: दिल्ली पुलिस के इन परिजनों की अपनी आप बीती है, अपनी कहानी है और अपने सवाल हैं, जिन्हें भी समान शिद्दत और संजीदगी से सुना जाना चाहिए, यही इनकी अपील है। आज तक ब्यूरो।
3: दिल्ली पुलिस के परिजनों की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि उनके अपनों को विलेन की तरह पेश किया जा रहा है, उनकी छवि बर्बर की बनाई जा रही है, जबकि सच यह है कि उन्होंने जो किया हालात को देखते हुए किया, अपनी ड्यूटी निभाते हुए किया। उन्हें एतराज है इस बात का कि हमला पुलिस पर पहले हुआ और हमला करने वाले छात्रों की भेष में गुंडे थे, लेकिन उंगलियां सिर्फ दिल्ली पुलिस पर उठाई गईं।
5: जुलाई को जंतर मंतर से जब संसद मार्च की तैयारी हो रही थी तब वर्दीधारी जवान भी तैयार थे। उस आंदोलन को शांतिपूर्ण समाप्त कराने के लिए, भीड़ को संभालने के लिए, स्थिति पर काबू पाने के लिए, लेकिन ये सब सिर्फ तैयारी बनकर रह गई। छात्रों का संसद मार्च कब हिंसक हो गया पता ही नहीं चला। पथराव हुआ, लाठियां चली, आंसू गैस चले, सबसे बढ़कर पैलेट गन चल गई। 20 जुलाई को हुए उस बवाल में पुलिस कर्मियों पर भी हमले हुए जिसमें पुलिस वाले जख्मी हुए। एएसपी, एएसआई, सिपाही, हर स्तर के जवान इस विरोध मार्च में भीड़ का शिकार बने।
2: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25th मे एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट, मतलब स्टूडेंट्स नहीं है उसमें डाउडीज, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
5: दिल्ली पुलिस के परिजनों की माने तो उस दिन शुरू में सब ठीक था, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ हालात बिगड़ते गए। एसीपी के बेटे लकी बिस्ट ने बताया कि उनके एसीपी पिता पर उस वक्त हमला हुआ जब वो अपने सीनियर अफसरों को घटना की ब्रीफिंग दे रहे थे। वो हमले के लिए तैयार नहीं थे।
2: उन्होंने मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर फेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे। एंड व्हेन द फेल्टिंग स्टार्टेड, मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को लाइक एक सेफ प्लेस में सेक्लूड करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई।
5: दिल्ली पुलिस के जवानों ने ही अपने परिजनों को बताया कि उस आंदोलन में सिर्फ छात्र नहीं थे, अराजक तत्व भी थे जिन्होंने हिंसा को उकसाया, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया।
0: जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। और मुझे यही बोलना था कि आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है। उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के बारे में स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है। उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है।
5: आंदोलन छात्रों का था, विरोध छात्रों का था, लेकिन उसमें अराजक तत्व भी घुसे। दिल्ली पुलिस ने इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि 2000 से अधिक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग डिटेक्ट हुए, लेकिन सवाल यह है कि ये लोग आंदोलन में पहुंचे कैसे, अपराधी खुलेआम सड़कों पर कैसे घूम रहे हैं। पुलिस कर्मियों के परिजनों का कहना है कि इस आंदोलन का विलन दिल्ली पुलिस को बनाया गया, एक तरफा नैरेटिव फैलाया गया। पुलिस वाले सीधे तौर पर अपनी बात नहीं रख सकते, इसलिए परिजनों को सामने आना पड़ा। पुलिस वालों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई है और मांग की है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को भी आम नागरिकों की तरह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समान अधिकार मिलना चाहिए। पुलिस पर हमला करने और हिंसा भड़काने वालों की सख्त जवाबदेही तय होनी चाहिए। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: क्योंकि पुलिस धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट नहीं कर सकती है, इसीलिए परिवार वाले सामने आए हैं और गुहार देश के सभी लोगों से है कि दोनों पक्षों को देखकर उसके बाद किसी को कसूरवार ठहराएं। अब बात हम इस चीज की करेंगे कि पेपर लीक रोकने के लिए सजा वाले कानून का बिल संसद में पास हो गया, लेकिन अभी भी जो भर्तियों को लटकाने से दूर करने वाला कानून कैसे और कब पास होगा? एक नौकरी पाना कई धरने के बाद संभव हो पाता है, राजस्थान में जो हो रहा है वो आपको दिखाते हैं। यहां सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में वेटिंग नियम लागू करने के लिए बेरोजगारों को जयपुर में प्रदर्शन करना पड़ा।
6: सही क्या है, गलत क्या है, आज आप इस रिपोर्ट को देखिए, खुद बताइए। 100 पद की मान लीजिए सरकारी भर्ती नीति, 100 लोग चुने गए, 50 लोग को वेटिंग लिस्ट में डाला गया। चुने गए 100 लोगों में से अगर 30 ने नौकरी एक साल में छोड़ दी तो वेटिंग लिस्ट वाले 50 में से उन्हें नौकरी देना सही है या फिर दोबारा जनता का पैसा खर्च करके पूरी भर्ती प्रक्रिया को फिर से करना सही? फैसला आप ही करिए और राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार को इन युवाओं के प्रदर्शन की आवाज से आवाज मिलाकर जगाइए जो बेरोजगार राजस्थान सरकार के मंत्रियों के घर धरना देने के बाद अब जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठे, लेकिन सरकार तो इन्हें धरना देने के लिए भी एक दिन का ही मौका देती है। कपड़े खोलकर अपना दर्द बयां करने वाले ये वो बेरोजगार जो राजस्थान की सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में कुछ पॉइंट से फाइनल लिस्ट से रह गए और वेटिंग लिस्ट में शामिल कर दिए गए।
7: मेरी उम्र 40 साल हो गई सर, अगर ये वेटिंग नियम लागू नहीं होता है तो हम भर्ती से बाहर हो जाएंगे सर, कभी तैयारी नहीं कर पाएंगे और हमारा परिवार बिखर जाएगा सर हमेशा के लिए। हम बहुत परेशान है सर, डिप्रेशन के शिकार हैं हम।
8: बड़े बड़े मंत्रियों के पास हमने हमारी मांग पहुंचा दी है, सचिवालय में तो कितनी बार हम जाके चपले घिस के आ गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को पता नहीं क्या हो रहा है ऐसा कि उनके ही जो बच्चे हैं, उनके ही जो राज्य के जो बेरोजगार हैं, उनकी मांग नहीं मान रहे हैं।
9: आज अगर सरकार प्रकृति भर्ती में लगाती है, विशेषकर जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है 54,000 पदों पे, अगर इसका लाभ आज नहीं मिलेगा तो फिर फायदा क्या है?
6: हुआ ये कि एमए एमबीए पीएचडी करने वाले जो बेरोजगार चपरासी भर्ती में चुने गए वो ज्वाइन करने की बजाय दूसरी नौकरियों की तैयारी करने लगे। कई चयनित हुए लोग दूसरी नौकरियों का रिजल्ट आते ही चपरासी की नौकरी छोड़ने भी लग गए। ऐसे में प्रदर्शनकारियों की मांग है कि वेटिंग लिस्ट में आए लोगों को उन खाली पदों पर रख दिया जाए, लेकिन चुनौती ये कि सरकार का ही बनाया वेटिंग लिस्ट का नियम इस चपरासी भर्ती में लागू नहीं हो रहा।
10: करीब 54,000 पदों की भर्ती थी और इसमें सभी लोग, चाहे वो MBA किए हों, PhD किए हों, बहुत ज्यादा शिक्षित लोगों ने भी फॉर्म भर दिया, जिसमें माना जा रहा है कि वो दूसरी परीक्षाएं भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर पद खाली रहने वाला है। अब समस्या ये है कि सरकार ने घोषणा कर दी बजट के समय, उसके बाद नियम भी लागू कर दिया, मगर इस सबसे बड़ी भर्ती में उस प्रक्रिया को, वेटिंग नियम जो है 1 ईयर का, उसे लागू नहीं कर पा रही है। बार बार कहा जा रहा है कि हम विचार कर रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी कह दिया कि हम सरकार को बता रहे हैं इंतजार कीजिए, मगर कब तक इंतजार करें ये समझ में नहीं आ रहा है।
11: मैं 3 नंबर से रह रहा हूँ। अगर वेटिंग नियम लागू हो जाता है, वजनलाल सरकार वेटिंग नियम लागू कर देती है, तो इसमें कम से कम 20 से 25,000 अभ्यर्थियों का भला हो जाएगा।
12: मेरे 156 नंबर थे, 8.5 नंबर तो पहले ही काट दिए। अब वेटिंग में भी पहले बोल रहे थे कि वेटिंग नियम लागू होगा, तब तो वाहवाही लूट ली सरकार ने, और अब इनमें प्रक्रियाधीन भर्तियों में ये लागू नहीं करके बेरोजगारों के साथ धोखा किया जा रहा है।
6: इस भर्ती का जिम्मा संभाल रहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है कि प्रयास किया था, बात नहीं बनी, टेक्निकल इश्यू है, सरकार भी चाहेगी लागू हो, प्रयास कर रहे हैं, आगे ईश्वर की मर्जी। लेकिन बेरोजगारों को भगवान के भरोसे छोड़ना कैसे सही माने, जबकि 1 साल में खाली हुए पद पर वेटिंग लिस्ट से भर्ती देने के नियम पर सरकार ही अपनी वाहवाही करती है।
13: 1 वर्ष के भीतर कर्मचारियों द्वारा पद त्यागने की स्थिति में उस पद की प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा।
6: बेरोजगारों के आंदोलन के बाद अब मंत्री कहते सरकार कोशिश कर रही है।
14: मैंने उचित स्थान पर उस बात को पहुंचाया है, परीक्षण उसका किया जा रहा है, परीक्षण के बाद जो नियमों में प्रावधान है उसके अनुरूप चर्चा करके कुछ किया जा सकता है।
6: इस धरने में दिव्यांग भी हैं, जो इशारों से अपनी बात कहते हैं। इनके इशारों को क्या सरकार तब सुनेगी जब बेरोजगारों की ऊंची आवाज और उनके नारे तक सरकार के कान में नहीं पहुंच पा रहे?
10: 54,000 में से करीब करीब 25,000 तक पद बेकार हो सकते हैं। ऐसे में सरकार वेटिंग रूल को लागू करे, जिसकी घोषणा विधानसभा में की गई है, और इन बेरोजगारों को राहत दे, क्योंकि छोटी नौकरियों में जो कम शिक्षित लोग हैं और जिनकी उम्र बीती जा रही है, उन्हें नौकरी की ज्यादा जरूरत है। मगर ये कह रहे हैं कि तमाम मंत्रियों से मिलने के बावजूद अभी तक कोई रास्ता खुला नहीं है। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
3: अगली खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां कैबिनेट की बैठक पूरी हो चुकी है और इस बैठक के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इसके साथ ही अमित शाह, किरण रिजिजू और पीयूष गोयल ने लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात की है।

0: इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Hey, music lovers, ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.

0: हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि कैसे अयोध्या में डकैती पड़ रही है 2020 से, जब से प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बना है तब से डकैती पड़ रही है, और तभी से नहीं पड़ रही है। जो 90 के आंदोलन के समय भी लगभग 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था उसका भी हिसाब किताब पता नहीं है, और ये 100% बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोगों की जेबों में और खातों में जा लगाया। और इस बात को लेकर हम विपक्ष के लोग लगातार मांग कर रहे हैं स्पीकर साहब से भी कि हमको चर्चा का मौका दीजिए, और जब तक चर्चा का मौका नहीं देंगे सदन को हम लोग व्यवस्थित नहीं चलने देंगे।
1: वही
0: आपके माध्यम से देश का आम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते। अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए हैं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: सर, आप जो भगवा कपड़े पहन करके आए हैं, यहाँ सत्ता पक्ष के सांसदों के द्वारा ये कहा गया कि भगवा का मजाक एक तरीके से उनके द्वारा उड़ाया जा रहा है।
3: अच्छा, भगवा के आस्था के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? हम किसी का नाम तो ले नहीं रहे। ये जो दुराचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी बाबा है, पर्ची निकालने वाले जिन पर आरोप है, वो सारे गेरुआ के आस्था को खतरे में डाला है। सारे रियल संत जो है उसको खतरे में डाला है, रियल बाबा को खतरे में डाला है। तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हम लाए, राम राम जपियो रे सब माल हड़पियो रे। आप भगवान के आस्था के साथ ही नहीं, 154 करोड़ भारत के उस आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं जो राम को अपने जीवन में, कर्म में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं, जो शिव को अपना आराध्य समझते हैं, शिव जीवन में है, शिव विचारों में है।
2: लेकिन स्पीकर साहब ने भी टिप्पणी किया है आपकी।
3: निश्चित रूप से विरोध का क्या तरीका होगा? लाठी गोली तो हम इन लोगों के तरह नहीं चला सकते। तो जो और राम के आस्था के साथ ठेस पहुंचाया, सनातन पर हमला बोला, तो क्या अन्य लोग, जितने लोग हैं, वो लोग गेरुआ पहन के नहीं आते हैं? हमने गेरुआ पहन करके आस्था की बात की। और जो लोग गेरुआ पहन के आते हैं, नाटक करते हैं और भारत में उन्माद पैदा करते हैं और भगवान को राजनीति में बेचते हैं।
2: लेकिन आप सर जो दान पत्र लेकर के इधर भाग रहे थे पूरा, तो वो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, इस चोरी करने का, भगवान राम की आस्था को लेकर के।
3: भगवान राम की आस्था की ही ना चोरी हुई है, देखने रहे, सब चोरी कर लिए, देखने रहे। तो भागे, जो भाग रहा है ले करके, तो उसको तो लेके भागना पड़ेगा ना।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: संसद में जारी गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात, स्पीकर से भी मिले अमित शाह, किरण रिजिजू और पीयूष गोयल, मोदी की कैबिनेट में बैठक भी खत्म। बीजेपी और विपक्ष के बीच संसद में विशेष अधिकार हनन का जवाबी एक्शन, राहुल गांधी को बीजेपी के नोटिस के बाद कांग्रेस का भी जितेंद्र सिंह के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का प्रस्ताव। विपक्ष के नॉनस्टॉप हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित, चढ़ावा चोरी पर पुजारी के भेष में पप्पू यादव पर अजीबोगरीब प्रदर्शन, स्पीकर ने जताई नाराजगी। सीजेबी प्रदर्शन में घायल दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिजनों ने बताई आप बीती, बच्चों ने कहा उपद्रवियों ने किया था पापा पर हमला, हमारे परिवार के अधिकारों की बात क्यों नहीं होती। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सीजेबी प्रमुख अभिजीत दिपके, पेपर लीक रोकने में बिल नाकाफी, उपद्रव के लिए बीजेपी पर आरोप भी जड़े।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: अमेरिका ईरान में फिर छिड़ गई महाजंग। कुवैत के अमेरिकी बेस पर भयंकर हमला। ईरान का दावा हाइपरसोनिक मिसाइल से बार। केशम द्वीप पर दिखा तबाही का मंजर। बहरीन बेस पर ईरानी ड्रोन स्ट्राइक। ईरान के फॉस्फोरस वाले ड्रोन से हड़कंप। मिस्र में अमेरिकी जहाज पर हमले का सस्पेंस गहराया। ईरान का हमला या इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इसराइल अमेरिका का प्लान, अरब देशों का घमासान।
1: नमस्कार, रणभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। मध्य पूर्व से लेकर यूरोप तक और यूरोप से लेकर भारत चीन तक हर हलचल से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे रणभूमि में। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज के बुलेटिन में आपके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। पश्चिम बंगाल में कट्टरपंथियों को आज कैसा करारा तमाचा लगा है। क्या इसराइल और अमेरिका अरब देशों को ईरान के खिलाफ जंग में उतारने का प्लान कामयाब कर चुके हैं। वहीं अमेरिका में भी एक अमेरिकी सीनेट के साथ इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात का एक वीडियो वायरल हो रहा है। और क्यों कहा जा रहा है कि अमेरिकी सीनेटर नेतन्याहू का अपमान किया है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि आखिर में क्यों हजारों मुस्लिम युवाओं की भीड़ स्पेन के एक छोटे से शहर में घुसने के लिए पागल हुई बैठी है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सितंबर में भारत आ सकते हैं। गलवान और कोविड 19 के संकट के बाद पहली बार भारत दौरे पर आ सकते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वो शामिल हो सकते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत आएंगे। क्रेमलिन ने उनके भारत दौरे की पुष्टि भी कर दी है। खास बात ये कि ईरान भी नए सदस्य देश के रूप में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेगा। ब्रिक्स से पहले अगले महीने किर्गिस्तान में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन, शी जिनपिंग के अलावा ईरान के नेता भी शामिल होने वाले हैं। अमेरिका ईरान तनाव के बीच पहली बार एक मंच पर जुटेंगे एससीओ के सारे शीर्ष नेता। और एक बड़ी खबर आपको जो बता रहे हैं कि सितंबर में भारत आ सकते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और ये मुलाकात, ये उनका दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और अब बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। कोलकाता से, जहां पर कट्टरपंथी ताकतों और धार्मिक तुष्टिकरण की राजनीति को आज एक बड़ा और मुंहतोड़ जवाब मिला है। सालों तक फतवों से बेखौफ लड़ने वाली बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसीर 19 साल के लंबे निर्वासन के बाद आज आखिरकार अपने सबसे पसंदीदा शहर कोलकाता लौट आई। एयरपोर्ट पर कदम रखते ही भावुक होकर तस्लीमा ने कहा कि मुझे लगा रहा है कि जैसे मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। तस्लीमा नसरीन के लिए कोलकाता हमेशा से उनका दूसरा घर रहा है, लेकिन साल 2007 में कट्टरपंथियों के दबाव में वामपंथी सरकार ने उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया था। और दरअसल उनके उपन्यास लज्जा के लिए बांग्लादेश सरकार ने उन पर फतवा लगाया था, जिसके बाद वो भारत आ गई थी। लेकिन वामपंथी सरकार के बाद 2011 में जब ममता बैनर्जी की सरकार आई, तब भी तस्लीमा के कोलकाता लौटने की उम्मीद पर पानी फिर गया था। वो दिल्ली में एक अज्ञात जगह पर जिंदगी बिताती रही। उन्होंने ममता बैनर्जी को कई खत भी लिखे और कोलकाता आने के लिए गुहार भी लगाई। लेकिन ममता बैनर्जी ने अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक और कट्टरपंथी मौलवियों को खुश करने के लिए तस्लीमा के बंगाल प्रवेश पर अघोषित बैन जारी रखा था। लेकिन अब बंगाल का मंजर बदल चुका है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार बनते ही तुष्टिकरण का ये काला दौर खत्म हो गया। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने कट्टरपंथियों को सीधी चुनौती देते हुए तस्लीमा नसीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ कोलकाता में स्वागत भी किया और 1 अगस्त को रविंद्र सदन में होने वाले कट्टरपंथ विरोधी सम्मेलन में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद तस्लीमा नसीर को सम्मानित भी करेंगे। साफ है, जो कोलकाता कभी फतवों और वोट बैंक की राजनीति के दबाव में दबा रहता था, आज उसी सिटी ऑफ जॉय में अभिव्यक्ति की आजादी को सीने से लगाकर कट्टरपंथियों को हमेशा के लिए चुप करा दिया गया है।
2: अभी
1: और इसके बाद बात करते हैं उस वॉर फ्रंट की जिसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल रखा है। बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका की जंग से जुड़ी हुई जो फिर से भड़क उठी है। बड़ी खबर यह आ रही है कि कुवैत में जहां पर ईरान का हमला जारी हुआ है, आज भी IRGC की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उन्होंने कुवैत पर हमले का सीधे तौर पर अपनी जिम्मेदारी ली है और उसने कल रात ईरान पर हुए हमलों में अमेरिकी हमलों का करारा जवाब देते हुए कुवैत के स्थित अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाने का दावा भी किया है। IRGC का यह जवाबी हमला उन अमेरिकी हमलों के ठीक बाद सामने आया जिसमें ईरान के केशम द्वीप पर एक इमारत पूरी तरह से तबाह होने का अमेरिका ने दावा किया था। इस अमेरिकी हमले में एक बेकसूर दंपति और उनके महज 2 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत भी हो गई। अपने नागरिकों की मौत और तबाही का बदला लेते हुए ईरान ने कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर जोरदार मिसाइलें दागी जिससे मध्य पूर्व में युद्ध की लपटें और तेज हो गई हैं। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध फिर से भड़क गया। अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ईरान की स्टेट टीवी के मुताबिक अमेरिकी हमलों में स्टेट केशम द्वीप के एक घर को तबाह कर दिया गया और 3 लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई, जबकि खुर्जिस्तान प्रांत में भी कई जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी गई। इसको लेकर भी स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट की है। दरअसल जॉर्डन में अपने मिलिट्री बेस पर हुए ईरानी मिसाइलों के हमले का बदला लेने के लिए अमेरिकी सेना ने ईरान के कई शहरों पर कई ठिकानों पर जोरदार मिसाइलें भी बरसाई हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 2 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में IRGC के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया जिसमें मिलिट्री कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने और तटीय रक्षा प्रणाली शामिल थे। इससे ठीक पहले अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ मिलकर इराक के ईरान समर्थित लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक्स का दावा भी किया था जिसमें 20 लड़ाके और 6 ईरानी सलाहकार IRGC के खुद के कमांडर्स मारे जाने का दावा भी किया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कड़ा सबक सिखाने की चेतावनी के बाद हुए इन हमलों में क्षेत्र के पूर्ण युद्ध का खतरा लगातार बढ़ गया जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और अमेरिकी हथियारों के घटते भंडार को लेकर गहरी चिंता भी पैदा कर दी है। अगली बड़ी खबर बहरीन से आ रही है जहां पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए ईरानी ड्रोन हमले में के बाद राजधानी मनामा और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर आगजनी तबाही की तस्वीरें सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 27 सेकंड के एक वीडियो में रात के समय भीषण आग की लपटें और काले धुएं का गुब्बार देखा जा सकता है। घटना स्थल पर मौजूद इमारतों पर खड़े वाहनों और स्ट्रीट लाइट के बीच स्थानीय नागरिक दहशत में इस तबाही को देखते रहे। ईरान ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट के तहत बहरीन स्थित अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर्स और शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया। ईरानी सूत्रों के अनुसार इन हमलों में अमेरिका सैन्य अड्डों के नेविगेशन सेंटर, पावर जनरेटर्स और बैरकों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। दूसरी तरफ बहरीन का दावा है कि उसने ज्यादातर ईरानी ड्रोन्स को और मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट किया और मार गिराया गया। हालांकि इसके मलबे गिरने की वजह से मनामा और मुहर्रम के रिहायशी इलाकों में आगजनी और कई वाहनों को नुकसान पहुंचने का दावा भी किया गया। इसके अलावा कुछ नागरिकों के घायल होने की बात भी कही गई। बहरीन में ईरान सीधा नागरिक क्षेत्रों पर हमले कर रहा है जिसका आरोप लगातार बहरीन भी लगा रहा है। और वहीं मध्य पूर्व से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ईरान की ओर से सैन्य अभियानों में खतरनाक और प्रतिबंधित व्हाइट फास्फोरस वॉरहेड से लैस ड्रोन के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया गया है। इन दावों के बाद मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इससे जुड़ी एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें IRGC ने अपने लाइटनिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन में पारंपरिक विस्फोट की जगह इस विनाशकारी रसायन का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। कुर्दिश इलाकों में मानवाधिकार संगठनों ने दावा किया है कि हाल ही में इराक के कुर्द क्षेत्रों में एक ठिकाने पर ईरानी ड्रोन के हमले में व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया था जिसके बाद भीषण और बेकाबू आग भी लग गई। व्हाइट फास्फोरस इतना खतरनाक है कि इस वजह से माना जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही अपने और भयानक रूप ले लेता है। इसकी आग या फिर इसकी लपटें, इसका प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ता जाता है और जब तक ये जलता है तब तक तापमान 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसी वजह से इसे पानी से बुझाना भी लगभग नामुमकिन बताया जाता है। और देखिए कुर्द लड़ाकों के ऊपर पहले भी ईरान की तरफ से हमले किए जाने का दावा किया जाता था, लेकिन एक बार फिर से व्हाइट फास्फोरस के इस्तेमाल ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी। अब एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जिसके बाद पूरे मध्य पूर्व में क्षेत्रीय युद्ध छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मिस्र की राजधानी के बंदरगाह डेमेटाटा के अंदर खासतौर पर अमेरिकी जहाज पर एक बड़ा अटैक करने की बात की गई है, और डेमेटाटा एक अमेरिकी जहाज पर हुए हमले के बाद कहा जा रहा है कि ये युद्ध का दायरा लगातार मेडिटेरेनियन सी तक बढ़ता जा रहा है। 29 जुलाई को एक संदिग्ध ड्रोन ने अमेरिकी गैस स्टोरेज जहाज को टारगेट किया था, सीधा हमला किया था। धमाका इतना जबरदस्त था कि आग पास के खड़े ग्रीस के एक और गैस टैंकर तक फैल गई, और गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इस हमले के बाद लगातार लाल सागर और भूमध्य सागर के पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। कहा जा रहा है कि ईरान का यह हमला, क्योंकि ईरान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अब ये जंग मेडिटेरेनियन सी तक भी पहुंच जाए। इसराइल की लगातार इसराइल को टारगेट या इसराइल के एयरस्पेस से जॉर्डन के एयरस्पेस से गुजरने वाली इन मिसाइल और ड्रोन ने सीधे तौर पर इजिप्ट के इस बंदरगाह को टारगेट करके बता दिया है कि इसके दायरा बढ़ते ही लगातार कितना ज्यादा दबाव पूरे दुनिया पर इसका फैल सकता है। और वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक सनसनीखेज आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और अराक्ची के मुताबिक इसराइल ने जानबूझकर अमेरिकी जहाज पर हमला कर इसका इल्जाम ईरान पर थोपा है। देखिए पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर वो है जो आपको दिखाती है कि कैसे एक ड्रोन लगातार अमेरिका के एक टैंकर को टारगेट करता है, और जिसके बाद ये स्थिति ये सिचुएशन बनती है इसराइल की तरफ से, और कई इजिप्ट के मीडिया हाउसेस की तरफ से कहा जाता है कि ये ईरान का ड्रोन था। हालांकि ईरान ने इसको लेकर साफ तौर पर इनकार किया है कि ड्रोन उनका नहीं था, लेकिन लगभग इस अटैक के बाद ये माना जा रहा है कि मेडिटेरेनियन सी में इजिप्ट के बंदरगाह हो, जॉर्डन के बंदरगाह हो, इन तमाम बंदरगाहों के आसपास इस जंग का दायरा और ज्यादा फैल सकता है। तो फिर आप देखिए कि कैसे ये ड्रोन बहुत तेजी से लो फ्लाइंग करते हुए इस टैंकर से टकराता, और फिर उसके बाद इस टैंकर पर ध्वस्त हो जाने के बाद अटैक करने के बाद वहां का मंजर क्या होता है, ये तस्वीर आप देखिए। और अब खबर है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका दौरे को लेकर। क्या अमेरिका में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अपमान किया गया था? एक वीडियो सुर्खियों में बना हुआ है जिसमें नेतन्याहू सूट बूट में दिख रहे हैं, जबकि उनके सामने बैठे अमेरिकी सीनेटर हुडी और हाफ पैंट में नजर आते हैं। यही नहीं, वो प्रोटोकॉल को ताक पर रखते हुए पैर पर पैर चढ़ाकर उनके सामने बैठते हैं। इसके अलावा वो लगातार मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं। आखिर ये अमेरिकी नेता कौन है और क्यों इस मीटिंग की तस्वीरें आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया? इस वायरल तस्वीर का पूरा सच देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
2: तस्वीरें अक्सर सच बोलती हैं, लेकिन कभी कभी वही तस्वीरें आंखों में धूल भी झोंक देती हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सेनेटर जॉन फेटरमैन की इस मुलाकात को ही देख लीजिए। सूट बूट में बैठे नेतन्याहू के सामने हाफ पैंट और हुडी में अमेरिकी नेता पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर आराम फरमाता और लगातार फोन पर नजरें गड़ाए बैठा उसका ये अंदाज वायरल है। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि अमेरिकी सेनेटर ने जानबूझकर नेतन्याहू को नीचा दिखाया और उनका भारी अपमान कर दिया। लेकिन रुकिए, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले जान लीजिए कि सच्चाई इस नैरेटिव के बिल्कुल उलट है, क्योंकि जिस तस्वीर को अपमान बताया जा रहा है उसके पीछे की हकीकत बेहद कड़वी नहीं बल्कि बेहद खास है। मिलिए पेंसिल्वेनिया के डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर सेनेटर जॉन फेटरमैन से। 6 फीट 8 इंच लंबे फेटरमैन अमेरिकी राजनीति के वो चेहरा है जो नियमों से नहीं अपनी शर्तों पर चलते हैं। जिस हुडी और हाफ पैंट को देखकर बवंडर मचा है वो उनका रोज का सिग्नेचर स्टाइल है। वो सेनेट के सबसे आधिकारिक सत्रों में भी इन्हीं साधारण कपड़ों में आते हैं। आलम यह है कि उनके कपड़ों के आगे झुकते हुए अमेरिकी सेनेट को अपना दशकों पुराना ड्रेस कोड तक बदलना पड़ा। रही बात फोन देखने और बेफिक्र होकर बैठने की, तो ये उनका सहज अंदाज है। कोई कूटनीतिक अनादर नहीं, बैठक के कैमरे में कोई कड़वाहट नहीं थी बल्कि जबरदस्त दोस्ती का माहौल था। खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फेटरमैन की पीठ थपथपाते हुए कहा,
3: Senator, it's good to see you again. You've been a stellar patriot, talking about what is good for America, what is good for our alliance, of which you've been a champion, and you've been telling it like it is, with no fear, and just an indefatigable and courageous commitment to the truth. And I want to thank you on behalf of the people of Israel. Actually, I want to thank you on behalf of free people everywhere, because I've been receiving from around the world the kudos for your courage and your clarity. So thank you. Thank you.
4: Oh. आपको जान

0: इस बेहद खतरनाक प्रयास में समुद्र में डूबने के कारण कम से कम 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये प्रवासी इतनी बड़ी संख्या में स्पेन के शहर सियाउटा पहुंचे हैं कि वहां की पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई। कोस्ट गार्ड, पुलिस, यहां तक के मिलिट्री को भी वहां पे डिप्लॉय करना पड़ा और यहां जो भीड़ थी उनको रोकने के लिए मिलिट्री डिप्लॉयमेंट लगातार इनकी सड़कों पर की गई। इस भारी तादाद में चलते अस्थायी प्रवासी स्वागत केंद्र पर अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। सैकड़ों प्रवासी यहां से निकलकर पूरे शहर में फैल चुके हैं। सियाउटा प्रशासन ने स्पेन की केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल घोषित करने की मांग भी की है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे तकनीकी रूप से खारिज करते हुए कहा कि कानून प्रवासियों के आने पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया नहीं जा सकता है। हालांकि वो हर संभव मदद भेजने के लिए तैयार है। दरअसल स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और समुद्र में से या तैर कर आने वाले प्रवासियों को तुरंत वापस मोरक्को नहीं धकेला जा सकता, ये कहा गया था। पहले जमीन पर बाढ़ पार करने वालों को तुरंत वापस भेज दिया जाता था, लेकिन कोर्ट के इस फैसले ने प्रवासियों को कानूनी प्रक्रिया और शरण मांगने के अधिकार की गारंटी दे दी। लेकिन स्पेन का आरोप है कि मानव तस्करी नेटवर्क ने इस फैसले का फायदा उठाया। उन्होंने मोरक्को और अल्जीरियाई युवाओं के बीच यह अफवाह फैला दी कि अब तैरकर सियाउटा जाने वालों को स्पेन तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता, वहां नागरिक और शरण मिल जाएगी। इसके बाद हजारों युवक जो थे वो लगातार वहां पर पहुंच गए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें अंकिता शर्मा हत्याकांड में अभी एक बड़ी खबर आ रही है। खास तौर पे आपको बता दें कि दोषी ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और देखिए बड़ी बता दें, अंकित शर्मा हत्याकांड में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अंकित शर्मा हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। दोषी ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अंकित शर्मा मामले पर सभी 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी सृष्टि ओझा भी हमारे साथ जुड़े। सृष्टि का रुख करते हैं। सृष्टि, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया और तमाम सभी दोषियों को क्या इसमें सभी को दोषी माना गया और क्या कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन आया है?
1: जी, इस मामले में दोषी तो कोर्ट करके दूंगा। कोर्ट ने पहले ही ताहिर हुसैन और बाकी आरोपियों को माना था, उन्हें कन्विक्ट किया था। पर सेंटेंसिंग की आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद इसमें दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ताहिर हुसैन और बाकी आरोपियों को उम्र कैद मिलनी चाहिए। आज कोर्ट ने उन्हें उम्र उन्होंने डेथ पेनल्टी की मांग की थी दिल्ली पुलिस ने, लेकिन कोर्ट ने ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यहाँ पास करते हुए ये भी कहा है कि अंकित शर्मा, इस पूरे केस में अंकित शर्मा की बुरी तरह से हत्या की गई थी, उनकी बॉडी जान की तरह छोड़ दी गई थी। इस घटना ने समाज को झकझोर दिया था। जिस तरीके से घटना हुई उसने समाज को सोचने पर एक तरीके से मजबूर किया है। अदालत ने ये भी कहा है कि अपराध को अंजाम देने का जो तरीका था वो बहुत ही क्रूर था। हमला इतना भीषण और निर्मम था कि पीड़ित की मौत के बाद भी उसका शव दोषियों ने घसीट कर चांदबाग उसे ले गए और उसे नाले में फेंक दिया। ये सारे ऑब्जर्वेशन और रिमार्क देते हुए कोर्ट ने ताहिर हुसैन और बाकी आरोपियों को, ताहिर हुसैन के साथ 5 और आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 13 जुलाई को हमने देखा था कि इन 5 को कोर्ट ने हत्या और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर धाराओं में दोषी करार दिया था। सजा पर सुनवाई हुई थी जिसमें दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ताहिर हुसैन और बाकी दोषियों को मौत की सजा सुनाई जाए। दोषियों के वकील ने इस चीज के खिलाफ ये कहा था कि उन्हें इस केस में जो है डेथ पेनल्टी नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में उन्हें डेथ पेनल्टी नहीं दी है, लेकिन उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई है। 5 दोषियों को कोर्ट के सामने पेश किया गया था, वो मौजूद में जब अभी कुछ देर पहले इस मामले में कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया।
0: सृष्टि, ताहिर हुसैन के अलावा कौन कौन से ऐसे शख्स हैं जो इसमें दोषी पाए गए हैं, उनके बारे में भी क्या कोर्ट ने कोई स्पेसिफिक टिप्पणी की है, कोई ऑब्जर्वेशन दिया गया है?
1: जी, ताहिर हुसैन के अलावा नाजीम, कासिम, जावेद और अनस, इन लोगों को कोर्ट ने, दिल्ली के कलकत्ता कोर्ट ने कुछ दिनों पहले हत्या के मामले में हत्या के ही चार्जेस पे कन्विक्ट किया था, दोषी करार दिया था। इसमें जो आज कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है वो सभी जो दोषी हैं इस केस में उनको लेकर आई है। कोर्ट का कहना है कि जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया वो काफी क्रूर तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, बहुत ही बुरी तरीके से सभी दोषियों ने मिलकर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या की।

0: गई थी, उनकी बॉडी जानवर की तरह छोड़ दी गई थी। काफी बड़ी टिप्पणी जो है कोर्ट की तरफ से आई है। कोर्ट ने अपने पहले कन्विक्शन ऑर्डर में भी काफी सारी चीजें कही थी इन दोषियों के बारे में, लेकिन सेंटेंसिंग के ऑर्डर में कोर्ट ने वापस से ये कहा है कि यह घटना समाज को झकझोर देने वाली है। जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से अंजाम दिया इन सभी लोगों ने, उसने समाज को एक तरीके से सोचने पर काफी मजबूर किया है। और बहुत ही क्रूर तरीके से इन सभी लोगों ने मिलकर, इन सभी दोषियों ने मिलकर अंकित शर्मा कि उस वक्त जब दिल्ली रायट चल रहे थे 2020 में, उस पर बहुत ही क्रूर तरीके से इस घटना को अंजाम दिया और अंकित शर्मा की हत्या की गई।
1: सुश्री, एक और बात, क्योंकि आप लगातार इन प्रोसीडिंग्स को फॉलो करती आई हैं, लगातार कोर्ट में इस पूरे मामले को देखती आई हैं, क्या ताहिर हुसैन के अलावा जो बाकी लोग थे, क्या इनकी कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड भी रही है? क्या उसका जिक्र भी उस समय जिराए के दौरान किया गया कि आखिरकार सिर्फ इसी मामले में, या फिर इनका जो बैकग्राउंड है वो शुरू से ही ऐसा रहा है?
0: दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने इन सभी की सेंटेंसिंग के जब हमने आर्ग्यूमेंट सुने थे, दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे कहा था कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है इस मामले में वो इन्हें देना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें दिल्ली राइट्स में ये जो अक्यूज है ताहिर हुसैन की, अगर हम बात करें तो सिर्फ दिल्ली राइट्स के एक केस में अक्यूज नहीं है, और भी केसेस हैं दिल्ली राइट्स से ही जुड़े हुए जिसमें ये अक्यूज है, उसमें सबमिट नहीं हुआ लेकिन अक्यूज है, कुछ एक दो और केसेस भी हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट है वो दिया जाए, क्योंकि हम हत्या मर्डर की बात कर रहे हैं, मर्डर के सेंस की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पनिशमेंट दो ही पनिशमेंट होते हैं उसमें, एक तो उम्र कैद और दूसरी डेथ पेनल्टी। दिल्ली पुलिस का कहना था कि बहुत ही ब्रुटालिटी की, एकदम एक ब्रुटाल, बहुत ही ब्रुटालिटी की तरीके से एक तरीके से इन दोषियों ने इस पूरे जिस पूरे कांड को अंजाम दिया था, कैपिटल पनिशमेंट की मांग करते हुए ये भी कहा था दिल्ली पुलिस ने कि ये जो घटना को अंजाम देते हुए अंकित शर्मा को मारते हुए एक तरीके से जानवर बन गए थे सभी जो दोषी इस मामले में, उनका कहना था कि किसी भी तरीके की लीनियंसी ये दिखाना इन्हें सही नहीं होगा, डेथ पेनल्टी ही मिलनी चाहिए, उम्र कैद की भी कोई इसमें उम्र कैद की सजा भी देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के इस आर्ग्यूमेंट से कहीं ना कहीं कोर्ट ने अग्री नहीं किया होगा, क्योंकि हमें पता है डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जाती है। ताहिर हुसैन के वकील ने भी ये कहा था कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में नहीं आ सकता, डेथ पेनल्टी नहीं मिल सकती। एक डिटेल्ड ऑर्डर जब इसका आज कोर्ट की तरफ से आता है, उससे हमें समझ में और आएगा कि कोर्ट ने क्यों डेथ पेनल्टी की जगह लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा देना ताहिर हुसैन और बाकी लोगों को जरूरी समझा। क्यों डेथ पेनल्टी नहीं दी गई, लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा क्यों दी गई, ये एक बार जब हम डिटेल कॉपी देखेंगे जजमेंट की, उससे और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी और समझ में आएगा कि कोर्ट ने इनके पर्टिकुलर जो एलिगेशन इन पे लगाए गए हैं उस बारे में इंडिविजुअली क्या कहा।
1: बिल्कुल साक्षी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम अपने दर्शकों को जो लगातार अभी जो टीवी स्क्रीन पे जुड़े हैं हमारे साथ वो उनको बता दें कि एक बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है दिल्ली दंगों को लेकर। अंकित शर्मा की हत्या के मामले पर सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा दिल्ली की कोर्ट द्वारा सुनाई गई है। अंकित शर्मा हत्याकांड में अभी भी बड़ी खबर, आपको बता दें कि दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसमें ताहिर हुसैन के साथ बाकी दोषियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एक बड़ा मामला, आपको बता दें ताहिर समेत सभी पांच दोषियों को उम्र कैद की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। और आईबी अधिकारी की 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसी के बाद से ये मामला चल रहा था। अब कोर्ट ने उस मामले पर फैसला सुनाया, कोर्ट ने ना सिर्फ इन सभी पांच लोगों को दोषी पाया बल्कि आज इनकी सजा का ऐलान भी कर दिया गया। इनको ताहिर हुसैन के साथ साथ बाकी पांचों जो अक्यूज थे उनको लेकर कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एक और बात बताइए, क्योंकि आप अभी क्या इन दोषियों के वकील की तरफ से क्या कहा गया, क्या ये ऊपरी अदालत में हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को चैलेंज कर सकते हैं सजा को, या कुछ इनकी तरफ इनके वकील की तरफ से क्या कहा जा रहा है? और आपको बता दें कि 2020 के दिल्ली दंगों में इस मामले पर आईबी अधिकारी की हत्या के मामले में आज दिल्ली की अदालत ने सभी पांच दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोषी ताहिर हुसैन के साथ साथ बाकी के पांच दोषियों पर भी उम्र कैद की सजा दिल्ली कोर्ट ने सुनाई। चलिए रणभूमि में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
5: To right field, and it will leave.
4: From the first pitch of the season to the stretch run.
5: And that's the ball game.
4: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आगे आगे
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: In association with
4: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sarah Sanitaryware, it's your moment of Sarah.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: और चलिए एक बार फिर से रणभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए आपको एक बड़ी खबर आपको बता दे जो दिल्ली से आ रही है। अंकित शर्मा केस में, मर्डर केस के अंदर हत्याकांड में एक बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां पे दोषी ताहिर हुसैन के साथ साथ पांचों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान अंकित शर्मा जो एक आईबी के अफसर थे, उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही ये मामला इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। और इसमें दोषी पाए गए हैं ताहिर हुसैन और उनके साथ पांच और दोषी, जिनको उम्र कैद की सजा दिल्ली की निचली अदालत ने सुनाई है। बता दें कि 2020 में उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, उनकी बॉडी कई दिनों के बाद मिली थी, जिसके बाद से ही लगातार इन्वेस्टिगेट किया गया। और उसके बाद ताहिर हुसैन के साथ साथ कई और लोगों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। मामले की जो कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई चली, और अब कोर्ट की तरफ से इसी महीने इनको दोषी पाया गया था। और आज इनकी सजा का ऐलान भी किया, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये पांचों लोग दोषी हैं और इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार उनके वकील की तरफ से इन्हें कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सजा की बात कही गई थी, लेकिन अब कोर्ट ने इनकी सजा, इनको दोषी पाने के साथ साथ इनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़े। अरविंद, आपको याद होगा ये मामला बहुत हाई प्रोफाइल मामला था। कहा गया था कि देखिए, जानबूझकर इनको आइडेंटिफाई करने के बाद इनको मारा गया, अंकित शर्मा को, और अब कोर्ट की तरफ से इनको दोषी माना तो गया, लेकिन इन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले को आप बहुत करीब से देखते आए हैं, क्या कुछ इनपुट था खासतौर पर जब इनकी हत्या की गई थी? उससे पहले भी आईबी की तरफ से कहा गया था कि देखिए कैसे इनको निर्मम बर्बरता की तरह इनको मारा गया, क्या कुछ कोर्ट में इसको दिल्ली पुलिस ने प्रूफ किया है?
2: देखिए, जब कोर्ट ने दोषी ठहराया था ताहिर हुसैन को, तब सख्त टिप्पणी की थी। हालांकि उस मामले में कुछ लोगों को, चूंकि एविडेंस नहीं थी, उनको बरी भी किया था, लेकिन ताहिर हुसैन समेत कुछ आरोपियों को दोषी माना था और आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अगर बात की जाए इस पूरे हत्याकांड की, तो दंगे के दौरान सुमित, जब ये पूरा वहां पर दंगा चल रहा था, उस दौरान भी मैंने ताहिर हुसैन से बात की थी, तब वो कहीं ना कहीं झूठ बोलता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद आज तक की टीम सबसे पहले ताहिर हुसैन के घर पर पहुंची थी, जहां पर पेट्रोल बम की बोतलें, ईंटें, पत्थर वो सब थे। बड़ी बेरहमी से अंकित शर्मा की घेर करके, खींच करके हत्या की गई थी, किडनैपिंग की गई थी। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, इस मामले में दिल्ली पुलिस के पास एक एविडेंस भी लगा था, जब अंकित शर्मा को घसीट कर कुछ आरोपी लेकर जा रहे थे। और इस मामले में अलग अलग धाराओं में दिल्ली पुलिस ने उस दौरान FIR दर्ज की थी, और उसके बाद पूरे मामले की जांच की, लंबी जांच की, और उसके बाद सबूत जुटाए। और उसमें जो सबसे बड़ा सबूत था वो वीडियो एविडेंस, जिसमें अंकित शर्मा को घसीट कर कुछ आरोपी लेकर जा रहे हैं। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी सुमित, वो बेहद दिल दहला देने वाली थी। जो बुरी तरह से अंकित शर्मा पर हमला किया गया था, और चाकुओं से हमला किया गया था, कई वार किए गए थे, और उसके बाद उनकी हत्या की गई थी, और उसके बाद लाश को छुपाने की भी कोशिश की गई थी। और उस मामले में ताहिर हुसैन समेत जो आरोपी थे, उनको अदालत ने दोषी माना था, और साथ ही साथ ये बताया भी था कि भड़काऊ नारे लगा रहे थे, और भीड़ का जो नेतृत्व है वो ताहिर हुसैन कर रहा था, और उकसाने पर अंकित शर्मा की हत्या की गई थी। तो अब बड़ा फैसला आया है इस मामले में, और अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, लेकिन बड़ा फैसला आया है, और अदालत ने ताहिर हुसैन को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अरविंद ओझा हमारे सहयोगी जुड़े थे, जो बता रहे थे कोर्ट ने कई ऐसे साक्ष्य दिल्ली पुलिस की तरफ से रखे गए, जिसमें दिखाया गया कि कैसे बर्बरता से न सिर्फ इस हत्या को अंजाम दिया गया, बल्कि लगातार दिल्ली दंगों के दौरान ये सभी दोषी जो थे वहां पर पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे, उसको इंस्टिगेट कर रहे थे। चले खबरों के सिलसिले में अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान अब एक और बड़ी बर्बादी के रास्ते पर निकल पड़ा है।
3: खैबर में खतरा, पीओके में घमासान, बगावती तेवर दिखा रहा बलूचिस्तान, मुश्किलों में फंसा मुनीर का आतंकिस्तान, आत्मघाती हमलों से हो रहा भारी नुकसान, अपने ही खोदे गड्ढे में गिर रहा पाकिस्तान। शांति दूत बनने के टूटे अरमान, गृह युद्ध की ओर बढ़ा पाकिस्तान।
4: जख्मी कर दिया है ये यहूदी।
3: हर मोर्चे पर मात खा रहा है पाकिस्तान। लोग सेना के जुल्म सितम से परेशान हो चुके हैं। उन्हें सरकारी भाषण नहीं सुविधाएं चाहिए, उन्हें गोलियां नहीं बिजली पानी और रोजगार चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार और मुनीर की सेना कत्लेआम में लगी हुई है।

0: एक के बाद एक नई मुसीबत, शहबाज शरीफ की सरकार और आसिफ मुनीर की फौज के लिए ये मुसीबतें बढ़ती जा रही। एक तरफ आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान पूरी तरीके से मात खा चुका है, तो दूसरी तरफ अपने खोदे हुए आतंक के गड्ढे में खुद ही गिरता जा रहा है। खैबर से लेकर बलूचिस्तान और पीओके से की सेना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। खैबर के हुंगू में के अंदर पुलिस पोस्ट पर हुए हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 28 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। उधर पीओके में भी जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन लीग की सेना के जुल्म के खिलाफ आक्रामक रुख इख्तियार कर लिया है। हजारों लोग मुजफ्फराबाद मार्च कर मुनीर की रातों की नींद उड़ाने लग गए। पीओके में पाकिस्तान सेना के जुल्मों को लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही और ये दुनिया तक पहुंच रही। बेकसूर महिलाओं तक को नहीं बख्शा जा रहा, उन पर गोलियां चलाई जा रही। इन सब के बीच पाकिस्तान की बर्बादी वाला बयान आया वहां के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की ओर से। आखिरकार उन्होंने भी मान लिया है कि इतने दशकों में पाकिस्तान ने कोई तरक्की नहीं की है और आगे भी करने की उम्मीद नहीं। आखिर क्यों उन्होंने ये बयान दिया और इस बयान के मायने क्या निकलते हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यानी आपको ये खबर भी दिखाएंगे और आपको विस्तृत रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन इसी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो आपको बताएंगे पाकिस्तान के ताजा हालात कैसे हैं। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में लगातार औपचारिक रूप से ये संकेत दिया है कि वो अगले साल यानी 2027 में इस्लामाबाद में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शिखर सम्मेलन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान सवाल के जवाब में कहा कि SCO के सभी सदस्य देशों को सम्मेलन में आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने साफ किया है कि इसमें सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के प्रमुख शामिल होंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत भी आमंत्रित देशों में रहेगा। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि SCO की प्रक्रिया और प्रोटोकॉल के तहत मेजबान देशों के लिए सभी सदस्य देशों को आमंत्रित करना उसका दायित्व है और इस दौरान भारत के विदेश मंत्री अजय शंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच मनीला में आसियान बैठकों के दौरान संभावित मुलाकात को लेकर भी सवाल पूछा गया। इस पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें भारत की ओर से ऐसी किसी बैठक के अनुरोध की जानकारी नहीं है। और पाकिस्तान के जो बदतर हालात हैं वो अब किसी से छिपे हुए नहीं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि गृह मंत्री मोहसिन नकवी को सार्वजनिक तौर पर स्वीकारना पड़ा कि उनका मुल्क सालों में बर्बाद हो चुका है और कई साल तक ऐसा ही रहने के अनुमान भी है। शरीफ सरकार में अहम ओहदे पर बैठे नकवी ने इस बयान को लेकर पाकिस्तान में बवाल मच चुका है। मीडिया से लेकर विपक्षी दलों तक ने उन पर सवालों की बौछार कर दी है। क्या पाकिस्तान में सेना की भागीदारी बढ़ने की भूमिका तैयार की जा रही है? आखिर एक के बाद एक मंत्री ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं और बड़े बदलाव की जरूरत क्यों पड़ रही है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
1: बर्बाद था पाकिस्तान, बर्बाद है पाकिस्तान, बर्बाद होगा पाकिस्तान। कल तक ये पूरी दुनिया कहती थी, चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, जानता पाकिस्तान भी था लेकिन मानता नहीं था। अब उसने मानना भी शुरू कर दिया है, सबके सामने ये स्वीकारना शुरू कर दिया है। आम आदमी तो पहले से तभी जुबान में कहता था, अब गृह मंत्री मोहसिन नकवी जैसों ने भी सार्वजनिक तौर पर कहना शुरू कर दिया है कि हम बर्बाद हो रहे हैं और हमारा कुछ नहीं हो सकता। आप भी सुनिए पाकिस्तान के गृह मंत्री का ये बयान।
2: आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे, इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। आप एक चीज जो 70 साल से घसीट रहे हैं, मैं आज भी कहूंगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूं और रहूंगा, लेकिन जमहूरियत के अंदर भी तो 3-4-5 किस्म के निजाम है, खाली एक निजाम तो मौजूद नहीं है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह का मर्जी हो जाए, हमने इसी को घसीटना है, इसी को चलाना है, चाहे हम 14 मिलियन कि बाहर से एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स ले आए, चाहे हम अपना एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए भी गंदम बाहर से ले आए, चाहे जो मर्जी आप कहें, हर एक ने अपनी अपनी चीजें बताई।
1: मोहसिन नकवी अब जो अपने मुल्क की बर्बादी का रोना रो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो ये भूल गए हैं कि सरकार उनकी है, सेना उनकी है, लेकिन सच ये है कि दोनों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को पालने पोसने पर लगा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया तक उनसे यही सवाल पूछ रही है कि आखिर एक जिम्मेदार ओहदे पर रहते हुए इतने सालों से वो क्या कर रहे हैं।
3: सेनेट की वोट के लिए सियासी जमातों से भीख मांग के फैसल वाडा की तरह इलेक्ट होते हैं, सेनेट में आते हैं और आज लेक्चर दे रहे हैं कि छोटे सूबे होने चाहिए। मुल्क का निजाम जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब ये निजाम नहीं चल सकता। तो भाई आप पिछले डेढ़ दो साल से क्या कर रहे हैं? अगर ये निजाम खत्म हो चुका है तो आप घर जाएं, आप वजीर दाखिला हैं, आपका जो अपना काम है वो तो आप कर नहीं रहे। लॉ एंड ऑर्डर की हालत देख लें मुल्क की क्या है, क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनी भी करनी है, फिर वजारत खारजा और सफारतकारी भी करनी है आपने, और फिर आके आप सूबों के ऊपर बात कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं सियासतदानों के और लोगों को कि जी छोटे सूबे बनाने बहुत जरूरी है, ये निजाम ऐसे नहीं चल सकता। आप किस हैसियत में ये बातें कर रहे हैं?
1: शहबाज शरीफ सरकार में एक से बढ़कर एक मंत्री हैं और उनके बयान न सिर्फ पाकिस्तान की जग हंसाई कराते हैं बल्कि उनके दबे हुए नापाक मंसूबों को भी दुनिया के सामने लाने का काम करते हैं। एक तरफ मोहसिन नकवी पाकिस्तान की बर्बादी का ऐलान कर रहे हैं तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ लोकतंत्र के मुखौटे को खुद उतारने में लगे हैं। वो साफ संदेश दे रहे हैं कि जल्द ही हाइब्रिड मॉडल आएगा, यानी अब सत्ता में सेना की भागीदारी होगी, पार्टियों को कमजोर किया जाएगा और सेना को और ताकतवर बनाने का इंतजाम किया जाएगा।
4: ये हाइब्रिड सिस्टम जो है ये चीजें पॉसिबल करेगा, ये मुमकिनात में ये चीजें हाइब्रिड सिस्टम के जरिए आएंगी। ये पीएमएलएन या मैं या शहबाज शरीफ या कोई बंदा इसको अकेला सॉल्व नहीं करेगा। ये हाइब्रिड सिस्टम की सक्सेस, द ग्रेटेस्ट सक्सेस जो होगी ये होगी कि इस मुल्क में एक रोबस्ट सिस्टम लोकल गवर्नमेंट का हो, इसमें जो है वो सूबे जो है वो मल्टीपल जो है उनकी मल्टीप्लाई करें, ज्यादा हो, 15 हो, 12 हो, 20 हो, जितने भी हो, ये तो कंसेंसस से होगा ना। ये एक्सरसाइज इमीडिएटली शुरू हो जानी चाहिए और ये 4-5 महीने के अंदर ये एक्सरसाइज जो है ना ये खत्म हो जानी चाहिए। फिर ये जो एक नया निजाम आएगा जिसके अंदर जो है लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी अपना एक वेट रखेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है वो भी अपना वेट रखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिवली।
5: अल्हम्दुलिल्लाह दिया आपने कहा एक्चुअली जिसको लोग घबराते हैं हाइब्रिड निजाम, एक्चुअली हाइब्रिड निजाम ही गारंटी है कि पॉलिटिकल कंसेंसस हो जाएगा डेमोक्रेटिक पार्टीज में निजाम को रिटूट करने का।
4: मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: पाकिस्तान बर्बादी की राह पर इतना आगे बढ़ चुका है कि विकास की राह पर लौटना अब उसके लिए मुमकिन नहीं है। राजनीतिक फैसलों पर फौज की पसंद हावी हो रही है, खैबर से लेकर बलूचिस्तान और पीओके में सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, आत्मघाती हमलों में पाकिस्तानी सैनिक और पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, मुनीर की सेना के जुल्मों के खिलाफ लोग महीनों से सड़कों पर हैं और बगावती सुर अब हिंसक होने लगे हैं, लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं और जगह जगह सेना के साथ लोगों की झड़पें हो रही हैं। जाहिर है मुल्क के ये हालात किसी गृह युद्ध से कम नहीं है और मुनीर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आज तक ब्यूरो।
0: वैसे तो पाकिस्तान की ये हालत कोई नई हालत नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान के लिए ये एक स्थायी सिस्टम बन गया है जहां पे पाकिस्तान में बगावत की आवाज ऐसे ही खड़ी होती रहेगी, लेकिन आर्मी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए रणभूमि में आज वक्त है छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: पहाड़ों पर कुदरत का कहर जारी, भारी बारिश और लैंडस्लाइड से उत्तराखंड में हड़कंप, पहाड़ों से मलबा आने से यमुनोत्री हाईवे बंद। देवभूमि उत्तराखंड इस वक्त मानसूनी आफत का सामना कर रही है। लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड के चलते लोग काफी परेशान हैं। उत्तरकाशी से लेकर बागेश्वर तक बारिश और हादसों ने हड़कंप मचा कर रखा हुआ है। ये तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है, जहां पहाड़ों से मलबा आ जाने के बाद यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही बंद पड़ गई है। वहीं गंगोत्री हाईवे पर भी जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैफिक में काफी परेशानी हो रही है। उत्तरकाशी ही नहीं, बाकी इलाकों में भी बारिश से बुरा हाल है। ये तस्वीर बागेश्वर की है, जहां लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़कों पर पानी नाले की तरह बह रहा है, लोगों के घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। जहां एक तरफ बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में खासी तैयारियां की जा रही है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने के चलते कहीं कोई हादसा ना हो जाए, उसके लिए SDRF की टीम ने मॉक ड्रिल कर तैयारियों को परखा। उत्तराखंड से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
4: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
3: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
4: They score!
3: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस अट्रोसिटी हुई, उन पर पेलेट गन चलाया गया, ये आप फोटो देख रहे हैं। एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पेलेट से एक आंख में पेलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे।
1: नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु है उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं।

0: एंटी पेपर लीक कानून पर संसद की मुहर लग गई, लेकिन संसद के भीतर सबसे ज्यादा गूंजा एक मुद्दा, पैलेट गन। विपक्ष ने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार किया गया। सरकार ने जवाब दिया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो जरूरी था वही किया गया। सड़क पर शुरू हुआ विवाद अब संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों के दरवाजे तक पहुंच चुका है।
1: लाठी चार्ज कराने के लिए, आंसू गैस करने के लिए, छोड़ने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? कौन लाठी चार्ज का आदेश दिया, आंसू गैस का दिया और पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए आदेश कौन दिया?
0: विपक्ष ने सरकार से सीधा सवाल पूछा, अगर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके खिलाफ पैलेट गन चलाने की नौबत क्यों आई?
2: He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot.
3: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे?
4: किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया?
5: हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, वो आदेश कहाँ से आया?
6: इंडिया लाइन से ये पैलेट गन तो आपने ही कश्मीर में शुरू किया।
0: लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, गौरव गोगोई और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा, तो सरकार ने भी विपक्ष के आरोपों को राजनीति करार दिया।
7: लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
8: झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से?
9: आंदोलन में कोई गोली नहीं चली।
0: 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आरोप लगा। पहले दिल्ली पुलिस ने ऐसी खबरों को फेक न्यूज बताया, लेकिन बाद में संसद मार्ग थाने की डायरी एंट्री सामने आई जिसमें वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने का जिक्र मिला। इसी खुलासे के बाद सियासत और तेज हो गई। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पैलेट गन चलने के आरोप लगे। 22 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने दावों को बताया फेक न्यूज। 23 जुलाई को MLC में पैलेट इंजरी का जिक्र। 24 जुलाई को राहुल गांधी ने घायल छात्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 24 जुलाई को RAF ने आंतरिक जांच शुरू की। 26 जुलाई को राहुल गांधी ने अमित शाह को पत्र लिखा। 28 जुलाई को पुलिस रिकॉर्ड में पैलेट गन इस्तेमाल की पुष्टि। CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का बयान भी चर्चा में आया। स्थापना दिवस पर जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश हित में बिना डरे अपना कर्तव्य निभाइए, बाकी मैं देख लूंगा। पूरे विवाद में CJP के संस्थापक अभिजीत दिबके भी खुलकर सामने आए हैं। उनका सवाल है कि क्या प्रदर्शन करने वाले छात्र आतंकवादी थे जो उनके खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। पूर्व IPS अधिकारी यशोवर्धन आजाद, प्रशांत कुमार सिंह और घायल इरशाद मंसूरी समेत याचिकाकर्ताओं ने पैलेट गन पर रोक लगाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि पैलेट गन के इस्तेमाल की मानक प्रक्रिया यानी SOP क्या है। हिमांशु मिश्रा, पीयूष मिश्रा के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।

दिल्ली दंगे में सजा का ऐलान। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत सभी 5 दोषियों को उम्र कैद। जज ने कहा समाज को झकझोरने वाला अपराध।

विपक्ष के नॉनस्टॉप हंगामे के बाद संसद सोमवार तक स्थगित। चढ़ावा चोरी पर पुजारी के भेष में पप्पू यादव का अजीबोगरीब प्रदर्शन, स्पीकर ने जताई नाराजगी। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर। 5 साल के लिए बढ़ाई गई पीएम किसान योजना। खेलो इंडिया के लिए भी 29,000 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी।

0: में बोले सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके, पेपर लीक रोकने में बिल नाकाफी, उपद्रव के लिए बीजेपी आरोपी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूँ साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। जंतर मंतर में आंदोलन, उसके बाद मांग, और उसके बाद आश्वासन का और मांग पूरी होने का, एक बिल पास होने का एक पूरा चक्र अब पूरा हो चुका है। 28 जून से करीब 20 दिन तक पूरी तरीके से नजरअंदाज रहने के बाद सीजेपी का आंदोलन आखिरकार 20 तारीख को यानी 20 जुलाई को परवान पर चढ़ा, और उसके बाद जो देश ने देखा वो सब लोग भौचक्के रह गए, क्योंकि सरकार को उनकी बातें आखिरकार माननी पड़ी। एक के बाद जो मांगे उन्होंने सरकार के सामने रखी, वो सारी मांगे सरकार को एक के बाद एक माननी पड़ी। सबसे पहले तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद रील बनाकर इस चीज का ऐलान किया था, जहां 3 महीने में अदालत से फैसला आना अनिवार्य कर दिया गया। फिर अंतर्राज्य संगठित पेपर लीक की जांच के लिए एसटीएफ बनाने का अधिकार केंद्र को दे दिया गया। लीक प्रूफ परीक्षा के सुझाव के लिए नंदन नीलंकनी की अध्यक्षता में 6 सदस्यों वाली एक हाई पावर कमेटी भी बना दी गई। एनटीए के 47 ठेके वाले कर्मचारियों को हटा दिया गया। उच्च शिक्षा सचिव तक को बदल दिया गया, नए 2 शिक्षा सचिव जारी कर दिए गए, और आखिरकार शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा, नए शिक्षा मंत्री को पदभार सौंपना पड़ा। लेकिन इन सभी सख्त प्रावधानों वाला एंटी पेपर लीक कानून बनने के बाद भी देश के नौजवानों की मांग अभी तक खत्म नहीं हो रही है। उनकी ये मांग है कि पेपर लीक कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। पीएम मोदी ने कल रात एक बार फिर भरोसा दिलाया है कि किसी भी पेपर माफिया या प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह को, जो देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, किसी भी कीमत पर उनको बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कानून का वादा पूरा कर दिया गया है, और पीएम ने देश के होनहार युवाओं की मेहनत की सुरक्षा का वादा भी किया है। लेकिन न तो विपक्ष और न तो सीजेपी को भरोसा है कि इस पेपर लीक कानून का कोई फायदा होगा, ये कोई कारगर साबित होगा, ये कोई कारगर उपाय के तौर पर देखा जाएगा। तो आखिर इस कानून के बावजूद इतना अविश्वास क्यों है? पेपर लीक रोकने के लिए सीजेपी सरकार से और क्या उम्मीदें लगाकर बैठी हुई है? क्या सीजेपी के चार्टर पर मोदी सरकार अभी और एक्शन लेगी? क्योंकि तमाम मुद्दे अभी भी बाकी है। तमाम संभावनाओं पर, सवालों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके के साथ जो मैंने बातचीत की और कुछ सवाल मैंने उनके सामने रखे, उन सवालों पर क्या उन्होंने कहा वो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, और उसके बाद उन्हीं जवाबों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि अभिजीत दिपके ने मेरे सवालों के क्या। पहला सवाल तो यही रहेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा लोकसभा और राज्यसभा में पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पारित हो चुका है, ये बिल को लेकर आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि इस बिल की जरूरत थी, या आपको जो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कड़ा कानून बनाया हुआ है, प्रावधान कड़े किए हुए हैं, 2024 के प्रावधान थे वो और भी कड़े किए हुए हैं, और ऐसे में पेपर लीक को रोकने में वो कामयाब हो पाएंगे, आपको लगता है कि ये बिल काफी है?
1: सर, मैंने जितना समझा इस बिल को उससे मुझे ये समझ में आया, ये बिल पेपर लीक रोकने के लिए नहीं है, पेपर लीक होने के बाद क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए। क्योंकि सारी बातें वही चल रही है, जेल को 4 साल से बढ़ाकर 10 साल का कर दिया, पेनल्टी बढ़ा दी है, तो कहीं ना कहीं सरकार अज्यूम करके चल रही है पेपर लीक तो होने वाला है, उसके बाद हम क्या करेंगे। हमारी जो डिमांड थी, जो आंदोलन था, वो इसलिए था कि पेपर लीक ना हो, और ये सारा बिल का फोकस जो है वो इस पर है कि पेपर लीक होने के बाद सरकार क्या क्या कदम उठाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे बस बिल को लेकर नहीं, जो लोग सरकार में बैठे उनके इंटेंशन को लेकर भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि जैसे कल प्रधानमंत्री ने बोला, वैसे उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में बोला था, और कई सारे लोग उस पर भी खुश हो गए थे कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी, अब क्यों आप लोग प्रोटेस्ट करो,
0: 3 महीने के भीतर चार्जशीट फाइल होकर उस पर कार्रवाई होगी,
1: और लोग हमें तब भी बोल रहे थे आप क्यों प्रोटेस्ट करो, आप तो कॉल ऑफ कर दो। लेकिन हमने देखा पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ, पहली हियरिंग पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का जो काउंसिल था वो प्रेजेंट नहीं था। तो आप लॉज कितने भी बना लो, कुछ भी कर लो, जब आपका इंटेंशन ही उतना डिटरमाइंड नहीं हो आप इंटेंशनली, सो आई डोंट थिंक एनी थिंग कैन बी कॉन्क्रीट हियर। तो सरकार को जो है फोकस करना चाहिए कि पेपर लीक ना हो, वो फोकस सरकार का अभी नहीं है। पेपर लीक हो जाएगा तो फिर वही चीजें होगी, फिर से स्टूडेंट्स का फ्यूचर अफेक्ट होगा, फिर से जो है आपको री एग्जामिनेशन करवानी पड़ेगी, और उस बीच में फिर से और कितनी जाने जाएगी। मंत्री बना हम कैसे कोई चॉइस देते, हमारी सरकार
0: आपके दिमाग में कोई
1: नहीं, मेरे दिमाग में तो कोई नहीं था, मेरे दिमाग में तो बस यही था कि धर्मेंद्र प्रधान डजंट डिजर्व टू बी द एजुकेशन मिनिस्टर, बट मुझे ये नहीं पता था कहीं से भी आइडिया कि एक ये लोग एक रेपिस्ट के सपोर्टर को एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे। और भी लोग थे यार दूसरों को बना देते, बट सही बात है, इनके पास जो पूल है वो सारा गुंडों का ही पूल है, वो सारा ऐसे रेपिस्ट लोगों का वेलकम करने वाला ही पूल है, तो लोग ही जब इनके पास ऐसे तो ये भी क्या ही करेंगे।
0: ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, जो भी बीजेपी करेगी आपको पसंद नहीं आएगा, जो भी ये सरकार करेगी पसंद नहीं आएगा, और सरकार भी इसी बात को
1: आगे। आप मुझे बताइए, एज अ जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, अगर आपसे कोई इंटरनेशनली आप इंटरनेशनली जाओगे, आपसे कोई पूछेगा इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर ने रेपिस्ट का वेलकम किया है, आपको पसंद आएगा वो? इजंट इट शेमफुल सर? मतलब कोई ऐसा तो ढूंढते ना जिसने ये हरकत तो नहीं करी होगी, इससे कैसे कोई खुश हो सकता है सर? मतलब हम देखते हैं हर एग्जाम्स में रातों रात सरकार बदलनी है, गिरानी है, एमपीज खरीदने, एमएलएस खरीदने, तो तब नॉर्म्स नहीं देखे जाते, तब जो 10th स्केड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो देखा नहीं जाता है, सारे नॉर्म्स, सारे रूल्स, सारे जो गाइडलाइंस, सारे रूल बुक सिर्फ लोगों के लिए, जनता के लिए, इन लोगों के लिए सारी खुली छूट है।
0: तो इसका मतलब ये कि आपको लगता है कि सरकार आपके दबाव में कदम तो रखने की कोशिश करिए, आप सरकार को वो भी उम्मीद नहीं रखते? आप सरकार
1: नहीं कदम रखा है, आई एम वेरी ग्लैड। और जो प्रधानमंत्री पिछले 10-12 साल से बस हिंदू मुसलमान का डायलॉग कर रहे थे, हिंदू मुसलमान के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे थे, आप देख रहे हो पिछले 4-5 दिनों में वो इंस्टाग्राम पर एजुकेशन के ऊपर रील्स डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस देश के स्टूडेंट्स जो है, यूथ जो है, जेंजी जो है, उन्होंने फोर्स किया है प्राइम मिनिस्टर को, जो प्राइम मिनिस्टर इतनी ज्यादा हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स से प्यार करते थे, उनको फोर्स किया है कि शिक्षा पर बात करो, एग्जामिनेशन पर बात करो। सो दिस इज अ वेरी बिग एंड मेजर विक्ट्री फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने स्टेप्स क्या लिए, जो नया एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, ही वॉज सीन सपोर्टिंग द रेपिस्ट ऑफ बिल्किस बानो, उनका स्वागत करने में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है।
0: हम तो वो कह रहे थे कि ये कानूनन पॉसिबल है, यानी उनको जो छोड़ना है वो कानूनन पॉसिबल।
1: और जो सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, नया सेक्रेटरी जो बना है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो खुद करप्शन में इन्वॉल्व रह चुके पहले, एनिमल वेलफेयर उनका कुछ था, उसमें कितने सैकड़ों हजारों करोड़ का उन्होंने स्कैम करा है। तो ये तो एक तरीके से एक खराब इंसान को हटाकर दूसरे खराब इंसानों को ये रिवॉर्ड कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे।
0: जो पुल उनके पास है उसमें से
1: एग्जैक्टली मैं कल वही
0: ब्यूरोक्रेसी उनके पास है, जो चुने हुए लोग हैं उनमें से
1: मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी में और भी अच्छे लोग होंगे।
0: कौन आपकी चॉइस कौन थी मंत्री बनाने के लिए?
1: मंत्री बना हम कैसे कोई चॉइस देते, हमारी सरकार?
0: आपके दिमाग में कोई
1: नहीं? नहीं मेरे दिमाग में तो कोई नहीं था, मेरे दिमाग में तो बस यही था कि धर्मेंद्र प्रधान डजंट डिजर्व टू बी द एजुकेशन मिनिस्टर।
0: एक दूसरा मुद्दा इसमें पार्लियामेंट के भीतर बहुत चर्चा में आ रहा है, वो पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर, और राहुल गांधी की मांग को आप सपोर्ट कर रहे हैं कि अमित शाह गृहमंत्री की इस्तीफे को लेकर जो कांग्रेस पार्टी की मांग है उसको आपकी तरफ से सपोर्ट किया गया है, क्या इस पर एक बार दोबारा आंदोलन होगा? क्योंकि अभी वन ऑफ द थ्री डिमांड जो आपकी तरफ से रखी गई थी उसमें यह था कि जो मामले दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाए, बिहार में लिए गए, महाराष्ट्र में घोषणा कर दी गई और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, दिल्ली में ये कहा गया है कि हम जो प्रोटेस्टर्स थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये उन्होंने कहा। लेकिन क्या आपकी मांग पूरी हुई है इस पूरे मामले को लेकर, और जो गृहमंत्री के इस्तीफे को लेकर राहुल गांधी जो कह रहे हैं?
1: मुझे लगता है कि ये सरकार को इस मिसअंडरस्टैंडिंग या डिल्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि एक मंत्री के इस्तीफे के बाद गुस्सा ठंडा हो चुका है। इस डिल्यूजन में ना रहे सरकार, लोगों में अभी भी बहुत गुस्सा है, और वो गुस्सा सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ नहीं था, पूरी सरकार के खिलाफ था। तो अगर ये लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे या नहीं अभी भी नहीं स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे या हैरेस करते रहेंगे और जो ब्रुटैलिटी करी उसके बाद ये गुस्सा और बढ़ा, तो ये गुस्सा शांत नहीं हुआ। तो अगर ये लोग जो स्टूडेंट्स है, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, उनके खिलाफ केसेस वापस नहीं लेते तो यस वी विल हिट द स्ट्रीट्स अगेन, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बनेगा।
0: कोई टाइमलाइन है आपके पास?
1: हम बता देंगे उस पर, अभी हम उम्मीद करते ये लोग मान ले बातें, नहीं मानते तो
0: उम्मीद क्या है? सरकार की तरफ से कोई बयान आना चाहिए इस पर?
1: ऑफ कोर्स रिटर्न में आना चाहिए कि जितने भी पीसफुल प्रोटेस्टर्स है, जितने भी स्टूडेंट्स है, उनके सभी के ऊपर के जो भी केसेस लगेंगे वो हम वापस लेंगे, एंड दे शुड एंश्योर कि इसके बाद किसी भी स्टूडेंट को हैरेस नहीं किया जाएगा पुलिस के द्वारा। पुलिस ने ऑलरेडी बहुत खून बहा दिया है 20 जुलाई को, शायद से उससे उनका मन नहीं भरा है। और अमित शाह का तो मुझे समझ नहीं आता, लाइक व्हाट इज ही आफ्टर, डज ही वॉन्ट टू किल द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया? मतलब बिहार में AK-47 फायर कर दी गई, दिल्ली में पैलेट गन्स यूज कर लिए गए।
0: सरकार की तरफ से यह कहा गया है, दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ 2638 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है सीसीटीवी में, जो हिस्ट्री शीटर्स हैं जिनके खिलाफ।
1: तो ये बाहर क्यों थे
0: हिस्ट्री शीटर्स? जो बेल पर बाहर होंगे,
1: किसकी गलती है?
0: केसेस चल रहे हैं,
1: किसकी गलती है? हिस्ट्री शीटर्स अगर क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे थे, इसमें गलती किसकी है? पुलिस की है। पुलिस किसके अंडर काम करती है? अमित शाह के अंडर।
0: उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीजेपी की नहीं है, प्रोटेस्टर्स की नहीं है।
1: जो स्टूडेंट
0: वो आपके प्रोटेस्ट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे ऐसा आपको
1: मुझे लगता है ये डेलिबरेटली प्लान किए गए हुए लोग थे जो मैं पहले से कह रहा था, ये मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ, मैं इस प्रोटेस्ट के स्टार्टिंग से कह रहा था, ये डेलिबरेटली प्लान किए गए हुए लोग हैं। और मैं बार बार बोल रहा था कि बीजेपी वाले कुछ गुंडे भेजेंगे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए, और वही हुआ। 19 जुलाई की रात को पत्थरों से भरे ट्रक रखे जाते दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर मंतर के आसपास। अब जंतर मंतर इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया, सेंट्रल दिल्ली में आता है जहां पर पत्थर दिखाई भी नहीं देते, वैसे जंतर मंतर के पास पत्थरों से भरे ट्रक कैसे आ जाते रातों रात। और उस पत्थरों से भरे ट्रक के पीछे एक टूटी हुई वैन खड़ी रहती जो कम्प्लीटली डैमेज है, पुलिस ने खड़ी रखी। जब मैंने ट्वीट डाला उस पत्थरों से भरे ट्रक और उस वैन का, तो जो वहां पर डीसीपी थे उन्होंने हमारी टीम को बुलाया और कह रहा अभिजीत ऐसे ट्वीट क्यों डाल रहा है यार, ये तो एनडीएमसी का ट्रक है, एनडीएमसी का ट्रक है जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वो उसका डेब्रिस है सारा। और जो कल रिपोर्ट आई है उसमें ये पता चला है कि वो ट्रक हरियाणा का था, वो एक रोड एक्सीडेंट में पकड़ा गया था, रोड एक्सीडेंट में पकड़ा गया था और फिर पुलिस ने कहा था कि इसको खाली करवा दिया गया था। तो खाली करवा दिया था तो फिर पत्थरों से भरकर फिर से जंतर मंतर के पास कैसे?
0: फिर जो विजुअल्स दिखाए गए और जिसपे दिखाया गया कि पुलिस को मारा गया, क्योंकि एक पिटीशन आपके तरफ से हुई सुप्रीम कोर्ट के
1: लिए सर,
0: एक पिटीशन उन पुलिस वालों के घर वालों की तरफ से एक पिटीशन की गई सुप्रीम कोर्ट पर, कहा गया कि हमें भी ब्रुटैलिटी से मारा गया प्रोटेस्ट के वक्त पे, उनके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उस बात को लेकर
1: मैं कह रहा हूँ ये ऑर्केस्ट्रेटेड था बीजेपी द्वारा। और मैं पुलिस वालों को भी ये कह रहा था कि मुझे आपके लिए बुरा लगता है, आप पत्थरों से भरे ट्रक वहां लगा देते हो, उन्हीं पत्थरों से आकर बीजेपी के गुंडे।
0: तो जो पुलिस वालों को पीटा गया उसमें सीजेपी या उनके समर्थकों का कोई लेना देना?
1: कोई लेना देना नहीं सर।
0: समबड़ी प्लांटेड इट,
1: प्लांटेड इट नॉट समबड़ी, द बीजेपी प्लांटेड इट। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, द बीजेपी प्लांटेड इट। हम एक महीने से सर प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक महीने में तो कुछ नहीं हुआ। अगर हमारे प्रोटेस्टर वायलेंट होते या हमारे प्रोटेस्टर को ऐसा कुछ करना होता, एक महीने में क्यों नहीं हुआ, उसी दिन क्यों हुआ? और हमने देखा है सर, लाठियां जो लोग गुंडे थे जो पुलिस वाले भी नहीं थे उनके हाथ में बैटन्स दी गई थी, लाठियां दी गई थी, उसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो इन लोगों के पास लाठियां किसने दी? पुलिस की लाठियां थी वो, जो ट्रांसपेरेंट लाठियां होती है ना उनकी, वो गुंडों के हाथ में थी और वो स्टूडेंट्स को पीट रहे थे, पुलिस के साथ मिलकर पीट रहे थे, तो उनके पास लाठियां कैसे चली गई? हु गिव देम द अथॉरिटी टू बीट स्टूडेंट्स?
0: आपके आंदोलन के समय भी, मतलब आप जो सीजेपी का जो आंदोलन चल रहा था उसमें आम आदमी पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, इस तरीके से बातें हो रही थी, तो क्या सपोर्ट था उनका? नहीं था? वो भीड़ में आम आदमी पार्टी के भी लोग थे, उन्होंने भी आपका एक आंदोलन खड़ा करने में मदद की नहीं की?
1: सर मुझे लगता है इसका आंसर आपको सबसे बेस्ट अनुजा देगी, जो आपकी खुद की रिपोर्टर है, वो वहां पर एक हफ्ता थी।
0: बट वो कैसे पहचानी कि आम आदमी पार्टी का है कि
1: नहीं? उन्होंने क्राउड देखी है ना, उन्होंने क्राउड देखी है, उन्होंने सवाल पूछे होंगे कहां से आए कहां से नहीं, इतना तो रिपोर्टर्स करते ही है। तो उस आंदोलन में मैं हर रोज एक चीज पूछता था, कितने लोग पहली बार प्रोटेस्ट में आए? 70-80% लोग हाथ उठाते थे, इसका मतलब 70-80% जो क्राउड है वो कम्प्लीटली एपॉलिटिकल थे, जिसका दे वर नॉट इवन इन्वॉल्व, पॉलिटिकल पार्टी तो छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी वो इन्वॉल्व नहीं होते थे। सो क्राउड जो था वो कम्प्लीटली एपॉलिटिकल था, एंड दोज वर स्टूडेंट्स जो बिहार झारखंड मध्य प्रदेश तमिलनाडु केरला यहां से आ रहे थे। और मुझे लगता है अगर आम आदमी पार्टी जितना मोबिलाइजेशन 20 जुलाई को हो चुका था उतना कर पाती सर, तो पूरे देश में सरकार नहीं होती। तो ये जो एलिगेशन से
0: आप तो सरकार बनाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे, किसी बात को लेकर
1: इसलिए नॉर्मल पब्लिक जुड़ी हुई थी। और रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की, तो मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए जिसने हमें सपोर्ट नहीं किया बीजेपी को छोड़कर, एक पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए।
0: बीजेपी तो सरकार में है ना, वो तो आपके मांगों पर काम।
1: एकनाथ शिंदे के जो एमएलए थे वो भी हमसे मिलने आए थे,
0: वो तो आंदोलन के बाद मिलने
1: पर आए थे, इसका मतलब सपोर्ट करते हैं मुद्दों का, मुद्दों के ऊपर सपोर्ट है।
0: झारखंड के भीतर पेपर लीक हुआ है जेपीएससी का, पंजाब के भीतर पेपर लीक है, महाराष्ट्र में पेपर लीक है, कर्नाटक में पेपर लीक है, हर जगह जाके आप वही मांग रखेंगे कि हमारे मंत्रियों का इस्तीफा, वहां के मंत्रियों का इस्तीफा होना चाहिए?
1: सर जहां जहां एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की जरूरत होगी, जहां जहां कहीं पर भी एग्जामिनेशन में कुछ गलत होता है, एजुकेशन सिस्टम में गलत होता है, वी विल गो देयर सर, बिकॉज द पीपल हैव होप्स फ्रॉम अस नाउ। क्योंकि पहले ही प्रोटेस्ट में हमने डिलीवर कर दिया, तो अब लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई है। सो इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी विल ट्राई टू फुलफिल इट एज मच एज पॉसिबल।
0: नहीं बट कोई तो तीन पॉइंट आपने बनाए होंगे कि इन मुद्दों पर अब मैं आगे
1: अभी जो है एजुकेशन का ये पैन इंडिया है, सबसे ज्यादा बिहार झारखंड,
0: किसी की भी सरकार हो कहीं भी,
1: किसी की भी
0: पार्टी की सरकार,
1: किसी की भी सर, आम आदमी पार्टी हो, एजुकेशन इज वन इशू दैट अफेक्ट्स एवरी सिटीजन।
0: हो गया एजुकेशन,
1: यस
0: ठीक है। दूसरा
1: अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी बिग कंसर्न, मतलब जंतर मंतर पर जो भीड़ थी आपने देखी होगी कि बस स्टूडेंट्स नहीं थे, बहुत सारे लोग थे जो 26 27 साल के ऊपर के थे, 35 के ब्रैकेट तक बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो वो अनएम्प्लॉयड लोग थे सर। और कहीं ना मतलब अनएम्प्लॉयमेंट तो हो ही गया, लेकिन एक चीज है और एक मैंने नोटिस करी है थ्रू आउट दिस प्रोटेस्ट, लोगों का इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम से भरोसा उठ चुका है, फिर वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, जुडिशरी हो, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो, लोगों को ऐसा लग रहा है हम वोट किसी को भी दे दें, क्या फर्क है, क्या पॉइंट है उसका, जब वोट किसी को भी दे रहे हैं वो जाकर कल बीजेपी ज्वाइन कर ले रहा है, तो वो ट्रस्ट फैक्टर है ही नहीं है लोगों का, ये बहुत बड़ा ग्रज है।
2: अभिजीत देव के नेता बन गए
1: अभी? नहीं सर, मैं यही ठीक हूँ अभी, लेकिन अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली
2: कंधे पर उठा,
1: मैं इसके खिलाफ हूँ सर, मैं इसके खिलाफ हूँ। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट और नॉट, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, और कल मैं इंस्टाग्राम
2: नेता बनने में बुराई क्या है?
1: बुराई कोई नहीं है, बात यह है कि लोग जो नेता मानते हैं।
0: तो इस इंटरव्यू की बड़ी बात, अभिजीत दिपके ये कह रहे हैं कि जो बिल लाया गया है उससे पेपर लीक नहीं रुकेगा, पेपर लीक होने के बाद अपराधी पकड़े जाएंगे, यानी पेपर लीक रोकने की जो उनकी मूलभूत मांग है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, उसके लिए सरकार क्या करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल उनके मन में है और बाकी भी सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ के शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, उनसे इस बारे में सवाल पूछेंगे। अतुल लोंडे पाटिल कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से और नवल शर्मा जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल होंगे। शुरुआत के शर्मा जी आप ही से, जो बिल पास किया गया लोकसभा राज्यसभा, प्रधानमंत्री ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी रखी और कहा कि अब इसके बाद पेपर लीक, जो भी पेपर लीक पे पाया जाएगा उसको कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन जिस आंदोलन के आधार पर यह बिल बनाया गया था उस आंदोलन के संस्थापक वो इससे खुश नहीं है, वो कहते हैं कि इससे पेपर लीक नहीं रुकेगा, सिर्फ पेपर लीक के बाद आप कार्रवाई करें।
3: देखिए साहिद जी, अभी आपने जो इंटरव्यू दिखाया और जितनी बातें उसमें अभिजीत दिपके ने कही, वो सारी की सारी आरोप हैं, कोई तथ्यात्मक बातें पूरे इंटरव्यू में मैंने एक भी नहीं आई, यदि आपके पास हो तथ्य तो मुझे रखिएगा। दूसरी बात, सीजेपी क्या है? सीजेपी एक काकरोच जनता पार्टी है, एक राजनीतिक दल है जो अभी अभी बना है। ये इन्होंने छात्रों का मुद्दा लिया, ये छात्र नहीं है, पहले एक क्लियरिटी रहनी चाहिए, ये काकरोच जनता पार्टी है सर, और छात्रों का पेपर लीक का मुद्दे को इन्होंने लिया, और अभी ये कह रहे थे कि उसमें कोई राजनीतिक दल नहीं है। अरे तू तो आप तो खुद ही एक राजनीतिक दल हो भाई। अब जब सारे दल देश के अपने विश्वसनीयता खो चुके हैं तो सबने मिलकर इनको सपोर्ट किया, कांग्रेस पार्टी हो आम आदमी पार्टी हो, विश्वसनीयता कैसे खोया, लगातार चुनाव हार रहे तो विश्वसनीयता समाप्त हो गई दलों की, ये मान लिया इन लोगों ने।

0: करते हुए
1: किसी से भी सवाल पूछने की कोई जरूरत कभी महसूस नहीं हुई है। मैं ऊपर से टपका हुआ एंकर नहीं हूं, मैं नीचे से यहां पर आया हुआ एंकर हूं, तो मुझे पता है कि क्या सवाल पूछने हैं। और आपका भी आंदोलन हमने कवर किया हुआ, आज कांग्रेस जनता पार्टी का भी आंदोलन कवर होगा, तो मेरा सवाल आप सुन लीजिएगा। जो ओरिजिनल मेरा सवाल था उसका आपने जवाब नहीं दिया। सवाल मेरा ओरिजिनल ये था कि कांग्रेस जनता पार्टी जिसके आंदोलन के आधार पर आपकी सरकार ने यह बिल पारित कराया, आपकी सरकार ने कहा कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, अब देखिए बिल पारित हो गया है, एक बड़ी मांग हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस जनता पार्टी उस पर यह कहने की कोशिश कर रही है कि भाई इस बिल का कोई मतलब ही नहीं है, हमारी मांग तो पेपर लीक रोकने को लेकर है, हमारी मांग तो एनटीए में मूलभूत सुधार करने को लेकर है, हमारी मांग तो इस बात को लेकर है कि आप जिम्मेदारी फिक्स करिए एनटीए के भीतर की किसकी जिम्मेदारी होगी, लेकिन जो बिल पारित किया है उसके मुताबिक उन लोगों पर कार्रवाई होगी जो पेपर लीक करेंगे, और उसके बाद उनको 5 की जगह पे 10 साल की सजा हो जाएगी, 1 करोड़ की जगह पे क्या 10 करोड़ उनसे वसूल कर लिए जाएंगे, या जो भी है 3 महीने में उनको सजा का प्रावधान आपने कर लिया है। तो उनका यह कहना है जो मुख्य प्रश्न है उस पर सरकार ने अभी तक कुछ काम नहीं किया, इसका जवाब मुझे चाहिए, उसके बाद अतुल लोंडे पार्टी।
2: देखिए मैं आपका सम्मान करता हूं साहिल जी, मैं राहुल गांधी नहीं हूं जो ये कहूं कि आप बीजेपी के पत्रकार हैं क्या, जैसा आज भी उन्होंने पत्रकारों से कहा है। मैं आपका अपमान नहीं कर रहा, मैं तो बस इतना कह रहा हूं आपके बहुत से प्रश्न होंगे, मैं फिर भी इसका जवाब दे देता हूं। देखिए आपने कहा हमने पेपर लीक न हो इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाया, हमने एक टास्क फोर्स भी बनाया, हमने कानून भी कड़े किए हैं, कड़े कानून करके लोगों में जो लोग इस तरह के कृत्य में इन्वॉल्व होते हैं उनको डर हो भय हो, इसका हमने भरसक कोशिश किया, हमने बहुत परिवर्तन भी किया है, हमने कई ट्रांसफर किए हैं, कई तरह के उसमें एक्शन किए हैं, जो टास्क फोर्स का सुझाव आएगा उसके आधार से हम उसको चेंज भी करेंगे, राधाकृष्ण कमेटी के जो सुझाव आए उस सुझावों को भी हमने इम्प्लीमेंट किया है, बहुत हद तक कुछ रह गए हैं वो भी हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब ये कांग्रेस के झूठ पे मत फंसिएगा कि कुछ नहीं किया है, नहीं तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का आर्डर वो भी दिखाना पड़ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में बात कोर्ट बकायदा एफिडेविट देके कही गई है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, ये सारी प्रयास सरकार कर रही है, अब आप संतुष्ट हैं असंतुष्ट हैं किन कारणों से हैं, किन राजनीतिक दलों के आप एजेंडे पर खेल रहे हैं, किन राजनीतिक दलों से आप मिले हुए हैं, ये सारी चर्चाएं भी हैं सर, ये आप जानिए। आप जो है हमें छात्रों के लिए करना है, हमें छात्रों के लिए काम करना है, हमें राजनीतिक दलों के लिए नहीं करना है, और खासकर जिस ढंग से वर्तमान में अराजक तत्व की स्थिति बन गई है, राजनीतिक दल संसद में अराजकता के दूसरे स्वरूप बन गए, उनको हमको संतुष्ट नहीं करना है सर। ये तो शुरू से 2024 से लगातार ये संसद को क्या बनाने की कोशिश किया है कांग्रेस पार्टी ने, आज क्या किया गया, आज जो है संसद के प्रांगण में
1: के लिए
2: संसद
1: के प्रांगण में आप छात्रों की मांग होगी तो उस बात को लेकर बिल पारित किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी।
2: करते हैं साहिल जी मुझे बोलने दीजिए, साहिल जी मुझे बोलने दीजिए, इस बात को मुझे पूरा करने दीजिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं उठा रहा हूं। आज आप क्या कर रहे हैं, आज आप संसद के प्रांगण में राहुल गांधी ये मदारी का खेल देख रहे थे क्या, ये सनातन धर्म का अपमान कर रहे हो एक साधु के का वेश बना के, ये काम ये तीनों लोग मिलके खड़गे साहब हो प्रियंका गांधी
1: अलग से चर्चा होनी है,
2: ये सनातन विरोध में चाहे वो सदन में चर्चा करते समय चाहे खड़गे साहब ने कल वेद का जो है गलत उल्लेख करके सनातन धर्म के
1: कम से कम अभी
2: आप इतने नीचे गिर जाएंगे,
1: आपकी आपकी
2: आप जो है सदन को
1: आपकी भूमिका का नहीं आपकी भूमिका का सम्मान है, आपकी भूमिका का सम्मान है, लेकिन हमारा विषय विद्यार्थियों को लेकर है और उन विद्यार्थियों को जिन्होंने सड़क पर उतारा और उस उतरने के बाद जो बिल पारित हुआ और उसको लेकर जो मुद्दा खड़ा कर दिया गया उस पर हमारा विषय है। इसीलिए अतुल लोंडे पाटिल जो सरकारी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बिल पारित किया है उससे पेपर लीक रोकने में हम कामयाब हो जाएंगे, क्या आप इसे सही मानते हैं या अभिजीत दीप के जो सवाल उठा रहे हैं उसके साथ आप खड़े यहां पर?
3: ओडिशा में आज मेडिकल पीजी का पेपर लीक हो गया, अब बताइए, अब इन्हें संसद में विपक्ष को संतुष्ट नहीं करना है, इनके तो बाप इजराइल है और संतुष्ट इनको ट्रंप को करना है, तो इनका बराबरी है ना, अहंकार जो है हर बात से छलकता है, लोकतंतर में विपक्ष को नहीं करना है इनको संतुष्ट, क्योंकि विपक्ष लोगों के मुद्दे उठा रहा है, तो उनको मैं बीच में नहीं बोला शर्मा।

0: शर्मा जी आपने जो बोलना था बोला, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला।
1: मैं
0: जिन्होंने
1: इजराइल को बाप बनाया आई सर,
0: और ट्रंप को संतुष्ट करने के लिए जो काम कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। और अभी और अभी और अभी और जो ट्रेड डील आने वाला है,
1: बीच में नहीं बोला मैं, बीच में नहीं बोला, हंसी आ गई।
0: मैं बीच में नहीं बोला,
1: मैंने
0: मुझे बात करने दीजिए ना। देखो मैं सच बोल रहा हूँ तो आपको डर लग रहा है। अरे क्यों चिढ़ रहे भाई, क्यों चिढ़ रहे भाई, इतनी चिड़चिड़ाहट, इतनी बौखलाहट क्यों है? सच कह दिया क्या मैंने?
1: मुझे तो हंसी आ रही है यार।
0: सच कह दिया ना,
1: मुझे तो हंसी आ रही है।
0: रावण की तरह हंस रहे हो, रावण भी आया था भगवा कपड़ा पहन के।
1: कहां छात्र, कहां ट्रंप,
0: कैसा है साहिल?
1: कहां छात्र,
0: साहिल ऐसा है कि जिस तरह से
1: क्या भगवा कपड़ा बोला इन्होंने?
0: साहिल मुद्दे पर आवाज डाउन करो तभी मैं बात कर पाऊंगा।
1: साहिल जी थोड़ा क्लियर नहीं,
0: मैं मुद्दे पर ही हूँ, मैं मुद्दे
2: आप बात करो,
0: तो मुझे दो
2: बात करो,
0: मुद्दे पर
2: नहीं, तो जो मुद्दा जो हाँ बीजेपी ने जो मुद्दा उठाया उस पर हम पूछेंगे। क्या आपको लगता है कि ये बिल पेपर लीक रोकने में कामयाब हो पाएगा?
0: देखो नीति और नियत की बात जो आती है वो चाल चरित्र चलन से भी रिफ्लेक्ट होती है। इन्होंने जोशी जी को सेक्रेटरी पद से हटाया, वहां किसको लाया? गंगवार को लाया। ये गंगवार वो व्यक्ति है जिसने खीरे की 125 करोड़ की सब्सिडी जो है अपने ही परिवार को लोगों को दे दी, जिस तरह से मोहन यादव ने अपने ही परिवार को भोले के जमीन बेच दी, खुद ही ने खरीद ली। तो ये जो है नीति नियत का खेल जो है स्पष्ट तरीके से दिखता। उसी तरीके से जिस तरह से अयोध्या के चढ़ावा चोरी का SIT का चीफ जो है विजय विश्वास पंत, उसके ऊपर 420 की केस दाखिल है, 455 की केस दाखिल है, उसको बना दिया SIT का चीफ। किसका? तो चंपत राय, जो उसने चोरी की है उसको उनकी इंक्वायरी करने के लिए। तो ये सारा जो नीति नियत का खेल जो है स्पष्ट तरीके से सामने आता, क्योंकि आज उड़ीसा में भी मेडिकल PG का पेपर लीक हो गया, व्हाट्सएप पे पेपर सबको मिल गया। तो ये खत्म नहीं होने वाला सिलसिला इसलिए क्योंकि कानून कितना भी आप गहरा कर लो, आपने 3 साल का 5 साल कर लिया, 1 करोड़ का 10 करोड़ कर लिया, जो भी कर लिया, फास्ट्रैक कोर्ट में क्या किया? फास्ट्रैक कोर्ट में बिल में दिया है कि हर स्टेट में एक फास्ट्रैक कोर्ट होगा, और फास्ट्रैक कोर्ट क्या है, तो जो पुराने केसेस है वो भी उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, वो भी उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। और पहले ही दिन नीट का जो चल रहा हियरिंग था उसमें CBI का वकील हाजिर नहीं था, जबकि देश के प्रधानमंत्री ने रात को 12 बजे क्लोजअप सेल्फी लेके छात्रों को आश्वासित किया था
2: अभिजीत दीप के अपने इंटरव्यू में ये भी कह रहे हैं,
0: दिन रात अधिकारियों ने
2: किसी को बख्शा नहीं जाएगा,
0: कोर्ट का काम किया।
2: झारखंड में भी पेपर लीक जो हुआ है उसके खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे। हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि बिहार और झारखंड में शिक्षा को लेकर जिस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है शिक्षा को, खास करके उस पर हम ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे, और जिस किसी की भी सरकार उनके खिलाफ हम आंदोलन खड़ा करेंगे अगर
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
2: पेपर लीक वहां पर होता है और अगर शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तो आपकी भी सरकार ऊपर ध्यान रहेगा, वो कह रहे हैं वो इस बात
0: बिल्कुल। शिक्षा बिल्कुल साहिल, शिक्षा जो है वो मूलभूत तत्व है किसी भी देश का तरक्की करने का या पीछे रहने का। अब आप सोचिए जिस शिक्षा प्रणाली में RSS के लोग घुसकर पीरियोडिक टेबल हटा देते हैं, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हटा देते हैं, चैलेंजेस अगेंस्ट डेमोक्रेसी जो ऐसे ऐसे चैप्टर्स को हटा देते हैं, तो उनकी मंशा दिखाई देती है। अब कोई भी गलती करे तो कठोर से कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। अब नीति नियत की बात तीसरी है, और एक अहम मुद्दा रख देता हूं। अहम मुद्दा यह है कि किस जोशी को आपने NTA का चेयरमैन बनाया? वो जोशी जो व्यापम के फ्रॉड में था, वो जोशी जिसके सामने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चेयरमैन थे, वो पब्लिक सर्विस कमीशन के, वहां बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुए, उसी को लाके आपने बिठा दिया चेयरमैन। तो कैसे मान ले कि आप जो कानून है उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन करोगे ढंग से? कानून तो बना लोगे आप, कानून तो आपने कड़ा कानून महापाप था 2024 में बना लिया था, फिर संजू मुखिया कैसे छूट गया? CBI ने दिया ना क्लोजर रिपोर्ट?
1: नहीं नहीं, मुझे एक छोटा सा
2: क्या कारण है कि अभी भी विद्यार्थी सरकार के
1: छोटा सा
2: आपके सहयोगी काउंटर नहीं कर सकते? वो बेचारे इंतजार कर
1: छोटा
2: रहे हैं।
1: छोटा सा
2: आपके सहयोगी NDA के
1: नहीं, वो भी काउंटर इन्होंने हम पे प्रश्न किया है सर,
2: छोटा
1: नहीं इन्होंने हम पे प्रश्न किया है तो हमसे आपका
2: NDA के साथ ही है ना,
1: छोटा सा काउंटर देता हूँ।
2: JDU आपकी सरकार में नहीं है? नहीं, JDU आपके सरकार में नहीं। अच्छा चलिए,
1: मैं दो जवाब दे रहा हूँ सर,
2: तो
1: बिल्कुल
2: तो इस बात का भी,
1: लेकिन उन्होंने
2: इस बात का भी काउंटर दे दीजिएगा,
1: बात करने दीजिए। हाँ, मैं दो
2: इस बात का भी काउंटर दे दीजिएगा, इस बात का भी काउंटर दे दीजिएगा कि एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि जो हुड़दंगी थे वहां पर, जो चार्जशीटर वहां पर आए थे, वो बीजेपी के तरफ से जानबूझकर वहां पर भेजे गए थे आंदोलन को बदनाम करने के लिए, बहुत बड़ा आरोप लगाया गया, उसका भी काउंटर दे दीजिएगा। और फिर आशुतोष वर्मा जी के पास चलूंगा फिर।
1: चलिए बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा सर, बिल्कुल आप निश्चिंत रहे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के जो है प्रवक्ता बहुत चिंता कर रहे हैं, मैं ट्रंप की चर्चा नहीं करता सर, ये छात्र और ट्रंप कहां है, इस तरह के कुतर्क नहीं आते मुझे। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, दो दिन चर्चा हुई साहिल जी सदन के अंदर, और इतनी विस्तृत चर्चा हुई, कांग्रेस पार्टी ने क्या सुझाव दिए? देश के प्रतिपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी है ना। राहुल गांधी का पूरा भाषण निकाल लीजिए,
0: प्रधानमंत्री
1: प्रियंका गांधी का पूरा भाषण निकाल लीजिए, और एक मुझे भाई अभी अभी अभी भाई प्लीज, मैंने आप बोला था, आपने इतना प्रश्न किया, मुझे बोलने तो दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ
3: साहिल जी,
1: राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के दोनों भाषण का आप विश्लेषण कर लीजिए साहिल जी, और आप ही बता दीजिएगा कि क्या सुझाव उन्होंने दिया इस कानून के संदर्भ में? कोई एक सुझाव दिया? नंबर वन,
0: मैं जवाब देता हूं सुझाव का।
1: दो दिन चर्चा हुई सर्वसम्मति पूरी पूरे उसमें इन्होंने भाग लिया, और जब वोटिंग का समय आया, जब पास करने का, कांग्रेस वॉकआउट कर गई। ये संवेदनशीलता थी कांग्रेस की कि आप उस बिल को पारित भी नहीं करने के लिए अपना मत दिया आप लोग, इसका मतलब आप छात्रों से कितने संवेदनशील है। तीसरी बात, अभी ये बार बार विनीत जोशी और फलाने क्या क्या जोशी के घट बता रहे हैं, अरे साहब आपका नेता जो है ना राहुल गांधी, वही भ्रष्टाचार में जेल से बेल पर है, उससे बड़ा कोई दागी होगा? उसको आपने नेता प्रतिपक्ष बना रखा है, दूसरे की बात कर रहे हो अधिकारियों की,
2: अब सिर्फ इसी पर चर्चा होगी।
1: माँ बेटे दोनों जेल से बेल पर,
2: जो आरोप ये लगाते हैं उस पर आपके नेताओं पर अब इसी पर चर्चा होती
1: है।
2: ये
4: साहिल के केस खारिज हो चुका है,
1: साहिल जी आपको सुनिए,
4: बार बार वही बात बता रहे थे,
3: इनके ही साहिल जी आपने मेरा समय के शर्मा जी को दे दिया,
1: खारिज एक बात बनता
4: नहीं है,
1: चार बार माफी मांग चुका बनता नहीं है तुम्हारा,
4: ये तड़ी पार
1: चली
2: जरा दोनों को शांत करिएगा, दोनों को शांत करिएगा। देखिए नवल शर्मा जी शिकायत कर रहे हैं, के शर्मा जी आपका आपने उनका समय ले लिया, यही होता है, आप बीजेपी के पार्टनर है, मैं उनको पूछा था लेकिन वो आपको समय देने के लिए तैयार नहीं, मैं क्या कर सकता हूं? नवल शर्मा जी जवाब दीजिए मुझे इस बात का जो मैंने बीजेपी को पूछा है, सीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, उसी सवाल का जवाब चाहिए मुझे, आरोप लगाया जा रहा है कि हुड़दंगियों को सरकार के तरफ से जानबूझकर वहां पर भेजा गया था आंदोलन को बदनाम करने के लिए, और हर आंदोलन के साथ वही होता है, फिर वो जेपी का नवनिर्माण का आंदोलन हो, अन्ना हजारे का आंदोलन हो, या आज जो सीजेपी का आंदोलन हुआ, यह उनका कहना था, क्या लगता है आपको?
3: जी जी, देखिए मैं आपके पूरे डिस्कोर्स को बड़े ध्यान से सुन रहा था, बस मैं एक और आपकी अनुमति से एक और सवाल का जवाब देना चाहूंगा, जो दीपके जी ने कहा कि यह कानून पेपर लीक को नहीं रोकेगा, तो पहले जरा मैं दो लाइन इसके बारे में बोल दूं कि अगर यह कानून पेपर लीक को नहीं रोकेगा तो देश में हत्या का कानून बना हुआ है, देश में हत्या का कानून बना हुआ है, कोई भी कानून अपराध होने के बाद ही लागू होता है, तो इस तर्क के हिसाब से देश में हत्या का कानून खत्म कर देना चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह कानून हत्या को रोक नहीं पाता है, तो ये कौन सा तर्क हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि देश में हत्या अपहरण बलात्कार इन सारी बुराइयों से लड़ने के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो सारे कानून चूंकि अपराध होने के बाद लागू होते हैं इसलिए उनके तर्क के हिसाब से सारे कानूनों को खत्म कर देना चाहिए। आप तो बड़े समझदार और सुधी एंकर हैं, आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, और देश की जनता भी बड़ी समझदार है। दूसरी बात यह कि यह केवल कानून नहीं बनाया गया है,
2: आपका तर्क ठीक है, आप नहीं नहीं मैं सिर्फ एक बात बताता हूं, आपका तर्क ठीक है कि कोई भी कानून उस जो वो घटना घटती है उसके बाद वो घटना ना घटे इसके लिए उस पर सख्त सजा का प्रावधान कैसे करे उसके लिए होता है, लेकिन ये मामला एक संस्था से जुड़ा हुआ है जिस संस्था पर यह जिम्मेदारी है कि परीक्षा ठीक से ली जाए, कोई पेपर लीक वहां पर ना हो और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसीलिए उस संस्था को इस तरीके से चुस्त और तंदुरुस्त बनाना चाहिए उसके सिस्टम को कि उस पर कोई इस तरीके से छेद निकाल ना पाए। अब मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा, चलिए उसके बाद मैं आशुतोष वर्मा जी के पास चलूंगा।
3: जी जी, बस मैं एक लाइन इसका भी जवाब दे दूं कि यह बिल जो है केवल एंटी पेपर लीक तक ही मामला सीमित नहीं है, बल्कि एनडीए सरकार परीक्षा व्यवस्था में जो भी तकनीकी समस्याएं हैं, डिजिटल सुरक्षा से लेकर तकनीकी सुरक्षा से लेकर सारे विषयों पर परीक्षा के सफल संपादन के लिए टास्क फोर्स के गठन से लेकर सारे मोर्चों पर एक साथ काम हो रहा है ताकि पेपर लीक तो नहीं हो और परीक्षा व्यवस्था का भी सुचारू रूप से संचालन हो। लेकिन ज्यादा गंभीर प्रश्न यह है कि टास्क फोर्स के सदस्य आईआईटी के विद्वान प्रोफेसर विपक्ष की निगाहों में गौमूत्र विशेषज्ञ है, यही है शिक्षा व्यवस्था को देखने का इनका नजरिया, और पूरे पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स में विपक्ष ने एक भी सुझाव अपने लिए अपनी ओर से पेश नहीं किया। आपको पता है, बस मुझे एक लाइन बोलने की अनुमति दें।
1: बीजेपी ने पांच सुझावों का चार्टर दिया था, पांच सुझावों का चार्टर दिया था, मैं आपको बता रहा हूं, सीजेपी ने पांच सुझावों का चार्टर दिया था। उस चार्टर पर हम उनसे बात करेंगे, उसके लिए ड्राफ्ट बनाया जाएगा और उसके बाद लगातार उनसे बातचीत करके उससे एक मॉडल बनाया जाएगा। यह बात सरकार की तरफ से कही गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खुले तौर पर जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल बैठा था, उसमें कही गई थी। उस चार्टर की बात ही नहीं हो रही है।
3: नहीं, मैं कांग्रेस और विपक्ष की बात कर रहा हूं, मैं सीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल भी विपक्ष का एक प्रमुख घटक है, और आपको पता है कि पेपर लीक की दुहाई देने वाले लोग बिहार में, लालू यादव जी ने 2015 में कहा था देश की जनता को जानना चाहिए कि अरे मेरी सरकार आएगी तो हम तो किताब दे देंगे, किताब खोलो और जवाब लिखो, ये लीक भी क्या होता है, पेपर लीक क्या होता है। तो ऐसे लोग झूठे आंसू बहा रहे हैं, इनको छात्रों के भविष्य की चिंता है। अगर छात्रों के भविष्य की चिंता होती तो एंटी पेपर लीक बिल को और मजबूत बनाने के लिए ये संसदीय चर्चा से भागते नहीं, अपनी ओर से सुझाव देते और इस बिल को और मजबूत बनाने के लिए
1: अपनी। आंदोलन को बदनाम किसने किया? आंदोलन को बदनाम किसने किया? सीजेपी आंदोलन को बदनाम किसने किया? सीजेपी का आरोप है कि जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश है, किसने बदनाम किया?
3: साहिल जी, मानी हुई बात है कि कोई भी सरकार अपने खिलाफ जाने वाली बातों में कदम कैसे आगे बढ़ा सकती है, सरकार आंदोलन को बदनाम कैसे कर सकती है। इस बात को देखते हुए कि एनडीए सरकार की शुरू से मान्यता रही है कि राष्ट्र छात्र हमारी राष्ट्रीय पूंजी है, छात्र हमारी राष्ट्रीय पूंजी है, तो छात्रों के उज्जवल भविष्य का निर्माण छात्रों
5: के मिल रहे
3: हैं। आइए ना बिहार में, बस बिहार में देखे थे साहिल जी, अगर बात खुलेगी तो मैं बताऊंगा।
5: नहीं नवल जी,
3: बिहार में
5: नवल जी, ये आरोप किसने किया? पाकिस्तान परस्त आंदोलन है, बिहार किसने किया? ये चाइना परस्त आंदोलन है,
3: बेसिर पैर
5: किसने किया? बाहर से पैसा फंडिंग हो रहा है, सब बीजेपी के लोगों ने किया है।
3: बेसिर पैर का आरोप मत लगाइए, बिहार में प्रदर्शनकारी कई सारे ऐसे थे, ये तो कांग्रेस के डंडे, कांग्रेस जिनके हाथों में कांग्रेस के डंडे थे और उन डंडों में कील लगे हुए थे, तो बिहार में आप लोगों ने छात्र आंदोलन किया है जो अराजकता का खेल खेला, उसे सारे लोगों ने देखा।
5: इसका बताओ बीजेपी ने क्यों कहा?
3: अरे चाइना से फंडिंग आपकी होती है और पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है कि आप चाइना के मित्र हैं, चाइना के प्रति आपके मन में सहानुभूति है, और डोकलाम विवाद से लेकर कई सारे
1: कोई भी आंदोलन इस देश में,
5: छात्र देख रहे हैं बीजेपी जेडीयू,
1: जरा एक मिनट रुकिए, सबको रुकिए,
3: छात्र देख रहे हैं।
1: अतुल लोंडे और जेडीयू के प्रवक्ता, आप दोनों को मुझे एक बात कहनी है। छात्र देख रहे हैं कि जब झारखंड में आंदोलन हो रहा है तो कोई भी राजनीतिक दल वहां पर खड़ा नहीं हो रहा है जो आज यहां पर बातचीत कर रहे हैं। छात्र देख रहे हैं कि बिहार में जब पेपर लीक हो रहा है तो वहां पर जाके कोई आंदोलन करने की कोशिश नहीं कर रहा है। आज सीजेपी आंदोलन कर रही है तो सब बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आशुतोष वर्मा, कितने संतुष्ट हैं आप इस बिल से, नंबर एक? और नंबर दो, जो आरोप बार बार लगाया जा रहा है कि आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है, ये बात सही है क्या?
6: सर जी देखिए, आंदोलन को किसने बर्बाद किया, ये आपने अभिजीत दीपके के बारे में इंटरव्यू दिया और ये वीडियो सबने देखा कि 19 जुलाई को पत्थरों से भरा हुआ ट्रक जंतर मंतर के वहां पहुंचा जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ये सवाल बड़ा है, ये किसी से छुप नहीं सकता, विजुअल्स वीडियो के साथ में है, कई लोगों के इंटरव्यू थे। सफेद पोश में कई लोग ऐसे थे जो लाठी लेके खड़े थे, जिनके पास ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो पुलिस के हैं, बड़े बड़े बाल, कानों में ईयर रिंग लगा के डेफिनेटली वो पुलिस के लोग तो नहीं लग रहे थे। तीसरा ये भी समझ में आता है कि पैलेट गन चलाने की व्यवस्था किसने दी,
1: ये तो कौन थे?
6: ये भी समझ में आता
1: कौन,
6: है
1: कौन थे? कौन थे? आरोप सीधा लग रहा है कि नहीं, कौन थे फिर आपको, कौन लगता है कौन थे?
6: इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी आंदोलनों को खराब करने के लिए अपने ही भेजे हुए गुंडे किए हैं। आप याद कीजिए, इसके पहले किसान आंदोलन को इन्होंने खालिस्तानी अप्रोच बोला था, आप याद कीजिए, इन्होंने ही बोला था, उसके बाद मोदी जी ने माफी मांगी और 3 कानून वापस दिए। तो आप, और आप फिर या फिर अगर ये
1: वर्मा जी, आशुतोष वर्मा जी,
6: मेरी बात बड़ी देर से मैं आया हूँ,
1: एक एक अगर ये आपका नहीं नहीं हो हो नहीं आप आप आप कोई सवाल पूछ रहा हूँ, आप कोई सवाल पूछ रहा हूँ, अगर ऐसा है आप तो सीधे बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। अगर अगर ऐसा है पवन शर्मा जी, एक मिनट पवन शर्मा जी, एक मिनट, अगर ऐसा है आशुतोष वर्मा जी, तो क्यों अगर उनके खिलाफ FIR दर्ज करके सरकार कार्रवाई करना चाहती है तो ये मांग उठ रही है कि FIR वापस लिए जाए। भाई अगर बीजेपी के भेजे हुए लोग थे, उनके खिलाफ अगर बीजेपी कार्रवाई कर रही है, बीजेपी की सरकार, तो होने दीजिए कार्रवाई, क्यों FIR वापस करने की मांग की जा रही है?
6: बिल्कुल,
1: एक सवाल
6: साहिल जी, साहिल जी बड़ी बात है, सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है जिन छात्रों के ऊपर कार्रवाई की जाई है, जिन्होंने लाठियां मारी उनके ऊपर कार्रवाई की बात नहीं करी है, जो पत्थर लेके आए उसकी बात ही नहीं सरकार कर रही है, जो पैलेट गन चला रहे उनके बारे में बात ही नहीं कर रही है, जो करंट लगा रहे उनके बारे में बात नहीं कर रही है, सरकार शब्दों से खेल रही है, इसलिए सरकार इसी बातें कर रही है। दूसरी बात साहिल जी, अभी 2-3 चीजें मैंने देखी और मैंने देखा कि क्या क्या परेशानियां थी और क्या सुझाव थे। देखिए लगातार 28 जुलाई को जब संसद में एक बात हो रहा था तो अन्य पार्टियों की तरीके से समाजवादी पार्टी ने सुझाव भी दिया और चर्चा में अखिलेश यादव जी ने कहा भी, उनके 5 मुख्य बिंदु थे, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाई जाए, निजी एजेंसियों की भूमिका और उनकी जवाबदेही तय करी जाए। इसकी वजह यह है कि मैं बता रहा हूँ मेरी बात
1: कैसे
6: मेरी बात सुनिए तो सुनिए तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2024 में लीक हुआ, इसको पेपर छापने वाली कंपनी थी एडुटेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जबकि ये ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी। 2017 में बिहार SSC पेपर लीक मामले में इस कंपनी का नाम भी आया था और अभी पता चला है कि ऑल इंडिया के कई एग्जामों को पेपर अभी भी वो छाप रही है। इसी तरीके से महाराष्ट्र TET के पेपर लीक मामले में SIT ने आगरा स्थित प्रिंटिंग प्रेस का नाम लिया और वो आज भी पेपर छाप रही है। तो ये जो प्राइवेट कंपनी है जहां पे छाप रहे हैं ये बड़ी चीजें हैं। इसके बाद जो समाजवादी पार्टी ने कहा कि छात्रों को बार बार परीक्षा रद्द होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इसके लिए सरकार समुचित व्यवस्था करे। दूसरी सरकार केवल सजा बढ़ाने की बजाय
1: सदन के भीतर उस पर कार्रवाई हो नहीं पा रही है, सदन के भीतर उस पर कार्रवाई हो नहीं पा रही है, सदन में सुझावों की बात की जाती है तब मुद्दा कहीं और चला जाता है, तब मुद्दे पर इस मुद्दे पर बात होना शुरू हो जाता है कि आखिरकार सरकार की जो नियत है उस पर सवाल उठाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, विपक्ष का अधिकार है उस बात को लेकर, लेकिन KK शर्मा जी ऐसा क्यों है
6: मैं
1: अभी भी सरकार को लेकर, अगर सरकार करे कि भाई जल्दी से आपकी बात खत्म करिए उसके बाद KK शर्मा जी के पास जाऊंगा।
6: मैं बस 10 सेकंड की बात करना चाहता हूं कि देश में प्रधानमंत्री रात के 12 बजे हेलो फ्रेंड्स कहके एंगल लगा के बोल सकते हैं, छात्रों की बात कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति 34 दिन तक शांत रहा और जब देश में इतना बड़ा बिल आ रहा था तो एक बार भी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि आके अपने सदन में अपने सांसदों की आंख से आंख मिला सके। गृह मंत्री बगल के कमरे में बैठे रहे
1: के KK शर्मा जी आखिर में,
6: तो जब देश
1: का कारण है
6: और प्रधानमंत्री
1: क्या कारण है कि अभी भी आंदोलनकारी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि सरकार का दावा है कि उन्होंने कई कदम उठाए हुए हैं, उसके बावजूद भी सरकार की मंशा पर सवाल क्यों है? क्यों आपको ऐसा लगता है और उसके लिए आप क्या करेंगे? इससे करने
7: मैंने तो डिबेट के पहले ही बता दिया कि वो आंदोलनकारी एक राजनीतिक दल है और आप जो बड़ा एक प्रश्न पूछ रहे हैं बार बार कि इस पूरे आंदोलन को हिंसात्मक किसने किया, अराजक किसने किया, इसका सीधा उत्तर है साहिल जी, आपने तो कवर किया है, ये सारे विपक्षी राजनीतिक दलों ने इस पूरे आंदोलन को हिंसक किया और उसमें तो स्वयं संजय सिंह का बयान है कि मैं उस आंदोलन में था। और
1: आंदोलन की हिंसा को लेकर भी राजनीति, आंदोलन के भीतर हिंसा को लेकर भी एक दूसरे पर आरोप, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी बात अभिजीत दिप्के अभी भी ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का डिस्कोर्स है कि हम अभी भी सरकार के साथ बातचीत करेंगे और जो सुझाव हमने दिए हैं उसमें हल ढूंढने की भी कोशिश करेंगे, उम्मीद उसी बात को लेकर भी है। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
2: The Congress government in the center got rid of its own government because of a series of killings in Punjab, including many prominent people. So things had gone really bad in Punjab.
3: Congress party was trying to say that Akalis have to be defeated. You must not allow some other faction of the Akalis to prop up so that votes are divided.
4: They created this Frankenstein called Bhindranwala.
5: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
6: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
5: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
7: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
5: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
8: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
3: हम छत्रपति संभाजी नगर में हैं और छत्रपति संभाजी नगर का नाम आज पूरे देश में इस वजह से भी जाना जाता है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भी यहीं से हैं. और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अभिजीत दिपके के घर पे हम इस वक्त मौजूद हैं और उस वक्त हम अभिजीत दिपके से बातचीत कर रहे हैं जब सदन के दोनों सदनों में पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पारित हो चुका है, लोकसभा के भीतर भी और कल राज्यसभा के भीतर भी. और कल इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी जारी किया और कहा है कि कैसे सरकार के तरफ से जो विद्यार्थियों की मांग थी उसे तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया गया और एक कड़ा कानून इस पूरे मामले में लाया गया. लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होगी. कौन अभिजीत दिपके से लेकर अभिजीत दिपके तक का यह सफर किस तरीके से रहा और सबसे बड़ी बात अब आगे ये स्टूडेंट एजिटेशन क्या करेगा, कहां यह एजिटेशन जाएगा, सरकार का जो बिल है उस पर उनकी क्या भूमिका रहेगी, तमाम मुद्दे हैं, राजनीति भी है, सब पर बात करेंगे. अभिजीत दिपके, बहुत बहुत शुक्रिया आप आज तक से बात कर रहे हैं.
4: सर,
3: पहला सवाल तो यही रहेगा क्योंकि मैंने जैसे कहा लोकसभा और राज्यसभा में पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पारित हो चुका है, ये बिल को लेकर आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि इस बिल की जरूरत थी या आपको जो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कड़ा कानून बनाया हुआ है, प्रावधान कड़े किए हुए हैं, 2024 के प्रावधान थे वो और भी कड़े किए हुए हैं और ऐसे में पेपर लीक को रोकने में वो कामयाब हो पाएंगे, आपको लगता है कि ये बिल काफी है?
4: सर, मैंने जितना समझा इस बिल को उससे मुझे ये समझ में आया ये बिल पेपर लीक रोकने के लिए नहीं है, पेपर लीक होने के बाद क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि सारी बातें वही चल रही है, जेल को 4 साल से बढ़ाकर 10 साल का कर दिया, पेनल्टी बढ़ा दी है, तो कहीं ना कहीं सरकार अज्यूम करके चल रही है पेपर लीक तो होने वाला है, उसके बाद हम क्या करेंगे. हमारी जो डिमांड थी, जो आंदोलन था, वो इसलिए था कि पेपर लीक ना हो और ये सारा बिल का फोकस जो है वो इस पर है कि पेपर लीक होने के बाद सरकार क्या क्या कदम उठाएगी. और कहीं ना कहीं मुझे बस बिल को लेकर नहीं, जो लोग सरकार में बैठे उनके इंटेंशन को लेकर भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि जैसे कल प्रधानमंत्री ने बोला वैसे उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में भी बोला था और कई सारे लोग उस पर भी खुश हो गए थे कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी, अब क्यों आप लोग प्रोटेस्ट करो,
3: 3 महीने के भीतर चार्जशीट फाइल होकर उस पर कार्रवाई होगी,
4: और लोग हमें तब भी बोल रहे थे आप क्यों प्रोटेस्ट करो, आप तो कॉल ऑफ कर दो. लेकिन हमने देखा पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ, पहली हियरिंग पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का जो काउंसिल था वो प्रेजेंट नहीं था. तो आप लॉज कितने भी बना लो, कुछ भी कर लो, जब आपका इंटेंशन ही उतना डिटरमाइंड नहीं हो आप इंटेंशनली, सो आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन बी कॉन्क्रीट हियर. तो सरकार को जो है फोकस करना चाहिए कि पेपर लीक ना हो, वो फोकस सरकार का अभी नहीं है. पेपर लीक हो जाएगा तो फिर वही चीजें होगी, फिर से स्टूडेंट्स का फ्यूचर अफेक्ट होगा, फिर से जो है आपको री एग्जामिनेशन करवानी पड़ेगी और उस बीच में फिर से और कितनी जाने जाएगी किसी को पता नहीं है.
3: प्रधानमंत्री ने और एक वीडियो जारी किया था, ये कल का वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले जो वीडियो था उसमें उन्होंने कहा था कि कई निर्णयों की श्रृंखला है, उस श्रृंखला में पहला निर्णय फास्ट ट्रैक कोर्ट का और उसके बाद ये बिल लाया जा रहा है. इसका मतलब ये कि और भी निर्णय उसमें हो सकते हैं. जो 5 मांगे सीजेपी की तरफ से मंत्रियों के सामने रखी गई थी उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की भी मांग थी और उसके साथ कुछ
4: एक व्हाइट पेपर आना चाहिए,
3: व्हाइट पेपर आना चाहिए आपने कहा था, उसके साथ साथ आपने ये भी रखा था उसमें कि एनटीए के भीतर सिस्टमैटिक बदलाव किस तरीके से होने चाहिए. उस पर चर्चा कब शुरू होगी आपको लगता है, क्योंकि आपको आपके बोलने से तो लग रहा है कि आप इस बिल से कुछ ज्यादा खुश नहीं.
4: बिल्कुल, तो वही हम सरकार से बात ही कर रहे हैं अभी भी, हम मतलब वी आर ट्राइंग टू आस्क देम कि एक तो कंपनसेशन पर भी अभी तक उन लोगों ने कुछ बोला नहीं है. 1 करोड़ का कंपनसेशन हमने विक्टिम्स की फैमिली को देने बोला था, सरकार ने अश्योर तो किया है कि दे देंगे, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं है. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना डिले क्यों किया जा रहा है, जब रातों रात सरकार बदलनी होती है, रातों रात एमपी एमएलए खरीदने होते हैं, तब आपके सूटकेसेस पहुंच जाते 50-50 करोड़ के, लेकिन जहां पर विक्टिम्स की फैमिली को 1 करोड़ का कंपनसेशन देना है तो सरकार ने अभी तक अनाउंस कुछ नहीं किया.
3: उसके तो कुछ नॉर्म्स होते हैं, सरकार ने उस दिन भी कहा था कि उस नॉर्म्स के तहत हम उनको कंपनसेशन,
4: सारे नॉर्म सर जनता के लिए है, सरकार रातों रात बदलनी है तो कौन से नॉर्म्स होते हैं फिर.
5: हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि कैसे अयोध्या में डकैती पड़ रही है 2020 से, जब से प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बना है तब से डकैती पड़ रही है, और तभी से नहीं पड़ रही है। जो 90 के आंदोलन के समय भी लगभग 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था उसका भी हिसाब किताब पता नहीं है, और ये 100% बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोगों की जेबों में और खातों में जाने लगा यार। और इस बात को लेकर हम विपक्ष के लोग लगातार मांग कर रहे हैं स्पीकर साहब से भी कि हमको चर्चा का मौका दीजिए, और जब तक चर्चा का मौका नहीं देंगे सदन को हम लोग व्यवस्थित नहीं चलने देंगे।
6: चंदा लूट तो यहाँ भी हुआ,
5: वही तो वही वही वही आपके माध्यम से देश का आम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते, अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए हैं।

0: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर।
2: कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है।
3: एंड AK-47 यूज्ड इन
4: भ्रम पैदा करने के लिए सदन का दुरुपयोग किया गया। राहुल गांधी जी को गृह मंत्री ने देश से भी माफी मांगनी चाहिए।
5: बेसिकली वो मिसलेड द हाउस यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह मिसलेड द हाउस। वी आर गोइंग टू मूव ए प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट हिम।
6: आपको 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी।
7: प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ कुछ शरारती तत्व और असामाजिक तत्व भी थे।
8: जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4।
9: छात्रों के साथ और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का या उससे समझौता करने का मौका नहीं दिया जाएगा।
10: फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
11: देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पेपर लीक का बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के पास हो चुका है, लेकिन संसद की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पर संसद को गलत जानकारी देने का आरोप लगाकर विशेषाधिकार हनन का मुद्दा उठाया है। इसे बीजेपी के दाव का जवाब माना जा रहा है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की लोकसभा की स्पीच में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कहे गए शब्दों और दो असंसदीय शब्दों का आरोप लगाकर स्पीकर को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की चिट्ठी लिखी है। सवाल यह है कि पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत का कौन सा चैप्टर अब खुलने वाला है। इस बीच सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान घायल पुलिस वालों के परिवार वालों ने संसद से पूछा है कि हमारा मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता है। मेरे देश की संसद हमारी चोटों पर, हमारे परिवार वालों की चोट पर मौन क्यों है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घायल पुलिस अफसर की पत्नी, एक एसीपी का बेटा, एक और पुलिस अफसर की बेटी ने अपना दर्द बयां किया। सवाल यह है कि क्या राजनीति ने कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट पर सिर्फ एक पक्ष देखा है। ड्यूटी कर रहे घायल पुलिस वालों के गुनहगारों पर बात क्यों नहीं हो रही है। संसद में विशेषाधिकार पर लड़ाई, घायल पुलिस पर चुप्पी, यही आज हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सांसद बीजेपी के आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और रोहित सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट, विशेषाधिकार पर लड़ाई, घायल पुलिस पर चुप्पी।
12: द यूज ऑफ फोर्स कैन ओनली बी ऑथराइज्ड बाय द होम मिनिस्टर।
2: के गोली चली ही नहीं, गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ।
11: पेपर लीक के खिलाफ नए बिल ने संसद की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन लोकसभा में राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह की स्पीच के हिस्से सियासत का नया सवाल बन गए। पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, तो अब केसी वेणुगोपाल ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्पीकर को भेजा है। अनुराग ठाकुर के प्रस्ताव में कहा गया है, रूल 352 का उल्लंघन कर राहुल गांधी ने असंसदीय शब्दों इडियट और अंधभक्त का इस्तेमाल किया। रूल 353 का उल्लंघन कर केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ गंभीर निराधार आरोप लगाए और मोशन से हटकर टिप्पणियां की। राहुल गांधी के खिलाफ आए प्रस्ताव का जवाब माने जा रहे केसी वेणुगोपाल के प्रस्ताव में कहा गया, कोई गोली नहीं चलने का झूठा दावा कर मंत्री ने जानबूझकर संसद को गलत जानकारी दी और सदन को गुमराह किया।
13: मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है, उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल 222 को देखते हुए और रूल 223 और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें।
5: तो वो हाउ कैन ए मिनिस्टर मिसलेड द हाउस लाइक दिस? स्टूडेंट्स नो अबाउट इट, नेशन नो अबाउट इट, नाउ ही इज टेलिंग दिस इज नॉट यूज्ड।
11: पेपर लीक के मुद्दे पर सीजेपी के प्रदर्शन से लेकर संसद तक का संग्राम छिड़ गया। तो उधर अब सीजेपी प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस वालों के परिवार वालों ने अपनी आवाज उठाई है। परिवार वालों का आरोप है कि छात्रों के बीच अपराधी भी थे, पुलिस सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही थी। परिवार वालों ने सवाल किया कि घायल पुलिस वालों पर संसद मौन क्यों है।
6: He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमें हमारे लिए बहुत पेनफुल था।
7: 20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। जो पुलिस कर्मी है और उनके जो परिवार हैं उनके बारे में भी संसद में कुछ मतलब उनके राइट के बारे में या उनकी ड्यूटी पे जो उन पर हमले होते हैं उनके बारे में संज्ञान लिया जाए।
11: पुलिस वालों के परिवार ने गंभीर मुद्दा खड़ा किया है, लेकिन राहुल गांधी से जब इस पर पूछा गया तो उनकी प्रतिक्रिया ये रही।
14: राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
15: बीजेपी का हो गया?
14: नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
16: राहुल जी, जो पुलिस वालों के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पुलिस वालों की आवाज तो उठाइए सर। जो पुलिस वाले बोले वो तो सुनिए सर, एक बार बता दीजिए। पुलिस वाले भी घायल हुए राहुल जी, जो मार्च हुआ था 20 जुलाई को। आप चुप है, आप
11: पेपर लीक के आक्रोश पर राजनीति के पाले खींच गए हैं, ये साफ नजर आ रहा है।
17: देखिए, पुलिस वाले भी इंसान हैं, उनका परिवार भी इंसान है, वो सुरक्षा करते हैं, अपराध नियंत्रण करते हैं, कई बार शहीद भी होते हैं, तो उनके भी मौलिक का अधिकार है ना, आप बताते हैं कि नहीं। तो इस मामले में थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए।
11: पेपर लीक के मुद्दे और उसके बाद प्रदर्शन और सियासत ने एक नई बहस खड़ी की है। उधर नए पेपर लीक बिल को संसद की मंजूरी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने जेएनजी से एक और सीधा संवाद किया।
10: फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ।
11: पेपर लीक की समस्या गंभीर है और सरकार तक ये बात पहुंच गई है। आज तक ब्यूरो। तो सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा जी जुड़ गए हैं, आशुतोष जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ रोहित सिंह जी जुड़ गए हैं। लेकिन शुरुआत सांसद जी आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि आपने राज्यसभा में इस पर बोला भी और बहुत पैशनेट तरीके से बोला, लेकिन ये नोटिस वर्सेस नोटिस की लड़ाई बन गई है। ऐसा लग रहा है बच्चे पीछे छूट गए हैं और आज घायल पुलिस वाले आए हैं, उनके परिवार वाले आए हैं। पुलिस वाले तो खुद वर्दी की वजह से नहीं सामने आ सकते, लेकिन परिवार वाले आए हैं, वो बता रहे कितने टाके सिर में लगे हैं। संसद इस पर मौन क्यों है?
18: देखिए, बच्चे कांग्रेस की स्कीम ऑफ थिंग्स में थे ही कब, जब अनशन चल रहा था 20 दिनों तक, राहुल गांधी जी धरती के किसी अज्ञात कोने पे आनंद मंगल करते हुए विचरण कर रहे थे, एक भी कंसर्न का एक स्टेटमेंट था नहीं। अचानक संसद शुरू होने से 2-3 दिन पहले धरती पे अवतरण करते हैं और प्रधानमंत्री आवास पे जाके लोटपोट होने लगते हैं। छात्रों ने कहा भी कि आइए, जंतर मंतर गए क्या? नहीं गए, कभी प्रधानमंत्री आवास पे गए, कभी गांधी स्मृति में गए, कभी इंदिरा भवन में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनको अपना फुटेज खींचना था, वो बच्चों से कंपटीशन में थे कि कैसे इन्होंने, इनको ज्यादा फोकस मिल गया है तो मैं अपनी तरफ फोकस कर लूं, बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने कभी इस कंसर्न को नहीं उठाया। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरी तरफ हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही थी। सोनम वांगचुक जी का अनशन समाप्त कराने के लिए नड्डा जी, जितेंद्र सिंह जी गए, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की, देर रात्रि में बच्चों के लिए अपना संदेश किया, फिर बिल पास किया कैबिनेट ने और हमने संसद में प्रस्ताव पारित कर दिया, संसद में विधेयक बना दिया। तो अगर देखें तो हमारी अप्रोच अलग थी। इनकी क्या है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया तो ऐसे बच्चे मचल जाते हैं ना, कोई बराबर बोला अरे नहीं नहीं इतना क्रेडिट उनको तो मैं थोड़ी और बड़ी बात करूं, तो अमित शाह जी के बारे में अनाप शनाप अपशब्द करना शुरू कर दिया। अब आप ये बताइए, इडियट शब्द उन्हें स्पष्ट करना चाहिए किसके लिए है। अगर वो कहते हैं कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, तो मैं पूछना चाहूंगा हमारे कांग्रेस के मित्र से कि बाल बुद्धि शब्द को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने असंसदीय घोषित कर दिया था। अब छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य तो राहुल गांधी जी थे नहीं, न वहां भी नाम लिया गया था, तो किस कैपेसिटी में क्या मान के छत्तीसगढ़ विधानसभा ने बाल बुद्धि को असंसदीय घोषित कर दिया था। दूसरी बात, आपने कहा कि गृह मंत्री जी ने बच्चों को मारने के लिए फायरिंग ऑर्डर किया, शूटिंग करवाई। अब शूटिंग का मतलब क्या है, सीधे की मतलब आपने गोली चलवाई, अरे ये तो आप सदन को सीधे मिसलीड कर रहे हैं, इसका कोई आधार होना चाहिए। अब जो कांग्रेस ने दिया विशेषाधिकार उस पर सोचिए क्या मजाक की बात है। वो कह रहे हैं पैलेट गन अगर चली है तो ये शूटिंग है और इसका ऑर्डर उन्होंने दिया था। मैं पूछना चाहता हूं आपके लाखों दर्शकों से, जब शूट एट साइट कहा जाता है उसका मीनिंग क्या होता है, दिखते ही गोली मारो, ये नहीं होता है कि दिखते ही कैमरा देख के शूटिंग कर दो। इस ढंग के बचकाने आधार के ऊपर अगर कोई बचाव करना चाहे, इसका मतलब छात्र हितों से उसका कोई संबंध नहीं है और इसके ऊपर केवल अपना फ्रस्ट्रेशन अपना नजला उतार रहा है। मैं अंत में अंजना जी अभी कहना चाहूंगा, हाँ बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, पुराने सबको ध्यान होगा, आशुतोष जी तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, युवाओं की एक क्रांति जेपी के नेतृत्व में भी हुई थी, तो ये बताइए तब युवाओं को भरोसा था ना इस देश के नेतृत्व पे, तो युवा किसके पास गए थे, जयप्रकाश नारायण के पास, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, ये सब नेतृत्व कर रहे थे, चंद्रशेखर जी, और इन्होंने विषय उठाया था और एक तोड़फोड़ की घटना हुई हो कहीं बताइए, एक गाली गलौज की घटना हुई हो तो कहीं बताइए। आज वास्तविकता यह है कि छात्रों को विश्वास नहीं है विपक्ष पे, इसलिए वो अपनी राह चल रहे हैं और चूंकि अपनी राह चलते हुए उन्हें दिख रहा है, इनको लग रहा है कि सरकार का विरोध ज्यादा प्रबल दिख रहा है, तो केवल माइलेज पाने के लिए छटपटाहट में, बौखलाहट में और खिसियाहट में इस ढंग की चीजें दिखा रहे हैं। हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ समाधान की ओर बढ़ रही है और ये लोग कुटिलता के साथ घमासान की ओर बढ़ रहे हैं।
11: चलिए ठीक है आलोक जी, अब आप आइए जवाब दीजिए। बात सवाल ये भी पूछा है उन लोगों ने कि संसद में हमारा मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा है। देखिए विपक्ष घायल छात्रों का तो मुद्दा उठा रहा है, लेकिन ये पुलिस वाले जिनको चोटें आई हैं उस पर क्यों चुप्पी है।
19: देखिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर तो गृह मंत्रालय को सबसे पहले बयान देना चाहिए। गृह मंत्रालय ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी रूप में नहीं की, गृह मंत्रालय को भी सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए। गृहमंत्री तो स्वयं संसद से भागे हुए हैं, सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है, संवेदनशीलता भी विपक्ष दिखाए, विपक्षी सबकी आवाज भी उठाए, ये मंत्री तो पता नहीं किस काम के लिए बने हुए हैं। संवेदनशीलता ये है इनकी कि जब तक पूरी लाठी चार्ज और सब कुछ नहीं हो गया, जब तक जितेंद्र सिंह अपने घर से नहीं निकले थे, उसके बाद सब जागे थे कि अरे ये क्या हो गया। इनको अंदाजा नहीं था कि बच्चे इतने नाराज हैं, जिस तरह से बच्चों की अभिव्यक्ति आई और पुलिस का रिएक्शन और पुलिस ने जिस तरह से तुड़ाई की। अरे वो डीसीपी था, वो थप्पड़ मार रहा है महिलाओं को, क्या वो भी कांग्रेस की वजह से मार रहा है भाई। दो महीने से इस्तीफे की डिमांड हो रही थी, क्या वो भी बच्चों की तरफ से नहीं थी। क्या दो महीने से कांग्रेस पार्टी तमाम मोर्चों पर डिमांड नहीं कर रही थी छात्र की गूंज के माध्यम से। समाधान अगर आपको निकालना होता तो 2024 में जो पेपर लीक हुआ था उनके जो कल्प्रिट थे उनको जेल में डाल देते। आप लोग तो केवल पीआर करने में बिजी रहते हैं। अब आनंद मंगल विदेशों में जाके कौन करता है ये तो पूरा देश जानता है। विदेशों में लोटपोट कौन होता है और खी खी कौन करता है ये भी पूरा देश जानता है। और मेलोडी कौन खेलता है ये भी पूरा देश जानता है। लेकिन आज का वो विषय नहीं, एक निरर्थक बिल लेकर आए हैं आप सरकार को और आरएसएस को बचाने के लिए, जिस बिल में कहीं पर ऐसा प्रोविजन नहीं है कि पेपर लीक कैसे रुकेगा। उसके अंदर हमें तो कहीं दिखानी है भाई, पेपर लीक हो जाएगा तो हम इतनी सजा दे देंगे। अरे भाई पेपर लीक हो ही जाएगा तो आप फिर 2 करोड़ की पेनल्टी लगाएं, 10 की लगाएं, 5 की लगाएं, उससे कितना फर्क पड़ेगा। आप किसी को 7 साल जेल में रख दिए, किसी को 5 साल जेल में रख दीजिए, लेकिन पेपर लीक कैसे रुकेगा। एनटीए की कार्यप्रणाली के ऊपर, एनटीए को भंग करने के ऊपर आप उस बिल के अंदर कुछ भी नहीं लेके आए, क्योंकि एनटीए मतलब आरएसएस, एनटीए में सारे वो लोग दागी भरे हुए हैं जो आरएसएस के मुखपत्र के अंदर काम करते हैं, पूरी तरह से आरएसएस के मुखपत्र है। आप उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोले। जो जिस तरह से सीक्रेसी और बायोमेट्रिक्स और तमाम जो काम करती एजेंसी है उसकी कार्यप्रणाली पर एक शब्द नहीं है। हमने तो कहा था जिस समय पर 2013 में प्रपोज हुआ था कि इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बने, आप चार साल तक उस पर बैठे रहे 13 से लेकर 17 तक, और 17 में आपने एक एनजीओ को सारा कुछ दे दिया। अरे भैया पार्लियामेंट से एक पास करते कि हम यूपीएससी की तरह, एसएससी की तरह, सीबीएसई की तरह एक टेस्टिंग एजेंसी अलग से बनाते हैं और इसमें इस तरह के लोग होंगे, ये चयन की प्रक्रिया होगी और ये हमारा मॉडल्स अप्रेंडी होगा, इस तरह से पेपर सेट होगा, इस तरह से हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, इस तरह से एआई का यूज करेंगे, एक दिन पहले 12 घंटे पहले पेपर फाइनलाइज होगा। उसके ऊपर तो सब कुछ खामोश है, मौन है, और उल्टा आप धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करवा रहे हैं। मतलब निर्लज्जता देखिए। आज 20 तारीख से 31 तारीख हो गई, 12 दिन हो गए, आज 12 दिन तक ये नहीं पता चला कि वो पायलट गन किसके आदेश पर चली। गृह मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ट्विटर
11: सुधांशु जी तीन बड़ी बातें हैं जो आलोक जी पूछ रहे हैं। रुकिए आलोक जी आप ही की बात पूछ रहे हैं। एक तो पैलेट गन पे क्लैरिटी, चली किसके आदेश पर, चली कहां चली। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि भाई गृह मंत्रालय भी तो पुलिस वालों का एक खाका देना भी कि ये हुआ है, इनको चोट लगी है। वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस तो ट्विटर पर जवाब देती है। हालांकि आलोक जी अगले राउंड में आऊंगी तो बताइएगा, राहुल जी से दो बार सवाल पूछा गया, एक बार तो उन्होंने पत्रकार को कह दिया कि बीजेपी वाले हो, नेक्स्ट राउंड में जवाब दीजिएगा। लेकिन तीन पैलेट गन पर सवाल और जो अन्य दो सवाल है उसका जवाब दीजिए सुधांशु जी।
18: हाँ देखिए, पहली बात, कितनी मूर्खतापूर्ण बात कांग्रेस के लोग करते हैं कि रोकने का प्रावधान कानून में। अरे कानून में रोकने का प्रावधान क्यों होता है? कल के दिन आप कहेंगे हत्या के लिए कड़ा कानून होता है, आजीवन कारावास या फांसी। आप कहेंगे आप चाहे फांसी दे दो चाहे आजीवन कारावास दे दो, हत्या तो हो गई। इस ढंग के हल्के बचकाने हास्यास्पद तर्क वही दे सकता है जो राहुल गांधी जी के प्रभाव में हो। अब पैलेट गन पे आता हूं। पैलेट गन के विषय में सबको पता होना चाहिए, पैलेट गन छर्रे की तरह निकलती है, बाराबोर के छर्रे की तरह छितरा के निकलते हैं। अगर पैलेट गन चार फायर भी हुआ होता तो एक व्यक्ति घायल नहीं हो सकता था, कम से कम दर्जनों लोग घायल होते, क्योंकि जब वो छर्रे छितरा के जाते हैं और वो होते तो वो कम से कम उस भीड़ में, जैसी डेंस भीड़ दिख रही थी,
11: तो
18: 10-15-20-25
11: सुधांशु जी मेडिकल रिपोर्ट
18: में 4-6 राउंड भी फायर हो गए।
11: सुधांशु जी आपको टोक रही हूँ, मेडिकल रिपोर्ट हमने दिखाई आज तक, पर हमारे रिपोर्टर की स्टोरी थी। मेडिकल रिपोर्ट में फिर कैसे लिखा हुआ है पैलेट इंजरी?
18: हाँ, मैंने ये बात बिल्कुल, हो सकता है कहीं पर किसी के पास रखी हो और उस पर्टिकुलर जगह चल गई हो। मैं, आप मेडिकल रिपोर्ट कह रही, मैं फिजिक्स की रिपोर्ट बोल रहा हूं। कोई बता दे कि कोई चीज जो छितरा के वाटर कैनन की तरह जाती हो और उस भीड़ में, और वो वाटर कैनन का पानी एक ही व्यक्ति को लगेगा, बाकी किसी को नहीं लगेगा। मेडिकल रिपोर्ट कहेगी कि यह गीला हुआ है। तो हो सकता है कोई किसी के बगल में खड़ा हो, किसी से बगल में कोई मान लिया ट्रिगर दब गया हो, किसी पर्टिकुलर को लगा हो, वो वहां पे था, किस
11: तो
18: जगह पे था, क्या था, वो
11: एक अलग जांच बताएगा।
18: तो एक सिंपल सी बात कह रहा हूं,
11: ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा?
18: हाँ तो आप सुनिए, इसमें आप बताने की बात तो कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने तो कहा कि पैलेट गन तो उनके पास है ही नहीं, वो तो स्पष्ट कह दिया गया। मगर मैं एक और बात कहता हूं जनाजी, सवाल पुलिस से ही पूछेंगे ये, और इसलिए यहां पर जो बच्चे हैं वो तो भले ही इमेच्योर थे, उनको उतनी व्यवस्था नहीं थी कि उनके सिस्टम में किस ढंग से अपराधी घुस गए। अगर पॉलिटिकल पार्टी का होता है तो वहां पे व्यवस्था रहती कि वो ना आए, और बच्चों की मैच्योरिटी देखिए, उनका एक प्रवक्ता बेचारा बर्गर खाते पकड़ लिया गया तो उसके लिए हटा दिया गए। सोनम वाकचुंग ने कहा कि मैं भूख हड़ताल में बैठा था, मेरे सामने बैठे लोग पूरी सब्जी खा रहे थे। मगर इनको छोड़िए, ये पुलिस के प्रति असंवेदनशील तो सामान्य है अंजना जी, ये तो भारत की सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा बोल चुके हैं, इनकी संवेदना किसके लिए है? यहां तो चलिए बच्चे हैं, पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए बच्चों को मोहरा बनाए हुए हैं। अरे ये तो हाफिज को साहब, ओसामा को जी, जाकिर नायक को शांतिका मसीहा, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग, अफजल को हालात का मारा, पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष के साथ गले मिलके, भारत के सेना अध्यक्ष को तो सड़क छाप गुंडा बोल चुके हैं, सिमी को सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन बोल चुके हैं। तो इनका तो बहुत साफ है, भारत के सुरक्षा बल, उनका मनोबल गिरे, भारत के अंदर हिंसा कैसे पहले और उसी का लाभ उठाकर कोई कहीं से बच्चों के बीच में घुस जाए तो बवाल कर ले तो अच्छा है, किसान आंदोलन में घुस के कोई बवाल कर दे तो इनकी कलेजे पे ठंडक है, पहलवान आंदोलन में घुस के कोई कर दे तो कलेजे पे ठंडक है, सीएनआरसी में मुसलमान आंदोलन में घुस के कर दे तो ठंडक है, और आज नौजवान आंदोलन में आ जाए ठंडक है, यानी केवल कहीं से अराजकता हो जाए और इसके लिए भारत के सुरक्षा बलों का मनोबल टूटे, इनके लिए कलेजे में ठंडक है।
11: ठीक है, अब आप जवाब दीजिए आलोक जी, और जो सवाल इसके अर्थ में आशुतोष जी और रोहित जी आप दोनों के पास आऊंगे, आलोक जी आप जवाब दीजिए और मेरी बात कभी दीजिएगा। आपने कहा कि सारा ओनस विपक्ष पे नहीं हो सकता, लेकिन आप तो हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम कर रहे हैं ना, ऐसे में आप सिर्फ एक तरफा बात क्यों कर सकते हैं? और जब आज पूछा गया राहुल जी से, दो बार पूछा गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया इस पर।
19: अंजना जी होने को तो मैं सीधी बात यही कहना चाहूंगा कि आज की हालात क्यों बनी, कि उसके लिए जिम्मेदार भी क्या विपक्ष है, क्या पेपर लीक के लिए भी विपक्ष है, क्या पेपर लीक के बाद जो बच्चे इकट्ठे हुए वो विपक्ष ने बुलाए थे? एक भी तो चीज विपक्ष के ऊपर नहीं है। विपक्ष तो बार बार कह रहा है भाई इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अगर अकाउंटेबिलिटी पहले ले ली गई होती तो हमारे पुलिस के नौजवानों को भी ये दिन नहीं देखना पड़ता, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ती। दुर्भाग्य यह है कि पैलेट गन एक सांसद कह रहे हैं टीवी पर बैठ के, हो सकता है चल गई हो, ट्रिगर चल गया हो सकता है, मतलब इतनी संवेदनहीनता एक सांसद आज तक पे बैठ के कर रहा है, ये तो केवल बैल बुद्धि का प्रभाव हो सकता है, कोई बैल बुद्धि के प्रभाव में ही हो कि राडार में क्या होगा और नाली से गैस निकलेगी, हो सकता है चल गई हो। अरे भाई कौन बताएगा, 12 दिन हो गए, 13 दिन आज गृह मंत्रालय आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया, 56 इंच का सीना, विश्व गुरु और पता नहीं क्या क्या चाणक्य और क्या क्या था, संसद में एक दिन नहीं आ रहे हैं, हो सकता है चल गई हो। अबे आप चाहते हैं संसद चले, संसद में प्रोडक्टिव काम हो तो आपको आकर संसद में बैठना तो पड़ेगा। बिहार में पहले कहा AK-47 नहीं चली, फिर वो सस्पेंड कर दिया इन्होंने, आज तक की रिपोर्ट आई पूरी तरह से, पेपर लीक के ऊपर भी 2014 की भी और एम्स के ऊपर भी आज तक में स्टोरी की है इंडिया टुडे ग्रुप ने, उसके बावजूद नहीं है, झूठे लोग हैं ये। ऑपरेशन सिंदूर में संसद में खड़े होकर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि कोई नहीं मरा है, एक भी हमारा जवान शहीद नहीं हुआ, हाथों को बड़े बड़े हाथ फैलाकर। उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो 6 जवान शहीद हुए थे हमारे, तो ये बात करते हैं सेना की बात कि सेना को क्या करना है क्या नहीं करना है, 700 जवान किसान शहीद हो गए और मोदी

0: कोई संवेदना है क्या? उनके खिलाफ ये एक्शन लेंगे क्या? उनके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है? अपने बच्चों के खिलाफ तो सैकड़ों एफआईआर कर दी, और जो पुलिस वालों ने गलत किया और पुलिस के भेष में जो वहां पर आरएसएस के गुंडे वहां पर कील लेकर घूम रहे थे, उनके खिलाफ आपने एफआईआर क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आपको आरएसएस को बचाना है, मोदी जी की छवि को बचाना है। दुर्भाग्य यह है कि आप कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ये चीज क्लियर हो कि गलती पुलिस के पक्ष पर भी हुई है। क्या पुलिस ने गलती नहीं की? क्या पुलिस के प्रति संवेदना इसलिए नहीं जागेगी कि पुलिस का निर्ममतापूर्ण व्यवहार था? हो सकता गृह मंत्रालय से आदेश हो कि आप आंसू गैस के गोले छोड़िए, लाठीचार्ज कीजिए, लेकिन किस एक्सटेंट तक कीजिए ये तो पुलिस वालों को भी सोचना होगा ना।
1: रोहित
0: जी, छोटी बच्चियों
1: को रोहित जी जल्दी से कमेंट उनकी बात पर। वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों के लिए नहीं आएगी इस तरह की संवेदनाएं क्योंकि उधर से निर्मम व्यवहार हुआ है छात्रों के साथ।
2: देखिए, मैं बड़ी जिम्मेवारी और जवाबदेही के साथ देश के जनमानस के मन में जो बातें आ रही हैं उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता ने यह कहा कि पुलिस के वेश में संघ के कार्यकर्ताओं के बारे में इन्होंने चर्चा की, देश ये मान रहा है कि 20 दिनों तक श्रीमान राहुल गांधी जी जो लोकसभा में सम्मानित नेता प्रतिपक्ष हैं वो गायब थे भारत के पटल से। श्रीमान अखिलेश यादव जी नदारद थे, तेजस्वी यादव तो गोविंद गौन का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे थे, आदरणीय सोनम वांगचुक जी से और विद्यार्थियों से मिलने कोई नहीं गया। पार्लियामेंट के 24 घंटे पहले इमरजेंसी लैंडिंग होती है और पूरा प्रपंच रचा जाता है। देश का मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने देश की स्थिर सरकार को, लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने के लिए विदेश के लोगों के सहयोग से, या यूं कहें तो सोरोस जैसे लोगों के सहयोग से, देश के अंदर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस के बीच में भेजकर इस प्रकार के कुकृत्य को अंजाम दिया है। और जो पैलेट गन की बात आ रही है, मैं जिम्मेवारी से यह आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस के ऊपर। मैं देश की सरकार से अपील करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और झारखंड के पुलिस ट्रेजरी को चेक कराना चाहिए जहां हथियार रखा जाता है, कहीं वहां से या उसके संबंध से कोई पैलेट गन वहां से तो लाकर कांग्रेस ने यह चक्रव्यूह तो नहीं रचा। क्योंकि कांग्रेस का इतिहास इमरजेंसी में रहा है, कांग्रेस का इतिहास सिख दंगों में रहा है, कांग्रेस के हाथ हमारे यहाँ बिहार के भागलपुर के दंगे में सने हुए हैं, ये लोग खून की होली और दिवाली खेलते हैं। कैसे कैसे लोग को आप सर्टिफिकेट दीजिएगा? कैसे लोग को? आप कैसे लोग हैं? आपके नेता कैसे लोग हैं? सर्टिफिकेट मत बांटिए, आप भारत के चरित्र प्रमाण पत्र के पदाधिकारी नहीं है कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट निर्गत कीजिएगा और देश का चौथा स्तंभ आपके चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के उपरांत निर्णय लेकर तय करेगा कि कौन बैठेगा कौन नहीं। कांग्रेस पार्टी के इशारे पर देश को अस्थिर करने का कुचक्र रचा जा रहा है। और आप पूछते हैं कि देश के गृह मंत्री कहाँ हैं? अंजना जी 10 सेकंड, और अंजना जी
1: जल्दी
2: आलोक शर्मा जी अभिमान व्यक्ति हैं, चुप रहिए। कांग्रेस की चातुकार 1 सेकंड, 10 सेकंड, अंजना जी 10 सेकंड। देश के गृह मंत्री असम में बाढ़ आया हुआ है, लगातार हिमंत बिस्व शर्मा जी से संपर्क करके असम के जनमानस के समस्या के समाधान में संकल्पित भाव से लगे हैं। ओडिशा में भद्रक नदी अपने चरम पर है, बाढ़ की विभीषिका है, गृह मंत्री प्रधानमंत्री ओडिशा और असम के लोगों के समस्याओं के समाधान में लगे हैं और कांग्रेस के लोगों को ले दे करके बस राजनीति राजनीति। ना इनको विद्यार्थियों से मतलब है, ना नौजवानों से मतलब है, ना महिलाओं से मतलब, ना पिछड़ों से मतलब, ना भारत महतारी से मतलब। देश की जनता सबक सिखाएगी।
1: आशुतोष जी कह रहे हैं कि एक स्थिर सरकार को किसी ना किसी तरीके से अनरेस्ट कॉज करने के लिए ये सब पॉलिटिकल पार्टीज ने फ्यूल किया है, इसको कराया है इस तरह से, और पुलिस वालों का जो आज दर्द आया उस पर मैं चाहती हूं आप भी बोले।
3: सॉरी, मैं ये रोहित सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक है ना? अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी मैं तो समझा था कुछ और। देखिए, पहले तो सरकार ने यह कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, बाद में मंत्री का इस्तीफा देना पड़ा। अब सरकार कह रही कि पायलट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन पुलिस की जीडी एंट्री में तो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इस वक्त के 26 मिनट 22 जुलाई को पायलट गन का इस्तेमाल हुआ और डीसीपी की मौजूदगी में हुआ। असल सवाल यह नहीं है, असल सवाल यह है, ये हम लोगों को आपस से पूछना चाहिए कि कब सरकार पुलिस और सेना की मदद लेने लगती है और कब वो नागरिकों से दूर हटती चली जाती है। वो जो मासूम बच्चे थे सड़कों के ऊपर, अगर वो

0: इतने ही अराजकतावादी थे, इतने ही एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, इतने ही धर्म विरुद्ध थे, इतने ही गालीबाज थे, पाकिस्तान परस्त थे, गुंडे मवाली थे, तो सरकार ने उसके सामने सरेंडर क्यों किया? सरकार ने तो सरेंडर किया ना, उनके सामने इस्तीफा दिया। अब चूंकि मामला फंस गया है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अमित शाह के इस्तीफे की मांग होने लगी है, छात्र गंभीरता के साथ इस्तीफा मांग रहे हैं, और अमित शाह के साथ अब जिंदगी भर यह लगा रहेगा कि आपने दिल्ली में छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक व्यवहार करने वाली सरकार में गृहमंत्री थे, ये उनका साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए अब नैरेटिव को बदलने की कोशिश की जा रही है। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि जब कोई सरकार नागरिक अधिकारों से हटके और उनके लोग ये कहने लगे कि जो आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है कि पायलट गन का इस्तेमाल हुआ, बच्चों की आंखें जा रही हैं, हाथ पैर टूटे हैं और उसमें इलेक्ट्रिक शेल्स का इस्तेमाल हुआ है, लकड़ी में लाठी में कीलों का इस्तेमाल हुआ है और सरकार प्रायोजित कार्यक्रम करवा रही है, तो ठीक है, करने दीजिए ना, देश की जनता इसको देख रही होगी अच्छी तरीके से।
1: सुधांशु जी,
0: और वैसे भी देखिए, मैं तो साफ तौर पर मानता हूं, इसमें कोई दो राय है नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी कुछ भी गलत नहीं करती है। वो उसके सांसद संसद के अंदर गाली नहीं बकते हैं, उनके प्रवक्ता आज तक पर आकर खुलेआम गाली नहीं बकते हैं।
1: सुधांशु जी जवाब दीजिए, अचानक से ही आशुतोष जी रुक गया।
2: जवाब दे दूं
1: आशुतोष जी? हाँ सुधांशु जी, लेकिन देखिए ना, पैलेट गन पर एक स्पेसिफिक जवाब दीजिए।
2: अब मैं बता,
1: देखिए लगातार किसी दिन कोई प्रवक्ता आता है कहता है पैलेट गन चला ही नहीं, आपने आज कहा कि हो सकता है चला हो, 22 तारीख को डीडी एंट्री में ये एंट्री की गई है कि भाई चला,
2: ऐसा करिए ना,
1: तो 20 तारीख जी एक सवाल इसे पूछ रही हूँ सर, 20 तारीख के इंसिडेंट का 22 तारीख को एंट्री, इसका क्या मतलब है?
2: हाँ तो आप सुनिए ना, अगर आपको स्पेसिफिक सवाल पूछना है तो दिल्ली पुलिस ने तो कहा कि उसके पास पैलेट गन है नहीं, तो आप रैपिड एक्शन फोर्स के प्रवक्ता को बुला लीजिए, क्योंकि आप तो बहुत टेक्निकल स्पेसिफिक बात करें, टेक्निकल स्पेसिफिक पूछ लीजिए, जो एक जनरल कॉमन सेंस से होता है वो मैंने बताया कि पैलेट गन में छर्रे छितरा के जाते हैं, जैसे वाटर कैनन यूज आती है। आप कोई कहे वाटर कैनन इतनी भयानक चली कि एक ही व्यक्ति गीला हुआ, अगल बगल वाले सब बच गए, तो कुछ लगता है कि हो सकता है कोई बगल में फवारा छूट गया हो तो अलग बात है, अन्यथा ये समझ में आने वाली बात नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। स्पेसिफिक पूछना है तो उनसे स्पेसिफिक पूछ लीजिए। मगर ये जो हमारे विरोधी लोग बहुत कहते हैं ना, आज राहुल गांधी बोले बीजेपी वाले हो क्या, तो मैं बताना चाहता हूं आशुतोष जी को भी, आलोक शर्मा जी को भी, खोने इनके जो लोग वो रियल में बायस्ड हैं, अंधभक्त वो हैं, और इनकी पार्टी की तरह सोरस की गोद में बैठे। मैं तीन उदाहरण देता हूं। अंजना जी याद करिए, मणिपुर का विषय आया जहां वो एक महिला के साथ इतना अमानवीय व्यवहार हुआ, यह प्रश्न आप सब लोगों ने उठाया, नेशनल मीडिया ने उठाया, सबने भाजपा सवाल किया, मगर जब संदेश खाली आया चुप। राम मंदिर के ऊपर अभी पिछले एक महीने से लगातार हम लोगों से सवाल किए गए, ये लोग भी चढ़ चढ़ के बोले, मगर वक्त बोर्ड पे इनके सारे लोग चुप। अब आइए आज के इस मुद्दे पे, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, नीट के ऊपर विषय पे सारा मीडिया हमसे पूछ रहा है, मगर इन लोगों से पूछिए पंजाब पेपर लीक पे चुप, झारखंड पे चुप, कर्नाटक में चुप। बस ये तीन उदाहरण काफी है बताने के लिए असली अंधभक्त कौन है और असली कौन है जो शहजादा की आंख का इशारा देख के बोलता है बोलो, बोलने लगे चुप रहो चुप हो जाए, बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई। और मैंने दूसरा उदाहरण दे दिया, यहां सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो कौन इंडिपेंडेंट है और कौन क्या है पूरी तरीके से समझा जा सकता।
0: महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल है, क्या इस सरकार में किसी भी एक आदमी ने, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और सुधांशु त्रिवेदी ने, जो बच्चा अंधा हो रहा होने वाला है उसके पक्ष में एक शब्द बोला है क्या? एक शब्द अगर बोला हो तो मैं मान जाऊंगा। और इस देश का संसदीय प्रणाली की हालत यह है कि देश में संसद चल रही है और गृहमंत्री जी गायब हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम देश के अंदर बड़ा रिफॉर्म कर रहे हैं, प्रधानमंत्री गायब हैं। क्या कारण है कि इस देश के गृहमंत्री अमित शाह आज संसद के अंदर सदन में नहीं आ पा रहे हैं? क्यों? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जब छात्रों के संबंधित इतनी बड़ी परीक्षा पर एक बिल पेश हो रहा हो तो वो उस बिल को फ्रंट इन करें, वो उस बिल में लीड करें, देश को बताएं कि जो वहां पे और जिन लोग और कह रहे हैं कि वहां 100 लोग 200 लोग आए थे, आपकी सरकार बैठ के वहां क्या पकौड़े तल रही थी क्या कि जब वहां एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया? सबने देखा कि एक सत्यम पंडित नाम का लड़का मासूम बच्चों को थप्पड़ मार रहा था, आपकी पुलिस तो गिरफ्तार नहीं कर पाई उसको। वो आदमी गधा लेके वहां घूम रहे हैं तो जो मां बहन के वहां गालियां दे रहे थे, आपकी पुलिस तो गिरफ्तार नहीं कर पाई, सिर्फ स्टोरी प्लांट कर रहे हैं, सिर्फ स्टोरी प्लांट कर रहे हैं सुबह से शाम तक। और आपके मन में डर बैठ गया है कि अगर यह माहौल ऐसे ही बना रहा तो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत आने वाली है।
1: आलोक जी, आलोक जी
3: देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को अचानक बदल देना, शायद उस दिन पहले वाले दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने, हो सकता है कि इनके आदेश का पालन ना किया हो, दूसरा कमिश्नर आता है और अगले दिन लाठी चार्ज और सब कुछ हो जाता है, डीडीएनटी को भी डिनाई कर देते हैं, एम्स की रिपोर्ट को भी डिनाई कर देते हैं, कह देते हैं हो साहब हो सकता है चला हो। महिलाओं की बात कर रहा था अभी हमारा एक साथी, अरे कंगना रनावत ने जो बोला है उसके ऊपर भाजपा के किसी सांसद ने कहा है कि उसने जेंजी के लिए और हमारी बच्चियों के लिए किस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग किया है। मणिपुर में तो डबल इंजन की सरकार थी आपकी, दो दो बार की सरकार थी, उसके बाद आप उसका रेजिग्नेशन नहीं ले पाए थे, याद होगा ना आप लोगों को मणिपुर में क्या हुआ, वो कम्प्लीटली आप ही का फेलियर था। एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया, 62 दिन तक सरकार उसके ऊपर चुपचाप बैठी रही, ना सुप्रीम कोर्ट गई, ना उसके खिलाफ ना पक्ष में कुछ नहीं बोली, और उसके बाद वो दंगा भड़क गया। आज 3 साल होने को आए मणिपुर का, आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आप लोग भी मणिपुर की बात करते हैं, थोड़ी सी भी वो नहीं आती आप लोगों को, इलेक्ट्रिक शेल चलाते हैं आप बच्चों के ऊपर। मैं बार बार कहता हूं एनटीए का फॉरेंसिक ऑडिट करा लीजिए अकाउंट्स का, और एक कंपनी इनोवेटिव व्यू है, केवल इन दो कंपनियों का करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि बीजेपी का कितना रोल है पेपर लीक्स में, पता चल जाएगा एक मिनट के अंदर के कितना बड़ा गबन है ये, कितना बड़ा घोटाला है। संदेश खाली में ये हो गया, वहां अफवाह हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, अरे भाई आपकी सरकार है 12 साल से देश की राजधानी में, अगर इस तरह से बच्चों को मारा जा रहा है, और एक हमारे महानुभव कह रहे थे हो सकता कांग्रेस ने ही पैलेट गन चलवा दियो, मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे, पता नहीं कहां बैल बुद्धि के प्रभाव में आ गए हैं हमारे साथी जो हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाई कि क्या वो बच्चा जिसकी आंख चली गई, जिसके तमाम छर्रे शरीर में लगे हैं, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी कांग्रेस ने शायद हो सकता अपने घर में करके भेज दिया हो। आप सोच समझ के तो बोलिए, देश की जनता देख रही है आपको, और जितना आप मना करेंगे, जितना डिनाई करेंगे, जितना डिले करेंगे, उतना आपकी सरकार को नुकसान होगा, बच्चों का नुकसान होगा। बच्चों के घर तो नोएडा तक FIR करने पुलिस पहुंच गई, लेकिन जिन पुलिस वालों ने सरेआम गुंडागर्दी की वहां पर, जिनके तमाम फोटो आ गए, तमाम लोगों ने फैक्ट चेक कर दिया, उनके ऊपर आज तक आप खामोश हैं, क्योंकि वो RSS के गुंडे हैं, और RSS के गुंडे इसी तरह से यही ऑपरेशन जो है जिस तरह के गुजरात में होता था, मुझे बताइए केरला का नाम लिया, एक पेपर अगर केरला में आउट हुआ हो तो मुझे बताइए, अगर कर्नाटक में आपने नाम लिया, हिस्ट्री MA के सेकंड पेपर में पेपर क्वेश्चन डुप्लीकेट क्वेश्चन था, और एक पेपर में डुप्लीकेट क्वेश्चन था, इसलिए सेकंड पेपर रोक दिया गया, पेपर लीक की कोई से राज्यों में घटना नहीं है। इवन मैं कहूंगा पंजाब में हमने पूरा विरोध किया, पंजाब में मास चीटिंग हुई है, मास चीटिंग का हमने खूब विरोध किया, लेकिन भाई अगर कहीं पर भी कुछ हुआ है तो उसका विरोध हम भी करेंगे, आप भी कीजिए, किसी ने नहीं रोका है, लेकिन CBI को अकाउंटेबल कौन ठहराएगा? ये CBI का वही डायरेक्टर है जिसको आपने एक्सटेंशन दिया, जिस 2024 में भी यही था, 40 लोगों को अरेस्ट किया गया, 48 लोगों को 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं हुई CBI के निकम में डायरेक्टर से, उसी को आप एक्सटेंशन देते रहते हैं, क्योंकि आपके इशारे पर काम करता है, आपकी कठपुतली की तरह से काम करता है। दुर्भाग्य यह है कि NTA हो, CBI हो, ED हो, सब आपने अपने लोग बैठा दिए, वो आपके लिए काम करते हैं, देश के लिए नहीं काम करते।
1: लेकिन केरला का जो PSC पेपर है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो एग्जाम कैंसिल किया गया था गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो ये भी आलोक जी नहीं होना चाहिए, और ये भी एक मुद्दा है वहां पर भी कई जगह। हाँ।
3: देखिए दोनों चीजें अलग हैं, देखिए दोनों चीजें अलग हैं,
1: अलग है। पेपर झारखंड में भी बच्चों को लेट से पता है चला
3: पेपर था, और पेपर शुरू होने से पहले,
1: लेकिन लेकिन
3: एक अंजना जी,
1: हाँ, लेकिन जहां भी घपला हो बच्चों को दिक्कत होती है ना,
3: वो भी गलत है।
1: ठीक है, ठीक है, अब आइए रोहित जी के पास चलते हैं। रोहित जी, एक तरफ गाली गलौच पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्यों वहां प्रदर्शन में गाली गलौच की गई, एक्शन भी हो रहा है, 0 FIR ये वो, फिर एक सांसद आती हैं और वो गाली गलौच कर देती हैं। भाई किसी भी जेनरेशन को गटर जेनरेशन कहना, ऐसी अगली लड़कियां हैं, शादी नहीं होंगी, मतलब ये कौन स्वीकार कर सकता है? ये जानबूझ के सरकार के ही खिलाफ सरकार का बेड़ा गर्क करने के लिए आती हैं क्या ये?
4: अंजना जी, मैं कंगना रनौत जी के बयान से अपने आप को संबंध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग और विदेश परस्ती की वकालत करने वाले लोगों ने जंतर मंतर पर बैठकर देश के अभिभावक और देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी जी के बारे में अनपार्लियामेंट्री बात कहा, क्या उस पर कांग्रेस पार्टी ने कोई आपत्ति व्यक्त की? क्यों नहीं व्यक्त की? और जिस प्रकार से लीडर ऑपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी ने देश के नौजवानों को इडियट कहा, क्या उस पर कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी? अरे आप बोल क्यों रहे हैं, चुप रहिए ना, आप बोल रहे थे तो हम बोल रहे थे। और अंजना जी एक महत्वपूर्ण बात, अभी एक वरिष्ठ पत्रकार जो कल तक आम आदमी पार्टी के नेता होते थे वो देश के गृह मंत्री के संदर्भ में बोल रहे थे। मैं बता देना चाहता हूं, जब नए मॉडर्न इंडिया का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा धारा 370 किसने समाप्त कराया? अमित शाह जी ने। नक्सलवाद को किसने खत्म किया? अमित शाह जी ने। कश्मीर में स्थिरता किसने लाई? अमित शाह जी ने। क्या बात करेंगे ये लोग, इन लोगों को एक फोबिया हो गया है, सिंड्रोम हो गया है, नरेंद्र मोदी फोबिया, अमित शाह फोबिया। देश की जनता नरेंद्र मोदी और अमित शाह की क्षमता को जानती है। नौजवानों की आर में देश के अंदर दंगा नहीं भड़काने दिया जाएगा। कांग्रेस का इतिहास इमरजेंसी में नसबंदी का रहा है और कांग्रेस का इतिहास याद किया जाएगा छात्र आंदोलन में दंगा भड़काने के लिए।
1: इसलिए आज प्रदर्शन में लाठी थोड़ी चला दीजिएगा
4: सरकार को अस्थिर कराने के लिए।
1: एक ही जगह आपका रिकॉर्ड बार बार घूम रहा है, एक ही जगह रिकॉर्ड घूम रहा है बार बार, मतलब अरे सवाल है, सवाल है कि उसकी वजह से आज ऐसी हैंडलिंग क्यों हुई, आज ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? क्या स्थिति को आंकने में समझने में गलती, उस पर भी तो फोकस करिए कुछ। कांग्रेस का तो हो गया हिस्ट्री सर, जनता ने बाहर कर दिया है, 12-13 साल हो गए। रोहित जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, रुकिए अब, रुकिए अब। आशुतोष जी जल्दी से कमेंट, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के तो नेता थे ये।
0: देखिए मैं इंदिरा गांधी के जमाने में एक नारा था दिव्या देवकांत बरुआ का, अब तो मुझे हर जगह देवकांत बरुआ ही दिखाई पड़ते हैं भाई। इतना पतन तो नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना पतन तो नहीं होना चाहिए। और ये लोग जो संघ और बजरंग दल के मेंबर हैं, राजनीतिक विश्लेषक करके यहाँ आते हैं और इनका विश्लेषण क्या ये दुनिया देख रही है? अरे कुछ तो कम से कम कुछ तो लाख लोक लिहाज होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए भाई, कुछ तो पढ़ लिख के आया करिए, क्यों इस तरीके से ज्ञान देते हैं आके? जनता हंसती है आप लोगों की बातों को सुन के। सवाल पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पे, जवाब दिया जा रहा है उस पर, अरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अमित शाह जी क्यों संसद में नहीं आ पा रहे हैं? क्या कारण है नहीं आ रहे संसद के अंदर? किससे उनको डर है? किससे डर है? क्यों नहीं अपना मुंह दिखाते वहां पे? हैं क्यों गायब हैं वो? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा
4: के लिए आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जो मन में आएगा बोलिएगा, लोकतंत्र में बोलिए।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मैं तो आपकी पूजा करना चाहता हूँ,
4: देश के नागरिक दिया है,
0: मैं आपकी पूजा करना चाहता
1: हूँ। सुधांशु जी देखिए, ये आंदोलन हुआ, पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा था, पेपर लीक के बाद छात्र सड़कों पर उतरे। ये एक सच्चाई है कि बहुत जगह पर पुलिस वालों को भी पत्थरबाजी में मारा गया, पुलिस वाले भी कई जगहों पर घायल हुए हैं, लेकिन छात्रों पर भी खूब लाठियां चलाई गई हैं, उनको जगह जगह पर चोटें आई, बहुत सारे छात्रों पर भी इस तरह से ज्यादतियों की खबर आई। अब आपकी सरकार को ट्रस्ट जो खोया हुआ था उस डेफिसिट को दूर करने के लिए 2-2 मंत्रियों को लगातार भेजना पड़ा, आपको इनसे बात करनी पड़ी कॉकरोच जनता पार्टी से, है? उसके बाद आती है कंगना रनौत, ऐसे ही पहले खालिस्तानी ये वो कर करके नुकसान पहुंचाया, और उसके बाद से पूरा एकदम मतलब ऐसी बातें जिसका कोई सिर पैर नहीं है, गटर जेनरेशन कह देना, लड़कियां हैं, मतलब अगली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना उनके लिए कैसे स्वीकार्य हो सकता है सर? ये
2: आप बिल्कुल, आपने बात सही कही, बिल्कुल आपने जो बात कही है। तो अंजना जी ये मंडी में क्या भाव चल रहा है ये स्वीकार्य था?
1: अगर वो गलत है तो ये भी तो गलत है ना।
2: था और उसके बाद बचाव लिया गया कि वो हैक हो गया था, हैक की दिखाएं, कब रिपोर्ट की थी कि मेरा अकाउंट हैक हो गया? और क्या क्या भाषा शब्द प्रयोग नहीं की गई प्रधानमंत्री जी के लिए बिहार चुनाव में, मां की गाली बोली गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई? इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? चुनावी सभा में मां की गाली, और बाकी सब तो कब्र खुदेगी, ये होगा वो होगा, वो तो बहुत सारा होता रहा, अलग बात है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी आलोक जी ने कहा कि कैसे बैल बुद्धि है भाई रोहित सिंह के लिए, कि ये कह रहे कांग्रेस के लोग थे। भाई साहब आपके पास क्या सबूत है कि आरएसएस के लोग थे? वो जैसी बुद्धि उनकी वैसे आप, वैसे आपकी, आप भी अपना हवा में लंतरानी फेंक रहे हैं कि आरएसएस के लोग थे। और आशुतोष जी गंभीर व्यक्ति हैं, ये कह रहे हैं मीडिया की बात पे, जो मैंने 3 प्रश्न पूछे थे, आशुतोष जी आप ही अपने वक्तव्य बता दीजिए, वक्फ बोर्ड पे कितनी आलोचना की थी, संदेश खाली पे कितनी आलोचना की थी, पंजाब और उस पर। और देखिए यह भी ध्यान रखिए, रोहित क्या है इनकी बैकग्राउंड के बारे में तो आप अपना विचार रख सकते हैं, पर आप तो आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल रहे और आप तो उस भीड़ में भी शामिल थे जो मार्च 2014 में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे हमला करने के लिए आई थी। अब खैर छोड़िए, मीडिया पे वो क्या होती, भक्ति क्या होती। खुशवंत सिंह को कोट कर रहा हूं, जिन्होंने कहा कि मेरे गांधी परिवार की मैंने बहुत सेवा की, इस कारण से मुझे हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर बनाया गया और उसके बाद राज्यसभा दी गई। अरे ये तो साहब इंडिपेंडेंट मीडिया था, क्या गजब था साहब। अब आइए, राजीव गांधी जी क्या लेके आए थे, एक वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ बिल लेके आए थे ताकि आपकी हर चिट्ठी खोलकर सरकार पढ़ सकती है और कार्रवाई कर सकती है। से आज कोई कहे आपका एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल सब खोल के पढ़ सकती है और वो कार्रवाई कर सकती है। अरे ये तो सब अंग्रेज की स्वतंत्रता के अलंबरदार थे, अरे ऐसा कौन सा मीडिया होता था। और आशुतोष जी आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, मित्रोकिन आर्काइव में कोट किया गया है और यूरी बाजू ने 70,000 से अधिक आर्टिकल्स 70 के दशक में 70,000 से अधिक आर्टिकल केजीबी ने लिखवाए उन पत्रकारों से जो पैरोल पर थे,
1: मतलब।
2: और उसने कहा है कि पूरी सरकार के मिनिस्टर पैरोल पर थे और उन्होंने यह आरोप लगाया है कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को भी पैसे दिए बोलकर रिपोर्ट। छोड़िए उन सब बातों को, वो सारी बातें क्या, इसलिए जब इंडिपेंडेंट की बात की जाए तो ईमानदारी से खुले दिल से बात होनी चाहिए। मणिपुर के लिए कह रहे हैं ऐसा वैसा, ये बताइए मणिपुर को लेकर आलोक जी से पूछता हूं, आप मणिपुर को लेकर विश्वास प्रस्ताव लाए थे केंद्र में, मैं चैलेंज करता हूं कोई जाके डिजिटल जमाना देख ले, 5% मणिपुर पर नहीं बोले। राहुल गांधी अभी इस विषय के ऊपर बोले, मैं चैलेंज करता हूं, बताइए राहुल गांधी के इस पूरे बयान में बिल का कहां उल्लेख।
1: ठीक ठीक है, अब सुधांशु जी जवाब, आलोक जी की और आशुतोष जी।
3: मुझे अंजना जी, मैं सुधांशु भाई को बड़ा मजबूत सांसद और विद्वान समझता हूं, लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरी बीजेपी कंगना रनावत के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकती। क्या कारण है, मोदी जी का डर है क्या इन लोगों को सबको? कल मैंने एक सांसद से पूछा, पूर्व सांसद से, महिला थी वो, एक शब्द नहीं बोल पाई उनके खिलाफ। कोई अपने आप को दूर कर ले रहा है उनके वक्तव्य से, कोई रिप्लाई नहीं देना चाहता है, कोई दूसरी जगह भाग जा रहा है। हमने तो मंडी के जब भाव की बात आई थी, माफी भी मांगी थी, पुलिस में कंप्लेंट भी की थी, लेकिन उसके बाद भी मैं पूछना चाहता हूं, मां की गाली जिसने दी थी बिहार में, वो बच्चा बीजेपी से रिलेटेड था, कांग्रेस से रिलेटेड नहीं था, और उसकी जेल हुई, वो जेल में रहा। आप कहते हैं कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो तो जेल में रहा, लेकिन आपका व्यक्ति था इसलिए आपने चुनाव तक उसको किसी से मिलने नहीं दिया। हाँ। आज तो तमाम लोगों ने गालियां दी हैं मोदी जी को, अब लोग आप बजाव पे नहीं उतर रहे, अब आप लोग भाजपा ही खामोश बैठ गई है पूरी की पूरी, चुपचाप क्या कर रहे हैं क्या भाई?
1: टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी।
3: मुझे लगता है, मुझे लगता है कि मुद्दों को कैसे मुद्दों को भटकाया जाए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, अरे एक शब्द बोलो, कंगना रनावत ने गलत बोला, एक सांसद हो क्या आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रहे सुधांशु भाई?
1: ठीक है,
3: ऐसे क्या फायदा है आपके संसद में बैठने का? पूरे देश की बच्चियों को आप जनरेशन गटर बुलवाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि साहब नहीं ऐसा है, लेफ्ट है राइट है, ये मत करिए, आपको ये बहुत नुकसान देगा। कहिए गलत कहा उसने, कहिए।
0: देखिए सुधांशु जी एक फर्जी किताब का बार बार जिक्र करते हैं। मैं सुधांशु जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनसंघ के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि CIA इनको फंड करती जनसंघ के बारे में, और ज्यादा नहीं, बलराज मधु की किताब उठा के देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में उन्होंने क्या कहा था। अगर कहिए तो मैं कोट कर दूं वर्बेटिम,
1: अगर
0: मैं आपको चुनौती देता हूं।
2: देखिए मेरे किसी प्रश्न का उत्तर दिया, अब मैं कहता हूं, आज सोच जी कान खोलिए सुनिए, जबल ग्रिना अल्बर्टस की किताब में 1985 में केजीबी का चीफ विक्टर चेरबोकोव का लेटर नंबर कोटेड है कि गांधी परिवार ने डिमांड किया कि मुझे जो पैसा मिल रहा है वो US डॉलर्स में दिया जाए, तो केजीबी के पावर से बाहर था, क्रेमलिन से अप्रूवल दिया गया, फिर अप्रूवल का लेटर नंबर कोटेड है। क्यों नहीं आज तक जाके किसी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया? जाइए, यमक पिनाल बटस की किताब स्टेट विद इन स्टेट, जिसमें
1: सबकी अपनी अपनी किताब, सबकी अपनी अपनी विचारधारा और सबका अपना अपना तरीका, लेकिन 2026 आज जुलाई का ये महीना और आज की तारीख पर यही मुश्किल है आज की बहस में। लेकिन जिन तस्वीरों की हम बात कर रहे थे, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए, इन पर चर्चा हो रही थी और ये सवाल बड़ा है कई जगहों पर पुलिस वालों पर, जो कि ये चूज कर रहे थे कि वो लाठी नहीं चलाए छात्रों पर, उन पर जिस तरह से अलग अलग जगहों पर हमले हुए हैं, उनको चोटें पहुंची है, उसको लेकर भी सवाल आज उनके परिवार वाले। ये देखिए पीछे घूम घूम कर ये करना, इस तरह से करना, हमला करना, इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, देखते रहिए आज तक। लेकिन जिन तस्वीरों की हम बात कर रहे थे, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए, इन पर चर्चा हो रही थी और ये सवाल बड़ा है कई जगहों पर पुलिस वालों पर, जो कि ये चूज कर रहे थे कि वो लाठी नहीं चलाए छात्रों पर, उन पर जिस तरह से अलग अलग जगहों पर हमले हुए हैं, उनको चोटें पहुंची है, उसको लेकर भी सवाल आज उनके परिवार वाले। ये देखिए पीछे घूम घूम कर ये करना, इस तरह से करना, हमला करना, इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, देखते रहिए आज तक।
5: आज तक देश का

0: TuneIn is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news, and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
1: हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
4: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
2: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना.
1: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना? अर्ज किया है, पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं.
3: वाँ वाँ वाँ वाँ।
1: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें.
4: समझ कर, इन्वेस्ट कर.
5: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी.
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं. गोल्डी हिंग कण कण में जान.
7: वी आर ओवर जिमी.
8: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
9: आगे आगे.
10: अरे उधर
9: उधर.
10: करेक्ट.
11: मिल गया. आपके पास दो ऑप्शंस हैं. या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
12: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
3: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
4: न्यू एंटरप्रेन्योर्स केम अप, देयर वाज धीरूभाई अंबानी, ही वाज अ रैग टू रिचेस स्टोरी। ही बिल्ट इंडस्ट्रीज, ही बिल्ट यू नो द होल नायलॉन बिजनेस, द टेक्सटाइल एंड देन ऑफ कोर्स देन इनटू पेट्रोकेमिकल।
5: There were others like him, but he was by far the biggest and the most prominent of them all. He was also the most controversial because of his business methods. We did the stories on him as a success. We did a story of him under pressure. It was a churn that was taking place and it led to lots of stories.
6: Jai Hind friends, aaj hum ek aisi kahani batane ja rahe hain जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम है और बहुत दुखद परिणाम है। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। In association with
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Nora Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your coffee house favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, life में scratches तो आएंगे. गाड़ी के scratches को तो Cosmo PP अब संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
3: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
4: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
3: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
5: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
3: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
6: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: उनको सदन में गृह मंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए और देश की जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास किया उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन में कोई गोली नहीं चली और किसी भी इस तरह की कार्रवाई का अधिकार वहां के लोकल डीएम के पास होता है तो आज बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन कांग्रेस का भी बच्चा नहीं जानता।
1: एक पुरानी कहानी है कि एक समूह बच्चों का चिल्ला रहा था मेरे देश का राजा चोर है। तो पुलिस ने पकड़ लिया, बोला सर हम तो फलाना देश की बात कर रहे थे। बोले बेवकूफ समझ रखा क्या, हमको नहीं पता था। तो एक संदर्भ से अलग उन्होंने बात रखी, आपने वो उड़ता तीर ले लिया, आप तो उनकी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाएंगे कि जिन्हें आंदोलन के गालीबाजों से हमदर्दी है उन्हें घायल वर्दी वालों से क्यों बेदर्दी है। आज हम पूछेंगे कि सर्दी गर्मी बरसात दिन रात जनता की सुरक्षा में लगे रहने वाले पुलिस वाले सियासत के लिए वोट बैंक नहीं है तो क्या उन्हें पिटने देंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे नीट पेपर लीक में कुछ टीचर ही चीटर निकले। हम ब्रेक नहीं ले रहे, अब देखिए 7 तक सईद के साथ।
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 2020 दिल्ली दंगों में सजा का ऐलान। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत सभी 5 को उम्र कैद। बीजेपी ने केजरीवाल से मांगा जवाब। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के अजीब व गरीब प्रदर्शन पर राजनीतिक युद्ध। सरकार बोली, संसद नाटक करने की जगह नहीं। अखिलेश ने पोस्ट में पूछा, सच बुरा लगा क्या? मोदी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय पर मुहर। 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गई पीएम किसान योजना। तेल गैस की खोज के लिए 84,000 करोड़ की समुद्र मंथन योजना स्वीकृत। आईसेक से बातचीत में बोले सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीप के, पेपर लीक रोकने में बिल नाकाफी, उपद्रव के लिए बीजेपी आरोपी। और पीओके में मुनीर की सेना की बर्बरता पर भारत का सख्त रुख। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जांच और पाक को जवाबदेह ठहराने की मांग। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में 40 से अधिक की मौत। आइए शो की शुरुआत संसद में जारी घमासान के साथ करते हैं, जहां आज संसद परिसर से एक अनोखी तस्वीर सामने आई। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष ने नाटक रचा, जहां साधु के वेश में पप्पू यादव नजर आए, जिसे लेकर अब राजनीति काफी तेज हो गई है।
1: संसद परिसर में अयोध्या चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष ने नाटक का मंचन करके उठाया, जहां पप्पू यादव साधु के भेष में दान पेटी के साथ पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने सांकेतिक चंदा डाला, जिसके बाद पप्पू यादव दान पेटी देकर भागने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पकड़ते हैं। पप्पू यादव के इस नाटक पर लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जताई। पप्पू यादव के आचरण को संसदीय भावना के खिलाफ बताया।
2: नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए। नाटक करने का जगह नहीं है, स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं है।
1: वहीं बीजेपी भी पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर हमला कर रही है।
3: वो तो काल नेमी का वेश धारण करके आए थे और पूरे सदन ने इसकी निंदा की।
4: तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हमला है। राम राम जपियो रे, सब माल हरपियो रे। आप भगवान के आस्था के साथ ही नहीं, 154 करोड़ भारत के उस आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं, जो राम को अपने जीवन में, कर्म में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं।
5: हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा।
6: आपके माध्यम से देश का आम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते। अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए हैं।
1: उधर संत समाज ने भी पप्पू यादव को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
7: महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए।
8: इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आप जरा बताइए कि जिन लोगों ने मंदिर में दान चोरी किया है, क्या वो भगवाधारी थे? वो तो आठों जेल गए, भगवा साधु तो थे नहीं। और यह आप जरा देखिए कितने दुर्भाग्य है। और हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है।
1: राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले 2 दिनों से दान पेटी के साथ प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आज पप्पू यादव की एंट्री ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया। आज तक ब्यूरो।
0: उधर संसद में भले ही एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया हो लेकिन हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब दोनों पक्ष एक दूसरे के विरोध में विशेषाधिकार हनन की शिकायतें लेकर पहुंचे हैं।
9: पेपर लीक से शुरू हुआ हंगामा पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान लगे आरोपों तक पहुंच गया है। पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, जिसके बाद केसी वेणुगोपाल ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्पीकर को भेज दिया। अनुराग ठाकुर की ओर से दिए गए प्रस्ताव में कहा गया कि रूल 352 का उल्लंघन कर राहुल गांधी ने असंसदीय शब्दों इडियट और अंधभक्त का इस्तेमाल किया, रूल 353 का उल्लंघन कर केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ गंभीर निराधार आरोप लगाए और मोशन से हटकर टिप्पणियां की। उधर जवाब में आए कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया कि कोई गोली नहीं चलने का झूठा दावा कर मंत्री ने जानबूझकर संसद को गलत जानकारी दी और सदन को गुमराह किया।
10: मनगढ़ंत एलिगेशन लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है, उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल 222 को देखते हुए और रूल 223 और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें।
11: तो वो हाउ कैन ए मिनिस्टर मिसलेड द हाउस लाइक दिस? स्टूडेंट्स नो अबाउट इट, नेशन नो अबाउट इट, नाउ ही इज टेलिंग दिस इज नॉट यूज्ड।
9: उधर संसद के दोनों सदनों में बिल पास हो गया, जिसके बाद अब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बाकी है, जहां पीएम मोदी ने पोस्ट करके अब पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।
12: फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ।
9: पेपर लीक बिल पास होने के बावजूद विपक्ष का संसद परिसर में एक बार फिर प्रदर्शन देखने को मिला।
13: विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि तस्वीरों में यहाँ पर पोस्टर बैनर लेकर के तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद, ये सभी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन संसद से गायब क्यों है, सदन में आए, इस तरीके की बातें उनके द्वारा की जा रही है।
14: ये निश्चित तौर से दुर्भाग्य है कि भारत की इतनी बड़ी पार्लियामेंट उसका एलओपी इतना गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है। जब सारी मांगे पूरी हो गई तो आज किस बात का
13: क्या राहुल?
9: संसद के अंदर भी हंगामा जारी रहा, जिसके बाद संसद की कार्यवाही बाधित हुई।
2: हंगामा करते रहेंगे और सरकार भी हंगामा के चक्कर में अगर बिल ही पारित नहीं करेंगे तो सदन क्या करेंगे। इसलिए हम तो बिल पारित करते रहेंगे और हमने आज कहा भी है, बाद में बाहर जाके ये नहीं कहना कि बिना चर्चा के बिल पारित क्यों किया गया है।
9: बहरहाल विपक्ष अभी थमने के मूड में नहीं है, जहां वो लगातार सरकार को घेर रहा है और हंगामे के बीच अब संसद सोमवार तक के लिए स्थगित होगी। आज तक ब्यूरो।
0: और अब खबर दिल्ली दंगों के दोषियों पर आए निर्णय की। 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी इंस्पेक्टर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर वारदात थी जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया। अब इस मामले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं।
15: आम आदमी पार्टी दिल्ली दंगों में सड़कें बंद करने वालों के साथ खड़ी थी, दंगा करने वालों के साथ खड़ी थी। हम सबने देखा कि जिन गलियों, बस्तियों और मोहल्लों से सड़कें बंद करने वाली भीड़ निकली, उन्हीं बस्तियों से दंगा करने वाले लोग भी निकले, मर्डर करने वाले लोग भी निकले। और आम आदमी पार्टी उन्हीं लोगों के साथ खड़ी थी, उन्हीं के वोट बैंक के भरोसे पे आज भी वो राजनीति कर रहे हैं।
16: कपिल मिश्रा का अपना चुनावी ऑफिस और उसका विधायक कार्यालय उसी घर में था, ताहिर हुसैन के उसी घर पे था जिस घर पर आरोप लगा है कि वहां पर दंगों को लेके हथियार या पत्थर या जो भी आरोप थे वो मौजूद थे, उसी घर में कपिल मिश्रा का चुनावी दफ्तर और विधायक दफ्तर रहा है, आप पूछ लीजिएगा कपिल मिश्रा से, डिनाई कर दी।
0: दिल्ली दंगों मामलों में और सजा आने पर हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने आईबी अधिकारी रहे अंकित शर्मा के भाई अंकुश शर्मा से बातचीत की।
17: अंकुर जी नमस्कार, ये जो अदालत ने फैसला सुनाया है ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है, आपका क्या रिएक्शन है, आपके परिवार का क्या रिएक्शन है?
18: सर हमारे परिवार का शुरुआत से 2020 में जब दंगा हुआ था जब इसे हमारे परिवार की यही मांग थी कि भाई के जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इस केस को हमारे केस को भाई के केस को रेअरेस्ट ऑफ रेअरेस्ट केस में कोर्ट को देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भाई के साथ जो ये इंसिडेंट हुआ था आप सभी को पता है कितनी बुरी तरीके से ब्रूटली तरीके से उसको मारा गया था, कितने चारों तरफ बॉडी पे उसके निशान थे चाकू के और बहुत तेजाब के, और फिर उसकी बॉडी को भाई की बॉडी को नाले में फेंक दिया गया था जिस तरीके से, तो कोर्ट को ये रेअरेस्ट ऑफ रेअरेस्ट केस में देखना चाहिए था और जो भी दोषी है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी और ये एक सबक पेश करना चाहिए था आगे से कभी किसी के साथ ऐसा ना हो जैसा अंकित शर्मा हमारे भाई के साथ हुआ जो अपनी अपनी ड्यूटी करते हुए देश के लिए शहीद हुआ और आगे जिस तरीके से हमारे भाई को मारा गया आगे से किसी के साथ भी ऐसा ना हो, इस तरीके से कोर्ट को एक मिसाल पेश करनी चाहिए थी और आज ये डिसीजन आया है और सर देखते हैं सर आगे क्या होता है इसमें।
17: अच्छा मतलब मेरे ख्याल से जो आपसे बातचीत समझ में आ रहा है कि आप ये जो उम्र कैद की सजा मिली है उससे आप और आपका परिवार संतुष्ट नहीं, आप फांसी की मांग कर रहे हैं?
18: सर हाँ सर यस सर,
17: मतलब फैसले से संतुष्टि नहीं है आपको? मतलब
18: सर देखो हम हमारे भाई के केस को रेअरेस्ट ऑफ रेअरेस्ट केस में कोर्ट को देखना चाहिए था और जिस तरीके से उन्होंने देखा है और जो भी इनके पास सबूत थे उन सभी सबूतों के बिहार पे उन्होंने अब ये डिसीजन दिया सर, हमारे परिवार की तो यही मांग थी और सभी की यही मांग थी कि जो भी दोषी है इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
0: और अब खबर बिहार की राजनीति की, जहां सबको चौंकाते हुए बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद मंत्री दीपक प्रकाश को उनकी जगह एमएलसी बनाया जा सकता है। मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद बीजेपी इस मामले पर सक्रिय हुई। दरअसल दीपक प्रकाश को सीधे मंत्री बनाए जाने पर सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद अब उनके लिए एमएलसी का रास्ता साफ हो गया है। दीपक ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने वाले।
19: भाई फिर आगे होनी है सुप्रीम कोर्ट में और सुनवाई होगी उसमें, जो भी वहाँ पे होगा उसमें तो बिहार सरकार जवाब देगी उसका कोर्ट में।
20: सर जेडीपी नेता ने कहा कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए,
19: उसके भाई जो कोई जवाब औचित्य नहीं है, जो कुछ भी है बिल्कुल संविधान के प्रावधानों के हिसाब से और एनडीए के तमाम गठबंधन के तमाम नेताओं के आशीर्वाद से पद पे है और आगे भी इसमें जो कुछ भी कार्रवाई चल रही है उनसे का जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना है। इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करने दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को मत करने दीजिए इसका निर्णय।
21: 100 दिन हुए हैं, 3 महीना हुए हैं सम्राट चौधरी जी सरकार के, अगर ये परिभाषित होगा कि नहीं एक व्यक्ति पूरे जीवन में 6 महीना ही चाहे वो कितना भी उसका पार्ट हो मंत्री बन सकते हैं तो मान्य न्यायालय का आदेश माना जाएगा।
22: 6 महीना पूरा
21: होने जो नियम है वो संविधान संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही चलेगी बात, संविधान से ऊपर कोई नहीं।
23: तो बीजेपी थिथराई कर रही है और कानून का पालन नहीं कर रही, ये नियम है कि कोई भी व्यक्ति देश का नागरिक हो उसे किसी सदन का सदस्य हो या नहीं हो 6 महीना उसको किसी भी पद पर रखा जा सकता है, यानी मंत्री के पद पर रखा जा सकता है, ना वो राज्यसभा का मेंबर है ना लोकसभा का मेंबर है ना विधान परिषद के मेंबर है ना विधानसभा के मेंबर है।
0: खबर देहरादून से आई एक दर्दनाक घटना की, जहां शादी के केवल 8 महीने बाद एक महिला की मौत की खबर आ गई। ससुराल वालों ने कहा कि महिला ने आत्महत्या की, जबकि परिवार वाले कह रहे हैं कि उनकी बेटी की हत्या की गई।
24: कैमरे पर फूट फूट कर रो रही सृष्टि कंडारी अब इस दुनिया में नहीं है, जो कैमरे पर फूट फूट कर ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगा रही हैं।
3: बट अब सब बहुत अजीब सा हो गया। 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सह ही नहीं जाता।
24: देहरादून की रहने वाली सृष्टि कंडारी की 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। पति सौरभ खत्री सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि सृष्टि खुद भी सरकारी टीचर थी। मौत से करीब 1 घंटे पहले सृष्टि ने ये वीडियो बनाया जिसमें वो कहती हैं कि सॉरी मम्मी, अब मैं जा रही हूँ।
3: सुनाते हैं शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ। मनुष्य मनुष्य
24: ससुराल वालों का कहना है कि सृष्टि ने आत्महत्या की, जबकि परिवार वाले ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।
4: मैं देखा सिचुएशन तो मर्डर का सिचुएशन, क्योंकि वो कह रहे थे कि हैंग किया जो भी है वो, तो उनको इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था पुलिस को, जो उन्होंने किया या परिवार को करना चाहिए था, पर उन्होंने कोई कॉल नहीं उठाया। वो कैलाश हॉस्पिटल ले गए थे वो।
5: और आप लोग कैसे
4: पता चला? हमें बाहर से किसी ने इन्फॉर्म किया कि आप चाचा जी वहाँ पे आ जाओ।
24: परिवार का कहना है कि 3 महीने पहले सृष्टि के ससुर की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। शादी के बाद ससुर को कैंसर होने का पता भी चला था, जिसके बाद ससुराल वाले उसे मनहूस कहकर ताना मारते थे।
6: सर, उनको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। उनको जो उनका वीडियो लास्ट में आया था उसमें दीदी ने यही बताया है कि ये लोग मुझे 6 महीने से परेशान कर रहे हैं। अपने ससुर, जो उनके ससुर हैं बीमार थे काफ़ी समय से, उनके द्वारा बोला गया है कि जब से तुम आई हो यहाँ पे तब से हमारे परिवार में ये घटनाएं हो रही हैं, अनिष्ट हो रहा है, इस तरीके से प्रताड़ित करना। कभी उसको, उनने गाड़ी ली थी उसकी किस्त वो भर रही थी, हर चीज़ वो कर रही थी उनके लिए, हर चीज़ उसने मतलब पूरा चाहा कि मैं अपने परिवार के लिए करूं। पर उसके बावजूद उन लोगों के द्वारा उसको इतनी मानसिक प्रताड़ना दी गई कि उसको मजबूरन अब वो सुसाइड हम नहीं मानते, वो हत्या है।
24: पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
0: और अब खबरें शेयर बाजार की, आइए जानते हैं कि क्या रहा आज बाजार का हाल, सोने चांदी के भाव में कितना उतार चढ़ाव आया, ये सारी चीजें एक साथ।
24: घरेलू शेयर बाजार आज लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 166 अंक चढ़कर 78,095 और निफ्टी 66 अंक की बढ़त के साथ 24,384 पर बंद हुआ। बजाज फाइनेंस के मजबूत तिमाही नतीजों, विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी और बेहतर कॉरपोरेट नतीजों के चलते घरेलू शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। हालांकि ऊंची बॉन्ड यील्ड और वैश्विक जोखिमों को लेकर चिंता के चलते ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। शेयर बाजार में तेजी के साथ रुपए में भी मजबूती देखने को मिली और डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे मजबूत होकर 95.35 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। विदेशी पूंजी प्रवाह और RBI के समर्थन से रुपए को मजबूती मिली। हालांकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, डॉलर की मजबूती और पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव के चलते इनकी बढ़त सीमित रही। वहीं सराफा बाजार में आज मिला जुला रुख रहा और सोना 55 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के बाद 1,43,329 रुपए पर पहुंच गया, जबकि चांदी 671 रुपए बढ़कर 2,19,336 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुनाफा वसूली के चलते सोने में हल्की गिरावट रही, जबकि औद्योगिक मांग और वैश्विक बाजारों में मजबूती के चलते चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली।
0: नेपाल में जबरदस्त तनाव है, हंगामा मचा हुआ है, स्थिति लगातार बिगड़ रही है, कई जगहों पर कर्फ्यू लगा है, आखिर क्यों, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।
9: ये तस्वीरें पड़ोसी देश नेपाल की हैं, जो साफ बता रही हैं कि सांप्रदायिक हिंसा के बाद बिहार से सटे नेपाल के तराई इलाके में कैसी स्थिति बनी हुई है। रविवार को नेपाल में भड़की हिंसा का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की सीमा से सटे कोशी और मधेश प्रांतों में हुई हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कई जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सभी संवेदनशील इलाकों की हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है।
0: और अब खबर कॉमनवेल्थ गेम्स की, जहां आज भारत के लिए जो रात है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और हम गोल्ड जीतने वाले हैं।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स में आज है सोने की रात। नीरज चोपड़ा के जेवलिन से बनेगी बात। आज रात सच में स्वर्णिम रात बन सकती है। हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें भी इस मुकाबले पर होंगी, क्योंकि ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो के फाइनल में पदक जीतने के लिए चार ओलंपिक मेडलिस्ट आमने सामने होंगे। वैसे हर हिंदुस्तानी की उम्मीद गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से है। हालांकि नीरज चोपड़ा को ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान के अरशद नदीम की चुनौती भी पार करनी होगी। वैसे इस सीजन में 92.62 मीटर लंबा थ्रो करने वाले श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिरागे गोल्ड के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। उन्होंने इस साल चार बार 88 मीटर थ्रो के साथ शानदार लय हासिल की है। उनके अलावा दो बार के वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स भी कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। वैसे भारतीय चुनौती सिर्फ नीरज चोपड़ा तक ही सीमित नहीं है, उनके अलावा दो और भारतीयों ने फाइनल तक का सफर तय किया है। रोहित यादव नेशनल चैंपियनशिप में 87.05 मीटर का थ्रो कर चुके हैं, जबकि यशवीर सिंह पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना सपना पूरा करने उतरेंगे।
0: कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रमुख अभिजीत धीमके के साथ हमारे साथी साहिल जोशी की एक्सक्लूसिव बातचीत बस अब से कुछ क्षणों में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की।
7: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
8: The Electric Savari.
10: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर।

0: Jack FM, now playing what we want, commercial free, on TuneIn Premium.
1: What about me, Jack? What about me?
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
2: Well played, Jack. Well played.
0: Jack FM, playing what we want.
3: Savari.
4: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
5: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
3: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
2: अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
4: समझ कर इन्वेस्ट कर। एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर किधर
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: टुडे एट 15:45 आवर्स इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट।
5: नोबडी एक्सपेक्टेड दैट ही वुड टेस्ट विद इन 3 मंथ्स ऑफ टेकिंग ओवर एज प्राइम मिनिस्टर।
6: टू मॉक टेस्ट वर कंडक्टेड साइमल्टेनियसली ऑन 13th मई 1998।
5: Secretly fooled some of the best CIA experts, and that became the incredible story about the bomb makers, which made cover of India Today.
7: Jai Hind friends, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं, जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
8: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं?

0: या फिर
1: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भैया, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
2: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
1: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
3: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: होना चाहिए।
1: राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। गृह मंत्री पर टिप्पणी पर भड़के बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर। राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। संसद से एंटी पेपर लीक बिल तो पास हो गया है, लेकिन उस पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी ने घेराबंदी शुरू कर दी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस सौंप दिया है।
2: इससे बड़ा झूठा आरोप, बड़ा आरोप बगैर तथ्यों के लगाना कि राहुल गांधी जी की आदत बन गई सुर्खियां बटोरने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए सदन का दुरुपयोग किया गया। राहुल गांधी जी को गृह मंत्री ने देश से भी माफी मांगनी चाहिए।
1: जहां एक तरफ राहुल के बयान को लेकर बीजेपी आक्रामक दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने गृहमंत्री अमित शाह के संसद में ना मौजूद होने पर भी सवाल खड़े कर रहा है।
3: I demand that the Home Minister come to this house, make a statement, answer the students, apologize to the students. If he cannot do so, the Home Minister must resign, sir.
4: प्रधानमंत्री डर गए, गृहमंत्री डर गए, लापता है, हम ढूंढ रहे हैं। मैं तो एक फिल्म बनाने वाला हूँ, लापता गृहमंत्री।
1: बहरहाल पेपर लीक से शुरू हुई सियासत अब प्रदर्शनकारियों के एक्शन पर शिफ्ट हो गई है। आज तक ब्यूरो।
5: राहुल गांधी ने प्रस्तुत किया एम्स की रिपोर्ट के साथ कि पिलेट छर्रे लगे हैं पूरे शरीर में, आंख की रोशनी जा रही है। यही नहीं, AK-47 से फायर किया गया पटना में। और यही नहीं, महिलाओं के साथ जितना अशोभनीय और अश्लील व्यवहार किया गया उस सारी दुनिया ने देखा। गृहमंत्री जी क्यों भाग रहे हैं सदन से? भारत का संविधान कहता है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है संसद के प्रति।
6: राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, मंत्री से क्या मतलब है? वहाँ मजिस्ट्रेट जो होता है वो जिलाधिकारी दे सकता है, SDM दे सकता है, जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन होता है वो आदेश देता है, मंत्री थोड़ा आदेश देता है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: छत्रपति संभाजी नगर में, और छत्रपति संभाजी नगर का नाम आज पूरे देश में इस वजह से भी जाना जाता है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भी यहीं से हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अभिजीत दिपके के घर पे हम इस वक्त मौजूद हैं, और उस वक्त हम अभिजीत दिपके से बातचीत कर रहे हैं जब सदन के दोनों सदनों में पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पारित हो चुका है, लोकसभा के भीतर भी और कल राज्यसभा के भीतर भी। और कल इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी जारी किया और कहा है कि कैसे सरकार के तरफ से जो विद्यार्थियों की मांग थी उसे तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया गया और एक कड़ा कानून इस पूरे मामले में लाया गया। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होगी, कौन अभिजीत दिपके से लेकर अभिजीत दिपके तक का यह सफर किस तरीके से रहा, और सबसे बड़ी बात अब आगे ये स्टूडेंट एजिटेशन क्या करेगा, कहां यह एजिटेशन जाएगा, सरकार का जो बिल है उस पर उनकी क्या भूमिका रहेगी, ये तमाम मुद्दे हैं, राजनीति भी है, सब पर बात करेंगे। अभिजीत दिपके, बहुत बहुत शुक्रिया आप आज तक से बात कर रहे हैं
4: सर।
3: पहला सवाल तो यही रहेगा क्योंकि मैंने जैसे कहा लोकसभा और राज्यसभा में पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पारित हो चुका है, ये बिल को लेकर आपको क्या लगता है, कि आपको लगता है कि इस बिल की जरूरत थी, या आपको जो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कड़ा कानून बनाया हुआ है, प्रावधान कड़े किए हुए हैं, 2024 के प्रावधान थे वो और भी कड़े किए हुए हैं, और ऐसे में पेपर लीक को रोकने में वो कामयाब हो पाएंगे, आपको लगता है कि ये बिल काफी है?
4: सर, मैंने जितना समझा इस बिल को उससे मुझे ये समझ में आया, ये बिल पेपर लीक रोकने के लिए नहीं है, पेपर लीक होने के बाद क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि सारी बातें वही चल रही है, जेल को 4 साल से बढ़ाकर 10 साल का कर दिया, पेनल्टी बढ़ा दी है, तो कहीं ना कहीं सरकार अज्यूम करके चल रही है पेपर लीक तो होने वाला है, उसके बाद हम क्या करेंगे। हमारी जो डिमांड थी, जो आंदोलन था, वो इसलिए था कि पेपर लीक ना हो, और ये सारा बिल का फोकस जो है वो इस पर है कि पेपर लीक होने के बाद सरकार क्या क्या कदम उठाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे बस बिल को लेकर नहीं, जो लोग सरकार में बैठे उनके इंटेंशन को लेकर भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि जैसे कल प्रधानमंत्री ने बोला वैसे उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में भी बोला था, और कई सारे लोग उस पर भी खुश हो गए तो कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी, अब क्यों आप लोग प्रोटेस्ट करो,
3: 3 महीने के भीतर चार्जशीट फाइल होकर उस पर कार्रवाई होगी,
4: और लोग हमें तब भी बोल रहे थे आप क्यों प्रोटेस्ट करो, आप तो कॉल ऑफ कर दो। लेकिन हमने देखा पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ, पहली हियरिंग पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का जो काउंसिल था वो प्रेजेंट नहीं था। तो आप लॉज कितने भी बना लो, कुछ भी कर लो, जब आपका इंटेंशन ही उतना डिटरमाइंड नहीं हो आप इंटेंशनली, सो आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन बी कॉन्क्रीट हियर। तो सरकार को जो है फोकस करना चाहिए कि पेपर लीक ना हो, वो फोकस सरकार का अभी नहीं है। पेपर लीक हो जाएगा तो फिर वही चीजें होगी, फिर से स्टूडेंट्स का फ्यूचर अफेक्ट होगा, फिर से जो है आपको री एग्जामिनेशन करवानी पड़ेगी, और उस बीच में फिर से और कितनी जाने जाएगी किसी को पता नहीं है।
3: प्रधानमंत्री ने और एक वीडियो जारी किया था, ये कल का वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले जो वीडियो था उसमें उन्होंने कहा था कि कई निर्णयों की श्रृंखला है, उस श्रृंखला में पहला निर्णय फास्ट ट्रैक कोर्ट का, और उसके बाद ये बिल लाया जा रहा है। इसका मतलब ये कि और भी निर्णय उसमें हो सकते हैं। जो 5 मांगे सीजेपी की तरफ से मंत्रियों के सामने रखी गई थी उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की भी मांग थी, और उसके साथ कुछ
4: व्हाइट पेपर आना चाहिए
3: आपने कहा था, उसके साथ साथ आपने ये भी रखा था उसमें कि एनटीए के भीतर सिस्टमैटिक बदलाव किस तरीके से होने चाहिए, उस पर चर्चा कब शुरू होगी आपको लगता है, क्योंकि आपको आपके बोलने से तो लग रहा है कि आप इस बिल से कुछ ज्यादा खुश नहीं
4: है। तो वही हम सरकार से बात ही कर रहे हैं अभी भी, हम मतलब वी आर ट्राइंग टू आस्क देम कि एक तो कंपनसेशन पर भी अभी तक उन लोगों ने कुछ बोला नहीं है, 1 करोड़ का कंपनसेशन हमने विक्टिम्स की फैमिली को देने बोला था, सरकार ने अश्योर तो किया है कि दे देंगे, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना डिले क्यों किया जा रहा है, जब रातों रात सरकार बदलनी होती है, रातों रात एमपी एमएलए खरीदने होते हैं, तब आपके सूटकेसेस पहुंच जाते 50-50 करोड़ के, लेकिन जहां पर विक्टिम्स की फैमिली को 1 करोड़ का कंपनसेशन देना है तो सरकार ने अभी तक अनाउंस कुछ नहीं किया।
3: इसके तो कुछ नॉर्म्स होते हैं, सरकार ने उस दिन भी कहा था कि उस नॉर्म्स के तहत हम उनको कंपनसेशन,
4: सारे नॉर्म्स सर जनता के लिए है, सरकार रातों रात बदलनी है तो कोई कौन से नॉर्म्स होते हैं, फिर रातों रात सरकार बदलनी है, गिरानी है, एमपीज खरीदने, एमएलएस खरीदने, तो तब नॉर्म्स नहीं देखे जाते, तब जो 10th स्केड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो देखा नहीं जाता है, सारे नॉर्म्स, सारे रूल्स, सारे जो गाइडलाइंस, सारे रूल बुक सिर्फ लोगों के लिए, जनता के लिए, इन लोगों के लिए सारी खुली छूट है।
3: लेकिन आपकी एक मांग उसमें ये थी कि जिस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती, नॉन निगोशिएबल, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और वो तो हो चुका है, ठीक है। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरीके से बदल ही दिया है, एक तरीके से, क्योंकि सेक्रेटरी वहां के बदल दिए, 2 नए सेक्रेटरी ला दिए गए हैं, एनटीए के भीतर जो अधिकारी थे सरकार का आंकड़ा 37 का है, हालांकि विपक्ष कहता है कि कुछ 24 ही उसमें ये थी, जो भी है उसमें, लेकिन वो भी पूरे तरीके से बदल दिया, उनको भी हटा दिया वहां पर। तो इसका मतलब ये कि आपको लगता है कि सरकार आपके दबाव में कदम तो रखने की कोशिश कर रही है, आप सरकार को वो भी उम्मीद नहीं रखते आप सरकार?
4: नहीं, कदम रखा है, आई एम वेरी ग्लैड। और जो प्रधानमंत्री पिछले 10-12 साल से बस हिंदू मुसलमान का डायलॉग कर रहे थे, हिंदू मुसलमान के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे थे, आप देख रहे हो पिछले 4-5 दिनों में वो इंस्टाग्राम पर एजुकेशन के ऊपर रील्स डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस देश के स्टूडेंट्स जो है, यूथ जो है, जेंजी जो है, उन्होंने फोर्स किया है प्राइम मिनिस्टर को, जो प्राइम मिनिस्टर इतनी ज्यादा हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स से प्यार करते थे, उनको फोर्स किया है कि शिक्षा पर बात करो, एग्जामिनेशन पर बात करो। सो दिस इज अ वेरी बिग एंड मेजर विक्ट्री फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने स्टेप्स क्या लिए, जो नया एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, ही वॉज सीन सपोर्टिंग द रेपिस्ट ऑफ बिल्किस बानो, उनका स्वागत करने में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है वेर ही वॉज वेलकमिंग द रेपिस्ट ऑफ बिल्किस बानो।
3: ये मुद्दा जब प्रियंका गांधी ने उठाया था तो बड़ा शोर हुआ,
4: होना भी चाहिए
3: लोकसभा के भीतर शोर हुआ, उन्होंने कहा कि ये गलत बयान है, वो बयान हटा।
4: मतलब आप सोचिए ना, जो बच्चे स्कूल में है, कॉलेजेस में, उनके क्या मैसेज जा रहा है? एक रेपिस्ट के सपोर्टर को आप एजुकेशन मिनिस्टर बना रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर यू सेंडिंग टू द कंट्री? शर्म आ रही है, मतलब ये तो धर्मेंद्र प्रधान से
3: उनका ये कहना था कि हम तो वो कह रहे थे कि ये कानूनन पॉसिबल है, यानी उनको जो छोड़ना वो कानूनन पॉसिबल है।
4: कानूनन पॉसिबल है तो आप वेलकम करोगे उनका हारमाला डालकर, बलात्कारियों का आप हारमाला डालकर स्वागत करोगे, फिर कानूनन पॉसिबल है।
3: तो जो नया मंत्री है उनसे भी आप संतुष्ट?
4: नॉट एट ऑल सर, मतलब कोई रेपिस्ट का वेलकम करता है, हाउ कैन आई बी हैप्पी विद दैट? ये तो मतलब बहुत ही शेमफुल बात है, ना सिर्फ हमारे लिए, इस कंट्री के लिए। सोचिए इंडिया की इमेज क्या आ जाएगी वर्ल्ड में, जब उनको पता चलेगा इंडिया का जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो एक रेपिस्ट का वेलकम कर रहा है हारमाला डालकर। दिस इज वेरी शेमफुल। और जो सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, नया सेक्रेटरी जो बना है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो खुद करप्शन में इन्वॉल्व रह चुके पहले, एनिमल वेलफेयर उनका कुछ था, उसमें कितने सैकड़ों हजारों करोड़ का उन्होंने स्कैम करा है। तो ये तो एक तरीके से एक खराब इंसान को हटाकर दूसरे खराब इंसानों को ये रिवॉर्ड कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे।
3: जो पुल उनके पास है उसमें से
4: एग्जैक्टली मैं कल वही बोल
3: रहा हूं, उनके पास है जो चुने हुए लोग हैं उनमें से
4: ही। मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी में और भी अच्छे लोग होंगे।
3: कौन आपके चॉइस कौन थी मंत्री बनाने के लिए?
4: मंत्री बना हम कैसे कोई चॉइस देते, हमारी सरकार?
3: आपके दिमाग में कोई
4: नहीं? मेरे दिमाग में तो कोई नहीं था, मेरे दिमाग में तो बस यही था कि धर्मेंद्र प्रधान डजंट डिजर्व टू बी द एजुकेशन मिनिस्टर। बट मुझे ये नहीं पता था कहीं से भी आइडिया कि ये लोग एक रेपिस्ट के सपोर्टर को एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे। और भी लोग थे यार दूसरों को बना देते, बट सही बात है, इनके पास जो पूल है वो सारा गुंडों का ही पूल है, वो सारा ऐसे रेपिस्ट लोगों का वेलकम करने वाला ही पूल है। तो लोग ही जब इनके पास ऐसे, तो ये भी क्या ही करेंगे।
3: ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, जो भी बीजेपी करेगी आपको पसंद नहीं आएगा, जो भी ये सरकार करेगी पसंद नहीं आएगा, और सरकार भी इसी बात को
4: सर, आप मुझे बताइए, एज अ जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, अगर आपसे कोई इंटरनेशनली, आप इंटरनेशनली जाओगे, आपसे कोई पूछेगा इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर ने रेपिस्ट का वेलकम किया है, आपको पसंद आएगा वो? इजंट इट शेमफुल सर? मतलब कोई ऐसा तो ढूंढते ना जिसने ये हरकत तो नहीं करी होगी, इससे कैसे कोई खुश हो सकता है सर? मतलब हम देखते हैं हर एग्जाम्स में, नीट का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें हमेशा जो फोरफ्रंट पर रहती है, सबसे ज्यादा लीड करती है या रैंकिंग रहती है, वो लड़कियों की रहती है। व्हाट दोज गर्ल्स विल बी फीलिंग, एक एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो रेपिस्ट का सपोर्टर है, हाउ कैन आई बी हैप्पी विद दिस? इट्स नॉट अबाउट बीजेपी या सरकार, अच्छे कदम लेंगे तो सपोर्ट कर देंगे, लेकिन आप एक रेपिस्ट को, रेपिस्ट के सपोर्टर को एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे, सो मैं तो खुश नहीं हूं सर। मेरी बहन है, सो आई कैन सपोर्ट दिस सर।
3: एक दूसरा मुद्दा इसमें पार्लियामेंट के भीतर बहुत चर्चा में आ रहा है, वो पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर, और राहुल गांधी की मांग को आप सपोर्ट कर रहे हैं कि अमित शाह गृहमंत्री की इस्तीफे को लेकर जो कांग्रेस पार्टी की मांग है उसको आपकी तरफ से सपोर्ट किया गया, क्या इस पर एक बार दोबारा आंदोलन होगा? क्योंकि अभी वन ऑफ द थ्री डिमांड्स जो आपके बारे आपकी तरफ से रखी गई थी उसमें यह था कि जो मामले दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाए, बिहार में लिए गए, महाराष्ट्र में घोषणा कर दी गई और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में यह कहा गया है कि हम जो प्रोटेस्टर्स थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये उन्होंने कहा, लेकिन क्या आपकी मांग पूरी हुई है इस पूरे मामले को लेकर, और जो गृहमंत्री के इस्तीफे को लेकर राहुल गांधी जो कह रहे हैं?
4: मुझे लगता है कि ये सरकार को इस मिसअंडरस्टैंडिंग या डिल्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि एक मंत्री के इस्तीफे के बाद गुस्सा ठंडा हो चुका है। इस डिल्यूजन में ना रहे सरकार, लोगों में अभी भी बहुत गुस्सा है, और वो गुस्सा सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ नहीं था, पूरी सरकार के खिलाफ था। तो अगर ये लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे या नहीं, अभी भी नहीं स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे या हैरेस करते रहेंगे और जो ब्रुटैलिटी करी उसके बाद ये गुस्सा और बढ़ा है, तो ये गुस्सा शांत नहीं हुआ। तो अगर ये लोग जो स्टूडेंट्स है, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, उनके खिलाफ केसेस वापस नहीं लेते तो यस वी विल हिट द स्ट्रीट्स अगेन। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बनेगा।
3: कोई टाइमलाइन है आपके पास?
4: हम बता देंगे उस पर। अभी हम उम्मीद करते हैं ये लोग मान ले बातें, नहीं मानते तो
3: उम्मीद क्या है? सरकार की तरफ से कोई बयान आना चाहिए इस पर?
4: ऑफकोर्स रिटर्न में आना चाहिए कि जितने भी पीसफुल प्रोटेस्टर्स है, जितने भी स्टूडेंट्स है, उनके सभी के ऊपर के जो भी केसेस लगेंगे वो हम वापस लेंगे। एंड दे शुड एंश्योर कि इसके बाद किसी भी स्टूडेंट को हैरेस नहीं किया जाएगा पुलिस के द्वारा। पुलिस ने ऑलरेडी बहुत खून बहा दिया है 20 जुलाई को, शायद से उससे उनका मन नहीं भरा है। और अमित शाह का तो मुझे समझ नहीं आता, लाइक व्हाट इज ही आफ्टर? डज ही वांट टू किल द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया? मतलब बिहार में AK-47 फायर कर दी गई, दिल्ली में पेलेट गन्स यूज कर लिए गए, क्या चल रहा है इस देश में?
3: सरकार की तरफ से यह कहा गया है, दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ 2638 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है सीसीटीवी में जो हिस्ट्री शीटर्स हैं जिनके खिलाफ।
4: तो ये बाहर क्यों थे?
3: हिस्ट्री शीटर्स जो बेल पर बाहर होंगे,
4: तो किसकी गलती है?
3: केसेस चल रहे होंगे,
4: किसकी गलती है? हिस्ट्री शीटर्स अगर क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे थे, इसमें गलती किसकी है? पुलिस की है। पुलिस किसके अंडर काम करती है? अमित शाह के अंडर।
3: उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीजेपी की नहीं है, प्रोटेस्टर्स की नहीं है।
4: जो स्टूडेंट्स
3: आपके प्रोटेस्ट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा आपको
4: लगता? मुझे लगता है ये डेलिबरेटली प्लान किए गए हुए लोग थे, जो मैं पहले से कह रहा था, ये मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं इस प्रोटेस्ट की स्टार्टिंग से कह रहा था, ये डेलिबरेटली प्लान किए गए हुए लोग हैं। और मैं बार बार बोल रहा था कि बीजेपी वाले कुछ गुंडे भेजेंगे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए, और वही हुआ। 19 जुलाई की रात को पत्थरों से भरे ट्रक रखे जाते दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर मंतर के आसपास। अब जंतर मंतर इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया, सेंट्रल दिल्ली में आता है जहां पर पत्थर दिखाई भी नहीं देते, वैसे जंतर मंतर के पास पत्थरों से भरे ट्रक कैसे आ जाते रातों रात? और उस पत्थरों से भरे ट्रक के पीछे एक टूटी हुई वैन खड़ी रहती है जो कम्प्लीटली डैमेज है, पुलिस ने खड़ी रखी। जब मैंने ट्वीट डाला उस पत्थरों से भरे ट्रक और उस वैन का, तो जो वहां पर डीसीपी थे उन्होंने हमारी टीम को बुलाया और कह रहा अभिजीत ऐसे ट्वीट क्यों डाल रहा है यार, ये तो एनडीएमसी का ट्रक है, एनडीएमसी का ट्रक है जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वो उसका डेब्री से सारा। और जो कल रिपोर्ट आई है उसमें ये पता चला है कि वो ट्रक हरियाणा का था, वो एक रोड एक्सीडेंट में पकड़ा गया था, रोड एक्सीडेंट में पकड़ा गया था और फिर पुलिस ने कहा था कि इसको खाली करवा दिया गया था। तो खाली करवा दिया था तो फिर पत्थरों से भरकर फिर से जंतर मंतर के पास कैसे?
3: फिर जो विजुअल्स दिखाए गए और जिसपे दिखाया गया कि पुलिस को मारा गया, क्योंकि एक पिटीशन आपके तरफ से हुई सुप्रीम कोर्ट के, एक पिटीशन उन पुलिस वालों के घर वालों की तरफ से एक पिटीशन की गई सुप्रीम कोर्ट पर, कहा गया कि हमें भी ब्रुटैलिटी से मारा गया प्रोटेस्ट के वक्त पे, उनके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उस बात को लेकर
4: मैं कह रहा हूँ ये ऑर्केस्ट्रेटेड था बीजेपी द्वारा, और मैं पुलिस वालों को भी ये कह रहा था कि मुझे आपके लिए बुरा लगता है, आप पत्थरों से भरे ट्रक वहां लगा देते हो, उन्हीं पत्थरों से आकर बीजेपी के गुंडे।
3: जो पुलिस वालों को पीटा गया उसमें सीजेपी या उनके समर्थकों का कोई लेना देना?
4: कोई लेना देना नहीं सर।
3: Somebody planted it,
4: planted it, not somebody, the BJP planted it, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, the BJP planted it। हम एक महीने से सर प्रोटेस्ट करते, एक महीने में तो कुछ नहीं हुआ। अगर हमारे प्रोटेस्टर वायलेंट होते या हमारे प्रोटेस्टर को ऐसा कुछ करना होता, एक महीने में क्यों नहीं हुआ? उसी दिन क्यों हुआ? और हमने देखा है सर, लाठिया जो लोग गुंडे थे, जो पुलिस वाले भी नहीं थे, उनके हाथ में बैटन्स दी गई थी, लाठिया दी गई थी, उसकी वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो इन लोगों के पास लाठिया किसने दी? पुलिस की लाठिया थी वो, जो ट्रांसपेरेंट लाठिया होती है ना उनकी, वो गुंडों के हाथ में थी और वो स्टूडेंट्स को पीट रहे थे, पुलिस के साथ मिलकर पीट रहे थे, तो उनके पास लाठिया कैसे चली गई? Who gave them the authority to beat students?
3: क्या 20 तारीख को इतनी भीड़ होगी ऐसा आपको लगा था? क्योंकि इतने दिन से आप प्रोटेस्ट पर बैठे थे, इतनी भीड़ तो कभी देखी नहीं थी।
4: इतनी भीड़ कभी नहीं थी, बट ये भी है कि लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा था। और उसमें ये भी चीज हुई कि 20 दिन से सोनम सर भी अनशन पर थे, उसके बाद भी सरकार डायलॉग करने को तैयार नहीं थी, सुनने को तैयार नहीं थी, तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा था लोगों का जो कंसोलिडेट होकर दिखा। और सरकार को मैं वही कह रहा हूँ, सरकार को अगर लग रहा है कि ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा या ठंडा हो चुका है,
3: सरकार की तरफ से आपको पहला कांटेक्ट कब किया गया बातचीत के लिए?
4: सरकार को जो पहला कांटेक्ट था वो 20 के पहले ही था। हाँ। जब मुझे लगता है शायद उनको अंदेशा आया होगा, उनको रिपोर्ट्स मिली होगी कि बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है,
3: सपोर्ट हो रहा है,
4: सो दैट इज व्हेन दे इनवाइटेड अस फॉर
3: डायरेक्टली आपको था या सोनम मांगचुक के लिए था?
4: नहीं, डायरेक्टली सौरभ फुकरा, वो भी पुलिस के थ्रू ही आया था, पुलिस वाले थे कि आप आइए, बात करना चाहते हैं कुछ लोग, तो पहले उन्होंने बोला कि डीएम से बात कर लीजिए। हमने बोला डीएम से क्या बात करें, डीएम थोड़ी ना रेजिग्नेशन लेगा एजुकेशन मिनिस्टर का, तो हमने बोला बात करनी तो टॉप लीडरशिप से करेंगे वरना नहीं करेंगे।
3: लेकिन सोनम वांगचुक, क्योंकि ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ देते हैं जिस मांग को लेकर वो दरअसल अनशन के लिए बैठे थे, और उसके बाद अगले दिन खबर आती है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे।
4: यस।
3: और आप कहते हैं कि हम तो हमारा आंदोलन तो शुरू रहेगा, शायद सरकार को ऐसा लगा होगा सोनम वांगचुक अनशन तोड़ रहे हैं। क्या आपसे बात हुई थी सोनम वांगचुक की कि हम अनशन तोड़ रहे हैं? आपको
4: मुझे कॉल आया था उनकी वाइफ का कि ऐसा ऐसा हुआ है उसके बाद जब अनशन तोड़ा गया,
3: क्योंकि उनकी अलग बातचीत चल रही थी ऐसा लग रहा है सरकार
4: उनको एक तरीके से किडनैप कर दिया था सर, उनको पूरी तरह आइसोलेट कर दिया गया था। मैं उनसे रीच आउट करने को ट्राई कर रहा था, मैं मिलने को भी ट्राई करना था कर रहा था, बट दे डिडंट अलाउ अस टू मीट। एंड हाउ वियर्ड इज दिस, जेपी नड्डा मिल सकते हैं, अपोजिशन के एमपी जाते उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है, मैं मिलने को ट्राई करता हूँ मुझे मिलने नहीं दिया जाता है। तो एक तरीके से किडनैप कर रखा था जहाँ पर बस किडनैपर ही मिल सकता है।
3: अभिजीत दीप के नेता बन गए अभी?
4: नहीं सर, मैं यही ठीक हूँ अभी, लेकिन अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी
3: आपको कंधे पर, जिसको कंधे पर उठाया जाता है वो नेता
4: हूँ सर। मैं इसके खिलाफ हूँ, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट और नॉट, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ। और कल मैं इंस्टाग्राम,
3: नेता बनने में बुराई क्या है?
4: बुराई कोई नहीं है, बात यह है कि लोग जो नेता मानते हैं हीरो बना देते हैं, बुराई उसमें। हमारे देश में ना एक फेटिश है, इमीडिएटली किसी को रातों रात हीरो बना दो, इमीडिएटली रातों रात किसी को लीडर बना दो और बोल दो कि यार यही है जो इस देश को सुधारेगा, यही है जो सब कुछ ठीक कर देगा। हम क्रिकेटर्स के साथ भी यही गलती करते हैं, हम बॉलीवुड वालों के साथ भी यही गलती करते हैं, हम पॉलिटिक्स के साथ भी यही गलती करते हैं। वो अलग बात है कि इसके सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस पॉलिटिक्स में ज्यादा होते हैं।
3: नहीं, बट मेरा सवाल पूछने का मतलब ये है कि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चला था तब वो तो कहते थे कि हम तो पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं, अब पॉलिटिकल है, हम तो नॉन पॉलिटिकल रहेंगे, हमको पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं। आप पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं ऐसा नहीं,
4: मैं तो सारे यूथ को कहता हूँ बी पॉलिटिकल।
3: करेक्ट, तो आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे?
4: सर अभी कहा, मतलब
3: क्या बुरा है अगर
4: बुरा कुछ नहीं। हाँ, एक दूसरी बात मैं क्लियर कर देता हूँ।
3: आर यू अवर्स ऑफ मेकिंग अ पॉलिटिकल पार्टी और जॉइनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी?
4: जॉइनिंग, आई वोंट जॉइन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी।
3: नो पॉलिटिकल पार्टी?
4: पॉलिटिकल पार्टी नो, आई वोंट बी।
3: आर यू श्योर?
4: या आई एम श्योर।
3: अरविंद केजरीवाल भी एक जमाने में यही कहते थे कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा।
4: ज्वाइन तो नहीं,
3: खुद ही बना लिया।
4: हाँ, तो ज्वाइन तो नहीं करूंगा सर मैं, बिकॉज ये लोग जो है, अगर इन लोगों को बाकी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद होती या कुछ होता तो ये लोग वहीं पर नहीं चले जाते। ये लोगों ने क्यों अपनी मूवमेंट बना ली? सो पॉलिटिकल पार्टी दूसरी कोई तो ज्वाइन नहीं करूंगा। बाकी हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है एंड थैंक्स टू द यूथ ऑफ दिस कंट्री जो कंसोलिडेट हो चुके हैं।
3: तो अभी क्या होगा, ये एक प्रेशर ग्रुप बना रहेगा?
4: प्रेशर ग्रुप रहेगा
3: और ये अगले चुनाव तक काम करेगा, अलग अलग मुद्दे पर, अलग अलग चीजों पर। किसी का प्रचार आप करेंगे?
4: बस चुनाव तक लिमिटेड नहीं रहेगा।
3: नहीं, आप किसी का प्रचार करेंगे? नहीं करेंगे,
4: नहीं, उसमें
3: किसी का प्रचार नहीं। आप मुद्दे उठाएंगे।
4: वी आर हियर टू रेज द इशू एंड टू स्पीक फॉर द जेन ज़ी एंड फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। ऑफकोर्स,
3: कौन सा आंदोलन करेंगे उस पर हम भी नजर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत, आपने हमसे बात की इसके लिए, और ये बातचीत इसी तरीके से चलती रही इसी उम्मीद के साथ।
4: ऑफकोर्स,
3: फिलहाल तो हम विदा लेंगे आपसे।
4: थैंक यू सो मच।
2: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
5: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: सर, आप जो भगवा कपड़े पहन करके आए हैं, यहाँ सत्ता पक्ष के सांसदों के द्वारा ये कहा गया कि भगवा का मजाक एक तरीके से उनके द्वारा उड़ाया जा रहा है।
2: अच्छा, भगवा के आस्था के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? हम किसी का नाम तो ले नहीं रहे। ये जो दुराचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी बाबा है, पर्ची निकालने वाले जिन पर आरोप है, वो सारे गेरुआ के आस्था को खतरे में डाला है। सारे रियल संत जो है उसको खतरे में डाला है, रियल बाबा को खतरे में डाला है। तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हम लाए, राम राम जपियो रे सब माल हरपियो रे। आप भगवान के आस्था के साथ ही नहीं, 154 करोड़ भारत के उस आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं जो राम के, जो राम को अपने जीवन में, कर्म में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं, जो शिव को अपना आराध्य समझते हैं, शिव जीवन में है, शिव विचारों में है।
1: लेकिन स्पीकर, स्पीकर साहब ने भी टिप्पणी किया है।
2: निश्चित रूप से विरोध का क्या तरीका होगा? लाठी गोली तो हम इन लोगों की तरह नहीं चला सकते। तो जो और राम के आस्था के साथ ठेस पहुंचाया, सनातन पर हमला बोला, तो क्या अन्य लोग, जितने लोग हैं, वो लोग गेरुआ पहन के नहीं आते हैं? हमने गेरुआ पहन करके आस्था की बात की। और जो लोग गेरुआ पहन के आते हैं, नाटक करते हैं और भारत में उन्माद पैदा करते हैं और भगवान को राजनीति में बेचते हैं।
1: लेकिन आप सर जो दान पत्र लेकर के इधर भाग रहे थे पूरा, तो वो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, इस चोरी करने का, भगवान राम की आस्था को लेकर के।
2: भगवान राम की आस्था की ही ना चोरी हुई है, देखने रहे, सब चोरी कर लिए, देखने रहे। तो भागे, जो भाग रहा है ले करके, तो उसको तो लेके भागना पड़ेगा ना।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
3: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
4: continue to face political pressure to reach a peace deal,
3: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
5: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा. आप अपना देख लो.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: The bill is passed. You want to sit and listen? You sit and listen.
2: कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा. इस कठोर कानूनों वाले
3: देश को आशान्वित करने वाला ये पीएम मोदी का वो संदेश है जो दोनों सदनों से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पारित होने के बाद आया है. इस बिल के पारित होने के बाद सरकार राहत में होगी, लेकिन क्या ये पेपर लीक पर चल रही राजनीति को भी विराम लगा पाएगा? इस सवाल का जवाब आपको राहुल गांधी के इस बयान से काफी हद तक मिल पाएगा.
4: मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं. एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी. इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट. इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता.
3: तो राहुल गांधी रुकने वाले नहीं और उनके इन तेवरों की वजह से पेपर लीक की लड़ाई भी थमने वाली नहीं है. बस कल और आज में फर्क ये आया है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान निशाने पर थे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद गृह मंत्री अमित शाह हमलों की जद में आ गए हैं और उन पर हमलों की वजह से इस लड़ाई की रफ्तार भी बढ़ रही है. राहुल गांधी ने अमित शाह पर हमले बढ़ाए तो बीजेपी उन्हीं को टारगेट पर ले आई. बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दे दिया.
5: माननीय गृह मंत्री जी आएंगे,
3: यानी इस लड़ाई में अभी और ईंधन डालने की पूरी कोशिश हो रही है. अभी तो सिर्फ विशेषाधिकार हनन का नोटिस है, कोई बड़ी बात नहीं कि ये मामला राहुल गांधी पर एक्शन तक पहुंच जाए. ऐसा इसलिए क्योंकि अमित शाह के इस्तीफे की मांग और जोर पकड़ने लगी. राहुल के बाद खड़गे ने भी राज्यसभा में वही मांग दोहरा दी है.
6: अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट गन पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं. किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है.
3: कांग्रेस अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज का हिसाब मांग रही है. अमित शाह के सदन में आकर जवाब देने की मांग कर रही है, उनका इस्तीफा मांग रही है और उसके लिए राहत की बात यह है कि बाकी विपक्षी दलों का भी उसे साथ मिल रहा है. अब देखने वाली बात यह है कि ये लड़ाई आगे किस दिशा में जाती है. पीयूष मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: 2019 दिल्ली दंगे में सजा का ऐलान। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत सभी 5 दोषियों को उम्र कैद। बीजेपी ने केजरीवाल से मांगा जवाब। चढ़ावा मामले पर पप्पू यादव के अजीबोगरीब प्रदर्शन पर सियासी जंग। सरकार बोली संसद नाटक करने की जगह नहीं। अखिलेश ने पोस्ट में पूछा सच बुरा लगा क्या। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर। 5 साल के लिए बढ़ाई गई पीएम किसान योजना। तेल गैस की खोज के लिए 84,000 करोड़ की समुद्र मंथन योजना मंजूर। पीओजेके में मुनीर सेना की बर्बरता पर भारत का सख्त रुख। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जांच और पाक को जवाबदेह ठहराने की मांग की। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में 40 से ज्यादा की वहां मौत हुई। हरिद्वार में बड़ा हादसा। गंगा में डूबे 4 कांवड़िए। चारों के शव बरामद।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। शिक्षा रोजगार के मुद्दे पर लगातार हम आपको खबरदार करते हैं। सरकारी नौकरियों की भर्ती में इंटरव्यू किस तरीके से बड़ा घोटाला है। पेपर लीक तो जांच हो सकती है, लेकिन इंटरव्यू में गड़बड़ियां कभी पकड़ में नहीं आती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम बनते ही इंटरव्यू को भर्तियों में बड़ा भ्रष्टाचार मानते हुए सभी छोटी नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा की। सभी राज्यों को इंटरव्यू खत्म करने के लिए पीएमओ से चिट्ठी लिखी गई, लेकिन राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी की न तो पिछली सरकार ने सुनी, बीजेपी की न कांग्रेस की, और अब भजनलाल सरकार भी पीएम की बात नहीं सुन रही।
1: आग्रह करता हूं राज्य सरकारों को, मैं आग्रह करता हूं सरकार के मेरे सभी साथियों को कि हम छोटी छोटी नौकरियों से ये इंटरव्यू हो सके उतना जल्द बंद करें, मेरिट के आधार पर दें।
2: नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही लाल किले से छोटी नौकरियों की भर्ती से इंटरव्यू को खत्म करने का ऐलान किया था।
3: सरकार ने सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली और केंद्र सरकार के ग्रुप डी, ग्रुप सी और ग्रुप बी के नॉन गैजेटेड पदों में अब भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा।
2: फिर मन की बात में घोषणा भी कर दी और चुनाव में इसे अपनी सरकार का बड़ा काम बताया।
4: एग्जाम का जो रिकॉर्ड होगा वो कंप्यूटर में डाल दिया जाएगा और कंप्यूटर तय करेगा कि पहले 100 कौन है, पहले 200 कौन है, पहले 1000 कौन से हैं, और कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा सीधा उसको ऑर्डर चला जाएगा भाइयों।
2: लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के बार बार इस ऐलान के बावजूद राजस्थान की बीजेपी सरकार में ठीक उसका उल्टा हो रहा है। साल 2018 और 2021 के सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में इंटरव्यू में जमकर भ्रष्टाचार हुआ और अब 2025 के सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में इंटरव्यू होने जा रहा है। मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली पुलिस में 2016 और यूपी में 2017 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में इंटरव्यू खत्म हो चुके। इसके बाद देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा समेत ग्रुप डी, ग्रुप सी के सभी भर्तियों और ग्रुप बी के ज्यादातर भर्तियों में इंटरव्यू खत्म हो गए। खुद प्रधानमंत्री कार्यालय के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अक्टूबर 2020 में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसके लिए चिट्ठी लिख चुके हैं, फिर भी राजस्थान में अब तक इंटरव्यू बंद नहीं हुआ। इसकी वजह से जो ईमानदार छात्र हैं वो परेशान हैं। विश्वेंद्र का सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 के लिखित परीक्षा में 75% नंबर आए थे, लेकिन इंटरव्यू में केवल 50 में से 19 नंबर आए थे। इंटरव्यू के मिनिमम नंबर नहीं आने पर फेल के नियम भी राजस्थान में ही है। इस बार फिर से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 में इसका चयन हुआ है, लेकिन इंटरव्यू को लेकर डरा हुआ है।
5: मैं तो एक साधारण स्टूडेंट की भांति कॉमन सेंस से जो भी जवाब दिया वो उसके अनुसार उन्होंने मात्र 19 नंबर दिए, जिसके कारण मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया था भर्ती में उसमें। और बाकी सब इंस्पेक्टर भर्ती में एक मिनिमम क्राइटेरिया नंबर का भी है कि आपके 50 में से 36 नंबर नहीं आएंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, आप पूरी वैकेंसी से डिबार हो जाओगे। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप कृपया इस एसआई भर्ती से इंटरव्यू प्रोसेस खत्म करें ताकि बच्चों को भी रिलीफ मिले और प्रक्रिया भी तेजी से हो।
2: सुनील का चयन भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में हुआ था लिखित परीक्षा में, लेकिन इंटरव्यू में 17 नंबर देकर फेल कर दिया। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक की वजह से रद्द हो गया था, तो दोबारा इसका चयन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 दोनों में लिखित परीक्षा में चयन हुआ है, लेकिन इंटरव्यू का डर सता रहा है।
6: आप ये इंटरव्यू प्रक्रिया खत्म कर दीजिए। और रही बात, इसमें आप क्या करते हो, जो अर्श पे बैठा है रिटर्न मार्क्स लाख में अर्श पे बैठा है उसको तो आप फर्श पे ले आते हो और फर्श वाले को आप अर्श पे ले जाते हो, तो इस चीज को खत्म करके आप जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको पारदर्शी, ईमानदार और सत्य पे जो रियल कैंडिडेट है उनको सिलेक्शन देने के लिए ये सबसे बड़ा कदम उठाने का सबसे अच्छा मौका है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास।
2: मतलब राजस्थान में वही हो रहा है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कभी लाल किले तो कभी मन की बात में किया।
1: जब नौकरी के लिए इंटरव्यू का कॉल आता है तो नौजवान किसी को ढूंढता है कि मेरा रेलवे में इंटरव्यू आया है, टीचर में इंटरव्यू आया है, टून का इंटरव्यू आया है, ड्राइवर का इंटरव्यू आया है, कोई सिफारिश के लिए किसके पास जाए। विधवा माँ भी सिफारिश के लिए जगह छोड़ी। क्यों? क्योंकि हमारे यहां मेरिट से भी ज्यादा इंटरव्यू के कारण व्यक्ति के साथ न्याय और अन्याय के खेल खेले जाते हैं।
2: हैरत की बात है कि राजस्थान हाईकोर्ट चपरासी भर्ती परीक्षा में भी 100 में से 15 नंबर का इंटरव्यू रखा है। राजस्थान में लंबे समय से छात्र 16 भर्ती परीक्षाओं में केंद्र और दूसरे राज्यों के तौर पर इंटरव्यू खत्म करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि हम इस मांग को लेकर सरकार के सभी मंत्रियों और अधिकारियों से मिल लिए, लेकिन कोई नहीं सुनता।
7: साक्षात्कार एक अंधा कुआ है, इसमें धांधली होने का जो है बहुत ज्यादा खतरा रहता है। जो अभ्यर्थी मेहनत करता है उसको एक डर लगा रहता है कि मुझे जो मेरी मेहनत का फल है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी को कितने नंबर मिल रहे हैं, किस आधार पे मिल रहे हैं, उसका कुछ पता नहीं होता। आदमी जब एग्जाम देता है तो वो OMR को तो चेक करवा लेता है, वहाँ OMR उसके सामने रहती है कि भाई मैंने क्या किया है, लेकिन इंटरव्यू के अंदर रूम में जाकर वो क्या बोल रहा है और किस आधार पे उसको नंबर दिए जा रहे हैं उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता।
2: तो खबरदार करता सवाल ये है कि जब राजस्थान में इंटरव्यू सरकारी नौकरियों और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, भाई भतीजावाद और नंबरों में हेरफेर की मुख्य वजह बनकर उभरा है, इसकी वजह से मेधावी छात्र परेशान हैं। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री इसके खात्मे का ऐलान कर चुके हैं। केंद्र सरकार राजस्थान समेत सभी राज्यों को चिट्ठी लिख चुकी है, लेकिन फिर भी राजस्थान में ये बदस्तूर जारी है। सवाल है क्यों? 16 सरकारी नौकरियों के लिए अब भी इंटरव्यू खत्म करने की मांग पर भजनलाल सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, जबकि खुद प्रधानमंत्री ऐसा करने की बात कह चुके हैं। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: तो राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार से लेकर पहले वसुंधरा राजे और अब भजनलाल शर्मा की बीजेपी सरकारें भी छोटी नौकरियों में इंटरव्यू की व्यवस्था को खत्म नहीं कर पाई। सवाल है क्यों, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल 16 सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त कर सकते हैं। ये सभी पद पे ग्रेड 4,200 और इससे नीचे के पे ग्रेड के पद हैं। इसमें नायब तहसीलदार, कनिष्ठ विपणन अधिकारी, परीक्षा एवं कारागार कल्याण अधिकारी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी, उप निरीक्षक, निरीक्षक ग्रेड 2, निरीक्षक ग्रेड 2 अलग विभाग, आबकारी निरीक्षक ग्रेड 2, प्रवर्तन निरीक्षक, श्रम निरीक्षक, निरीक्षक ग्रेड 2, कनिष्ठ रोजगार अधिकारी, कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी और उप कारापाल का पद शामिल है। सवाल यह है कि जिस इंटरव्यू की व्यवस्था पर अदालत कह चुका है कि धांधली की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं, पेपर लीक का जहर सिस्टम में इस कदर फैल चुका है कि सही और गलत उम्मीदवारों को अलग करना भूसे के ढेर से सुई ढूंढने जैसा हो गया है, राजस्थान में पेपर लीक और इंटरव्यू में साठगांठ करके किस कदर योग्यता से समझौता किया जा सकता है, उसकी मिसाल अभ्यर्थी मंजू देवी देती हैं। आपको याद होगा कि हमने ही आपको RPSC परीक्षा में 11वीं रैंक हासिल करने वाली मंजू देवी की कहानी दिखाई थी, जो रीटेस्ट के दौरान हिंदी में केवल 52 और GK में 71 सही जवाब दे पाई। मॉक टेस्ट का भी उनका वीडियो वायरल हुआ, जिसने राजस्थान में इंटरव्यू के नाम पर हो रही धांधली से सारे देश को खबरदार कर दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार छोटे पदों में इंटरव्यू को खत्म क्यों नहीं कर रही?
8: प्रधानमंत्री बनने के लिए मेन जो एज होता है, आयु होती है, वो क्या होती है?
9: 40।
2: मंजू देवी, याद है आपको? वो अभ्यर्थी जिसने SI भर्ती 2021 की परीक्षा में 11वीं रैंक हासिल की, लेकिन वो एक मॉक इंटरव्यू में आसान से सवालों का जवाब नहीं दे पाई।
10: होम डिपार्टमेंट के उसके मंत्री कौन है?
9: मंत्री सर, सॉरी।
10: पुलिस का मुखिया कौन होता है?
9: पुलिस का मुखिया,
10: मुखिया सबसे हेड कौन है? उस पोस्ट का नाम जानना चाह रहे हैं।
2: सवाल उठे कि जो मंजू देवी साधारण से सवालों का जवाब नहीं दे पाई, वो परीक्षा के टॉपरों में कैसे आ गई? इस गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों के आक्रोश के बाद राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने पकड़े गए कई टॉपर और ट्रेनी थानेदारों का जेल और हिरासत में रिटेस्ट लिया, तो वो साधारण सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए और बुरी तरह फेल हो गए। अगस्त 2025 में ये मामला राजस्थान हाई कोर्ट में पहुंचा और उसने एसआई भर्ती 2021 को रद्द करते हुए आरपीएससी के सदस्यों पर बेहद तीखी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि घर के भेदियों ने ही लंका ढाने का काम किया है। इंटरव्यू कैसे बड़ा घोटाला है, ये पेपर लीक में गिरफ्तार किए गए राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रामू राम राय का और बाबूलाल कटारा के खिलाफ चार्जशीट में दर्ज बयानों में देख सकते हैं। दोनों ने एसओजी और ईडी को दिए बयानों में कबूला है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में सभी सदस्य जिनको नंबर देना होता था उसके कपड़े के रंग के डिटेल शेयर कर लेते थे। कटारा ने तो यहाँ तक कहा कि नेताओं और विधायकों को इंटरव्यू में नंबर देने के लिए फोन आते रहते थे। आयोग की हालत यह है कि पेपर लीक में पकड़ी गई मंजू को 40 नंबर देकर रैंक होल्डर बना दिया, जो एक लाइन बोलना नहीं जानती, ऐसे दर्जनों लोगों ने नौकरी पाई है।
8: स्पोर्ट्स में आपका काफी रुचि रहा है
9: जी सर,
8: तो इसको इस गेम को कहां तक मान्यता दी गई है अभी तक?
9: सर सॉरी,
2: गहलोत सरकार और वसुंधरा सरकार में परीक्षाओं में इंटरव्यू में धांधली के जमकर आरोप लगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 की जांच में आयोग के सभी सदस्यों के आचरण को संदिग्ध माना है। खुद अभी अभी रिटायर हुए राजस्थान लोकसभा आयोग के अध्यक्ष यूआर साहू ने विदाई भाषण में कहा कि इंटरव्यू में नंबर के लिए नेताओं के फोन आते थे, सरकार इस पर बोलने से बचती है।
11: लंबे समय से यूथ की मांग थी कि उसका जो योग्यता है वो एक किसी इंटरव्यू में आकर के अटक जाती है, वो नहीं अटके। इंटरव्यू कुछ पार्ट तक ठीक हो सकता है लेकिन कंप्लीट पार्ट पर ठीक नहीं हो सकता। और माननीय प्रधानमंत्री जी को मंशा है, उसका भी राजस्थान सरकार की हित आयोग इसमें पूरा एग्जामिन करके सबके हित का जो निर्णय होगा वो निर्णय करने में कोई हिचकिचाएगा नहीं, शीघ्र निर्णय करेगा।
2: सबसे गंभीर बात है कि इंटरव्यू लेने वाली संस्था राजस्थान लोक सेवा आयोग में 10 सदस्यों में से केवल 5 हैं। अध्यक्ष भी कार्यवाहक हैं और सचिव भी आज रिटायर कर गए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 4 सदस्यों में 2 का पद लंबे समय से खाली है, ऐसे में बाहरी व्यक्तियों से इंटरव्यू का काम कराया जा रहा है।
12: राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के अलावा सबसे बड़ा भर्ती घोटाला इंटरव्यू के नंबर के रूप में हुआ है। ये जांच में आ भी गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार दोहराया है कि ये भर्तियों में भ्रष्टाचार का बड़ा रास्ता है, मगर राजस्थान सरकार ने अब तक इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है, जिसकी वजह से जो बेरोजगार हैं वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि छोटी भर्तियों में इंटरव्यू खत्म किया जाना चाहिए। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: नौकरियों के बाद अब बात करते हैं जेन अल्फा के प्रदर्शन की, जो लगातार देश भर में फैलता जा रहा है। इस प्रदर्शन में आज 2 नए शहर जुड़ गए, अजमेर और महाराष्ट्र के धाराशिव में टीचरों की मांग को लेकर बच्चे प्रदर्शन करने लगे। अजमेर में छात्राओं ने अपने स्कूल में ताला लगाया और हाईवे पर धरना देने चली गई। छात्राओं की मांग के बाद प्रशासन ने अस्थायी टीचर भी दिया और वादा किया कि जल्द ही उनकी मांग पूरी की जाएगी। महाराष्ट्र में मामला थोड़ा अलग है, जहां टीचरों की मांग करने में जेन अल्फा के साथ गांव के लोग और बच्चों के परिजन भी पहुंचे। अफसरों के ऑफिस में धरना दिया, मांग की कि जब तक टीचरों की बहाली नहीं होगी धरना देते रहेंगे, खबरदार करते रहेंगे।
13: जेन अल्फा लगातार देश में शिक्षा की बदहाली पर सरकारों को खबरदार कर रहा है। पहली बार है जब देश के छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े अफसरों और मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं, अपने हक का खुलकर इजहार कर रहे हैं। जेन अल्फा के इस अभियान में आज अजमेर के बच्चों की बात, जिन्होंने शिक्षकों की कमी से तंग आकर स्कूलों में ताला जड़ दिया, हाईवे जाम कर दिया। शिक्षा के अधिकार को लेकर देश में अफसरों और नेताओं के मुंह से आपने खूब भाषण सुने होंगे, लेकिन हकीकत सबको पता है। लेकिन अब जेन अल्फा ने ठान लिया है, अजमेर की सरवाड़ तहसील के सापला गांव की ये छात्राएं शिक्षकों की कमी के खिलाफ इस तरह लामबंद होकर नारेबाजी करेंगी, शहर के लोगों और खुद इनके माता पिता और अफसरों ने सपने में भी नहीं सोचा हो। इन छात्राओं का कहना है कि 2 साल पहले स्कूल को 12वीं तक का कर दिया गया, लेकिन अभी तक लेक्चरर की नियुक्ति नहीं हो सकी। इसके अलावा स्कूल में पिछले 5 सालों से गणित का कोई स्थायी टीचर भी नहीं है। इसके अलावा विज्ञान और संस्कृत के टीचर्स की भी कमी है। बार बार शिकायत के बाद भी जब इनकी सुनवाई नहीं हुई तो ये सड़क पर उतर आए। लेकिन अब जैन अल्फा ने ठान लिया है कि वो अब जमीनी हकीकत बदल कर रहे हैं।
14: हमें डिपोर्टेशन पे टीचर नहीं चाहिए, हमें हमारे परमानेंट टीचर चाहिए। ये रोड जाम जब तक नहीं खुलेगा जब तक हमारे टीचर नहीं
13: आते। मामले ने तूल पकड़ा तो सालों से शिक्षकों की मांग पर सुस्ती दिखा रहा जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग तुरंत हरकत में आया। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि छात्राओं की मांगों की सूचना मिलते ही CBEO, SDM और तहसीलदार को तुरंत मौके पर भेजा गया।
15: छात्राओं की जो भी डिमांड थी उसको सुनने के लिए CBO को, SDM को, तहसीलदार को तुरंत हमने मौके पर भेजा और जैसे ही सूचना मिली ये लोग सभी मौके पर गए और छात्राओं से उन्होंने चर्चा की और क्या वहाँ की आवश्यकता है, क्या डिमांड है, उसके बारे में जब चर्चा हुई तो सामने आया कि कुछ विषय के जो शिक्षक थे उनको लेकर जो रिसेंट जो ट्रांसफर्स हुए हैं उसमें काफी लोग ट्रांसफर्स इन एंड आउट हुए हैं डिस्ट्रिक्ट से, उससे कुछ स्कूल हमारे जरूर उससे प्रभावित हुए हैं
16: कि वहाँ जो अध्यापक की कमी थी जिसको लेकर के बच्चियों ने तालाबंदी करी और अभिभावक भी उनके साथ में थे, जो बच्चों की मांग थी, जिन शिक्षकों की मांग थी उनकी पूर्ति कर दी और तत्काल प्रभाव से 3 अध्यापकों को लगा दिया है और 2 व्याख्याता है ज्योग्राफी और संस्कृत के, उसके लिए मेरे पास सूचना भिजवाई गई है।
13: तो विरोध होने पर तत्काल 3 टीचर्स को भेज दिया गया, लेकिन छात्राओं की मांग स्थायी शिक्षकों की है, इसलिए अगर छात्राओं की मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो कभी भी ये दोबारा प्रदर्शन कर सकती है। जैन अल्फा का प्रदर्शन राजस्थान से आगे महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है, जिसके धाराशिव में जैन अल्फा का साथ देने के लिए उनके माता पिता भी धरने पर बैठ गए हैं। यानी अभी तक सिर्फ बच्चे ही विरोध कर रहे थे लेकिन धाराशिव में परिजनों ने उनका साथ देकर नए चलन की शुरुआत कर दी है। महाराष्ट्र के धाराशिव की परंडा तहसील का सोनारी स्थित जिला परिषद माध्यमिक विद्यालय, जहां यह विरोध पिछले 4 सालों से शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त होने के खिलाफ हो रहा है। इसमें एक तरफ विद्यार्थी हैं तो दूसरी तरफ अभिभावक और गांव के लोग। गुरुवार को स्कूल पर ताला लगाने के बाद छात्र और अभिभावक जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। देश भर के बाकी राज्यों की तरह यहां भी जैन अल्फा की मांग शिक्षकों को लेकर थी।
14: और ऐसा बोलते हैं कि बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ, यहाँ पर सिर्फ बेटी बचाओ हो गया पर बेटी पढ़ाओ उसका क्या होगा? हमको गुरु नहीं है सिखलाने के लिए, तो हमें एक माध्यमिक का गुरु चाहिए और विज्ञान और गणित के लिए चाहिए, क्योंकि आगे हमें भविष्य में उस जो विषय है उसमें आगे बढ़े, और इसलिए हमें माध्यमिक का गणित विज्ञान के लिए शिक्षक चाहिए।
13: अब आप ही सोचिए, जब स्कूल में गणित और विज्ञान का ही टीचर नहीं होगा तो क्या ही पढ़ाई होगी। इस धरने के बाद अब अफसर अस्थाई टीचर देकर बीच का रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं।
17: हमने तुरंत एक यहाँ पे एक मार्ग निकालने की हमने कोशिश की और जब तक नई पद भर्ती नहीं होती तब तक के लिए हमने गणित और विज्ञान के लिए एक शिक्षक की उपलब्धि वहाँ पर कर दी है और आशा है कि विद्यार्थियों का ये जो आंदोलन था उसका ये सोल्यूशन देने का हमने प्रयास किया।
13: भारत की विडंबना देखिए, जैन अल्फा टीचरों की मांग की वजह से पढ़ने के बजाय प्रदर्शन को मजबूर है, वहीं जैन जी नौकरियों के लिए भटक रहा है। सरकारें पेपर लीक तक नहीं रोक पा रही लेकिन शिक्षा को लेकर समस्या यहीं खत्म नहीं होती। भारत में यूं तो

0: अभियंता समर्थ श्रीवास्तव जब लखनऊ के सिसेंडी प्राथमिक विद्यालय पहुंचे तो सच से सामना हुआ।
1: फाइलों में चमक बरकरार, हकीकत में हालात जर्जर, कुछ ये कहानी है यूपी के कुछ प्राइमरी स्कूलों की, जिनके लिए दावे कागजों पर बहुत किए जाते हैं लेकिन हालात खंडहर से भी बदतर हैं। हम ऐसे एक सरकारी स्कूल में हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि मैं किसी एडवेंचर या किसी ट्रैक पर निकला हूं और मेरे पीछे कोई जंगल है, कहीं ट्रैकिंग कर मैं यहां पहुंचा हूं, लेकिन आप गलत हैं। ये जिस खंडहर को आप देख रहे हैं, अंदर आइए और इस टीन शेड को दिखाइए, इस टीन शेड को देखिए, समझिए कि हालत यहां पर प्राइमरी स्कूल के ठीक सामने, यानी स्कूल भी नहीं, क्लासरूम के ठीक सामने, यानी यहाँ पहले क्लासेस संचालित होती थी लेकिन जब इमारत थी खंडहर हुई तो उसके बाद यहाँ क्लासेस होने फिलहाल बंद हो गए।
0: तो स्कूल में ये खंडहर उस कक्षा के सामने है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये खंडहर इमारत बच्चों के बड़े काम की है। सुनने में अजीब जरूर लगे लेकिन सच यही है।
1: आपने स्कूल्स में ना प्लेग्राउंड्स देखे होंगे, प्लेग्राउंड्स तो नहीं है, यहाँ जंगली घासें आपको जरूर दिखाई पड़ेंगी। ये पीछे का छोर है खंडहर का, यहाँ पर देखें पूरी जंगली घास है, यहाँ पर कितने कीड़े मकोड़े, कितनी गंदगी, सब कुछ है। आइए जरा एक बार यहाँ पर रुक करते हैं वॉशरूम का, यानी कि आप देखें स्कूल के जो वॉशरूम है वहां जाने का रास्ता कैसा है, ऐसा है। हम स्कूल के वॉशरूम में दाखिल हो रहे हैं, इन घास भरे पता नहीं कौन कौन से पेड़ हैं, कितने इसमें कीड़े मकोड़े क्या हैं मुझे नहीं पता। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी वॉशरूम की तरफ नहीं जा रहा हूं बल्कि किसी एडवेंचर के लिए जा रहा हूं, वैसा ही प्रतीत हो रहा है। अब ये वॉशरूम है, आई कांट सी दिस, जस्ट शो इट, दिखाएं, जूम कीजिए, यहीं से जूम कीजिए, जाने लायक हालात नहीं है। ये है एक सरकारी स्कूल का वॉशरूम, यानी कि टॉयलेट, दूसरा एक वॉशरूम, इसमें ताला पड़ा हुआ है।
0: अब सवाल यह है कि इतने गंदे शौचालय का इस्तेमाल बच्चे कैसे करते होंगे, जहां तक संवाददाता भी चंद सेकंड से ज्यादा खड़े नहीं हो पाए।
1: टॉयलेट कहां जाते हो आप लोग, सुसु कहां जाते हो, खंडहर में, सुसु खंडहर में जाते हो, ये इसमें के नहीं जाते हो, क्यों
2: सर मना कर
1: रहा है, तो इसमें खंडहर में जाते हो सुसु,
2: हाँ,
1: उधर क्या है,
2: वहां पे
1: टॉयलेट बना हुआ है,
2: यस,
1: साफ है,
2: नहीं सर,
1: गंदगी में जाते हो,
2: yes।
0: सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी की शिकायत आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन साफ सफाई के सबसे जरूरी मुद्दे की हमेशा अनदेखी होती रही है। इस सरकारी स्कूल में टॉयलेट इतना गंदा है कि बच्चे खंडर में जाना ज्यादा बेहतर समझते हैं, वहीं पेट गड़बड़ होने पर घर जाना पड़ता है।
3: शौचालय की जो बात है ये एक ही बहुत ही गंभीर समस्या है विद्यालयों में, क्योंकि नियमित साफ सफाई न होने से बच्चों को तो जो सफर करना पड़ता है वो होता ही है, हम महिलाओं को कई ऐसी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, जो कि उस समय पे कुछ विशेष दिन होते हैं जिनमें कि हम कहाँ जाएं, समस्या इस बात की आती है। तो हम महीने में कितनी छुट्टियां लेके घर बैठेंगे, हमारे यहाँ प्यून तो है नहीं कि उसको जाके साफ कर देगा या कुछ कर देगा, शिक्षक हैं वो पढ़ाएंगे कि बाथरूम साफ करेंगे कि बच्चों को लेके एक एक को जाके वहां पर शौचालय निवृत्ति कराएंगे।
0: अब आप ही सोचिए, जब महीने में सफाई कर्मी आएगा तो फिर टॉयलेट कैसे साफ रहेंगे, कोई कैसे यहाँ पढ़ेगा जहाँ इस हालात में पीने का पानी उपलब्ध हो। लखनऊ में ये इकलौता स्कूल नहीं है जो बदहाल है, इससे भी बुरी हालत में बच्चे पढ़ रहे हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज के गांव लालूमर के प्राथमिक विद्यालय का हाल देखिए, जहाँ बच्चे उस इमारत में पढ़ने को मजबूर है जो कभी भी गिर सकती है, जिसकी छत बारिश में टपकती है।
1: हम इस वक्त लखनऊ के मोहनलालगंज में हैं, ललूमर प्राथमिक विद्यालय। आपको लग रहा होगा कि मैं किसी जेल में आ गया हूँ और उस जेल के पीछे कुछ बच्चे हैं, ये जेल तो नहीं है लेकिन हालात कुछ वैसे ही हैं। एक ऐसा जेल, एक ऐसी तस्वीर जहाँ कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं मालूम है। पहले इस इमारत को देखें, वाइट फ्रेम दिखाएं और समझें कि ये जो इमारत है ये जर्जर है। ये देखिए वाइट फ्रेम कीजिए जरा, ये देखिए। और इस दीवार के नीचे कौन है, इस दीवार के नीचे मासूम बच्चे हैं।
0: आज तक बच्चों से बात कर ही रहा था कि एकदम से बारिश शुरू हो गई और स्कूल की हकीकत सामने आ गई। इस जर्जर स्कूली इमारत में पानी टपकने लगा और बच्चों की नोटबुक गीली हो गई।
1: डर नहीं लगता आप लोगों को?

0: बोलते नहीं आप लोग? और क्या दिक्कत है यहाँ पे आप लोग को?
1: सर जी टपकती है, टपकती है।
0: छत टपकती है आपकी? छत टपकती है? कहाँ से टपकती है?
2: आखिर राजधानी लखनऊ में जर्जर होते स्कूलों में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, इसे लेकर हमने पीएससी लखनऊ विपिन कुमार को खबरदार किया।
3: तो ऐसे विद्यालय वो चिन्हित कर लिए गए हैं, विद्यालयों का मूल्यांकन और ध्वस्तीकरण प्रक्रिया गतिमान है। साथ में जो टॉयलेट्स और जो थोड़ी बहुत गंदगी है उसको यदि वो नगर निगम में विद्यालय आता है तो नगर निगम के को सूचित करके काम करवाए जाते हैं। साथ में जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में वहाँ पर जो सफाई कर्मी होते हैं वो जाकर के उस सफाई को देखते हैं पूरा।
2: हर बार स्कूलों की दुर्दशा के खुलासे पर जिम्मेदार अधिकारी इसी तरह कार्रवाई करने का भरोसा देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसकी नौबत आती ही क्यों है। समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: तो फाइलों में भले ही स्कूलों को चमकदार बताकर अफसर चैन की नींद सो रहे हों, लेकिन आपने देखा कि लखनऊ के आसपास ही स्कूलों की क्या हकीकत है। शौचालय से लेकर पीने के पानी की सुविधाओं का बुरा हाल है, लेकिन क्या सभी सरकारी स्कूलों का ये हाल है? आज तक की टीम को कुछ स्कूलों में उम्मीद से बेहतर काम भी दिखा। ब्लैकबोर्ड की जगह एलईडी पर पढ़ते बच्चे दिखे।
5: आज उत्तर प्रदेश का शिक्षा बजट मैं अगर आज सब लोगों को अवगत कराना चाहूं, जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में 28,000 करोड़ का मात्र होता था, आज उस शिक्षा बजट को हम सब लोगों ने बढ़ा करके 1,13,000 करोड़ से अधिक तक लेकर के जाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने आज किया है।
2: चाहे शिक्षा का बजट हो या फिर स्कूल में ड्रॉप आउट रेट में कमी की बात, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दावा करती रही है कि उनके राज्य में स्कूल में ड्रॉप आउट रेट 19% से घटकर 3% तक लाने का लक्ष्य है। सवाल यह है कि सरकार इतना बड़ा दावा कैसे कर रही है। इस सवाल का जवाब हमें लखनऊ में ही मिला, जिसके मोहनलालगंज के बरवलिया में हमें बच्चे स्कूल में खेलते नजर आए। इस स्कूल को देखकर लगा कि बेसिक शिक्षा विभाग ने कुछ सरकारी स्कूल में काम किया है। इसका जीता जागता उदाहरण उच्च प्राथमिक विद्यालय बरवलिया है, जहां बच्चों के खेलने कूदने की ही अच्छी व्यवस्था नहीं है। पढ़ने के लिए लगाए गए ब्लैक बोर्ड की जगह अब एलईडी लग गया है, जिससे बच्चे वीडियो के जरिए टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हुए अपने कोर्स को समझते हैं।
0: ये एलईडी जो हैं, जो आप बता रहे हैं सरकार की तरफ से दिए गए हैं आप लोगों को, इनसे कितना हेल्प रहता है? यानी कि ब्लैक बोर्ड में पढ़ाना, एक तो समझाना और बच्चों को समझना, इस टेक्नोलॉजी के प्रयोग से कितना आसान है?
6: इससे बहुत आसानी हो जाती है। देखिए, चौक नो चौक नो डस्टर, केवल हमको इसमें इसका मैग्नेटिक पेन है उससे लिखता हूँ। मैंने अभी वाईफाई का भी पैसा आया था, वाईफाई भी यहाँ जियो का हमने लगा रखा है,
0: तो जिससे वाईफाई भी यहाँ पे
6: वाईफाई भी है, पूरे तीनों टीवी हमारे उससे कनेक्ट है। बहुत सारी चीजें बच्चों को होती है उसमें, साइंस में है, मैथमेटिक्स में है।
0: आप इसमें वीडियो दिखा के समझा देते होंगे? मतलब यूट्यूब पर वीडियो चला दिया, दिखा दिया,
6: वो बच्चों को दिखा देता हूँ।
2: इस स्कूल में तमाम तरीके के खेलकूद के झूले लगाए गए हैं, नई टेबल मेज है और साफ सफाई भी है। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर तरह तरह के प्रेरणादायक वाक्य भी लगाए गए हैं।
0: हम इस वक्त हैं एक ऐसे प्राथमिक विद्यालय में जहाँ पर अगर आप तस्वीरों को देखेंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है। बच्चों का लंच पीरियड अभी अभी ओवर हुआ है और ये बच्चे अपने अपने क्लासरूम के लिए निकल चुके हैं। प्राथमिक विद्यालय बरवलिया इसका नाम है और यहाँ पर आप देखें तो तमाम तरीके के ब्लैक बोर्ड्स लगे हैं। शहीद भगत सिंह जो हैं उनकी यहाँ पर फोटोज लगी हुई हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो आकाशवाणी, रीड अलॉग, तमाम जो योजनाएं हैं हाइट नापने के लिए, एक तरीके से कार्टूनी तरीके से जिससे बच्चों को अट्रैक्ट किया जा सके, वो सारी चीजें हैं। यहाँ पर देखिए पूरा एक तरीके से जो कैबिनेट गठित है वो उसकी जानकारी पूरी दी गई है।
2: अब सवाल ये है कि अगर सरकारी स्कूल ऐसा हो सकता है तो फिर बाकी स्कूल ऐसे क्यों नहीं बनते? बच्चों को जर्जर स्कूल में क्यों पढ़ना पड़ता है? बच्चों और टीचरों को गंदे शौचालय में क्यों जाना पड़ता है?
7: महिला अध्यापकों के लिए वैसे तो स्पेशली कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ पे शिक्षक अपनी मर्जी से अगर बच्चों के टॉयलेट में जाना चाहें तो वहीं जा सकते हैं, अन्यथा उनको खुले में जाना पड़ेगा। इस हेतु व्यवस्था हम लोगों के स्कूल में नहीं करी गई है। और जहाँ भी महिला शिक्षिकाओं के लिए व्यवस्था नहीं है वो लोग भी खुले में ही जाती हैं।
0: अध्यापक ही खुले में जाएंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे?
7: हाँ, इसमें थोड़ा सा तो हम लोगों को भी शर्मिंदा होना पड़ता है कि हम लोगों का मन नहीं करता, फिर भी हम लोगों को जाना पड़ता है कई बार शिक्षकों को।
2: सवाल यह है कि इन स्कूलों का बजट कहाँ चला जाता है? क्या इसमें भी खेल होता है, इसलिए बच्चों और शिक्षकों को बुनियादी चीजें नहीं मिल पाती है?
6: ये समस्या हमने देखी, इस समस्या के लिए 3 साल से लगातार लड़ रहा हूँ, 3 साल से, और हमने इसके लिए कितने पत्र लिखे हैं, हर पत्र का जवाब कुछ ना कुछ घुमा के दे देते हैं। इस बार मैंने इसके लिए बाल आयोग में, महिला आयोग में, उनको मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद, सबको मैंने दिया, क्योंकि जानकारी में वास्तव में जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं प्रसिद्धि विद्यालय पूरे प्रदेश में, जिसमें 70% महिलाएं हैं, 70% महिला आप सोचो, और वो कम पानी पीती, कम पानी इसलिए पीती कि उनको वॉशरूम ना जाना पड़े उस समय में,
0: कम पानी पीती है कि वॉशरूम ना जाना पड़े,
6: वॉशरूम ना जाना पड़े, इससे वो बीमारियों से ग्रसित होती हैं, परेशान होती हैं। 3 साल से मैं लगातार लगा हूं कि जो और सारे काम है, टाइल्स हैं, टाइल्स के बगैर विद्यालय चल जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बाद चल जाएगा, मगर जो टीचर्स शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए वॉशरूम की व्यवस्था है ये जरूर होनी चाहिए। आप
2: शिक्षा देना भले ही सरकार की जिम्मेदारी हो, लेकिन कभी कभी स्कूल के हालात टीचरों और प्रिंसिपल के निजी प्रयासों से भी बदल जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। शिक्षा विभाग भी ऐसे लोगों का हौसला नहीं बढ़ाता और बाकी लोग भी आगे नहीं आते, इसलिए यूपी में बच्चों को अपनी मांग के लिए प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ता है। समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के बाहर NSQF वोकेशनल टीचर्स फ्रंट पंजाब के शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की गई। इसके बाद पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, झड़प हुई, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। शिक्षकों का आरोप है कि उन पर लाठियां चलाई गई। प्रदर्शनकारी पिछले 12 सालों से आउटसोर्सिंग के जरिए सेवाएं दे रहे शिक्षकों को नियमित करने, शिक्षा विभाग में मर्ज करने, आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म करने और वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन पूरे पंजाब में तेज किया जाएगा। संसद में भले ही एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया हो, लेकिन हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत लेकर पहुंचे।
2: पेपर लीक से शुरू हुआ हंगामा पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान लगे आरोपों तक पहुंच गया है। पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, जिसके बाद केसी वेणुगोपाल ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्पीकर को भेज दिया। अनुराग ठाकुर की ओर से दिए गए प्रस्ताव में कहा गया कि रूल 352 का उल्लंघन कर राहुल गांधी ने असंसदीय शब्दों इडियट और अंधभक्त का इस्तेमाल किया, रूल 353 का उल्लंघन कर केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ गंभीर निराधार आरोप लगाए और मोशन से हटकर टिप्पणियां की। उधर जवाब में आए कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया कि कोई गोली नहीं चलने का झूठा दावा कर मंत्री ने जानबूझकर संसद को गलत जानकारी दी और सदन को गुमराह किया।
8: मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है, उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल 222 को देखते हुए और रूल 223 और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें।
9: तो हाउ कैन ए मिनिस्टर मिसलेड द हाउस लाइक दिस? स्टूडेंट्स नो अबाउट इट, नेशन नो अबाउट इट, नाउ ही इज टेलिंग दिस इज नॉट यूज्ड।
2: उधर संसद के दोनों सदनों में बिल पास हो गया, जिसके बाद अब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बाकी है, जहां पीएम मोदी ने पोस्ट करके अब पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।
10: फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ।
4: आज संसद परिसर से एक अजीब तस्वीर सामने आई। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर विपक्ष ने एक नाटक का मंचन किया। साधु के भेष में पप्पू यादव नजर आए। बीजेपी इसे साधु संतों का अपमान बता रही।
11: संसद परिसर में अयोध्या चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष ने नाटक का मंचन करके उठाया, जहां पप्पू यादव साधु के भेष में दान पेटी के साथ पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने सांकेतिक चंदा डाला, जिसके बाद पप्पू यादव दान पेटी देकर भागने की कोशिश करते हैं। जहां उन्हें अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पकड़ते हैं। पप्पू यादव के इस नाटक पर लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जताई। पप्पू यादव के आचरण को संसदीय भावना के खिलाफ बताया।
12: नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, नाटक करने का जगह नहीं है। स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं है।
11: वहीं बीजेपी भी पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर हमला कर रही है।
13: वो तो कालनेमी का वेश धारण करके आए थे और पूरे सदन ने इसकी निंदा की। तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हमला है, राम राम जपियो रे सब माल हरपियो रे। आप भगवान के आस्था के साथ ही नहीं, 154 करोड़ भारत के उस आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं जो राम को अपने जीवन में, कर्म में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं।
14: हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा।
15: आपके माध्यम से देश का हम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते। अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए।
11: उधर संत समाज ने भी पप्पू यादव को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
16: महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए।
17: इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आप जरा बताइए कि जिन लोगों ने मंदिर में दान चोरी किया है, क्या वो भगवाधारी थे? वो तो आठों जेल गए, भगवा साधु तो थे नहीं। और यह आप जरा देखिए कितने दुर्भाग्य है। और हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है।
11: राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले दो दिनों से दान पेटी के साथ प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आज पप्पू यादव की एंट्री ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया। आज तक ब्यूरो।
4: मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के नाम पर करोड़ों रुपए की सरकारी रकम हड़पने का बड़ा खेल उजागर हुआ है। फर्जी किसान बनाकर सरकारी सिस्टम को ऐसा चूना लगाया गया कि करोड़ों रुपए का भुगतान भी हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। फिलहाल मध्य प्रदेश के दो जिलों में ऐसे फर्जी किसानों पर कार्रवाई की शुरुआत हो गई।
18: संतोष है कि देश भर में सर्वाधिक गेहूं खरीदी का किसानों से रिकॉर्ड किसी सरकार के द्वारा बनाया गया तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है।
11: मोहन यादव देश में सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद अपने राज्य में करवाने से खूब गदगद दिखे। मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल 13,41,000 किसानों से एमएसपी पर करीब 104,22,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा, जो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है। लेकिन इस खरीद के रिकॉर्ड की गंगा में कई ठगों ने किसान बनकर अपने हाथ धो लिए और एमएसपी पर गेहूं बेचकर सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगा दी। अब करोड़ों रुपए फर्जी किसानों को बांट देने वाली सरकार फर्जी किसानों और उनसे सांठगांठ वाले सरकारी कर्मचारियों को ढूंढ रही है।
19: मैंने आपने पूर्व में बोला कि हम सत्यापन करते हैं, हमारा पटवारी जाता है, तहसीलदार को रिपोर्ट देता है, उस आधार पर हम गेहूं के उनको मोबाइल पे बताते हैं कि आपका गेहूं का नंबर आ गया, आप तुलवाइए। उसमें कहीं ना कहीं पटवारियों का लापरवाही रही और एक तरह से जो आपने कहा मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं बदमाशी रही, जबकि मैं रोज ही निर्देश दे रहा हूँ उनको जहाँ आते हैं पटवारी। अभी 723 स्थानांतरण किए हमने और अपनी इच्छा के अनुसार। कोई भी अगर कह दे कि मेरे को 100 रुपये का खर्चा है तो 1,00,000 रुपये इनाम दूंगा उसको।
11: मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं की एमएसपी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय की थी। 13,41,000 किसानों ने इस दौरान एमएसपी पर गेहूं खरीदा। एमपी में गेहूं पंजीयन की आखिरी तारीख 10 मार्च थी। आखिरी तारीख से ठीक पहले फर्जी किसानों ने पंजीयन करवाया। 5 से 10 मार्च के बीच देर रात और तड़के सुबह के समय बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए। आरोप है कि असली किसानों और अनुसूचित जाति के किसानों के खसरा नंबरों का इस्तेमाल कर फर्जी नाम दर्ज कराए गए। नियमों के मुताबिक पटवारी और तहसीलदारों को ऐसे पंजीयन रद्द करने थे, लेकिन कई मामलों में बिना जाँच के सत्यापन कर दिया गया। कहीं बटाई का कोई अनुबंध नहीं मिला तो कहीं एक जगह पंजीयन कराकर दूसरी जगह गेहूं की तुलाई कराई गई। जमीन किसी और की थी लेकिन सरकारी भुगतान सीधे फर्जी खातों में पहुंच गया। लेकिन फर्जी किसान बनकर एमएसपी पर गेहूं बेचने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल फर्जी किसानों के नाम पर गेहूं सरकारी केंद्रों पर बेचा गया और सरकारी भुगतान सीधे धोखाधड़ी करने वालों के बैंक खातों में पहुँचा। इसका मुख्य मकसद पड़ोसी राज्यों से सस्ता गेहूं खरीदकर उसे मध्य प्रदेश के सरकारी केंद्रों पर ऊंचे दाम पर बेचकर करोड़ों रुपए का अवैध मुनाफा कमाना था। मध्य प्रदेश में किसानों को गेहूं का अच्छा एमएसपी और राज्य सरकार की ओर से बोनस मिलता है। पड़ोसी राज्यों से खराब गेहूं सस्ते दाम में खरीदकर मध्य प्रदेश के उपार्जन केंद्रों पर फर्जी किसान बनकर बेच देते थे। दामों के अंतर का फायदा उठाते हुए फर्जी किसानों ने करोड़ों रुपए कमा लिए। एमएसपी पर गेहूं खरीदी में सामने आए इस बड़े घोटाले ने सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भिंड और राजगढ़ में फैले इस फर्जीवाड़े में कई पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
19: कलेक्टर से मैंने बात की कि भाई ये कितने गेहूं चले, तो एक अंदाज से लगे पहले इतना गेहूं नहीं चला था, तो ये ज्यादा गेहूं कैसा? तो एक जाँच का विषय आया, मैंने कलेक्टर को भी बोला और कल ही कलेक्टर से मैंने बोला इनके सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि पहले हमने 78 लाख टन गेहूं खरीदा था, अब की और भी ज्यादा 101 तो हमने पहले खरीदा और बाद में भी संज्ञान में आएगी, बाद में भी खरीदा हमने, तो 100 से अधिक हमने गेहूं खरीदा था। ये गेहूं यहाँ आया कैसे इतना ज्यादा? उनका निर्देश है कि जहाँ भी गड़बड़ हो तत्काल कार्रवाई करो, तो 15 पटवारियों को हमने सस्पेंड कर दिया है और किसानों को भी नोटिस दिया कि ये कैसे आया गेहूं, कितना आपने क्या है।
11: सिर्फ यही नहीं, भिंड में 4 फर्जी किसानों के खिलाफ कलेक्टर ने एफआईआर भी दर्ज करवाई है, जबकि जौरा और बानमोर के तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
20: किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो पंजीयन कराए गए थे उसमें जिन खसरों का उल्लेख है उस पे उनका नाम दर्ज न होकर किसी अन्य कृषक का नाम दर्ज है, तो उसमें अभी एक जाँच जो है SDM के स्तर से की गई है, जाँच रिपोर्ट अपनी सबमिट कर रहे हैं और जो भी इसमें संलिप्त है जिनके द्वारा भी नियमों के विरुद्ध कार्य किया गया उन सब पे कार्रवाई।
11: राजगढ़ में भी इसी तरह के फर्जी एमएसपी घोटाले का मामला सामने आया तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। ताबड़तोड़ गेहूं और उसके स्टॉक की जांच शुरू की गई। जिले में 8 समिति प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों को सेवा से हटा दिया गया है। इनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की तैयारी भी की जा रही है। वहीं राजस्व विभाग के 4 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि 4 तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
21: रवि विपणन वर्ष 26-27 में गेहूं उपार्जन के दौरान फर्जी पंजीयन की शिकायतें कलेक्टर महोदय के समक्ष संग आई थी, जिसकी जांच कराए जाने पर अनियमितताएं पाई गईं। अनियमितता में समित 8 समित प्रबंधक एवं ऑपरेटरों को सेवा से पृथक करने की कार्रवाई DR उपायुक्त सहकारिता विभाग से की गई है।
11: इतना बड़ा घोटाला सिस्टम के भीतर मिली भगत से किया जा रहा था, ये साफ है, लेकिन खबरदार करता सवाल ये है कि घपला हो जाने के बाद ही अफसर क्यों जागते हैं? जब ये सारा घोटाला हो रहा होता है तब कोई क्यों नहीं पकड़ा जाता? पंकज शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
4: थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
4: आश्चर्यजनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
3: क्रॉसबॉन सुपर स्ट्रॉन्ग।
4: सुपर स्ट्रॉन्ग
3: और मॉइस्चर प्रूफ।
4: वारंटी
3: 15 साल की।
4: कदम
3: सर प्लीज
4: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन से ही बनेंगे।
5: क्रॉसबॉन HDMR Max, फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
11: वी आर ओवर जिमी।
12: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
13: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: We are over, Jimmy.
3: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PPF samal lega. Aap apna dekh lo.
4: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
5: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
6: सही क्या है, गलत क्या है, आज आप इस रिपोर्ट को देखिए, खुद बताइए। 100 पद की मान लीजिए सरकारी भर्ती निकली, 100 लोग चुने गए, 50 लोग को वेटिंग लिस्ट में डाला गया। चुने गए 100 लोगों में से अगर 30 ने नौकरी एक साल में छोड़ दी, तो वेटिंग लिस्ट वाले 50 में से उन्हें नौकरी देना सही है, या फिर दोबारा जनता का पैसा खर्च करके पूरी भर्ती प्रक्रिया को फिर से करना सही है? फैसला आप ही करिए। और राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार को इन युवाओं के प्रदर्शन की आवाज से आवाज मिलाकर जगाइए, जो बेरोजगार राजस्थान सरकार के मंत्रियों के घर धरना देने के बाद अब जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठे। लेकिन सरकार तो इन्हें धरना देने के लिए भी एक दिन का ही मौका देती है। कपड़े खोलकर अपना दर्द बयां करने वाले ये वो बेरोजगार जो राजस्थान की सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में कुछ पॉइंट से फाइनल लिस्ट से रह गए और वेटिंग लिस्ट में शामिल कर दिए गए। हुआ ये कि एमए, एमबीए, पीएचडी करने वाले जो बेरोजगार चपरासी भर्ती में चुने गए, वो ज्वाइन करने की बजाय दूसरी नौकरियों की तैयारी करने लगे। कई चयनित हुए लोग दूसरी नौकरियों का रिजल्ट आते ही चपरासी की नौकरी छोड़ने भी लग गए। ऐसे में प्रदर्शनकारियों की मांग है कि वेटिंग लिस्ट में आए लोगों को उन खाली पदों पर रख दिया जाए। लेकिन चुनौती ये कि सरकार का ही बनाया वेटिंग लिस्ट का नियम इस चपरासी भर्ती में लागू नहीं हो रहा। इस भर्ती का जिम्मा संभाल रहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है कि प्रयास किया था, बात नहीं बनी, टेक्निकल इश्यू है, सरकार भी चाहेगी लागू हो, प्रयास कर रहे हैं, आगे ईश्वर की मर्जी। लेकिन बेरोजगारों को भगवान के भरोसे छोड़ना कैसे सही माने, जबकि एक साल में खाली हुए पद पर वेटिंग लिस्ट से भर्ती देने के नियम पर सरकार ही अपनी वाहवाही करती है।
7: एक वर्ष के भीतर कर्मचारियों द्वारा पद त्यागने की स्थिति में उस पद की प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा।
6: बेरोजगारों के आंदोलन के बाद अब मंत्री कहते हैं सरकार कोशिश कर रही है।
8: मैंने उचित स्थान पर उस बात को पहुंचाया है, परीक्षण उसका किया जा रहा है, परीक्षण के बाद जो नियमों में प्रावधान है उसके अनुरूप चर्चा करके कुछ किया जा सकता है।
6: इस धरने में दिव्यांग भी है जो इशारों से अपनी बात कहते हैं। इनके इशारों को क्या सरकार तब सुनेगी जब बेरोजगारों की ऊंची आवाज और उनके नारे तक सरकार के कान में नहीं पहुंच पा रहे हैं?
9: 54,000 में से करीब करीब 25,000 तक पद बेकार हो सकते हैं। ऐसे में सरकार वेटिंग रूल को

0: लागू करे, जिसकी घोषणा विधानसभा में की गई है, और इन बेरोजगारों को राहत दे, क्योंकि छोटी नौकरियों में जो कम शिक्षित लोग हैं और जिनकी उम्र बीती जा रही है, उन्हें नौकरी की ज्यादा जरूरत है। मगर ये कह रहे हैं कि तमाम मंत्रियों से मिलने के बावजूद अभी तक कोई रास्ता खुला नहीं है। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल।
2: आपको बता दें कि अपनाया है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जांच और पाक को जवाबदेह ठहराने की मांग की गई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात पर पूरी तरीके से खामोश है जो बर्बरता हो रही है। अभी के लिए इतना ही, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक और हरदम रहिए खबरदार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको पुलिस वालों की तस्वीरें दिखाएंगे जिन पर आंदोलन के दौरान हमले किए गए, उन्हें पीटा गया, वर्दी का अपमान किया गया। आज गालीबाजों के पक्ष में तो लोग खड़े हैं, लेकिन जो पुलिस वाले सर्दी गर्मी बरसात दिन रात जनता की सुरक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा और सम्मान की बात कौन करेगा। ये सही है कि अगर बल प्रयोग ज्यादा था तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ एक तरफा मामला होगा? आज दिल्ली में जब घायल पुलिसकर्मियों के परिवार मीडिया के सामने आए तो पूरा देश सन्न रह गया। 250 से ज्यादा घायल जवान, 110 टूटे बैरिकेड्स, सिर पर लगते पत्थर और 4 घंटे तक अस्पताल में बेहोश पड़े सब इंस्पेक्टर। आज हम पूछेंगे कि अगर पुलिस वाले वोट बैंक नहीं है तो क्या उन्हें पिटने देंगे? क्या उनका मुद्दा कभी इस देश की संसद में उठेगा? सवाल सीधा है और कड़वा भी है। गालीबाजों और उपद्रवियों से तो पूरी हमदर्दी दिखाई जा रही है, लेकिन ड्यूटी पर लहूलुहान हुई वर्दी से इतनी बेदर्दी क्यों? इसके बाद आपको बताएंगे कि जिस नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में बवाल मचा, उसमें कुछ टीचर ही चीटर निकले। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की चार्जशीट में खुलासा जो है वो बताएंगे, क्योंकि इस बार पेपर किसी परीक्षा केंद्र से चोरी नहीं हुआ, बल्कि जिन कंधों पर लाखों बच्चों का भविष्य सवारने की जिम्मेदारी थी वही पेपर चोर निकले। पेपर सेट करने वाले और उसे अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाले टीचर्स ने सीक्रेट रूम से सवालों को रटा। कैसे किया पूरा बताएंगे आपको। बाहर जाकर अपने ट्यूशन के स्टूडेंट्स में बांट दिया। आज आपको पेपर लीक के लिए जिम्मेदार इन चेहरों को जरूर देखना चाहिए। और आखिर में आपको बताएंगे कि एक समय हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल में हिंदू मुस्लिम दंगे कैसे भड़क गए। इसकी शुरुआत सावन में हिंदुओं की बोलबम यात्रा से हुई, जब शिव भक्त पवित्र जल लेने जा रहे थे। उस यात्रा के दौरान मुस्लिम पक्ष के लोगों ने धार्मिक झंडों, डीजे की तेज आवाज को लेकर आपत्ति जताई। विवाद इतना बढ़ा, सांप्रदायिक दंगे वहां पर आज शुरू हो गए। लेकिन आज की शुरुआत हम उन लोगों की कहानी से करेंगे जिनके दर्द और जिनके साथ हुई हिंसा को कभी इंसाफ मिलेगा, ये एक सवाल है। जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को पूरे देश ने देखा। इस मुद्दे पर संसद में बहस हुई, अदालतों में कई याचिकाएं दाखिल हुई, सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्टूडियो तक लगातार सवाल उठे, और ये सवाल उठने भी चाहिए। आखिर जिन प्रदर्शनकारियों पर हमले किए गए उसको कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता, और जिन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जबरदस्त पुलिसिया कार्रवाई हुई उस पर तो प्रश्न उठेंगे ही और हम उठाते रहेंगे। लेकिन जिन घटनाओं में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, लाठी चार्ज किया गया, कुछ महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार के आरोप सामने आए, वीडियो सामने आए, वो घटनाएं किसी भी रूप में सही नहीं थी, और इन तमाम घटनाओं के लिए पुलिस की कार्रवाई की आलोचना होनी ही चाहिए। लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है, वो पक्ष जिसके बारे में उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी पहले पक्ष पर हुई। वजह, आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में घायल पुलिसकर्मियों के परिवार मीडिया के सामने आए। उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी पर हमला नहीं किया, उन्होंने किसी आंदोलन को गलत या सही नहीं ठहराया, उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा। अगर पूरे देश में पुलिस की कार्रवाई पर बहस हो रही है तो उन पुलिसकर्मियों की बात कौन करेगा जो उसी आंदोलन के दौरान घायल हुए, लेकिन उन प्रदर्शनकारियों ने, और अभी तक ये तय भी नहीं है कि वो वाकई प्रदर्शनकारी थे, छात्र थे, या फिर ऐसे हुल्लड़बाज घुस गए थे, ऐसे उपद्रवी तत्व उसमें घुस गए थे, जो भी थे, उन लोगों ने पुलिस वालों के साथ क्या किया, उन परिवारों का दर्द कौन सुनेगा जिनके घर का कमाने वाला सदस्य ड्यूटी पर गया था और घायल होकर लौटा। इन परिवारों का कहना है कि लोकतंत्र में हर पीड़ित की आवाज सुनी जानी चाहिए, चाहे वो प्रदर्शनकारी है या फिर पुलिसकर्मी। इन परिवारों ने दावा किया कि 20 से 22 जुलाई के बीच हुई हिंसक घटनाओं में दिल्ली पुलिस के 250 से ज्यादा जवान घायल हुए, 110 से ज्यादा बैरिकेड तोड़े गए, 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर्स को नुकसान पहुंचा, 350 से ज्यादा हेलमेट टूटे, 25 से ज्यादा सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इन परिवारों को यह भी उनका आरोप है कि कई जगह पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। इन आंकड़ों के साथ इन सभी परिवारों का एक ही सवाल है, और ये पूछा उन्होंने कि क्या देश में खाकी वर्दी पर हुए हमलों की भी उतनी ही चर्चा हो रही है। जितनी पुलिस की कार्रवाई की हुई। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी हिंसा को सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर जानबूझकर हमला हुआ, उन्हें पीटा गया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उन पर पत्थर फेंके गए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तो उस पर भी उतनी ही गंभीरता से बात होनी चाहिए। और ये लोग क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि उनके माता पिता अलग अलग जो लोग पहुंचे अपनी अपनी ड्यूटी पर, वो बता रहे हैं कि कैसे उनके पिता के साथ क्या बर्ताव हुआ। देखिए, आज दिल्ली पुलिस में तैनात एक ACP की पत्नी सामने आई, उपनीत कौर। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई की रात उनके पति जब ड्यूटी से घर लौटे तो वो गंभीर रूप से घायल थे। उन्होंने कहा कि उनकी 2 साल की बेटी उस दिन अपने पिता को उस हालत में देखकर डर गई थी, लेकिन उनका ये डर ना किसी ने जाना ना किसी ने पूछा।
1: मेरा नाम उपनीत कौर है और मेरे पति दिल्ली पुलिस में ACP के पद पे सेवाएं निभा रहे हैं। 20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। मेरे साथ अभी दिल्ली पुलिस के परिवार के मेंबर्स हैं, दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार के मेंबर्स, और हम अपनी आप बीती आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। एक यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ एक पुलिस कर्मी नहीं होता, उसके पीछे होती है उसकी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार, जो देर रात तक वेट करता है कि वो सुकुशल घर लौट आए।
0: दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की बेटी कुंजल ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि उनके पिता जंतर मंतर पर बैरिकेड के पास तैनात थे और अक्सर घर आकर कहते थे कि आंदोलन में अब सिर्फ छात्र नहीं है बल्कि कई बाहरी लोग भी शामिल हो चुके हैं। ये वो परिवार से डिस्कस करते थे। ये भी आरोप है कि 25 जुलाई को भीड़ ने उनके पिता को घेर लिया, उन्हें खींचकर मंच के पास ले गई, उनकी बुरी तरह पिटाई की गई। उनके मुताबिक उनके पिता करीब 4 घंटे तक अस्पताल में बेहोश रहे और उनके सिर में 4 टांके लगाने पड़े। इसी तरह दिल्ली पुलिस के एक ASI की पत्नी सीमा, जिन्होंने अपनी आपबीती सुनाई और ये बताया कि उनके पति पिछले 33 सालों से पुलिस सेवा में हैं और आंदोलन के दौरान उनकी ड्यूटी भी जंतर मंतर पर लगी थी, जिन पर भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने गमले, पत्थर, चप्पल, जूते सब फेंके। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लक्ष्य नाम के एक छात्र ने भी अपने पिता के बारे में बताया और ये कहा कि कुछ उपद्रवियों ने अचानक उनके पिता पर ड्यूटी के दौरान पत्थरबाजी शुरू कर दी और जब वो अपने साथी पुलिसकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे तभी उनके सिर पर पत्थर लगा था। सुनिए।
2: 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड इट वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th एंड अराउंड 2 PM ही वाज अनकॉन्शियस एट द RML हॉस्पिटल फॉर अबाउट 4 आवर्स। जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली है।
1: मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
3: मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है उसमें स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि पुलिसकर्मियों के परिवार खुद सामने आकर मीडिया से बात करें। आमतौर पर पुलिस में अनुशासन के कारण परिवार सार्वजनिक रूप से इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी आप बीती इसलिए सामने आकर रखी क्योंकि उनका मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम में अब तक प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की बात ही पूरे देश के सामने अच्छे से आई है। यानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप दिल्ली पुलिस का अपना पक्ष रखने की कोशिश कह सकते हैं और लोकतंत्र में हर पक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है। आपको वो हिस्सा भी जरूर सुनना चाहिए जिसमें ये बेटी बता रही है कि एक तो पिता को चोटें लगी, ऊपर से सोशल मीडिया में उन्हें ही विलेन बनाया जा रहा था, तब उसके सब्र का बांध टूटा। लेकिन यहां हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि इस पूरी घटना को सिर्फ एक नजरिए से देखने की गलती नहीं करनी चाहिए। एक तरफ वो प्रदर्शनकारी है जो आरोप लगाते हैं कि पुलिस की कार्रवाई में 65 लोग घायल हुए, उनमें कम से कम 3 प्रदर्शनकारियों ने पैलेट गन से घायल होने का दावा किया है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस है जो कहती है कि इसी आंदोलन के दौरान उसके 250 से ज्यादा जवान घायल हुए, कई जगह उन पर हिंसक हमले किए गए। यानी आज जब आप इस आंदोलन के वीडियो को देखें तो कोशिश कीजिए कि किसी एक नैरेटिव का हिस्सा बनने के बजाय पूरी तस्वीर देखें, क्योंकि सच्चाई अक्सर किसी एक वीडियो, एक बयान या एक हैशटैग में नहीं मिलती। आजकल सोशल मीडिया पर फैसले कर दिए जाते हैं सिर्फ किसी हैशटैग, किसी वीडियो, किसी के एक बयान के आधार पर, लेकिन पूरा सच आप तभी जान पाएंगे जब आप दोनों तरफ के वीडियोस को, तमाम वीडियोस को देखेंगे। सच्चाई तब सामने आती है जब हम हर पक्ष को सुनते हैं, तथ्यों को परखते हैं, फिर अपनी राय बनाते हैं। आप खुद तय कीजिए। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हुई है जब दिल्ली सरकार ने जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन में शामिल आम प्रदर्शनकारियों और छात्रों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को बंद करने और आगे कोई कानूनी कार्रवाई ना करने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई 2026 तक जो कुल 13 FIR दर्ज की थी उन्हें अब बंद माना जाएगा और भविष्य में इस आधार पर कोई नई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि इस आदेश में एक बहुत बड़ा कैच भी छिपा है। कैच यह है कि यह छूट सिर्फ उन छात्रों और प्रदर्शनकारियों को मिलेगी जो सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने आए थे और जिनका कोई भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत जिन लोगों ने हिंसा और तोड़फोड़ की, जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। और अभी कांग्रेस जनता पार्टी इसी पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक बार फिर यह कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर इस तरह कार्रवाई जारी रही तो भविष्य में फिर से आंदोलन शुरू होगा।
4: मुझे लगता है कि ये सरकार को इस मिसअंडरस्टैंडिंग या डिल्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि एक मंत्री के इस्तीफे के बाद गुस्सा ठंडा हो चुका है। इस डिल्यूजन में ना रहे सरकार, लोगों में अभी भी बहुत गुस्सा है और वो गुस्सा सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ नहीं था, पूरी सरकार के खिलाफ था। तो अगर ये लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे या नहीं अभी भी नहीं स्टूडेंट्स को ऐसे परेशान करते रहेंगे या हैरेस करते रहेंगे और जो ब्रुटैलिटी करी उसके बाद ये गुस्सा और बढ़ा, तो ये गुस्सा शांत नहीं हुआ। तो अगर ये लोग जो स्टूडेंट्स है, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, उनके खिलाफ केसेस वापस नहीं लेते तो यस वी विल हिट द स्ट्रीट्स अगेन। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा सर।
0: कांग्रेस जनता पार्टी के साथ विपक्षी पार्टियां भी इन मामलों में कानूनी कार्रवाई का विरोध कर रही है, जबकि सरकार का तर्क यह है कि वो आम छात्रों और जो ईमानदारी से प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वो सिर्फ उन लोगों को छूट नहीं देना चाहती जिन पर आंदोलन के दौरान हिंसा तोड़फोड़ करने का आरोप है। साल 2011 में जब यूपीए सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना आंदोलन हुआ था, तब उस आंदोलन में हिंसा और उपद्रव की एक भी घटना नहीं हुई थी। लेकिन इसके बावजूद उस वक्त की सरकार में कई प्रदर्शनकारियों पर अलग अलग FIR दर्ज हुई थी। इसके बाद जब 26 अगस्त 2012 को कोयला घोटाले के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास तक मार्च निकालने की कोशिश की, तब भी उस मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। 7 दिसंबर 2012 को जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था, तब भी उस मामले में कांग्रेस की सरकार ने FIR दर्ज कराई थी। और बड़ी बात यह है कि साल 2011 के अन्ना आंदोलन के बाद जितनी भी FIR उस जमाने में दर्ज हुई, उनका निपटारा होने में कई साल लगे। इनमें एक FIR का निपटारा तो इसी साल फरवरी महीने में हुआ है। और इसी बात को आधार बनाकर बीजेपी के कुछ नेता अब ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी सरकारों में सिर्फ आंदोलन करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्ज की, जिन पर 10-10 सालों तक जांच चलती रही, और अब जब इस आंदोलन में सरकार सिर्फ हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ जांच जारी रखना चाहती है तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच उन मामलों में जांच लगातार आगे बढ़ रही है जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के आपत्तिजनक वीडियोस बनाए गए, उन्हें AI की मदद से बदला गया, उनमें अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ। और इन मामलों में सबसे बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने प्रधानमंत्री मोदी के डीप फेक वीडियो मामले में मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये इसलिए अहम है क्योंकि पहली बार इस तरह के मामले में जांच एजेंसियों ने सीधे सोशल मीडिया कंपनीज की जिम्मेदारी तय करने की कोशिश की है। और सवाल यही है कि जब कोई ऐसा कॉन्टेंट किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आता है जो फर्जी हो सकता है, जिसे AI की मदद से बनाया गया हो और जो किसी की छवि को नुकसान पहुंचाता हो, तो उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह जिम्मेदारी सिर्फ वीडियो बनाने वाले की है या फिर उस प्लेटफॉर्म की भी है जहां से वो वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचता है? अनेकों ऐसे वीडियोस जो हटा दिए जाते हैं, लेकिन डीप फेक वीडियोस फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह तैर रहे। मेटा के प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे वीडियो सामने आए जिनके बारे में जांच एजेंसियों को शक है कि उन्हें AI की मदद से बदला गया या तैयार किया गया। और इसी आधार पर साइबर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट की धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया। जानते हैं इस मामले में पुलिस किन बातों की जांच कर रही है। पुलिस ये देख रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के इन डीप फेक वीडियोस को सबसे पहले किसने बनाया, इन्हें सोशल मीडिया पर किसने वायरल किया, क्या जानबूझकर बड़े पैमाने पर फैलाया गया, मेटा के कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम ने इन्हें समय पर क्यों नहीं रोका। यानी वही सवाल जो दो दिन पहले हमने इसी शो में आपके सामने उठाए थे। हमने पूछा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो फेसबुक से हट सकता है तो फेक न्यूज फैलाने वाले ये डीप फेक वीडियोस क्यों नहीं हटाए जाते। यहां कुछ लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस किसी सोशल मीडिया कंपनी के अधिकारी को ऐसे मामले में आरोपी बना सकती है। तो इसका जवाब है हाँ। अगर जांच एजेंसियों को लगता है कि किसी सोशल मीडिया कंपनी की लापरवाही, नियमों के पालन में कमी, कंटेंट मॉडरेशन की नाकामी की वजह से कोई आपत्तिजनक वीडियो बड़े स्तर पर फैला, तो उसकी भूमिका की जांच हो सकती है। यूरोप के देशों में इन कंपनियों की यह जिम्मेदारी तय हुई है और अब इसी आधार पर मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास का नाम इस FIR में शामिल किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में सिर्फ सोशल मीडिया कंपनीज ही सवालों के घेरे में नहीं है, उन लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा या गाली गलौज वाले वीडियोस बनाए थे। ऐसा ही एक मामला उस वीडियो से जुड़ा है जिसमें आरोप है कि जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान एक लड़की ने प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इस मामले में नोएडा में 0 FIR दर्ज की गई थी, जिसे अब जांच के लिए दिल्ली के संसद मार्ग थाने में ट्रांसफर कर दिया गया है। यहां हम इस आपत्तिजनक वीडियो को बनाने वाली लड़की की तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि जांच पूरी होने और कोई ठोस कार्रवाई होने तक उसकी पहचान सार्वजनिक ना की जाए। हालांकि इस FIR के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अभद्र, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल गलत है और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल बता रहे हैं। FIR का विरोध करने वालों में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास है। उनका कहना है कि सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से किसी को अपराधी नहीं बनाया जा सकता। अगर सरकार और पुलिस को कार्रवाई करनी है तो उन्हें उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि इसके बाद इस बयान के बाद ये बहस और ज्यादा बढ़ गई है और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी पूरी तरह असीमित हो सकती है। संविधान का अनुच्छेद 19 हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) ये भी कहता है कि इस अधिकार पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी भारत में अभिव्यक्ति की आजादी महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन यह अधिकार पूरी तरह एब्सोल्यूट यानी असीमित नहीं है। अगर किसी बयान से हिंसा भड़कने या फिर सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने, मानहानि होने या कानून का उल्लंघन होने की स्थिति बनती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। और इन मामलों में भी जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए गालियों का इस्तेमाल किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का समर्थन हो रहा है और ये बहस आज देश के युवाओं के बीच चल रही है, खासकर जेंजी युवाओं के बीच जो सोशल मीडिया पर अपनी राय खुलकर रखते हैं। कई प्रदर्शनकारी युवाओं ने अब अपने कुछ व्यवहार के लिए माफी भी मांगी है, जैसे जिस छात्रा ने RAF के जवान के साथ मजाक उड़ाते हुए वीडियो बनाया था उसने एक नया वीडियो जारी कर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। हालांकि इस छात्रा का यह भी आरोप है कि माफी मांगने के बावजूद उसे सोशल मीडिया पर डराया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। और अगर ऐसा है तो यह भी उतना ही गंभीर मामला बनता है कि किसी बच्ची को रेप या फिर किसी भी तरह की धमकी दी जाए। लेकिन सवाल है कि जांच होनी चाहिए और जो भी कार्रवाई हो कानून के मुताबिक होनी चाहिए, लेकिन इस तरह किसी लड़की को जान से मारने की धमकियां या रेप की धमकियां देना गंभीर अपराध है और पुलिस को इसे रोकना चाहिए।
5: को लेके बहुत सारे भी यहाँ पे प्रोटेस्ट
6: जंतर मंतर में लड़की को मारा है, ये हमार का दिखा।
7: देखिए अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हेरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है, मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते। आपने बीजेपी MPs जो 50% लोकसभा में MPs बैठे हुए उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप मर्डर डेकोइटी ये सब चीजों का, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर रहे हो।
8: नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए।
9: कुछ लोग कूल बनने के लिए मुझे थ्रेटन कर रहे हैं कि मैं तेरे को इधर पकड़ के ये करूंगा।
10: मोदी जी, हाँ मोदी जी,

गाली गलोच का तो मैं कम्प्लीटली समर्थन नहीं करता हूँ, लाइक गाली गलोच तो नहीं होनी चाहिए, बट सटायर तो अलाउड है सर। ये लोग क्या करें ना, जो फनी पोस्टर्स बन रहे थे पीएम के ऊपर, वो सब उसके ऊपर भी हैरेस कर रहे स्टूडेंट्स को, क्यों हैरेस करना चाहिए? ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस प्लेनेट एज ही क्लेम्स, वो विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु को बच्चों के जोक से क्यों डरना चाहिए? जोक से तुम्हें डरना चाहिए। और दूसरा, जेंजी का अपना एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है। मैंने ये कह रहा कि गाली गलौज का मैं समर्थन करता हूँ और वो

0: अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
1: खैर, भारत में इस साल का सबसे बड़ा मुद्दा शायद यही नीट पेपर लीक का रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पेपर लीक हुआ कैसे? इस मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की। इसमें पेपर लीक की जो कहानी सामने आई वो इस देश के हर नागरिक को सुननी चाहिए। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि इस साल नीट का जो पेपर लीक हुआ वो 2024 वाले पेपर लीक से बिल्कुल अलग था। 2024 में आरोप था कि परीक्षा केंद्र पर पेपर चोरी करके उसे लीक किया गया था, लेकिन इस बार जांच एजेंसियों को शक है कि समस्या पेपर बाहर जाने से पहले शुरू हो गई थी। और ये हुआ कैसे था वो समझिए। असल में किसी भी बड़ी परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर तैयार करना है वो एक बहुत ही गोपनीय प्रक्रिया होती है। इसमें अलग अलग स्तर पर लोगों की जिम्मेदारी तय की जाती है ताकि किसी एक व्यक्ति के पास पूरी जानकारी ना हो। लेकिन इस बार की नीट परीक्षा में कुछ लोग ऐसे थे जो क्वेश्चन पेपर तैयार करने की प्रक्रिया में भी शामिल थे और उन्हीं क्वेश्चन पेपर के अनुवाद का काम भी कर रहे थे, यानी उन्हें फाइनल क्वेश्चन पेपर देखने का ज्यादा समय और ज्यादा पहुंच मिली हुई थी, जिसके कारण ये पेपर लीक हुआ। सीबीआई के मुताबिक इसी का फायदा उठाकर कुछ सवाल पहले याद किए गए और फिर उन्हें छात्रों तक पहुंचाया गया। इनमें भी एनटीए के पैनल में शामिल 3 टीचर्स पर आरोप है कि क्वेश्चन पेपर तैयार करने और मराठी अनुवाद की प्रक्रिया के दौरान अंतिम सवालों को देखा था। इनमें केमिस्ट्री के टीचर पीवी कुलकर्णी, फिजिक्स की टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारे और बायोलॉजी की टीचर मनीषा संजय हवलदार शामिल थी। अब यह आरोप है सीबीआई का, और सीबीआई का आरोप है कि इन तीनों टीचर्स ने फाइनल क्वेश्चन पेपर के सवालों को याद कर लिया और पुणे में अपनी निजी ट्यूशन क्लास से जुड़े कुछ छात्रों को ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण बताकर उन्हें तैयार करने के लिए दे दिए। सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया कि ये टीचर्स क्वेश्चन पेपर तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान एक सुरक्षित माहौल में रखे गए थे, लेकिन जांच एजेंसियों का आरोप है कि वो उस प्रक्रिया के बीच अपने घर जाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, फिर अगले दिन वापस अपनी ड्यूटी पर आते थे और यहीं से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। यानी ये टीचर्स जब पेपर सेट करने या उसके अनुवाद करने का काम कर रहे थे तभी उन्हें बाकी जगहों पर भी जाने की इजाजत मिली, और इसी वजह से जो सवाल इन्हें याद होते थे इन्हें ये छात्रों को लिखवा देते थे, जिसके कारण ये पेपर लीक हुआ। एक लाइन में कहें तो जो टीचर्स इस पेपर को सेट कर रहे थे उन्हीं टीचर्स ने इसे लीक किया। ये भी आरोप है कि मनीषा वाघमारे नाम की एक ब्यूटिशियन जो इन टीचर्स को जानती थी उसे कुछ छात्रों के जरिए ये सवाल मिले। इसके बाद आरोप है कि उसने इन सवालों को क्वेश्चन पेपर के रूप में बाकायदा तैयार किया और धनंजय लोखंडे नाम के व्यक्ति तक पहुंचाया। इसके बाद ये सवाल कई लोगों कई राज्यों तक पहुंचाए गए, यानी एक ऐसा नेटवर्क तैयार हुआ जिसमें सवाल तैयार करने वालों से लेकर उसे छात्रों तक पहुंचाने वाले लोगों की भूमिका सामने आई। अब सीबीआई के मुताबिक अगर ये ब्यूटिशियन इस नेटवर्क में शामिल नहीं होती तो शायद ये सवाल इतने बड़े स्तर पर नहीं फैलते और मामला सामने भी नहीं आता, या फिर ये प्री प्लान था। इस पूरी कहानी से ये भी समझ आता है कि जिन युवाओं ने इस मुद्दे पर आंदोलन किया वो गलत नहीं थे, उनकी मांगे सही थी। परीक्षा व्यवस्था में कमियां हैं और जवाबदेही कोई नहीं लेता, और जानते हैं ये गंभीर क्यों है। एक छात्र जो सालों साल मेहनत करता है वो सिर्फ इसी क्वेश्चन पेपर पर भरोसा करता है, उसका पूरा जीवन जैसे इसी पर टिका हो। उसे भरोसा होता है कि परीक्षा में सभी को बराबर मौका मिलेगा, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो नुकसान सिर्फ उन छात्रों का नहीं होता जो परीक्षा देते हैं, नुकसान पूरे सिस्टम के भरोसे का होता है। और यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आरोपी कौन है, सवाल ये भी है कि ऐसी व्यवस्था कैसे बनाई जाए जिसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अंदर का हो बाहर का हो, टीचर हो ट्यूशन पढ़ाने वाला हो, कोई भी हो, लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना कर सके। इस पूरे घटनाक्रम के बीच लगातार हाई लेवल बैठकें हो रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि सरकार कई मुद्दों पर अंदर खाने चर्चा कर रही है। जैसे आज संसद भवन में दोपहर 1:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसके बाद दोपहर 3:15 पर जब यह बैठक खत्म हुई तब इसके तुरंत बाद गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। इसी बैठक के बाद 15 मिनट बाद 3:30 बजे गृहमंत्री अमित शाह संसदीय कार्य मंत्री किरेन

0: जीजू, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से जाकर मुलाकात की। और इन बैठकों के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सरकार विपक्ष की घेराबंदी और जेंजी आंदोलन के बाद एक्शन मोड में है। देखिए,
1: रिपोर्ट दैट राज्यसभा एट इट्स सिटिंग हेल्ड ऑन द 30th
2: रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल पे आज यहां पारित किया गया है लोकसभा के सदन में, लेकिन विपक्ष के साथियों ने किसी ने भी इस बिल के चर्चा में भाग नहीं लिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
3: अपना सीट में आप बैठिए, अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 3 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
4: सरकार से इनको कोई लेना देना नहीं है, हम इनकी घोर निंदा करते हैं। माननीय सभापति महोदय, हर बात में हंगामा करना, हुल्लड़ बजाना, सड़क छाप राजनीति करना और सदन की गरिमा को तार तार करना, ये इनका स्वभाव हो गया है।
5: Adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, 3rd August 2026.
0: आज पप्पू यादव की इन तस्वीरों को लेकर भी खूब विवाद हुआ है। राम मंदिर में चंदा चोरी की जो घटना हुई, उसके खिलाफ पप्पू यादव साधु के भेष में संसद पहुंचे। वहां विपक्षी सांसदों ने दान लेने के बाद उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से ये दिखाया कि कैसे राम मंदिर के चंदे को कुछ लोगों ने चुरा लिया। हालांकि कई लोग इस घटना पर आपत्ति भी जता रहे हैं। देखिए,
6: क्यों भाग रहे हैं?
7: राम राम जपियो रे, सब माल हक पियो रे,
8: देंगे चंदा चोरों को।
9: वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, नाटक करने का जगह नहीं है। स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं है।
0: कहते हैं किसी समाज को समझना हो तो उसके आंकड़े नहीं, उसकी कहानियां पढ़िए। और भारत के समाज की सबसे गहरी कहानियां अगर किसी लेखक ने लिखी है तो उनमें सबसे बड़ा नाम है मुंशी प्रेमचंद जी का। वही मुंशी प्रेमचंद जी जिनकी आज 146वीं जयंती है। मुंशी प्रेमचंद जी सिर्फ कहानीकार नहीं थे, वो उस भारत की आवाज थे जहां किसान गरीबी से जूझ रहा था, जहां शिक्षा और अवसर सबके लिए बराबर नहीं थे और जहां जाति वर्ग आर्थिक असमानता लोगों की जिंदगी तय करती थी। उनकी कहानियां अपने समय की समस्याओं को दिखाती थी, लेकिन उनके सवाल आज भी जिंदा हैं। आज जब देश में शिक्षा, रोजगार, असमानता, युवाओं के भविष्य को लेकर बहस हो रही है तो हमें लगता है कि मुंशी प्रेमचंद जी के विचार आज के भारत का मार्गदर्शन कर सकते हैं। और ये इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि आज उनकी जयंती है। मुंशी प्रेमचंद जी की पहली सीख ये थी कि शिक्षा सिर्फ डिग्री और नौकरी का माध्यम नहीं होनी चाहिए, जबकि हमारी सरकारों, हमारे समाज ने कभी इस मूल विचार को समझा ही नहीं। आज शिक्षा को अक्सर नौकरी पाने का रास्ता माना जाता है। कितने नंबर आए, कौन सी डिग्री मिली, कितनी सैलरी मिलेगी, यही सवाल पूछे जाते हैं, जबकि सरकारों की कोशिश ये होनी चाहिए कि शिक्षा लोगों का ऐसा विकास करे कि वो भी योग्य बने, देश की जिम्मेदारी के साथ आर्थिक तरक्की के रास्ते पर लेकर जाए और उनके लिए इस शिक्षा के जरिए रोजगार का साधन बने। मुंशी प्रेमचंद की दूसरी सीख ये थी कि जिस शिक्षा से असमानता कम ना हो वो शिक्षा अधूरी है। उनका पूरा साहित्य गरीब कमजोर वर्गों की पीड़ा के सामने लाता था। उनकी कहानी गोदान का हीरो सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि वो उस भारत का चेहरा था जहां मेहनत करने वाला व्यक्ति भी व्यवस्था की कमजोरियों में फंस जाता है, अटक जाता है। प्रेमचंद जी जानते थे कि समाज की असली तरक्की तभी होगी जब अंतिम व्यक्ति तक अवसर पहुंचेगा। आज शिक्षा व्यवस्था के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक गरीब बच्चे और एक अमीर बच्चे को समान अवसर मिल रहा है? क्या गांव के बच्चे, शहरों के बच्चे एक जैसी सुविधा है? क्या भाषा, पैसा, संसाधन किसी बच्चे के भविष्य तय कर रहे हैं? अगर शिक्षा समाज की खाई को कम करने के बजाय उसे बढ़ा दे तो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उनकी तरक्की जो है बच्चों की, वो सही मायने में तभी होगी जब शिक्षा की बराबरी हो। और तीसरी सीख उनकी ये थी कि रटने वाली शिक्षा सबसे कमजोर शिक्षा है। तो मुंशी प्रेमचंद जी के समय भी शिक्षा को लेकर सवाल थे। वो ऐसी शिक्षा के पक्ष में थे जो सोचने की क्षमता पैदा करे। आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौतियां यही है, याद करिए और फिर जाकर लिखिए। मुंशी प्रेमचंद जी की सोच हमें याद दिलाती है कि शिक्षा का मकसद सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं होना चाहिए, शिक्षा का मकसद होना चाहिए सोचने वाला इंसान बनाना, ऐसा युवा जो सवाल पूछ सके, तर्क कर सके, समाज को बेहतर बनाने में योगदान दे सके। चौथी सीख उन्होंने ये दी थी कि सत्ता और विपक्ष दोनों को जनता के दर्द को समझना होगा। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में आम आदमी को केंद्र में रखा। उनके पात्र राजा महाराजाओं से ज्यादा किसान, मजदूर, महिलाएं, गरीब लोग होते थे। उनका संदेश साफ था कि किसी भी व्यक्ति में अगर आप देखिए, किसी भी जगह पर कोई व्यवस्था देखिए, तो किसी भी व्यवस्था की सफलता इस बात से तय होती है कि उसमें सबसे कमजोर व्यक्ति की स्थिति कैसी है। आज सरकारों के लिए सीख है कि विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखना चाहिए, बल्कि लोगों की जिंदगी में महसूस होना चाहिए। और विपक्ष के लिए सीख है कि सिर्फ विरोध करना काफी नहीं, उसे भी जनता के असली मुद्दों को समझना होगा, समाधान में योगदान देना होगा। और पांचवी और आखिरी सीख उनसे ये भी ली जा सकती है कि युवा बदलाव की असली ताकत है। मुंशी प्रेमचंद जी ने युवाओं को हमेशा जागरूक और जिम्मेदार नागरिक के रूप में देखा। आज की जेंजी के पास पहले से ज्यादा जानकारी है, सोशल मीडिया है, अपनी बात रखने की ताकत है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी की सीख कहती है कि आवाज के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। सवाल पूछिए, व्यवस्था से जवाब मांगिए, लेकिन हम सबको मिलकर इस समाज को बेहतर बनाना है। और बदलाव तब आएगा पूरी व्यवस्था में जब सवालों के साथ हम समाधान की भी कोशिश में जुट जाएंगे। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक बार कहा था कि साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाने वाली सच्चाई है। और हमें लगता है कि मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर उनके विचारों की ये टिप्स जो है, ये हमारी सरकारें, हमारे नेता, हमारे समाज को जरूर लेनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि नेपाल इस वक्त हिंदू मुस्लिम दंगों की आग में क्यों जल रहा है। यह हिंसा 26 जुलाई को शुरू हुई थी जब नेपाल के सुनसरी जिले के कप्तानगंज इलाके में हिंदुओं द्वारा सावन महीने की बोलबम यात्रा निकाली जा रही थी। दावा है कि इस यात्रा में जब हिंदू पक्ष कोसी बराज की तरफ पवित्र जल लेने जा रहे था, यात्रा के दौरान डीजे और तेज आवाज में धार्मिक संगीत बज रहा था। तभी कुछ जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन्होंने धार्मिक झंडों और डीजे की तेज आवाज को लेकर आपत्ति जताई। यही से शुरुआत हुई। आपत्ति के बाद विवाद इतना बढ़ा कि हिंदू और जो मुस्लिम समाज है उनके बीच सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए हैं। स्थिति को संभालने के लिए नेपाल पुलिस और सुरक्षा बल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब हालात और बिगड़ गए जब पुलिस ने वहां भीड़ को खदेड़ने के लिए हवाई फायरिंग शुरू कर दी और वहां आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। दावा है कि पुलिस की ये वही कार्रवाई थी जिसमें 30 साल के ओम प्रकाश मेहता और जयप्रकाश मेहता की मौत हो गई और इन मौतों से नेपाल के हिंदू पूरी तरह भड़क गए। आरोप लगाया उन्होंने कि पुलिस ने मुस्लिम समुदाय पर कार्रवाई ना करके जानबूझकर दो हिंदुओं की हत्या की है और उनके त्योहार में रुकावट डाली। इन आरोपों के बाद वहां तेजी से हालात बिगड़ने लगे। अगले दिन 27 जुलाई को पुलिस ने कर्फ्यू जरूर लगाया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अलग अलग इलाकों में हिंसक घटनाएं बढ़ी, खबरें सामने आ रही हैं। 30 जुलाई तक सिराहा जिले के गोल बाजार और लहान में विरोध प्रदर्शन और हिंसक झड़पें शुरू हो गए। ये वही हिंसक झड़पें थी जिनमें गणेश यादव नाम के एक लड़के की मौत हुई और इस मौत से हिंदुओं का आक्रोश और बढ़ गया है। बाजार बंद हो गए हैं, सरकारी बसें रुक गई हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद किया गया है और ऐसा लगने लगा है कि नेपाल में हालात फिर काबू से बाहर है। नौबत यह आ गई है कि नेपाल के इन जिलों में सेना उतारनी पड़ी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को राष्ट्र के नाम संबोधन में ये कहना पड़ा कि इस हिंसा को तुरंत रोका जाए, लेकिन दावा है कि इस अपील के बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। और नेपाल कैसे इन दंगों में जलता रहा, आप खुद इन तस्वीरों में देखिए।
10: केही दिन अघि सुनसरीको देवानगंज सिरा लगायतका स्थानमा भएको दुखद घटना र त्यसपछि केही जिल्लाहरूमा उत्पन्न अशान्त वातावरणलाई लिएर नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा गम्भीर र संवेदनशील छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कानुनी कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ।
0: नेपाल के जिस इलाके से यह हिंसा शुरू हुई वहां हिंदुओं की आबादी 86.2% है, जबकि जो मुस्लिम आबादी है वो है 13.8%। अगर सुनसरी जिले की बात करें तो वहां भी मुसलमानों की आबादी है 12.3% और यह आंकड़ा पूरे नेपाल में जो मुस्लिम्स की कुल आबादी है उससे लगभग 7% ज्यादा है। यहां एक और अहम बात यह है कि नेपाल के जिन इलाकों में हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं वो इलाके बिहार के सीमांचल से लगते हैं। वही सीमांचल जहां मुस्लिम्स की आबादी सबसे ज्यादा है और जिनकी सीमा पश्चिम बंगाल के जिलों से लगती है। पश्चिम बंगाल के इन जिलों की यही सीमा बांग्लादेश से लगती है। इनमें भी नेपाल के सुनसरी जिले की सीमा अररिया जिले से लगती है और यहां भी मुस्लिम्स की आबादी 43% है। ये आंकड़े हम आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा होने से इन इलाकों को भी अब संवेदनशील माना जा रहा है। वहां सीमा पार सुरक्षा कड़ी की गई है। यहां यह भी देखना होगा कि नेपाल साल 2008 तक एक हिंदू राष्ट्र था। उस वक्त जब नेपाल में राजशाही का दौर खत्म हुआ तब नेपाल में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। दावा किया जाता है कि कुछ हिंदुओं ने इसका समर्थन किया जबकि कुछ हिंदू आज भी इसका विरोध करते हैं और इस हिंसा के बाद भी कई हिंदुओं ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की। हालांकि ये मांगे उस सोशल मीडिया से उठ रही हैं जिसकी भूमिका अब हर हिंसा हर उपद्रव में संदिग्ध होती है। जब दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ तब सोशल मीडिया के जरिए कई फेक न्यूज फैलाई गई, गलत जानकारियां फैलाई गई जिससे लोगों को भड़काने की कोशिश हुई और अब नेपाल में जब दंगे हो रहे हैं तब वहां भी सोशल मीडिया की भूमिका को संदिग्ध माना जा रहा है। नेपाल की जांच में यह सामने आया है कि इस हिंसा में सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में ऐसे वीडियोस ऐसी तस्वीरें शेयर की गई जिनमें से कई पुराने थे और इस घटना से कोई संबंध ही नहीं था और पुरानी तस्वीरें दिखा दिखाकर लोगों को भड़काया जा रहा था। दूसरे देशों की घटनाओं की तस्वीरें फैलाई गई और ऐसी तस्वीरों को खूब वायरल किया जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा भड़का और यह हिंसा और भयानक हो गई। नेपाल की सरकार ऐसा मान रही है कि अगर सोशल मीडिया फेक न्यूज नहीं फैलाता तो वहां यह हिंसा कई जिलों को अपनी चपेट में नहीं लेती। लेकिन सोचिए जब नेपाल में तख्ता पलट हुआ था तब भी इसी सोशल मीडिया के जरिए कई फेक न्यूज और गलत सूचनाएं फैली थी, लेकिन क्योंकि तब सरकार गिर रही थी इसलिए सोशल मीडिया के खतरों को नजरअंदाज कर दिया गया और जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं वो उस वक्त वाहवाही कर रहे थे। लेकिन आज वही सोशल मीडिया इनके लिए खतरे की घंटी बज गया है और आज जब यही सोशल मीडिया इस हिंसा को फर्जी खबरों से और सुलगा रहा है तो अब वहां सोशल मीडिया के खतरों की बात हो रही है। हकीकत तो यह है कि आज के दौर में सोशल मीडिया कंपनीज की जिम्मेदारी तय करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिनके प्लेटफॉर्म से झूठ फैलता है उसे रोकने में यह पूरी तरह नाकाम है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी छोर पर बसा स्पेन का छोटा सा एक ऑटोनोमस क्षेत्र केरा एक बड़े प्रवासी और सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है। क्योटा और मेलिला स्पेन का ऐसे शहर है जो यूरोप नहीं बल्कि अफ्रीका की जमीन पर बसे हैं और इनकी सीमा सीधे मोरक्को से लगती है और अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो ये यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन महाद्वीप के बीच सीधी जमीनी सीमा भी है। लेकिन दावा है कि इन्हीं इलाकों में करीब 60,000 मोरक्को और अफ्रीकी मूल के प्रवासी सीमा तोड़कर समुद्र के रास्ते स्पेन के इलाके में घुस गए हैं। स्पेन का क्वेटा बॉर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। हजारों लोग कटीली बाड़ों के गेट तोड़कर और सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देते हुए क्वेटा में पहुंच गए हैं। सैकड़ों लोग रबर के रिंग्स, बोट, छोटे टायर्स के सहारे उफनते समुद्र को पार करके स्पेन की धरती पर पहुंच रहे हैं। इस खतरनाक कोशिश में करीब 34 लोगों के डूबने की खबर भी है और डूबने से उनकी मौत हो चुकी है। स्थिति इस कदर बेकाबू हो चुकी है कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने क्योटा आर्म्ड फोर्सेस और टैंक्स की तैनाती कर दी है। देखिए
11: Thank you. Efectivamente, tenemos que ver cómo gestionamos. Cómo gestionamos, no solamente desde el punto de vista, vamos a decirlo, más aparente, situando boyas para que se vea desde el punto de vista administrativo que existe una barrera de contención y, por tanto, se puede producir y desarrollar esas repatriaciones en frontera, pero también desde el punto de vista legislativo, si tenemos que modificar algunos aspectos de las leyes para poder garantizar esas repatriaciones en frontera de la manera más eficiente posible.
0: अब ये समझिए कि ऐसा हुआ क्यों. गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, इससे जूझ रहे अफ्रीकी प्रवासियों के लिए क्वेटा घी यूरोप में घुसने का सबसे सुलभ दरवाजा माना जाता है और वहां पहले भी समुद्र के रास्ते कई प्रवासियों ने शरण ली है. लेकिन इस बार स्पेन के क्वेटा में अचानक आई भीड़ के पीछे वहां के सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला है जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन गया. इस आदेश में कोर्ट ने कहा था कि समुद्र या जमीन के रास्ते क्वेटा या मेलेला पहुंचने वाले किसी भी अप्रवासी को बिना किसी उचित कानूनी प्रक्रिया या जांच के सीधे मोरक्को वापस नहीं भेजा जा सकता. और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए. ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक.

0: और वही कहा तुमने?
1: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों।
5: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
6: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
5: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
6: They score!
5: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: मैं करता हूँ ना।
3: मैं करूँगा।
4: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
2: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
4: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टेज, डाइनिंग एंड मच मोर।
2: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन हैं।
4: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
5: वी आर ओवर जिमी।
6: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
7: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
8: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
7: क्रॉसबॉन सुपर स्ट्रॉन्ग।
8: सुपर स्ट्रॉन्ग
7: और मॉइस्चर प्रूफ।
8: वारंटी
7: 15 साल की।
8: कदम
7: सर प्लीज
8: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन से ही बनेंगे।
9: क्रॉसबॉन HGMR Max फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
3: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
4: तू सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
2: मतलब
4: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
5: वाव दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
4: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
6: सर, आप जो भगवा कपड़े पहन करके आए हैं, यहाँ सत्ता पक्ष के सांसदों के द्वारा ये कहा गया कि भगवा का मजाक एक तरीके से उनके द्वारा उड़ाया जा रहा है।
7: अच्छा, भगवा के आस्था के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? हम किसी का नाम तो ले नहीं रहे। ये जो दुराचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी बाबा है, पर्ची निकालने वाले जिन पर आरोप है, वो सारे गेरुआ के आस्था को खतरे में डाला है। सारे रियल संत जो है उसको खतरे में डाला है, रियल बाबा को खतरे में डाला है।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस कठोर कानूनों वाले
4: देश को आशान्वित करने वाला ये पीएम मोदी का वो संदेश है जो दोनों सदनों से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पारित होने के बाद आया है। इस बिल के पारित होने के बाद सरकार राहत में होगी, लेकिन क्या ये पेपर लीक पर चल रही राजनीति को भी विराम लगा पाएगा? इस सवाल का जवाब आपको राहुल गांधी के इस बयान से काफी हद तक मिल पाएगा।
5: मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता।
4: तो राहुल गांधी रुकने वाले नहीं है और उनके इन तेवरों की वजह से पेपर लीक की लड़ाई भी थमने वाली नहीं है। बस कल और आज में फर्क ये आया है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान निशाने पर थे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद गृह मंत्री अमित शाह हमलों की जद में आ गए हैं और उन पर हमलों की वजह से इस लड़ाई की रफ्तार भी बढ़ रही है। राहुल गांधी ने अमित शाह पर हमले बढ़ाए तो बीजेपी उन्हीं को टारगेट पर ले आई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दे दिया।
6: माननीय गृह मंत्री जी आएंगे,
4: यानी इस लड़ाई में अभी और ईंधन डालने की पूरी कोशिश हो रही है। अभी तो सिर्फ विशेषाधिकार हनन का नोटिस है, कोई बड़ी बात नहीं कि ये मामला राहुल गांधी पर एक्शन तक पहुंच जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अमित शाह के इस्तीफे की मांग और जोर पकड़ने लगी है। राहुल के बाद खड़गे ने भी राज्यसभा में वही मांग दोहरा दी है।
7: अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट-स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है।
4: कांग्रेस अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज का हिसाब मांग रही है। अमित शाह के सदन में आकर जवाब देने की मांग कर रही है, उनका इस्तीफा मांग रही है और उसके लिए राहत की बात यह है कि बाकी विपक्षी दलों का भी उसे साथ मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि ये लड़ाई आगे किस दिशा में जाती है। पीयूष मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनों के साथ चले या ना चले लेकिन अपनों के साथ चाल ना चले। नमस्कार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी हमला, दो गैर कश्मीरी मजदूरों को आतंकवादियों ने मारी गोली, एक की मौत एक घायल, इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के अजीब और गरीब प्रदर्शन पर राजनीतिक युद्ध, सरकार बोली संसद नाटक करने की जगह नहीं। अखिलेश ने पोस्ट में पूछा, सच बुरा लगा क्या? मोदी कैबिनेट के बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर लगी मुहर, 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गई पीएम किसान योजना, तेल गैस की खोज के लिए 84,000 करोड़ की समुद्र मंथन योजना स्वीकृत। पीएम मोदी से यूके के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने फोन पर की बात, भारत ब्रिटेन में रणनीतिक कारोबारिक व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने पर दिया जोर, जल्द हो सकती है मुलाकात। 2020 दिल्ली दंगे में सजा का ऐलान, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 को उम्र कैद, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में राजनीतिक भिड़ंत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक, पर आप देख रहे हैं दस्तक। और दस्तक की शुरुआत इस समय एक बड़ी खबर से हम कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर से आई है, जहां कुलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने 2 कश्मीरी मजदूरों को गोली मार दी है। हमले में 1 मजदूर की मौत हो गई है, जबकि दूसरा घायल बताया जा रहा है। कई सारे मजदूर काम कर रहे थे कुलगाम में, अचानक से आतंकवादियों ने इन मजदूरों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को इन्होंने आइडेंटिफाई करके इनको गोली मारी है। हालांकि पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। 1 गैर कश्मीरी मजदूर की मौत की खबर भी आई है और हमले में 1 मजदूर की मौत हो गई है, जबकि दूसरा घायल है। और आज दस्तक में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आगे कॉकरोच जनता पार्टी और उसके फाउंडर अभिजीत दीपके का प्लान क्या है। संसद के दोनों सदनों में एंटी पेपर लीक बिल पास हो चुका है। सीजीपी सवाल कर रही है कि इस नए कानून से क्या असली समस्या खत्म हो पाएगी। अभिजीत फिलहाल महाराष्ट्र के संभाजीनगर में अपने घर पर हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी लगातार ये मांग कर रही है कि देश के अलग अलग राज्यों में जितने भी प्रदर्शनकारियों पर मुकदमे हुए हैं उन्हें सरकार वापस ले। और इसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी चेतावनी पर चेतावनी सरकार को दे रही है। आज तक ने सीजीपी के संस्थापक अभिजीत दीपके से बातचीत की, तो आइए खुद उन्हीं से जानते हैं कि सीजीपी का आखिर अगला प्लान अब है क्या।
1: छत्रपति संभाजीनगर में, और छत्रपति संभाजीनगर का नाम आज पूरे देश में इस वजह से भी जाना जाता है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी यहीं से हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अभिजीत दीपके के घर पे हम इस वक्त मौजूद हैं। कौन अभिजीत दीपके से लेकर अभिजीत दीपके तक का यह सफर किस तरीके से रहा, और सबसे बड़ी बात, अब आगे ये स्टूडेंट एजिटेशन क्या करेगा, कहां यह एजिटेशन जाएगा, सरकार का जो बिल है उस पर उनकी क्या भूमिका रहेगी, ये तमाम मुद्दे हैं, राजनीति भी है, सब पर बात करेंगे। अभिजीत दीपके, बहुत बहुत शुक्रिया आप आज तक से बात कर रहे हैं। सर, क्या आपकी मांग पूरी हुई है इस पूरे मामले को लेकर, और जो गृहमंत्री के इस्तीफे को लेकर राहुल गांधी जो कह रहे हैं?
2: मुझे लगता है कि ये सरकार को इस मिसअंडरस्टैंडिंग या डिल्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि एक मंत्री के इस्तीफे के बाद गुस्सा ठंडा हो चुका है। इस डिल्यूजन में आ रहे सरकार, लोगों में अभी भी बहुत गुस्सा है, और वो गुस्सा सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ नहीं था, पूरी सरकार के खिलाफ था। तो अगर ये लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे या नहीं अभी भी नहीं स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे या हैरेस करते रहेंगे और जो ब्रुटैलिटी करी उसके बाद ये गुस्सा और बढ़ा, तो ये गुस्सा शांत नहीं हुआ। तो अगर ये लोग जो स्टूडेंट्स है, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, उनके खिलाफ केसेस वापस नहीं लेते तो यस वी विल हिट द स्ट्रीट्स अगेन। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बनेगा बचेगा सर।
1: कोई टाइमलाइन है आपके पास?
2: हम बता देंगे उस पर। अभी हम उम्मीद करते हैं ये लोग मान ले बातें, नहीं मानते तो
1: नहीं। उम्मीद क्या है सरकार की तरफ से, कोई बयान आना चाहिए इस पर?
2: ऑफकोर्स रिटर्न में आना चाहिए कि जितने भी पीसफुल प्रोटेस्टर्स है, जितने भी स्टूडेंट्स है, उनके सभी के ऊपर के जो भी केसेस लगेंगे वो हम वापस लेंगे। एंड दे शुड एंश्योर कि इसके बाद किसी भी स्टूडेंट को हैरेस नहीं किया जाएगा पुलिस के द्वारा। पुलिस ने ऑलरेडी बहुत खून बहा दिया है 20 जुलाई को, शायद से उससे उनका मन नहीं भरा है। और अमित शाह का तो मुझे समझ नहीं आता, लाइक व्हाट इज ही आफ्टर, डज ही वांट टू किल द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। मतलब बिहार में AK-47 फायर कर दी गई, दिल्ली में पेलेट गन्स यूज कर लिए गए, क्या चल रहा है इस देश में?
1: क्या रोड मैप है क्या आपके पास?
2: अभी बना रहे जैसे कि मैंने कहा 2 महीने हुए हैं और 2 महीने से 1 महीना तो जंतर मंतर पर ही चला गया है। तो अभी वही टीम के साथ हमारे डिस्कशन चल रही है, मीटिंग चल रही है। पहली जो हमें चीज करनी है वो ये करनी है कि जितना मैंने इन लोगों से बातचीत करी, जितने भी हमारे सपोर्टर्स है, जितने भी लोग प्रोटेस्ट में आए थे, आई वाज ट्राइंग टू एंगेज विद देम ऑन अ डेली बेसिस, उससे जो मुझे समझ में आया वो ये है कि कोई भी पॉलिटिशियन ना इन लोगों की सुनता नहीं है, इन लोगों से डायलॉग नहीं करता
1: किसी भी पार्टी का।
2: हाँ। मैं ये सारे लोगों की
1: नेता बनने के बाद कोई सुनता नहीं
2: बिकॉज इट बहुत डिफिकल्ट हो गया है कि इन लोगों का सबसे बड़ा ग्रज जो है वो ये है कि हमारी सुनी नहीं जाती है या इन लोगों को पता ही नहीं हम चाहते क्या है। ये अपने आप से एजेंडा डिसाइड कर लेते, अपने आप से इशू उठा लेते और अपने आप से सारी चीजें कर लेते, नोबडी आस्क अस। इनको ऐसा लगता है ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो में। सो जो हमें पहले चीज करनी है वो ये करनी है, वी हैव टू रीच आउट टू ऑल दिस पीपल। हमें इन लोगों से समझना है व्हाट डू दे एक्चुअली नीड, व्हाट आर देयर होप्स, व्हाट आर देयर कंसर्न्स, व्हाट आर देयर नीड्स।
1: नहीं बट कोई तो तीन पॉइंट आपने बनाए होंगे कि इन मुद्दों पर अब मैं आगे बढ़ूं।
2: अभी जो है एजुकेशन का ये पैन इंडिया है, सबसे ज्यादा बिहार झारखंड,
1: किसी की भी सरकार हो कहीं
2: की भी, किसी की भी,
1: किसी भी पार्टी की सरकार,
2: किसी की भी सर, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, समाजवादी पार्टी हो, किसी की भी हो, ये जो बीजेपी वाले ना जानबूझकर ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे या इनके खिलाफ मुद्दा उठाएंगे क्या? एजुकेशन इज वन इशू दैट अफेक्ट्स एवरी सिटीजन।
1: तो एक हो गया एजुकेशन,
2: यस
1: ठीक है। दूसरा
2: अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी बिग कंसर्न। मतलब जंतर मंतर पर जो भीड़ थी आपने देखी होगी कि बस स्टूडेंट्स नहीं थे, बहुत सारे लोग थे जो 26-27 साल के ऊपर के थे, 35 के ब्रैकेट तक बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो वो अनएम्प्लॉयड लोग थे। सर
1: अभिजीत दीप के नेता बन गए अभी?
2: नहीं सर, मैं यही ठीक हूँ अभी, लेकिन अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी
1: आपको कंधे पर, जिसको कंधे पर उठाया जाता है वो नेता बन गया।
2: सर मैं इसके खिलाफ हूँ, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट और नॉट, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ। और कल मैं इंस्टाग्राम,
1: नेता बनने में बुराई क्या है?
2: बुराई कोई नहीं है,
1: फिर
2: बात यह है कि लोग जो नेता मानते हैं हीरो बना देते हैं, बुराई उसमें। हमारे देश में एक फेटिश है, इमीडिएटली किसी को रातों रात हीरो बना दो, इमीडिएटली रातों रात किसी को लीडर बना दो और बोल दो कि यार यही है जो इस देश को सुधारेगा, यही है जो सब कुछ ठीक कर देगा। हम क्रिकेटर्स के साथ भी यही गलती करते हैं, हम बॉलीवुड वालों के साथ भी यही गलती करते हैं, हम पॉलिटिक्स के साथ भी यही गलती करते हैं। वो अलग बात है कि इसके सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस पॉलिटिक्स में ज्यादा होते हैं।
1: नहीं बट मेरा सवाल पूछने का मतलब यह है कि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चला था तब वो तो कहते थे कि हम तो पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं, अब पॉलिटिकल है, हम तो नॉन पॉलिटिकल रहेंगे, हमको पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं। आप पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं ऐसा नहीं,
2: मैं तो सारे यूथ को कहता हूँ बी पॉलिटिकल।
1: करेक्ट, तो आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे?
2: सर अभी कहा, मतलब
1: क्या बुरा है अगर
2: बुरा कुछ नहीं। हाँ एक दूसरी बात मैं क्लियर कर देता हूँ,
1: आर यू अवर्स ऑफ मेकिंग अ पॉलिटिकल पार्टी और जॉइनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी?
2: जॉइनिंग आई वोंट जॉइन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी,
1: नो पॉलिटिकल पार्टी,
2: पॉलिटिकल पार्टी नो, आई वोंट बी।
1: आर यू श्योर?
2: या आई एम
1: श्योर। अरविंद केजरीवाल भी एक जमाने में यही कहते थे कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा,
2: ज्वाइन तो नहीं,
1: खुद ही बना लिया।
2: हाँ तो ज्वाइन तो नहीं करूंगा सर मैं, बिकॉज ये लोग जो है, अगर इन लोगों को बाकी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद होती या कुछ होता तो ये लोग वहीं पर नहीं चले जाते। ये लोगों ने क्यों अपनी मूवमेंट बना ली? सो पॉलिटिकल पार्टी दूसरी कोई तो ज्वाइन नहीं करूंगा। बाकी हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है एंड थैंक्स टू द यूथ ऑफ दिस कंट्री जो कंसोलिडेट हो चुके हैं।
1: तो अभी क्या होगा, ये एक प्रेशर ग्रुप बना रहेगा,
2: प्रेशर ग्रुप रहेगा
1: और ये अगले चुनाव तक काम करेगा, अलग अलग मुद्दे पर, अलग अलग चीजों पर, किसी का प्रचार आप करेंगे?
2: बस चुनाव तक लिमिटेड नहीं रहेगा।
1: नहीं आप किसी का प्रचार करेंगे? नहीं करेंगे,
2: नहीं उसमें
1: किसी का प्रचार नहीं, आप मुद्दे उठाएंगे।
2: वी आर हियर टू रेज द इशू एंड टू स्पीक फॉर द जेन ज़ी एंड फॉर द यूथ ऑफ इंडिया।
0: और अब खबर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान घायल हुए पुलिस वालों की। आज दिल्ली में पुलिस वालों के परिवारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबके सामने अपना दर्द बयां किया। एक पुलिसकर्मी की बेटी ने दर्दनाक दास्तां सुनाई तो एक पुलिसकर्मी की पत्नी ने बताया कि कैसे उनके पति घायल हुए, तो एक पुलिसकर्मी के बेटे ने भी अपना दर्द बयां किया। कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में नीट पेपर लीक के खिलाफ भड़के आंदोलन से अब दर्द भरी कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। दिल्ली के जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन में घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिवार वालों का दर्द यही है कि छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर उठे लाठी चार्ज और पैलेट गन पर तो आप बात कर रहे हैं, खूब बहस हो रही है, लेकिन ड्यूटी के दौरान जिस तरह से कई पुलिसकर्मी मौत के मुंह से वापस लौटे उनके बारे में भी सबको जानना चाहिए, बात करनी चाहिए।
3: जंतर मंतर के आंदोलन में घायल पुलिस वालों की कहानी।
4: मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए।
3: पुलिस वालों के परिवारों का दर्द, कैसे कांप उठे परिवार।
5: मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
3: पुलिस वाले की बेटी बोली पापा की वर्दी खून से लाल थी।
4: उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, उनके सर पे चार टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी।
3: पुलिस वाले की पत्नी बोली पत्थरों से घायल कर दिया।
5: पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते।
3: पुलिस वाले का बेटा बोला पत्थर से पापा का सिर फट गया।
6: मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है।
3: सड़क से लेकर संसद तक अभी तक तो छात्रों और प्रदर्शनकारियों की बात हो रही थी, लेकिन अब जंतर मंतर के प्रदर्शन और सीजेपी के संसद मार्च के दौरान घायल हुए पुलिस वालों के परिवार भी अपनी दर्द भरी दास्तान देकर सबके सामने आ गए हैं। 20 जून से शुरू हुए और 25 जुलाई को खत्म हुए इस आंदोलन में पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी के दौरान क्या क्या झेला, अब पुलिस वालों के परिवार उसको बयान कर रहे हैं। जी हाँ, सीजेपी के आंदोलन में घायल पुलिस कर्मियों के परिजन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें स्क्रीन पर प्रदर्शन के दौरान कैसे पुलिस कर्मी घायल हुए उसके वीडियो दिखाए जाते हैं और फिर एक घायल पुलिस वाले की बेटी गुंजन अपना पूरा दर्द बयान करती है और बताती है कि जब उसके पापा घर लौटे तो कैसे उनकी वर्दी पूरी खून से लाल थी।
4: It was at the front line near the barricades, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को my father was pulled by a rowdy mob and he was almost lynched near the stage of Jantar Mantar. This happened on 25th and around 2 p.m. He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी।
3: पुलिस कर्मियों के परिवारों का कहना है कि जब प्रदर्शनकारियों को इंसाफ देने की बात चल रही है तो ड्यूटी के दौरान पुलिस वालों और उनके परिवारों ने भी बहुत कुछ झेला है और अब 20 जुलाई को सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान घायल पुलिस कर्मी की पत्नी सीमा ने जो दर्द बयान किया वो भी सुनिए। सीमा कहती है कि इस प्रदर्शन के दौरान उनके पति का हेलमेट टूट गया था, अगर पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद लगता तो क्या होता।
5: पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
3: अब सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए एक और पुलिसकर्मी का बेटा अपना दर्द सुनाता है। लक्ष्य सिंह बिष्ट कहते हैं कि उनके पिता को बहादुरी के लिए 4 सम्मान मिल चुके हैं, उनके दादाजी भी बीएसएफ में थे, 1971 की जंग लड़ चुके हैं, लेकिन जंतर मंतर पर पिता के साथ जो हुआ वो डराने वाला था।
6: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में एंड ऑन 25 मई एट 2 पीएम मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है उसमें स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें डाउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25th में अनप्रवोक्ड उन्होंने मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई।
3: पुलिस कर्मियों के परिजनों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े भी दिखाए गए कि इस विरोध प्रदर्शन से दिल्ली पुलिस को कितना नुकसान हुआ है। 250 से अधिक पुलिस कर्मी घायल हुए, 110 से अधिक बैरिकेड डैमेज, 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर्स का नुकसान, 350 से ज्यादा हेलमेट डैमेज, 50 से ज्यादा शील्ड टूटे, 20 से ज्यादा लाउड हेलर का नुकसान, 10 HHMD और एक एक्सरे बैगेज का नुकसान, 25 से अधिक सरकारी वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी से नुकसान। पुलिस कर्मियों के परिवार वालों का आरोप है कि इस पूरे आंदोलन में कई असामाजिक तत्व भी शामिल थे जिन्होंने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान निशाना बनाया। आज तक ब्यूरो।
0: और अब खबर एंटी पेपर लीक बिल की। संसद से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया। अब बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही यह कानून बन जाएगा। अब सवाल यही है कि क्या पेपर लीक की लाइलाज बीमारी का पक्का इलाज फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और कठोर कानून से हो पाएगा? क्या नया कानून काफी है या फिर पेपर लीक रोकने की राह में मोदी सरकार को अभी कई चुनौतियों से पार पाना होगा?
7: दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
3: एंटी पेपर लीक बिल को संसद से मंजूरी मिल गई है। वहीं पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यही है, क्या स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट तारीखों के फेर में फंसे रहने वाले मामलों की बीमारी का रामबाण इलाज है? क्या कठोर कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट की दवा काफी है?
8: अपराध करने से लोग डरते हैं, यही तो दुष्प्रचार है कि आप देखिए किसी ने अपराध किए, समय पे सजा मिले और जो जांच है वो भी समय पे हो और स्पीडी ट्रायल हो, यही तो ये चाह रहे हैं, यही तो डिमांड है उनकी, सजा मिले, यही इसी काम में लगे।
3: कानून के जानकार पेपर लीक जैसे मुद्दों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन देश में पहले से काम कर रही फास्ट ट्रैक कोर्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कई आशंका भी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट का मॉडल अभी तक बहुत कारगर साबित नहीं हुआ है। वजह है, फास्ट ट्रैक कोर्ट को भी लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और संसाधनों की कमी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब यही है कि अभी भी फास्ट ट्रैक वाली अदालतें धीमी गति में अटकी हुई हैं।
9: पहली जो चुनौती है फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले में, ये न्यायाधीशों की कमी, जुडिशियल ऑफिसर्स की बहुत ही कमी है, खास करके डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पे।
3: फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर कानून के जानकारों की आशंका वाजिब नजर आती है। संसद में एक सवाल के जवाब में लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से देश में चल रही फास्ट ट्रैक अदालतों में लंबित मामलों से लेकर निपटाए गए केसों की जानकारी साझा की है। जवाब में कहा गया है कि साल 2023 में नए केस 81,471, 2024 में 88,902, 2025 में 1,43,936। कोर्ट ने केसों का निपटारा किया साल 2023 76,319, 2024 में 85,595, 2025 में 66,500, मतलब हर साल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जितने मामलों में फैसला सुनाया उससे ज्यादा नए केस कोर्ट में पहुंचे। यही वजह है कि 2023 में 202,175 केस लंबित थे, 2024 में 204,122 और 2025 में 245,579। ये आंकड़े बताते हैं कि इंसाफ को फास्ट ट्रैक पर लाने वाली कोर्ट में खुद लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की धीमी रफ्तार की वजह है जजों और कोर्ट के स्टाफ की कमी। यही नहीं, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने फंड की बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि रेगुलर जजों के जिम्मे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम भी है। अब सवाल है कि जब फास्ट ट्रैक अदालतों में जजों की कमी है तो इंसाफ फास्ट ट्रैक पर कैसे आएगा? यही सवाल आज तक संवाददाता ने देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से पूछा।
10: एक सवाल ये हो रहा है कि क्योंकि ट्रायल कोर्ट में जजों की कमी है काफी सा, उसकी वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए या कुछ भी बनाए तो सुनवाई नहीं।
7: देखिए, जो आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में रहते हैं, उस समय तो अधिक हाई कोर्ट ही उनके अपॉइंटमेंट करते, कुछ जगह पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से एग्जाम होता है, उसमें भी हाईकोर्ट का समर्थित हाईकोर्ट का महत्व बहुत होता है। हमने उनको कहा भी है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वैकेंसी है तो जल्दी से जल्दी बने एग्जाम लेकर।
3: केंद्रीय मंत्री ने यही भरोसा दिया कि नए जजों की नियुक्ति के लिए सरकार की तरफ से सुझाव दिए गए हैं। अब देखना यही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट वादा बनकर रह जाएगा या फिर धरातल पर भी तस्वीर बदलेगी। इसे यूं समझिए, इंसाफ को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए 2000 में 11वें फाइनेंस कमीशन ने 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की सिफारिश की थी। मकसद था देश की अदालतों में लंबित 2 करोड़ मामलों का निपटारा करना। फास्ट ट्रैक कोर्ट की योजना को 2005 में 5 साल के लिए बढ़ाया गया, लेकिन 5 साल बाद भी 1734 में से सिर्फ 1562 फास्ट ट्रैक कोर्ट देश में संचालित थी। साल 2010 में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए राज्यों की फंडिंग बंद करने का फैसला कोर्ट ने लिया। 2012 में निर्भया गैंगरेप कांड के बाद एक बार फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट चर्चा में आया। 2015 में जघन्य अपराधों के लिए 14वें फाइनेंस कमीशन ने 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव रखा, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की फंडिंग का जिम्मा राज्य सरकार के पाले में डाल दिया। मतलब केंद्र सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए फंड नहीं देगी। 2019 में निर्भया फंड से 1023 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की फंडिंग की गई, लेकिन 2025 तक देश में सिर्फ 775 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स काम कर रही हैं। सरल शब्दों में समझे तो जितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का लक्ष्य रखा गया था उतनी अदालतें आज तक ऑपरेशनल नहीं हो पाई।
0: आज दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुना दी। 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अदालत का निर्णय आने के बाद अंकित शर्मा के परिजनों का मानना है कि उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए थी।
3: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्या के आरोप में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत दूसरे आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 13 जुलाई को कोर्ट ने आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान सभी दोषियों के लिए फांसी की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला आने के बाद आज तक से बातचीत के दौरान अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा ने यही कहा कि उम्मीद थी कि दोषियों को फांसी होगी।
11: अंकुर जी नमस्कार, ये जो अदालत ने फैसला सुनाया है ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है, आपका क्या रिएक्शन है, आपके परिवार का क्या रिएक्शन है?
12: सर हमारे परिवार का शुरुआत से 2020 में जब ये दंगा हुआ था, जब इसे हमारे परिवार की यही मांग थी कि भाई के जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इस केस को, हमारे केस को, भाई के केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में कोर्ट को

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: अरे वाह, तू भी ये ट्रेनिंग आप यूज करती है?
3: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
2: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
4: अर्ज किया है पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
5: वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ।
4: सेबी और NSE का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
6: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
7: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
8: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
9: वी आर ओवर जिमी।
10: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
11: आगे आगे।
12: अरे उधर
11: उधर। करेक्ट करेक्ट।
13: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sarah Sanitaryware, it's your moment of Sarah.
15: His two biggest blunders have defined Indian politics since he responded to the Shahbano judgment.
16: He didn't quite understand the interplay between judiciary, society, Muslims, personal law. Shahbano was a disastrous decision.
15: That made the Hindus very angry. Then he made other mistakes with the unlocking of the doors at Ayodhya, the Shilanyas, and that's how the BJP rolled.
17: Jai Hind friends, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी।

0: जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया, अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज।
1: तुम कल्पना कर सकते हो आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
2: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं, या फिर
0: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था हिंदुओं। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
3: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
0: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
4: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: एक तरफ विपक्षी दल दिल्ली में यूपी के चुनावी मुद्दों का रंगमंच सजा रहे हैं, दूसरी तरफ सीएम योगी प्रदेश में मैराथन कार्यक्रमों में जुटे हैं और इनके बीच भारतीय जनता पार्टी सीट दर सीट चुनावी जीत बुनने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदेश संगठन बन चुका है। नई ऊर्जा और नए लक्ष्य के साथ बीजेपी का यह संगठन अब चुनावी तैयारी में दिन रात जुटा हुआ है। इसी कड़ी में यूपी की 403 सीटों पर गोपनीय सर्वे की भी शुरुआत हो गई है।
1: भारतीय जनता पार्टी 2027 का चुनाव जीतने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी के नतीजे पे पार्टी कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लग रही है, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से संपर्क हो रहा है, उसी के अनुरूप सर्वे भी कराए जाते हैं और सर्वे के निर्णय के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। उसी के नाते हम 403 विधानसभा सीटों पर लगातार अपने कार्यक्रमों को जारी किए हुए हैं, साथ ही साथ समय समय पर पार्टी जनता से फीडबैक लेती रहती है।
0: बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इस सर्वे में मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन, जनाधार और जीत की संभावना के तीन स्तरों पर आकलन किया जा रहा है। खासकर लगातार हार वाली 61 सीटों पर बीजेपी विशेष फोकस कर रही है। खबर है कि यूपी में संघ बीजेपी के कार्यकर्ताओं और जनता के फीडबैक के बाद ही पार्टी अगली चुनावी रणनीति और टिकट के मुद्दे पर विचार शुरू करेगी।
2: आज की तारीख में जिस तरीके से हर वर्ग में नाराजगी व्याप्त है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अभी आने वाले 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से इनका सूपड़ा साफ हो गया।
0: विपक्ष भले बीजेपी की तैयारियों को नजरअंदाज करे, लेकिन इस सर्वे में बीजेपी ने न सिर्फ अपनी बल्कि निषाद पार्टी से लेकर अपना दल, लोकदल और SBSP जैसे संगठन में शामिल दलों की सीटों पर भी आकलन कर रही है। दरअसल पूर्वी यूपी के आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर की 22 सीटें हैं जहां बीजेपी 3 चुनावों से हार रही है। इसी तरह पश्चिमी यूपी में सहारनपुर, मुरादाबाद और बिजनौर जिलों की मुस्लिम बहुल 13 सीटें हैं जहां नहीं जीत सकी है। फिर अवध और मध्य यूपी के रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, फतेहपुर और अम्बेडकर नगर जैसे जिलों की 26 सीटें हैं जिन पर हारती रही है। इन 61 में 27 सीटों पर बीजेपी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है जहां वो जीतती रही है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब खबर पाकिस्तान की, जहां जिस तरह से पीओके वालों ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ एक यलगार छेड़ दी है और साथ ही साथ बलूचिस्तान में भी विद्रोह की चिंगारी भड़क गई है, ऐसे में खुद पाकिस्तान में ये चर्चा होने लगी है कि अब पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है। तो आइए आप आपको दिखाएं कि कैसे पीओके में आसिम मुनीर और उसकी सेना ने कत्लेआम मचाया और कैसे अब पीओके के लोग कह रहे हैं कि अब उनका आंदोलन पीओके की आज़ादी के बाद ही रुकेगा। पीओके वाले अब मुनीर और उसकी सेना के आतंक का सामना करने के लिए तैयार हैं।
1: पीओके की यलगार मुनीर और उसकी फौज से आर पार। मुनीर के आतंक का सामना पीओके करेगा, आजादी लेकर रहेगा। बलूचिस्तान से पीओके तक फूट चुका है बगावत का ज्वालामुखी। पीओके का ऐलान-ए- जंग, अब पाकिस्तान होगा खंड खंड। पीओके से उठी आवाज, आखिरी सांस तक मुनीर से करेंगे मुकाबला। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आसिम मुनीर और उनकी फौज ऐसा आतंक मचा रही है कि चीख पुकार मची है। पूरा पीओके पाकिस्तान की सरकार और आसिम मुनीर के कहर की गवाही दुनिया के सामने दे रहा है।
2: आज हमारे भाइयों की जानें ले रहे हैं। लोगों इस बात की गवाही देना कि एक ही दाता जिन्होंने अपनी जवानियां लुटाई, जिन्होंने आजादी के लिए अपने बेसिक राइट्स के लिए अपनी जानें लुटा दी, अपने सीने पे गोलियां खाई, अपने घरों की परवाह नहीं की। एक बहन झोली उठा के दुआ करती है, इस शख्सियत का वक्त भी आएगा और जब ये वक्त आएगा हमें से बेशक कोई नहीं देखने वाला होगा, लेकिन दुनिया देखेगी तुम लोगों का।
1: और ये तस्वीरें लंदन की हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मुनीर के आतंक के खिलाफ अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुस्सा भड़क उठा है। आप देख सकते हैं कि कैसे लंदन की सड़कों पर पीओके के समर्थन में मार्च निकाला जा रहा है और लोग लंदन में पाकिस्तानी दूतावास का घेराव करने निकल पड़े हैं।
3: लंदन के अंदर हजारों कश्मीरी आज विजिबली हम आपको दिखा सकते हैं, ये देख लीजिए आपके निकले में बाहर। और ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, पाकिस्तान के नैरेटिव के खिलाफ रेफरेंडम है, पाकिस्तान के फौजी नैरेटिव के खिलाफ रेफरेंडम है। ये इंडियन एम्बेसी के बाहर जाके ये लोग प्रोटेस्ट किया करते थे और आज ये पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीर का रिप्रेजेंटेटिव, अब आज ओवरसीज कश्मीरियों ने दुनिया को यह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान कश्मीर का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पाकिस्तान कश्मीर का ऑक्युपायर है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो लोग हमारा दुश्मन मुल्क कहता था, आज वो जो है कश्मीरी खुद कह रहे हैं, नारे हैं यहाँ पे। आसिम मुनीर को कुत्ता कहना कुत्ते की तोहीन है, मैं तो नहीं कह रहा, नारे लग रहे हैं, आपको रिपोर्ट करें।
4: वाह कश्मीरियों वाह, आप लोगों ने तो आज एक मिसाल रकम कर दी है। और मेरा पैगाम जो है ये पाक फौज को है, 28 लेफ्टिनेंट जनरल्स, 206 मेजर जनरल्स और 11 कोर कमांडर को, अगर आप लोग अपनी इज्जत बहाल करना चाहते हैं तो इस आसिम कासिम को फौरन अरेस्ट करो और इसको किक मार के बाहर निकालो फौज से। इसकी वजह से हमारा सारा मुल्क टूट रहा है और मुल्क तोड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ आसिम मुनीर को है।
1: पीओके के अंदर पिछले कुछ दिनों में ही 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है तो 100 से ज्यादा लोगों के गायब होने का अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन पीओके में प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आर पार पर उतर आए हैं।
5: अभी से क्या बताए, क्या क्या हमारे दिल में है, सारे फरोशी की तो
1: پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں اور جس طرح سے پیوکے اور بلوچستان میں بغاوت کا ایٹم بم پھوٹ چکا ہے، اب پاکستان کی بربادی کنفرم ہے۔ اور یہ دبی زبان میں پاکستان بھی قبول کرنے لگا ہے۔ جی ہاں، پاکستان کے گرہ منتری محسن نقوی جیسوں نے بھی سارجنک طور پر کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم برباد ہو رہے ہیں اور ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔
5: آپ 10 سال بعد بھی یہیں بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح تقریر کر رہے ہوں گے اور اسی طرح اپنے مسئلے بیان کر رہے ہوں گے، اس نے ایسے کا ایسا رہنا ہے، کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے، آپ مانے نہ مانے۔ آپ
1: محسن نقوی اب جو اپنے ملک کی بربادی کا رونا رو رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستانی میڈیا تک ان سے یہی سوال پوچھ رہی ہے کہ محسن نقوی اب تک کہاں تھے۔
6: سینٹ کی ووٹ کے لیے سیاسی جماعتوں سے بھیک مانگ کے فیصل واٹا کی طرح الیکٹ ہوتے ہیں، سینٹ میں آتے ہیں اور آج لیکچر دے رہے ہیں کہ چھوٹے صوبے ہونے چاہیے۔ ملک کا نظام جو ہے وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اب یہ نظام نہیں چل سکتا۔ تو بھائی آپ پچھلے 1.5-2 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ نظام ختم ہو چکا ہے تو آپ گھر جائیں۔
1: پاکستان آتم گھاتی بن چکا ہے، یہ وہ خود قبول کر رہے ہیں، اور پی او کے کی جنتا اب بھارتیہ سینا سے مدد کی گہار لگا رہی ہے۔
7: انٹرنیشنل میڈیا سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را ہمارے کشمیر میں سارے بچے ہمارے شہید کر دی، کہ پاکستان منافق ملک نے ہمارے بھائی، ہمارے ورثہ سارے شہید ہو گئے ہمارے، اور ان لوگوں نے بہت ظلم کرتے ہیں، انڈیا میں بھی اتنا ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ میری انڈیا کی فورسز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز خدا را ہمارا ساتھ دے۔ اگر انڈیا کی فورسز بھی مجھے سن رہی ہے، جتنی فورسز مجھے آؤٹ آف کنٹری کے سن رہی ہے، خدا را ہمارا ساتھ دے۔ پاکستان کی فورسز نے، پاکستان کی پولیس نے، پاکستان کی آرمی نے ہمارے بچوں کو، ہمارے ورثہ کو شہید کر دیا۔
1: جس چھل کے ساتھ پاکستان نے پی او کے پر قبضہ کیا، اب قبضے والے کشمیر میں اس کے بڑھتے اتیاچار ہی ناسور بن رہے ہیں۔ تو بلوچستان میں بھی ودروہ کی چنگاری بھڑکی ہوئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 1948 سے پاکستان سرکار کے خلاف بلوچستان میں ودروہ شروع ہوا، لیکن جب سے آصف منیر سینا پرمکھ بنے یہ ودروہ اب چرم پر پہنچ چکا ہے۔ بلوچوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی سینا ان پر ظلم کی اتی کر رہی ہے۔ پاکستانی سانسد مولانا عطاء الرحمان نے منیر کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب پاکستان ڈوبتے جا رہا ہے۔
8: میں آپ حضرات کو دس بستہ گزارش کرتا ہوں، خدا را خدا را خیبر پختونخوا، بلوچستان اور مظلوم قوموں پر رحم کریں، آپ اس ملک کو توڑنے نہ۔
0: اب خبر ایران کی اس ادرشیہ آرمی کی جس نے امریکی راشٹرپتی ٹرمپ کی نیند اڑا دی۔ مڈل ایسٹ میں امریکی سینیہ ٹھکانوں پر ایران بمب برسا رہا ہے، جارڈن سے لے کر مصر تک ایران کے ہوائی حملوں سے ہڑکمپ مچا ہوا ہے۔ اب ایران کی اس ادرشیہ آرمی امریکہ میں گھس کر امریکہ کے واٹر پلانٹ سسٹم کو بھی نشانہ بنا رہی ہے۔ بیتے کچھ گھنٹوں میں امریکہ کے 30 سے ادھک واٹر پلانٹ سسٹمز کو ایران کے سائبر آرمی نے نشانہ بنا دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ بارود کے ساتھ ساتھ اب ایران نے امریکہ کے خلاف سائبر یدھ بھی چھیڑ دیا ہے۔
1: امریکہ کا 10 ایرانی شہروں پر حملہ، کویت اور جارڈن پر ایران کا پلٹ وار، ایران کے نشانے پر امریکہ کے ٹھکانے، جنگ میں پہلی بار مصر پر ایران کا حملہ، امریکہ کو ٹھگ کرنے اتری سائبر آرمی۔ ایران کی ادرشیہ آرمی سے ڈر گئے ٹرمپ۔ امریکی حملے کے جواب میں ایران نے مہا یدھ کا سائرن بجا دیا ہے۔ یہ پہلی بار ہے جب ایران نے مصر پر حملہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ایران کھاڑی کے دیشوں اور جارڈن پر حملے کر چکا ہے۔ ایران کی طرف سے مصر پر کیا گیا حملہ امریکہ کو سیدھا سندیش ہے कि अब युद्ध पूरे इलाके में फैल सकता है, क्योंकि मिस्र के डमिएटा बंदरगाह पर दो गैस टैंकरों को निशाना बनाकर ईरान ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। वजह है ईरान का खतरनाक प्लान। ईरान के नए हमले ने स्वेज नहर से होने वाले यातायात के लिए एक नया खतरा पैदा कर दिया है। दरअसल स्वेज नहर को दुनिया के समुद्री कारोबार की लाइफलाइन माना जाता है। ये नहर ही लाल सागर में सऊदी अरब के गैस तेल की सप्लाई चेन का हिस्सा है, जिसे हुतियों ने सऊदी अरब के लिए बंद कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ अब ईरान ने युद्ध में अपने अदृश्य योद्धाओं को उतार दिया है, मतलब साइबर आर्मी को। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 30 से ज्यादा वाटर प्लांट सिस्टम्स पर साइबर अटैक हुआ। इस अटैक के पीछे ईरान की साइबर आर्मी का हाथ माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक वाटर प्लांट सिस्टम पर साइबर अटैक के बाद पूरा सिस्टम ठप पड़ गया था। अमेरिका की तरफ से साइबर अटैक की जांच की जा रही है। मतलब साफ है कि ईरान की अदृश्य आर्मी ने अमेरिका के खिलाफ सीधी जंग अमेरिका में घुसकर छेड़ दी है। ये हमले किसी मिसाइल से नहीं बल्कि हैकिंग के जरिए किए जा रहे हैं। अमेरिका को डर है कि ईरान की साइबर आर्मी उनके पावर प्लांट को भी निशाना बना सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के एक बड़े हिस्से में ईरान ब्लैकआउट कर सकता है। बड़ी बात यह है कि ईरान के साइबर हमले के बाद ईरान की संसद ने अमेरिकी पावर प्लांट पर हमले की धमकी दी है। धमकी ये कि अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट पर हमला किया तो ईरान भी अमेरिका के पावर प्लांट को बारूद से जमींदोज कर देगा। ईरान बुनियादी ढांचे पर हमलों को युद्ध अपराध मानता है और ऐसे हमले शुरू नहीं करेगा, लेकिन ईरान के पावर ग्रिड पर हमला होता है तो ईरान अपने रक्षा सिद्धांत को बदलेगा। अमेरिका को अब ये समझ लेना चाहिए कि अगर ईरान के बिजली के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाता है तो हमला करने वाले देशों के बुनियादी ढांचों के साथ साथ अमेरिकी बुनियादी ढांचों को भी सीधे तौर पर निशाना बनाया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार और धर्म गुरु अहमद अल मोल होडा ने ऐलान किया है कि अब अमेरिका के साथ युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं बची है। अमेरिका को अब ईरान उसी भाषा में जवाब देगा जिस भाषा को ट्रंप समझते हैं, यानी बारूद की भाषा। अमेरिका ईरान के आत्मसमर्पण के अलावा कुछ नहीं चाहता। ऐसे में अमेरिका के साथ युद्ध विराम एक धोखा होगा, जिसका मकसद अमेरिका को अपनी सेना तैनात करने और एक और हमला शुरू करने के लिए वक्त देना होगा। अमेरिका से निपटने का एकमात्र रास्ता है जिहाद और प्रतिरोध। ईरान अब सिर्फ यहीं तक रुकने वाला नहीं। अगर ईरान के परमाणु सेंटर या फिर पावर प्लांट पर अमेरिका ने हमला किया तो बारूद की गूंज यूरोप तक सुनाई देगी। IRGC की तरफ से जारी बयान में धमकी दी गई है कि दुनिया के किसी भी कोने में अमेरिका का सैन्य ठिकाना होगा, वहां तक ईरान हमला करेगा। अमेरिका ने अपने वादों को तोड़ा और आखिरकार 21 जुलाई को आधिकारिक तौर पर समझौता रद्द कर दिया और युद्ध फिर से शुरू कर दिया। दुश्मन को एहसास हो गया कि वो सैन्य अभियानों के जरिए हमारी सशस्त्र सेनाओं पर काबू नहीं पा सकता। अमेरिका ने पुलों, जहाजों, रेलवे को निशाना बनाया और नागरिकों की हत्या की। ऐसे अपराधों के जारी रहने की स्थिति में हमारा मकसद अपराधियों से बदला लेना होगा। इसीलिए हम इन देशों की आम जनता को चेतावनी देते हैं कि जहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन इलाकों से तुरंत दूर हट जाएं जहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, खासकर 500 मीटर के दायरे से।
0: आखिर ईरान के बारूदी तेवरों ने दुनिया के लिए खतरे की घंटी क्यों बजा दी है, आइए हम आपको दिखाते हैं।
9: दुनिया पर इस समय युद्ध के बादल गहराते जा रहे हैं और दो युद्ध, एक रूस यूक्रेन के बीच युद्ध और दूसरा अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध, दोनों अब मिलते जा रहे हैं कैस्पियन सागर में। जी हां, यूक्रेन ने ईरान के एक जहाज को कैस्पियन सागर में निशाना बनाया, वो जहाज जो कुछ सामग्री लेकर रूस जा रहा था। यूक्रेन का कहना है कि उसमें हथियार थे, ईरान का कहना है कि उसमें मिलिट्री वेपन्स या युद्ध का साजो सामान बिल्कुल नहीं था और पलटवार होगा यूक्रेन पर। यह क्या दर्शाता है? यूक्रेन और रूस की लड़ाई और अमेरिका और ईरान की लड़ाई कैस्पियन सागर में ये बढ़ती जा रही है, दोनों युद्ध अब बढ़ते जा रहे हैं। ये तो पहली बात। दूसरी बात, एक और बड़ा हमला जो ईरान ने किया है। अब आप देखिए युद्ध का दायरा कैसे बढ़ रहा है, एक यूक्रेन और कैस्पियन सागर में, दूसरा अब हम आपको भूमध्य सागर में लिए चलते हैं। भूमध्य सागर के पास भी एक और हमला हुआ है। दूसरा, ईरान ने जॉर्डन के अमेरिका के एक मिलिट्री बेस को यहां निशाना बनाया है, क्योंकि जॉर्डन में वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो इसराइल की रक्षा करता है। तो ईरान अगर डायरेक्ट इसराइल पर वार करना चाहता है तो उसकी मिसाइलों को जॉर्डन पर इंटरसेप्ट कर लेती है अमेरिका की फोर्सेस, और इसीलिए जॉर्डन में अमेरिका को निशाना बनाया गया है। कैस्पियन सागर और अब जॉर्डन, और तीसरा भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी। मिस्र में डमियेटा के बंदरगाह पर एक गैस के जहाज को निशाना बनाया ड्रोन से। अब ईरान ने इसकी जिम्मेदारी तो नहीं ली है, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन आकलन यह है कि ईरान की तरफ से यह हमला हुआ, अमेरिका पर यह हमला हुआ। लेकिन देखिए, यह युद्ध का क्षेत्र और ज्यादा बढ़ता गया। हमने पहले बात की कैस्पियन सागर की, फिर हमने बात की भूमध्य सागर की, और अब बात करते हैं लाल सागर की, जहां यमन के हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के एक जहाज को निशाना बनाया। यानी ये जो बाबल मंदब से रास्ता जाता है स्वेज कैनाल होते हुए, अब वहां पर भी युद्ध के बादल और ज्यादा मंडराते जा रहे हैं। और इससे अब आप देखिए ये युद्ध का दायरा इस पूरे क्षेत्र में कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। फिर इसके साथ साथ सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर इराक में इरानियन फोर्सेस को टारगेट किया है। तो पहले जो लड़ाई इसराइल और अमेरिका ने मिलकर 28 फरवरी को शुरू की थी ईरान के खिलाफ, अब उसका दायरा कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। शुरू में तो यूएई पर, कतर पर, बहरीन पर, कई और देशों पर भी हमला हुआ, लेकिन अब आप देखिए ये और एरियाज इसमें इसकी जद में आते जा रहे हैं। और ये दर्शाता क्या है कि आने वाले समय में ये जो आग एक क्षेत्र में थी, पहले सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में थी, अब वो बाबल मंदब तक और इस पूरे क्षेत्र में ये आग फैलती जा रही है, और ये दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है।
0: दर्शक, में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, life में scratches तो आएंगे. गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
3: Where's the truth? It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege.
4: सदन में राहुल के बयान पर मचा घमासान. पैलेट गन के मुद्दे पर सरकार को घेरा. बीजेपी ने राहुल के बयान को बताया तथ्यहीन.
5: और वह माफी मांगो राहुल.
4: लोकसभा ने एंटी पेपर लीक बिल पर मुहर लगा दी है, लेकिन बिल पास होने से पहले लड़ाई राहुल गांधी बनाम अमित शाह की हो गई है. चर्चा के दौरान राहुल ने गृह मंत्री के सदन में न होने का सवाल उठाया, जिस पर काफी देर तक हंगामा हुआ.
3: I'm very happy today to see that the so-called home minister of this country does not have the courage to come and sit here.
4: गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए राहुल यही नहीं रुके. उन्होंने कहा कि मैंने गृह मंत्री को कांपते देखा.
3: सर, आई सॉ द कार केज, 30 कार्स विद द होम मिनिस्टर सिटिंग इनसाइड द कार लाइक दैट लुकिंग.
4: राहुल के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा अमित शाह वो शख्स हैं जिनको देखने के बाद नक्सली भी थरथराते हैं.
6: इस प्रकार से एक्शन किया कि मैंने देखा गाड़ी के अंदर इस प्रकार अमित शाह जी थरथरा रहे थे, कांप रहे थे.
5: राहुल जी, अमित शाह जी वह शख्स हैं जिनको देखने के बाद नक्सली थरथराते हैं.
4: तो अब साफ है कि एंटी पेपर लीक बिल पर शुरू हुई लड़ाई लोकसभा में राहुल गांधी बनाम अमित शाह की हो गई है. आज तक ब्यूरो,

0: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PP ab sambhal lega. आप अपना देख लो.
3: द यूज ऑफ फोर्स कैन ओनली बी ऑथराइज बाय द होम मिनिस्टर.
4: ये गोली चली ही नहीं, अश्रू गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ.
5: पेपर लीक के खिलाफ नए बिल ने संसद की परीक्षा तो पास कर ली.
3: द करेज टू कम एंड सिट हियर.
5: लेकिन लोकसभा में राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह की स्पीच के हिस्से सियासत का नया सवाल बन गए. पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, तो अब के सी वेणुगोपाल ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्पीकर को भेजा है. अनुराग ठाकुर के प्रस्ताव में कहा गया है, रूल 352 का उल्लंघन कर राहुल गांधी ने असंसदीय शब्दों इडियट और अंधभक्त का इस्तेमाल किया. रूल 353 का उल्लंघन कर केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ गंभीर निराधार आरोप लगाए और मोशन से हटकर टिप्पणियां की. राहुल गांधी के खिलाफ आए प्रस्ताव का जवाब माने जा रहे केसी वेणुगोपाल के प्रस्ताव में कहा गया, कोई गोली नहीं चलने का झूठा दावा कर मंत्री ने जानबूझकर संसद को गलत जानकारी दी और सदन को गुमराह किया.
6: मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है, उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है. रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल 222 को देखते हुए और रूल 223 और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें.
7: तो वो हाउ कैन ए मिनिस्टर मिसलेड द हाउस लाइक दिस. स्टूडेंट्स नो अबाउट इट, नेशन नो अबाउट इट, नाउ ही इज टेलिंग दिस इज नॉट यूज्ड.
5: पेपर लीक के मुद्दे पर सीजेपी के प्रदर्शन से लेकर संसद तक का संग्राम छिड़ गया. तो उधर अब सीजेपी प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस वालों के परिवार वालों ने अपनी आवाज उठाई है. परिवार वालों का आरोप है कि छात्रों के बीच अपराधी भी थे, पुलिस सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही थी. परिवार वालों ने सवाल किया कि घायल पुलिस वालों पर संसद मौन क्यों है. पुलिस वालों के परिवार ने गंभीर मुद्दा खड़ा किया है, लेकिन राहुल गांधी से जब इस पर पूछा गया तो उनकी प्रतिक्रिया ये रही.
8: राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने
9: क्या बीजेपी के हो गया?
8: नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
10: राहुल जी, जो पुलिस वालों के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पुलिस वालों की आवाज तो उठ रही है सर. जो पुलिस वाले बोले वो तो बोले सर, एक बार बता दीजिए. पुलिस वाले भी घायल हुए राहुल जी, जो मार्च हुआ था 20 जुलाई को. आप चुप है, आप
5: पेपर लीक के आक्रोश पर राजनीति के पाले खींच गए हैं, ये साफ नजर आ रहा है.
11: देखिए, पुलिस वाले भी इंसान हैं, उनका परिवार भी इंसान है. वो सुरक्षा करते हैं, अपराध नियंत्रण करते हैं, कई बार शहीद भी होते हैं, तो उनके भी मौलिक अधिकार है ना, है कि नहीं? तो इस मामले में थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए.
5: पेपर लीक के मुद्दे और उसके बाद प्रदर्शन और सियासत ने एक नई बहस खड़ी की है. उधर नए पेपर लीक बिल को संसद की मंजूरी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने जेएनजी से एक और सीधा संवाद किया.
12: फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा. दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है. अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है.
5: पेपर लीक की समस्या गंभीर है और सरकार तक ये बात पहुंच गई है. आज तक ब्यूरो.
13: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी हमला, दो गैर कश्मीरी मजदूरों की गोली मारकर हत्या, एक की मौत एक घायल, इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के अजीबोगरीब प्रदर्शन पर राजनीतिक युद्ध, सरकार बोली संसद नाटक करने की जगह नहीं। अखिलेश ने पूछा सच बुरा लगा क्या। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय पर मुहर, 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गई पीएम किसान योजना, तेल गैस की खोज के लिए 84,000 करोड़ की समुद्र मंथन योजना स्वीकृत। पीएम मोदी से यूके के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने फोन पर बात की, भारत ब्रिटेन में रणनीतिक और व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने पर जोर, जल्द होगी मुलाकात। 2020 दिल्ली दंगे में सजा का ऐलान, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत सभी 5 को उम्र कैद, बीजेपी आप में राजनीतिक भिड़ंत।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वाकई कमाल है बिहार पुलिस। भरत तिवारी इनकाउंटर केस के 1.5 महीने बाद पहली गिरफ्तारी हुई, वो भी एक सिपाही की, जबकि FIR में 5 पुलिस वालों के नाम दर्ज है। जानते हैं बिहार पुलिस के इस सबसे कमजोर प्यादे की गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि खुद बिहार पुलिस के मुताबिक भरत तिवारी पर जो पहली गोली चलाई थी वो उसी ने चलाई थी। है ना कमाल, यानी जिन पुलिस अफसरों ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया वो सब के सब बाहर, और जिसने उन पुलिस अफसरों के ऑर्डर पर गोली चलाई बस वही अंदर। कानून कहता है कि अगर कोई कत्ल होता है और मौके वारदात पर कातिल के साथ उसके कुछ साथी भी खड़े होते हैं, भले ही वो साथी गोली या खंजर न चलाएं, मगर फिर भी उन्हें उस कत्ल का उतना ही दोषी करार दिया जाएगा जितना गोली या खंजर चलाने वाले कातिल को। पुराने हो चुके IPC में इसके लिए धारा 120 भी था, यानी साजिश में शामिल होना। अब BNS में ये धारा 120 से 61 ब्रैकेट 2 हो गया है। अब इस केस की बात करते हैं। पक्का भूले तो नहीं होंगे आप, बिहार का ये वो भरत तिवारी इनकाउंटर केस है जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हुई। एक निहत्ते नौजवान को जिसने पुलिस वालों के सामने अपनी पिस्टल फेंक कर सरेंडर कर दिया था, वो भी कैमरे पर, उसे उन्हीं पुलिस वालों ने पिस्टल फेंकते ही गोली मार दी। ये उसी इनकाउंटर की लाइव तस्वीरें हैं। इनमें वो सारे पुलिस वाले आपको दिखाई दे रहे होंगे जिन्होंने भरत तिवारी पर गोली चलाई। अब जाहिर है इनमें एक से ज्यादा पुलिस वाले हैं। अब आते हैं खबर पर। भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक न्यायिक आयोग बनाया था। उसी आयोग की रिपोर्ट के बाद इनकाउंटर करने वाली पुलिस की पहली गिरफ्तारी हुई है, वो भी सिर्फ एक पुलिस वाले की, एक कांस्टेबल की। बाकी सब पुलिस वाले आजाद हैं। जानते हैं इनकाउंटर के नाम पर हुए इस कत्ल के मामले में नामजद FIR होने के बावजूद सिर्फ एक कांस्टेबल को ही गिरफ्तार क्यों किया गया? इसलिए कि भरत तिवारी पर पहली गोली उसी ने चलाई थी। इसके बाद गोली चलाने वाली पुलिस को गुनहगार ही नहीं माना गया, कम से कम अभी तक तो नहीं माना गया, क्योंकि अगर माना गया होता तो पहली गोली चलाने वाले को सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया जाता।
1: दूसरा गोली आया और 5 गुन का गोली मारा रहे। हम ये कह चाहते नहीं खुशी भइल गिरफ्तारी हो गई तो सब लोग के सजाई मौत हो जाए तो और खुशी हो जाए। हमारा हम सब के फांसी चाहतनी, आगे हम चाहतनी जेकर में हाथ बा जे जे मरले बकरा फांसी होके चाहिए, उन लोग के छुटकारा ना होके चाहिए। हमारा ये मांग बा बस।
2: मतलब जो जो
1: हाँ जो जो जेकर जेकर में हाथ बा जे जे मरले बा सबके फांसी चाहिए। हाँ हमारा मुख्यमंत्री से यह मांगबा।
3: वो तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, वही पहला गोली मारा था ना, अब वही ना बताएगा किसी किसी का हुआ, तो सब भेद वही खोलेगा।
0: और यहीं से ये सवाल भी है कि क्या IPC या BNS की धारा सिर्फ आम लोगों के लिए? पुलिस वाले कानून की इन धाराओं से ऊपर है? अगर नहीं तो इनकाउंटर के वक्त मौके पर मौजूद सारे के सारे पुलिस वालों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? जब FIR तक में 5 पुलिस वालों के ऊपर हत्या की धारा लगाई गई तो फिर गिरफ्तारी सिर्फ एक की क्यों? आला पुलिस अफसरों के साथ ये रहमदिली क्यों? ये अक्षय कुमार है, बिहार STF में कांस्टेबल। भरत तिवारी का इनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम का ये भी एक मेंबर था। पुलिस वालों की तरफ से कहा गया कि भरत तिवारी के पिस्टल फेंकने के बाद उस पर जो पहली गोली चलाई गई थी वो कांस्टेबल अक्षय कुमार ने चलाई थी, इसीलिए उसे गिरफ्तार किया गया। पर बिहार पुलिस ये नहीं बता रही है कि बाकी की 4 गोलियां जो भरत तिवारी के जिस्म से निकाली गई वो किसने चलाई थी? 5 में से बाकी की 4 गोली चलाने वाली पुलिस को क्यों और किसके कहने पर अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है? जब FIR में 5 पुलिस वालों के नाम हत्या का मुकदमा दर्ज है तो इतना वक्त बीत जाने के बावजूद पुलिस उन्हें अब तक क्यों नहीं पकड़ रही? क्या सारा ठीक रहा, एक कांस्टेबल को गिरफ्तार कर बस उसी पर फोड़ दिया जाएगा? जो लोग पुलिस के काम करने के तरीके से वाकिफ है उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल, एसआई या इंस्पेक्टर तब तक गोली नहीं चलाता जब तक उस वक्त मौके पर मौजूद उसका लीडर उन्हें ऑर्डर नहीं देता। अब कांस्टेबल अक्षय कुमार ने खुद से तो गोली चलाई नहीं होगी, किसी ने तो उसे हुक्म दिया ही होगा, तो फिर हुक्म देने वाले के साथ इतनी मोहब्बत की।
4: और हम यही चाहेंगे कि आगे भी जो भी लोग भी इसमें शामिल हो सबकी गिरफ्तारी हो, और जहां तक हमारे फैमिली के द्वारा मांग है कि फांसी की सजा दी जाए उनको। हम यही चाहते हैं कि बस जो भी है इसमें सबकी फांसी हो।
5: कौन से ऐसे लोग हैं?
4: चंदन तिवारी
5: मेन लोग हैं, उनकी अब गिरफ्तारी पहले से आते
4: हैं। यहाँ के SDM जगदीशपुर के और यहाँ के SHO, ये भी गोली चलाए हैं। SHO जो शाहपुर थाने के हैं, ये दूसरी गोली मारी है इन्होंने, तो इनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए।
6: इसी ने पहले गोली मारी थी मेरे देवर को।
5: गिरफ्तारी की मांग आप लोग?
6: हाँ, हम लोग यही मांग है सबका, जो जो दोषी है सबको गिरफ्तार करके सबको फांसी की सजा दी जाए।
0: ये पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा है। तस्वीर 25 जून की है। उस दिन ये भोजपुर
7: गालिया मोदी ने एक और वीडियो संदेश जारी किया है।
8: किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भलीभांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
7: माफ कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन बच्चों को जिन्होंने उन्हें गालियां दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भटके हुए बच्चे हैं, इन्हें सही राह दिखानी होगी, इन्हें गले लगाना होगा। प्रदर्शन में मुझे और मेरी मां को गाली दी गई। एक बार फिर से सुनवाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को माफ किया है।
8: तो शोभा न दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है, और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गाली देने वाले बच्चों को माफ कर दिया है। कहा है कि गलतियां बच्चों से होती हैं, इन्हें गले लगाने का समय है, सही राह दिखाने का समय है, और मुझे और मेरी माँ को गाली दी गई, ये ठीक नहीं था, लेकिन मैं बच्चों को माफ करता हूँ, मेरे अपने बच्चे। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता साथ हैं। हिमांशु, एक बार फिर से इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री ने बच्चों को माफ करते हुए एक भावुक अपील की, किस तरह से बच्चों तक पहुंच रहे हैं, छात्रों तक पहुंच रहे हैं पीएम, और इस आज माफी का कितना असर होगा?
9: देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं सही नजर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार जो युवा है उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश में है, और जिस तरीके से उनके लगातार जो वीडियोस हैं उस पे, जो इंस्टाग्राम पे वीडियो है उसके व्यूज देखिया, पहले जो तीन वीडियोस थे वो 800 मिलियन से ज्यादा, यानी 80 करोड़ लोगों ने 3 मिलियन जो है उनके पहले।
7: हिमांशु, संपर्क हमारे संवाददाता हिमांशु से टूट गया हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से बच्चों को माफ किया, एक बार फिर से वो वीडियो संदेश इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया है, संदेश आपको सुनाता हूं।

0: समाज भी पारित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है, और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
1: हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं। हिमांशु आप अपनी बात पूरी कीजिए, आपका संपर्क टूट गया था, एक बार फिर से अपने दर्शकों को। उससे पहले हिमांशु बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और वीडियो पोस्ट किया है इंस्टाग्राम पर, और प्रदर्शन के दौरान गाली देने वाले बच्चों को माफ करते हुए कहा है कि हमारे बच्चे हैं, राह भटक जाते हैं, सही राह दिखाने का समय है, बच्चों को गले लगाने का समय है, बच्चों आओ बस सब कुछ भूल जाओ। बताइए हिमांशु।
2: देखिए बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस वीडियो में अपील की है उस समाज से कि देखिए जिस तरीके की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए या उनकी माता जी के लिए किया गया, उसके बाद जो है साफ साफ ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे उसमें है कि किसी भी तरीके से किसी बच्चे के साथ कोई जो है इस तरीके की चीजें ना हो, जिन्होंने वो किया उनको वो माफ करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आइए गले लगिए और आगे बढ़िए, हमारा काम है गलतियों को माफ करना, क्योंकि युवा है, कुछ भटक गए थे, ठीक है, भटके लोगों को रास्ते पे लाने का काम भी हमारा ही है और इसको हमको करना ही चाहिए। उसका उन्होंने एक उदाहरण दिया जिसमें उस उदाहरण में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि दांतों के बीच में जो है जीभ तो कट जाती है, कटने के कारण खून आता है और इसी का एग्जाम्पल दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दांत तोड़ ले।
1: थोड़ा सा समय कम है और बात करेंगे, बहुत धन्यवाद आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो संदेश, बड़ा दिल दिखाते हुए अपने खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में बच्चों द्वारा गाली निकाले जाने को उन्होंने कहा कि माफ करता हूं, बच्चे हैं मेरे और बच्चों साथ आओ बस। वारदात हमारे साथी शम्स ताहिर खान के साथ अब देखिए।
3: गोरखपुर में एक व्यापारी के 10 साल के पोते का किडनैप करने के लिए एक कंप्यूटर टीचर पहले एआई से सवाल पूछता है, फिर लॉरेंस विश्नोई गैंग के कत्ल करने के तरीके के बारे में जानता है, इसके बाद एक ऐसा सिम ढूंढता है जिससे उसका नंबर ट्रेस ना हो पाए, और ये सब कुछ करने के बाद बिना फिरौती लिए ही वो उस बच्चे को मार देता है। गोरखपुर में चौथी क्लास में पढ़ने वाले 10 साल के बच्चे वैभव को किडनैप करने और फिर उसे मारने के लिए एक कंप्यूटर टीचर ने क्या क्या प्लान नहीं बनाया। सबसे पहले उसने एआई की मदद से ये जाना कि गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई कैसे काम करता है, कैसे लोगों को उठाता है, कैसे उन्हें मारता है, किडनैप करने के बाद किस फोन या नंबर से फिरौती की रकम वसूलनी चाहिए, नया व्हाट्सएप अकाउंट कैसे खोलना चाहिए, और ये सब करने के बाद सबसे पहले तो उसी बच्चे को मार डालता है, फिर उसके बाद उसके बाप को फोन कर 1 करोड़ की फिरौती मांगता है। अभी इसी हफ्ते हमने आपको गोरखपुर के 10 साल के बच्चे वैभव वर्मा की किडनैपिंग और कत्ल की कहानी सुनाई थी, लेकिन तब ये खुलासा नहीं हो पाया था कि कंप्यूटर टीचर ने वैभव को क्यों किडनैप किया और फिरौती की रकम लेने से पहले ही क्यों उसे मार डाला। तो सबसे पहले वैभव के कत्ल की कहानी जान लीजिए। बोरी में लिपटी ये 10 साल के एक बच्चे की लाश है, चौथी क्लास में पढ़ने वाले एक जौहरी के पोते की लाश। ये लाश एक घर के बेसमेंट में इसी तरह बोरी में पैक मिली। हालांकि इस लाश के साथ पुलिस ने बच्चे के कातिल को भी पकड़ लिया, लेकिन इसके बावजूद यहां मौजूद ये भीड़ पुलिस वालों से खासी नाराज है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कातिल पुलिस के पास 17 घंटे से मौजूद था, लेकिन पुलिस बच्चे का सच फिर भी उससे उगलवा नहीं सकी। यहां तक कि उस कातिल के घर तक भी पुलिस हो आए, लेकिन उसी घर के बेसमेंट में रखी लाश तक को वो ढूंढ नहीं पाए।
4: हमारा बच्चा है और पुलिस वालों ने 6 बजे जब बिट्टू शर्मा को कस्टडी में लिया, उसके बाद हम लोग को गुमराह किए। इन लोगों को मालूम था कि बच्चा इसी घर में है, लेकिन घुमा के हम लोग को रात भर यहाँ किए, वो किए, ऐसे किए, वैसे किए। अभी 11 बजे दोपहर में जब माहौल ठंडा हुआ है, तब ये लोगों ने उनके घर में दबाव डाला, उनके घर में घुसा और बाजी को बरामद करके बता दी कि लोग नहीं है, अब हम लोग का
5: आप आरोप लगा रहे पुलिस पे?
4: हाँ, क्योंकि सब मौके पर मालूम रहते हुए भी उन लोगों ने कुछ किया नहीं।
3: मामला यूपी के उस गोरखपुर का है जहां से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। इसी गोरखपुर में एक जौहरी का पोता 10 साल का वैभव वर्मा सोमवार को स्कूल से घर लौटता है। किताबों का बस्ता घर में

0: सर्वेश भट्ट की गिरफ्तारी के बाद अगले 17 घंटे तक पुलिस उससे पूछताछ करती रही। 17 घंटे बाद अगले दिन यानी मंगलवार की सुबह फिर उसे अपने साथ लेकर उसके घर पहुंची और आखिरकार सर्वेश के घर के बेसमेंट से बोरी में रखी वैभव की लाश बरामद हो गई।
1: कल हनुमान वर्मा नामक व्यक्ति द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उसका बालक जो 10 वर्षीय वैभव वर्मा है वो 2 बजे अपने घर से साइकिल से निकला था और अपने घर नहीं लौटा है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय थाने द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 240/26 पंजीकृत करते हुए थाने की 2 टीमों को और SP साउथ के अधीन SOG की 3 टीमों को बालक की बरामदगी के लिए लगाया गया था। इस क्रम में उसी के पड़ोस में रहने वाले कंप्यूटर टीचर सर्वेश भट्ट 36 वर्षीय जो थाना खजनी का ही निवासी है से गहन पूछताछ पे और CCTV फुटेज के अवलोकन से यह देखा गया कि वैभव को सर्वेश अपने साथ लेके कहीं जा रहा था। इस संबंध में जब गहनता से पूछताछ की गई तब आज सर्वेश भट्ट के घर के बेसमेंट से वैभव का शव बरामद किया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई और मृत्यु के कारणों की गहनता से पूछताछ की जा रही है।
0: अब सवाल यह है कि जब आरोपी पुलिस की कस्टडी में था, पुलिस की नजर में था, तो फिर कैसी पूछताछ कर रही थी पुलिस कि उसका मुंह खुलवाने में भी पुलिस को 17 घंटे लग गए। जब CCTV कैमरे में वैभव सर्वेश के घर की तरफ जाता दिखाई दिया, उसका चप्पल खेत में फेंकता कैमरे में कैद हुआ, तो फिर पुलिस ने सर्वेश के घर की तलाशी उसी वक्त क्यों नहीं ली?
2: उस आधार पर प्रशासन पकड़ के उनको लाई है, पूछताछ कर रही है और आज दोपहर में उनके घर में से लाश मिली है हमारे भतीजे का बेसमेंट से। कल रात में कहां कब उसको किया, पूरा परिवार मिलकर क्या किया है अब ये हमको पूरी जानकारी नहीं है। कैसे कैसे उसकी हत्या किए हैं लेकिन उनके घर में बेसमेंट में लाश मिली है और यहां स्वीकार है तो प्रशासन गई है वहां पर निकाली।
0: तो पूरी कहानी तो आपने सुन ली, अब सर्वेश की कहानी भी जान लीजिए। साल भर पहले ही सर्वेश भट्ट की शादी हुई थी। पेशे से वो एक कंप्यूटर टीचर था। हालांकि 2024 के नीट एग्जाम पेपर लीक में उसका भी नाम आया, वो पकड़ा भी गया। 40 दिनों तक प्रयागराज के नैनी जेल में बंद भी रहा, फिर जमानत पर बाहर आ गया। उसने एक बैंक से 25 लाख रुपए का कर्ज ले रखा था। हर महीने करीब 30,000 रुपए किश्त जाती थी। इसी उधार को चुकाने के लिए उसने इलाके के बड़े व्यापारी के पोते वैभव को किडनैप करने का प्लान बनाया। उसे उम्मीद थी कि फिरौती की शक्ल में उसे कम से कम 1 करोड़ रुपए तो मिल ही जाएंगे। चूंकि कंप्यूटर का टीचर था इसीलिए साजिश की सारी कड़ियां कंप्यूटर और AI से ही जोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उसने वैभव को किडनैप किया तभी वैभव शोर मचाने लगा, इसीलिए उसने उसी वक्त गला घोंट कर उसे मार डाला, फिर लाश को बोरी में भरकर घर के बेसमेंट में ही रख दिया। वैभव के कत्ल की बात और घर में लाश होने की खबर सर्वेश के घर वालों को भी थी, लेकिन वो भी चुप रहे। उधर गांव वालों के साथ दिखावे के लिए वो वैभव को ढूंढने का नाटक भी कर रहा था। सर्वेश के जुर्म कबूल करने के बाद सबूत छुपाने मिटाने और पुलिस को खबर न देने के इल्जाम में पुलिस ने उसके परिवार के 6 और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
4: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune in has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
4: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match.

वीडियो से छात्रों को फिर दिया संदेश, कहा गाली गलौज से किसी समस्या का समाधान नहीं, गुमराह बच्चों को करना चाहता हूं माफ, बोले मिलकर बनाएं सपनों का भारत। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के अजीबोगरीब प्रदर्शन पर राजनीतिक युद्ध, सरकार बोली संसद नाटक की जगह नहीं, अखिलेश ने पूछा सच बुरा लगा क्या।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो। ये वक्त मुंबई मेट्रो का है, उसकी खबरें हम आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम ने दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान उन्हें गाली देने वाले बच्चों के लिए संदेश जारी किया। पीएम ने कहा कि मुझे और मेरी माँ को गाली दी गई। मोदी जी ने कहा कि ये गुमराह बच्चे हैं जिन्होंने गालियां दी, अब समय है इन बच्चों को राह दिखाने। सुनिए।
2: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
1: ठाणे के भिवंडी में एक दर्दनाक हादसे ने 10 लोगों की जान ले ली। कोहिनूर नाम की जर्जर इमारत जमींदोज होने से मलबे में 10 लोगों के शव एनडीआरएफ ने बाहर निकाले, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुख व्यक्त करते हुए मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन सवाल ये कि हर वर्ष बारिश में मौत की इमारतें कब तक लोगों को जिंदा दफन करती रहेंगी।

0: दहाड़ मारकर रोती इस महिला ने अपने भाई शमीम को खो दिया है। जैसे ही इसे फोन पर भाई की मौत की खबर मिली, वो सड़क पर बेहोश हो गई। थाने की भिवंडी में 4 मंजिला कोहिनूर नाम की इमारत गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
1: इस वक्त हम थाने के भिवंडी इलाके में हैं। यहाँ पर गुरुवार शाम अचानक से एक बिल्डिंग के जर्जर होने की खबर आई थी, और जिसके बाद जो असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर हैं इलाके के, भिवंडी निजामुद्दीन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, वो यहाँ तुरंत पहुंचे मौके पर, और उन्होंने देखा कि इमारत, ये जो इमारत है 4 मंजिला इमारत है, जो दरअसल कुछ क्रैक कर रही थी, गिर रही थी, तो उन्होंने तुरंत घुस के अपने लोगों के साथ, जो पूरे 4 फ्लोर पे लोग रहते हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए उनको निकाला। कुछ लोग नहीं निकले, ऐसा बताया यही जा रहा है कि इनके निकलने के दौर के जैसे ही वो अधिकारी लोग यहां से निकले, वैसे ही यहां इमारत अचानक से भरभरा के गिर गई, और इसकी वजह से जो कुछ वर्कर्स जो उस समय नहीं निकले थे यहां से, उन वो अंदर दबे हुए थे। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो लोग हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस इमारत में दरअसल इलीगल रिपेयर वर्क चल रहा था, जो कि एक बहुत बड़ा इश्यू था, क्योंकि ये एक तरीका होता है, साइंटिफिक तरीका होता है, जिसके जरिए पूरा रिपेयर वर्क किया जाता है। कोई भी जिस तरीके से ये रिपेयर वर्क हो रहा था वो सही नहीं था, ये सब उन्होंने नोटिस किया।
0: सीएम फडणवीस ने हादसे पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया।
2: जो भिवंडी में घटना घटी है, ये जो बिल्डिंग थी इसको डायलैपिलेटेड घोषित किया गया था, 25 लोगों को उसमें से बाहर भी निकाला गया था, फिर भी उसके कॉन्ट्रैक्टर ने रिपेयर का काम शुरू रखा, कुछ लोग वहाँ रुके और उसमें यह दुर्घटना हुई है। जिन लोगों का मृत्यु हुआ है उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है, सरकार उनको मदद करेगी। जख्मियों को भी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, और जिस प्रकार से कॉरपोरेशन के नोटिस के बावजूद ये कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू रखा, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए।
0: गिरती हुई बिल्डिंग से करीब 30 परिवारों को सुरक्षित निकालने का दावा किया जा रहा है।
3: रेस्क्यू ऑपरेशन द्वारा हमारे पास फिलहाल 10 बॉडी आए हुए हैं, और उनका पोस्टमार्टम, पंचनामा और पोस्टमार्टम चालू है।
0: ज्यादातर मजदूरों के परिवार इस बिल्डिंग में रह रहे थे।
4: भिवंडी में यहाँ पर जो हादसा हुआ है उसमें 9 लोगों की मौत हुई है। बहुत दुखद घटना ये है। आप देख रहे हैं कि रात को 11:30 के बीच में यहाँ पर ये इमारत, जिसका काम चल रहा था, रिपेयर का काम चल रहा था, इसकी कोई परमिशन कॉरपोरेशन ली गई नहीं थी, दिन में किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए रात को ये काम चल रहा था, और काम चलते समय ये जो ढांचा है पूरा, ये इमारत है, ये पूरी नीचे आ गई। पहले से ही नोटिस देकर इसमें के जो परिवार थे, 30 परिवार थे, उनको खाली कर दिया गया था। उसके बावजूद भी जो लेबर है या एक दो परिवार है, ये यहीं पर रुके थे। इमारत गिरने से 9 लोगों की मौत इसमें हुई है, 4 लोग जख्मी इसमें है, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है, और भी ये मलबा निकालने का काम एनडीआरएफ की तरफ से जारी है।
0: मलबे में दबे कई लोगों की जान एनडीआरएफ की टीम ने बचा ली। ये बिल्डिंग साल 2012 में गैर कानूनी तरीके से बनाई गई थी, और मानसून से ठीक पहले इसे खतरनाक बिल्डिंग घोषित किया गया था। अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि यहाँ रहने वाले परिवार जर्जर इमारत छोड़कर बाहर चले जाएं। ये बिल्डिंग रिपेयरिंग लायक भी नहीं रह गई थी। हालांकि कॉरपोरेशन को बिना बताए बिल्डिंग के मालिक और कॉन्ट्रैक्टर ने इसकी रिपेयरिंग शुरू कर दी थी, और इसी दौरान यह हादसा हो गया। बिल्डिंग के मालिक और कॉन्ट्रैक्टर पर केस दर्ज कर लिया गया है। विद्या, मुंबई आज तक।
5: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके क्या आंदोलन के बाद अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे? दिल्ली में जंतर मंतर के बाद अब कॉकरोच किस राज्य में कूच करने वाले? कॉकरोच जनता पार्टी अगला विकेट किसका गिराने की बात कर रही है? आंदोलन के बाद अभिजीत दिपके ने अपने पहले इंटरव्यू में आज तक के हर सवाल का जवाब दिया। आगे की रणनीति क्या है, आप खुद अभिजीत से सुनिए।
6: हम छत्रपति संभाजी नगर में हैं, और छत्रपति संभाजी नगर का नाम आज पूरे देश में इस वजह से भी जाना जाता है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भी यहीं से हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अभिजीत दिपके के घर पे हम इस वक्त मौजूद हैं, और उस वक्त हम अभिजीत दिपके से बातचीत कर रहे हैं जब सदन के दोनों सदनों में पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पारित हो चुका है, लोकसभा के भीतर भी और कल राज्यसभा के भीतर भी। और कल इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी जारी किया और कहा है कि कैसे सरकार के तरफ से जो विद्यार्थियों की मांग थी उसे तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया गया और एक कड़ा कानून इस पूरे मामले में लाया गया। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होगी, कौन अभिजीत दिपके से लेकर अभिजीत दिपके तक का यह सफर किस तरीके से रहा, और सबसे बड़ी बात अब आगे ये स्टूडेंट एजिटेशन क्या करेगा, कहां ये एजिटेशन जाएगा, सरकार का जो बिल है उस पर उनकी क्या भूमिका रहेगी, ये तमाम मुद्दे हैं, राजनीति भी है, सब पर बात करेंगे। अभिजीत दिपके बहुत बहुत शुक्रिया आप आज तक से बात कर रहे हैं।
7: सर
6: पहला सवाल तो यही रहेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा लोकसभा और राज्यसभा में पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पारित हो चुका है, ये बिल को लेकर आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि इस बिल की जरूरत थी, या आपको जो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कड़ा कानून बनाया हुआ है, प्रावधान कड़े किए हुए हैं, 2024 के प्रावधान थे वो और भी कड़े किए हुए हैं, और ऐसे में पेपर लीक को रोकने में वो कामयाब हो पाएंगे, आपको लगता है कि ये बिल काफी है?
7: सर मैंने जितना समझा इस बिल को उससे मुझे ये समझ में आया, ये बिल पेपर लीक रोकने के लिए नहीं है, पेपर लीक होने के बाद क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि सारी बातें वही चल रही है, जेल को 4 साल से बढ़ाकर 10 साल का कर दिया, पेनल्टी बढ़ा दी है, तो कहीं ना कहीं सरकार अज्यूम करके चल रही है पेपर लीक तो होने वाला है, उसके बाद हम क्या करेंगे। हमारी जो डिमांड थी, जो आंदोलन था, वो इसलिए था कि पेपर लीक ना हो, और ये सारा बिल का फोकस जो है वो इस पर है कि पेपर लीक होने के बाद सरकार क्या क्या कदम उठाएगी, और कहीं ना कहीं मुझे बस बिल को लेकर नहीं, जो लोग सरकार में बैठे उनके इंटेंशन को लेकर भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि जैसे कल प्रधानमंत्री ने बोला वैसे उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में भी बोला था, और कई सारे लोग उस पर भी खुश हो गए थे कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी, अब क्यों आप लोग प्रोटेस्ट करो,
6: 3 महीने के भीतर चार्जशीट फाइल होकर उस पर कार्रवाई होगी,
7: और लोग हमें तब भी बोल रहे थे आप क्यों प्रोटेस्ट करो, आप तो कॉल ऑफ कर दो, लेकिन हमने देखा पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ, पहली हियरिंग पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का जो काउंसिल था वो प्रेजेंट नहीं था। तो आप लॉज कितने भी बना लो, कुछ भी कर लो, जब आपका इंटेंशन ही उतना डिटरमाइंड नहीं हो आप इंटेंशनली, सो आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन बी कॉन्क्रीट हियर। तो सरकार को जो है फोकस करना चाहिए कि पेपर लीक ना हो, वो फोकस सरकार का अभी नहीं है। पेपर लीक हो जाएगा तो फिर वही चीजें होगी, फिर से स्टूडेंट्स का फ्यूचर अफेक्ट होगा, फिर से जो है आपको री एग्जामिनेशन करवानी पड़ेगी, और उस बीच में फिर से और कितनी जाने जाएगी किसी को पता नहीं है।
6: प्रधानमंत्री ने और एक वीडियो जारी किया था, ये कल का वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले जो वीडियो था उसमें उन्होंने कहा था कि कई निर्णयों की श्रृंखला है, उस श्रृंखला में पहला निर्णय फास्ट ट्रैक कोर्ट का और उसके बाद ये बिल लाया जा रहा है, इसका मतलब ये कि और भी निर्णय उसमें हो सकते हैं। जो 5 मांगे सीजेपी की तरफ से मंत्रियों के सामने रखी गई थी उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की भी मांग थी, और उसके साथ कुछ
7: व्हाइट पेपर आना चाहिए,
6: व्हाइट पेपर आना चाहिए आपने कहा था, उसके साथ साथ आपने ये भी रखा था उसमें कि एनटीए के भीतर सिस्टमैटिक बदलाव किस तरीके से होने चाहिए, उस पर चर्चा कब शुरू होगी आपको लगता है, क्योंकि आपको आपके बोलने से तो लग रहा है कि आप इस बिल से कुछ ज्यादा खुश नहीं।
7: बिल्कुल, तो वही हम सरकार से बात ही कर रहे हैं अभी भी, हम मतलब वी आर ट्राइंग टू आस्क देम कि एक तो कंपनसेशन पर भी अभी तक उन लोगों ने कुछ बोला नहीं है, 1 करोड़ का कंपनसेशन हमने विक्टिम्स की फैमिली को देने बोला था, सरकार ने अश्योर तो किया है कि दे देंगे, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना डिले क्यों किया जा रहा है, जब रातों रात सरकार बदलनी होती है, रातों रात एमपी एमएलए खरीदने होते हैं, तब आपके सूटकेसेस पहुंच जाते 50-50 करोड़ के, लेकिन जहां पर विक्टिम्स की फैमिली को 1 करोड़ का कंपनसेशन देना है तो सरकार ने अभी तक अनाउंस कुछ नहीं किया।
6: उसके तो कुछ नॉर्म्स होते हैं, सरकार ने उस दिन भी कहा था कि उस नॉर्म्स के तहत हम उनको कंपनसेशन,
7: सारे नॉर्म्स सर जनता के लिए है, सरकार रातों रात बदलनी है तो कौन से नॉर्म्स होते हैं, फिर रातों रात सरकार बदलनी है, गिरानी है, एमपीज खरीदने, एमएलए खरीदने, तो तब नॉर्म्स नहीं देखे जाते, तब जो 10th schedule है कॉन्स्टिट्यूशन का वो देखा नहीं जाता है, सारे नॉर्म्स, सारे रूल्स, सारे जो गाइडलाइंस, सारे रूल बुक सिर्फ लोगों के लिए, जनता के लिए, इन लोगों के लिए सारी खुली छूट है।
6: लेकिन आपकी एक मांग उसमें ये थी कि जिस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती, नॉन निगोशिएबल, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और वो तो हो चुका है, ठीक है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरीके से बदल ही दिया एक तरीके से, क्योंकि सेक्रेटरी वहां के बदल दिए, 2 नए सेक्रेटरी ला दिए गए हैं, एनटीए के भीतर जो अधिकारी थे, सरकार का आंकड़ा 37 का है, हालांकि विपक्ष कहता है कि कुछ 24 ही उसमें ये थी, जो भी है उसमें, लेकिन वो भी पूरी तरीके से बदल दिया, उनको भी हटा दिया वहां पर, तो इसका मतलब ये कि आपको लगता है कि सरकार आपके दबाव में कदम तो रखने की कोशिश करिए, आप सरकार को वो भी उम्मीद नहीं रखते आप सरकार?
7: नहीं, कदम रखा है, आई एम वेरी ग्लैड, और जो प्रधानमंत्री पिछले 10-12 साल से बस हिंदू मुसलमान का डायलॉग कर रहे थे, हिंदू मुसलमान के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे थे, आप देख रहे हो पिछले 4-5 दिनों में वो इंस्टाग्राम पर एजुकेशन के ऊपर रील्स डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस देश के स्टूडेंट्स जो है, यूथ जो है, जेंजी जो है, उन्होंने फोर्स किया है प्राइम मिनिस्टर को, जो प्राइम मिनिस्टर इतनी ज्यादा हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स से प्यार करते थे, उनको फोर्स किया है कि शिक्षा पर बात करो, एग्जामिनेशन पर बात करो, सो दिस इज अ वेरी बिग एंड मेजर विक्ट्री फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने स्टेप्स क्या लिए, जो नया एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, ही वॉज सीन सपोर्टिंग द रेपिस्ट ऑफ बिल्किस बानो, उनका स्वागत करने में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वेर ही वॉज वेलकमिंग द रेपिस्ट ऑफ बिल्किस बानो।
6: ये मुद्दा जब प्रियंका गांधी ने उठाया था तो बड़ा शोर हुआ,
7: होना भी चाहिए
6: लोकसभा के भीतर शोर हुआ। उन्होंने कहा कि ये गलत बयान है, वो बयान हटा।
7: मतलब आप सोचिए ना, जो बच्चे स्कूल में है कॉलेजेस में उनके क्या मैसेज आ रहा है। एक रेपिस्ट के सपोर्टर को आप एजुकेशन मिनिस्टर बना रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर यू सेंडिंग टू द कंट्री। शर्म आ रही है, मतलब ये तो धर्मेंद्र प्रधान से
6: उनका ये कहना था कि हम तो वो कह रहे थे कि ये कानूनन पॉसिबल है, यानी उनको जो छोड़ना वो कानूनन पॉसिबल है।
7: कानूनन पॉसिबल है तो आप वेलकम करोगे उनका हारमाला डालकर, बलात्कारियों का आप हारमाला डालकर स्वागत करोगे, फिर कानूनन पॉसिबल है।
6: तो जो नया मंत्री है उनसे भी आप संतुष्ट?
7: नॉट एट ऑल सर। मतलब कोई रेपिस्ट का वेलकम करता है, हाउ कैन आई बी हैप्पी विद दैट। ये तो मतलब बहुत ही शेमफुल बात है, ना सिर्फ हमारे लिए, इस कंट्री के लिए। सोचिए इंडिया की इमेज क्या आ जाएगी वर्ल्ड में जब उनको पता चलेगा इंडिया का जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो एक रेपिस्ट का वेलकम कर रहा है हारमाला डालकर। दिस इज वेरी शेमफुल। और जो सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, नया सेक्रेटरी जो बना है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो खुद करप्शन में इन्वॉल्व रह चुके पहले। एनिमल वेलफेयर उनका कुछ था, उसमें कितने सैकड़ों हजारों करोड़ का उन्होंने स्कैम करा है। तो ये तो एक तरीके से एक खराब इंसान को हटाकर दूसरे खराब इंसानों को ये रिवॉर्ड कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे।
6: जो पुल उनके पास है उसमें से
7: एग्जैक्टली मैं कल वही बोल रहा
6: हूं, उनके पास है जो चुने हुए लोग हैं उनमें से।
7: मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी में और भी अच्छे लोग होंगे।
6: कौन आपकी चॉइस कौन थी मंत्री बनाने के लिए?
7: मंत्री बना हम कैसे कोई चॉइस देते, हमारी सरकार।
6: आपके दिमाग में कोई?
7: नहीं, मेरे दिमाग में तो कोई नहीं था। मेरे दिमाग में तो बस यही था कि धर्मेंद्र प्रधान डजंट डिजर्व टू बी द एजुकेशन मिनिस्टर।
5: अभिजीत को आप सुन रहे थे। अभिजीत दीपके के मम्मी पापा ने भी आज तक से हमारे साथी साहिल से बात की है। आंदोलन के दौरान उनके दिन कैसे बीते ये बताते हुए अभिजीत की माता जी भावुक हो गईं। उन्हें देखकर अभिजीत भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। आंदोलन की कहानी अभिजीत दीपके की माता जी की जुबानी।
8: नमस्कार, मैं अभिजीत। हम अभी छत्रपति संभाजी नगर में हैं और ये घर जो है ये अभिजीत दीपके का घर है, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी की निर्माण किया और जंतर मंतर पर आंदोलन करके एक बड़ी जीत हासिल की। 12 वर्ष में पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हुआ है। अभिजीत के माता पिता हमारे साथ है। जब ये अभिजीत ने पार्टी खोली थी, आपको पता चला था कि ये अभिजीत आने वाला है, ऐसा कुछ करने वाला है? आपको कभी लगा था कि ये ऐसा करेगा?
9: नहीं, इतना बड़ा हो गया तो नहीं लगा था। मुझे लगा चला ये टाइम पास कर रहा है कुछ, तो भी ऐसा मुझे लग रहा था। तो उसको बोलिए कुछ मत कर, तू तेरी पढ़ाई कर, उधर जॉब कर। पढ़ाई तो हो गई थी उसकी, 16 टाइम मई को हो गई थी। मैं बोले जॉब कर ले तू, फॉरेन में उधर अच्छा है, इधर मत आ। तो ठीक है बोले मम्मी, फिर बाद में ऐसा हो गया वो कॉकरोच का, फिर आ गया वो।
8: फिर आपको कब पता चला कि वो आने ही वाला है, वो सुन ही नहीं रहा?
10: तीन तारीख।
8: आपने समझाया होगा ना?
10: मैं उसको तीन बहुत समझाया उसको।
8: क्या बोले आप?
10: मैं बोला तो इंडिया में कैसा है तो सब कुछ देखता है, हम भी देख रहे हैं, तो बेटर है कि उसकी उधर सेटल हो जाए। हाँ, तुझे जॉब मिलता है कहीं ना कहीं तो भी, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस भी था ना।
8: आपको डर लग रहा था कि ये पॉलिटिक्स हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी?
10: हाँ, मुझे उसी का ही डर था कि क्योंकि पॉलिटिक्स मुझे पसंद नहीं है। मैं पसंद ही नहीं करता पॉलिटिक्स के, तो वहाँ पे झूठा और सच तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। सुबह एक बोलते हैं, शाम को एक बोलते हैं, दोपहर को कुछ और एक बोलते हैं। तो इसीलिए वो पॉलिटिक्स से मेरी थोड़ी नफरत थी, है अभी भी। मुझे ये लग रहा था कि इतना वो सच्चा, वो तो बहुत सीधा है वो। हाँ, उसको ऐसा गलत झूठ उसको थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं होता।
8: इतना बोलता था पता है आपको? इतना भाषण वाषण देता था?
9: नहीं नहीं, कुछ भी नहीं पता था।
8: पहली बार भाषण कब सुना?
9: इनके रिटायर के टाइम में, रिटायर हो गए थे जब उसने भाषण करा था ऑफिस में।
8: पॉलिटिकल भाषण
9: नहीं, वो टीवी पे ही देखा।
8: टीवी पे ही देखा?
9: हाँ, टीवी पे ही देखा।
8: डर लगा कि ये आया है अभी?
9: हाँ, इंटरव्यू देता ना वो, जब ये बोले
8: दिल्ली एयरपोर्ट पे जब उसको देखा, वो किताब लेकर आ रहा था।
9: नहीं, वो दिन भी टीवी नहीं देखे, मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, वो दिन नहीं। उसके दोस्त के आते हम मोबाइल हमारा ऑफ, उसने बोला था ऑफ करो, अगर मुझे अटक गिटक हो गई तो पापा मम्मी टेंशन में आ जाएंगे। पापा की बीपी लो है, मम्मी को बीपी शुगर है, वो हाई जाए हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, इसलिए उनको टीवी मोबाइल नहीं। बाद में वो जब आंदोलन की तरफ गया, जंतर मंतर सब अच्छा हो गए के बाद, उसके दोस्त बोले काकू अच्छा हो गए, उसको अटक गिटक नहीं, वो जंतर मंतर पे गया बोले, फिर इनको टीवी लगाने को बोले उन्होंने।
8: लेकिन ये अभिजीत ने अचानक से अनशन शुरू कर दिया था, आपको पता था कि ये अनशन करने वाला है, खाना वाना सब छोड़ने वाला है?
9: नहीं नहीं, वो दिन इस पे बताए थे ना टीवी पे, उन्हें अनशे करा तो
11: आपको कुछ इन्फॉर्म नहीं किया?
9: नहीं नहीं कुछ भी नहीं, डायरेक्ट वही डिशेज ले आते। ये बोले चल दिल्ली जाने का है, मुझे लगा दूसरा ही कुछ होगा है, बोले क्या होगा है, तो नहीं बोले जाने का है, ये अपना छोटा वाला उधर अभिजीत बैठा है, बोले अनशन, बोले क्यों, तो बोले सर को उठा के ले गए, इन्हें डिसीजन लेने, कैसा क्या डिसीजन लिया क्या मालूम, बोले चल चल, बोले तैयार हो। तो बाद में फिर उसका दोस्त बोले नहीं काकी तुम मत आओ, बोले तुम आने के बाद इधर आओ, वो हे हो जाएगा, बोले इमोशनल हो जाएगा, तुम आओ मत, बोले तुम्हारे को हमारी कसम है, बच्चे कसम डाल रहे थे, आओ मत, बोले इसीलिए नहीं नहीं, तो ये तो बोल रहे थे काका चलो जाएंगे अपन, वहीं बैठेंगे, मेरा बच्चा मुझे यहाँ रखे क्या करने का, मेरा बच्चा ही उधर है बिगड़ खाने पीने का, मैं यहाँ के जिंदा रह के क्या करूँ। बहुत गुस्से में थे वो दिन, इतने गुस्से में थे, बहुत गुस्से में थे।
11: बुरा लगा बिना खाए पिए, कभी देखा था उसको?
9: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वैसा रात को भी उसको भूख लगती ना तो अकेला उधर किचन में आके चावल बना के खाता है 1-1.5 बजे, मगर बोलता नहीं मम्मी तू बना के दे बोल के, कभी भी भूख लगी तो करके खाता है, ऐसा भूखा नहीं रह गया वो, कभी भूखा नहीं रह गया, उसको भूखा मालूम ही नहीं है।
11: अभी भी आपकी आंखों में आंसू आते हैं जब भी आप बात करते
9: हैं? नहीं फिर वैसा हो गए ना, बहुत 36 दिन उसने कैसा निकाला वो उसको मालूम, वो 36 दिन कितने इसके थे उसके, तो 36 दिन बहुत बुर गए, इतने बहुत बहुत आंदोलन देखते हैं मगर इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखे हमने, कभी नहीं देखे। मैं बचपन से औरंगाबाद में रहने वाली है, मई का मेरा औरंगाबाद है, मैंने बहुत आंदोलन देखे मगर ऐसा आंदोलन नहीं देखा मैंने, इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा।
11: जब अभिजीत आपको पता चला कि फाइनली ये आंदोलन का अच्छा जो रिजल्ट है आया है, फाइनली जिसकी मांग थी रेजिग्नेशन वो आया है, उसके बाद आपके क्या भाव? इतना बड़ा काम किया जो 12 साल में विरोधी पार्टियां नहीं कर सकी, कोई विरोधी नेता नहीं कर सके। भारत में बहुत सारे आंदोलन, किसान आंदोलन हुआ हमने देखा, NRC का आंदोलन हुआ हमने देखा, कोई नहीं कर सका, वो उसने कर दिखा।
9: नहीं अच्छा लगा ना, और राजीनामा बच्चों के लिए करा ना सब उसने, उसके तो कोई भाई बहन भी नहीं है नेट में, कुछ भी नहीं, सब लोग बच्चों के लिए कराए।
11: ये माता जी तो अभी भी भावुक हो रही है।
9: 35 दिन बहुत ही बुरे थे ना, बहुत बुरे गए थे 35 दिन दोनों को भी, हमारे खाना भी नहीं था, हमको नींद भी नहीं थी, नींद मालूम ही नहीं थी, 3-4 बजे तक हम वैसे रहते थे, जब उसका फोन आया तो अच्छा लगता था सुबह सुबह में, नहीं तो बहुत रही लगा, एक तो एक कुलता एक बोले इसको कुछ होगा है तो क्या करने का अपन, इतना बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था।
11: माँ आखिर माँ होके, माँ का दिल कोई नहीं जान सकता, और उसके मन में जो प्यार है वो किसी के मन में बच्चे के लिए नहीं हो सकता।
9: नहीं वैसा है भी ना, बहुत शांत है, बचपन से बहुत शांत है, उसके पापा ने कितने भी डांटे ना कभी पलट के जवाब नहीं दिया, कभी ही नहीं दिया उसने पलट के जवाब, पापा क्रांति क्रांति अभी उसको ही मालूम कैसे करा, तो मैं तो बोली ना वो पापा से डरता था और इतनी डेरिंग उसने कैसे करा, बहुत ये लग रहा है उसके बारे में।
11: कोई भी माँ हो रोते हुए अच्छी नहीं लगती है, हंसना चाहिए। चलो तो ये है, अभी भी डर लगता है? अभी डर नहीं लगता है ना?
9: नहीं अभी नहीं डर लगता है,
11: अभी तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं मिलने, तब आ रहे थे क्या?
9: नहीं नहीं कोई नहीं आया,
11: है ना,
9: सिर्फ बाला साहेब अम्बेडकर का एक ही फोन आया था उनका, बाद में कोई नहीं, किसका ही फोन नहीं था, कुछ भी नहीं था, उन्होंने फोन करे थे कुछ टेंशन मतलब बोले हम तुम्हारे पीछे, बस उतना एक ही फोन था हमको।
11: अभी कैसा लग रहा है? आप तो आप दोनों जब सामने रहते बोलते नहीं हो कुछ, आप मैंने सुबह भी देखा
10: नहीं, मैं ज्यादा बात नहीं करता मैं उससे।
11: अच्छा पहले से
10: अगर कुछ उसको चाहिए तभी बात करता है।
11: अच्छा
10: नहीं तो ऐसी बात नहीं करता,
9: नहीं कभी नहीं, पापा से पैसे भी नहीं मांगता था, मुझे मम्मी कुछ लगता है 100-200 रूपए मुझे मांगता था, मगर पापा को नहीं बोला मुझे पैसे देखो कुछ भी नहीं।
11: डरता है पापा से?
9: हाँ डरता है पहले से, मैं बोले ना इतना डरता हो, इतनी डेरिंग कैसा करा है, ये हो रहा है, पापा से बहुत डरता था वो।
11: देखो पापा से डरता है लेकिन क्रांति से नहीं डर रहा है बच्चा, ठीक है। तो ये माहौल है घर का, बहुत जब पहली बार घर में आया क्या खिलाया क्या उसको?
9: दाल की खिचड़ी खिलाई,
11: बहुत पसंद है
9: ना? हाँ नहीं टाइफाइड है ना? हाँ टाइफाइड
11: आ गया, अभिजीत आ गया, बहुत अच्छा,
10: अभिजीत अभिजीत
11: सबसे मिलके अभी आया है। माँ ने इतना सारा बताया, मैं वही पूछ रहा था, आ जाओ आ जाओ। मैं ये माँ का और बेटे का रिलेशन तो हम लोग जानते हैं, ये पिता का और बेटे का ना सबके घर में एक ही होता है,
12: मेरे यहाँ में वही है,
11: वही है ना,
12: वही है,
11: जब सामने होते हैं तो बात नहीं होती है,
12: नहीं बस बात होती है, फोन का रिचार्ज कर दे, गाड़ी का फास्टैग रिचार्ज कर दे, घर का लाइट बिल पे कर दे, वही बात होती है।
11: इतना रोई है
12: बहुत बहुत, उस पर मुझे बात नहीं करनी, क्या मेरा प्रॉब्लम
11: क्या? वहां पे जब बैठे थे आप और माँ का फोन आता था, माँ देखती थी वीडियो कॉल पे, क्या महसूस हुआ?
12: उस पर बात नहीं करनी मुझे, क्या मैं
11: ये तो बहुत बचता है बात करने से, लेकिन उसने एक चीज तो कर दिखाई है कि इस देश में हो सकता है जो चीज पूरी सरकार पूरी गवर्नमेंट नकार रही थी, रेजिग्नेशन, वो हो सकता है, उसने कर दिखाया है।
9: वो प्रामाणिक है ना, बहुत प्रामाणिक है, हाँ बहुत बचपन से ये प्रामाणिक है।
11: मतलब मुझे इतनी पसंद आई है ना ये चाची, सुबह से इसके बारे में बात करते थकती नहीं है, कोई भी माँ नहीं थकती है, लेकिन इतनी प्यारी बातें करती है। चलो तो ठीक है, ये माहौल तो मैं कितनी भी बातें करूँ ना आपसे मैं भी नहीं थकूंगा, मैं दिन भर ये कैमरा ऐसे शुरू रख सकता हूँ, है ना। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है अभिजीत, ये फ्रेम जो है ना, ये फ्रेम मुझे लगता है कि पूरे भारत के लिए सबसे ताकतवर फ्रेम कौन सी है, तो ये फ्रेम है। ये बेटा बीच में खड़ा है और माँ बाप जब साथ में होते हैं तो कोई भी बेटा कितनी भी बड़ी मुसीबत आए और कितना भी बड़ा चैलेंज है उसको पार कर जाएगा, और वो हिम्मत और ताकत माँ का आशीर्वाद देता है और पिता का आशीर्वाद देता है। नहीं नहीं, ये तो शेर है, शेर रोर कर। इतने सारे लोग मिलने आ रहे हैं, मीडिया के लोग आ रहे हैं, तो उसको समय ही नहीं है। हम सुबह, मुझे लगता है कि हम सबसे पहले आए उसके घर में 8 बजे, तब से ये बंदा यही कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, बात कर रहा है, और बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पे शेयर भी कर रहा है, और ये सारा माहौल है, पूरा परिवार है, और पूरे परिवार में आज खुशी की लहर है। कैमरामैन राजूश के साथ अभिजीत आज तक।
5: मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शुभ रात्रि।
13: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
14: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
15: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
14: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere.

0: पीएम मोदी ने वीडियो से छात्रों को दिया संदेश, कहा गाली गलौज से किसी समस्या का समाधान नहीं, गुमराह बच्चों को करता हूं माफ, बोले आओ मिलकर बनाएं सपनों का भारत। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के अजीब और गरीब प्रदर्शन पर राजनीतिक जंग, सरकार बोली संसद नाटक की जगह नहीं, अखिलेश बोले सच बुरा लगा क्या। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर, 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गई पीएम किसान योजना, तेल गैस की खोज के लिए 84,000 करोड़ की समुद्र मंथन योजना को स्वीकृति। 2020 दिल्ली दंगे में सजा का ऐलान, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में पूर्व पार्षद ताहिर समेत सभी 5 को उम्र कैद, बीजेपी आप में राजनीतिक भिड़न। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को मारी गोली, 1 की मौत 1 घायल, सर्च ऑपरेशन तेज। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम ने दिल्ली में उन्हें गाली देने वाले बच्चों के लिए संदेश जारी करते हुए कहा कि मुझे और मेरी माँ को गाली दी गई, पीएम बोले ये गुमराह बच्चे हैं जिन्होंने गालियां दी, मैं इन्हें माफ करता हूं।
1: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है, कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई, न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भलीभांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है, उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है, और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं, आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
0: और आइए अब देखते हैं नॉन स्टॉप 100 देश दुनिया की 100 महत्वपूर्ण खबरें।

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दौरा, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश का नया अल्लूरी एयरपोर्ट बनेगा दक्षिण का नया इकोनॉमिक पावर हाउस, भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। पीपीपी मॉडल के तहत 5,640 करोड़ रुपए से तैयार किया गया ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, पीएम बोले इस एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, व्यापार, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पीएम ने ब्रिटेन के पीएम से फोन पर बात की, एंडी बर्नहैम को यूके का पीएम पद संभालने पर बधाई दी, भारत ब्रिटेन में रणनीतिक व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय पर लगी मोहर, सरकार ने 4.5 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं को दी स्वीकृति। पीएम किसान सम्मान निधि को अगले 5 वर्षों तक के लिए बढ़ाया गया, किसानों की आय को स्थिर समर्थन देना, ग्रामीण मांग को मजबूत बनाए रखना उद्देश्य। सरकार ने पीएम सूर्य सरोवर योजना को दी स्वीकृति, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा जलाशयों का इस्तेमाल, स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को गति देना उद्देश्य। समुद्र मंथन प्रोग्राम को भी हरी झंडी, देश में तेल गैस की खोज, उत्पादन पर जोर, 84,000 करोड़ का बजट स्वीकृत। खेलो इंडिया योजना को भी स्वीकृति, अगले 5 वर्षों के लिए 29,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित। गृह मंत्री बोले 36,441 करोड़ की नई खेलो इंडिया योजना से विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार हुए। पुणे में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित होंगे एनएसए अजीत डोवाल, आज देश की सुरक्षा आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा सम्मान। 2020 दिल्ली दंगे मामले में सजा का ऐलान, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत सभी 5 को उम्र कैद। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हत्याकांड में ताहिर को उम्र कैद की सजा के निर्णय का स्वागत किया, केजरीवाल से मांगा जवाब। प्रवेश वर्मा ने कहा ताहिर समेत अन्य को उम्र कैद से अंकित शर्मा को मिला इंसाफ। ताहिर हुसैन का पहला बयान, कहा हाईकोर्ट से मिलेगा इंसाफ, देर है पर अंधेर नहीं। संसद में बीजेपी और विपक्ष के बीच विशेषाधिकार हनन का जवाबी एक्शन, राहुल को बीजेपी के नोटिस के बाद कांग्रेस का भी जितेंद्र सिंह के विरुद्ध प्रिविलेज मोशन का प्रस्ताव। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के अजीबोगरीब प्रदर्शन पर बहस, सरकार बोली संसद नाटक की जगह नहीं। अखिलेश ने चंदा चोरी के नोपर नाट्य रूपांतरण का वीडियो जारी करते हुए कहा सच बुरा लगा क्या। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण नफरत की राजनीति का आरोप लगाया, बोले कभी भगवा कभी सनातन, कभी प्रभु श्रीराम का अपमान, बेहद शर्मनाक। रोजगार के मुद्दे को लेकर पवन खेड़ा का केंद्र पर हमला, बोले युवाओं से सच छिपा रही है सरकार। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद में प्रदर्शन पर बरसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बोले बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जुटाए चंदे का हिसाब दे, इस तरह का ड्रामा निंदनीय। श्री राम मंदिर में लागू किया गया नया ड्रेस कोड, अब मंदिर में प्रवेश से पहले पीली चौबंदी और सफेद धोती धारण करेंगे पुजारी। श्री राम मंदिर में कैमरों की निगरानी में दान पात्र में चढ़ावे की रकम निकालने और गिनती वाली जगह पहुंचाने की प्रक्रिया होगी, कर्मचारियों पर नजर रहेगी। 2 सितंबर को होगी मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक, सचिव सीईओ प्रवक्ता की नियुक्ति पर लगेगी मुहर। यूपी चुनाव को लेकर मायावती का बयान, आकाश आनंद पर कहा उम्मीदवार मैं ही तय करूंगी, अफवाहों से दूर रहें। आज तक से बोले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख, पेपर लीक रोकने में बिल नाकाफी। अभिजीत देवके ने भविष्य की रणनीति का खुलासा, कहा राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, युवाओं के मुद्दे उठाएंगे। भिवंडी में 4 मंजिला इमारत ढही, 10 लोगों की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका, 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। भिवंडी बिल्डिंग हादसे पर सीएम फडणवीस ने शोक व्यक्त किया, दोषियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले ये इमारत C1 श्रेणी की खतरनाक घोषित थी, 25 लोगों को बचा लिया गया। आगरा में कांवड़ यात्रा रूट पर शराब, मीट, मछली की दुकानें बंद कराने के लिए प्रदर्शन, राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने सौंपा ज्ञापन। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी, 11 जोन 24 सेक्टर में विभाजित सुरक्षा व्यवस्था चौबंद। देवघर में श्रावणी मेले की भव्य रौनक, बाबा के मंदिर में की गई शानदार लाइटिंग। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा की हाईटेक सुरक्षा, 3,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, पुलिस ने कंट्रोल रूम बनाया। एमपी राजस्थान पंजाब समेत विभिन्न हिस्सों में मानसून सक्रिय, गुजरात और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की चेतावनी।
जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा ग्रोज रूट पर बादल फटने से भूस्खलन, पहाड़ दरकने का वीडियो आया। पहाड़ से अचानक पानी का बहाव नीचे आया, फ्लैट फ्लश से रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। हिमाचल के कई जिलों में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहावना। गुजरात के 13 जिलों में 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, अहमदाबाद में स्कूल कॉलेज बंद। सूरत में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, सड़कों पर पानी भरा। सूरत में बारिश के बाद जगह जगह नालों को खोलने में जुटे कर्मचारी, पानी भरने से रोकने का प्रयास। गुजरात के भावनगर के कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश, सड़कें जलमग्न, कई फीट पानी भरा। खेड़ा में मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर वाहन फंसे, लोग परेशान। भरूच में रेड अलर्ट, कई इलाके जलमग्न हुए, प्रशासन अलर्ट। गुजरात में बिगड़ी स्थिति, नर्मदा छोटा उदयपुर में उफान पर नदियां, एनडीआरएफ ने युवक की जान बचाई। पाटन में बारिश बनी मुसीबत, गांव की 80% कृषि भूमि जलमग्न हुई। अकोला अमरावती में बारिश का कहर, 7 लोगों का किया गया रेस्क्यू। बारिश से बाढ़ की स्थिति, गढ़चिरौली में नदी फंसे 3 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। जलगांव में लगातार 2 दिन से बारिश, बाढ़ की स्थिति बनी, 36 गेट बांध के खोले गए। पुणे में भारी बारिश से मुथा नदी में उफान, खड़क वासला बांध से पानी छोड़ा गया। हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में बह गए 4 कांवड़ियों की मौत, एसडीआरएफ के जवानों ने शव बरामद किए। आतंकवादी हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को कुलगाम में गोली मारी गई, 1 की मौत, 1 घायल। धनबाद में मिड डे मील तैयार करने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लगी, सूझबूझ से टला हादसा। मुजफ्फरनगर में क्रॉकरी गोदाम में भीषण आग, प्लास्टिक कागज से तेजी से फैली आग। यूपीएसटीएफ ने एसएससी परीक्षा में हाईटेक नकल का मास्टरमाइंड अलवर से गिरफ्तार किया, पेपर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से पास करवा रहा था। कौशाम्बी में घर पर हनुमान चालीसा बजाने पर विवाद, कोचिंग संचालक पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप। सुपौल में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन, 837 किलो गांजा जब्त, 2 गिरफ्तार। अलवर में कार सवार दंपत्ति की चोरी करते कैमरे में कैद, पुलिस ने चीनी के मिट्टी के बर्तन चुराते हुए पकड़ा। नवसारी में झुके बिजली के तार की चपेट में आया मजदूरों से भरा ट्रक, 3 की मौत, 3 की स्थिति गंभीर। मुंबई में रंगदारी गैंग पर क्राइम ब्रांच का शिकंदा, ठेकेदार से 25 लाख की रंगदारी लेते जुल्फिकार गैंग का सरगना और 12 गिरफ्तार। टिहरी गढ़वाल में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर 2 कारों की भीषण टक्कर, सभी सुरक्षित। मंडी में 15 क्विंटल मूली नाले में फेंकने का वीडियो वायरल, 5 दिन से बंद था मार्ग। इंदौर में बाढ़ गंगा में प्रॉपर्टी व्यापारी की संदिग्ध मौत, महिला से पूछताछ, होटल से मिला था व्यापारी। चंदौली में मिड डे मील में मरा हुआ कीड़ा मिलने से हड़कंप, जांच के आदेश। बागपत में निर्माणाधीन मकान की गिरी छत, 2 लोगों की मौत। इंदौर में शराब की दुकान पर पुलिस सिपाही ने उत्पात मचाया, मुफ्त शराब नहीं दी तो पिस्टल दिखाकर धमकाया। झांसी में ओवरब्रिज पर बाइक स्कूटी की टक्कर, 2 युवकों की मौके पर मौत। फरीदाबाद में सीवर लाइन में काम के दौरान हादसा, 2 मजदूरों की मौत। महाराष्ट्र के नंदुरबार में टला हादसा, 3500 फीट गहरी खाड़ी के ऊपर जिप लाइन में फंसा टूरिस्ट। गुजरात के गिर सोमनाथ में खौफनाक दृश्य, महिला की चारपाई के नीचे छिपा रहा मगरमच्छ। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का इतिहास, जूडो में अस्मिता डे ने 48 केजी वेट में जीता गोल्ड। हर्ष सिंह ने भी ग्लासगो में लहराया तिरंगा, पुरुषों के 60 किलो इवेंट में जीता गोल्ड। लवप्रीत सिंह ने वेटलिफ्टिंग में भारत को दिलाया 10वां सिल्वर, 110 किलो कैटेगरी में 388 किलो वजन उठाया। डिस्कस थ्रो में भारत ने ब्रॉन्ज जीता, 58.5 मीटर किया थ्रो। आज रात जेवलिन थ्रो के फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए उतरेंगे नीरज चोपड़ा। 11 अगस्त को मिर्जापुर द मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर जारी होगा, एक बार फिर से गुड्डू पंडित और कालीन भैया गदर मचाने को तैयार। छावा के बाद महाअवतार की तैयारी में जुटे विक्की कौशल, 25 किलो से अधिक का वजन बढ़ाएंगे। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन ने ओपनिंग डे पर भारत में बम्पर कमाई की, 50 करोड़ रुपए एक ही दिन में कमा ली। वेंकी अटुलरी ने लकी भास्कर 2 का किया ऐलान,
मीनाक्षी चौधरी स्टारर 2024 में थिएटर में हुई थी रिलीज। हैरी पॉटर फैंस के लिए खुशखबरी, 25 साल बाद फिर से रिलीज होगा हैरी पॉटर का पहला पार्ट। अप्रैल जून तिमाही में सोने की मांग 6% घटकर लुढ़की, गोल्ड प्राइस में रिकॉर्ड उछाल से लोगों का खर्च 50% बढ़ा। सूरजमुखी तेल की सप्लाई घटने से पाम, सोयाबीन, सरसों के तेल दाम बढ़ने के आसार, खाद्य तेल के दामों में 12% बढ़ोतरी। एलपीजी सिलेंडर के दाम, बैंकिंग चार्ज, रेलवे के तत्काल टिकट, के वाईसी से जुड़े नियमों में होगा बदलाव। आज से लागू होने वाली जीएसटी के नए ई वे बिल नियमों को सरकार ने रोका, क्रियान्वयन में दिक्कत के चलते। दिल्ली के भारत मंडपम में गिफ्ट एक्सपो 2026 में स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर्स, विजिटर्स हुए जमा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की कार्रवाई पर ट्रंप का बयान, कहा मैं निशाना नहीं हूं। अमेरिका में वाटर सप्लाई सिस्टम पर साइबर हमले पर ट्रंप का बयान, मिनेसोटा में ईरान का हाथ नहीं। हॉर्मुज में ईरान की सेना का हमला, 2 तेल टैंकरों को बर्बाद किया। रूस की दूसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी ओजोन के पास यूक्रेन ड्रोन ने हमला किया, 5 लोग घायल हुए। अमेरिकी डेलीगेशन ने ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात की, संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा। सेउटा में प्रवासी संकट पर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर का बयान, यूरोपीय संघ मोरक्को के संपर्क में। तुर्की के जंगलों की आग से बड़ी तबाही, जान जोखिम में डालकर आग बुझा रहे हैं दमकल कर्मी। अफ्रीकी देश अल्जीरिया में भयानक सड़क हादसा, 25 यात्रियों की मौत, 44 घायल। पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन से 10 पर्वतारोही लापता, 4 शव बरामद, 6 अभी भी लापता। फीफा में घमासान के बीच फीफा अध्यक्ष के वरिष्ठ सलाहकार कार्लोस कार्डियरो ने दिया इस्तीफा।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको पुलिस वालों की तस्वीरें दिखाएंगे जिन पर आंदोलन के दौरान हमले किए गए, उन्हें पीटा गया, वर्दी का अपमान किया गया। आज गालीबाजों के पक्ष में तो लोग खड़े हैं, लेकिन जो पुलिस वाले सर्दी गर्मी बरसात दिन रात जनता की सुरक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा और सम्मान की बात कौन करेगा। ये सही है कि अगर बल प्रयोग ज्यादा था तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ एक तरफा मामला होगा। आज दिल्ली में जब घायल पुलिसकर्मियों के परिवार मीडिया के सामने आए तो पूरा देश सन्न रह गया। 250 से ज्यादा घायल जवान, 110 टूटे बैरिकेड्स, सिर पर लगते पत्थर और 4 घंटे तक अस्पताल में बेहोश पड़े सब इंस्पेक्टर। आज हम पूछेंगे कि अगर पुलिस वाले वोट बैंक नहीं है तो क्या उन्हें पिटने देंगे, क्या उनका मुद्दा कभी इस देश की संसद में उठेगा। सवाल सीधा है और कड़वा भी है। गालीबाजों और उपद्रवियों से तो पूरी हमदर्दी दिखाई जा रही है, लेकिन ड्यूटी पर लहूलुहान हुई वर्दी से इतनी बेदर्दी क्यों। इसके बाद आपको बताएंगे कि जिस नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में बवाल मचा उसमें कुछ टीचर ही चीटर निकले। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की चार्जशीट में खुलासा जो है वो बताएंगे, क्योंकि इस बार पेपर किसी परीक्षा केंद्र से चोरी नहीं हुआ बल्कि जिन कंधों पर लाखों बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी थी वही पेपर चोर निकले। पेपर सेट करने वाले और उसे अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाले टीचर्स ने सीक्रेट रूम से सवालों को रटा, कैसे किया पूरा बताएंगे आपको, बाहर जाकर अपने ट्यूशन के स्टूडेंट्स में बांट दिया। आज आपको पेपर लीक के लिए जिम्मेदार इन चेहरों को जरूर देखना चाहिए। और आखिर में आपको बताएंगे कि एक समय हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल में हिंदू मुस्लिम दंगे कैसे भड़क गए। इसकी शुरुआत सावन में हिंदुओं की बोलबम यात्रा से हुई, जब शिव भक्त पवित्र जल लेने जा रहे थे उस यात्रा के दौरान मुस्लिम पक्ष के लोगों ने धार्मिक झंडों डीजे की तेज आवाज को लेकर आपत्ति जताई, विवाद इतना बढ़ा सांप्रदायिक दंगे वहां पर आज शुरू हो गए। लेकिन आज की शुरुआत हम उन लोगों की कहानी से करेंगे जिनके दर्द और जिनके साथ हुई हिंसा को कभी इंसाफ मिलेगा, ये एक सवाल है। जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को पूरे देश ने देखा। इस मुद्दे पर संसद में बहस हुई, अदालतों में कई याचिकाएं दाखिल हुई, सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्टूडियो तक लगातार सवाल उठे और ये सवाल उठने भी चाहिए। आखिर जिन प्रदर्शनकारियों पर हमले किए गए उसको कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता और जिन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जबरदस्त पुलिसिया कार्रवाई हुई उस पर तो प्रश्न उठेंगे ही और हम उठाते रहेंगे। लेकिन जिन घटनाओं में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, लाठी चार्ज किया गया, कुछ महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार के आरोप सामने आए, वीडियो सामने आए, वो घटनाएं किसी भी रूप में सही नहीं थी और इन तमाम घटनाओं के लिए पुलिस की कार्रवाई की आलोचना होनी ही चाहिए। लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है, वो पक्ष जिसके बारे में उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी पहले पक्ष पर हुई। वजह, आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में घायल पुलिसकर्मियों के परिवार मीडिया के सामने आए। उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी पर हमला नहीं किया, उन्होंने किसी आंदोलन को गलत या सही नहीं ठहराया, उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा। अगर पूरे देश में पुलिस की कार्रवाई पर बहस हो रही है तो उन पुलिसकर्मियों की बात कौन करेगा जो उसी आंदोलन के दौरान घायल हुए। लेकिन उन प्रदर्शनकारियों ने, और अभी तक ये तय भी नहीं है कि वो वाकई प्रदर्शनकारी थे, छात्र थे या फिर ऐसे हुल्लड़बाज घुस गए थे, ऐसे उपद्रवी तत्व उसमें घुस गए थे, जो भी थे, उन लोगों ने पुलिस वालों के साथ क्या किया, उन परिवारों का दर्द कौन सुनेगा जिनके घर का कमाने वाला सदस्य ड्यूटी पर गया था और घायल होकर लौटा। इन परिवारों का कहना है कि लोकतंत्र में हर पीड़ित की आवाज सुनी जानी चाहिए, चाहे वो प्रदर्शनकारी है या फिर पुलिसकर्मी। इन परिवारों ने दावा किया कि 20 से 22 जुलाई के बीच हुई हिंसक घटनाओं में दिल्ली पुलिस के 250 से ज्यादा जवान घायल हुए, 110 से ज्यादा बैरिकेड तोड़े गए, 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर्स को नुकसान पहुंचा, 350 से ज्यादा हेलमेट टूटे, 25 से ज्यादा सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इन परिवारों को यह भी उनका आरोप है कि कई जगह पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। इन आंकड़ों के साथ इन सभी परिवारों का एक ही सवाल है और ये पूछा उन्होंने कि क्या देश में खाकी वर्दी पर हुए हमलों की भी उतनी ही चर्चा हो रही है।
जितनी पुलिस की कार्रवाई की हुई। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी हिंसा को सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर जानबूझकर हमला हुआ, उन्हें पीटा गया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उन पर पत्थर फेंके गए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तो उस पर

0: दो साल की बेटी उस दिन अपने पिता को उस हालत में देखकर डर गई थी, लेकिन उनका ये दर्द ना किसी ने जाना ना किसी ने पूछा।
1: मेरा नाम उपनीत कौर है और मेरे पति दिल्ली पुलिस में ACP के पद पे सेवाएं निभा रहे हैं। 20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी दो साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। मेरे साथ अभी दिल्ली पुलिस के परिवार के मेंबर्स हैं, दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार के मेंबर्स, और हम अपनी आप बीती आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। एक यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ एक पुलिस कर्मी नहीं होता, उसके पीछे होते हैं उसकी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार, जो देर रात तक वेट करता है कि वो सुकुशल घर लौट आए।
0: दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की बेटी कुंजल ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि उनके पिता जंतर मंतर पर बैरिकेड के पास तैनात थे और अक्सर घर आकर कहते थे कि आंदोलन में अब सिर्फ छात्र नहीं है बल्कि कई बाहरी लोग भी शामिल हो चुके हैं, ये वो परिवार से डिस्कस करते थे। ये भी आरोप है कि 25 जुलाई को भीड़ ने उनके पिता को घेर लिया, उन्हें खींचकर मंच के पास ले गई, उनकी बुरी तरह पिटाई की गई। उनके मुताबिक उनके पिता करीब 4 घंटे तक अस्पताल में बेहोश रहे और उनके सिर में 4 टांके लगाने पड़े। इसी तरह दिल्ली पुलिस के एक ASI की पत्नी सीमा, जिन्होंने अपनी आपबीती सुनाई और ये बताया कि उनके पति पिछले 33 सालों से पुलिस सेवा में है और आंदोलन के दौरान उनकी ड्यूटी भी जंतर मंतर पर लगी थी, जिन पर भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने गमले, पत्थर, चप्पल, जूते सब फेंके। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लक्ष्य नाम के एक छात्र ने भी अपने पिता के बारे में बताया और ये कहा कि कुछ उपद्रवियों ने अचानक उनके पिता पर ड्यूटी के दौरान पत्थरबाजी शुरू कर दी और जब वो अपने साथी पुलिसकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे तभी उनके सिर पर पत्थर लगा था। सुनिए।
2: 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ क्राउडी मॉब एंड इट वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th एंड अराउंड 2 PM ही वाज अनकॉन्शियस एट द RML हॉस्पिटल फॉर अबाउट 4 आवर्स। जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियन पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली है।
1: मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
3: मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वाज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट मतलब स्टूडेंट्स नहीं है उसमें राउडीज उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि पुलिस कर्मियों के परिवार खुद सामने आकर मीडिया से बात करें। आमतौर पर पुलिस में अनुशासन के कारण परिवार सार्वजनिक रूप से इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी आप बीती इसलिए सामने आकर रखी क्योंकि उनका मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम में अब तक प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की बात ही पूरे देश के सामने अच्छे से आई है। यानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप दिल्ली पुलिस का अपना पक्ष रखने की कोशिश कह सकते हैं और लोकतंत्र में हर पक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है। आपको वो हिस्सा भी जरूर सुनना चाहिए जिसमें ये बेटी बता रही कि एक तो पिता को चोटें लगी, ऊपर से सोशल मीडिया में उन्हें ही विलन बनाया जा रहा था, तब उसके सब्र का बांध टूटा। लेकिन यहां हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि इस पूरी घटना को सिर्फ एक नजरिए से देखने की गलती नहीं करनी चाहिए। एक तरफ वो प्रदर्शनकारी हैं जो आरोप लगाते हैं कि पुलिस की कार्रवाई में 65 लोग घायल हुए, उनमें कम से कम 3 प्रदर्शनकारियों ने पैलेट गन से घायल होने का दावा किया है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस है जो कहती है कि इसी आंदोलन के दौरान उसके 250 से ज्यादा जवान

0: घायल हुए, कई जगह उन पर हिंसक हमले किए गए। यानी आज जब आप इस आंदोलन के वीडियो को देखें तो कोशिश कीजिए कि किसी एक नैरेटिव का हिस्सा बनने के बजाय पूरी तस्वीर देखें, क्योंकि सच्चाई अक्सर किसी एक वीडियो, एक बयान या एक हैशटैग में नहीं मिलती। आजकल सोशल मीडिया पर फैसले कर दिए जाते हैं सिर्फ किसी हैशटैग, किसी वीडियो, किसी के एक बयान के आधार पर, लेकिन पूरा सच आप तभी जान पाएंगे जब आप दोनों तरफ के वीडियोस को, तमाम वीडियोस को देखेंगे। सच्चाई तब सामने आती है जब हम हर पक्ष को सुनते हैं, तथ्यों को परखते हैं, फिर अपनी राय बनाते हैं। आप खुद तय कीजिए। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हुई है जब दिल्ली सरकार ने जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन में शामिल आम प्रदर्शनकारियों और छात्रों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को बंद करने और आगे कोई कानूनी कार्रवाई ना करने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई 2026 तक जो कुल 13 FIR दर्ज की थी उन्हें अब बंद माना जाएगा और भविष्य में इस आधार पर कोई नई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि इस आदेश में एक बहुत बड़ा कैच भी छिपा है। कैच यह है कि यह छूट सिर्फ उन छात्रों और प्रदर्शनकारियों को मिलेगी जो सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने आए थे और जिनका कोई भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत जिन लोगों ने हिंसा और तोड़फोड़ की, जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। और अभी कॉकरोच जनता पार्टी इसी पर सवाल उठा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक बार फिर यह कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर इस तरह कार्रवाई जारी रही तो भविष्य में फिर से आंदोलन शुरू होगा।
1: मुझे लगता है कि ये सरकार को इस मिसअंडरस्टैंडिंग या डिल्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि एक मंत्री के इस्तीफे के बाद गुस्सा ठंडा हो चुका है। इस डिल्यूजन में ना रहे सरकार, लोगों में अभी भी बहुत गुस्सा है और वो गुस्सा सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ नहीं था, पूरी सरकार के खिलाफ था। तो अगर ये लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे या नहीं, अभी भी नहीं स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे या हैरेस करते रहेंगे और जो ब्रुटैलिटी करी उसके बाद ये गुस्सा और बढ़ा, तो ये गुस्सा शांत नहीं हुआ। तो अगर ये लोग जो स्टूडेंट्स है, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, उनके खिलाफ केसेस वापस नहीं लेते तो यस, वी विल हिट द स्ट्रीट्स अगेन। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा सर।
0: कॉकरोच जनता पार्टी के साथ विपक्षी पार्टियां भी इन मामलों में कानूनी कार्रवाई का विरोध कर रही है, जबकि सरकार का तर्क यह है कि वो आम छात्रों और जो ईमानदारी से प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वो सिर्फ उन लोगों को छूट नहीं देना चाहती जिन पर आंदोलन के दौरान हिंसा तोड़फोड़ करने का आरोप है। साल 2011 में जब यूपीए सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना आंदोलन हुआ था, तब उस आंदोलन में हिंसा और उपद्रव की एक भी घटना नहीं हुई थी। लेकिन इसके बावजूद उस वक्त की सरकार में कई प्रदर्शनकारियों पर अलग अलग FIR दर्ज हुई थी। इसके बाद जब 26 अगस्त 2012 को कोयला घोटाले के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास तक मार्च निकालने की कोशिश की, तब भी उस मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। 7 दिसंबर 2012 को जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था, तब भी उस मामले में कांग्रेस की सरकार ने FIR दर्ज कराई थी। और बड़ी बात यह है कि साल 2011 के अन्ना आंदोलन के बाद जितनी भी FIR उस जमाने में दर्ज हुई उनका निपटारा होने में कई साल लगे। इनमें एक FIR का निपटारा तो इसी साल फरवरी महीने में हुआ है। और इसी बात को आधार बनाकर बीजेपी के कुछ नेता अब ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी सरकारों में सिर्फ आंदोलन करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्ज की जिन पर 10-10 सालों तक जांच चलती रही, और अब जब इस आंदोलन में सरकार सिर्फ हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ जांच जारी रखना चाहती है तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच उन मामलों में जांच लगातार आगे बढ़ रही है जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के आपत्तिजनक वीडियोस बनाए गए, उन्हें एआई की मदद से बदला गया, उनमें अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ और इन मामलों में सबसे बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने प्रधानमंत्री मोदी के डीप फेक वीडियो मामले में मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह इसलिए अहम है क्योंकि पहली बार इस तरह के मामले में जांच एजेंसियों ने सीधे सोशल मीडिया कंपनीज की जिम्मेदारी तय करने की कोशिश की है और सवाल यही है कि जब कोई ऐसा कॉन्टेंट किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आता है जो फर्जी हो सकता है, जिसे एआई की मदद से बनाया गया हो और जो किसी की छवि को नुकसान पहुंचाता हो, तो उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह जिम्मेदारी सिर्फ वीडियो बनाने वाले की है या फिर उस प्लेटफॉर्म की भी है जहां से वो वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचता है? अनेकों ऐसे वीडियोस जो हटा दिए जाते हैं लेकिन डीप फेक वीडियोस फेसबुक इंस्टाग्राम सब जगह तैर रहे। मेटा के प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे वीडियो सामने आए जिनके बारे में जांच एजेंसियों को शक है कि उन्हें एआई की मदद से बदला गया या तैयार किया गया और इसी आधार पर साइबर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया। जानते हैं इस मामले में पुलिस किन बातों की जांच कर रही है। पुलिस ये देख रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के इन डीप फेक वीडियोस को सबसे पहले किसने बनाया, इन्हें सोशल मीडिया पर किसने वायरल किया, क्या जानबूझकर बड़े पैमाने पर फैलाया गया, मेटा के कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम ने इन्हें समय पर क्यों नहीं रोका, यानी वही सवाल जो दो दिन पहले हमने इसी शो में आपके सामने उठाए थे। हमने पूछा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो फेसबुक से हट सकता है तो फेक न्यूज फैलाने वाले ये डीप फेक वीडियोस क्यों नहीं हटाए जाते। यहां कुछ लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस किसी सोशल मीडिया कंपनी के अधिकारी को ऐसे मामले में आरोपी बना सकती है। तो इसका जवाब है हाँ, अगर जांच एजेंसियों को लगता है कि किसी सोशल मीडिया कंपनी की लापरवाही, नियमों के पालन में कमी, कंटेंट मॉडरेशन की नाकामी की वजह से कोई आपत्तिजनक वीडियो बड़े स्तर पर फैला, तो उसकी भूमिका की जांच हो सकती है। यूरोप के देशों में इन कंपनियों की यह जिम्मेदारी तय हुई है और अब इसी आधार पर मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास का नाम इस एफआईआर में शामिल किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में सिर्फ सोशल मीडिया कंपनीज ही सवालों के घेरे में नहीं है, उन लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा या गाली गलौच वाले वीडियोस बनाए थे। ऐसा ही एक मामला उस वीडियो से जुड़ा है जिसमें आरोप है कि जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान एक लड़की ने प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इस मामले में नोएडा में जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी जिसे अब जांच के लिए दिल्ली के संसद मार्ग थाने में ट्रांसफर कर दिया गया है। यहां हम इस आपत्तिजनक वीडियो को बनाने वाली लड़की की तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि जांच पूरी होने और कोई ठोस कार्रवाई होने तक उसकी पहचान सार्वजनिक ना की जाए। हालांकि इस एफआईआर के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अभद्र अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल गलत है और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल बता रहे हैं। एफआईआर का विरोध करने वालों में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास है। उनका कहना है कि सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से किसी को अपराधी नहीं बनाया जा सकता। अगर सरकार और पुलिस को कार्रवाई करनी है तो उन्हें उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि इसके बाद इस बयान के बाद ये बहस और ज्यादा बढ़ गई है और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी पूरी तरह असीमित हो सकती है। संविधान का अनुच्छेद 19 हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है लेकिन अनुच्छेद 19(2) ये भी कहता है कि इस अधिकार पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी भारत में अभिव्यक्ति की आजादी महत्वपूर्ण अधिकार है लेकिन यह अधिकार पूरी तरह एब्सोल्यूट यानी असीमित नहीं है। अगर किसी बयान से हिंसा, भड़कने या फिर सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने, मानहानि होने या कानून का उल्लंघन होने की स्थिति बनती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। और इन मामलों में भी जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए गालियों का इस्तेमाल किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का समर्थन हो रहा है और ये बहस आज देश के युवाओं के बीच चल रही है, खासकर जेंजी युवाओं के बीच जो सोशल मीडिया पर अपनी राय खुलकर रखते हैं। कई प्रदर्शनकारी युवाओं ने अब अपने कुछ व्यवहार के लिए माफी भी मांगी है जैसे जिस छात्रा ने आरएएफ के जवान के साथ मजाक उड़ाते हुए वीडियो बनाया था, उसने एक नया वीडियो जारी कर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। हालांकि इस छात्रा का यह भी आरोप है कि माफी मांगने के बावजूद उसे सोशल मीडिया पर डराया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। और अगर ऐसा है तो यह भी उतना ही गंभीर मामला बनता है कि किसी बच्ची को रेप या फिर किसी भी तरह की धमकी दी जाए। लेकिन सवाल है कि जांच होनी चाहिए और जो भी कार्रवाई हो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन इस तरह किसी लड़की को जान से मारने की धमकियां या रेप की धमकियां देना गंभीर अपराध है और पुलिस को इसे रोकना चाहिए।
2: देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है, मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकोइटी, ये सब चीजों का, तो उसपे तो आप कुछ नहीं कर रहे हो।
3: नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए।
4: कुछ लोग कूल बनने के लिए मुझे थ्रेटन कर रहे हैं कि मैं तेरे को इधर पकड़ के ये करूंगा।
5: मोदी जी, हाँ मोदी जी, क्या

0: गलौज का तो मैं कम्प्लीटली समर्थन नहीं करता हूँ, लाइक गाली गलौज तो नहीं होनी चाहिए, बट सटायर तो अलाउड है सर। ये लोग क्या करें ना, जो फनी पोस्टर्स बन रहे थे पीएम के ऊपर, वो सब उसके ऊपर भी हैरेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, क्यों हैरेस करना चाहिए? ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस प्लेनेट एज ही क्लेम्स, वो विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु को बच्चों के जोक से क्यों डरना चाहिए? जोक से तो नहीं डरना चाहिए। और दूसरा, जेंजी का अपना एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है। मैंने ये कह रहा कि गाली गलौज का मैं समर्थन करता हूँ और वो होना भी नहीं चाहिए।
1: जब पुलिस ये कार्रवाई कर रही है, तब प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर जेंजी युवाओं से अपना संवाद जारी रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक नए वीडियो में ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। सुनिए।
2: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है, बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम मान्य सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
1: खैर, भारत में इस साल का सबसे बड़ा मुद्दा शायद यही नीट पेपर लीक का रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पेपर लीक हुआ कैसे? इस मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की। इसमें पेपर लीक की जो कहानी सामने आई वो इस देश के हर नागरिक को सुननी चाहिए। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि इस साल नीट का जो पेपर लीक हुआ वो 2024 वाले पेपर लीक से बिल्कुल अलग था। 2024 में आरोप था कि परीक्षा केंद्र पर पेपर चोरी करके उसे लीक किया गया था, लेकिन इस बार जांच एजेंसियों को शक है कि समस्या पेपर बाहर जाने से पहले शुरू हो गई थी। और ये हुआ कैसे था वो समझिए। असल में किसी भी बड़ी परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर तैयार करना है वो एक बहुत ही गोपनीय प्रक्रिया होती है। इसमें अलग अलग स्तर पर लोगों की जिम्मेदारी तय की जाती है ताकि किसी एक व्यक्ति के पास पूरी जानकारी ना हो। लेकिन इस बार की नीट परीक्षा में कुछ लोग ऐसे थे जो क्वेश्चन पेपर तैयार करने की प्रक्रिया में भी शामिल थे और उन्हीं क्वेश्चन पेपर के अनुवाद का काम भी कर रहे थे, यानी उन्हें फाइनल क्वेश्चन पेपर देखने का ज्यादा समय और ज्यादा पहुंच मिली हुई थी, जिसके कारण ये पेपर लीक हुआ। सीबीआई के मुताबिक इसी का फायदा उठाकर कुछ सवाल पहले याद किए गए और फिर उन्हें छात्रों तक पहुंचाया गया। इनमें भी एनटीए के पैनल में शामिल 3 टीचर्स पर आरोप है कि क्वेश्चन पेपर तैयार करने और मराठी अनुवाद की प्रक्रिया के दौरान अंतिम सवालों को देखा था। इनमें केमिस्ट्री के टीचर पीवी कुलकर्णी, फिजिक्स की टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारे और बायोलॉजी की टीचर मनीषा संजय हवलदार शामिल थी। अब यह आरोप है सीबीआई का, और सीबीआई का आरोप है कि इन तीनों टीचर्स ने फाइनल क्वेश्चन पेपर के सवालों को याद कर लिया और पुणे में अपनी निजी ट्यूशन क्लास से जुड़े कुछ छात्रों को ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण बताकर उन्हें तैयार करने के लिए दे दिए। सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया कि ये टीचर्स क्वेश्चन पेपर तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान एक सुरक्षित माहौल में रखे गए थे, लेकिन जांच एजेंसियों का आरोप है कि वो उस प्रक्रिया के बीच अपने घर जाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, फिर अगले दिन वापस अपनी ड्यूटी पर आते थे और यहीं से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। यानी ये टीचर्स जब पेपर सेट करने या उसके अनुवाद करने का काम कर रहे थे तभी उन्हें बाकी जगहों पर भी जाने की इजाजत मिली और इसी वजह से जो सवाल इन्हें याद होते थे इन्हें ये छात्रों को लिखवा देते थे, जिसके कारण ये पेपर लीक हुआ। एक लाइन में कहें तो जो टीचर्स इस पेपर को सेट कर रहे थे उन्हीं टीचर्स ने इसे लीक किया। यह भी आरोप है कि मनीषा वाघमारे नाम की एक ब्यूटिशियन जो इन टीचर्स को जानती थी उसे कुछ छात्रों के जरिए ये सवाल मिले। इसके बाद आरोप है कि उसने इन सवालों को क्वेश्चन पेपर के रूप में बाकायदा तैयार किया और धनंजय लोखंडे नाम के व्यक्ति तक पहुंचाया। इसके बाद ये सवाल कई लोगों कई राज्यों तक पहुंचाए गए, यानी एक ऐसा नेटवर्क तैयार हुआ जिसमें सवाल तैयार करने वालों से लेकर उसे छात्रों तक पहुंचाने वाले लोगों की भूमिका सामने आई। अब सीबीआई के मुताबिक अगर ये ब्यूटिशियन इस नेटवर्क में शामिल नहीं होती तो शायद ये सवाल इतने बड़े स्तर पर नहीं फैलते और मामला सामने भी नहीं आता, या फिर ये प्री प्लान था। इस पूरी कहानी से ये भी समझ आता है कि जिन युवाओं ने इस मुद्दे पर आंदोलन किया वो गलत नहीं थे, उनकी मांगे सही थी। परीक्षा व्यवस्था में कमियां हैं और जवाबदेही कोई नहीं लेता। और जानते हैं ये गंभीर क्यों है। एक छात्र जो सालों साल मेहनत करता है वो सिर्फ इसी क्वेश्चन पेपर पर भरोसा करता है, उसका पूरा जीवन जैसे इसी पर टिका हो। उसे भरोसा होता है कि परीक्षा में सभी को बराबर मौका मिलेगा, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो नुकसान सिर्फ उन छात्रों का नहीं होता जो परीक्षा देते हैं, नुकसान पूरे सिस्टम के भरोसे का होता है। और यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आरोपी कौन है, सवाल ये भी है कि ऐसी व्यवस्था कैसे बनाई जाए जिसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अंदर का हो बाहर का हो, टीचर हो ट्यूशन पढ़ाने वाला हो, कोई भी हो, लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना कर सके। इस पूरे घटनाक्रम के बीच लगातार हाई लेवल बैठकें हो रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि सरकार कई मुद्दों पर अंदर खाने चर्चा कर रही है। जैसे आज संसद भवन में दोपहर 1:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसके बाद 2:15 पर जब यह बैठक खत्म हुई तब इसके तुरंत बाद गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। इसी बैठक के बाद 15 मिनट बाद 3:30 बजे गृहमंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से जाकर मुलाकात की। और इन बैठकों के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सरकार विपक्ष की घेराबंदी और जेंजी आंदोलन के बाद एक्शन मोड में है। देखिए,
3: सराहा की रिपोर्ट दैट राज्यसभा एट इट्स सिटिंग हेल्ड ऑन द 30th
4: रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल पे आज यहां पारित किया गया है लोकसभा के सदन में, लेकिन विपक्ष के साथियों ने किसी ने भी इस बिल के चर्चा में भाग नहीं लिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
5: अपना सीट में आप बैठिए, अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 3 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
6: सरकार से इनको कोई लेना देना नहीं है, हम इनकी घोर निंदा करते हैं। माननीय सभापति महोदय हर बात पर हंगामा करना, हुल्लड़ बजाना, सड़क छाप राजनीति करना और सदन की गरिमा को तार तार करना, ये इनका स्वभाव हो गया है।
7: Adjourned to meet at 11 AM on Monday, 3rd August 2026.
1: आज पप्पू यादव की इन तस्वीरों को लेकर भी खूब विवाद हुआ है। राम मंदिर में चंदा चोरी की जो घटना हुई उसके खिलाफ पप्पू यादव साधु के भेष में संसद पहुंचे। वहां विपक्षी सांसदों ने दान लेने के बाद उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से ये दिखाया कि कैसे राम मंदिर के चंदे को कुछ लोगों ने चुरा लिया। हालांकि कई लोग इस घटना पर आपत्ति भी जता रहे हैं। देखिए,
8: राम राम जपियो रे, सब माल हट गयो रे।
9: देंगे चंदा चोरों को,
10: जिन्होंने लूटा है
11: इनको पकड़ के ले चलो, इनको
12: समाजवादी पार्टी से पकड़ा किसने आपको? सब्जी पकड़ा किसने?
13: वाले बाबा बनकर के
14: हमारे साथ है पप्पू यादव, पकड़ा गया है।
15: वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, नाटक करने का जगह नहीं है। स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं है।
1: कहते हैं किसी समाज को समझना हो तो उसके आंकड़े नहीं उसकी कहानियां पढ़िए, और भारत के समाज की सबसे गहरी कहानियां अगर किसी लेखक ने लिखी है तो उनमें सबसे बड़ा नाम है मुंशी प्रेमचंद जी का। वही मुंशी प्रेमचंद जी जिनकी आज 146वीं जयंती है। मुंशी प्रेमचंद जी सिर्फ कहानीकार नहीं थे, वो उस भारत की आवाज थे जहां किसान गरीबी से जूझ रहा था, जहां शिक्षा और अवसर सबके लिए बराबर नहीं थे और जहां जाति वर्ग आर्थिक असमानता लोगों की जिंदगी तय करती थी। उनकी कहानियां अपने समय की समस्याओं को दिखाती थी, लेकिन उनके सवाल आज भी जिंदा हैं। आज जब देश में शिक्षा, रोजगार, असमानता, युवाओं के भविष्य को लेकर बहस हो रही है, तो हमें लगता है कि मुंशी प्रेमचंद जी के विचार आज के भारत का मार्गदर्शन कर सकते हैं। और ये इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि आज उनकी जयंती है। मुंशी प्रेमचंद जी की पहली सीख ये थी कि शिक्षा सिर्फ डिग्री और नौकरी का माध्यम नहीं होनी चाहिए, जबकि हमारी सरकारों, हमारे समाज ने कभी इस मूल विचार को समझा ही नहीं। आज शिक्षा को अक्सर नौकरी पाने का रास्ता माना जाता है। कितने नंबर आए, कौन सी डिग्री मिली, कितनी सैलरी मिलेगी, यही सवाल पूछे जाते हैं, जबकि सरकारों की कोशिश ये होनी चाहिए कि शिक्षा लोगों का ऐसा विकास करे कि वो भी योग्य बने, देश की जिम्मेदारी के साथ आर्थिक तरक्की के रास्ते पर लेकर जाए और उनके लिए इस शिक्षा के जरिए रोजगार का साधन बने। मुंशी प्रेमचंद की दूसरी सीख ये थी कि जिस शिक्षा से असमानता कम ना हो वो शिक्षा अधूरी है। उनका पूरा साहित्य गरीब कमजोर वर्गों की पीड़ा के सामने लाता था। उनकी कहानी गोदान का हीरो सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि वो उस भारत का चेहरा था जहां मेहनत करने वाला व्यक्ति भी व्यवस्था की कमजोरियों में फंस जाता है, अटक जाता है। प्रेमचंद जी जानते थे कि समाज की असली तरक्की तभी होगी जब अंतिम व्यक्ति तक अवसर पहुंचेगा। आज शिक्षा व्यवस्था के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक गरीब बच्चे और एक अमीर बच्चे को समान अवसर मिल रहा है? क्या गांव के बच्चे, शहरों के बच्चे एक जैसी सुविधा है? क्या भाषा, पैसा, संसाधन किसी बच्चे के भविष्य तय कर रहे हैं? अगर शिक्षा समाज की खाई को कम करने के बजाय उसे बढ़ा दे तो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उनकी तरक्की जो है बच्चों की, वो सही मायने में तभी होगी जब शिक्षा की बराबरी हो। और तीसरी सीख उनकी ये थी कि रटने वाली शिक्षा सबसे कमजोर शिक्षा है। तो मुंशी प्रेमचंद जी के समय भी शिक्षा को लेकर सवाल थे, वो ऐसी शिक्षा के पक्ष में थे जो सोचने की क्षमता पैदा करे। आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौतियां यही है, याद करिए और फिर जाकर लिखिए। मुंशी प्रेमचंद जी की सोच हमें याद दिलाती है कि शिक्षा का मकसद सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं होना चाहिए, शिक्षा का मकसद होना चाहिए सोचने वाला इंसान बनाना, ऐसा युवा जो सवाल पूछ सके, तर्क कर सके, समाज को बेहतर बनाने में योगदान दे सके। चौथी सीख उन्होंने ये दी थी कि सत्ता और विपक्ष दोनों को जनता के दर्द को समझना होगा। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में आम आदमी को केंद्र में रखा, उनके पात्र राजा महाराजाओं से ज्यादा किसान, मजदूर, महिलाएं, गरीब लोग होते थे। उनका संदेश साफ था कि किसी भी व्यक्ति में अगर आप देखिए, किसी भी जगह पर कोई व्यवस्था देखिए, तो किसी भी व्यवस्था की सफलता इस बात से तय होती है कि उसमें सबसे कमजोर व्यक्ति की स्थिति कैसी है। आज सरकारों के लिए सीख है कि विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखना चाहिए, बल्कि लोगों की जिंदगी में महसूस होना चाहिए। और विपक्ष के लिए सीख है कि सिर्फ विरोध करना काफी नहीं, उसे भी जनता के असली मुद्दों को समझना होगा, समाधान में योगदान देना होगा। और पांचवी और आखिरी सीख उनसे ये भी ली जा सकती है कि युवा बदलाव की असली ताकत है। मुंशी प्रेमचंद जी ने युवाओं को हमेशा जागरूक और जिम्मेदार नागरिक के रूप में देखा। आज की जेंजी के पास पहले से ज्यादा जानकारी है, सोशल मीडिया है, अपनी बात रखने की ताकत है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी की सीख कहती है कि आवाज के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। सवाल पूछिए, व्यवस्था से जवाब मांगिए, लेकिन हम सबको मिलकर इस समाज को बेहतर बनाना है। और बदलाव तब आएगा पूरी व्यवस्था में जब सवालों के साथ हम समाधान की भी कोशिश में जुट जाएंगे। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक बार कहा था कि साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाने वाली सच्चाई है। और हमें लगता है कि मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर उनके विचारों की ये टिप्स जो है, ये हमारी सरकारें, हमारे नेता, हमारे समाज को जरूर लेनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि नेपाल इस वक्त हिंदू मुस्लिम दंगों की आग में क्यों जल रहा है। यह हिंसा 26 जुलाई को शुरू हुई थी जब नेपाल के सुनसरी जिले के कप्तानगंज इलाके में हिंदुओं द्वारा सावन महीने की बोलबम यात्रा निकाली जा रही थी। दावा है कि इस यात्रा में जब हिंदू पक्ष कोसी बराज की तरफ पवित्र जल लेने जा रहे था, यात्रा के दौरान डीजे और तेज आवाज में धार्मिक संगीत बज रहा था, तभी कुछ जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने धार्मिक झंडों और डीजे की तेज आवाज को लेकर आपत्ति जताई। यहीं से शुरुआत हुई। आपत्ति के बाद विवाद इतना बढ़ा कि हिंदू और जो मुस्लिम समाज है उनके बीच सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। स्थिति को संभालने के लिए नेपाल पुलिस और सुरक्षा बल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब हालात और बिगड़ गए जब पुलिस ने वहां भीड़ को खदेड़ने के लिए हवाई फायरिंग शुरू कर दी और वहां आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। दावा है कि पुलिस की ये वही कार्रवाई थी जिसमें 30 साल के ओम प्रकाश मेहता और जय प्रकाश मेहता की मौत हो गई और इन मौतों से नेपाल के हिंदू पूरी तरह भड़क गए। आरोप लगाया उन्होंने कि पुलिस ने मुस्लिम समुदाय पर कार्रवाई ना करके जानबूझकर दो हिंदुओं की हत्या की है और उनके त्योहार में रुकावट डाली। इन आरोपों के बाद वहां तेजी से हालात बिगड़ने लगे। अगले दिन 27 जुलाई को पुलिस ने कर्फ्यू जरूर लगाया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अलग अलग इलाकों में हिंसक घटनाएं बढ़ी, खबरें सामने आ रही है। 30 जुलाई तक सिराहा जिले के गोल बाजार और लहान में विरोध प्रदर्शन और हिंसक झड़पें शुरू हो गए। ये वही हिंसक झड़पें थी जिनमें गणेश यादव नाम के एक लड़के की मौत हुई और इस मौत से हिंदुओं का आक्रोश और बढ़ गया है। बाजार बंद हो गए हैं, सरकारी बसें रुक गई हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद किया गया है और ऐसा लगने लगा है कि नेपाल में हालात फिर काबू से बाहर है। नौबत यह आ गई है कि नेपाल के इन जिलों में सेना उतारनी पड़ी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को राष्ट्र के नाम संबोधन में यह कहना पड़ा कि इस हिंसा को तुरंत रोका जाए, लेकिन दावा है कि इस अपील के बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। और नेपाल कैसे इन दंगों में जलता रहा आप खुद इन तस्वीरों में देखिए।
16: केही दिन अघि सुनसरीको देवानगंज सिराहा लगायतका स्थानमा भएको दुखद घटना र त्यसपछि केही जिल्लाहरूमा उत्पन्न अशान्त वातावरणलाई लिएर नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा गम्भीर र संवेदनशील छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कानूनी कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ।
1: नेपाल के जिस इलाके से यह हिंसा शुरू हुई वहां हिंदुओं की आबादी 86.2% है, जबकि जो मुस्लिम आबादी है वो है 13.8%। अगर सुनसरी जिले की बात करें तो वहां भी मुसलमानों की आबादी है 12.3% और यह आंकड़ा पूरे नेपाल में जो मुस्लिम्स की कुल आबादी है उससे लगभग 7% ज्यादा है। यहां एक और अहम बात यह है कि नेपाल के जिन इलाकों में हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं वो इलाके बिहार के सीमांचल से लगते हैं। वही सीमांचल जहां मुस्लिम्स की आबादी सबसे ज्यादा है और जिनकी सीमा पश्चिम बंगाल के जिलों से लगती है। पश्चिम बंगाल के इन जिलों की यही सीमा बांग्लादेश से लगती है। इनमें भी नेपाल के सुनसरी जिले की सीमा अररिया जिले से लगती है और यहां भी मुस्लिम्स की आबादी 43% है। ये आंकड़े हम आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा होने से इन इलाकों को भी अब संवेदनशील माना जा रहा है। वहां सीमा पार सुरक्षा कड़ी की गई है। यहां यह भी देखना होगा कि नेपाल साल 2008 तक एक हिंदू राष्ट्र था। उस वक्त जब नेपाल में राजशाही का दौर खत्म हुआ तब नेपाल में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। दावा किया जाता है कि कुछ हिंदुओं ने इसका समर्थन किया जबकि कुछ हिंदू आज भी इसका विरोध करते हैं और इस हिंसा के बाद भी कई हिंदुओं ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की। हालांकि ये मांगे उस सोशल मीडिया से उठ रही है जिसकी भूमिका अब हर हिंसा हर उपद्रव में संदिग्ध होती है। जब दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ तब सोशल मीडिया के जरिए कई फेक न्यूज फैलाई गई, गलत जानकारियां फैलाई गई जिससे लोगों को भड़काने की कोशिश हुई और अब नेपाल में जब दंगे हो रहे हैं तब वहां भी सोशल मीडिया की भूमिका को संदिग्ध माना जा रहा है। नेपाल की जांच में यह सामने आया है कि इस हिंसा में सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में ऐसे वीडियोस, ऐसी तस्वीरें शेयर की गई जिनमें से कई पुराने थे और इस घटना से कोई संबंध ही नहीं था, और पुरानी तस्वीरें दिखा दिखाकर लोगों को भड़काया जा रहा था। दूसरे देशों की घटनाओं की तस्वीरें फैलाई गई और ऐसी तस्वीरों को खूब वायरल किया, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा भड़का और यह हिंसा और भयानक हो गई। नेपाल की सरकार ऐसा मान रही है कि अगर सोशल मीडिया फेक न्यूज नहीं फैलाता तो वहां यह हिंसा कई जिलों को अपनी चपेट में नहीं लेती। लेकिन सोचिए, जब नेपाल में तख्ता पलट हुआ था तब भी इसी सोशल मीडिया के जरिए कई फेक न्यूज और गलत सूचनाएं फैली थी, लेकिन क्योंकि तब सरकार गिर रही थी इसलिए सोशल मीडिया के खतरों को नजरअंदाज कर दिया गया। और जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं वो उस वक्त वाहवाही कर रहे थे, लेकिन आज वही सोशल मीडिया इनके लिए खतरे की घंटी बज गया है। और आज जब यही सोशल मीडिया इस हिंसा को फर्जी खबरों से और सुलगा रहा है तो अब वहां सोशल मीडिया के खतरों की बात हो रही है। हकीकत तो यह है कि आज के दौर में सोशल मीडिया कंपनीज की जिम्मेदारी तय करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिनके प्लेटफॉर्म से झूठ फैलता है उसे रोकने में यह पूरी तरह नाकाम है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी छोर पर बसा स्पेन का छोटा सा एक ऑटोनोमस क्षेत्र केरा एक बड़े प्रवासी और सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है। क्योटा और मेलिला स्पेन का ऐसे शहर है जो यूरोप नहीं बल्कि अफ्रीका की जमीन पर बसे हैं और इनकी सीमा सीधे मोरक्को से लगती है। और अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो ये यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन महाद्वीप के बीच सीधी जमीनी सीमा भी है। लेकिन दावा है कि इन्हीं इलाकों में करीब 60,000 मोरक्को और अफ्रीकी मूल के प्रवासी सीमा तोड़कर समुद्र के रास्ते स्पेन के इलाके में घुस गए हैं। स्पेन का क्वेटा बॉर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। हजारों लोग कटीली बाड़ों के गेट तोड़कर और सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देते हुए क्वेटा में पहुंच गए हैं। सैकड़ों लोग रबर के रिंग्स, बोट, छोटे टायर्स के सहारे उफनते समुद्र को पार करके स्पेन की धरती पर पहुंच रहे हैं। इस खतरनाक कोशिश में करीब 34 लोगों के डूबने की खबर भी है और डूबने से उनकी मौत हो चुकी है। स्थिति इस कदर बेकाबू हो चुकी है कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने क्योटा आर्म फोर्सेस और टैंक्स की तैनाती कर दी है। देखिए,
17: efectivamente tenemos que ver cómo gestionamos no solamente desde el punto de vista, vamos a decirlo, más aparente, situando boyas para que se vea desde el punto de vista administrativo que existe una barrera de contención y por tanto se puede producir y desarrollar esas repatriaciones en frontera, pero también desde el punto de vista legislativo, si tenemos que modificar algunos aspectos de las leyes para poder garantizar esas repatriaciones en frontera de la manera más eficiente posible.
1: अब ये समझिए कि ऐसा हुआ क्यों। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, इससे जूझ रहे अफ्रीकी प्रवासियों के लिए क्वेटा की यूरोप में घुसने का सबसे सुलभ दरवाजा माना जाता है और वहां पहले भी समुद्र के रास्ते कई प्रवासियों ने शरण ली है। लेकिन इस बार स्पेन के क्वेटा में अचानक आई भीड़ के पीछे वहां के सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला है जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन गया। इस आदेश में कोर्ट ने कहा था कि समुद्र या जमीन के रास्ते क्वेटा या मेलेला पहुंचने वाले किसी भी अप्रवासी को बिना किसी उचित कानूनी प्रक्रिया या जांच के सीधे मोरक्को वापस नहीं भेजा जा सकता। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनों के साथ चले या ना चले लेकिन अपनों के साथ चाल ना चले। नमस्कार।
18: इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम ने दिल्ली में उन्हें गाली देने वाले बच्चों के लिए संदेश जारी करते हुए कहा कि मुझे और मेरी माँ को गाली दी गई। पीएम बोले, ये गुमराह बच्चे हैं जिन्होंने गालियां दी, मैं इन्हें माफ करता हूँ।
19: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
18: खबर संसद में जारी घमासान की। शुक्रवार को संसद परिसर से एक अनोखी तस्वीर दिखाई दी। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष ने नाटक किया, जहां साधु के वेश में पप्पू यादव नजर आए, जिसे लेकर राजनीति तेज हो गई।
20: संसद परिसर में अयोध्या चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष ने नाटक का मंचन करके उठाया, जहां पप्पू यादव साधु के भेष में दान पेटी के साथ पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने सांकेतिक चंदा डाला, जिसके बाद पप्पू यादव दान पेटी लेकर भागने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पकड़ते हैं। पप्पू यादव के इस नाटक पर लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जताई। पप्पू यादव के आचरण को संसदीय भावना के खिलाफ बताया।
15: नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, नाटक करने का जगह नहीं है। स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं है।
20: वहीं बीजेपी भी पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर हमला कर रही है।
0: वो तो काल नेमी का वेश धारण करके आए थे और पूरे सदन ने इसकी निंदा की। तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हम लाए, राम राम जपियो रे सब माल हड़पियो रे। आप भगवान के आस्था के साथ ही नहीं, 154 करोड़ भारत के उस आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं जो राम के, जो राम को अपने जीवन में, कर्म में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं।
21: हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा।
22: आपके माध्यम से देश का आम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते। अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए हैं।
20: उधर संत समाज ने भी पप्पू यादव को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
23: महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए।
24: इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आप जरा बताइए कि जिन लोगों ने मंदिर में दान चोरी किया है, क्या वो भगवाधारी थे? वो तो आठों जेल गए, भगवा साधु तो थे नहीं। और यह आप जरा देखिए कितने दुर्भाग्य है। और हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है।
20: राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले दो दिनों से दान पेटी के साथ प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आज पप्पू यादव की एंट्री ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया। आज तक ब्यूरो।
25: संसद में भले ही एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया, लेकिन हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत लेकर पहुंचे।
26: पेपर लीक से शुरू हुआ हंगामा पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान लगे आरोपों तक पहुंच गया है। पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, जिसके बाद केसी वेणुगोपाल ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्पीकर को भेज दिया। अनुराग ठाकुर की ओर से दिए गए प्रस्ताव में कहा गया कि रूल 352 का उल्लंघन कर राहुल गांधी ने असंस्कृत शब्दों, इडियट और अंधभक्त का इस्तेमाल किया। रूल 353 का उल्लंघन कर केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ गंभीर निराधार आरोप लगाए और मोशन से हटकर टिप्पणियां की। उधर जवाब में आए कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया कि कोई गोली नहीं चलने का झूठा दावा कर मंत्री ने जानबूझकर संसद को गलत जानकारी दी और सदन को गुमराह किया।
27: मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है, उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल 222 को देखते हुए और रूल 223 और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें।
28: तो हाउ कैन ए मिनिस्टर मिसलेड द हाउस लाइक दिस? स्टूडेंट्स नो अबाउट इट, नेशन नो अबाउट इट, नाउ ही इज टेलिंग दिस इज नॉट यूज्ड।
26: उधर संसद के दोनों सदनों में बिल पास हो गया, जिसके बाद अब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बाकी है, जहां पीएम मोदी ने पोस्ट करके अब पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।
2: फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ।
26: पेपर लीक बिल पास होने के बावजूद विपक्ष का संसद परिसर में एक बार फिर प्रदर्शन देखने को मिला।
29: विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: आप देखिए कि तस्वीरों में यहाँ पर पोस्टर बैनर लेकर के तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद, ये सभी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन संसद से गायब क्यों है, सदन में आए, इस तरीके की बातें उनके द्वारा की जा रही है।
4: ये निश्चित तौर से दुर्भाग्य है कि भारत की इतनी बड़ी पार्लियामेंट उसका एलओपी इतना गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है। जब सारी मांगे पूरी हो गई तो आज किस बात का आंदोलन?
3: क्या राहुल,
26: संसद के अंदर भी हंगामा जारी रहा जिसके बाद संसद की कार्यवाही बाधित हुई।
15: हंगामा करते रहेंगे और सरकार भी हंगामा के चक्कर में अगर बिल ही पारित नहीं करेंगे तो सदन क्या करेंगे। इसलिए हम तो बिल पारित करते रहेंगे और हमने आज कहा भी है, बाद में बाहर जाके ये नहीं कहना कि बिना चर्चा के बिल पारित क्यों किया गया है।
26: बहरहाल विपक्ष अभी थमने के मूड में नहीं है, जहां वो लगातार सरकार को घेर रहा है और हंगामे के बीच अब संसद सोमवार तक के लिए स्थगित होगी। आज तक विरोध।
25: संसद से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया, अब बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही यह कानून बन जाएगा। सवाल यही कि क्या पेपर लीक की लाइलाज बीमारी का पक्का इलाज फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और कठोर कानून से होगा, क्या नया कानून काफी है, या फिर अभी पेपर लीक रोकने की राह में मोदी सरकार को कई चुनौतियों से पार पाना होगा।
19: दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
26: एंटी पेपर लीक बिल को संसद से मंजूरी मिल गई है। वहीं पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यही है, क्या स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट तारीखों के फेर में फंसे रहने वाले मामलों की बीमारी का रामबाण इलाज है? क्या कठोर कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट की दवा काफी है?
5: अपराध करने से लोग डरते हैं, यही तो जुरिस्प्रूडेंस है कि आप देखिए किसी ने अपराध किए, समय पे सजा मिले और जो जांच है वो भी समय पे हो और स्पीडी ट्रायल हो, यही तो ये चाह रहे हैं, यही तो डिमांड है उनकी, सजा मिले, यही इसी काम में लगे।
26: कानून के जानकार पेपर लीक जैसे मुद्दों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन देश में पहले से काम कर रही फास्ट ट्रैक कोर्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कई आशंका भी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट का मॉडल अभी तक बहुत कारगर साबित नहीं हुआ है। वजह है, फास्ट ट्रैक कोर्ट को भी लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और संसाधनों की कमी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब यही है कि अभी भी फास्ट ट्रैक वाली अदालतें धीमी गति में अटकी हुई हैं।
6: पहली जो चुनौती है फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले में, ये न्यायाधीशों की कमी, जुडिशियल ऑफिसर्स की बहुत ही कमी है, खास करके डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पे।
26: फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर कानून के जानकारों की आशंका वाजिब नजर आती है। संसद में एक सवाल के जवाब में लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से देश में चल रही फास्ट ट्रैक अदालतों में लंबित मामलों से लेकर निपटाए गए केसों की जानकारी साझा की है। जवाब में कहा गया है कि साल 2023 में नए केस 81,471, 2024 में 88,902, 2025 में 1,43,936। कोर्ट ने केसों का निपटारा किया साल 2023 76,319, 2024 में 85,595, 2025 में 66,500, मतलब हर साल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जितने मामलों में फैसला सुनाया उससे ज्यादा नए केस कोर्ट में पहुंचे। यही वजह है कि 2023 में 202,175 केस लंबित थे, 2024 में 204,122 और 2025 में 245,579। ये आंकड़े बताते हैं कि इंसाफ को फास्ट ट्रैक पर लाने वाली कोर्ट में खुद लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की धीमी रफ्तार की वजह है जजों और कोर्ट के स्टाफ की कमी। यही नहीं, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने फंड की बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि रेगुलर जजों के जिम्मे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम भी है। अब सवाल है कि जब फास्ट ट्रैक अदालतों में जजों की कमी है तो इंसाफ फास्ट ट्रैक पर कैसे आएगा? यही सवाल आज तक संवाददाता ने देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से पूछा।
7: एक सवाल ये हो रहा है कि क्योंकि ट्रायल कोर्ट में जजों की कमी है काफी सख्त, उसकी वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए या कुछ भी बनाए तो सुनवाई या नहीं?
5: देखिए, जो आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में रहते हैं, उस समय तो अधिक हाई कोर्ट ही उनके अपॉइंटमेंट कर से
7: जी।
5: कुछ जगह पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से एग्जाम होते हैं, उसमें भी हाईकोर्ट का संबंधित हाईकोर्ट का महत्व बहुत होता है। हमने उनको कहा भी है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वैकेंसी है तो जल्दी से जल्दी बने एग्जाम लेकर।
20: केंद्रीय मंत्री ने यही भरोसा दिया कि नए जजों की नियुक्ति के लिए सरकार की तरफ से सुझाव दिए गए हैं। अब देखना यही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट वादा बनकर रह जाएगा या फिर धरातल पर भी तस्वीर बदलेगी। इसे यूं समझिए, इंसाफ को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए 2000 में 11वें फाइनेंस कमीशन ने 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की सिफारिश की थी। मकसद था देश की अदालतों में लंबित 2 करोड़ मामलों का निपटारा करना। फास्ट ट्रैक कोर्ट की योजना को 2005 में 5 साल के लिए बढ़ाया गया, लेकिन 5 साल बाद भी 1734 में से सिर्फ 1562 फास्ट ट्रैक कोर्ट देश में संचालित थी। साल 2010 में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए राज्यों की फंडिंग बंद करने का फैसला कोर्ट ने लिया। 2012 में निर्भया गैंगरेप कांड के बाद एक बार फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट चर्चा में आया। 2015 में जघन्य अपराधों के लिए 14वें फाइनेंस कमीशन ने 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव रखा, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की फंडिंग का जिम्मा राज्य सरकार के पाले में डाल दिया, मतलब केंद्र सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए फंड नहीं देगी। 2019 में निर्भया फंड से 1023 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की फंडिंग की गई, लेकिन 2025 तक देश में सिर्फ 775 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स काम कर रही हैं। सरल शब्दों में समझें तो जितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का लक्ष्य रखा गया था उतनी अदालतें आज तक ऑपरेशनल नहीं हो पाई। न्याय व्यवस्था की जमीनी हकीकत को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के पूरे सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, तभी इंसाफ फास्ट ट्रैक पर आएगा। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और लीक प्रूफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेखनी की अगुवाई में एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स को लीक प्रूफ सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे UPSC बिना लीक के परीक्षा कराती आई है, वैसे ही नीट और दूसरी परीक्षाएं क्यों नहीं कराई जा सकती? आज तक ब्यूरो।
25: खबर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों की। दिल्ली में पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबसे अपना दर्द बयां किया।
20: जंतर मंतर के आंदोलन में घायल पुलिस वालों की कहानी।
8: मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए।
20: पुलिस वालों के परिवारों का दर्द कैसे कांप उठे परिवार।
8: मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
20: पुलिस वाले की बेटी बोली, पापा की वर्दी खून से लाल थी।
8: उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी।
20: पुलिस वाले की पत्नी बोली, पत्थरों से घायल कर दिया।
8: पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते।
20: पुलिस वाले का बेटा बोला, पत्थर से पापा का सिर फट गया।
9: मुझे पता चला कि मेरे

0: पुलिस वालों के परिवार भी अपनी दर्द भरी दास्तान देकर सबके सामने आ गए हैं। 20 जून से शुरू हुए और 25 जुलाई को खत्म हुए इस आंदोलन में पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी के दौरान क्या क्या झेला, अब पुलिस वालों के परिवार उसको बयान कर रहे हैं। जी हाँ, सीजेपी के आंदोलन में घायल पुलिस कर्मियों के परिजन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें स्क्रीन पर प्रदर्शन के दौरान कैसे पुलिस कर्मी घायल हुए उसके वीडियो दिखाए जाते हैं और फिर एक घायल पुलिस वाले की बेटी गुंजन अपना पूरा दर्द बयान करती है और बताती है कि जब उसके पापा घर लौटे तो कैसे उनकी वर्दी पूरी खून से लाल थी।
1: माय फादर वाज एट मेन प्रोटेस्ट साइट, ही वाज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिकेड्स, जहां पर बहुत सारा क्राउड था। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th and around 2 p.m. he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी।
0: पुलिस कर्मियों के परिवारों का कहना है कि जब प्रदर्शनकारियों को इंसाफ देने की बात चल रही है तो ड्यूटी के दौरान पुलिस वालों और उनके परिवारों ने भी बहुत कुछ झेला है और अब 20 जुलाई को सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान घायल पुलिस कर्मी की पत्नी सीमा ने जो दर्द बयान किया वो भी सुनिए। सीमा कहती है कि इस प्रदर्शन के दौरान उनके पति का हेलमेट टूट गया था, अगर पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद लगता तो क्या होता।
2: पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
0: अब सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए एक और पुलिसकर्मी का बेटा अपना दर्द सुनाता है। लक्ष्य सिंह बिष्ट कहते हैं कि उनके पिता को बहादुरी के लिए 4 सम्मान मिल चुके हैं, उनके दादाजी भी बीएसएफ में थे, 1971 की जंग लड़ चुके हैं, लेकिन जंतर मंतर पर पिता के साथ जो हुआ वो डराने वाला था।
3: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में एंड ऑन 25th May at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फिन के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है मतलब स्टूडेंट्स नहीं है उसमें राउडीज उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25th में अनप्रवोक्ड उन्होंने मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर फेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई।
0: पुलिस कर्मियों के परिजनों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े भी दिखाए गए कि इस विरोध प्रदर्शन से दिल्ली पुलिस को कितना नुकसान हुआ है। 250 से अधिक पुलिस कर्मी घायल हुए, 110 से अधिक बैरिकेड डैमेज, 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर्स का नुकसान, 350 से ज्यादा हेलमेट डैमेज, 50 से ज्यादा शील्ड टूटे, 20 से ज्यादा लाउड हेलर का नुकसान, 10 HHMD और 1 एक्सरे बैगेज का नुकसान, 25 से अधिक सरकारी वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी से नुकसान। पुलिस कर्मियों के परिवार वालों का आरोप है कि इस पूरे आंदोलन में कई असामाजिक तत्व भी

0: शामिल थे जिन्होंने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान निशाना बनाया। आज तक ब्यूरो।
1: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज

0: पीएम मोदी ने वीडियो से छात्रों को दिया संदेश, कहा गाली गलौज से किसी समस्या का समाधान नहीं, गुमराह बच्चों को करता हूं माफ, बोले आओ मिलकर बनाएं सपनों का भारत। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के अजीब और गरीब प्रदर्शन पर राजनीतिक जंग, सरकार बोली संसद नाटक की जगह नहीं, अखिलेश बोले सच बुरा लगा क्या। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर, 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गई पीएम किसान योजना, तेल गैस की खोज के लिए 84,000 करोड़ की समुद्र मंथन योजना को स्वीकृति। 2020 दिल्ली दंगे में सजा का ऐलान, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में पूर्व पार्षद ताहिर समेत सभी 5 को उम्र कैद, बीजेपी आप में राजनीतिक भिड़ंत। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को मारी गोली, 1 की मौत 1 घायल, सर्च ऑपरेशन तेज। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम ने दिल्ली में उन्हें गाली देने वाले बच्चों के लिए संदेश जारी करते हुए कहा कि मुझे और मेरी माँ को गाली दी गई, पीएम बोले ये गुमराह बच्चे हैं जिन्होंने गालियां दी, मैं इन्हें माफ करता हूँ।
1: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है, कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई, न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है, उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए खपता हूं, आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
0: खबर संसद में जारी घमासान की, शुक्रवार को संसद परिसर से एक अनोखी तस्वीर दिखाई दी, श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष ने नाटक किया, जहां साधु के वेश में पप्पू यादव नजर आए, जिसे लेकर राजनीति तेज हो गई।
2: संसद परिसर में अयोध्या चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष ने नाटक का मंचन करके उठाया, जहां पप्पू यादव साधु के भेष में दान पेटी के साथ पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने सांकेतिक चंदा डाला जिसके बाद पप्पू यादव दान पेटी देकर भागने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पकड़ते हैं। पप्पू यादव के इस नाटक पर लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जताई। पप्पू यादव के आचरण को संसदीय भावना के खिलाफ बताया।
3: नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, नाटक करने का जगह नहीं है। स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं।
2: वहीं बीजेपी भी पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर हमला कर रही है।
4: वो तो कालनेमी का वेश धारण करके आए थे और पूरे सदन ने इसकी निंदा की। तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हमला है, राम राम जपियो रे सब माल हरपियो रे। आप भगवान के आस्था के साथ ही नहीं, 154 करोड़ भारत के उस आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं जो राम को अपने जीवन में, कर्म में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं।
5: हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा।
6: आपके माध्यम से देश का आम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते। अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए।
2: उधर संत समाज ने भी पप्पू यादव को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
7: महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए।
8: इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आप जरा बताइए कि जिन लोगों ने मंदिर में दान चोरी किया है, क्या वो भगवाधारी थे? वो तो आठों जेल गए, भगवा साधु तो थे नहीं। और यह आप जरा देखिए कितने दुर्भाग्य है। और हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है।
2: राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले दो दिनों से दान पेटी के साथ प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आज पप्पू यादव की एंट्री ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया। आज तक ब्यूरो।
0: संसद में भले ही एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया, लेकिन हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत लेकर पहुंचे।
9: पेपर लीक से शुरू हुआ हंगामा पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान लगे आरोपों तक पहुंच गया है। पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, जिसके बाद केसी वेणुगोपाल ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्पीकर को भेज दिया। अनुराग ठाकुर की ओर से दिए गए प्रस्ताव में कहा गया कि रूल 352 का उल्लंघन कर राहुल गांधी ने असंसदीय शब्दों इडियट और अंधभक्त का इस्तेमाल किया, रूल 353 का उल्लंघन कर केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ गंभीर निराधार आरोप लगाए और मोशन से हटकर टिप्पणियां की। उधर जवाब में आए कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया कि कोई गोली नहीं चलने का झूठा दावा कर मंत्री ने जानबूझकर संसद को गलत जानकारी दी और सदन को गुमराह किया।
10: मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है, उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल 222 को देखते हुए और रूल 223 और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें।
11: तो लोग हाउ कैन मिनिस्टर मिसलेड द हाउस लाइक दिस? स्टूडेंट्स नो अबाउट इट, नेशन नो अबाउट इट, नाउ ही इज टेलिंग दिस इज नॉट यूज्ड।
9: उधर संसद के दोनों सदनों में बिल पास हो गया, जिसके बाद अब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बाकी है, जहां पीएम मोदी ने पोस्ट करके अब पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।
12: फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ।
9: पेपर लीक बिल पास होने के बावजूद विपक्ष का संसद परिसर में एक बार फिर प्रदर्शन देखने को मिला।
13: विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि तस्वीरों में यहाँ पर पोस्टर बैनर लेकर के तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद, ये सभी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन संसद से गायब क्यों हैं, सदन में आए, इस तरीके की बातें उनके द्वारा की जा रही है।
14: ये निश्चित तौर से दुर्भाग्य है कि भारत की इतनी बड़ी पार्लियामेंट उसका एलओपी इतना गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है। जब सारी मांगे पूरी हो गई तो आज किस बात का आंदोलन?
13: क्या राहुल,
9: संसद के अंदर भी हंगामा जारी रहा जिसके बाद संसद की कार्यवाही बाधित हुई।
15: हंगामा करते रहेंगे और सरकार भी हंगामा के चक्कर में अगर बिल ही पारित नहीं करेंगे तो सदन क्या करेंगे। इसलिए हम तो बिल पारित करते रहेंगे और हमने आज कहा भी है, बाद में बाहर जाके ये नहीं कहना कि बिना चर्चा के बिल पारित क्यों किया गया है।
9: बहरहाल विपक्ष अभी थमने के मूड में नहीं है, जहां वो लगातार सरकार को घेर रहा है और हंगामे के बीच अब संसद सोमवार तक के लिए स्थगित होगी। आज तक ब्यूरो।
0: संसद से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया, अब बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही यह कानून बन जाएगा। सवाल यही कि क्या पेपर लीक की लाइलाज बीमारी का पक्का इलाज फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और कठोर कानून से होगा, क्या नया कानून काफी है या फिर अभी पेपर लीक रोकने की राह में मोदी सरकार को कई चुनौतियों से पार पाना होगा।
12: दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
2: एंटी पेपर लीक बिल को संसद से मंजूरी मिल गई है। वहीं पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यही है, क्या स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट तारीखों के फेर में फंसे रहने वाले मामलों की बीमारी का रामबाण इलाज है? क्या कठोर कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट की दवा काफी है?
16: अपराध करने से लोग डरते हैं, यही तो दुष्प्रिंस है कि आप देखिए किसी ने अपराध किए, समय पे सजा मिले और जो जांच है वो भी समय पे हो और स्पीडी ट्रायल हो, यही तो ये चाह रहे हैं, यही तो डिमांड है उनकी, सजा मिले, यही इसी काम में लगे।
2: कानून के जानकार पेपर लीक जैसे मुद्दों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन देश में पहले से काम कर रही फास्ट ट्रैक कोर्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कई आशंका भी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट का मॉडल अभी तक बहुत कारगर साबित नहीं हुआ है। वजह है फास्ट ट्रैक कोर्ट को भी लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और संसाधनों की कमी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब यही है कि अभी भी फास्ट ट्रैक वाली अदालतें धीमी गति में अटकी हुई हैं।
17: पहली जो चुनौती है फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले में, ये न्यायाधीशों की कमी, जुडिशियल ऑफिसर्स की बहुत ही कमी है, खास करके डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पे।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर कानून के जानकारों की आशंका वाजिब नजर आती है। संसद में एक सवाल के जवाब में लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से देश में चल रही फास्ट ट्रैक अदालतों में लंबित मामलों से लेकर निपटाए गए केसों की जानकारी साझा की है। जवाब में कहा गया है कि साल 2023 में नए केस 81,471, 2024 में 88,902, 2025 में 1,43,936। कोर्ट ने केसों का निपटारा किया साल 2023 76,319, 2024 में 85,595, 2025 में 66,500, मतलब हर साल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जितने मामलों में फैसला सुनाया उससे ज्यादा नए केस कोर्ट में पहुंचे। यही वजह है कि 2023 में 202,175 केस लंबित थे, 2024 में 204,122 और 2025 में 245,579। ये आंकड़े बताते हैं कि इंसाफ को फास्ट ट्रैक पर लाने वाली कोर्ट में खुद लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की धीमी रफ्तार की वजह है जजों और कोर्ट के स्टाफ की कमी। यही नहीं, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने फंड की बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि रेगुलर जजों के जिम्मे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम भी है। अब सवाल है कि जब फास्ट ट्रैक अदालतों में जजों की कमी है तो इंसाफ फास्ट ट्रैक पर कैसे आएगा? यही सवाल आज तक संवाददाता ने देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से पूछा।
18: एक सवाल ये मुरा है कि क्योंकि ट्रायल कोर्ट में जजों की कमी है काफी सा, उसकी वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए या कुछ भी बनाए तो सुनवाई या नहीं?
19: देखिए, जो आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में रहते हैं, उस समय तो अधिक हाई कोर्ट ही उनके अपॉइंटमेंट कर से
18: जी।
19: कुछ जगह पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से एग्जाम होता है, उसमें भी हाईकोर्ट का संबंधित हाई बोर्ड का महत्वपूर्ण बोल होता है। हमने उनको कहा भी है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वैकेंसी है तो जल्दी से जल्दी बने एग्जाम लेकर।
2: केंद्रीय मंत्री ने यही भरोसा दिया कि नए जजों की नियुक्ति के लिए सरकार की तरफ से सुझाव दिए गए हैं। अब देखना यही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट वादा बनकर रह जाएगा या फिर धरातल पर भी तस्वीर बदलेगी। इसे यूं समझिए, इंसाफ को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए 2000 में 11वें फाइनेंस कमीशन ने 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की सिफारिश की थी। मकसद था देश की अदालतों में लंबित 2 करोड़ मामलों का निपटारा करना। फास्ट ट्रैक कोर्ट की योजना को 2005 में 5 साल के लिए बढ़ाया गया, लेकिन 5 साल बाद भी 1734 में से सिर्फ 1562 फास्ट ट्रैक कोर्ट देश में संचालित थी। साल 2010 में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए राज्यों की फंडिंग बंद करने का फैसला कोर्ट ने लिया। 2012 में निर्भया गैंगरेप कांड के बाद एक बार फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट चर्चा में आया। 2015 में जघन्य अपराधों के लिए 14वें फाइनेंस कमीशन ने 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव रखा, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की फंडिंग का जिम्मा राज्य सरकार के पाले में डाल दिया, मतलब केंद्र सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए फंड नहीं देगी। 2019 में निर्भया फंड से 1023 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की फंडिंग की गई, लेकिन 2025 तक देश में सिर्फ 775 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स काम कर रही हैं। सरल शब्दों में समझे तो जितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का लक्ष्य रखा गया था उतनी अदालतें आज तक ऑपरेशनल नहीं हो पाई। न्याय व्यवस्था की जमीनी हकीकत को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के पूरे सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, तभी इंसाफ फास्ट ट्रैक पर आएगा। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और लीक प्रूफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेखनी की अगुवाई में एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स को लीक प्रूफ सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे यूपीएससी बिना लीक के परीक्षा कराती आई है, वैसे ही नीट और दूसरी परीक्षाएं क्यों नहीं कराई जा सकती? आज तक ब्यूरो।
0: खबर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों की। दिल्ली में पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबसे अपना दर्द बयां किया।
2: जंतर मंतर के आंदोलन में घायल पुलिस वालों की कहानी।
20: मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए।
2: पुलिस वालों के परिवारों का दर्द तो कैसे कांप उठे परिवार।
21: मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
2: पुलिस वाले की बेटी बोली, पापा की वर्दी खून से लाल थी।
20: उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी।
2: पुलिस वाले की पत्नी बोली, पत्थरों से घायल कर दिया।
21: पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते।
2: पुलिस वाले का बेटा बोला, पत्थर से पापा का सिर फट गया।
22: मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है।
2: सड़क से लेकर संसद तक अभी तक तो छात्रों और प्रदर्शनकारियों की बात हो रही थी, लेकिन अब जंतर मंतर के प्रदर्शन और सीजेपी के संसद मार्च के दौरान घायल हुए पुलिस वालों के परिवार भी अपनी दर्द भरी दास्तान देकर सबके सामने आ गए हैं। 20 जून से शुरू हुए और 25 जुलाई को खत्म हुए इस आंदोलन में पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी के दौरान क्या क्या झेला, अब पुलिस वालों के परिवार उसको बयान कर रहे हैं। जी हाँ, सीजेपी के आंदोलन में घायल पुलिस कर्मियों के परिजन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें स्क्रीन पर प्रदर्शन के दौरान कैसे पुलिस कर्मी घायल हुए उसके वीडियो दिखाए जाते हैं और फिर एक घायल पुलिस वाले की बेटी गुंजन अपना पूरा दर्द बयान करती है और बताती है कि जब उसके पापा घर लौटे तो कैसे उनकी वर्दी पूरी खून से लाल थी।
20: My father was at a main protest site. He was at the front line near the barricades, जहाँ पर बहुत सारा crowd था। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को my father was pulled by a rowdy mob and he was almost lynched near the stage of Jantar Mantar. This happened on 25th and around 2 p.m. He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी।
2: पुलिस कर्मियों के परिवारों का कहना है कि जब प्रदर्शनकारियों को इंसाफ देने की बात चल रही है तो ड्यूटी के दौरान पुलिस वालों और उनके परिवारों ने भी बहुत कुछ झेला है और अब 20 जुलाई को सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान घायल पुलिस कर्मी की पत्नी सीमा ने जो दर्द बयान किया वो भी सुनिए। सीमा कहती है कि इस प्रदर्शन के दौरान उनके पति का हेलमेट टूट गया था, अगर पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद लगता तो क्या होता।
21: पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
2: अब सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए एक और पुलिसकर्मी का बेटा अपना दर्द सुनाता है। लक्ष्य सिंह बिष्ट कहते हैं कि उनके पिता को बहादुरी के लिए 4 सम्मान मिल चुके हैं। उनके दादाजी भी बीएसएफ में थे, 1971 की जंग लड़ चुके हैं, लेकिन जंतर मंतर पर पिता के साथ जो हुआ वो डराने वाला था।
22: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में एंड ऑन 25th मे एट 2 पीएम मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फिन के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है मतलब स्टूडेंट्स नहीं है उसमें डाउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25th में अनप्रवोक्ड उन्होंने मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई।
2: पुलिस कर्मियों के परिजनों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े भी दिखाए गए कि इस विरोध प्रदर्शन से दिल्ली पुलिस को कितना नुकसान हुआ है। 250 से अधिक पुलिस कर्मी घायल हुए, 110 से अधिक बैरिकेड डैमेज, 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर्स का नुकसान, 350 से ज्यादा हेलमेट डैमेज, 50 से ज्यादा शील्ड टूटे, 20 से ज्यादा लाउड हेलर का नुकसान, 10 HHMD और 1 एक्सरे बैगेज का नुकसान, 25 से अधिक सरकारी वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी से नुकसान। पुलिस कर्मियों के परिवार वालों का आरोप है कि इस पूरे आंदोलन में कई असामाजिक तत्व भी शामिल थे जिन्होंने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान निशाना बनाया। आज तक ब्यूरो।
0: आज दिल्ली की कड़कड़नुमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुना दी। 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अदालत का निर्णय आने के बाद अंकित शर्मा के परिजनों का मानना है कि उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।
2: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्या के आरोप में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत दूसरे आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 13 जुलाई को कोर्ट ने आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान सभी दोषियों के लिए फांसी की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला आने के बाद आज तक से बातचीत के दौरान अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा ने यही कहा कि उम्मीद थी कि दोषियों को फांसी होगी।
1: अंकुर जी नमस्कार, ये जो अदालत ने फैसला सुनाया है, ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है, आपका क्या रिएक्शन है, आपके परिवार का क्या रिएक्शन है?
3: सर, हमारे परिवार का शुरुआत से 2020 में जब ये दंगा हुआ था, जब इसे हमारे परिवार की यही मांग थी कि भाई के जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और इस केस को, हमारे केस को, भाई के केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में कोर्ट को देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भाई के साथ जो ये इंसिडेंट हुआ था, आप सभी को पता है कितनी बुरी तरीके से, ब्रूटली तरीके से उसको मारा गया था, कितने चारों तरफ बॉडी पे उसके निशान थे चाकू के और बहुत तेजाब के, और फिर उसकी बॉडी को, भाई की बॉडी को नाले में फेंक दिया गया था जिस तरीके से, तो कोर्ट को ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में देखना चाहिए था, और जो भी दोषी है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।
0: देहरादून से एक दर्दनाक खबर आई, जहां शादी के 8 महीने बाद ही एक लड़की की मौत की खबर आई। ससुराल वालों ने दावा किया कि लड़की ने आत्महत्या की, जबकि परिवार इसे हत्या बताता है।
2: कैमरे पर फूट फूट कर रो रही सृष्टि कंडारी अब इस दुनिया में नहीं है, जो कैमरे पर फूट फूट कर ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगा रही है। देहरादून की रहने वाली सृष्टि कंडारी की 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। पति सौरभ खत्री सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि सृष्टि खुद भी सरकारी टीचर थी। मौत से करीब 1 घंटे पहले सृष्टि ने ये वीडियो बनाया, जिसमें वो कहती हैं कि सॉरी मम्मी, अब मैं जा रही हूँ। ससुराल वालों का कहना है कि सृष्टि ने आत्महत्या की, जबकि परिवार वाले ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।
4: मैं देखा सिचुएशन तो मर्डर का सिचुएशन, क्योंकि वो कह रहे थे कि हैंग किया जो भी है वो, तो उनको इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था पुलिस को, जो उन्होंने किया या परिवार को करना चाहिए था, पर उन्होंने कोई कॉल नहीं उठाया। वो कैलाश हॉस्पिटल ले गए थे वो।
23: और आप लोग कैसे पता चला?
4: हमें बाहर से किसी ने इन्फॉर्म किया कि आप चाचा जी वहाँ पे आ जाओ।
2: परिवार का कहना है कि 3 महीने पहले सृष्टि के ससुर की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। शादी के बाद ससुर को कैंसर होने का पता भी चला था, जिसके बाद ससुराल वाले उसे मनहूस कहकर ताना मारते थे।
24: सर, उनको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। उनको जो उनका वीडियो लास्ट में आया था, उसमें दीदी ने यही बताया है कि ये लोग मुझे 6 महीने से परेशान कर रहे हैं। अपने ससुर, जो उनके ससुर हैं, बीमार थे काफ़ी समय से, उनके द्वारा बोला गया कि जब से तुम आई हो यहाँ पे, तब से हमारे परिवार में ये घटनाएं हो रही हैं, अनिष्ट हो रहा है, इस तरीके से प्रताड़ित करना। कभी उसको, उनने गाड़ी ली थी, उसकी किस्त वो भर रही थी, हर चीज़ वो कर रही थी उनके लिए, हर चीज़ उसने मतलब पूरा चाहा कि मैं अपने परिवार के लिए करूं। पर उसके बावजूद उन लोगों के द्वारा उसको इतनी मानसिक प्रताड़ना दी गई कि उसको मजबूरन, अब वो सुसाइड हम नहीं मानते, वो हत्या है।
2: पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी ने वीडियो से छात्रों को दिया संदेश, कहा गाली गलौज से किसी समस्या का समाधान नहीं, गुमराह बच्चों को करता हूं माफ, बोले आओ मिलकर बनाएं सपनों का भारत। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के अजीब और गरीब प्रदर्शन पर राजनीतिक जंग, सरकार बोली संसद नाटक की जगह नहीं, अखिलेश बोले सच बुरा लगा क्या। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर, 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गई पीएम किसान योजना, तेल गैस की खोज के लिए 84,000 करोड़ की समुद्र मंथन योजना को स्वीकृति। 2020 दिल्ली दंगे में सजा का ऐलान, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में पूर्व पार्षद ताहिर समेत सभी 5 को उम्र कैद, बीजेपी आप में राजनीतिक भिड़ंत। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को मारी गोली, 1 की मौत 1 घायल, सर्च ऑपरेशन तेज। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम ने दिल्ली में उन्हें गाली देने वाले बच्चों के लिए संदेश जारी करते हुए कहा कि मुझे और मेरी माँ को गाली दी गई, पीएम बोले ये गुमराह बच्चे हैं जिन्होंने गालियां दी, मैं इन्हें माफ करता हूं।
1: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है, कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई, न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है, उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं, आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
0: खबर संसद में जारी घमासान की। शुक्रवार को संसद परिसर से एक अनोखी तस्वीर दिखाई दी, श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष ने नाटक किया, जहां साधु के वेश में पप्पू यादव नजर आए, जिसे लेकर राजनीति तेज हो गई।
2: संसद परिसर में अयोध्या चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष ने नाटक का मंचन करके उठाया, जहां पप्पू यादव साधु के भेष में दान पेटी के साथ पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने सांकेतिक चंदा डाला जिसके बाद पप्पू यादव दान पेटी देकर भागने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पकड़ते हैं। पप्पू यादव के इस नाटक पर लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जताई, पप्पू यादव के आचरण को संसदीय भावना के खिलाफ बताया।
3: नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, नाटक करने का जगह नहीं है। स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं है।
2: वहीं बीजेपी भी पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर हमला कर रही है।
4: वो तो काल नेमी का वेश धारण करके आए थे और पूरे सदन ने इसकी निंदा की। तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हम लाए, राम राम जपियो रे सब माल हरपियो रे। आप भगवान के आस्था के साथ ही नहीं, 154 करोड़ भारत के उस आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं जो राम के, जो राम को अपने जीवन में, कर्म में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं।
5: हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा।
6: आपके माध्यम से देश का आम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते। अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए हैं।
2: उधर संत समाज ने भी पप्पू यादव को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
7: महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए।
8: इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आप जरा बताइए कि जिन लोगों ने मंदिर में दान चोरी किया है, क्या वो भगवाधारी थे? वो तो आठों जेल गए, भगवा साधु तो थे नहीं। और यह आप जरा देखिए कितने दुर्भाग्य है। और हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है।
2: राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले दो दिनों से दान पेटी के साथ प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आज पप्पू यादव की एंट्री ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया। आज तक ब्यूरो।
0: संसद में भले ही एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया, लेकिन हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत लेकर पहुंचे।
9: पेपर लीक से शुरू हुआ हंगामा पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान लगे आरोपों तक पहुंच गया है। पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, जिसके बाद केसी वेणुगोपाल ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्पीकर को भेज दिया। अनुराग ठाकुर की ओर से दिए गए प्रस्ताव में कहा गया कि रूल 352 का उल्लंघन कर राहुल गांधी ने असंसदीय शब्दों इडियट और अंधभक्त का इस्तेमाल किया, रूल 353 का उल्लंघन कर केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ गंभीर निराधार आरोप लगाए और मोशन से हटकर टिप्पणियां की। उधर जवाब में आए कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया कि कोई गोली नहीं चलने का झूठा दावा कर मंत्री ने जानबूझकर संसद को गलत जानकारी दी और सदन को गुमराह किया।
10: मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है, उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल 222 को देखते हुए और रूल 223 और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें।
11: तो हाउ कैन ए मिनिस्टर मिसलेड द हाउस लाइक दिस? स्टूडेंट्स नो अबाउट इट, नेशन नो अबाउट इट, नाउ ही इज टेलिंग दिस इज नॉट यूज्ड।
9: उधर संसद के दोनों सदनों में बिल पास हो गया, जिसके बाद अब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बाकी है, जहां पीएम मोदी ने पोस्ट करके अब पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।
12: फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले, इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ।
9: पेपर लीक बिल पास होने के बावजूद विपक्ष का संसद परिसर में एक बार फिर प्रदर्शन देखने को मिला।
13: विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि तस्वीरों में यहाँ पर पोस्टर बैनर लेकर के तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद, ये सभी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन संसद से गायब क्यों है, सदन में आए, इस तरीके की बातें उनके द्वारा की जा रही है।
14: ये निश्चित तौर से दुर्भाग्य है कि भारत की इतनी बड़ी पार्लियामेंट, उसका एलओपी इतना गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है। जब सारी मांगे पूरी हो गई तो आज किस बात का आंदोलन?
13: क्या राहुल,
9: संसद के अंदर भी हंगामा जारी रहा जिसके बाद संसद की कार्यवाही बाधित हुई।
3: हंगामा करते रहेंगे और सरकार भी हंगामा के चक्कर में अगर बिल ही पारित नहीं करेंगे तो सदन क्या करेंगे। इसलिए हम तो बिल पारित करते रहेंगे और हमने आज कहा भी है, बाद में बाहर जाके ये नहीं कहना कि बिना चर्चा के बिल पारित क्यों किया गया है।
9: बहरहाल विपक्ष अभी थमने के मूड में नहीं है, जहां वो लगातार सरकार को घेर रहा है और हंगामे के बीच अब संसद सोमवार तक के लिए स्थगित होगी। आज तक बिलो
0: संसद से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया। अब बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही यह कानून बन जाएगा। सवाल यही कि क्या पेपर लीक की लाइलाज बीमारी का पक्का इलाज फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और कठोर कानून से होगा? क्या नया कानून काफी है या फिर अभी पेपर लीक रोकने की राह में मोदी सरकार को कई चुनौतियों से पार पाना होगा?
12: दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
2: एंटी पेपर लीक बिल को संसद से मंजूरी मिल गई है। वहीं पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यही है, क्या स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट तारीखों के फेर में फंसे रहने वाले मामलों की बीमारी का रामबाण इलाज है? क्या कठोर कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट की दवा काफी है?
15: अपराध करने से लोग डरते हैं, यही तो दुष्प्रिंस है कि आप देखिए किसी ने अपराध किए, समय पे सजा मिले और जो जांच है वो भी समय पे हो और स्पीडी ट्रायल हो, यही तो ये चाह रहे हैं, यही तो डिमांड है उनकी, सजा मिले, यही इसी काम में लगे।
2: कानून के जानकार पेपर लीक जैसे मुद्दों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन देश में पहले से काम कर रही फास्ट ट्रैक कोर्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कई आशंका भी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट का मॉडल अभी तक बहुत कारगर साबित नहीं हुआ है। वजह है, फास्ट ट्रैक कोर्ट को भी लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और संसाधनों की कमी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब यही है कि अभी भी फास्ट ट्रैक वाली अदालतें धीमी गति में अटकी हुई हैं।
16: पहली जो चुनौती है फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले में, ये न्यायाधीशों की कमी, जुडिशियल ऑफिसर्स की बहुत ही कमी है, खास करके डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पे।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर कानून के जानकारों की आशंका वाजिब नजर आती है। संसद में एक सवाल के जवाब में लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से देश में चल रही फास्ट ट्रैक अदालतों में लंबित मामलों से लेकर निपटाए गए केसों की जानकारी साझा की है। जवाब में कहा गया है कि साल 2023 में नए केस 81,471, 2024 में 88,902, 2025 में 1,43,936। कोर्ट ने केसों का निपटारा किया साल 2023 76,319, 2024 में 85,595, 2025 में 66,500, मतलब हर साल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जितने मामलों में फैसला सुनाया उससे ज्यादा नए केस कोर्ट में पहुंचे। यही वजह है कि 2023 में 202,175 केस लंबित थे, 2024 में 204,122 और 2025 में 245,579। ये आंकड़े बताते हैं कि इंसाफ को फास्ट ट्रैक पर लाने वाली कोर्ट में खुद लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की धीमी रफ्तार की वजह है जजों और कोर्ट के स्टाफ की कमी। यही नहीं, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने फंड की बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि रेगुलर जजों के जिम्मे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम भी है। अब सवाल है कि जब फास्ट ट्रैक अदालतों में जजों की कमी है तो इंसाफ फास्ट ट्रैक पर कैसे आएगा? यही सवाल आज तक संवाददाता ने देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से पूछा।
17: एक सवाल ये मुरा है कि क्योंकि ट्रायल कोर्ट में जजों की कमी है काफी सा, उसकी वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए या कुछ भी बनाए तो सुनवाई या नहीं?
15: देखिए, जो आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में रहते हैं, उस समय तो अधिक हाई कोर्ट ही उनके अपॉइंटमेंट करते। कुछ जगह पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से एग्जाम होते हैं, उसमें भी हाईकोर्ट का संबंधित हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण बोल होता है। हमने उनको कहा भी है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वैकेंसी है तो जल्दी से जल्दी बने एग्जाम लेकर।
2: केंद्रीय मंत्री ने यही भरोसा दिया कि नए जजों की नियुक्ति के लिए सरकार की तरफ से सुझाव दिए गए हैं। अब देखना यही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट वादा बनकर रह जाएगा या फिर धरातल पर भी तस्वीर बदलेगी। इसे यूं समझिए, इंसाफ को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए 2000 में 11वें फाइनेंस कमीशन ने 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की सिफारिश की थी। मकसद था देश की अदालतों में लंबित 2 करोड़ मामलों का निपटारा करना। फास्ट ट्रैक कोर्ट की योजना को 2005 में 5 साल के लिए बढ़ाया गया, लेकिन 5 साल बाद भी 1734 में से सिर्फ 1562 फास्ट ट्रैक कोर्ट देश में संचालित थी। साल 2010 में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए राज्यों की फंडिंग बंद करने का फैसला कोर्ट ने लिया। 2012 में निर्भया गैंगरेप कांड के बाद एक बार फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट चर्चा में आया। 2015 में जघन्य अपराधों के लिए 14वें फाइनेंस कमीशन ने 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव रखा, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की फंडिंग का जिम्मा राज्य सरकार के पाले में डाल दिया, मतलब केंद्र सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए फंड नहीं देगी। 2019 में निर्भया फंड से 1023 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की फंडिंग की गई, लेकिन 2025 तक देश में सिर्फ 775 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट काम कर रही है। सरल शब्दों में समझे तो जितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट का लक्ष्य रखा गया था उतनी अदालतें आज तक ऑपरेशनल नहीं हो पाई। न्याय व्यवस्था की जमीनी हकीकत को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के पूरे सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, तभी इंसाफ फास्ट ट्रैक पर आएगा। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और लीक प्रूफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेखनी की अगुवाई में एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स को लीक प्रूफ सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे यूपीएससी बिना लीक के परीक्षा कराती आई है, वैसे ही नीट और दूसरी परीक्षाएं क्यों नहीं कराई जा सकती? आज तक ब्यूरो।
0: खबर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों की। दिल्ली में पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबसे अपना दर्द बयां किया।
2: जंतर मंतर के आंदोलन में घायल पुलिस वालों की कहानी।
18: मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए।
2: पुलिस वालों के परिवारों का दर्द कैसे कांप उठे परिवार।
19: मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा।
2: पुलिस वाले की बेटी बोली, पापा की वर्दी खून से लाल थी।
18: उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी।
2: पुलिस वाले की पत्नी बोली, पत्थरों से घायल कर दिया।
19: पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते।
2: पुलिस वाले का बेटा बोला, पत्थर से पापा का सिर फट गया।
20: मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है।
2: सड़क से लेकर संसद तक अभी तक तो छात्रों और प्रदर्शनकारियों की बात हो रही थी, लेकिन अब जंतर मंतर के प्रदर्शन और सीजेपी के संसद मार्च के दौरान घायल हुए पुलिस वालों के परिवार भी अपनी दर्द भरी दास्तान देकर सबके सामने आ गए हैं। 20 जून से शुरू हुए और 25 जुलाई को खत्म हुए इस आंदोलन में पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी के दौरान क्या क्या झेला, अब पुलिस वालों के परिवार उसको बयान कर रहे हैं। जी हाँ, सीजेपी के आंदोलन में घायल पुलिस कर्मियों के परिजन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें स्क्रीन पर प्रदर्शन के दौरान कैसे पुलिस कर्मी घायल हुए उसके वीडियो दिखाए जाते हैं और फिर एक घायल पुलिस वाले की बेटी गुंजन अपना पूरा दर्द बयान करती है और बताती है कि जब उसके पापा घर लौटे तो कैसे उनकी वर्दी पूरी खून से लाल थी।
18: My father was at a main protest site. He was at the front line near the barricades, जहाँ पर बहुत सारा crowd था। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को my father was pulled by a rowdy mob and he was almost lynched near the stage of Jantar Mantar. This happened on 25th and around 2 p.m. He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी।
2: पुलिस कर्मियों के परिवारों का कहना है कि जब प्रदर्शनकारियों को इंसाफ देने की बात चल रही है तो ड्यूटी के दौरान पुलिस वालों और उनके परिवारों ने भी बहुत कुछ झेला है और अब 20 जुलाई को सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान घायल पुलिस कर्मी की पत्नी सीमा ने जो दर्द बयान किया वो भी सुनिए। सीमा कहती है कि इस प्रदर्शन के दौरान उनके पति का हेलमेट टूट गया था। अगर पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद लगता तो क्या होता?
1: पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
2: अब सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए एक और पुलिसकर्मी का बेटा अपना दर्द सुनाता है। लक्ष्य सिंह बिष्ट कहते हैं कि उनके पिता को बहादुरी के लिए 4 सम्मान मिल चुके हैं। उनके दादाजी भी बीएसएफ में थे, 1971 की जंग लड़ चुके हैं, लेकिन जंतर मंतर पर पिता के साथ जो हुआ वो डराने वाला था।
20: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में एंड ऑन 25th May at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फिन के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है मतलब स्टूडेंट्स नहीं है उसमें राउडीज उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25th May अनप्रोवोक्ड उन्होंने मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई।
2: पुलिस कर्मियों के परिजनों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े भी दिखाए गए कि इस विरोध प्रदर्शन

0: 50 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, 110 से अधिक बैरिकेड डैमेज, 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर्स का नुकसान, 350 से ज्यादा हेलमेट डैमेज, 50 से ज्यादा शील्ड टूटे, 20 से ज्यादा लाउड हेलर का नुकसान, 10 HHMD और 1 एक्सरे बैगेज का नुकसान, 25 से अधिक सरकारी वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी से नुकसान। पुलिस कर्मियों के परिवार वालों का आरोप है कि इस पूरे आंदोलन में कई असामाजिक तत्व भी शामिल थे जिन्होंने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान निशाना बनाया। आज तक ब्यूरो।
1: आज दिल्ली की कड़कड़नुमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुना दी। 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अदालत का निर्णय आने के बाद अंकित शर्मा के परिजनों का मानना है कि उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।
0: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्या के आरोप में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत दूसरे आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 13 जुलाई को कोर्ट ने आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान सभी दोषियों के लिए फांसी की मांग की गई थी लेकिन अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला आने के बाद आज तक से बातचीत के दौरान अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा ने यही कहा कि उम्मीद थी कि दोषियों को फांसी होगी।
2: अंकुर जी नमस्कार, ये जो अदालत ने फैसला सुनाया है ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है, आपका क्या रिएक्शन है, आपके परिवार का क्या रिएक्शन है?
3: सर हमारे परिवार का शुरुआत से 2020 में जब दंगा हुआ था जब इसे हमारे परिवार की यही मांग थी कि भाई के जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इस केस को हमारे केस को भाई के केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में कोर्ट को देखना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से भाई के साथ जो ये इंसिडेंट हुआ था आप सभी को पता है कितनी बुरी तरीके से ब्रूटली तरीके से उसको मारा गया था, कितने चारों तरफ बॉडी पे उसके निशान थे चाकू के और बहुत तेजाब के और फिर उसकी बॉडी को भाई की बॉडी को नाले में फेंक दिया गया था जिस तरीके से, तो कोर्ट को ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में देखना चाहिए था और जो भी दोषी है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।
1: देहरादून से एक दर्दनाक खबर आई जहां शादी के 8 महीने बाद ही एक लड़की की मौत की खबर आई। ससुराल वालों ने दावा किया कि लड़की ने आत्महत्या की जबकि परिवार इसे हत्या बताता है।
0: कैमरे पर फूट फूट कर रो रही सृष्टि कंडारी अब इस दुनिया में नहीं है जो कैमरे पर फूट फूट कर ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगा रही है।
4: मतलब सब बहुत अजीब सा हो गया, 6 महीने से सह रही हूँ।
0: देहरादून की रहने वाली सृष्टि कंडारी की 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। पति सौरभ खत्री सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि सृष्टि खुद भी सरकारी टीचर थी। मौत से करीब 1 घंटे पहले सृष्टि ने ये वीडियो बनाया जिसमें वो कहती हैं कि सॉरी मम्मी अब मैं जा रही हूँ।
4: शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ, मनुष्य मनुष्य।
0: ससुराल वालों का कहना है कि सृष्टि ने आत्महत्या की जबकि परिवार वाले ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।
5: मैं देखा सिचुएशन तो मर्डर का सिचुएशन है क्योंकि वो कह रहे थे कि हैंग किया जो भी है वो, तो उनको इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था पुलिस को जो उन्होंने किया या परिवार को करना चाहिए था पर उन्होंने कोई कॉल नहीं उठाया। वो कैलाश हॉस्पिटल ले गए थे वो।
6: और आप लोग कैसे पता चला?
5: हमें बाहर से किसी ने इन्फॉर्म किया कि आप चाचा जी वहाँ पे आ जाओ।
0: परिवार का कहना है कि 3 महीने पहले सृष्टि के ससुर की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। शादी के बाद ससुर को कैंसर होने का पता भी चला था जिसके बाद ससुराल वाले उसे मनहूस कहकर ताना मारते थे।
7: सर उनको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। उनको जो उनका वीडियो लास्ट में आया था उसमें दीदी ने यही बताया है कि ये लोग मुझे 6 महीने से परेशान कर रहे हैं। अपने ससुर जो उनके ससुर हैं बीमार थे काफ़ी समय से, उनके द्वारा बोला गया कि जब से तुम आई हो यहाँ पे तब से हमारे परिवार में ये घटनाएँ हो रही हैं, अनिष्ट हो रहा है। इस तरीके से प्रताड़ित करना, कभी उसको उन्होंने गाड़ी ली

0: थी, उसकी किस्त वो भर रही थी, हर चीज वो कर रही थी उनके लिए, हर चीज उसने मतलब पूरा चाहा कि मैं अपने परिवार के लिए करूं, पर उसके बावजूद उन लोगों के द्वारा उसको इतनी मानसिक प्रताड़ना दी गई कि उसको मजबूरन अब वो सुसाइड हम नहीं मानते, वो हत्या है।
1: पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज

0: मोदी ने वीडियो से छात्रों को दिया संदेश, कहा गाली गलौज से किसी समस्या का समाधान नहीं, गुमराह बच्चों को करता हूं माफ, बोले आओ मिलकर बनाएं सपनों का भारत। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के अजीब और गरीब प्रदर्शन पर राजनीतिक जंग, सरकार बोली संसद नाटक की जगह नहीं, अखिलेश बोले सच बुरा लगा क्या। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर, 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गई पीएम किसान योजना, तेल गैस की खोज के लिए 84,000 करोड़ की समुद्र मंथन योजना को स्वीकृति। 2020 दिल्ली दंगे में सजा का ऐलान, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में पूर्व पार्षद ताहिर समेत सभी 5 को उम्र कैद, बीजेपी आप में राजनीतिक भिड़ंत। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को मारी गोली, 1 की मौत 1 घायल, सर्च ऑपरेशन तेज। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम ने दिल्ली में उन्हें गाली देने वाले बच्चों के लिए संदेश जारी करते हुए कहा कि मुझे और मेरी माँ को गाली दी गई, पीएम बोले ये गुमराह बच्चे हैं जिन्होंने गालियां दी, मैं इन्हें माफ करता हूं।
1: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है, कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई, न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है, उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए खपता हूं, आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
0: खबर संसद में जारी घमासान की, शुक्रवार को संसद परिसर से एक अनोखी तस्वीर दिखाई दी, श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष ने नाटक किया, जहां साधु के वेश में पप्पू यादव नजर आए, जिसे लेकर राजनीति तेज हो गई।
2: संसद परिसर में अयोध्या चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष ने नाटक का मंचन करके उठाया, जहां पप्पू यादव साधु के भेष में दान पेटी के साथ पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने सांकेतिक चंदा डाला, जिसके बाद पप्पू यादव दान पेटी देकर भागने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पकड़ते हैं। पप्पू यादव के इस नाटक पर लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जताई। पप्पू यादव के आचरण को संसदीय भावना के खिलाफ बताया।
3: नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, नाटक करने का जगह नहीं है। स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं है।
2: वहीं बीजेपी भी पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर हमला कर रही है।
4: वो तो कालनेमी का वेश धारण करके आए थे और पूरे सदन ने इसकी निंदा की। तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हमला है, राम राम जपियो रे सब माल हरपियो रे। आप भगवान के आस्था के साथ ही नहीं, 154 करोड़ भारत के उस आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं जो राम के, जो राम को अपने जीवन में, कर्म में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं।
5: हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा।
6: आपके माध्यम से देश का आम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते। अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए।
2: उधर संत समाज ने भी पप्पू यादव को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
7: महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए।
8: इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आप जरा बताइए कि जिन लोगों ने मंदिर में दान चोरी किया है, क्या वो भगवाधारी थे? वो तो आठो जेल गए, भगवा साधु तो थे नहीं। और यह आप जरा देखिए कितने दुर्भाग्य है। और हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है।
2: राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले दो दिनों से दान पेटी के साथ प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आज पप्पू यादव की एंट्री ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया। आज तक ब्यूरो।
0: संसद में भले ही एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया, लेकिन हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत लेकर पहुंचे।
9: पेपर लीक से शुरू हुआ हंगामा पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान लगे आरोपों तक पहुंच गया है। पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, जिसके बाद केसी वेणुगोपाल ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्पीकर को भेज दिया। अनुराग ठाकुर की ओर से दिए गए प्रस्ताव में कहा गया कि रूल 352 का उल्लंघन कर राहुल गांधी ने असंसदीय शब्दों इडियट और अंधभक्त का इस्तेमाल किया, रूल 353 का उल्लंघन कर केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ गंभीर निराधार आरोप लगाए और मोशन से हटकर टिप्पणियां की। उधर जवाब में आए कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया कि कोई गोली नहीं चलने का झूठा दावा कर मंत्री ने जानबूझकर संसद को गलत जानकारी दी और सदन को गुमराह किया।
10: मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है, उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल 222 को देखते हुए और रूल 223 और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें।
11: तो लोग हाउ कैन ए मिनिस्टर मिसलेड द हाउस लाइक दिस? स्टूडेंट्स नो अबाउट इट, नेशन नो अबाउट इट, नाउ ही इज टेलिंग दिस इज नॉट यूज्ड।
9: उधर संसद के दोनों सदनों में बिल पास हो गया, जिसके बाद अब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बाकी है, जहां पीएम मोदी ने पोस्ट करके अब पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।
12: फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ।
9: पेपर लीक बिल पास होने के बावजूद विपक्ष का संसद परिसर में एक बार फिर प्रदर्शन देखने को मिला।
13: विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि तस्वीरों में यहाँ पर पोस्टर बैनर लेकर के तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद, ये सभी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन संसद से गायब क्यों है, सदन में आए, इस तरीके की बातें उनके द्वारा की जा रही है।
14: ये निश्चित तौर से दुर्भाग्य है कि भारत की इतनी बड़ी पार्लियामेंट, उसका एलओपी इतना गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है। जब सारी मांगे पूरी हो गई तो आज किस बात का आंदोलन?
13: क्या राहुल,
9: संसद के अंदर भी हंगामा जारी रहा जिसके बाद संसद की कार्यवाही बाधित हुई।
15: हंगामा करते रहेंगे और सरकार भी हंगामा के चक्कर में अगर बिल ही पारित नहीं करेंगे तो सदन क्या करेंगे। इसलिए हम तो बिल पारित करते रहेंगे और हमने आज कहा भी है, बाद में बाहर जाके ये नहीं कहना कि बिना चर्चा के बिल पारित क्यों किया गया है।
9: बहरहाल विपक्ष अभी थमने के मूड में नहीं है, जहां वो लगातार सरकार को घेर रहा है और हंगामे के बीच अब संसद सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। आज तक भी
0: संसद से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया। अब बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही यह कानून बन जाएगा। सवाल यही कि क्या पेपर लीक की लाइलाज बीमारी का पक्का इलाज फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और कठोर कानून से होगा? क्या नया कानून काफी है या फिर अभी पेपर लीक रोकने की राह में मोदी सरकार को कई चुनौतियों से पार पाना होगा?
12: दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
2: एंटी पेपर लीक बिल को संसद से मंजूरी मिल गई है। वहीं पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यही है, क्या स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट तारीखों के फेर में फंसे रहने वाले मामलों की बीमारी का रामबाण इलाज है? क्या कठोर कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट की दवा काफी है?
16: अपराध करने से लोग डरते हैं, यही तो दुष्प्रेस है
17: कि आप देखिए किसी ने अपराध किए, समय पे सजा मिले और जो जांच है वो भी समय पे हो और स्पीडी ट्रायल हो, यही तो ये चाह रहे हैं, यही तो डिमांड है उनकी, सजा मिले, यही इसी काम में लगे।
2: कानून के जानकार पेपर लीक जैसे मुद्दों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन देश में पहले से काम कर रही फास्ट ट्रैक कोर्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कई आशंका भी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट का मॉडल अभी तक बहुत कारगर साबित नहीं हुआ है। वजह है फास्ट ट्रैक कोर्ट को भी लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और संसाधनों की कमी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब यही है कि अभी भी फास्ट ट्रैक वाली अदालतें धीमी गति में अटकी हुई हैं।
18: पहली जो चुनौती है फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले में, ये न्यायाधीशों की कमी, जुडिशियल ऑफिसर्स की बहुत ही कमी है, खास करके डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पे।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर कानून के जानकारों की आशंका वाजिब नजर आती है। संसद में एक सवाल के जवाब में लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से देश में चल रही फास्ट ट्रैक अदालतों में लंबित मामलों से लेकर निपटाए गए केसों की जानकारी साझा की है। जवाब में कहा गया है कि साल 2023 में नए केस 81,471, 2024 में 88,902, 2025 में 1,43,936। कोर्ट ने केसों का निपटारा किया साल 2023 76,319, 2024 में 85,595, 2025 में 66,500, मतलब हर साल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जितने मामलों में फैसला सुनाया उससे ज्यादा नए केस कोर्ट में पहुंचे। यही वजह है कि 2023 में 202,175 केस लंबित थे, 2024 में 204,122 और 2025 में 245,579। ये आंकड़े बताते हैं कि इंसाफ को फास्ट ट्रैक पर लाने वाली कोर्ट में खुद लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की धीमी रफ्तार की वजह है जजों और कोर्ट के स्टाफ की कमी। यही नहीं, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने फंड की बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि रेगुलर जजों के जिम्मे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम भी है। अब सवाल है कि जब फास्ट ट्रैक अदालतों में जजों की कमी है तो इंसाफ फास्ट ट्रैक पर कैसे आएगा? यही सवाल आज तक संवाददाता ने देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से पूछा।
19: एक सवाल ये हो रहा है कि क्योंकि ट्रायल कोर्ट में जजों की कमी है काफी सा, उसकी वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए या कुछ भी बनाए तो सुनवाई या निगाह?
17: देखिए, जो आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में रहते उस समय तो अधिक हाई कोर्ट ही उनके अपॉइंटमेंट कर से
19: जी।
17: कुछ जगह पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से एग्जाम होता है, उसमें भी हाई कोर्ट का संबंधित हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण बोल होता है। हमने उनको कहा भी है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वैकेंसी है तो जल्दी से जल्दी बने एग्जाम लेकर।
2: केंद्रीय मंत्री ने यही भरोसा दिया कि नए जजों की नियुक्ति के लिए सरकार की तरफ से सुझाव दिए गए हैं। अब देखना यही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट वादा बनकर रह जाएगा या फिर धरातल पर भी तस्वीर बदलेगी। इसे यूं समझिए, इंसाफ को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए 2000 में 11वें फाइनेंस कमीशन ने 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की सिफारिश की थी। मकसद था देश की अदालतों में लंबित 2 करोड़ मामलों का निपटारा करना। फास्ट ट्रैक कोर्ट की योजना को 2005 में 5 साल के लिए बढ़ाया गया, लेकिन 5 साल बाद भी 1734 में से सिर्फ 1562 फास्ट ट्रैक कोर्ट देश में संचालित थी। साल 2010 में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए राज्यों की फंडिंग बंद करने का फैसला कोर्ट ने लिया। 2012 में निर्भया गैंगरेप कांड के बाद एक बार फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट चर्चा में आया। 2015 में जघन्य अपराधों के लिए 14वें फाइनेंस कमीशन ने 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव रखा, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की फंडिंग का जिम्मा राज्य सरकार के पाले में डाल दिया, मतलब केंद्र सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए फंड नहीं देगी। 2019 में निर्भया फंड से 1023 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की फंडिंग की गई, लेकिन 2025 तक देश में सिर्फ 775 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट काम कर रही है। सरल शब्दों में समझे तो जितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट का लक्ष्य रखा गया था उतनी अदालतें आज तक ऑपरेशनल नहीं हो पाई। न्याय व्यवस्था की जमीनी हकीकत को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के पूरे सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, तभी इंसाफ फास्ट ट्रैक पर आएगा। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और लीक प्रूफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेखनी की अगुवाई में एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स को लीक प्रूफ सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे यूपीएससी बिना लीक के परीक्षा कराती आई है, वैसे ही नीट और दूसरी परीक्षाएं क्यों नहीं कराई जा सकती? आज तक ब्यूरो।
0: खबर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों की। दिल्ली में पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबसे अपना दर्द बयां किया।
2: जंतर मंतर के आंदोलन में घायल पुलिस वालों की कहानी।
20: मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए।
2: पुलिस वालों के परिवारों का दर्द कैसे कांप उठे परिवार।
20: मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
2: पुलिस वाले की बेटी बोली, पापा की वर्दी खून से लाल थी।
20: उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी।
2: पुलिस वाले की पत्नी बोली, पत्थरों से घायल कर दिया।
20: पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते।
2: पुलिस वाले का बेटा बोला, पत्थर से पापा का सिर फट गया।
21: मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है।
2: सड़क से लेकर संसद तक अभी तक तो छात्रों और प्रदर्शनकारियों की बात हो रही थी, लेकिन अब जंतर मंतर के प्रदर्शन और सीजेपी के संसद मार्च के दौरान घायल हुए पुलिस वालों के परिवार भी अपनी दर्द भरी दास्तान लेकर सबके सामने आ गए हैं। 20 जून से शुरू हुए और 25 जुलाई को खत्म हुए इस आंदोलन में पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी के दौरान क्या क्या झेला, अब पुलिस वालों के परिवार उसको बयान कर रहे हैं। जी हाँ, सीजेपी के आंदोलन में घायल पुलिस कर्मियों के परिजन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसपे स्क्रीन पर प्रदर्शन के दौरान कैसे पुलिसकर्मी घायल हुए उसके वीडियो दिखाए जाते हैं और फिर एक घायल पुलिस वाले की बेटी गुंजन अपना पूरा दर्द बयान करती है और बताती है कि जब उसके पापा घर लौटे तो कैसे उनकी वर्दी पूरी खून से लाल थी।
20: माय फादर वाज एट मेन प्रोटेस्ट साइट, ही वाज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिकेड्स जहां पर बहुत सारा क्राउड था। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th एंड अराउंड 2 PM ही वाज अनकॉन्शियस एट द आरएमएल हॉस्पिटल फॉर अबाउट 4 आवर्स। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी।
2: पुलिस कर्मियों के परिवारों का कहना है कि जब प्रदर्शनकारियों को इंसाफ देने की बात चल रही है तो ड्यूटी के दौरान पुलिस वालों और उनके परिवारों ने भी बहुत कुछ झेला है और अब 20 जुलाई को CJP के संसद चलो मार्च के दौरान घायल पुलिस कर्मी की पत्नी सीमा ने जो दर्द बयान किया वो भी सुनिए। सीमा कहती है कि इस प्रदर्शन के दौरान उनके पति का हेलमेट टूट गया था, अगर पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद लगता तो क्या होता।
1: पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
2: अब CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए एक और पुलिसकर्मी का बेटा अपना दर्द सुनाता है। लक्ष्य सिंह बिष्ट कहते हैं कि उनके पिता को बहादुरी के लिए 4 सम्मान मिल चुके हैं। उनके दादाजी भी BSF में थे, 1971 की जंग लड़ चुके हैं, लेकिन जंतर मंतर पर पिता के साथ जो हुआ वो डराने वाला था।
21: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में एंड ऑन 25th May at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फिन के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है उसमें स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें डाउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25th May अनप्रवोक्ड उन्होंने मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई।
2: पुलिस कर्मियों के परिजनों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े भी दिखाए गए कि इस विरोध प्रदर्शन से दिल्ली पुलिस को कितना नुकसान हुआ है। 250 से अधिक पुलिस कर्मी घायल हुए, 110 से अधिक बैरिकेड डैमेज, 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर्स का नुकसान, 350 से ज्यादा हेलमेट डैमेज, 50 से ज्यादा शील्ड टूटे, 20 से ज्यादा लाउड हेलर का नुकसान, 10 HHMD और 1 X-ray बैगेज का नुकसान, 25 से अधिक सरकारी वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी से नुकसान। पुलिस कर्मियों के परिवार वालों का आरोप है कि इस पूरे आंदोलन में कई असामाजिक तत्व भी शामिल थे जिन्होंने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान निशाना बनाया। आज तक ब्यूरो।
0: आज दिल्ली की कड़कड़नुमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुना दी। 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अदालत का निर्णय आने के बाद अंकित शर्मा के परिजनों का मानना है कि उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।
2: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्या के आरोप में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत दूसरे आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 13 जुलाई को कोर्ट ने आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान सभी दोषियों के लिए फांसी की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला आने के बाद आज तक से बातचीत के दौरान अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा ने यही कहा कि उम्मीद थी कि दोषियों को फांसी होगी।
3: अंकुर जी नमस्कार, ये जो अदालत ने फैसला सुनाया है ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है, आपका क्या रिएक्शन है, आपके परिवार का क्या रिएक्शन है?
4: सर हमारे परिवार का शुरुआत से 2020 में जब दंगा हुआ था जब इसे हमारे परिवार की यही मांग थी कि भाई के जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इस केस को हमारे केस को भाई के केस को रेअरेस्ट ऑफ रेअरेस्ट केस में कोर्ट को देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भाई के साथ जो ये इंसिडेंट हुआ था आप सभी को पता है कितनी बुरी तरीके से ब्रूटली तरीके से उसको मारा गया था, कितने चारों तरफ बॉडी पे उसके निशान थे चाकू के और बहुत तेजाब के, और फिर उसकी बॉडी को भाई की बॉडी को नाले में फेंक दिया गया था जिस तरीके से, तो कोर्ट को ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में देखना चाहिए था और जो भी दोषी है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।
0: देहरादून से एक दर्दनाक खबर आई जहां शादी के 8 महीने बाद ही एक लड़की की मौत की खबर आई। ससुराल वालों ने दावा किया कि लड़की ने आत्महत्या की जबकि परिवार इसे हत्या बताता है।
2: कैमरे पर फूट फूट कर रो रही सृष्टि कंडारी अब इस दुनिया में नहीं है, जो कैमरे पर फूट फूट कर ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगा रही है। देहरादून की रहने वाली सृष्टि कंडारी की 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। पति सौरभ खत्री सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि सृष्टि खुद भी सरकारी टीचर थी। मौत से करीब 1 घंटे पहले सृष्टि ने ये वीडियो बनाया जिसमें वो कहती हैं कि सॉरी मम्मी अब मैं जा रही हूँ।
22: शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ, मनुष्य मनुष्य।
2: ससुराल वालों का कहना है कि सृष्टि ने आत्महत्या की जबकि परिवार वाले ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।
23: मैं देखा सिचुएशन तो मर्डर का सिचुएशन है, क्योंकि वो कह रहे थे कि हैंग किया जो भी है वो, तो उनको इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था पुलिस को, जो उन्होंने किया या परिवार को करना चाहिए था, पर उन्होंने कोई कॉल नहीं उठाया। वो कैलाश हॉस्पिटल ले गए थे वो।
24: और आप लोग कैसे पता चला?
23: हमें बाहर से किसी ने इन्फॉर्म किया कि आप चाचा जी वहाँ पे आ जाओ।
2: परिवार का कहना है कि 3 महीने पहले सृष्टि के ससुर की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। शादी के बाद ससुर को कैंसर होने का पता भी चला था, जिसके बाद ससुराल वाले उसे मनहूस कहकर ताना मारते थे।
25: सर उनको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था, उनको जो उनका वीडियो लास्ट में आया था उसमें दीदी ने यही बताया है कि ये लोग मुझे 6 महीने से परेशान कर रहे हैं। अपने ससुर जो उनके ससुर हैं बीमार थे काफ़ी समय से, उनके द्वारा बोला गया कि जब से तुम आई हो यहाँ पे तब से हमारे परिवार में ये घटनाएं हो रही हैं, अनिष्ट हो रहा है, इस तरीके से प्रताड़ित करना, कभी उसको उनने गाड़ी ली थी उसकी किस्त वो भर रही थी, हर चीज़ वो कर रही थी उनके लिए, हर चीज़ उसने मतलब पूरा चाहा कि मैं अपने परिवार के लिए करूं, पर उसके बावजूद उन लोगों के द्वारा उसको इतनी मानसिक प्रताड़ना दी गई कि उसको मजबूरन अब वो सुसाइड हम नहीं मानते वो हत्या है।
2: पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी ने वीडियो से छात्रों को दिया संदेश, कहा गाली गलौज से किसी समस्या का समाधान नहीं, गुमराह बच्चों को करता हूं माफ, बोले आओ मिलकर बनाएं सपनों का भारत। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के अजीब और गरीब प्रदर्शन पर राजनीतिक जंग, सरकार बोली संसद नाटक की जगह नहीं, अखिलेश बोले सच बुरा लगा क्या। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर, 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गई पीएम किसान योजना, तेल गैस की खोज के लिए 84,000 करोड़ की समुद्र मंथन योजना को स्वीकृति। 2020 दिल्ली दंगे में सजा का ऐलान, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में पूर्व पार्षद ताहिर समेत सभी 5 को उम्र कैद, बीजेपी आप में राजनीतिक भिड़ंत। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को मारी गोली, 1 की मौत 1 घायल, सर्च ऑपरेशन तेज। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम ने दिल्ली में उन्हें गाली देने वाले बच्चों के लिए संदेश जारी करते हुए कहा कि मुझे और मेरी माँ को गाली दी गई, पीएम बोले ये गुमराह बच्चे हैं जिन्होंने गालियां दी, मैं इन्हें माफ करता हूं।
1: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है, कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई, न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भलीभांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
0: खबर संसद में जारी घमासान की। शुक्रवार को संसद परिसर से एक अनोखी तस्वीर दिखाई दी, श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष ने नाटक किया, जहां साधु के वेश में पप्पू यादव नजर आए, जिसे लेकर राजनीति तेज हो गई।
2: संसद परिसर में अयोध्या चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष ने नाटक का मंचन करके उठाया, जहां पप्पू यादव साधु के भेष में दान पेटी के साथ पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने सांकेतिक चंदा डाला जिसके बाद पप्पू यादव दान पेटी देकर भागने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पकड़ते हैं। पप्पू यादव के इस नाटक पर लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जताई, पप्पू यादव के आचरण को संसदीय भावना के खिलाफ बताया।
3: नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, नाटक करने का जगह नहीं है। स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं है।
2: वहीं बीजेपी भी पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर हमला कर रही है।
4: वो तो काल नेमी का वेश धारण करके आए थे और पूरे सदन ने इसकी निंदा की।
5: तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हमला है, राम राम जपियो रे सब माल हरपियो रे। आप भगवान के आस्था के साथ ही नहीं, 154 करोड़ भारत के उस आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं जो राम के, जो राम को अपने जीवन में, कर्म में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं।
6: हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा।
7: आपके माध्यम से देश का आम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते। अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए हैं।
2: उधर संत समाज ने भी पप्पू यादव को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
8: महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए।
9: इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आप जरा बताइए कि जिन लोगों ने मंदिर में दान चोरी किया है, क्या वो भगवाधारी थे? वो तो आठों जेल गए, भगवा साधु तो थे नहीं। और यह आप जरा देखिए कितने दुर्भाग्य है। और हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है।
2: राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले दो दिनों से दान पेटी के साथ प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आज पप्पू यादव की एंट्री ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया। आज तक ब्यूरो।
0: संसद में भले ही एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया, लेकिन हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत लेकर पहुंचे।
10: पेपर लीक से शुरू हुआ हंगामा पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान लगे आरोपों तक पहुंच गया है। पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, जिसके बाद केसी वेणुगोपाल ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्पीकर को भेज दिया। अनुराग ठाकुर की ओर से दिए गए प्रस्ताव में कहा गया कि रूल 352 का उल्लंघन कर राहुल गांधी ने असंसदीय शब्दों इडियट और अंधभक्त का इस्तेमाल किया, रूल 353 का उल्लंघन कर केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ गंभीर निराधार आरोप लगाए और मोशन से हटकर टिप्पणियां की। उधर जवाब में आए कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया कि कोई गोली नहीं चलने का झूठा दावा कर मंत्री ने जानबूझकर संसद को गलत जानकारी दी और सदन को गुमराह किया।
11: मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है, उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल 222 को देखते हुए और रूल 223 और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें।
12: तो हाउ कैन ए मिनिस्टर मिसलेड द हाउस लाइक दिस? स्टूडेंट्स नो अबाउट इट, नेशन नो अबाउट इट, नाउ ही इज टेलिंग दिस इज नॉट यूज्ड।
10: उधर संसद के दोनों सदनों में बिल पास हो गया, जिसके बाद अब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बाकी है, जहां पीएम मोदी ने पोस्ट करके अब पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।
13: फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ।
10: पेपर लीक बिल पास होने के बावजूद विपक्ष का संसद परिसर में एक बार फिर प्रदर्शन देखने को मिला।
14: विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि तस्वीरों में यहाँ पर पोस्टर बैनर लेकर के तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद, ये सभी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन संसद से गायब क्यों है, सदन में आए, इस तरीके की बातें उनके द्वारा की जा रही है।
15: ये निश्चित तौर से दुर्भाग्य है कि भारत की इतनी बड़ी पार्लियामेंट उसका एलओपी इतना गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है। जब सारी मांगे पूरी हो गई तो आज किस बात का आंदोलन?
14: क्या राहुल,
10: संसद के अंदर भी हंगामा जारी रहा जिसके बाद संसद की कार्यवाही बाधित हुई।
3: हंगामा करते रहेंगे और सरकार भी हंगामा के चक्कर में अगर बिल ही पारित नहीं करेंगे तो सदन क्या करेंगे। इसलिए हम तो बिल पारित करते रहेंगे और हमने आज कहा भी है, बाद में बाहर जाके ये नहीं कहना कि बिना चर्चा के बिल पारित क्यों किया गया है।
10: बहरहाल विपक्ष अभी थमने के मूड में नहीं है, जहां वो लगातार सरकार को घेर रहा है और हंगामे के बीच अब संसद सोमवार तक के लिए स्थगित होगी। आज तक विरोध।
0: संसद से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया, अब बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही यह कानून बन जाएगा। सवाल यही कि क्या पेपर लीक की लाइलाज बीमारी का पक्का इलाज फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और कठोर कानून से होगा, क्या नया कानून काफी है, या फिर अभी पेपर लीक रोकने की राह में मोदी सरकार को कई चुनौतियों से पार पाना होगा।
13: दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
2: एंटी पेपर लीक बिल को संसद से मंजूरी मिल गई है। वहीं पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यही है, क्या स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट तारीखों के फेर में फंसे रहने वाले मामलों की बीमारी का रामबाण इलाज है? क्या कठोर कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट की दवा काफी है?
16: अपराध करने से लोग डरते हैं, यही तो जुरिस्प्रूडेंस है कि आप देखिए किसी ने अपराध किए समय पे सजा मिले और जो जांच है वो भी समय पे हो और स्पीडी ट्रायल हो, यही तो ये चाह रहे हैं, यही तो डिमांड है उनकी, सजा मिले, यही इसी काम में लगे।
2: कानून के जानकार पेपर लीक जैसे मुद्दों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन देश में पहले से काम कर रही फास्ट ट्रैक कोर्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कई आशंका भी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट का मॉडल अभी तक बहुत कारगर साबित नहीं हुआ है। वजह है फास्ट ट्रैक कोर्ट को भी लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और संसाधनों की कमी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब यही है कि अभी भी फास्ट ट्रैक वाली अदालतें धीमी गति में अटकी हुई हैं।
17: पहली जो चुनौती है फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले में, ये न्यायाधीशों की कमी, जुडिशियल ऑफिसर्स की बहुत ही कमी है, खास करके डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पे।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर कानून के जानकारों की आशंका वाजिब नजर आती है। संसद में एक सवाल के जवाब में लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से देश में चल रही फास्ट ट्रैक अदालतों में लंबित मामलों से लेकर निपटाए गए केसों की जानकारी साझा की है। जवाब में कहा गया है कि साल 2023 में नए केस 81,471, 2024 में 88,902, 2025 में 1,45,936। कोर्ट ने केसों का निपटारा किया साल 2023 76,319, 2024 में 85,595, 2025 में 66,500, मतलब हर साल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जितने मामलों में फैसला सुनाया उससे ज्यादा नए केस कोर्ट में पहुंचे। यही वजह है कि 2023 में 202,175 केस लंबित थे, 2024 में 204,122 और 2025 में 245,579। ये आंकड़े बताते हैं कि इंसाफ को फास्ट ट्रैक पर लाने वाली कोर्ट में खुद लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की धीमी रफ्तार की वजह है जजों और कोर्ट के स्टाफ की कमी। यही नहीं, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने फंड की बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि रेगुलर जजों के जिम्मे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम भी है। अब सवाल है कि जब फास्ट ट्रैक अदालतों में जजों की कमी है तो इंसाफ फास्ट ट्रैक पर कैसे आएगा? यही सवाल आज तक संवाददाता ने देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से पूछा।
18: एक सवाल ये मुरा है कि क्योंकि ट्रायल कोर्ट में जजों की कमी है काफी सख्त, उसकी वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए या कुछ भी बनाए तो सुनवाई या नहीं?
16: देखिए, जो आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में रहते उस समय तो अधिक हाई कोर्ट ही उनके अपॉइंटमेंट कर से
18: जी।
16: कुछ जगह पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से एग्जाम होते हैं, उसमें भी हाईकोर्ट का समर्थित हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण बोल होता है। हमने उनको कहा भी है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वैकेंसी है तो जल्दी से जल्दी बने एग्जाम लेकर।
2: केंद्रीय मंत्री ने यही भरोसा दिया कि नए जजों की नियुक्ति के लिए सरकार की तरफ से सुझाव दिए गए हैं। अब देखना यही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट वादा बनकर रह जाएगा या फिर धरातल पर भी तस्वीर बदलेगी। इसे यूं समझिए, इंसाफ को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए 2000 में 11वें फाइनेंस कमीशन ने 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की सिफारिश की थी। मकसद था देश की अदालतों में लंबित 2 करोड़ मामलों का निपटारा करना। फास्ट ट्रैक कोर्ट की योजना को 2005 में 5 साल के लिए बढ़ाया गया, लेकिन 5 साल बाद भी 1734 में से सिर्फ 1562 फास्ट ट्रैक कोर्ट देश में संचालित थी। साल 2010 में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए राज्यों की फंडिंग बंद करने का फैसला कोर्ट ने लिया। 2012 में निर्भया गैंगरेप कांड के बाद एक बार फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट चर्चा में आया। 2015 में जघन्य अपराधों के लिए 14वें फाइनेंस कमीशन ने 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव रखा, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की फंडिंग का जिम्मा राज्य सरकार के पाले में डाल दिया, मतलब केंद्र सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए फंड नहीं देगी। 2019 में निर्भया फंड से 1023 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की फंडिंग की गई, लेकिन 2025 तक देश में सिर्फ 775 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट काम कर रही है। सरल शब्दों में समझे तो जितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट का लक्ष्य रखा गया था उतनी अदालतें आज तक ऑपरेशनल नहीं हो पाई। न्याय व्यवस्था की जमीनी हकीकत को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के पूरे सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, तभी इंसाफ फास्ट ट्रैक पर आएगा। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और लीक प्रूफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेखनी की अगुवाई में एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स को लीक प्रूफ सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे यूपीएससी बिना लीक के परीक्षा कराती आई है, वैसे ही नीट और दूसरी परीक्षाएं क्यों नहीं कराई जा सकती? आज तक ब्यूरो।
0: खबर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों की। दिल्ली में पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबसे अपना दर्द बयां किया।
2: जंतर मंतर के आंदोलन में घायल पुलिस वालों की कहानी।
19: मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए।
2: पुलिस वालों के परिवारों का दर्द, कैसे कांप उठे परिवार।
20: मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा।
2: पुलिस वाले की बेटी बोली, पापा की वर्दी खून से लाल थी।
19: उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी।
2: पुलिस वाले की पत्नी बोली, पत्थरों से घायल कर दिया।
20: पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते।
2: पुलिस वाले का बेटा बोला, पत्थर से पापा का सिर फट गया।
21: मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है।
2: सड़क से लेकर संसद तक अभी तक तो छात्रों और प्रदर्शनकारियों की बात हो रही थी, लेकिन अब जंतर मंतर के प्रदर्शन और सीजेपी के संसद मार्च के दौरान घायल हुए पुलिस वालों के परिवार भी अपनी दर्द भरी दास्तान देकर सबके सामने आ गए हैं। 20 जून से शुरू हुए और 25 जुलाई को खत्म हुए इस आंदोलन में पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी के दौरान क्या क्या झेला, अब पुलिस वालों के परिवार उसको बयान कर रहे हैं। जी हाँ, सीजेपी के आंदोलन में घायल पुलिस कर्मियों के परिजन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें स्क्रीन पर प्रदर्शन के दौरान कैसे पुलिस कर्मी घायल हुए उसके वीडियो दिखाए जाते हैं और फिर एक घायल पुलिस वाले की बेटी गुंजन अपना पूरा दर्द बयान करती है और बताती है कि जब उसके पापा घर लौटे तो कैसे उनकी वर्दी पूरी खून से लाल थी।
19: My father was at a main protest site. He was at the front line near the barricades, जहाँ पर बहुत सारा crowd था। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को my father was pulled by a rowdy mob and he was almost lynched near the stage of Jantar Mantar. This happened on 25th and around 2 p.m. He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी।
2: पुलिस कर्मियों के परिवारों का कहना है कि जब प्रदर्शनकारियों को इंसाफ देने की बात चल रही है तो ड्यूटी के दौरान पुलिस वालों और उनके परिवारों ने भी बहुत कुछ झेला है और अब 20 जुलाई को सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान घायल पुलिस कर्मी की पत्नी सीमा ने जो दर्द बयान किया वो भी सुनिए। सीमा कहती है कि इस प्रदर्शन के दौरान उनके पति का हेलमेट टूट गया था। अगर पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद लगता तो क्या होता।
20: पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
2: अब सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए एक और पुलिसकर्मी का बेटा अपना दर्द सुनाता है। लक्ष्य सिंह बिष्ट कहते हैं कि उनके पिता को बहादुरी के लिए 4 सम्मान मिल चुके हैं। उनके दादाजी भी बीएसएफ में थे, 1971 की जंग लड़ चुके हैं, लेकिन जंतर मंतर पर पिता के साथ जो हुआ वो डराने वाला था।
21: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में एंड ऑन 25th May at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है मतलब स्टूडेंट्स नहीं है उसमें राउडीज उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25th May अनप्रवोक्ड उन्होंने मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई।
2: पुलिस कर्मियों के परिजनों

0: गए कि इस विरोध प्रदर्शन से दिल्ली पुलिस को कितना नुकसान हुआ है। 250 से अधिक पुलिस कर्मी घायल हुए, 110 से अधिक बैरिकेड डैमेज, 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर्स का नुकसान, 350 से ज्यादा हेलमेट डैमेज, 50 से ज्यादा शील्ड टूटे, 20 से ज्यादा लाउड हेलर का नुकसान, 10 HHMD और 1 एक्सरे बैगेज का नुकसान, 25 से अधिक सरकारी वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी से नुकसान। पुलिस कर्मियों के परिवार वालों का आरोप है कि इस पूरे आंदोलन में कई असामाजिक तत्व भी शामिल थे जिन्होंने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान निशाना बनाया। आज तक ब्यूरो।
1: आज दिल्ली की कड़कड़नुमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुना दी। 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अदालत का निर्णय आने के बाद अंकित शर्मा के परिजनों का मानना है कि उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।
0: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्या के आरोप में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत दूसरे आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 13 जुलाई को कोर्ट ने आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान सभी दोषियों के लिए फांसी की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला आने के बाद आज तक से बातचीत के दौरान अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा ने यही कहा कि उम्मीद थी कि दोषियों को फांसी होगी।
2: अंकुर जी नमस्कार। ये जो अदालत ने फैसला सुनाया है, ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है, आपका क्या रिएक्शन है, आपके परिवार का क्या रिएक्शन है?
3: सर, हमारे परिवार का शुरुआत से 2020 में जब दंगा हुआ था, जब इसे हमारे परिवार की यही मांग थी कि भाई के जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और इस केस को, हमारे केस को, भाई के केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में कोर्ट को देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भाई के साथ जो ये इंसिडेंट हुआ था, आप सभी को पता है कितनी बुरी तरीके से, ब्रूटली तरीके से उसको मारा गया था, कितने चारों तरफ बॉडी पे उसके निशान थे चाकू के और बहुत तेजाब के, और फिर उसकी बॉडी को, भाई की बॉडी को नाले में फेंक दिया गया था जिस तरीके से, तो कोर्ट को भी रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में देखना चाहिए था, और जो भी दोषी है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।
1: देहरादून से एक दर्दनाक खबर आई, जहां शादी के 8 महीने बाद ही एक लड़की की मौत की खबर आई। ससुराल वालों ने दावा किया कि लड़की ने आत्महत्या की, जबकि परिवार इसे हत्या बताता है।
0: अब इस दुनिया में नहीं है जो कैमरे पर फूट फूट कर ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगा रही है।
4: अजीब सा हो गया, 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सह ही नहीं जाता।
0: देहरादून की रहने वाली सृष्टि कंडारी की 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। पति सौरभ खत्री सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि सृष्टि खुद भी सरकारी टीचर थी। मौत से करीब 1 घंटे पहले सृष्टि ने ये वीडियो बनाया जिसमें वो कहती हैं कि सॉरी मम्मी, अब मैं जा रही हूँ।
4: सब सुनाते रहते हैं, शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ, मनुष।
0: ससुराल वालों का कहना है कि सृष्टि ने आत्महत्या की, जबकि परिवार वाले ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।
5: मैं देखा सिचुएशन, तो मर्डर का सिचुएशन है, क्योंकि वो कह रहे थे कि हैंग किया जो भी है वो, तो उनको इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था पुलिस को, जो उन्होंने किया या परिवार को करना चाहिए था, पर उन्होंने कोई कॉल नहीं उठाया। वो कैलाश हॉस्पिटल ले गए थे वो।
6: और आप लोग कैसे पता
5: चला? हमें बाहर से किसी ने इन्फॉर्म किया कि आप चाचा जी वहाँ पे आ जाओ।
0: परिवार का कहना है कि 3 महीने पहले सृष्टि के ससुर की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। शादी के बाद ससुर को कैंसर होने का पता भी चला था, जिसके बाद ससुराल वाले उसे मनहूस कहकर ताना मारते थे।
7: सर, उनको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। उनको जो उनका वीडियो लास्ट में आया था, उसमें दीदी ने यही बताया है कि ये लोग मुझे 6 महीने से परेशान कर रहे हैं। अपने ससुर, जो उनके ससुर हैं, बीमार थे काफ़ी समय से, उनके द्वारा बोला गया है कि जब से तुम आई हो यहाँ पे, तब से हमारे परिवार

0: में ये घटनाएं हो रही हैं, अनिष्ट हो रहा है, इस तरीके से प्रताड़ित करना। कभी उसको, उनने गाड़ी ली थी, उसकी किस्त वो भर रही थी, हर चीज़ वो कर रही थी उनके लिए, हर चीज़ उसने मतलब पूरा चाहा कि मैं अपने परिवार के लिए करूं, पर उसके बावजूद उन लोगों के द्वारा उसको इतनी मानसिक प्रताड़ना दी गई कि उसको मजबूरन अब वो सुसाइड हम नहीं मानते, वो हत्या है।
1: पुलिस मामले की जाँच कर रही है, वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी ने वीडियो से छात्रों को दिया संदेश, कहा गाली गलौज से किसी समस्या का समाधान नहीं, गुमराह बच्चों को करता हूं माफ, बोले आओ मिलकर बनाएं सपनों का भारत। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के अजीब व गरीब प्रदर्शन पर राजनीतिक जंग, सरकार बोली संसद नाटक की जगह नहीं, अखिलेश बोले सच बुरा लगा क्या। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर, 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गई पीएम किसान योजना, तेल गैस की खोज के लिए 84,000 करोड़ की समुद्र मंथन योजना को स्वीकृति। 2020 दिल्ली दंगे में सजा का ऐलान, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में पूर्व पार्षद ताहिर समेत सभी 5 को उम्र कैद, बीजेपी आप में राजनीतिक भिड़ंत। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को मारी गोली, 1 की मौत 1 घायल, सर्च ऑपरेशन तेज। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम ने दिल्ली में उन्हें गाली देने वाले बच्चों के लिए संदेश जारी करते हुए कहा कि मुझे और मेरी माँ को गाली दी गई, पीएम बोले ये गुमराह बच्चे हैं जिन्होंने गालियां दी, मैं इन्हें माफ करता हूं।
1: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है, कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई, न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है, उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है, और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए खपता हूं, आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
0: खबर संसद में जारी घमासान की, शुक्रवार को संसद परिसर से एक अनोखी तस्वीर दिखाई दी, श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष ने नाटक किया, जहां साधु के वेश में पप्पू यादव नजर आए, जिसे लेकर राजनीति तेज हो गई।
2: संसद परिसर में अयोध्या चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष ने नाटक का मंचन करके उठाया, जहां पप्पू यादव साधु के भेष में दान पेटी के साथ पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने सांकेतिक चंदा डाला, जिसके बाद पप्पू यादव दान पेटी देकर भागने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पकड़ते हैं। पप्पू यादव के इस नाटक पर लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जताई। पप्पू यादव के आचरण को संसदीय भावना के खिलाफ बताया।
3: नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, नाटक करने का जगह नहीं है। स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं है।
2: वहीं बीजेपी भी पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर हमला कर रही है।
4: वो तो कालनेमी का वेश धारण करके आए थे और पूरे सदन ने इसकी निंदा की। तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हमला है, राम राम जपियो रे सब माल हरपियो रे। आप भगवान के आस्था के साथ ही नहीं, 154 करोड़ भारत के उस आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं जो राम के, जो राम को अपने जीवन में, कर्म में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं।
5: हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा।
6: आपके माध्यम से देश का आम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते। अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए हैं।
2: उधर संत समाज ने भी पप्पू यादव को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
7: महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए।
8: इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आप जरा बताइए कि जिन लोगों ने मंदिर में दान चोरी किया है, क्या वो भगवाधारी थे? वो तो आठो जेल गए, भगवा साधु तो थे नहीं। और यह आप जरा देखिए कितने दुर्भाग्य है। और हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है।
2: राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले दो दिनों से दान पेटी के साथ प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आज पप्पू यादव की एंट्री ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया। आज तक ब्यूरो।
0: संसद में भले ही एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया, लेकिन हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत लेकर पहुंचे।
9: पेपर लीक से शुरू हुआ हंगामा पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान लगे आरोपों तक पहुंच गया है। पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, जिसके बाद केसी वेणुगोपाल ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्पीकर को भेज दिया। अनुराग ठाकुर की ओर से दिए गए प्रस्ताव में कहा गया कि रूल 352 का उल्लंघन कर राहुल गांधी ने असंसदीय शब्दों इडियट और अंधभक्त का इस्तेमाल किया, रूल 353 का उल्लंघन कर केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ गंभीर निराधार आरोप लगाए और मोशन से हटकर टिप्पणियां की। उधर जवाब में आए कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया कि कोई गोली नहीं चलने का झूठा दावा कर मंत्री ने जानबूझकर संसद को गलत जानकारी दी और सदन को गुमराह किया।
10: मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है, उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल 222 को देखते हुए और रूल 223 और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें।
11: तो वो हाउ कैन ए मिनिस्टर मिसलेड द हाउस लाइक दिस? स्टूडेंट्स नो अबाउट इट, नेशन नो अबाउट इट, नाउ ही इज टेलिंग दिस इज नॉट यूज्ड।
9: उधर संसद के दोनों सदनों में बिल पास हो गया, जिसके बाद अब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बाकी है, जहां पीएम मोदी ने पोस्ट करके अब पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।
12: फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ।
9: पेपर लीक बिल पास होने के बावजूद विपक्ष का संसद परिसर में एक बार फिर प्रदर्शन देखने को मिला।
13: विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि तस्वीरों में यहाँ पर पोस्टर बैनर लेकर के तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद, ये सभी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन संसद से गायब क्यों हैं, सदन में आए, इस तरीके की बातें उनके द्वारा की जा रही है।
14: ये निश्चित तौर से दुर्भाग्य है कि भारत की इतनी बड़ी पार्लियामेंट, उसका एलओपी इतना गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है। जब सारी मांगे पूरी हो गई तो आज किस बात का आंदोलन?
13: क्या राहुल,
9: संसद के अंदर भी हंगामा जारी रहा जिसके बाद संसद की कार्यवाही बाधित हुई।
15: हंगामा करते रहेंगे और सरकार भी हंगामा के चक्कर में अगर बिल ही पारित नहीं करेंगे तो सदन क्या करेंगे। इसलिए हम तो बिल पारित करते रहेंगे और हमने आज कहा भी है, बाद में बाहर जाके ये नहीं कहना कि बिना चर्चा के बिल पारित क्यों किया गया है।
9: बहरहाल विपक्ष अभी थमने के मूड में नहीं है, जहां वो लगातार सरकार को घेर रहा है और हंगामे के बीच अब संसद सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। आज तक ब्यूरो।
0: संसद से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया, अब बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही यह कानून बन जाएगा। सवाल यही कि क्या पेपर लीक की लाइलाज बीमारी का पक्का इलाज फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और कठोर कानून से होगा, क्या नया कानून काफी है, या फिर अभी पेपर लीक रोकने की राह में मोदी सरकार को कई चुनौतियों से पार पाना होगा।
12: दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
2: एंटी पेपर लीक बिल को संसद से मंजूरी मिल गई है। वहीं पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यही है, क्या स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट तारीखों के फेर में फंसे रहने वाले मामलों की बीमारी का रामबाण इलाज है? क्या कठोर कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट की दवा काफी है?
16: अपराध करने से लोग डरते हैं, यही तो दुष्प्रिंस है
17: कि आप देखिए किसी ने अपराध किए, समय पे सजा मिले और जो जांच है वो भी समय पे हो और स्पीडी ट्रायल हो, यही तो ये चाह रहे हैं, यही तो डिमांड है उनकी, सजा मिले, यही इसी काम में लगे।
2: कानून के जानकार पेपर लीक जैसे मुद्दों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन देश में पहले से काम कर रही फास्ट ट्रैक कोर्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कई आशंका भी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट का मॉडल अभी तक बहुत कारगर साबित नहीं हुआ है। वजह है फास्ट ट्रैक कोर्ट को भी लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और संसाधनों की कमी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब यही है कि अभी भी फास्ट ट्रैक वाली अदालतें धीमी गति में अटकी हुई हैं।
18: पहली जो चुनौती है फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले में, ये न्यायाधीशों की कमी, जुडिशियल ऑफिसर्स की बहुत ही कमी है, खास करके डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पे।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर कानून के जानकारों की आशंका वाजिब नजर आती है। संसद में एक सवाल के जवाब में लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से देश में चल रही फास्ट ट्रैक अदालतों में लंबित मामलों से लेकर निपटाए गए केसों की जानकारी साझा की है। जवाब में कहा गया है कि साल 2023 में नए केस 81,471, 2024 में 88,902, 2025 में 1,43,936। कोर्ट ने केसों का निपटारा किया साल 2023 76,319, 2024 में 85,595, 2025 में 66,500, मतलब हर साल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जितने मामलों में फैसला सुनाया उससे ज्यादा नए केस कोर्ट में पहुंचे। यही वजह है कि 2023 में 202,175 केस लंबित थे, 2024 में 204,122 और 2025 में 245,579। ये आंकड़े बताते हैं कि इंसाफ को फास्ट ट्रैक पर लाने वाली कोर्ट में खुद लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की धीमी रफ्तार की वजह है जजों और कोर्ट के स्टाफ की कमी। यही नहीं, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने फंड की बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि रेगुलर जजों के जिम्मे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम भी है। अब सवाल है कि जब फास्ट ट्रैक अदालतों में जजों की कमी है तो इंसाफ फास्ट ट्रैक पर कैसे आएगा? यही सवाल आज तक संवाददाता ने देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से पूछा।
19: एक सवाल ये हो रहा है कि क्योंकि ट्रायल कोर्ट में जजों की कमी है काफी सा, उसकी वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए या कुछ भी बनाए तो सुनवाई या नहीं?
17: देखिए, जो आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में रहते हैं, उस समय तो अधिक हाई कोर्ट ही उनके अपॉइंटमेंट कर से
19: जी।
17: कुछ जगह पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से एग्जाम होता है, उसमें भी हाईकोर्ट का संबंधित हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण बोल होता है। हमने उनको कहा भी है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वैकेंसी है तो जल्दी से जल्दी बने एग्जाम लेकर।
2: केंद्रीय मंत्री ने यही भरोसा दिया कि नए जजों की नियुक्ति के लिए सरकार की तरफ से सुझाव दिए गए हैं। अब देखना यही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट वादा बनकर रह जाएगा या फिर धरातल पर भी तस्वीर बदलेगी। इसे यूं समझिए, इंसाफ को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए 2000 में 11वें फाइनेंस कमीशन ने 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की सिफारिश की थी। मकसद था देश की अदालतों में लंबित 2 करोड़ मामलों का निपटारा करना। फास्ट ट्रैक कोर्ट की योजना को 2005 में 5 साल के लिए बढ़ाया गया, लेकिन 5 साल बाद भी 1734 में से सिर्फ 1562 फास्ट ट्रैक कोर्ट देश में संचालित थी। साल 2010 में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए राज्यों की फंडिंग बंद करने का फैसला कोर्ट ने लिया। 2012 में निर्भया गैंगरेप कांड के बाद एक बार फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट चर्चा में आया। 2015 में जघन्य अपराधों के लिए 14वें फाइनेंस कमीशन ने 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव रखा, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की फंडिंग का जिम्मा राज्य सरकार के पाले में डाल दिया, मतलब केंद्र सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए फंड नहीं देगी। 2019 में निर्भया फंड से 1023 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की फंडिंग की गई, लेकिन 2025 तक देश में सिर्फ 775 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट काम कर रही है। सरल शब्दों में समझे तो जितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट का लक्ष्य रखा गया था उतनी अदालतें आज तक ऑपरेशनल नहीं हो पाई। न्याय व्यवस्था की जमीनी हकीकत को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के पूरे सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, तभी इंसाफ फास्ट ट्रैक पर आएगा। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और लीक प्रूफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेखनी की अगुवाई में एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स को लीक प्रूफ सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे UPSC बिना लीक के परीक्षा कराती आई है, वैसे ही नीट और दूसरी परीक्षाएं क्यों नहीं कराई जा सकती? आज तक ब्यूरो
0: खबर। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों की, दिल्ली में पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबसे अपना दर्द बयां किया।
2: जंतर मंतर के आंदोलन में घायल पुलिस वालों की कहानी।
20: मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए।
2: पुलिस वालों के परिवारों का दर्द कैसे कांप उठे परिवार।
21: मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
2: पुलिस वाले की बेटी बोली, पापा की वर्दी खून से लाल थी।
20: उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी।
2: पुलिस वाले की पत्नी बोली, पत्थरों से घायल कर दिया।
21: पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते।
2: पुलिस वाले का बेटा बोला, पत्थर से पापा का सिर फट गया।
22: मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है।
2: सड़क से लेकर संसद तक अभी तक तो छात्रों और प्रदर्शनकारियों की बात हो रही थी, लेकिन अब जंतर मंतर के प्रदर्शन और CJP के संसद मार्च के दौरान घायल हुए पुलिस वालों के परिवार भी अपनी दर्द भरी दास्तान लेकर सबके सामने आ गए हैं। 20 जून से शुरू हुए और 25 जुलाई को खत्म हुए इस आंदोलन में पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी के दौरान क्या क्या झेला, अब पुलिस वालों के परिवार उसको बयान कर रहे हैं। जी हाँ, CJP के आंदोलन में घायल पुलिस कर्मियों के परिजन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें स्क्रीन पर प्रदर्शन के दौरान कैसे पुलिसकर्मी घायल हुए उसके वीडियो दिखाए जाते हैं और फिर एक घायल पुलिस वाले की बेटी गुंजन अपना पूरा दर्द बयान करती है और बताती है कि जब उसके पापा घर लौटे तो कैसे उनकी वर्दी पूरी खून से लाल थी।
20: माय फादर वाज एट मेन प्रोटेस्ट साइट, ही वाज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिकेड्स जहां पर बहुत सारा क्राउड था। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड इट वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th एंड अराउंड 2 PM ही वाज अनकॉन्शियस एट द आरएमएल हॉस्पिटल फॉर अबाउट 4 आवर्स। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी।
2: पुलिस कर्मियों के परिवारों का कहना है कि जब प्रदर्शनकारियों को इंसाफ देने की बात चल रही है तो ड्यूटी के दौरान पुलिस वालों और उनके परिवारों ने भी बहुत कुछ झेला है और अब 20 जुलाई को CJP के संसद चलो मार्च के दौरान घायल पुलिस कर्मी की पत्नी सीमा ने जो दर्द बयान किया वो भी सुनिए। सीमा कहती है कि इस प्रदर्शन के दौरान उनके पति का हेलमेट टूट गया था, अगर पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद लगता तो क्या होता।
21: पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
2: अब CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए एक और पुलिसकर्मी का बेटा अपना दर्द सुनाता है। लक्ष्य सिंह बिष्ट कहते हैं कि उनके पिता को बहादुरी के लिए 4 सम्मान मिल चुके हैं। उनके दादाजी भी BSF में थे, 1971 की जंग लड़ चुके हैं, लेकिन जंतर मंतर पर पिता के साथ जो हुआ वो डराने वाला था।
22: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में एंड ऑन 25th May at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फिन के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है उसमें स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें डाउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25th May अनप्रवोक्ड उन्होंने मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर फेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई।
2: पुलिस कर्मियों के परिजनों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े भी दिखाए गए कि इस विरोध प्रदर्शन से दिल्ली पुलिस को कितना नुकसान हुआ है। 250 से अधिक पुलिस कर्मी घायल हुए, 110 से अधिक बैरिकेड डैमेज, 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर्स का नुकसान, 350 से ज्यादा हेलमेट डैमेज, 50 से ज्यादा शील्ड टूटे, 20 से ज्यादा लाउड हेलर का नुकसान, 10 HHMD और 1 X-ray बैगेज का नुकसान, 25 से अधिक सरकारी वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी से नुकसान। पुलिस कर्मियों के परिवार वालों का आरोप है कि इस पूरे आंदोलन में कई असामाजिक तत्व भी शामिल थे जिन्होंने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान निशाना बनाया। आज तक ब्यूरो।
0: आज दिल्ली की कड़कड़नुमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुना दी। 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अदालत का निर्णय आने के बाद अंकित शर्मा के परिजनों का मानना है कि उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।
2: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्या के आरोप में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत दूसरे आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 13 जुलाई को कोर्ट ने आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान सभी दोषियों के लिए फांसी की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला आने के बाद आज तक से बातचीत के दौरान अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा ने यही कहा कि उम्मीद थी कि दोषियों को फांसी होगी।
1: अंकुर जी नमस्कार, ये जो अदालत ने फैसला सुनाया है ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है, आपका क्या रिएक्शन है, आपके परिवार का क्या रिएक्शन है?
3: सर हमारे परिवार का शुरुआत से 2020 में जब दंगा हुआ था जब इसे हमारे परिवार की यही मांग थी कि भाई के जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इस केस को हमारे केस को भाई के केस को रेअरेस्ट ऑफ रेअरेस्ट केस में कोर्ट को देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भाई के साथ जो ये इंसिडेंट हुआ था आप सभी को पता है कितनी बुरी तरीके से ब्रूटली तरीके से उसको मारा गया था, कितने चारों तरफ बॉडी पे उसके निशान थे चाकू के और बहुत तेजाब के, और फिर उसकी बॉडी को भाई की बॉडी को नाले में फेंक दिया गया था जिस तरीके से, तो कोर्ट को ये रेअरेस्ट ऑफ रेअरेस्ट केस में देखना चाहिए था और जो भी दोषी है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।
0: देहरादून से एक दर्दनाक खबर आई जहां शादी के 8 महीने बाद ही एक लड़की की मौत की खबर आई। ससुराल वालों ने दावा किया कि लड़की ने आत्महत्या की जबकि परिवार इसे हत्या बताता है।
2: कैमरे पर फूट फूट कर रो रही सृष्टि कंडारी अब इस दुनिया में नहीं है, जो कैमरे पर फूट फूट कर ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगा रही है। देहरादून की रहने वाली सृष्टि कंडारी की 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। पति सौरभ खत्री सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि सृष्टि खुद भी सरकारी टीचर थी। मौत से करीब 1 घंटे पहले सृष्टि ने ये वीडियो बनाया जिसमें वो कहती हैं कि सॉरी मम्मी अब मैं जा रही हूँ।
4: शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ, मनुष्य मनुष्य।
2: ससुराल वालों का कहना है कि सृष्टि ने आत्महत्या की जबकि परिवार वाले ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।
23: ने देखा सिचुएशन तो मर्डर का सिचुएशन है, क्योंकि वो कह रहे थे कि हैंग किया जो भी है वो, तो उनको इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था पुलिस को, जो उन्होंने किया या परिवार को करना चाहिए था, पर उन्होंने कोई कॉल नहीं उठाया। वो कैलाश हॉस्पिटल ले गए थे वो।
24: और आप लोग कैसे पता चला?
23: हमें बाहर से किसी ने इन्फॉर्म किया कि आप चाचा जी वहाँ पे आ जाओ।
2: परिवार का कहना है कि 3 महीने पहले सृष्टि के ससुर की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। शादी के बाद ससुर को कैंसर होने का पता भी चला था, जिसके बाद ससुराल वाले उसे मनहूस कहकर ताना मारते थे।
25: सर उनको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था, उनको जो उनका वीडियो लास्ट में आया था उसमें दीदी ने यही बताया है कि ये लोग मुझे 6 महीने से परेशान कर रहे हैं। अपने ससुर जो उनके ससुर हैं बीमार थे काफ़ी समय से, उनके द्वारा बोला गया कि जब से तुम आई हो यहाँ पे तब से हमारे परिवार में ये घटनाएं हो रही हैं, अनिष्ट हो रहा है, इस तरीके से प्रताड़ित करना। कभी उसको उन्होंने गाड़ी ली थी उसकी किस्त वो भर रही थी, हर चीज़ वो कर रही थी उनके लिए, हर चीज़ उसने मतलब पूरा चाहा कि मैं अपने परिवार के लिए करूं, पर उसके बावजूद उन लोगों के द्वारा उसको इतनी मानसिक प्रताड़ना दी गई कि उसको मजबूरन अब वो सुसाइड हम नहीं मानते वो हत्या है।
2: पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अंकित शर्मा देहरादून आज तक।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी ने वीडियो से छात्रों को दिया संदेश, कहा गाली गलौज से किसी समस्या का समाधान नहीं, गुमराह बच्चों को करता हूं माफ, बोले आओ मिलकर बनाएं सपनों का भारत। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के अजीब व गरीब प्रदर्शन पर राजनीतिक जंग, सरकार बोली संसद नाटक की जगह नहीं, अखिलेश बोले सच बुरा लगा क्या। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर, 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गई पीएम किसान योजना, तेल गैस की खोज के लिए 84,000 करोड़ की, समुद्र मंथन योजना को स्वीकृति। 2020 दिल्ली दंगे में सजा का ऐलान, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में पूर्व पार्षद ताहिर समेत सभी 5 को उम्र कैद, बीजेपी आप में राजनीतिक भिड़न। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को मारी गोली, 1 की मौत 1 घायल, सर्च ऑपरेशन तेज। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम ने दिल्ली में उन्हें गाली देने वाले बच्चों के लिए संदेश जारी करते हुए कहा कि मुझे और मेरी मां को गाली दी गई, पीएम बोले ये गुमराह बच्चे हैं जिन्होंने गालियां दी, मैं इन्हें माफ करता हूं।
1: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है, कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई, न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है, उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए खपता हूं, आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
0: खबर संसद में जारी घमासान की, शुक्रवार को संसद परिसर से एक अनोखी तस्वीर दिखाई दी, श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष ने नाटक किया, जहां साधु के वेश में पप्पू यादव नजर आए, जिसे लेकर राजनीति तेज हो गई।
2: संसद परिसर में अयोध्या चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष ने नाटक का मंचन करके उठाया, जहां पप्पू यादव साधु के भेष में दान पेटी के साथ पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने सांकेतिक चंदा डाला, जिसके बाद पप्पू यादव दान पेटी देकर भागने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पकड़ते हैं। पप्पू यादव के इस नाटक पर लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जताई। पप्पू यादव के आचरण को संसदीय भावना के खिलाफ बताया।
3: नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, नाटक करने का जगह नहीं है। स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं है।
2: वहीं बीजेपी भी पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर हमला कर रही है।
4: वो तो कालनेमी का वेश धारण करके आए थे और पूरे सदन ने इसकी निंदा की। तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हमला है, राम राम जपियो रे सब माल हरपियो रे, आप भगवान के आस्था के साथ ही नहीं 154 करोड़ भारत के उस आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं जो राम के, जो राम को अपने जीवन में, कर्म में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं।
5: हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा।
6: आपके माध्यम से देश का आम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते। अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए।
2: उधर संत समाज ने भी पप्पू यादव को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
7: महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए।
8: इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आप जरा बताइए कि जिन लोगों ने मंदिर में दान चोरी किया है, क्या वो भगवाधारी थे? वो तो आठों जेल गए, भगवा साधु तो थे नहीं। और यह आप जरा देखिए कितने दुर्भाग्य है। और हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है।
2: राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले दो दिनों से दान पेटी के साथ प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आज पप्पू यादव की एंट्री ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया। आज तक ब्यूरो।
0: संसद में भले ही एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया, लेकिन हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत लेकर पहुंचे।
9: पेपर लीक से शुरू हुआ हंगामा पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान लगे आरोपों तक पहुंच गया है। पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, जिसके बाद केसी वेणुगोपाल ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्पीकर को भेज दिया। अनुराग ठाकुर की ओर से दिए गए प्रस्ताव में कहा गया कि रूल 352 का उल्लंघन कर राहुल गांधी ने असंसदीय शब्दों इडियट और अंधभक्त का इस्तेमाल किया, रूल 353 का उल्लंघन कर केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ गंभीर निराधार आरोप लगाए और मोशन से हटकर टिप्पणियां की। उधर जवाब में आए कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया कि कोई गोली नहीं चलने का झूठा दावा कर मंत्री ने जानबूझकर संसद को गलत जानकारी दी और सदन को गुमराह किया।
10: मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है, उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल 222 को देखते हुए और रूल 223 और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें।
11: तो हाउ कैन ए मिनिस्टर मिसलेड द हाउस लाइक दिस? स्टूडेंट्स नो अबाउट इट, नेशन नो अबाउट इट, नाउ ही इज टेलिंग दिस इज नॉट यूज्ड।
9: उधर संसद के दोनों सदनों में बिल पास हो गया, जिसके बाद अब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बाकी है, जहां पीएम मोदी ने पोस्ट करके अब पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।
12: फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ।
9: पेपर लीक बिल पास होने के बावजूद विपक्ष का संसद परिसर में एक बार फिर प्रदर्शन देखने को मिला।
13: विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि तस्वीरों में यहाँ पर पोस्टर बैनर लेकर के तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद, ये सभी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन संसद से गायब क्यों हैं, सदन में आए, इस तरीके की बातें उनके द्वारा की जा रही है।
14: ये निश्चित तौर से दुर्भाग्य है कि भारत की इतनी बड़ी पार्लियामेंट, उसका एलओपी इतना गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है। जब सारी मांगे पूरी हो गई तो आज किस बात का
13: क्या राहुल।
9: संसद के अंदर भी हंगामा जारी रहा जिसके बाद संसद की कार्यवाही बाधित हुई।
15: हंगामा करते रहेंगे और सरकार भी हंगामा के चक्कर में अगर बिल ही पारित नहीं करेंगे तो सदन क्या करेंगे। इसलिए हम तो बिल पारित करते रहेंगे और हमने आज कहा भी है, बाद में बाहर जाके ये नहीं कहना कि बिना चर्चा के बिल पारित क्यों किया गया है।
9: बहरहाल विपक्ष अभी थमने के मूड में नहीं है, जहां वो लगातार सरकार को घेर रहा है और हंगामे के बीच अब संसद सोमवार तक के लिए स्थगित होगी। आज तक भी
0: संसद से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया। अब बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही यह कानून बन जाएगा। सवाल यही कि क्या पेपर लीक की लाइलाज बीमारी का पक्का इलाज फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और कठोर कानून से होगा, क्या नया कानून काफी है, या फिर अभी पेपर लीक रोकने की राह में मोदी सरकार को कई चुनौतियों से पार पाना होगा।
12: दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
2: एंटी पेपर लीक बिल को संसद से मंजूरी मिल गई है। वहीं पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यही है, क्या स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट तारीखों के फेर में फंसे रहने वाले मामलों की बीमारी का रामबाण इलाज है? क्या कठोर कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट की दवा काफी है?
16: अपराध करने से लोग डरते हैं, यही तो दुष्प्रेरणा है कि आप देखिए किसी ने अपराध किए, समय पे सजा मिले और जो जांच है वो भी समय पे हो और स्पीडी ट्रायल हो, यही तो ये चाह रहे हैं, यही तो डिमांड है उनकी, सजा मिले, यही इसी काम में लगे।
2: कानून के जानकार पेपर लीक जैसे मुद्दों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन देश में पहले से काम कर रही फास्ट ट्रैक कोर्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कई आशंका भी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट का मॉडल अभी तक बहुत कारगर साबित नहीं हुआ है। वजह है फास्ट ट्रैक कोर्ट को भी लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और संसाधनों की कमी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब यही है कि अभी भी फास्ट ट्रैक वाली अदालतें धीमी गति में अटकी हुई हैं।
17: पहली जो चुनौती है फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले में, ये न्यायाधीशों की कमी, जुडिशियल ऑफिसर्स की बहुत ही कमी है, खास करके डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पे।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर कानून के जानकारों की आशंका वाजिब नजर आती है। संसद में एक सवाल के जवाब में लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से देश में चल रही फास्ट ट्रैक अदालतों में लंबित मामलों से लेकर निपटाए गए केसों की जानकारी साझा की है। जवाब में कहा गया है कि साल 2023 में नए केस 81,471, 2024 में 88,902, 2025 में 1,43,936। कोर्ट ने केसों का निपटारा किया साल 2023 76,319, 2024 में 85,595, 2025 में 66,500, मतलब हर साल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जितने मामलों में फैसला सुनाया उससे ज्यादा नए केस कोर्ट में पहुंचे। यही वजह है कि 2023 में 202,175 केस लंबित थे, 2024 में 204,122 और 2025 में 245,579। ये आंकड़े बताते हैं कि इंसाफ को फास्ट ट्रैक पर लाने वाली कोर्ट में खुद लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की धीमी रफ्तार की वजह है जजों और कोर्ट के स्टाफ की कमी। यही नहीं, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने फंड की बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि रेगुलर जजों के जिम्मे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम भी है। अब सवाल है कि जब फास्ट ट्रैक अदालतों में जजों की कमी है तो इंसाफ फास्ट ट्रैक पर कैसे आएगा? यही सवाल आज तक संवाददाता ने देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से पूछा।
18: एक सवाल ये हो रहा है कि क्योंकि ट्रायल कोर्ट में जजों की कमी है काफी सख्त, उसकी वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए या कुछ भी बनाए तो सुनवाई या नहीं?
19: देखिए, जो आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में रहते हैं, उस समय तो बंदी हाई कोर्ट ही उनके अपॉइंटमेंट कर से
18: जी।
19: कुछ जगह पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से एग्जाम होता है, उसमें भी हाईकोर्ट का संबंधित हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण रोल होता है। हमने उनको कहा भी है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वैकेंसी है तो जल्दी से जल्दी बने एग्जाम लेकर।
2: केंद्रीय मंत्री ने यही भरोसा दिया कि नए जजों की नियुक्ति के लिए सरकार की तरफ से सुझाव दिए गए हैं। अब देखना यही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट वादा बनकर रह जाएगा या फिर धरातल पर भी तस्वीर बदलेगी। इसे यूं समझिए, इंसाफ को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए 2000 में 11वें फाइनेंस कमीशन ने 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की सिफारिश की थी। मकसद था देश की अदालतों में लंबित 2 करोड़ मामलों का निपटारा करना। फास्ट ट्रैक कोर्ट की योजना को 2005 में 5 साल के लिए बढ़ाया गया, लेकिन 5 साल बाद भी 1734 में से सिर्फ 1562 फास्ट ट्रैक कोर्ट देश में संचालित थी। साल 2010 में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए राज्यों की फंडिंग बंद करने का फैसला कोर्ट ने लिया। 2012 में निर्भया गैंगरेप कांड के बाद एक बार फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट चर्चा में आया। 2015 में जघन्य अपराधों के लिए 14वें फाइनेंस कमीशन ने 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव रखा, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की फंडिंग का जिम्मा राज्य सरकार के पाले में डाल दिया, मतलब केंद्र सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए फंड नहीं देगी। 2019 में निर्भया फंड से 1023 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की फंडिंग की गई, लेकिन 2025 तक देश में सिर्फ 775 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट काम कर रही है। सरल शब्दों में समझे तो जितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट का लक्ष्य रखा गया था उतनी अदालतें आज तक ऑपरेशनल नहीं हो पाई। न्याय व्यवस्था की जमीनी हकीकत को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के पूरे सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, तभी इंसाफ फास्ट ट्रैक पर आएगा। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और लीक प्रूफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेखनी की अगुवाई में एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स को लीक प्रूफ सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे यूपीएससी बिना लीक के परीक्षा कराती आई है, वैसे ही नीट और दूसरी परीक्षाएं क्यों नहीं कराई जा सकती? आज तक ब्यूरो।
0: खबर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान घायल हुए पुलिस कर्मियों की। दिल्ली में पुलिस कर्मियों के परिवार वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबसे अपना दर्द बयां किया।
2: जंतर मंतर के आंदोलन में घायल पुलिस वालों की कहानी।
20: मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए।
2: पुलिस वालों के परिवारों का दर्द कैसे कांप उठे परिवार।
21: मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
2: पुलिस वाले की बेटी बोली, पापा की वर्दी खून से लाल थी।
20: उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, उनके सर पे 4 टांके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी।
2: पुलिस वाले की पत्नी बोली, पत्थरों से घायल कर दिया।
21: पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते।
2: पुलिस वाले का बेटा बोला, पत्थर से पापा का सिर फट गया।
22: मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है।
2: सड़क से लेकर संसद तक अभी तक तो छात्रों और प्रदर्शनकारियों की बात हो रही थी, लेकिन अब जंतर मंतर के प्रदर्शन और सीजेपी के संसद मार्च के दौरान घायल हुए पुलिस वालों के परिवार भी अपनी दर्द भरी दास्तान लेकर सबके सामने आ गए हैं। 20 जून से शुरू हुए और 25 जुलाई को खत्म हुए इस आंदोलन में पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी के दौरान क्या क्या झेला, अब पुलिस वालों के परिवार उसको बयान कर रहे हैं। जी हाँ, सीजेपी के आंदोलन में घायल पुलिस कर्मियों के परिजन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें स्क्रीन पर प्रदर्शन के दौरान कैसे पुलिसकर्मी घायल हुए उसके वीडियो दिखाए जाते हैं और फिर एक घायल पुलिस वाले की बेटी गुंजन अपना पूरा दर्द बयान करती है और बताती है कि जब उसके पापा घर लौटे तो कैसे उनकी वर्दी पूरी खून से लाल थी।
20: माय फादर वाज एट अ मेन प्रोटेस्ट साइट, ही वाज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिकेड्स जहां पर बहुत सारा क्राउड था। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th and around 2 p.m. he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी।
2: पुलिस कर्मियों के परिवारों का कहना है कि जब प्रदर्शनकारियों को इंसाफ देने की बात चल रही है तो ड्यूटी के दौरान पुलिस वालों और उनके परिवारों ने भी बहुत कुछ झेला है और अब 20 जुलाई को सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान घायल पुलिस कर्मी की पत्नी सीमा ने जो दर्द बयान किया वो भी सुनिए। सीमा कहती है कि इस प्रदर्शन के दौरान उनके पति का हेलमेट टूट गया था। अगर पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद लगता तो क्या होता?
21: पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
2: अब सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए एक और पुलिसकर्मी का बेटा अपना दर्द सुनाता है। लक्ष्य सिंह बिष्ट कहते हैं कि उनके पिता को बहादुरी के लिए 4 सम्मान मिल चुके हैं। उनके दादाजी भी बीएसएफ में थे, 1971 की जंग लड़ चुके हैं, लेकिन जंतर मंतर पर पिता के साथ जो हुआ वो डराने वाला था।
22: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में एंड ऑन 25th May at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है उसमें स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें डाउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25th May अनप्रोवोक्ड उन्होंने मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो

0: विरोध प्रदर्शन से दिल्ली पुलिस को कितना नुकसान हुआ है। 250 से अधिक पुलिस कर्मी घायल हुए, 110 से अधिक बैरिकेड डैमेज, 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर्स का नुकसान, 350 से ज्यादा हेलमेट डैमेज, 50 से ज्यादा शील्ड टूटे, 20 से ज्यादा डाउन हेलर का नुकसान, 10 HHMD और 1 एक्सरे बैगेज का नुकसान, 25 से अधिक सरकारी वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी से नुकसान। पुलिस कर्मियों के परिवार वालों का आरोप है कि इस पूरे आंदोलन में कई असामाजिक तत्व भी शामिल थे जिन्होंने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान निशाना बनाया। आज तक ब्यूरो।
1: आज दिल्ली की कड़कड़नुमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुना दी। 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अदालत का निर्णय आने के बाद अंकित शर्मा के परिजनों का मानना है कि उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।
0: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्या के आरोप में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत दूसरे आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 13 जुलाई को कोर्ट ने आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान सभी दोषियों के लिए फांसी की मांग की गई थी लेकिन अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला आने के बाद आज तक से बातचीत के दौरान अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा ने यही कहा कि उम्मीद थी कि दोषियों को फांसी होगी।
2: अंकुर जी नमस्कार, ये जो अदालत ने फैसला सुनाया है, ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है, आपका क्या रिएक्शन है, आपके परिवार का क्या रिएक्शन है?
3: सर हमारे परिवार का शुरुआत से 2020 में जब दंगा हुआ था, जब इसे हमारे परिवार की यही मांग थी कि भाई के जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इस केस को, हमारे केस को, भाई के केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में कोर्ट को देखना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से भाई के साथ जो ये इंसिडेंट हुआ था, आप सभी को पता है कितनी बुरी तरीके से, ब्रूटली तरीके से उसको मारा गया था, कितने चारों तरफ बॉडी पे उसके निशान थे चाकू के और बहुत तेजाब के, और फिर उसकी बॉडी को, भाई की बॉडी को नाले में फेंक दिया गया था जिस तरीके से, तो कोर्ट को ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में देखना चाहिए था और जो भी दोषी है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।
1: देहरादून से एक दर्दनाक खबर आई जहां शादी के 8 महीने बाद ही एक लड़की की मौत की खबर आई। ससुराल वालों ने दावा किया कि लड़की ने आत्महत्या की जबकि परिवार इसे हत्या बताता है।
0: कैमरे पर फूट फूट कर रो रही सृष्टि कंडारी अब इस दुनिया में नहीं है जो कैमरे पर फूट फूट कर ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगा रही है।
4: अजीब सा हो गया, 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सह ही नहीं जाता।
0: देहरादून की रहने वाली सृष्टि कंडारी की 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। पति सौरभ खत्री सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि सृष्टि खुद भी सरकारी टीचर थी। मौत से करीब 1 घंटे पहले सृष्टि ने ये वीडियो बनाया जिसमें वो कहती हैं कि सॉरी मम्मी, अब मैं जा रही हूँ। ससुराल वालों का कहना है कि सृष्टि ने आत्महत्या की जबकि परिवार वाले ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।
5: मैं देखा सिचुएशन तो मर्डर का सिचुएशन है क्योंकि वो कह रहे थे कि हैंग किया जो भी है वो, तो उनको इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था पुलिस को, जो उन्होंने किया या परिवार को करना चाहिए था, पर उन्होंने कोई कॉल नहीं उठाया। वो कैलाश हॉस्पिटल ले गए थे वो।
6: और आप लोग कैसे
5: पता चला? हमें बाहर से किसी ने इन्फॉर्म किया कि आप चाचा जी वहाँ पे आ जाओ।
0: परिवार का कहना है कि 3 महीने पहले सृष्टि के ससुर की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। शादी के बाद ससुर को कैंसर होने का पता भी चला था जिसके बाद ससुराल वाले उसे मनहूस कहकर ताना मारते थे।
7: सर उनको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। उनको जो उनका वीडियो लास्ट में आया था उसमें दीदी ने यही बताया है कि ये लोग मुझे 6 महीने से परेशान कर रहे हैं। अपने ससुर, जो उनके ससुर हैं बीमार थे काफ़ी समय से, उनके द्वारा बोला गया है कि जब से तुम आई हो यहाँ पे तब से हमारे परिवार में ये घटनाएं

0: हो रही है, यानी अनिष्ट हो रहा है, इस तरीके से प्रताड़ित करना। कभी उसको, उनने गाड़ी ली थी, उसकी किस्त वो भर रही थी, हर चीज़ वो कर रही थी उनके लिए, हर चीज़ उसने मतलब पूरा चाहा कि मैं अपने परिवार के लिए करूँ, पर उसके बावजूद उन लोगों के द्वारा उसको इतनी मानसिक प्रताड़ना दी गई कि उसको मजबूरन अब वो सुसाइड हम नहीं मानते, वो हत्या है।
1: पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: मोदी ने वीडियो से छात्रों को दिया संदेश, कहा गाली गलौज से किसी समस्या का समाधान नहीं, गुमराह बच्चों को करता हूं माफ, बोले आओ मिलकर बनाएं सपनों का भारत। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के अजीब और गरीब प्रदर्शन पर राजनीतिक जंग, सरकार बोली संसद नाटक की जगह नहीं, अखिलेश बोले सच बुरा लगा क्या। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर, 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गई पीएम किसान योजना, तेल गैस की खोज के लिए 84,000 करोड़ की समुद्र मंथन योजना को स्वीकृति। 2020 दिल्ली दंगे में सजा का ऐलान, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में पूर्व पार्षद ताहिर समेत सभी 5 को उम्र कैद, बीजेपी आप में राजनीतिक भिड़न। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को मारी गोली, 1 की मौत 1 घायल, सर्च ऑपरेशन तेज। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम ने दिल्ली में उन्हें गाली देने वाले बच्चों के लिए संदेश जारी करते हुए कहा कि मुझे और मेरी माँ को गाली दी गई, पीएम बोले ये गुमराह बच्चे हैं जिन्होंने गालियां दी, मैं इन्हें माफ करता हूं।
1: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है, कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई, न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भलीभांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है, उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है, और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं, आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
0: खबर संसद में जारी घमासान की। शुक्रवार को संसद परिसर से एक अनोखी तस्वीर दिखाई दी, श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष ने नाटक किया, जहां साधु के वेश में पप्पू यादव नजर आए, जिसे लेकर राजनीति तेज हो गई।
2: संसद परिसर में अयोध्या चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष ने नाटक का मंचन करके उठाया, जहां पप्पू यादव साधु के भेष में दान पेटी के साथ पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने सांकेतिक चंदा डाला, जिसके बाद पप्पू यादव दान पेटी लेकर भागने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पकड़ते हैं। पप्पू यादव के इस नाटक पर लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जताई। पप्पू यादव के आचरण को संसदीय भावना के खिलाफ बताया।
3: नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, नाटक करने का जगह नहीं है। स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं है।
2: वहीं बीजेपी भी पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर हमला कर रही है।
4: वो तो काले नेमी का वेश धारण करके आए थे और पूरे सदन ने इसकी निंदा की। तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हम लाए, राम राम जपियो रे सब माल हरपियो रे। आप भगवान के आस्था के साथ ही नहीं, 154 करोड़ भारत के उस आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं जो राम के, जो राम को अपने जीवन में, कन में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं।
5: हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा।
6: आपके माध्यम से देश का हम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते। अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए।
2: उधर संत समाज ने भी पप्पू यादव को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
7: महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए।
8: इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आप जरा बताइए कि जिन लोगों ने मंदिर में दान चोरी किया है, क्या वो भगवाधारी थे? वो तो आठों जेल गए, भगवा साधु तो थे नहीं। और यह आप जरा देखिए कितने दुर्भाग्य है। और हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है।
2: राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले दो दिनों से दान पेटी के साथ प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आज पप्पू यादव की एंट्री ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया। आज तक ब्यूरो।
0: संसद में भले ही एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया, लेकिन हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत लेकर पहुंचे।
9: पेपर लीक से शुरू हुआ हंगामा पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान लगे आरोपों तक पहुंच गया है। पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, जिसके बाद केसी वेणुगोपाल ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्पीकर को भेज दिया। अनुराग ठाकुर की ओर से दिए गए प्रस्ताव में कहा गया कि रूल 352 का उल्लंघन कर राहुल गांधी ने असंसदीय शब्दों इडियट और अंधभक्त का इस्तेमाल किया, रूल 353 का उल्लंघन कर केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ गंभीर निराधार आरोप लगाए और मोशन से हटकर टिप्पणियां की। उधर जवाब में आए कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया कि कोई गोली नहीं चलने का झूठा दावा कर मंत्री ने जानबूझकर संसद को गलत जानकारी दी और सदन को गुमराह किया।
10: मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है, उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल 222 को देखते हुए और रूल 223 और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें।
11: तो हाउ कैन ए मिनिस्टर मिसलेड द हाउस लाइक दिस? स्टूडेंट्स नो अबाउट इट, नेशन नो अबाउट इट, नाउ ही इज टेलिंग दिस इज नॉट यूज्ड।
9: उधर संसद के दोनों सदनों में बिल पास हो गया, जिसके बाद अब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बाकी है, जहां पीएम मोदी ने पोस्ट करके अब पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।
12: फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ।
9: पेपर लीक बिल पास होने के बावजूद विपक्ष का संसद परिसर में एक बार फिर प्रदर्शन देखने को मिला।
13: विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि तस्वीरों में यहाँ पर पोस्टर बैनर लेकर के तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद, ये सभी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन संसद से गायब क्यों है, सदन में आए, इस तरीके की बातें उनके द्वारा की जा रही है।
14: ये निश्चित तौर से दुर्भाग्य है कि भारत की इतनी बड़ी पार्लियामेंट, उसका एलओपी इतना गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है। जब सारी मांगे पूरी हो गई तो आज किस बात का
13: क्या राहुल।
9: संसद के अंदर भी हंगामा जारी रहा जिसके बाद संसद की कार्यवाही बाधित हुई।
3: हंगामा करते रहेंगे और सरकार भी हंगामा के चक्कर में अगर बिल ही पारित नहीं करेंगे तो सदन क्या करेंगे। इसलिए हम तो बिल पारित करते रहेंगे और हमने आज कहा भी है, बाद में बाहर जाके ये नहीं कहना कि बिना चर्चा के बिल पारित क्यों किया गया है।
9: बहरहाल विपक्ष अभी थमने के मूड में नहीं है, जहां वो लगातार सरकार को घेर रहा है और हंगामे के बीच अब संसद सोमवार तक के लिए स्थगित होगी। आज तक भी
0: संसद से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया। अब बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही यह कानून बन जाएगा। सवाल यही कि क्या पेपर लीक की लाइलाज बीमारी का पक्का इलाज फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और कठोर कानून से होगा, क्या नया कानून काफी है, या फिर अभी पेपर लीक रोकने की राह में मोदी सरकार को कई चुनौतियों से पार पाना होगा।
12: दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
2: एंटी पेपर लीक बिल को संसद से मंजूरी मिल गई है। वहीं पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यही है, क्या स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट तारीखों के फेर में फंसे रहने वाले मामलों की बीमारी का रामबाण इलाज है? क्या कठोर कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट की दवा काफी है?
15: अपराध करने से लोग डरते हैं, यही तो दुष्प्रेरणा है
16: कि आप देखिए किसी ने अपराध किए, समय पे सजा मिले और जो जांच है वो भी समय पे हो और स्पीडी ट्रायल हो, यही तो ये चाह रहे हैं, यही तो डिमांड है उनकी, सजा मिले, यही इसी काम में लगे।
2: कानून के जानकार पेपर लीक जैसे मुद्दों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन देश में पहले से काम कर रही फास्ट ट्रैक कोर्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कई आशंका भी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट का मॉडल अभी तक बहुत कारगर साबित नहीं हुआ है। वजह है फास्ट ट्रैक कोर्ट को भी लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और संसाधनों की कमी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब यही है कि अभी भी फास्ट ट्रैक वाली अदालतें धीमी गति में अटकी हुई हैं।
17: पहली जो चुनौती है फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले में, ये न्यायाधीशों की कमी, जुडिशियल ऑफिसर्स की बहुत ही कमी है, खास करके डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पे।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर कानून के जानकारों की आशंका वाजिब नजर आती है। संसद में एक सवाल के जवाब में लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से देश में चल रही फास्ट ट्रैक अदालतों में लंबित मामलों से लेकर निपटाए गए केसों की जानकारी साझा की है। जवाब में कहा गया है कि साल 2023 में नए केस 81,471, 2024 में 88,902, 2025 में 1,43,936। कोर्ट ने केसों का निपटारा किया साल 2023 76,319, 2024 में 85,595, 2025 में 66,500, मतलब हर साल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जितने मामलों में फैसला सुनाया उससे ज्यादा नए केस कोर्ट में पहुंचे। यही वजह है कि 2023 में 202,175 केस लंबित थे, 2024 में 204,122 और 2025 में 245,579। ये आंकड़े बताते हैं कि इंसाफ को फास्ट ट्रैक पर लाने वाली कोर्ट में खुद लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की धीमी रफ्तार की वजह है जजों और कोर्ट के स्टाफ की कमी। यही नहीं, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने फंड की बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि रेगुलर जजों के जिम्मे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम भी है। अब सवाल है कि जब फास्ट ट्रैक अदालतों में जजों की कमी है तो इंसाफ फास्ट ट्रैक पर कैसे आएगा? यही सवाल आज तक संवाददाता ने देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से पूछा।
18: एक सवाल ये मुरा है कि क्योंकि ट्रायल कोर्ट में जजों की कमी है काफी सख्त, उसकी वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए या कुछ भी बनाए तो सुनवाई या निगाह?
16: देखिए, जो आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में रहते हैं, उस समय तो बंदी हाई कोर्ट ही उनके अपॉइंटमेंट कर से
18: जी।
16: कुछ जगह पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से एग्जाम होता है, उसमें भी हाई कोर्ट का संबंधित हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण रोल होता है। हमने उनको कहा भी है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वैकेंसी है तो जल्दी से जल्दी बने एग्जाम लेकर।
2: केंद्रीय मंत्री ने यही भरोसा दिया कि नए जजों की नियुक्ति के लिए सरकार की तरफ से सुझाव दिए गए हैं। अब देखना यही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट वादा बनकर रह जाएगा या फिर धरातल पर भी तस्वीर बदलेगी। इसे यूं समझिए, इंसाफ को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए 2000 में 11वें फाइनेंस कमीशन ने 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की सिफारिश की थी। मकसद था देश की अदालतों में लंबित 2 करोड़ मामलों का निपटारा करना। फास्ट ट्रैक कोर्ट की योजना को 2005 में 5 साल के लिए बढ़ाया गया, लेकिन 5 साल बाद भी 1734 में से सिर्फ 1562 फास्ट ट्रैक कोर्ट देश में संचालित थी। साल 2010 में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए राज्यों की फंडिंग बंद करने का फैसला कोर्ट ने लिया। 2012 में निर्भया गैंगरेप कांड के बाद एक बार फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट चर्चा में आया। 2015 में जघन्य अपराधों के लिए 14वें फाइनेंस कमीशन ने 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव रखा, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की फंडिंग का जिम्मा राज्य सरकार के पाले में डाल दिया। मतलब केंद्र सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए फंड नहीं देगी। 2019 में निर्भया फंड से 1023 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की फंडिंग की गई, लेकिन 2025 तक देश में सिर्फ 775 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट काम कर रही है। सरल शब्दों में समझें तो जितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट का लक्ष्य रखा गया था उतनी अदालतें आज तक ऑपरेशनल नहीं हो पाई। न्याय व्यवस्था की जमीनी हकीकत को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के पूरे सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, तभी इंसाफ फास्ट ट्रैक पर आएगा। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और लीक प्रूफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेखनी की अगुवाई में एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स को लीक प्रूफ सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे यूपीएससी बिना लीक के परीक्षा कराती आई है, वैसे ही नीट और दूसरी परीक्षाएं क्यों नहीं कराई जा सकती? आज तक ब्यूरो।
0: खबर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान घायल हुए पुलिस कर्मियों की। दिल्ली में पुलिस कर्मियों के परिवार वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबसे अपना दर्द बयां किया।
2: जंतर मंतर के आंदोलन में घायल पुलिस वालों की कहानी।
19: मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए।
2: पुलिस वालों के परिवारों का दर्द कैसे कांप उठे परिवार।
20: मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
2: पुलिस वाले की बेटी बोली, पापा की वर्दी खून से लाल थी।
19: उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, उनके सर पे 4 टांके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी।
2: पुलिस वाले की पत्नी बोली, पत्थरों से घायल कर दिया।
20: पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते।
2: पुलिस वाले का बेटा बोला, पत्थर से पापा का सिर फट गया।
21: मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है।
2: सड़क से लेकर संसद तक अभी तक तो छात्रों और प्रदर्शनकारियों की बात हो रही थी, लेकिन अब जंतर मंतर के प्रदर्शन और सीजेपी के संसद मार्च के दौरान घायल हुए पुलिस वालों के परिवार भी अपनी दर्द भरी दास्तान देकर सबके सामने आ गए हैं। 20 जून से शुरू हुए और 25 जुलाई को खत्म हुए इस आंदोलन में पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी के दौरान क्या क्या झेला, अब पुलिस वालों के परिवार उसको बयान कर रहे हैं। जी हाँ, सीजेपी के आंदोलन में घायल पुलिस कर्मियों के परिजन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें स्क्रीन पर प्रदर्शन के दौरान कैसे पुलिसकर्मी घायल हुए उसके वीडियो दिखाए जाते हैं और फिर एक घायल पुलिस वाले की बेटी गुंजन अपना पूरा दर्द बयान करती है और बताती है कि जब उसके पापा घर लौटे तो कैसे उनकी वर्दी पूरी खून से लाल थी।
19: My father was at a main protest site. He was at the front line near the barricades, जहाँ पर बहुत सारा crowd था। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को my father was pulled by a rowdy mob and he was almost lynched near the stage of Jantar Mantar. This happened on 25th and around 2 p.m. He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी।
2: पुलिस कर्मियों के परिवारों का कहना है कि जब प्रदर्शनकारियों को इंसाफ देने की बात चल रही है तो ड्यूटी के दौरान पुलिस वालों और उनके परिवारों ने भी बहुत कुछ झेला है और अब 20 जुलाई को सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान घायल पुलिस कर्मी की पत्नी सीमा ने जो दर्द बयान किया वो भी सुनिए। सीमा कहती है कि इस प्रदर्शन के दौरान उनके पति का हेलमेट टूट गया था। अगर पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद लगता तो क्या होता?
20: पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
2: अब सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए एक और पुलिसकर्मी का बेटा अपना दर्द सुनाता है। लक्ष्य सिंह बिष्ट कहते हैं कि उनके पिता को बहादुरी के लिए 4 सम्मान मिल चुके हैं। उनके दादाजी भी बीएसएफ में थे, 1971 की जंग लड़ चुके हैं, लेकिन जंतर मंतर पर पिता के साथ जो हुआ वो डराने वाला था।
21: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में एंड ऑन 25th मे एट 2 पीएम मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फिन के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है मतलब स्टूडेंट्स नहीं है उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25th में अनप्रवोक्ड उन्होंने मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई।
2: पुलिस कर्मियों के परिजनों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े भी दिखाए गए कि इस विरोध प्रदर्शन से दिल्ली पुलिस को कितना नुकसान हुआ है। 250 से अधिक पुलिस कर्मी घायल हुए, 110 से अधिक बैरिकेड डैमेज, 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर्स का नुकसान, 350 से ज्यादा हेलमेट डैमेज, 50 से ज्यादा शील्ड टूटे, 20 से ज्यादा लाउड हेलर का नुकसान, 10 HHMD और 1 एक्सरे बैगेज का नुकसान, 25 से अधिक सरकारी वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी से नुकसान। पुलिस कर्मियों के परिवार वालों का आरोप है कि इस पूरे आंदोलन में कई असामाजिक तत्व भी शामिल थे जिन्होंने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान निशाना बनाया। आज तक ब्यूरो।
0: आज दिल्ली की कड़कड़नुमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुना दी। 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अदालत का निर्णय आने के बाद अंकित शर्मा के परिजनों का मानना है कि उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।
2: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्या के आरोप में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत दूसरे आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 13 जुलाई को कोर्ट ने आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान सभी दोषियों के लिए फांसी की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला आने के बाद आज तक से बातचीत के दौरान अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा ने यही कहा कि उम्मीद थी कि दोषियों को फांसी होगी।
1: अंकुर जी नमस्कार, ये जो अदालत ने फैसला सुनाया है ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है, आपका क्या रिएक्शन है, आपके परिवार का क्या रिएक्शन है?
4: सर हमारे परिवार का शुरुआत से 2020 में जब दंगा हुआ था, जब इसे हमारे परिवार की यही मांग थी कि भाई के जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इस केस को, हमारे केस को, भाई के केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में कोर्ट को देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भाई के साथ जो ये इंसिडेंट हुआ था आप सभी को पता है कितनी बुरी तरीके से ब्रूटली तरीके से उसको मारा गया था, कितने चारों तरफ बॉडी पे उसके निशान थे चाकू के और बहुत तेजाब के, और फिर उसकी बॉडी को, भाई की बॉडी को नाले में फेंक दिया गया था जिस तरीके से, तो कोर्ट को भी रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में देखना चाहिए था और जो भी दोषी है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।
0: देहरादून से एक दर्दनाक खबर आई, जहां शादी के 8 महीने बाद ही एक लड़की की मौत की खबर आई। ससुराल वालों ने दावा किया कि लड़की ने आत्महत्या की, जबकि परिवार इसे हत्या बताता है।
2: कैमरे पर फूट फूट कर रो रही सृष्टि कंडारी अब इस दुनिया में नहीं है, जो कैमरे पर फूट फूट कर ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगा रही है। देहरादून की रहने वाली सृष्टि कंडारी की 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। पति सौरभ खत्री सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि सृष्टि खुद भी सरकारी टीचर थी। मौत से करीब 1 घंटे पहले सृष्टि ने ये वीडियो बनाया जिसमें वो कहती हैं कि सॉरी मम्मी, अब मैं जा रही हूँ।
22: शादी के बाद हुआ, आजादी के बाद हुआ, मनुष्य मनुष्य।
2: ससुराल वालों का कहना है कि सृष्टि ने आत्महत्या की, जबकि परिवार वाले ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।
23: मैं देखा सिचुएशन तो मर्डर का सिचुएशन है, क्योंकि वो कह रहे थे कि हैंग किया जो भी है वो, तो उनको इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था पुलिस को, जो उन्होंने किया या परिवार को करना चाहिए था, पर उन्होंने कोई कॉल नहीं उठाया। वो कैलाश हॉस्पिटल ले गए थे वो।
24: और आप लोग कैसे
23: पता चला? हमें बाहर से किसी ने इन्फॉर्म किया कि आप चाचा जी वहाँ पे आ जाओ।
2: परिवार का कहना है कि 3 महीने पहले सृष्टि के ससुर की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। शादी के बाद ससुर को कैंसर होने का पता भी चला था, जिसके बाद ससुराल वाले उसे मनहूस कहकर ताना मारते थे।
25: सर उनको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था, उनको जो उनका वीडियो लास्ट में आया था उसमें दीदी ने यही बताया है कि ये लोग मुझे 6 महीने से परेशान कर रहे हैं। अपने ससुर, जो उनके ससुर हैं बीमार थे काफ़ी समय से, उनके द्वारा बोला गया कि जब से तुम आई हो यहाँ पे तब से हमारे परिवार में ये घटनाएं हो रही हैं, अनिष्ट हो रहा है, इस तरीके से प्रताड़ित करना, कभी उसको, उन्होंने गाड़ी ली थी उसकी किस्त वो भर रही थी, हर चीज़ वो कर रही थी उनके लिए, हर चीज़ उसने मतलब पूरा चाहा कि मैं अपने परिवार के लिए करूं, पर उसके बावजूद उन लोगों के द्वारा उसको इतनी मानसिक प्रताड़ना दी गई कि उसको मजबूरन अब वो सुसाइड हम नहीं मानते, वो हत्या है।
2: पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी ने वीडियो से छात्रों को दिया संदेश, कहा गाली गलौज से किसी समस्या का समाधान नहीं, गुमराह बच्चों को करता हूं माफ, बोले आओ मिलकर बनाएं सपनों का भारत। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के अजीब और गरीब प्रदर्शन पर राजनीतिक जंग, सरकार बोली संसद नाटक की जगह नहीं, अखिलेश बोले सच बुरा लगा क्या। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर, 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गई पीएम किसान योजना, तेल गैस की खोज के लिए 84,000 करोड़ की समुद्र मंथन योजना को स्वीकृति। 2020 दिल्ली दंगे में सजा का ऐलान, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में पूर्व पार्षद ताहिर समेत सभी 5 को उम्र कैद, बीजेपी आप में राजनीतिक भिड़ंत। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को मारी गोली, 1 की मौत 1 घायल, सर्च ऑपरेशन तेज। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम ने दिल्ली में उन्हें गाली देने वाले बच्चों के लिए संदेश जारी करते हुए कहा कि मुझे और मेरी माँ को गाली दी गई, पीएम बोले ये गुमराह बच्चे हैं जिन्होंने गालियां दी, मैं इन्हें माफ करता हूं।
1: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है, कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई, न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है, उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है, और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं, आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
0: संसद में भले ही एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया, लेकिन हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत लेकर पहुंचे।
2: पेपर लीक से शुरू हुआ हंगामा पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान लगे आरोपों तक पहुंच गया है। पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, जिसके बाद केसी वेणुगोपाल ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्पीकर को भेज दिया। अनुराग ठाकुर की ओर से दिए गए प्रस्ताव में कहा गया कि रूल 352 का उल्लंघन कर राहुल गांधी ने असंसदीय शब्दों इडियट और अंधभक्त का इस्तेमाल किया, रूल 353 का उल्लंघन कर केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ गंभीर निराधार आरोप लगाए और मोशन से हटकर टिप्पणियां की। उधर जवाब में आए कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया कि कोई गोली नहीं चलने का झूठा दावा कर मंत्री ने जानबूझकर संसद को गलत जानकारी दी और सदन को गुमराह किया।
3: मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है, उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल 222 को देखते हुए और रूल 223 और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें।
4: तो हाउ कैन ए मिनिस्टर मिसलेड द हाउस लाइक दिस? स्टूडेंट्स नो अबाउट इट, नेशन नो अबाउट इट, नाउ ही इज टेलिंग दिस इज नॉट यूज्ड।
2: उधर संसद के दोनों सदनों में बिल पास हो गया, जिसके बाद अब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बाकी है, जहां पीएम मोदी ने पोस्ट करके अब पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।
1: फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ।
2: पेपर लीक बिल पास होने के बावजूद विपक्ष का संसद परिसर में एक बार फिर प्रदर्शन देखने को मिला।
5: विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि तस्वीरों में यहाँ पर पोस्टर बैनर लेकर के तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद, ये सभी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन संसद से गायब क्यों हैं, सदन में आए, इस तरीके की बातें उनके द्वारा की जा रही है।
6: ये निश्चित तौर से दुर्भाग्य है कि भारत की इतनी बड़ी पार्लियामेंट उसका एलओपी इतना गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है। जब सारी मांगे पूरी हो गई तो आज किस बात का आंदोलन?
5: क्या राहुल,
2: संसद के अंदर भी हंगामा जारी रहा, जिसके बाद संसद की कार्यवाही बाधित हुई।
7: हंगामा करते रहेंगे और सरकार भी हंगामा के चक्कर में अगर बिल ही पारित नहीं करेंगे तो सदन क्या करेंगे। इसलिए हम तो बिल पारित करते रहेंगे और हमने आज कहा भी है, बाद में बाहर जाके ये नहीं कहना कि बिना चर्चा के बिल पारित क्यों किया गया है।
2: बहरहाल विपक्ष अभी थमने के मूड में नहीं है, जहां वो लगातार सरकार को घेर रहा है और हंगामे के बीच अब संसद सोमवार तक के लिए स्थगित होगी। आज तक ब्यूरो।
0: संसद से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया, अब बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही यह कानून बन जाएगा। सवाल यही कि क्या पेपर लीक की लाइलाज बीमारी का पक्का इलाज फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और कठोर कानून से होगा? क्या नया कानून काफी है या फिर अभी पेपर लीक रोकने की राह में मोदी सरकार को कई चुनौतियों से पार पाना होगा?
1: दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
8: एंटी पेपर लीक बिल को संसद से मंजूरी मिल गई है। वहीं पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यही है, क्या स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट तारीखों के फेर में फंसे रहने वाले मामलों की बीमारी का रामबाण इलाज है? क्या कठोर कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट की दवा काफी है?
9: अपराध करने से लोग डरते हैं, यही तो दुष्प्रिंस है कि आप देखिए किसी ने अपराध किए, समय पे सजा मिले और जो जांच है वो भी समय पे हो और स्पीडी ट्रायल हो, यही तो ये चाह रहे हैं, यही तो डिमांड है उनकी, सजा मिले, यही इसी काम में लगे।
8: कानून के जानकार पेपर लीक जैसे मुद्दों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन देश में पहले से काम कर रही फास्ट ट्रैक कोर्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कई आशंका भी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट का मॉडल अभी तक बहुत कारगर साबित नहीं हुआ है। वजह है फास्ट ट्रैक कोर्ट को भी लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और संसाधनों की कमी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब यही है कि अभी भी फास्ट ट्रैक वाली अदालतें धीमी गति में अटकी हुई हैं।
10: पहली जो चुनौती है फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले में, ये न्यायाधीशों की कमी, जुडिशियल ऑफिसर्स की बहुत ही कमी है, खास करके डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पे।
8: फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर कानून के जानकारों की आशंका वाजिब नजर आती है। संसद में एक सवाल के जवाब में लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से देश में चल रही फास्ट ट्रैक अदालतों में लंबित मामलों से लेकर निपटाए गए केसों की जानकारी साझा की है। जवाब में कहा गया है कि साल 2023 में नए केस 81,471, 2024 में 88,902, 2025 में 1,43,936। कोर्ट ने केसों का निपटारा किया साल 2023 76,319, 2024 में 85,595, 2025 में 66,500। मतलब हर साल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जितने मामलों में फैसला सुनाया उससे ज्यादा नए केस कोर्ट में पहुंचे। यही वजह है कि 2023 में 202,175 केस लंबित थे, 2024 में 204,122 और 2025 में 245,579। ये आंकड़े बताते हैं कि इंसाफ को फास्ट ट्रैक पर लाने वाली कोर्ट में खुद लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की धीमी रफ्तार की वजह है जजों और कोर्ट के स्टाफ की कमी। यही नहीं, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने फंड की बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि रेगुलर जजों के जिम्मे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम भी है। अब सवाल है कि जब फास्ट ट्रैक अदालतों में जजों की कमी है तो इंसाफ फास्ट ट्रैक पर कैसे आएगा? यही सवाल आज तक संवाददाता ने देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से पूछा।
11: एक सवाल ये मुरा है कि क्योंकि ट्रायल कोर्ट में जजों की कमी है काफी सख्त, उसकी वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए या कुछ भी बनाए तो सुनवाई या नहीं?
9: देखिए, जो आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में रहते हैं, उस समय तो अधिक हाई कोर्ट ही उनके अपॉइंटमेंट कर से
11: जी।
9: कुछ जगह पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से एग्जाम होता है, उसमें भी हाई कोर्ट का समर्थित हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण बोल होता है। हमने उनको कहा भी है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वैकेंसी है तो जल्दी से जल्दी भरे एग्जाम लेकर।
8: केंद्रीय मंत्री ने यही भरोसा दिया कि नए जजों की नियुक्ति के लिए सरकार की तरफ से सुझाव दिए गए हैं। अब देखना यही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट वादा बनकर रह जाएगा या फिर धरातल पर भी तस्वीर बदलेगी। इसे यूं समझिए, इंसाफ को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए 2000 में 11वें फाइनेंस कमीशन ने 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की सिफारिश की थी। मकसद था देश की अदालतों में लंबित 2 करोड़ मामलों का निपटारा करना। फास्ट ट्रैक कोर्ट की योजना को 2005 में 5 साल के लिए बढ़ाया गया, लेकिन 5 साल बाद भी 1734 में से सिर्फ 1562 फास्ट ट्रैक कोर्ट देश में संचालित थी। साल 2010 में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए राज्यों की फंडिंग बंद करने का फैसला कोर्ट ने लिया। 2012 में निर्भया गैंगरेप कांड के बाद एक बार फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट चर्चा में आया। 2015 में जघन्य अपराधों के लिए 14वें फाइनेंस कमीशन ने 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव रखा, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की फंडिंग का जिम्मा राज्य सरकार के पाले में डाल दिया। मतलब केंद्र सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए फंड नहीं देगी। 2019 में निर्भया फंड से 1023 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की फंडिंग की गई, लेकिन 2025 तक देश में सिर्फ 775 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स काम कर रही हैं। सरल शब्दों में समझें तो जितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का लक्ष्य रखा गया था उतनी अदालतें आज तक ऑपरेशनल नहीं हो पाई। न्याय व्यवस्था की जमीनी हकीकत को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के पूरे सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, तभी इंसाफ फास्ट ट्रैक पर आएगा। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और लीक प्रूफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेखनी की अगुवाई में एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स को लीक प्रूफ सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे UPSC बिना लीक के परीक्षा कराती आई है, वैसे ही नीट और दूसरी परीक्षाएं क्यों नहीं कराई जा सकती? आज तक ब्यूरो।
0: खबर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों की। दिल्ली में पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबसे अपना दर्द बयां किया।
8: जंतर मंतर के आंदोलन में घायल पुलिस वालों की कहानी।
12: मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए।
8: पुलिस वालों के परिवारों का दर्द तो कैसे कांप उठे परिवार।
13: मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
8: पुलिस वाले की बेटी बोली पापा की वर्दी खून से लाल थी।
12: उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उनके सर पे चार टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी।
8: पुलिस वाले की पत्नी बोली पत्थरों से घायल कर दिया।
13: पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते।
8: पुलिस वाले का बेटा बोला पत्थर से पापा का सिर फट गया।
14: मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है।
8: सड़क से लेकर संसद तक अभी तक तो छात्रों और प्रदर्शनकारियों की बात हो रही थी, लेकिन अब जंतर मंतर के प्रदर्शन और सीजेपी के संसद मार्च के दौरान घायल हुए पुलिस वालों के परिवार भी अपनी दर्द भरी दास्तान देकर सबके सामने आ गए हैं। 20 जून से शुरू हुए और 25 जुलाई को खत्म हुए इस आंदोलन में पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी के दौरान क्या क्या झेला, अब पुलिस वालों के परिवार उसको बयान कर रहे हैं। जी हां, सीजेपी के आंदोलन में घायल पुलिस कर्मियों के परिजन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें स्क्रीन पर प्रदर्शन के दौरान कैसे पुलिस कर्मी घायल हुए उसके वीडियो दिखाए जाते हैं और फिर एक घायल पुलिस वाले की बेटी गुंजन अपना पूरा दर्द बयान करती है और बताती है कि जब उसके पापा घर लौटे तो कैसे उनकी वर्दी पूरी खून से लाल थी।
12: It was at the front line near the barricades, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माई फादर वॉज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड इट वॉज ऑलमोस्ट लिंच नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th एंड अराउंड 2 PM। ही वॉज अनकॉन्शियस एट द RML हॉस्पिटल फॉर अबाउट 4 hours। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। मतलब उनके सर पे चार टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी।
8: पुलिस कर्मियों के परिवारों का कहना है कि जब प्रदर्शनकारियों को इंसाफ देने की बात चल रही है तो ड्यूटी के दौरान पुलिस वालों और उनके परिवारों ने भी बहुत कुछ झेला है और अब 20 जुलाई को सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान घायल पुलिस कर्मी की पत्नी सीमा ने जो दर्द बयान किया वो भी सुनिए। सीमा कहती है कि इस प्रदर्शन के दौरान उनके पति का हेलमेट टूट गया था। अगर पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद लगता तो क्या होता।
13: पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था। और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
8: अब सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए एक और पुलिसकर्मी का बेटा अपना दर्द सुनाता है। लक्ष्य सिंह बिष्ट कहते हैं कि उनके पिता को बहादुरी के लिए 4 सम्मान मिल चुके हैं। उनके दादाजी भी BSF में थे, 1971 की जंग लड़ चुके हैं, लेकिन जंतर मंतर पर पिता के साथ जो हुआ वो डराने वाला था।
14: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में एंड ऑन 25th May at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फिन के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है उसमें स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस. एंड ऑन 25th में अनप्रवोक्ड उन्होंने मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर फेल्टिंग स्टार्ट कर दी. उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई.
8: पुलिस कर्मियों के परिजनों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े भी दिखाए गए कि इस विरोध प्रदर्शन से दिल्ली पुलिस को कितना नुकसान हुआ है. 250 से अधिक पुलिस कर्मी घायल हुए, 110 से अधिक बैरिकेड डैमेज, 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर्स का नुकसान, 350 से ज्यादा हेलमेट डैमेज, 50 से ज्यादा शील्ड टूटे, 20 से ज्यादा लाउड हेलर का नुकसान, 10 HHMD और 1 एक्सरे बैगेज का नुकसान, 25 से अधिक सरकारी वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी से नुकसान. पुलिस कर्मियों के परिवार वालों का आरोप है कि इस पूरे आंदोलन में कई असामाजिक तत्व भी शामिल थे जिन्होंने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान निशाना बनाया. आज तक ब्यूरो.
0: आज दिल्ली की कड़कड़नुमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुना दी. 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई थी. अदालत का निर्णय आने के बाद अंकित शर्मा के परिजनों का मानना है कि उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी.
8: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्या के आरोप में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत दूसरे आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. 13 जुलाई को कोर्ट ने आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया था. सुनवाई के दौरान सभी दोषियों के लिए फांसी की मांग की गई थी लेकिन अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई. फैसला आने के बाद आज तक से बातचीत के दौरान अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा ने यही कहा कि उम्मीद थी कि दोषियों को फांसी होगी.
15: अंकुर जी नमस्कार. ये जो अदालत ने फैसला सुनाया है, ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है, आपका क्या रिएक्शन है, आपके परिवार का क्या रिएक्शन है?
16: सर हमारे परिवार का शुरुआत से 2020 में जब ये दंगा हुआ था, जब इसे हमारे परिवार की यही मांग थी कि भाई के जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इस केस को, हमारे केस को, भाई के केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में कोर्ट को देखना चाहिए. क्योंकि जिस तरीके से भाई के साथ जो ये इंसिडेंट हुआ था, आप सभी को पता है कितनी बुरी तरीके से, ब्रूटली तरीके से उसको मारा गया था, कितने चारों तरफ बॉडी पे उसके निशान थे चाकू के और बहुत तेजाब के, और फिर उसकी बॉडी को, भाई की बॉडी को नाले में फेंक दिया गया था जिस तरीके से. तो कोर्ट को ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में देखना चाहिए था और जो भी दोषी है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी.
0: देहरादून से एक दर्दनाक खबर आई जहां शादी के 8 महीने बाद ही एक लड़की की मौत की खबर आई. ससुराल वालों ने दावा किया कि लड़की ने आत्महत्या की जबकि परिवार इसे हत्या बताता है.
8: कैमरे पर फूट

0: सॉरी, छह महीने से सह रही हूँ, अब और सह ही नहीं जाता।
1: देहरादून की रहने वाली सृष्टि कंडारी की 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। पति सौरभ खत्री सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि सृष्टि खुद भी सरकारी टीचर थी। मौत से करीब 1 घंटे पहले सृष्टि ने ये वीडियो बनाया, जिसमें वो कहती हैं कि सॉरी मम्मी, अब मैं जा रही हूँ।
0: सब सुनाते हैं, शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ, मनोस मनोस।
1: ससुराल वालों का कहना है कि सृष्टि ने आत्महत्या की, जबकि परिवार वाले ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।
2: मैं देखा सिचुएशन तो मर्डर का सिचुएशन, क्योंकि वो कह रहे थे कि हैंग किया जो भी है वो, तो उनको इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था पुलिस को, जो उन्होंने किया या परिवार को करना चाहिए था, पर उन्होंने कोई कॉल नहीं उठाया।
3: अच्छा,
2: वो कैलाश हॉस्पिटल ले गए थे वो।
3: अच्छा, और आप लोग कैसे पता चला?
2: हमें बाहर से किसी ने इन्फॉर्म किया कि आप चाचा जी वहाँ पे आ जाओ।
1: परिवार का कहना है कि 3 महीने पहले सृष्टि के ससुर की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। शादी के बाद ससुर को कैंसर होने का पता भी चला था, जिसके बाद ससुराल वाले उसे मनहूस कहकर ताना मारते थे।
4: सर, उनको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। उनको जो उनका वीडियो लास्ट में आया था, उसमें दीदी ने यही बताया है कि ये लोग मुझे 6 महीने से परेशान कर रहे हैं। अपने ससुर, जो उनके ससुर हैं बीमार थे काफ़ी समय से, उनके द्वारा बोला गया है कि जब से तुम आई हो यहाँ पे, तब से हमारे परिवार में ये घटनाएं हो रही हैं, अनिष्ट हो रहा है, इस तरीके से प्रताड़ित करना। कभी उसको, उनने गाड़ी ली थी, उसकी किस्त वो भर रही थी, हर चीज़ वो कर रही थी उनके लिए, हर चीज़ उसने मतलब पूरा चाहा कि मैं अपने परिवार के लिए करूं। पर उसके बावजूद उन लोगों के द्वारा उसको इतनी मानसिक प्रताड़ना दी गई कि उसको मजबूरन, अब वो सुसाइड हम नहीं मानते, वो हत्या है।
1: पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी ने वीडियो से छात्रों को दिया संदेश, कहा गाली गलौज से किसी समस्या का समाधान नहीं, गुमराह बच्चों को करता हूं माफ, बोले आओ मिलकर बनाएं सपनों का भारत। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के अजीब और गरीब प्रदर्शन पर राजनीतिक जंग, सरकार बोली संसद नाटक की जगह नहीं, अखिलेश बोले सच बुरा लगा क्या। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर, 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गई पीएम किसान योजना, तेल गैस की खोज के लिए 84,000 करोड़ की समुद्र मंथन योजना को स्वीकृति। 2020 दिल्ली दंगे में सजा का ऐलान, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में पूर्व पार्षद ताहिर समेत सभी 5 को उम्र कैद, बीजेपी आप में राजनीतिक भिड़ंत। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को मारी गोली, 1 की मौत 1 घायल, सर्च ऑपरेशन तेज। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम ने दिल्ली में उन्हें गाली देने वाले बच्चों के लिए संदेश जारी करते हुए कहा कि मुझे और मेरी माँ को गाली दी गई, पीएम बोले ये गुमराह बच्चे हैं जिन्होंने गालियां दी, मैं इन्हें माफ करता हूं।
1: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है, कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का